हमें अपने अंदर बाप समान सबको खुश करने के और संतुष्ट करने के संस्कार भरने हैं। स्वयं भी संतुष्ट रहना है, दूसरों को भी संतुष्ट करना है। स्वयं बहुत खुश रहना है, दूसरों को भी खुशी बांटनी है। जैसे ब्रह्मा बाबा हर परिस्थिति में बहुत खुश रहे, उनके चेहरे पर उनकी आंतरिक खुशी सदा ही झलकती रहती थी। क्यों न हो खुश जिन्हें भगवान मिला, जिनका श्रृंगार स्वयं भगवान करते हैं, जिसको रोज सवेरे सवेरे शक्तियों की माजून खिलाकर सर्वशक्तिवान स्वयं शक्तियां भरते हैं, वो भला क्यों न खुश हों। जिनको सामने स्वर्ग दिखाई दे रहा है, सामने खड़ी हुई बादशाही दिखाई दे रही है, सोने हीरो के अथाह भंडार सामने पड़े हैं, वो भला खुश नहीं होंगे तो और कौन खुश होगा। अपनी प्राप्तियों को याद रखें और सदा खुशी के झूले में झूलते रहें। लेकिन सबको खुश करना ये भी एक बहुत सुंदर कला है। हम दूसरों को अच्छे बोल बोलें, दूसरों को एप्रिशिएट करें, दूसरों को एनकरेज करें। आज से हम ये सीखेंगे, हमें दूसरों को प्रेरक बोल बोलने हैं और एप्रिशिएट करना है। दूसरों की कमी निकालने वाले तो संसार में बहुत होते हैं, लेकिन उसके हर कार्य को एप्रिशिएट करके उसे उमंग उत्साह दिलाने वालों की काफी कमी है। हमें वो कमी पूरी करनी है। जिसको हम एप्रिशिएट करेंगे उसके मन में हमारे लिए सदा सदा के लिए प्यार भर जाएगा, और जिसकी हम ग्लानी करेंगे, जिसके अवगुण देखेंगे, वो हमसे प्रतिपल दूर जाता जाएगा। तो खुश करने की कला जैसे बाबा में थी, खुश करने के साथ सबको आगे बढ़ाने की कला भी थी। किसी में बाबा जरा सा गुण देखते थे, उस गुण को यूज कर लेते थे। हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा जिन्हें देखकर शायद संसार कहे इनमें तो कोई गुण नहीं, ये किसी के काम के नहीं है, जिनको बुद्धि भी बहुत डल थी और कोई योग्यता भी नहीं थी, कोई एजुकेशन भी नहीं थी, लेकिन बाबा ने उन्हें भी यूज कर लिया, उनका भी भाग्य बना दिया। दूसरों का भाग्य बनाना ये बहुत बड़ी कला है। जो अपना भाग्य बनाना जानते हैं वो दूसरों का भी भाग्य बनाना जानते हैं। जिसमें थोड़ी भी कोई कला हो उसको विकसित करना, उसको एप्रिशिएट करना, उस कला के बारे में उसको जागृति दिलाना, इससे उसकी वो कला बढ़ जाएगी और वो कला कहीं ना कहीं हमारे काम आएगी या यज्ञ के काम आएगी, प्रभु के इस दिव्य कार्य में उसका उपयोग होगा। तो हम दूसरों को आगे बढ़ाएं और ये अच्छी तरह जान लें और मान लें, जो दूसरों को आगे बढ़ाते हैं वो स्वयं बहुत आगे बढ़ जाते हैं। कई लोगों को डर रहता है, ये हमसे आगे बढ़ गए तो हमारा क्या हाल होगा, ये ऐसा करने लगे तो हमें कौन पूछेगा, सब तो इनके हो जाएंगे, हमारी तो कहीं मान्यता ही नहीं रहेगी। ये भय मनुष्य में इनसिक्योर फीलिंग लाता है और मनुष्य को पीछे की ओर ले चलता है। तो आज सारा दिन हम सबको खुश रखेंगे, जो भी संपर्क में आए हमसे खुशी का खजाना ही लेकर जाए और बहुत गहराई से अनुभव करेंगे, मैं आत्मा पीसफुल हूँ। अपनी शांति से स्वयं मिलेंगे, अंदर जांच करेंगे हमारे अंदर कितनी गहन शांति है, हमारे पास कितनी साइलेंस पावर है। यदि हम अपने चित्त को शांत कर दें तो डीप साइलेंस का गहन अनुभव होगा। आज सारा दिन इस गुड फीलिंग में रहेंगे, मैं आत्मा इस देह से न्यारी पीसफुल हूँ, और फिर ऊपर से बाबा की शांति की किरणें मुझ में समा रही हैं। सारा दिन हर घंटे में दो बार ये अभ्यास चलता
करता रहे। थैंक यू।

बिछड़ गए जो मधुबन से, दिल से उनकी भी उठती पुकार, याद करता उनका भी मन बारंबार, याद करता उनका भी मन बारंबार।

0: आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हॉस्पिटल्स में एडमिट होने वाले ज्यादा केसेस रोड एक्सीडेंट्स यानी सड़क दुर्घटना की वजह से होते हैं। इसलिए अपनी रफ्तार पर नियंत्रण रखें, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात में आपका स्वागत रेडियो मधुबन पर। कोई भी कार्य जब हम शुरू करते हैं तो वह कार्य पूरा करने की सामर्थ्य हमारे आत्मविश्वास पर ही निर्भर करती है। काम चाहे कितना भी छोटा हो और कैसा भी हो, जब तक आपको यह विश्वास ना हो जाए कि आप उसे विधिवत एवं सुरुचिपूर्ण ढंग से संपन्न कर सकते हैं, तब तक आप उसे संपन्न नहीं कर सकते। कोई भी कार्य पहले व्यक्ति के अपने मन में पूरा होता है। काम को पूरा करने की विधि पहले व्यक्ति के मन में बनती है। पहले मन द्वारा ही काम को बिगाड़ा अथवा बनाया जाता है, उसकी सफलता प्राप्त की जाती है, उसके बाद ही उसे संपन्न किया जा सकता है। जिस काम को आप पसंद ही नहीं करते अथवा जिसके पूरा होने में आपको अपनी सामर्थ्य पर संदेह है अथवा जिसके बारे में आपके मन में संशय है, उस काम को आप कभी भी पूरा नहीं कर सकते हैं। संसार का ऐसा कोई ज्ञान विज्ञान नहीं है जिसके बल पर आप उस काम को सही रूप में पूरा कर सकें जिसे आप पसंद नहीं करते। अपनी ही बनाई सीमाओं को पार करने की शक्ति किसी भी व्यक्ति में नहीं होती है। सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को सबसे पहले अपने नकारात्मक विचारों से छुटकारा पाना चाहिए, अपने मन के संदेह को दूर करना चाहिए। सफलता से पहले सफलता की आशा करना और उसमें विश्वास करना बहुत जरूरी है। अपनी कार्य सामर्थ्य तथा कार्य क्षमता पर पूरी तरह भरोसा किए बिना ना कोई व्यक्ति अपने काम को भली भांति कर सकता है और न ही उसमें सफल हो सकता है। कार्य में सफलता प्राप्त करते हुए भी अपने इस विश्वास को लगातार दोहराते रहना पड़ता है कि मैं इस कार्य को भली भांति संपूर्ण करके ही दम लूंगा। जैसे कि यदि एक बालक प्रातःकाल नींद खुलते ही यह कहने लगे कि मैं उठ ही नहीं सकता, तो निश्चित है कि वह बिस्तर से नहीं उठ सकता। वह बिस्तर से तभी उठ सकता है जब उसे अपनी शक्ति पर, अपनी सामर्थ्य पर पूर्ण विश्वास हो कि वह उठ सकता है। ठीक वैसे ही जब तक हमें अपने कार्य की सफलता पर विश्वास नहीं होगा, भरोसा नहीं होगा, तब तक हम उस कार्य को पूरा करने के लिए अपने आप में वह शक्ति नहीं जागृत कर पाएंगे। इसीलिए किसी भी कार्य की सफलता को पहले अपने मन में निश्चित कीजिए, उसके बाद आप उसको सफलतापूर्वक कर

जो मनुष्य अपने मन में सदा यही दोहराता रहता है कि मैं तो इस काम को कर ही नहीं सकता और कोई दूसरा व्यक्ति भले ही उसे कर ले पर मैं नहीं कर सकता और इसलिए इसके बारे में प्रयत्न करना बेकार है, यह वास्तव में उस कार्य को नहीं कर सकेगा। जो विद्यार्थी अपने मन में यह सोचता है कि वह कॉलेज में प्रवेश नहीं पा सकेगा, वह किस प्रकार ऊंची शिक्षा प्राप्त कर सकता है? वह तो चार शब्दों के इस वाक्य मैं नहीं कर सकता का शिकार हो जाता है और जब तक इस प्रकार के नकारात्मक विचार का, इस नहीं का पल्ला नहीं छोड़ता तब तक वह वास्तव में कुछ नहीं कर सकता। यह छोटा सा शब्द नहीं व्यक्ति के संपूर्ण आत्म सम्मान को जड़ मूल से नष्ट कर देता है। इस एक शब्द ने ही जाने कितने व्यक्तियों की योग्यता और कार्य करने की शक्ति को नष्ट कर डाला है। लेकिन इसके विपरीत जो व्यक्ति सदा यह कहता है मैं कर सकता हूँ, उसके मार्ग में कितनी भी विघ्न बाधाएं आए, वह अपने आत्मविश्वास आत्मसम्मान की रक्षा हेतु इस प्रकार के शब्दों से प्रेरणा प्राप्त कर बराबर अपने काम में जुटा रहता है, वह अवश्य ही सफलता प्राप्त कर लेता है। जिस प्रकार एक व्यक्ति सफल वकील तभी बन सकता है जब वह कानून के नियमों और सिद्धांतों को समझे एवं कानून संबंधी ग्रंथों का अध्ययन करे, लेकिन यदि वह दवाओं अथवा डॉक्टरी उपकरणों के बारे में सोचता रहेगा तो वह क्या सफल वकील बन पाएगा? यह सब कहने का आशय यही है कि आप जिस विषय में भी विशेषज्ञ बनना चाहते हैं उसे छोड़कर यदि अन्य विषयों के अध्ययन में लगे रहे तो अपने लिए चुने गए विषय में विशेषज्ञ किस प्रकार बन सकेंगे? जब आपका मन ही अन्य विषयों के चिंतन में लीन रहता है तो आप अपने लिए चुने हुए विषय में सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इस प्रकार यह कहना भी बिल्कुल उचित है कि जब आपका मन निराशा के विचारों से ग्रस्त है तो फिर आपकी मनोवृत्ति सफलता के लिए किस प्रकार समर्थ एवं सक्षम बन सकती है? तब कैसे आपकी कार्यक्षमता बढ़ सकती है? इसीलिए अगर आप सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मन से इन निराशावादी विचारों को हटाइए, अपने मन को समर्थ एवं शक्तिशाली विचारों से संपन्न बनाइए, फिर आपकी कार्यक्षमता भी बढ़ेगी और साथ ही साथ आपकी सफलता भी निश्चित।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: मेजोरिटी पीपल सिर्फ अगर अपने जीवन और अपने मन की एक्सरे करनी है उस क्षण चेक करें जब सुबह उठते हैं। अगर सुबह उठते ही फर्स्ट थॉट आती है कि मुझे थोड़ा और सोना है, इसका मतलब मेरी जो 6 घंटे की 8 घंटे की नींद थी मेरी उसमें रेस्ट और रिचार्जिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? शरीर सो रहा था लेकिन मन अभी भी कंटिन्यूअसली चल रहा था। मन की बात का समाधान नहीं मिला उसको। अब हमारा मन अगर उसको उसकी बात का समाधान नहीं मिलता है तो वो 5 दिन नहीं 5 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ, 50 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ। और अगर फिर भी समाधान नहीं मिला तो आत्मा शरीर छोड़ेगी, दूसरा शरीर लेगी और वो ही सोच और संस्कार अपने साथ लेकर जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

स्वयं को किसी प्रकार के दोष से ग्रस्त समझेंगे तो आप उस तक नहीं पहुंचे जहां तक पहुंचकर आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आपकी मनस्थिति इतनी उन्नत नहीं हो जाती तो आप अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकते। आपके मन में नकारात्मक, ध्वंसात्मक और ऋणात्मक विचार भरे हैं। आपका मनोबल गिरता ही रहेगा। आप किसी रचना, किसी निर्माण या किसी सृजन कार्य में सफल नहीं हो सकेंगे। अनेक व्यक्ति जीवन भर केवल इस प्रकार के दुर्बल एवं अस्वस्थ विचारों से घिरे रहने के कारण ही नहीं सफल हो पाते। यदि कोई लड़की सुंदर एवं स्वस्थ रहना चाहती है तो उसके लिए समझदारी की सबसे पहली बात यह होगी कि वह अपने मन से कुरूपता एवं अस्वास्थ्य संबंधी विचारों को निकाल फेंके। उसके स्थान पर निरंतर सुंदरता एवं स्वास्थ्य के आदर्श को ध्यान में रखें और स्वयं को उन आदर्शों के अनुरूप ढालने का प्रयत्न करें। इस प्रकार निरंतर सुंदरता का ध्यान रखने से, स्वास्थ्य का ध्यान करने से वह अपने आदर्श के अनुकूल अपने को ढालकर सुंदर एवं स्वस्थ बन सकती है। लेकिन यदि वह हर समय यही सोचती रहे कि वह तो कुरूप, भद्दी, अस्वस्थ, बीमार, बदसूरत है तो सौंदर्य और स्वास्थ्य भी उससे हमेशा दूर ही भागते रहेंगे। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अनेक नवयुवक एवं नवयुवतियां हर समय अपनी दुर्बलता एवं अक्षमता का ही रोना रोते रहते हैं। उन्हें नहीं मालूम कि इस प्रकार के हीन विचार उनकी सफलता एवं प्रसन्नता के लिए कितने घातक हैं। ऐसे विचारों को उन्हें सदा सदा के लिए बाहर निकाल फेंकना चाहिए। निराशा के अंधकार से निकलकर आशा के प्रकाश की ओर बढ़ें। निराशा का अंधकार बड़ी विषाक्त दुर्गंध फैलाता है जिसमें व्यक्ति का दम घुटकर रह जाता है। उसे छोड़ ही देना होगा। श्रेष्ठता, सुंदरता एवं सफलता की चोटी पर चढ़ने का प्रयत्न कीजिए। कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने का, कुछ बनने का संकल्प कीजिए। जब तक आप यह न समझ लें कि असफलता का विचार एक बीमार विचार है, तब तक श्रेष्ठता के स्तर तक पहुंचने के लिए असफलतामय विचारों को छोड़ना ही होगा। अतः अभी निश्चय कीजिए कि आपको उन्नति करनी है तथा आपको सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचना है। इस प्रकार के विचार मन में आते ही आप स्वयं प्रयत्न करना आरंभ कर देते हैं और तब आपके सभी अंग प्रत्यंग आत्म प्रेरित होकर अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में लग जाते हैं। जो व्यक्ति हर समय गरीबी के विचारों में ही उलझा रहता है वह कभी भी संपन्न नहीं बन सकता। जब उसके मन में ही यह विश्वास नहीं है कि वह धनी अथवा सौभाग्यशाली है तो वह कभी भी धन संपत्ति अर्जित नहीं कर सकता, कभी भी सौभाग्यशाली नहीं बन सकता। तो सबसे पहले हमें अपने विचारों से धनवान बनना होगा, अपने विचारों से अपने भाग्य को जगाना होगा, तब जाके आप उसे प्रत्यक्ष रूप में

0: ओ भाई साहब इधर आओ, कहाँ जा रहे हो जरा बताओ। लाल बत्ती में दिखता नहीं आपको, सामने लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं फिर भी गाड़ी पकाए चले जा रहे हो हैं?
1: अरे हवलदार साहब, एक बार लाल बत्ती में निकल गया तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा।
0: ओए पहाड़ भले ना टूटे, लेकिन बेमतलब यमराज के रजिस्टर में एक नाम जुड़ जाएगा। इसीलिए जब भी लाल बत्ती हो तो बोलो पहले आप, समझे?
2: गाड़ी चलाते वक्त पहले आप का रूल अपनाइए और अपने शहर का ट्रैफिक स्मूथ बनाइए। ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी

जब तक मनुष्य के मन में ही धन संपत्ति प्राप्त करने की ललक नहीं होगी, तब तक वह इस संबंध में कोई संघर्ष या प्रयत्न नहीं करेगा। जब तक वह अपने मन में यही सोचता रहेगा कि धन संपत्ति तो औरों के लिए है, औरों के भाग्य में है, तब तक वह धन संपत्ति का स्वामी नहीं बन सकता। ठीक उसी प्रकार जो व्यक्ति अपनी योग्यता, क्षमता, कार्य कुशलता एवं सामर्थ्य के बारे में ही विश्वस्त नहीं है, वह कभी भी उन साधनों का प्रयोग नहीं कर सकता जिनके द्वारा सिद्धि प्राप्त होती है। जब तक वह अपने मन के इन नकारात्मक विचारों को ही नहीं दूर कर सकता, तब तक वह दूसरों द्वारा की गई विघ्न बाधाओं को किस प्रकार लांघ सकता है और कैसे उन्नति की ओर बढ़ सकता है। जिसके मन में गरीबी के विचार हो, जिसे हर ओर गरीबी ही दिखाई पड़ती हो, जो सदा गरीबी के ही सपने देखता हो, गरीब रहने के ही काम करता हो, यदि वह गरीब रहे तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। अनेक लोग इसी प्रकार अकर्मण्यता की चादर में लिपटे बरसों पड़े रहते हैं। उन्हें यह विश्वास ही नहीं होता कि उनमें यह अकर्मण्यता उन्हें के विचारों के कारण है। उनका आत्मविश्वास डोल जाता है और उनकी समझ में नहीं आता कि वह अब क्या करें। उनके विचार ऋणात्मक हो चुके होते हैं, जिसके कारण उनसे उनकी योग्यता स्वयं दूर भाग जाती है और वे असफल रह जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि वे अपने विचारों की गुलामी के बंधन को तोड़ फेंकें, निराशा की ओर से अपना मुंह घुमा लें। जीवन में जो कुछ भी श्रेष्ठ है, सुंदर है, स्वस्थ है, उसे अपना आदर्श बनाएं और अपने मनोबल को बढ़ाकर अपनी मनःस्थिति को उन्नत करें। अपने आत्मविश्वास को पुष्ट कर, अपनी कार्य कुशलता पर पूरी तरह भरोसा कर, वंशात्मक, ऋणात्मक अथवा नकारात्मक विचारों पर विजय प्राप्त कर, निर्माणात्मक एवं सकारात्मक विचारों द्वारा सफलता प्राप्त करें। भागना नहीं चाहिए, वरन स्वयं को इतने मजबूत बनाओ कि दुनिया को ही बदल डालो। किसी ने ठीक ही कहा है, भागो नहीं, दुनिया को बदलो। तो इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे सुप्रभात में। रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: मैं मधुबन स्वयं क्या कहूं, मधुबन की महिमा स्वयं यज्ञ पिता ब्रह्मा बाबा ने की है। जहां सर्वोच्च भगवान स्वयं प्रत्यक्ष होकर बच्चों से मिलते हैं, मधुबन को बाबा ने महातीर्थ के रूप में भी स्थापित किया है, जो भविष्य में मनुष्य आत्माओं की उन्नति का स्थान बनेगा, जहां आकर सभी आत्माएं शांति और सुख की प्राप्ति कर सकेंगे। बाबा ये बखूबी जानते थे कि माताएं ही स्वर्णिम युग का द्वार खोलने वाली हैं, और यज्ञ की हर एक दादी ही यज्ञ रक्षक बनकर यज्ञ को ऊंचाइयों पर ले जा सकती हैं। दादी रतन मोहनी जी ने बाबा की शिक्षाओं को आधार बनाकर सेवाओं के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। भाषण में कुमारियों को किस प्रकार समझाना है, इसकी बखूबी शिक्षाएं दी। दादी जी ने ज्ञान को जीवन में अपनाकर फिर दूसरों को उसका रसपान कराया। उसका बहुत गहरा प्रभाव दूसरों के जीवन में दिखाई पड़ा। शक्ति वंदन के आज की श्रृंखला में हम दादी जी के जीवन के कुछ उन्हीं बहुमूल्य ज्ञान रत्नों की जानकारी प्राप्त करेंगे। शक्ति वंदन के आज की श्रृंखला में हम दादी जी के जीवन के कुछ उन्हीं बहुमूल्य ज्ञान रत्नों की जानकारी प्राप्त करेंगे।
1: शक्ति वंदन में आइए सुनते हैं उन महानुभावों से जिन्होंने दादी रतन मोहिनी जी के अंग संग रहकर उनके सानिध्य में उनके मार्गदर्शन में अनेक शिक्षाएं प्राप्त की, उनके जीवन से ओतप्रोत होकर अपने आप को धन्य महसूस किया। सुनते हैं उनके अनुभव उन्हीं के मुखारविंद से।
2: ओम शांति। मैं सबसे पहले दादी रतन मोहिनी को 1971 में मिली थी, और उस समय पर दादी जी के साथ देवी माता, जो उनकी लौकिक मदर थी, दोनों ही साथ में थे। दादी ने बहुत प्यार से स्नेह भरी दृष्टि देते हुए मुझे अपने समीप बुलाया और देवी माता का भी परिचय कराया। दादी ने इतना रूहानियत भरी दृष्टि दी और जो दादी के बोल थे वो जैसे अंदर में छप गए कि तुम बहुत आगे जाएंगी। उसके बाद दादी कुछ दिन वहां रही और फिर बॉम्बे चली गई। बॉम्बे से फिर वापस आए तब देवी माता जी वहां पर रहती थी और विशेष मुझे उनकी सेवा के लिए कहा गया। मैंने माता जी से भी बहुत कुछ सीखा। उनके अंदर विशेष स्वच्छता का गुण था और एक्यूरेसी बहुत थी। जो कहा है, जैसे कहा है, वैसे ही करना है, क्योंकि इन आत्माओं ने बाबा से जो पालना ली थी वो इन्हों के अपने संस्कार थे। अगर उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें अंदर से आटा लेकर के इस ग्लास को साफ करना है तो वो अंदर से ही लेना है, अगर बाहर से लिया तो वो उनको अच्छा नहीं लगता था। तो मैंने भी उनको संतुष्ट करने के लिए जब जैसे कहा वैसे किया तो वो मेरे से बहुत खुश थी। और दादी भी जब लंदन गई तब मैं विशेष माता जी के साथ रही और दादी का मेरे साथ बहुत बहुत आत्मीयता का प्यार भरा संबंध था और अभी भी है।
3: उस समय आपकी क्या उम्र रही होगी?
2: मैं छोटी थी, 17 वर्ष की थी
3: जी।
2: और मेरा एक लक्ष्य था कि मुझे यहाँ पर सब कुछ सीखना है और जैसे भी जो कहते थे मैं उसी प्रकार से सेवा करती थी
3: जी। सो दादी जब लंदन चले गए हैं और आप माता जी के साथ मधुबन में रहते थे, मधुबन में आपने बहुत सारी दादियों के बीच में रहे हैं। सो जब आप रतनमोहिनी दादी को देखते हैं और अन्य दादियों को देखते हैं, दादी की वो कौन सी यूनिकनेस है, अन्य दादियों से वो एक स्पेशल लगते हैं?
2: दादी के अंदर एक्यूरेट, एक्टिव और अलर्टनेस था, और उसका कारण था वो फिजिकली भी और मेंटली भी उन दोनों का बैलेंस रखती थी। मैंने जहाँ तक देखा सुबह अमृत वेले योग के पश्चात डेली दादी एक्सरसाइज करती थी और वो ये कहती थी कि हमें इतना हमारे में स्फूर्ति होनी चाहिए। उसको उन्होंने कभी ब्रेक नहीं किया, चाहे सर्दी थी गर्मी थी कैसा भी मौसम था तो उसमें भी वो अलर्ट थी। और हम लोगों को भी सिखाती थी कि आप सब छोटे छोटे हो, आपके अंदर में ये संस्कार होना चाहिए। फिर जिस समय दादी कोई भी कार्य करती थी तो उस कार्य के प्रति दादी की बड़ी सिंसियरिटी थी, अलर्ट, चाहे स्थूल में था या पुरुषार्थ कराने के विषय में था। योग में भी जब बिठाती थी तब बड़ा गहराई से उस विषय को स्पष्ट करती थी। मुझे याद है एक बारी दादी ने योग के लिए ज्ञान स्वरूप की स्थिति क्या है उस पर बड़ा गहरा क्लास कराया और उसके साथ में वो अनुभूति कराई। मना उनका ये लक्ष्य रहता था, जैसे फिजिकली एक्टिव अलर्ट और एक्यूरेट थी, ऐसे ही दूसरे साइड में भी कि मैं जो भी सुनाऊं वो इनको महसूस होना चाहिए, अनुभव में होना चाहिए। और उसी रीति से दादी हम लोगों को पुरुषार्थ भी कराती थी।
3: जब आप इस ईश्वरीय मार्ग पर चलना शुरू किया और जब आपने निर्णय लिया कि मुझे अभी समर्पित होना है, उस समय किसकी प्रेरणा रही और दादी ने कैसे इंस्पायर किया आपको समर्पित जीवन के लिए?
2: प्रेरणा तो मुझे बड़ी दादी से मिली, क्योंकि दादी ने जो मुझे प्यार और पालना दिया। मैं सबसे छोटी थी, डेली दादी के पास जाती थी और दादी मुझे लवली कहती थी और बाबा मम्मा की बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुनाती थी। तो जैसे दादी सुनाती थी तो मुझे लगता था ये मुझे बनना है, ये मुझे करना है, और उसको मैं प्रैक्टिकल में अभ्यास करना शुरू करती थी। तो दादी के प्यार से और उनकी इस ईश्वरीय रूहानी पालना से मुझे समर्पित होने का संकल्प आया। लेकिन जब मैं समर्पित हुई 1975 में, उसके पश्चात ईश्वरीय सेवाओं का विस्तार भी हुआ। उन विस्तार में रतन मोहिनी दादी का विशेष रोल रहा, क्योंकि दादी की निर्णय शक्ति और दादी की कार्य कराने की शक्ति, कार्य क्षमता, वो बहुत परफेक्ट था। किसी को किस ढंग से समझाना है, उनसे किस प्रकार से सेवाएं लेनी है, वो हम प्रैक्टिकल दादी को देखते थे। और इकोनॉमी का अवतार थे, कार्य अच्छा कराना, कम खर्च वाला नशीन, वो दादी के अंदर विशेषता थी। तो मैंने दादी से ईश्वरीय सेवा के क्षेत्र में बहुत कुछ सीखा है, किस ढंग से हैंडल करना चाहिए, भाषण में क्या क्या बोलना चाहिए और लोगों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। आपसी जो हम टीचर्स पहने थी उनके लिए भी दादी बहुत अच्छी अच्छी प्रेरणाएं देती थी, जिससे सेवा के क्षेत्र में साथियों के साथ रहने में मुझे बहुत सफलता मिली है।
3: जी, जैसे आपने कहा कि जब भी आप दादी से बाबा मम्मा की कहानियां सुनते हैं तो आपको लगता है कि मुझे भी ऐसा बनना है, तो जब आप रतनमणि दादी को देखते हैं कौन सी ऐसी बात आपको बहुत अट्रैक्ट करती है कि मुझे भी ये गुण अपने अंदर लेने?
2: दादी के अंदर एक तो मनन करने की बहुत विशेष कला थी और दूसरा, दादी जब दूसरों के साथ व्यवहार में आती थी तो उनको अपना बना करके और अपना बना करके वो अनुभव की बातें जो सुनाती थी उससे लोगों के जीवन में परिवर्तन आता था। तो ज्ञान को केवल सुनाती नहीं थी लेकिन मनन करने की एक विशेष कला थी, गहराई में जाकर के उसकी बड़ी सूक्ष्मता से उस बात को पहले खुद अंडरस्टैंड करती थी और अपना बनाती थी, फिर वो सुनाती थी। तो ये मैंने दादी से सीखा कि हम भी बाबा के ज्ञान को अच्छे शब्दों में सुना देना वो वास्तविकता नहीं है, लेकिन अपना बना करके और फिर जब हम किसको देते हैं तो उससे उसके जीवन में परिवर्तन आता है। ऐसे दादी ने हजारों के जीवन को बदला है और ऐसे जीवन जो व्यसनी थे, जो युवा थे या जो कमजोर थे, उनको भी दादी से विशेष प्रेरणाएं मिली है।
3: जी, फिर दादी ने आपको कैसे सेलेक्ट किया टीचर्स ट्रेनिंग के लिए?
2: दादी को मेरे अंदर में ऐसा, जब मैं साथ में रही थी तो एक तो आज्ञाकारी का गुण था और दूसरा क्या था, मेरा अपना पर्सनल पुरुषार्थ पर बहुत अटेंशन रहता था। तो दादी को लगता था कि ये प्रैक्टिकल करती है, ये जब इस ट्रेनिंग को कराएंगी तो इसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन दादी सिखाती थी इस विषय पर तुम्हें इन इन बातों को इस ढंग से कुमारियों को सुनाना है। तो जैसे दादी सुनाती थी फिर मैं मनन चिंतन करके फिर क्लास कराना शुरू किया और उस क्लास से जो ओपिनियन मिला तो वो उन कुमारियों को अच्छा लगता था फिर मेरे में कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, मुझे ये और अच्छी रीति से कराना चाहिए। तो ऐसे कराते कराते दादियों की ब्लेसिंग, बाबा की मदद और ट्रेनिंग कराना शुरू किया। फिर दादी को विश्वास था मेरे पर, और पहली बार दादी ने मुझे 93 में, यहाँ से कुमारियों का एक ग्रुप था, 35 कुमारियां थी, तो मुझे कहा कि तुम इन कुमारियों को मेहसाना में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देंगी। तो वहां पर मैंने सोचा कि मैं अकेली हूँ और दादी मुझे इतना बड़ा ग्रुप दे रही है, लेकिन मैंने दादी को हाँ बोला। और दादी ने भी जब मुझे उन कुमारियों को मेरे पास में भेजा, तो धीरे धीरे धीरे बराबर पूछती रहती थी, डायरेक्शन देती रहती थी, कैसे करा रही हो, कुमारियां कैसे हैं। तो वो कुमारियों ने भी वहाँ ट्रेनिंग ली। विश्वास दादी का और प्यार, ये दोनों चीजें थी। और पता नहीं क्यों एक नेचुरल आत्मीयता है मुझे भी और दादी को भी। जब भी मैं आती हूँ तो दादी उसी आत्मीयता से मिलती है। सिने आत्मा को एक खिंचावट होती है नेचुरल वो रूहानियत से, वो क्यों है। अभी भी दादी इतना प्यार से मिलती है, अच्छा तुम आई है।
3: दीदी जब दादी से आप मिलते थे, पुरुषार्थ के लिए कैसे प्रेरणा देती थी आपको, क्या नवीनता दादी से आप सीखते थे जब भी आप मिलते दादी से?
2: पुरुषार्थ में दादी के अंदर सबसे पहले जो एक्टिवनेस थी ना, तो बड़ा अलर्ट होकर के और जागंती जोत होकर के बैठती थी, कहाँ ढीला ढाला ये नहीं था। तो उस समय पर हम लोगों के लिए जब आयु छोटी थी, तो कभी कभी अमृत वेले के समय सुस्ती या इस प्रकार का कोई संस्कार होता था, लेकिन जब दादी को देखती थी कि इतना एक्टिव, इतना सीधा और इतना अच्छा बैठ करके बाबा को याद करती है, तो जब दादी कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। तो एक मुझे प्रेरणा योग के लिए मिली, बड़ा सीधा बैठना और एकदम खुली आंख से बैठना और लवलीन स्थिति में बैठना।
3: दादी की क्या उम्र रही होगी जब आप मिले? 60s 70s में रहे होंगे।
2: मैं 71 में 72 में दादी को मिली हूँ।
3: दादी 50s में रहे होंगे।
2: हाँ, इसमें थी। लेकिन उसमें एज में भी इस रीति से बैठना तो हम लोगों के लिए एक प्रेरणा का था, उसे प्रेरणा मिलती थी। दूसरा जो मुरली थी, उस मुरली के पढ़ने के बाद में उनका अपना मंथन चिंतन बहुत चलता था। केवल चिंतन नहीं चलता था, इन सब दादियों को प्रैक्टिस थी, ये लिखते थे और लिखने के बाद में आपस में उसके ऊपर रूढ़िहान करते थे। तो दादी, बड़ी दादी और यीशु दादी, ये सब ऑफिस में रतन मोहिनी दादी बैठ करके ये बात करते थे। तो उससे भी लगता था कि इतने बड़े यज्ञ को संभालने वाली, इतनी व्यस्त लाइफ में रहने वाली हमारी दादियां, ये अपने लिए पुरुषार्थ के लिए समय निकालती हैं, तो हमें भी समय निकाल करके जो भी समय है उसको इन बातों में सफल करना चाहिए।
3: जब आपकी भी इस ऑर्गेनाइजेशन में इतने साल के सफर हुई हैं, जब भी एडमिनिस्ट्रेशन की बातें आती है, कारोबार की बातें आती हैं, कितना भी कुछ भी होने दो, जैसे आपने कहा कि दादियों का स्पिरिचुअल स्टडी के ऊपर, सेल्फ प्रोग्रेस के ऊपर बहुत अटेंशन रहता है, तो क्या ये सेल्फ अटेंशन और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के ऊपर जो अटेंशन है वो इस कारोबार को करने में समय, मतलब कम समय में ज्यादा काम कर सकते हैं या फिर एफिशिएंसी बढ़ जाता है, क्या होता है जो इतना सरल तरीके से वो पूरी संस्था को चलाते हैं लेकिन उनको देखते हुए कभी लगता नहीं कि वो संस्था को चला रहे हैं, एक योगी की तरह ही वो हमेशा सभी को नजर रहते हैं।
2: उसका ये जो इन्हों का पुरुषार्थ था, उसका प्रभाव ये इनके एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर में बड़ा अच्छा दिखाई देता था। पहली बात तो कोई भी परिस्थितियां या बातें आती थी तो ये बड़े लाइट रहते थे। लाइट रहना ये एक पावर की बात है, शक्ति थी। उस परिस्थिति को, बात को समझ लेना अलग बात है, लेकिन लाइटली उसको सुनना, देखना और चलाना, पहली क्वालिटी इनके अंदर ये थी कि ये लाइटनेस थी।

0: आपके व्यवहार में उन चीजों का असर नहीं रहता है, लेकिन एक निस्वार्थ प्यार देते हैं, वो कैसे संभव हो सकता है?
1: इसमें हमने इस बात को महसूस किया कि योग की एक शक्ति जो न्यारापन, बात की नेगेटिविटी में नहीं जाना, उसको पॉजिटिविटी में लेना। जैसे एक बारी दादी के पास में बैठी हुई थी, किसी बहन ने आकर के दादी को काफी कुछ बोला, तो दादी बड़े प्यार से बैठी हुई सुन रही थी। उसके बाद जब उसका बोलना पूरा हुआ तो दादी ने कहा कि लाओ सेव, और उसको दिया और वो चली गई। मुझे संकल्प चल रहा था तो मैंने दादी को कहा कि दादी ये आपके लिए ऐसा बोल करके गई, तो दादी बोली मैंने तो सुना ही नहीं, मैं तो बाबा के पास बैठी थी कि बाबा ये आत्मा खुश हो करके जाए, शांत हो करके जाए। उसने जो सुना, उसने बोला वो बाबा ने सुना होगा, बाबा ने उसको दिया, माना न्यारापन। तो भावना ही नहीं बदलती थी, जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बहुत जरूरी चीज है। और ये भी मैंने देखा, दूसरे दिन दादी उस आत्मा के साथ इतना ही प्यार से मिलती थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं, सेकंड में उसको भूल जाते थे। तो ये कला इन दादियों में थी, इसके कारण से एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा चला और हमने भी दादियों से उन चीजों को सीखा, जिसके कारण से सफलता मिली।
0: दूसरा, हम जब दादियों को देखते हैं, किसी भी प्रांतीयता की उनकी चेहरे पर झलक नहीं रहती है। अब पूरे भारत में हम देखते हैं लोगों की शक्ल, व्यवहार, बातचीत, और उन चीजों से आप बोल सकते हैं कि ये इस स्टेट से या इस जगह से या इस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। तो वो आध्यात्मिक शक्ति या फिर वो पढ़ाई, कौन सी धारणा है वो, उनको इतनी न्यूट्रलाइज्ड, क्योंकि पूरी देश विदेश में, पूरे संसार में दादियां ट्रैवल किए हैं, रतन मोहिनी दादी है। सो कैसे हर एक आत्मा वो आकर्षित करते हैं और उनको देख करके कभी एक हद की भावना की महसूस नहीं होती है कि या ये भारत से है या फिर ये अलग जगह से है या हमारी कम्युनिटी की नहीं है।
1: दादियों को शुरू से बाबा ने एक अभ्यास कराया, जो रतन मोहिनी दादी अपने अनुभव में भी सुनाती थी कि बाबा ने हमारे अंदर संस्कार डाला, तुम विश्व कल्याणकारी आत्मा हो, विश्व सेवाधारी हो। तो स्टेट नहीं आया, कोई देश नहीं आया, मैं सारे विश्व की सेवा करने वाली आत्मा हूँ, और सारा विश्व जो है वो हमारा परिवार है। लोग उसको वसुधैव कुटुंबकम बोलते हैं, पर कुटुंब की भावना नहीं है। यहाँ बाबा ने इन्हों के अंदर में वो भावना कि ये सब बाबा के बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, और सारे विश्व की आत्माओं का हमें कल्याण करता है, ये इन्होंने पुरुषार्थ से अपनी नेचुरल वृत्ति बना दी थी। और वो वृत्ति बनने के कारण से कभी भी ये इस स्टेट का है, ये उसका है, उस दृष्टि से देखा ही नहीं, क्योंकि वृत्ति परिवर्तन हो गया तो ऑटोमेटिक दृष्टि बदल गई। और जब दृष्टि बदलती है तो वो श्रेष्ठ भावनाएं उन आत्माओं को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती। ऐसा पुरुषार्थ जो इनका प्रैक्टिकल शुरू में बाबा ने कराया, आज तो ये सब एंजल के स्टेज में है, आज इनको पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है, नेचुरल वो ऑरा है, वो वाइब्रेशंस हैं। इस एज के अंदर में भी जब आज भी दादी रतन मोहिनी को मिलते हैं तो उनका वो चमकता हुआ चेहरे का जो तेज है, पवित्रता जो उनके ललाट पर दिखाई देती है, उसके आगे हर एक नतमस्तक होता है।
0: दादी की जो 100 ईयर्स का जो फिजिकल एज है, इसका क्या राज है कि एक व्यक्ति 100 साल जिए और वो भी इतनी एक्टिव, हेल्दी? और कभी हमने दादी को सुना ही नहीं है कि दादी हॉस्पिटलाइज्ड है, उम्र के हिसाब से उनका थोड़ा ट्रीटमेंट चल रहा है ऐसा। हाँ, केयर तो करते हैं, बट ऐसा नहीं कि दादी बीमार है या फिर उम्र के हिसाब से कुछ हेल्थ इश्यूज है ऐसा।
1: दादी के दोनों पहलू शुरू से बहुत अच्छे रहे, जो मैंने पहले भी कहा। एक तो दादी का फिजिकल हेल्थ के ऊपर पहले से अटेंशन था, तो उसको उन्होंने एक्यूरेट रखा। दूसरा, भोजन पर भी दादी का बड़ा ध्यान था, उतना ही खाना है जो आवश्यक है, और उस आवश्यक को जो तबीयत के अनुरूप है, तो उनकी हेल्थ अच्छी रही। और दूसरा साइड था उनका दयालु स्वभाव, प्रेमान, तो वो प्रेम और दया के कारण से जब दूसरों की सेवा की तो उनकी दुआएं, देश विदेश की आत्माओं की दुआएं उनके खजाने में जमा है। और सबसे बड़ी बात, हजारों टीचर्स को जिन्होंने तैयार किया है, जो इस किशोर अवस्था में कुमारियां थी, उनको ये प्रेरणा दे करके, न केवल प्रेरणा दे करके, एक शिल्पी को एक मूर्ति बनाने में कितनी मेहनत लगती है जो स्थूल है, लेकिन आज दादी रतन मोहिनी ने हजारों टीचर्स को

0: एक एक को रत्नों से श्रृंगारा है। तो ये जो था उनका अपना व्यक्तित्व था, उसमें वो एक रूहानियत थी, जिसके कारण से बहनों को दादी जो कहती थी, दादी जो सिखाती थी, उसको उन्होंने सीखा। तो एक उनका फिजिकल साइड बहुत अच्छा था, दूसरा उनका ये जो साइड था जिसमें उन्होंने इतने हैंड्स को तैयार किया है, उन सब की दिल की दुआएं दादी के पास जमा हैं। तीसरा, जो भी क्लास के या आने वाले स्टूडेंट्स भाई बहने थे, उनके लिए भी दादी का विशेष प्यार रहा। मैंने जहां तक अनुभव किया है, दादी ने कभी ऐसे नहीं कहा कि मैं बिजी हूँ, दादी मुझे आपसे मिलना है, हाँ हाँ तुम आना मैं आपको मिलूंगी, दादी उस भाई को बुलाना है, कभी दादी ने ऐसा एक लिमिट रखी होगी तब आना अब आना। हमेशा दादी का दरवाजा खुला था और बड़े दिल से उस बात को सुनती थी, तो अपनापन महसूस होता था। तो ये भी कारण था कि हम सब दादी के बड़े नजदीक थे, और उन दुआओं से भी, वो भी प्यार भी है, दुआएं भी हैं, जिसके कारण आज दादी 100 ईयर में है, लेकिन स्वस्थ है, मस्त है और योगी है। तो दुआओं का खजाना भी दादी के पास में बहुत है। और कभी दादी ने स्थूल फैसिलिटीज को नहीं पसंद किया,
1: साधनों को
0: नहीं,
1: आधार नहीं बनाया,
0: उसको आधार नहीं बनाया। शुरू से ही दादी साधना में रही, उस साधना से साधन मिले, लेकिन साधनों के आधार पर दादी नहीं चली। गर्मी है तो भी दादी क्लास करा रही है, भाषण कर रही है, छोटे गांव में जाना है तो भी दादी ने जाकर के सेवाएं की हैं। अपने को नहीं देखा, सेवा को देखा, साधनों को नहीं देखा, साधना को देखा। ये दादी की एक पर्सनालिटी थी, मुझे ऐसा चाहिए तब मैं ऐसा कर सकती हूँ, वो कभी दादी का नहीं था। हर परिस्थिति में अपने आप को एडजस्ट किया है, एडजस्टेबल नेचर तो दादी का बहुत था, परिस्थितियों के साथ भी और आत्माओं के साथ में भी हमने देखा।
1: अच्छा, साथ में जो लोग रहते थे
0: उनके, बड़ी दादियों के साथ रहना तो हमेशा उनको आगे करना, भले सेवा आप ज्यादा करते थे लेकिन उनके लिए रिस्पेक्ट और वो भावना, बहुत अपने को एडजस्ट किया।
1: सो इन वन वर्ड अगर रत्नमयी दादी को कहना है तो आप क्या शब्द देना चाहेंगे दादी के लिए?
0: दादी जी एक गहन विचारक, कुशल वक्ता, पवित्रता और शांति का जो उच्च उद्देश्य है उसका एक प्रैक्टिकल जीता जागता ज्वलंत उदाहरण है। इस एज में भी एक्टिव, अलर्ट, एक्यूरेट, वो हम आज भी उनसे उस चीज को महसूस करते हैं। और जो पवित्रता के प्रकंपन है वो भी दादी का ऑरा महसूस करते हैं। परसों ही जब दादी क्लास में आई, यहाँ भट्टी चल रही थी, दादी के आने के बाद एकदम क्लास का माहौल बदल गया, वो वाइब्रेशंस, तो वो आज भी उनसे हम महसूस करते हैं। दूसरा, दादी को मैं हमेशा इस रीति से भी देखती हूँ, क्योंकि मैंने ये जो सीक्रेट की अव्यक्त बाप दादा को जब दादी मिल रहे थे और बाबा कमरे में आए हुए थे, बाबा उनके साथ में ज्ञान की बड़ी गहरी रूहानियत कर रहे थे, तब बाबा ने दादी को ये कहा था कि आप अष्ट में आने वाली आत्मा हो, और उस समय मैं छोटी थी लेकिन आज भी वो मेरे मस्तिष्क पर इसी रीति से छपा हुआ है, और मेरा दादी के प्रति वही दृष्टिकोण है कि ये अष्ट और अनेक आत्माओं की इष्ट आत्मा है, इसके कारण से इनका ये ऑरा, ये वाइब्रेशन है। ऐसी आत्मा को मैं दिल से अभी भी नतमस्तक हो करके खूब खूब शुभकामनाएं हैं। हमारी दादी हमारे साथ में रहे, जब तक यज्ञ चलता है तब तक ये रतन, जो अनमोल रतन है, वो रत्नों के जैसे अपनी चमक फैला करके हम सब उनकी छत्र छाया में आगे बढ़ते रहे।
2: दादी जी ने समाज कल्याणकारी कार्यक्रमों में विशेष भूमिका निभाई। व्यसनों से मुक्ति के लिए युवाओं को प्रेरित किया, नशा मुक्ति कार्यक्रमों को बड़े ही उमंग उत्साह से चलाया। दादी जी किसी भी ब्रह्मावत्स से बड़े ही आत्मीयता से मिलते और उन्हें ज्ञान रत्नों की धारणाओं को लेकर विशेष शिक्षाएं देती। दादियों को देखकर कभी नहीं लगता कि दादियां अलग किसी प्रांत से जुड़ी हैं, सभी एक समान ही दिखाई पड़ती, जिन्होंने बाबा की एक सी मर्यादाओं को जीवन में धारण किया। यही कारण रहा है कि सभी में एक समानता दिखाई दे। दादी जी की पवित्रता का तेज उनकी मस्तक पर दिखाई पड़ता है। परिस्थितियों और आत्माओं के साथ खुद को समायोजित करने की दादी जी की अनोखी विशेषता थी। मधुबन मौन है, लेकिन सब कुछ जानता है।

नमस्कार, मैं हूं अनूप जलोटा और आप मुझे इस वक्त सुन रहे हैं रेडियो मधुबन में। भक्ति भजन आप सुनते हैं, उसका आनंद लेते हैं। एक भजन जो मैं बहुत प्रेम से गाता हूं, उसकी एक लाइन आपको सुनाता हूं। मैया मोरी मैं नहीं मां खायो, ये भजन मुझे बहुत प्रिय है, आप भी सुनिए। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: ओम शांति एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। हैप्पीनेस इंडेक्स को जब देखते हैं आप समझ में आ रहा है कि वो कैसे ऊपर नीचे हो रहा था। ये भी समझ लिया हमने कि टेक्निक क्या है, कैसे उसे स्टेबल रख पाएंगे। बिलीफ सिस्टम्स को बदलने की बात थी, वो भी बहुत कुछ समझा। आगे और बढ़ाते हैं अपनी बात को। और जब हम बात कर रहे थे कि ट्रैफिक कंट्रोल हर एक घंटे बाद कुछ देर अपने अंदर जो बच्चा है जो इधर उधर कहीं भाग जाता है उसे पूछें वो ठीक है, उसे कोई परेशानी तो नहीं हुई या उसका जो हैप्पीनेस इंडेक्स है वो बरकरार है। तो आज बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: आपका हैप्पीनेस इंडेक्स तो हर बार ही स्टेबल होता है, बट बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं। आपसे शुरू करते हैं, कभी आपके साथ भी ऊपर नीचे होता
1: है? ऑफ कोर्स, एवरी डे आई थिंक कुछ ना कुछ बातें तो आती हैं जैसे, लेकिन अब क्या है सिर्फ ईजियर है, पहले मुश्किल था। एंड दैट्स द जर्नी कि वो डे बाय डे ईजियर होता जाएगा। अवेयरनेस ऐसी चीज नहीं आज सोचा
0: कल
1: आज हो गया, बिकॉज वट एवर वी आर डिस्कसिंग हियर ये डीप चीज़ें हैं और हमारे बहुत डीप रूटेड संस्कार हैं जिनको हम ऊपर ऊपर से नहीं ठीक कर सकते। कई बार ऐसा लगता ठीक हो गया, यू नो यू से ओके ये प्रॉब्लम थी मेरे सोचने के तरीके में, मैंने एक दूसरी थॉट क्रिएट की ठीक हो गया, लेकिन आफ्टर सम टाइम यू रियलाइज इट हैज़ क्रीप्ड अप अगेन, ये कहाँ से ये वैसे वाली थॉट्स फिर से आ रही है। इट्स जस्ट दैट नाउ फोकस इज वेरी क्लियर, उसमें कन्फ्यूजन कभी नहीं होता कि दूसरा ठीक होगा तब मेरा मूड ठीक हो जाएगा। आई एम नॉट वेटिंग फॉर दैट, मुझे ये पता है कि ये मैं खुद क्रिएट कर रही हूँ और जितना जल्दी डिसाइड करूँगी तो उतना जल्दी उसको ठीक कर लूंगी। सो आई ऑलवेज जस्ट हैव टू स्टॉप एंड टेल माई सेल्फ कब तक का प्रोग्राम है इस हालत में रहने का। थिंक अबाउट इट, कितनी देर तुम्हें इस तरह से कन्फ्यूजन में, दर्द में, हर्ट में रहना। And then, you know, that question itself says, okay, okay, fine, I know I was going on the wrong track. And you stop and you say, ध्यान रखना शुरू कर दो। जैसे हमने पहले भी देखा कि let go करना है, जो पकड़ा हुआ है उनको जल्दी जल्दी छोड़ते जाओ। जितना देर पकड़ के रखते हैं उतना फिर छोड़ना मुश्किल होता है। इसी तरह एक और चीज़ का जो हम ध्यान रख सकते हैं, and that is let be. Let people be the way they are. अगर आप एक दिन चेक करो या एक घंटा भी चेक करो, हमारा माइंड बहुत ज़्यादा औरों के जीवन में इंटरफेयर करता है। मतलब कोई इसके पास कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन मन को एक आदत पड़ी हुई है औरों के जीवन के बारे में सोचने की। तो लेट एवरीवन, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं, लेट देम बी एंड यू नो स्टॉप इंटरफियरिंग इन पीपल्स लाइव्स। उन्होंने मांगा नहीं है हमसे हमारा ओपिनियन, और ये ओपिनियन ज़रूरी नहीं हम शब्दों में दे रहे होते हैं, हम अंदर ही चल रहे होते हैं। राइट फ्रॉम अ पर्सन, यू नो यू सी अ पर्सन एंटरिंग, हम उनकी लुक्स पर क्रिटिकल हो रहे हैं, हम उनकी ड्रेसिंग सेंस पर क्रिटिकल हो रहे हैं,
0: उनके बिहेवियर पर, यू नो लाइक कैसे वो बात कर रहे हैं, हर चीज पे हम जो है वो
1: कॉन्स्टेंटली। तो क्या होता, एक एक मोमेंट, जैसे हमने देखा इट्स वन मोमेंट, माई लाइफ इज अ सीरीज ऑफ मिनट्स, एक एक मिनट ऐसे पास हो रहा है। अब जितने मोमेंट्स हम औरों के बारे में सोच रहे हैं उतनी देर हम अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं, और हम फिर उनके बारे में सोच रहे हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। एंड वेन एवर वी थिंक और डू समथिंग विच इज़ नॉट इन माई कंट्रोल, वो मेरी एनर्जी को वेस्ट करता है। लेट्स से कि मेरे हाथ में एक बहुत बड़ा ब्रिक है, अभी मेरे में उतनी ताकत नहीं है उसको तोड़ने की, लेकिन मैं उसको तोड़ने की कोशिश करूँ तो वो टूटेगा नहीं। आधा घंटा एक घंटा ट्राई किया, लेकिन आफ्टर दैट हाउ विल आई फील, मेरे को बहुत थका हुआ फील होगा। क्यों? क्योंकि मैंने एनर्जी बहुत लगाई वो काम करने में जो कि मेरे से हो नहीं सकता। तो दिस वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि ये एक एक थॉट हमारी एनर्जी कंज्यूम करता है, वेस्टेज ऑफ एनर्जी। तो इसके लिए हम हमेशा यही याद रखते कि सारा दिन ड्रामा चल रहा है, हर एक एक्टर अपना अपना रोल प्ले कर रहा है। लेट्स नॉट राइट अदर पीपल स्क्रिप्ट। ये जो हम स्क्रिप्ट सारा दिन औरों की लिख रहे हैं, इन्होंने ऐसा क्यों बोला, इनको ऐसा थोड़ी बोलना चाहिए था, ये भी कोई बात करने का तरीका है, थोड़ा सा तो पोलाइटली बोलते, ये नहीं है, ह्यूमिलिटी नहीं है इनके अंदर। वी आर राइटिंग देयर स्क्रिप्ट, दे आर फाइन द वे दे आर, लेकिन हम उनकी स्क्रिप्ट लिखते लिखते हम ये सोचना भूल जाते मुझे क्या बोलना चाहिए था। अब ये लगता है कि बहुत छोटी सी बात है, लेकिन अगर आप हर एक सीन में देखेंगे, इवन अ सिंपल थिंग लाइक सपोज बोथ ऑफ अस हैव अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, हम किसी बात पर डिस्कस कर रहे हैं, डिस्कशन बढ़ते बढ़ते एक आर्ग्यूमेंट बनती जा रही है, लेकिन डिस्कस करते करते मेरा ज़्यादा ध्यान किस पर होता है कि आप क्या बोल रहे हो, आपको क्या बोलना चाहिए था, आपको क्या नहीं बोलना चाहिए था, आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या गलत है। तो इट्स जस्ट लाइक अ ड्रामा। आज अगर हम थिएटर देखने जाए तो ड्रामा स्मूथली परफॉर्म तब होगा अगर हर एक एक्टर
0: अपने पे काम कर
1: रहा है, अपने पर काम कर रहा है। एक बार हम एक थिएटर परफॉर्मेंस देख रहे थे इन विच इट वॉज अ मोनो एक्टिंग, यू नो, एक ही था एक्टर एंड दैट वन एक्टर वॉज प्लेइंग लॉट ऑफ रोल्स। इट वॉज अ वेरी वेरी पावरफुल परफॉर्मेंस, उनके बहुत डायलॉग्स थे उनको जो बोलना था, एंड उन्होंने वो प्ले मतलब अनगिनत बार वो कर चुके थे। इट वॉज अ वेरी वेरी पॉपुलर परफॉर्मेंस, वर्ल्ड वाइड ट्रैवल। अब इस चीज़ में अगर आप देखें तो उस एक्टर को वो डायलॉग्स तो बाय हार्ट याद होंगे, मतलब बिना एफर्ट के भी वो बोल सकते हैं। और उस दिन क्या हुआ, जैसे ही वो परफॉर्म कर रहे थे तो इन द मिडल ऑफ द प्ले किसी का मोबाइल बज गया, यू नो, एंड दैट एक्टर वेंट ब्लैंक। ही जस्ट स्टूड, ही जस्ट डिडंट नो कि मुझे नेक्स्ट क्या बोलना है। और उनको ऐसा दो मिनट लगा, उन्होंने फिर जैसे यू नो ही जस्ट स्टूड स्टिल साइलेंट। टू मिनट्स के बाद ही सेड सॉरी एंड देन ही सेड आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कीप योर मोबाइल्स ऑन साइलेंट एंड देन ही स्टार्टेड हिज परफॉर्मेंस। तो वो देखते हुए जस्ट द थॉट व्हिच केम टू मी इज कि एक्टर अपने रोल पर और अपने डायलॉग्स पर इतना कॉन्सेंट्रेटेड है फुल्ली कि एक छोटी सी डिस्ट्रैक्शन भी और वो अपने रोल और अपना डायलॉग भूल गया। हम सारा दिन अपने जीवन कैसे जी रहे हैं, हम तो अपने माइंड को हर तरफ डिस्ट्रैक्टेड होने दे रहे हैं, हमें अपना रोल और अपना डायलॉग
0: पता ही नहीं है ना,
1: से ध्यान में रहने वाला
0: है, अवेयर ही नहीं है बिल्कुल भी, यू नो,
1: कैसे ध्यान में रहेगा। एंड देन हाउ विल वी गिव आवर बेस्ट परफॉर्मेंस टू एवरी रोल दैट वी आर प्लेइंग, बिकॉज हम तो अपने रोल में है ही नहीं। सी इफ आई एम हियर, लेकिन मैं अपने बजाय औरों के रोल्स और औरों के डायलॉग्स के बारे में सोच रही हूँ, आई एम नॉट देयर इन माई रोल, हाउ विल माई लाइफ बी। एंड फिर सब कुछ करते हुए भी हम कह रहे हैं वो अनुभव नहीं हो रहा, वो जीवन में जो सक्सेस चाहिए वो कैसे सक्सेस होगी। आज एक एक्टर को क्यों अच्छा लगता है परफॉर्मेंस के बाद, क्योंकि वो अपने रोल में अच्छी तरह से इन्वॉल्व था। हम किसी भी थिएटर एक्टर को जाकर पूछ सकते हैं अगर 2 आवर्स के प्ले में वो सिर्फ औरों के रोल के बारे में सोच रहे थे, हाउ डिड यू एंजॉय योर परफॉर्मेंस टुडे?
0: नहीं होता, कभी भी नहीं होता।
1: यू आर अ थिएटर एक्टर, तो आप एक दिन वो करके देखो, एक तो आप बीच में ही अटक जाओगे आई थिंक इन द मिडल,
0: जैसे हम दूसरे को करेक्ट करने लगते हैं ना, खुद का अपना जो कॉन्सेंट्रेशन है ओ यस
1: खत्म हो जाएगा।
0: थिएटर में भी हर परफॉर्मेंस से पहले 5 मिनट का साइलेंस रखते हैं, 5 मिनट का साइलेंस रखते, उसके बाद यू नो 1 आवर बिफोर द शो, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, वी जस्ट गो इनटू साइलेंस, हम उसके बाद बात नहीं करते, एक पूरा मेडिटेट करने के बाद 5 मिनट तक अपने साथ, देन एक्टर रिमेंस with oneself.
1: तो अब जो वो जो सी आई डिडंट नो दिस, बट अगर वो 5 मिनट का साइलेंस करते हैं वो क्या प्रयास कर रहे हैं कि सारी डिस्ट्रैक्शन से एक्सटर्नल भी इंटरनल भी हर तरफ से हटकर अब आ जाओ सिर्फ और सिर्फ अपने रोल के ऊपर, क्योंकि ओनली देन यू विल बी एबल टू गिव योर बेस्ट परफॉर्मेंस। एंड हम अपनी पूरी परफॉर्मेंस अपना पूरा प्ले कर रहे हैं विदाउट बींग इन द सीन, एंड तब हमें अपने इस प्ले में उतना मजा नहीं आ रहा है जितना मजा आना चाहिए, क्योंकि हम तो अपना रोल प्ले ही नहीं कर रहे, वी आर कॉन्स्टेंटली प्लेइंग समबडी एल्सेस रोल, एंड कहीं ना कहीं शायद हमने अपना रोल ही ये बना लिया है कि औरों के रोल के अंदर
0: हमने अपनी अपनी बात डालनी है।
1: अब ये जो हम औरों की स्क्रिप्ट सारा दिन लिखने की कोशिश करते रहते, इसके पीछे कौन सा बिलीफ सिस्टम होगा? व्हाट वुड बी द बिलीफ सिस्टम?
0: ही इज रॉन्ग, द अदर पर्सन डजंट नो, आई नो बेटर,
1: सो वन I can control the other person. ये एक deep belief.
0: Because I'm trying to change, you know, I'm trying to do things better for him.
1: तो लेकिन ये तो मेरा belief है ना कि आप मेरे control में हो, मैं अगर आपको बोलूंगी
0: तो आप करोगे.
1: आप करोगे. So this is a very very deep belief कि लोग मेरे control में हैं.
0: करें, करना चाहिए उन्हें.
1: लेकिन जब हम बोल रहे हैं, अब उनको जब हम you know रोक रहे हैं, टोक रहे हैं, या उनके प्रति judgmental हो रहे हैं, thought तो यही है ना कि ये सारी दुनिया
0: मेरे कंट्रोल में
1: है, और ये सारी दुनिया मेरे चाहने के अनुसार चलनी चाहिए। दिस इज अ वेरी डीप बिलीफ सिस्टम, द वर्ल्ड शुड गो अकॉर्डिंग टू माई लाइक्स, माई डिजायर्स, माई एक्सपेक्टेशंस, एंड ऑल्सो सेकेंड बिलीफ सिस्टम, माई हैप्पीनेस इज डिपेंडेंट ऑन देयर बिहेविंग द वे आई वॉन्ट देम टू बिहेव। तो इसलिए अपनी ही खुशी के लिए ही, सारा कुछ खुशी के लिए है, अपनी खुशी के लिए औरों को कंट्रोल करने की कोशिश करते रहते और उस प्रोसेस में अंदर ही अंदर और दर्द क्रिएट करते जाते। सो एक दिन के लिए ट्राई कर सकते हैं जस्ट राइटिंग।
0: किसी कॉर्पोरेट बॉस के बारे में बात नहीं कर रहे थे, हम आम अपनी जीती हुई, चाहे आप माँ हैं चाहे आप सबॉर्डिनेट भी हैं, you know?
1: जैसे माँ आपने कहा, एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में ये कंट्रोल का फीलिंग बहुत ज़्यादा आता है। इवन एक पेरेंट को किस कॉन्शियसनेस से अपने बच्चों को बड़ा करना चाहिए कि ये आत्माएं हैं जो मेरे घर में आए हैं, मेरा रोल है एक तो इनको फिजिकल प्रोटेक्शन देना, इंटेलेक्चुअल जो भी इनकी ग्रोथ कराना, बाकी मेरा रोल है इनको वो एक एनवायरनमेंट देना, इनको वो पालना देना, एंड देन लेट देम टेक देयर लाइफ द वे दे वांट, नॉट लेट देम डू एंड बिकम व्हाट आई वांट। यू नो लॉट ऑफ अस आर ट्राइंग टू मेक आवर चिल्ड्रन what we want. It's not, yes, we are there to guide, but then we are there to guide.
0: तो कितनी बार तो कहते हैं कि अगर तुमने मेरा ही सपना पूरा नहीं किया तो फिर मैं ये सब कुछ क्यों कर रहा हूँ? Again, we need to check actually.
1: इसको चेक करने की चीज है कि उस आत्मा की अपनी जर्नी है, अपने यू नो लाइक्स डिसलाइक्स डिजायर्स जो भी सारा कुछ है, अपनी क्रिएटिविटी है। हम सोच रहे हैं वो हमारे थॉट पैटर्न से अगर अपना रोल प्ले करे तो उसकी अपनी क्रिएटिविटी दब जाएगी, एंड दैट सोल विल नॉट बी एबल टू डू जस्टिस, क्योंकि वो अपने थॉट से भी नहीं चल रहा और मेरे थॉट से तो वो कर ही नहीं सकता। सो इवन एज अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप हमें एक गाइड की तरह बनना चाहिए ना, एक फैसिलिटेटर की तरह, जो हमेशा है, ऑलवेज अवेलेबल, बट टू हेल्प मी, टू गाइड मी, नॉट टू कंट्रोल में। तो उससे वो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बहुत हेल्दी हो जाएगा। लेकिन हम ट्राई करते हैं कि हम हमेशा उनको रोकते हैं हर चीज़ पे ताकि उनकी लाइफ हमेशा स्मूथ चले। हम कितना भी ट्राई करें, उनके अप्स एंड डाउन्स तो आने ही वाले हैं, बट अगर हम उनको गाइड करते हैं, स्ट्रोंग बनाते, तो वो अपने अप्स एंड डाउन्स को तो
0: हैंडल कर,
1: खुद ही फेस कर लेंगे। वी आर थिंकिंग कि हम बच्चों को इतना राइट राइट राइट दिशा पर ले जाएं कि इनके जीवन में कभी कुछ प्रॉब्लम ही ना आए। दैट्स नॉट द वे टू लुक एट इट। इट हैज़ टू बी हम उनको इतना स्ट्रॉन्ग बना दें ताकि जो भी प्रॉब्लम आएगी, जो भी चैलेंज आएगा, दे विल बी एबल टू जस्ट क्रॉस इट, एंड दैट विल ओनली हैपन इफ आई फैसिलिटेट। यू नो एक मेंटर जैसे होता है, एक गाइड जैसे होता है, नॉट अ कंट्रोलर। तो हम पेरेंट्स कंट्रोलिंग वाली जो एटीट्यूड लेकर चलते, उससे हम उसकी क्रिएटिविटी को दबा देते हैं। तो एक दिन ट्राई करेंगे स्क्रिप्ट नहीं लिखने के लिए औरों की,
0: और इसके लिए खुद अवेयर होना पड़ेगा। सी अब जब हमने अपने ऊपर बात करनी शुरू की है, अपने हर सोच को देखना शुरू किया है, तब रियलाइज

0: क्वेश्चन ये हो रहा है कि हम कर क्या रहे हैं. आई थिंक समवेयर हमें ये फीलिंग कि मेरा कंट्रोल है दूसरे के ऊपर.
1: हाँ, सी दैट फीलिंग कि मेरा, अगर हमें किसी को भी बताना भी है, इट शुड बी लाइक दिस इज माय ओपिनियन, यू नो, यू कैन टेक इट इफ यू आर कंफर्टेबल विद इट, इंस्टेड ऑफ सेइंग यू हैव टू डू इट दिस वे एंड देन एक्सपेक्टिंग कि वो करेंगे ही वैसा एंड देन गेटिंग एंग्री जब वो नहीं कर पाते हैं उस तरह से. तो उससे फिर क्या हो जाता है, उनको राइट और रॉन्ग सिखाने के प्रोसेस में हम जब हर्ट हो जाते तो हमारा रोल क्या हो गया. मैंने तो अपने
0: रोल पे तो काम किया ही नहीं,
1: अपना रोल. अगर मुझे आज आपको देखकर गुस्सा आ गया क्योंकि आपने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी, लेट्स से यू हैव कमिटेड अ क्राइम एंड मुझे गुस्सा आ गया, तो आपने तो जो भी गलत किया सो किया, वो आपके रोल का. मैंने जो गुस्सा किया, मैंने जो हर्ट क्रिएट किया, तो मेरा रोल भी तो खराब हो गया ना. तो पहले मेरे अपने रोल पर मुझे ध्यान देना, देन आई कैन प्रोबेबली शेयर विद यू और गाइड यू. बट आपके रॉन्ग को क्रिटिसाइज करने के लिए मैंने अपने भी रोल को खराब कर दिया, तो हर एक एक्टर का रोल
0: खराब होता गया ना फिर. हाँ, तभी तो ड्रामा खराब होने लग गया. अच्छा खासा जो है प्ले चल रहा है, उसको अगर हम एक मिनट में खराब
1: एक नॉर्मल प्ले में भी अगर देखते हैं थिएटर पे, लेट्स से हम अभी उस प्ले में हैं एंड मुझे अपनी लाइंस भूल गई, तो जो बाकी एक्टर्स हैं स्टेज पर उनका क्या रोल होता है.
0: वो कभी भी पता नहीं चलने देते किसी को भी कि ऐसा हुआ, इतना फटाफट डिजाइन कर लिया जाता है.
1: लेकिन वो क्या करते हैं, वो अपने ही रोल पर और अच्छी तरह से कॉन्सेंट्रेट करते ताकि उनके रोल और उनके डायलॉग से मुझे वो क्यों मिल जाएगा कि where was I making a mistake. They don't stop and tell me the lines. They don't spoil the harmony of the drama, you see. तो similarly, अगर कोई मेरे आसपास कुछ गलत कर रहा है, गलत डायलॉग बोल रहा है, according to me, गलत डायलॉग, गलत लाइन, सब कुछ, I can just take care more on my role, you know. और भी ज़्यादा ध्यान रखे कि I'll not get hurt, I'll remain stable. तो that might give the cue to the other person.
0: कि ओहो मैं भटक गया था, मेरी लाइन तो ये थी.
1: Yes. लेकिन जहाँ वो भी लाइन्स अपनी खराब कर दी, मैंने भी अपनी लाइन्स खराब कर दी एंड देन ग्रेजुअली हम दोनों ने अपनी लाइन्स को, डायलॉग को पूरी तरह से इतना मेस्ड अप कर दिया, देन दैट सीन बिकम्स वेरी वेरी अनप्लेजेंट एंड फिर वो ड्रामा हमें पसंद नहीं आता. फिर हम कहते हैं ये जीवन ऐसा क्यों है. तो ये वाली एक पॉइंट कि लेट एवरी वन बी, ये हमें यहाँ सफाई रखने में बहुत मदद करेगी क्योंकि हम बहुत एनर्जी, और देखो ना हम कितने लोगों की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, एक दो की लिख रहे हों, चार की लिख रहे हों तो भी ठीक है, हम सारा दिन में कितने एक्टर्स की स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश करते.
0: उसे ऐसा कहना चाहिए था. हाउ मेनी टाइम्स वी से दैट ही शुड हैव सेड दिस.
1: Yeah, is this the way to speak? This is this
0: he
1: what
0: should
1: he should
0: have done this.
1: Should have, you know, should have. Isn't that, we don't even say he could have said this. No, he should have said this. Means
0: this, this is what, you know, this is how the world should be.
1: Yeah, why? Because this is the way I would like the world to be. तो इसको एक होमवर्क के रूप से देखें कि आज एक दिन ट्राई करें. How do you feel जब आप औरों की स्क्रिप्ट में इंटरफेयर न करके
0: लोगों को कंट्रोल एक्चुअली करना बंद कर दें, इवैल्यूएट करना बंद कर दें. अमेजिंग, यू नो हाउ वी डू.
1: और ये जितना इजी लग रहा है उतना इजी नहीं है. इसका हमें बहुत, जैसे आपने आज शुरू में भी कहा ना कि आपका ऊपर नीचे होता है कि नहीं, आई हैव सीन सबसे ज्यादा कारण ऊपर नीचे होने का यही एक होता, जैसे ही मेरा फोकस जाता है इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इनको ऐसा नहीं, देयर इट्स गॉन. दैट स्टेबिलिटी है. मॉर्निंग में उठे, मेडिटेशन किया, इट्स वेरी नाइस, यू आर एब्सोल्युटली लाइक दिस एंड देन द माइंड गोज इनटू इनको क्या बोलना चाहिए था, इनको क्या करना चाहिए था एंड देयर यू गो. अगर आप वो एक चीज पर वर्क कर लो, आपका माइंड ऐसे रहेगा. देयर इज नथिंग एल्स आउट देयर इन द वर्ल्ड जिससे कोई भी डिस्टर्बेंस होने वाली है. ये हम जब हो जाते हैं, सो राइट नाउ I am constantly trying to look in this and I can just say it's easy but requires lot of attention. Kyunki ye bahut jaldi slip off ho jata hai. Ye aisa sanskar hai ki, you know, we try to remind ourselves and then before we are aware, 10 minute baad I suddenly see, oh, my mind is again thinking about someone else and again we kisi ke baare mein judgment pass kar raha hai. What a waste of energy. Come back. Lekin wo karte karte I can see कि वो परसेंटेज कम होती जा रही है, कम होती जा रही है. एटलीस्ट मेरी लिस्ट कम होती जा रही है कितने लोगों के बारे में आई एम थिंकिंग एंड नाउ दैट लिस्ट इज कमिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर एंड वी नीड टू फिनिश इट. क्योंकि कोई भी नहीं है जो मेरे कंट्रोल में है. पहले तो क्या हो रहा था, गाड़ी चलाते हुए भी हर एक ड्राइवर के ऊपर भी कमेंट पास हो रहा था, कैसे चला रहे हैं, लाइन में नहीं खड़े, टोल पर खड़े हैं, गलत साइड से ओवरटेक कर रहे हैं. जस्ट थिंकिंग अबाउट एवरीवन, उन्होंने तो फिर भी ओवरटेक करना है, लाइन को तोड़ देते हैं, टैग की लाइन में कैश भर, ओ देयर इज सो मच टू गेट डिस्टर्ब्ड अबाउट, यू नो, इफ यू अलाउ योरसेल्फ टू गेट सक्ड आउट. There is just too much happening.
0: I think for some time, you know, for some time we need to really focus on ourselves actually, and we should become little selfish.
1: No, very selfish.
0: I keep on saying this because I understand, you know, हम जैसा आपने कहा बाहर continuous observe करते रहते हैं और वो हम observe और हम कहते हैं हम तो neutral observer हैं, लेकिन हम कितनी सारी चीजें उन पर
1: neutral होंगे तो यहाँ disturbance नहीं होगा ना. अगर आप detached होकर देखो, अभी भी if I'm standing in the traffic jam, I can see people where they are making their mistakes, they are overtaking wrong, but
0: it's not
1: does
0: affecting
1: it
0: you.
1: Create anything here? अभी भी दिख तो रहा ना, आंखें कान बंद थोड़ी है कुछ भी, लेकिन यहाँ कुछ नहीं होना चाहिए. ओके, दिस बिकम्स एक्सेप्टेंस, कि एक्सेप्ट करें कि हर एक अपना अपना रोल अपने अपने अनुसार प्ले कर रहा है, एंड दे हैव द राइट टू डू इट, एवरीवन. मेरे अंदर बहुत कुछ है अभी, विच पीपल मस्ट बी सिटिंग एंड थिंकिंग दैट आई एम रॉन्ग, बट आई एम फीलिंग दैट व्हाटएवर आई एम डूइंग इज राइट. तो इसी तरह सामने वाला भी जो कुछ भी कर रहा होगा, इवन अगर वो रॉन्ग साइड से ओवरटेक कर रहा है, लाइन तोड़ रहा है, उसके पास उस टाइम कुछ ना कुछ लॉजिक होगा उसके लिए. और जैसे ही हम ये लेट बी करना शुरू करते, एक्सेप्ट करते हैं सिचुएशन को, लोगों को, कि हर एक अपने अनुसार अपना अपना रोल प्ले कर रहा है, एंड एवरीबडी इज एक्यूरेट इन द रोल दे आर प्लेइंग. यस, इफ समबडी आस्क्स मी फॉर हेल्प, इफ समबडी वॉन्ट्स मी टू गेट इन्वॉल्व इन देयर ड्रामा, you know, किसी का अपना कोई ड्रामा है, and someone says, you know, please get involved, ताकि आप हमें हमारे ड्रामा में कुछ हेल्प करो, लेकिन उसमें भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा,
0: हम न्यूट्रल होके बात करें,
1: लेकिन नॉट उसके अंदर हम इतना घुस जाएं कि उस सीन की, उन एक्टर्स की जो इमोशन है
0: वो हमें हम करने लगे, लेकिन वो एक्चुअली होता बहुत कम हो पाता है,
1: क्योंकि क्या होगा, जैसे आपने कहा, अगर If your role, see, यही पेरेंट के रोल है, यही बॉस का रोल है, ये टीचर का रोल है, क्योंकि हमारा रोल है किसी तरह तब कि हम औरों के ड्रामा में थोड़ा सा इन्वॉल्व्ड हैं, क्योंकि हम गाइड हैं, हम फैसिलिटेटर हैं. लेकिन वो रोल कहाँ थोड़ा सा डिस्टर्ब होता, जब वो दूसरे एक्टर की इमोशन हमारे ऊपर ओवरपावर कर जाती. बच्चा दर्द में है, मेरा रोल है उसके साथ बैठना, टू फाइंड आउट व्हाट हैज गॉन रॉन्ग एंड टू शेयर विद हिम व्हाट इज द राइट वे, एंड वो कैसे ठीक कर सकता है, कहाँ वो गलत जा रहा है, एवरीथिंग आई हैव टू डू. लेकिन अगर मैंने सेम दर्द क्रिएट कर लिया जो बच्चा है, या शायद मैं बच्चे से भी ज्यादा दर्द में एज अ मदर मैं चली गई, देन समवेयर आई विल नॉट बी एबल टू प्ले माय रोल प्रॉपरली. क्योंकि जब एक बार यहाँ दर्द क्रिएट हो जाता तो वो क्लैरिटी ही खत्म हो जाती कि ये क्यों, क्या, कैसे इसको ठीक करना. इट गोस अवे.
0: लेकिन कई बार हम ये सोचते हैं कि जब हम रोल प्ले की बात करते हैं, लगता है कि बड़ा मैकेनिकल हो गया, यू नो, समवेयर डीप विद इन, बिकॉज वी एंजॉयड इट सो मच, और लाइक वी थिंक अगेन, ये बिलीफ सिस्टम है कि यही, ऐसे ही तो जीना है, ऐसे ही मुझे रोल प्ले भी करना है अपना.
1: रोल प्ले करना है, ये मैकेनिकल होने के बजाय क्रिएटिव हो जाता है. मैकेनिकल तो अभी तक चल रहे थे,
0: ऑटोमेटेड मोड.
1: हाँ, और मैकेनिकल क्या होता है, जहाँ चॉइस नहीं है कि बच्चा दर्द में है तो मैकेनिकल है कि पेरेंट ने दर्द में जाना ही है. मैकेनिकल मीन्स ऑटोमेटिक, बटन दबाया और हो गया, उसने गुस्सा किया तो मेरा बटन यहाँ दबा, मुझे उदास होना ही है. दिस वॉज ऑल मैकेनिकल, बट नाउ इट्स बिकम क्रिएटिव, कि मेरे पास चॉइस है. वो हर्ट है, मैं स्टेबल भी रह सकती, मैं न्यूट्रल रह सकती, मैं और भी ज़्यादा पॉजिटिव होकर कुछ और क्रिएटिव सोच सकती. लेकिन पहले तो कोई ऑप्शन ही नहीं था मेरे पास, देर वॉज जस्ट वन चॉइस. एंड तब हम कहते थे अटैचमेंट है तो हर्ट के साथ हर्ट होना नेचुरल है. ये नेचुरल था, एंड वी टुक इट एज अ साइन ऑफ लव, कि अगर वो दर्द में है और मुझे भी दर्द हो रहा है, इट इज अ साइन दैट हम बहुत एक दूसरे से, यू नो, बहुत प्यार करते हैं.
0: बिकॉज़ समवेयर वी वर एक्चुअली टेकिंग लव एज अटैचमेंट ना,
1: एंड वी इवन से टू ईच अदर, आई कैन फील योर पेन. पेरेंट चाइल्ड के साथ है, बच्चे से कोई गलती हो गई, पेरेंट हर्ट हो गया, कहीं उसकी पेरेंटिंग स्किल पर यू नो क्वेश्चन मार्क उठ गया, तो वो अपने कॉम्प्लेक्सेस में इतना चले जाते हम कि हम बस चाहते हैं कि बच्चा किसी भी तरह ठीक हो जाए. बस वो जो मेरे ऊपर स्टिग्मा लगा है, दुनिया के सामने नहीं, मेरे लिए अपने लिए, कि मेरी पेरेंटिंग पे जो स्टिग्मा लगा है वो ठीक हो जाना चाहिए, इसलिए हम उसको कहते हैं तुम ठीक हो जाओ. यू नो वी डोंट रियलाइज दिस, बट ये इसलिए है तुम ठीक हो जाओ. वी नॉट रेडी टू गिव इट टाइम टू अंडरस्टैंड वो क्यों ऐसा कर रहा है, उसके पीछे क्या कॉम्प्लेक्स है, क्या दर्द है, क्या सेल्फ एस्टीम हर्ट हुई, कुछ नहीं. तुम ठीक हो जाओ, बस तुम ठीक हो जाओ. क्यों? क्योंकि जब तुम ठीक हो जाओगे
0: तो मैं फिर रीअश्योरेंस हो जाएगी कि
1: मैं ठीक हो जाऊंगा. सो यू नो देन आई एम नॉट प्लेइंग दैट पेरेंट रोल इन द वेरी राइट वे. और जैसे ही हम ये करना शुरू करेंगे, अपना ध्यान रखना शुरू करेंगे, यहाँ बहुत ज़्यादा क्लटर नहीं होगा, तो हमारा माइंड ऑटोमेटिकली साइलेंट होता जाएगा. सारे आंसर्स, सारे सोल्यूशंस यहाँ पर है, जिसको हम कहते हैं इंट्यूशन, कि एक ट्यूटर है जो अंदर बैठा है, लेकिन अंदर की आवाज़ सुनने के लिए ये नॉइज़ को ख़त्म करना पड़ेगा. अभी क्या हो रहा है, इतनी नॉइज़ है, वो अंदर से आवाज़ देता भी है लेकिन तो हमें आवाज़ सुनने,
0: इतनी सारी आवाज़ों में फिर वो कन्फ्यूजन, ये आवाज़ ठीक है, वो आवाज़ ठीक थी.
1: आप देखो कितनी बार जैसे जैसे हम इस जर्नी पर हैं तो अंदर से आवाज़ आती है. हमें कहते हैं मुझे अंदर से आवाज़ आई थी कि ये ठीक नहीं है, लेकिन मैंने उस आवाज़ को क्या किया,
0: अनसुना.
1: मैंने अनसुना किया. क्यों अनसुना किया? क्योंकि कहीं मैंने सोचा कि अगर मैं उस आवाज़ की बात मानती हूँ तो मैं वो करने से अपने आप को रोक दूंगी जिस पर मेरी खुशी डिपेंडेंट है. लेट्स से फॉर एग्जांपल आई एम एक्सपेरिमेंटिंग विद ड्रग्स और विद स्मोकिंग, और आई डोंट वांट, आई शुडन्ट बी वॉचिंग 3 hours ऑफ टेलीविजन, आई डोंट हैव टाइम, बट आई एम स्टिल वॉचिंग. तो अंदर से ये छोटी छोटी बातें, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वेरी बिग वंस, कि छोटी सी आवाज़ अंदर से आएगी, मत देखो या ये मत लो, ये तुम्हारे लिए अभी इट्स नॉट गुड, लेकिन आई से गो अवे, मुझे खुशी चाहिए. यू नो, तो मैं उस आवाज को इसलिए इग्नोर कर देती हूँ
0: कि मुझे वो चाहिए,
1: कहीं वो आवाज मुझे मेरी खुशी से ही दूर लेके जा रही है, विदाउट रियलाइजिंग वो आवाज ही मुझे मेरी खुशी तक लेके जाने वाली है, मेरी आवाज.
0: वंस माय डॉटर आल्सो टोल्ड मी कि शी सेज मेरे को पता चल रहा है कि मैं टीवी देख के टाइम वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज कम एंड स्कोल्ड मी मॉम. आई सेड you know the realization is so much.
1: Yes, it is, but I'm not listening to myself, so I need someone else to come and say it to me. To kya hota hai jab usko bar bar daba diya jata to bhi andar hi wo dab jati hai, and then when it will come out wo ek emotional outburst ke roop mein aayegi. Hamari conscience jisko hum kehte, that keeps giving me the signals, and it always gives me the
0: right signal.
1: Always. Now it's just up to me to take that signal. Ignore करते गए, it's like हमें एक बहुत अच्छा टीचर मिला है जो हमेशा हमें अच्छा सिखा रहा है, लेकिन मैं उस टीचर की आवाज़ को, उसकी विजडम को, क्योंकि सारी विजडम भरी हुई है मेरे जीवन में, मेरे लिए क्या सही है,
0: no, मेरे पास है,
1: मेरे पास आंसर है. I never need to go and ask anyone else. लेकिन
0: और आजकल हम हर चीज, हर छोटा डिसीजन भी, ऑफिस का डिसीजन भी, घर का डिसीजन भी 10 लोगों से पूछ के कर रहे होते हैं,
1: बिकॉज वी नॉट लिसनिंग. सो वो ट्यूटर अंदर बैठा है, उसकी बात को सुने, और जितना सुनते जाएंगे, यू नो ये टीचर ऐसा है कि हम उसकी बात को जितना सुनते जाएंगे ये हमें विजडम और भी देता जाएगा,
0: क्लैरिटी और.
1: यू नो सपोज आप मुझे कोई अच्छी बात बता रहे हो, मैं सुनती ही नहीं, फिर आपने दूसरी बार बताया, मैं सुनती नहीं, 4 बार बताओगे,
0: नहीं बताते, फिर
1: पांचवी बार आप मुझे बोलना ही बंद करोगे, तो मैंने ही अपने अंदर जो थी एक इतनी अच्छी चीज उसको मैंने दबा दिया. और अगर मैं बार बार आपकी बात सुनने लग जाऊं तो आप सोचोगे चलो मेरे कहने के अनुसार से ये कर रहे हैं, तो आप और बताना शुरू करोगे और बताओगे. इमेजिन माई लाइफ विल बिकम वेरी वेरी सिंपल एंड वेरी वेरी ब्यूटिफुल.
0: बहुत सुंदर. तो आज जो हम इस प्रोसेस पे हैं कि हमें करना क्या है, जिन बिलीफ सिस्टम्स को पकड़ कर हम अभी तक बैठे थे उन्हें छोड़ने के लिए हमें सबसे पहले तो लोगों को छोड़ना पड़ेगा, लोगों की स्क्रिप्ट छोड़नी पड़ेगी कि लेट बी, एक तो लेट गो, जो जैसा है उसे वैसा रहने दें, उसके ऊपर चिंतन मत करते रहें कि उस वो ऐसा कर ले, वो ऐसा कर दे, मेरा टीचर ऐसे कर ले, मेरा हस्बैंड ऐसे कर ले. समवेयर वी नीड टू लेट बी, वो जो जैसे हैं. और दूसरी बात कि जहाँ हमने अपने आप को साइलेंट करके उस आवाज़ को सुनना शुरू कर दिया, चाहे इम्प्लीमेंट अभी भी ना करें, यू नो चाहे, मैं तो कहती हूँ चाहे इम्प्लीमेंट ना करो, सुन के उसको रजिस्टर तो कर ले, एट टाइम
1: दबा ना दे उसको,
0: यू नो उसको रजिस्टर करना शुरू कर दे, यस दिस इज व्हाट आई शुड बी डूइंग बट राइट नाउ आई डोंट फील लाइक डूइंग, इट्स ओके, बट नेक्स्ट टाइम आई विल लिसन टू यू, यू नो. तो यहाँ ये प्रोसेस अगर शुरू हो जाता है, उसमें जैसे हमने कहा कि हर एक घंटे के बाद 1 मिनट का साइलेंस ये बात की याद दिलाएगा, मेरी आवाज़ मुझे अपने साथ सुनाता जाएगा। तो ये छोटे छोटे जो प्रैक्टिस हैं वो हमें करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि फिर हम चाहेंगे कि आपका जो अनुभव है वो आप हमारे साथ शेयर करें। तो कोई बात मन में आ रही है, कोई सवाल है अभी भी है, या इस प्रैक्टिस के दौरान आपको कोई ऑब्स्टिकल है, आप हमें संपर्क कर सकते हैं या तो फ़ोन पर या फिर ईमेल पर। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 0124-266-7000, 9999-344-555, 9999-344-666, 9873-666-555। हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org। तो सर शिवानी, आज की जो पूरी बातचीत रही, बहुत क्लैरिटी से ये समझ में आ गया कि करना क्या है। आप कितना करेंगे यह हमारे पर निर्भर करता है, लेकिन ये डेफिनेट है कि हम करेंगे ज़रूर, क्योंकि हमें अच्छा लग रहा है सब कुछ करना। थैंक यू सो मच ओम शांति। और अब आपसे भी विदा लेते हैं, लेकिन इसी बात के साथ कि ये जो हमें समझ में आ रही है बात, लगता है कि पॉसिबल है, तो लेट्स ट्राई इट आउट ना। पहले भी तो हम इसे इन्हीं बातों को इम्प्लीमेंट करते आ रहे थे, बदला जीवन आगे और भी बदलेगा, हैप्पीनेस हमारी अपनी प्रॉपर्टी हो जाएगी। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं, ओम शांति।

नमस्कार, गुड मॉर्निंग। नई किरण इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज है शुक्रवार और शुक्रवार की विशेषता हम आपको बताना चाहेंगे कि हिंदू परंपरा में शुक्रवार को माता लक्ष्मी शुक्र ग्रह का दिन भी माना जाता है और इस दिन धन, सुख, समृद्धि, सौंदर्य और वैवाहिक सुख की कामना से पूजा और व्रत किए जाते हैं। जी हाँ, शुक्रवार के लिए हर एक जो महिला है, खास करके माताएं हैं, वो देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। माता लक्ष्मी की पूजा का ये शुक्रवार का दिन है। कई लोग इस शुक्रवार को व्रत भी रखते हैं और घर में सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना भी करते हैं। वैसे ही साथ में शुक्र ग्रह को कला, सौंदर्य, प्रेम, ऐश्वर्य और भौतिक सुखों का कारक माना जाता है। इस दिन घर की साफ सफाई, दीप प्रज्वलन और लक्ष्मी स्त्रोत, लक्ष्मी चालीसा का पाठ भी शुभ माना जाता है और कुछ जगह माता संतोषी की पूजा और व्रत को भी किया जाता है। तो हम यही चाहते हैं कि हमारे रेडियो मधुबन को जो सुनने वाले हमारे श्रोतागण हैं, सभी पर माता लक्ष्मी की, माता संतोषी की कृपा बरसे रहे, उनके घर में सुख और शांति से संपन्न रहे। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि जीवन जीने की कला क्या होती है। जी हाँ, जीवन तो सभी जी रहे हैं, लेकिन जीवन जीने की कला अगर हर एक को आ जाए तो जीवन में बहुत आसानी से हम जी सकते हैं। जी हाँ, जानवर, पशु, पंछी भी जीवन जीते हैं और मनुष्य भी जीवन जीते हैं। उनमें और हमने फर्क क्या है? हमें, हमारे पास विवेक शक्ति है, हम जो चाहे वो कर सकते हैं, हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो हमें जीवन कैसे जीना है? परमात्मा ने इतना अच्छा हमें मौका दिया है, तो हम जीवन कैसे जी सकते हैं? तो जीवन हमें प्रकृति का सबसे बड़ा ये अनमोल उपहार मिला है। हर व्यक्ति तो जीता है, लेकिन सही ढंग से जीवन जीना ये भी एक कला है। जिस प्रकार एक कलाकार अपनी कला को अभ्यास और समर्पण से निखारता है, उसी प्रकार से जीवन को समझदारी, धैर्य और सकारात्मक सोच से सुंदर बनाया भी जा सकता है। जीवन जीने की कला का पहला सूत्र हम ये बताएंगे कि स्वयं को पहले पहचानो कि मैं कौन हूँ। अपनी क्षमता को पहचानो कि मैं क्या कर सकता हूँ। दूसरा, पहचानो कि मेरे अंदर क्या क्या कमजोरियाँ है, मैं उसे कैसे निकालूंगा। फिर देखना है कि हमारी इच्छा क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, मुझे क्या करना है और क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूँ। मैं जो कार्य कर रहा हूँ, मैं सही दिशा में कर रहा हूँ। तो इस प्रकार को अगर स्वयं के लिए समय निकाल के लिए चिंतन करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीवन जीने की जो दिशा है एकदम बराबर सही दिशा में चले जाएंगे। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ना कुछ गुण होते हैं, विशेषताएं होती है। हमारे अंदर क्या गुण है, विशेषता है, उसको विकसित करने का देखें तो क्या हो जाएगा, विकसित करेंगे तो जीवन जीने का तरीका बहुत अच्छी तरह से आएगा। साथ ही साथ हम जीवन जीने की कला का दूसरा महत्वपूर्ण सूत्र बताएंगे कि सकारात्मक सोच। जी हाँ, जीवन में सुख दुख, सफलता असफलता दोनों आते हैं। ऐसे नहीं कि सदा सफलता सफलता हो। जीवन में आज दुनिया के अंदर जितने भी बड़े बड़े लोग हो गए, ऐसे नहीं वो सदा सफल सफल सफल सफल ही रहे। किसी के भी लाइफ में देखो कि चाहे कोई भी हो, फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन भी हो, उसको पहले भी बोला था ये लंबू क्या एक्टिंग करेगा, उसको भी फिल्म इंडस्ट्री ने नकारा था। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज नंबर वन पे है, लेकिन उसे सबसे पहले अपयश का स्वीकार करना पड़ा। तो इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी सुख दुख असफलता सफलता सब आती है, लेकिन उसको हमें स्वीकार करना है। कई बार कठिन परिस्थितियों में भी हमें आशा रखनी पड़ता है, और जब आशा रखेंगे, सकारात्मक सोच रखेंगे, तो समस्या में भी क्या हो जाएंगे, हम निराश नहीं होंगे, हम आत्मविश्वास ही रहेंगे। हमारा आत्मविश्वास कभी भी कमजोर नहीं करना है। हम इसीलिए कोई भी परिस्थिति हो, कुछ भी हो, सकारात्मक सोच ही रखनी है। तीसरा महत्वपूर्ण पहलू है कि समय का सदुपयोग करो। जो हमें समय मिला है, सारे संसार को समय मिला है, रोज
सवेरा होता है, शाम ढलती है। दिन भर लोग अपने अपने काम करते हैं, कोई ऐसे ही गवा देते हैं, कोई पूरा सदुपयोग करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं ये हमें देखना है कि संसार की सबसे मूल्यवान संपत्ति यह समय है, जो एक बार चला जाए वो कभी वापस नहीं आता। इसीलिए समय का सही सही उपयोग करो। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, इसलिए हमें नियमित दिनचर्या को बनाना पड़ेगा। सवेरे क्या काम करना है, दोपहर को क्या करना है, लक्ष्य हमारा निर्धारित हो, हमें अपने को

0: शासन में डालना पड़ेगा कि 11 बजे क्या करना है, 12 बजे क्या करना है, शाम को क्या करना है। नहीं तो कहीं क्या हो जाता है, घर में अभी प्रिय कुछ काम धंधा नहीं है तो टीवी खोल के बैठते, मोबाइल खोल के बैठते, फिर घंटा कैसे चला जाता है उनको खुद को पता नहीं चलते। बोलते क्या करें, हमारे पास कुछ काम ही नहीं, लेकिन समय का उन्होंने कुछ सदुपयोग ही नहीं किया। तो ये बात है, समय का सही सही उपयोग करो। साथ ही साथ जीवन जीने की कला के लिए हम कहेंगे कि संबंधों को महत्व भी दो। हाँ जी नमस्कार।
1: हेलो जी नमस्कार बाबू जी, मैं मानपुर से भूरीलाल बोल रहा हूँ।
0: बोलिए जी भूरीलाल जी, कैसे हैं?
1: बहुत ही बढ़िया हूँ, आपका कार्यक्रम को सुन करके आनंद ले रहा हूँ।
0: जी जी जी जी।
1: तो मेरा भी एक गाना है सर।
0: बोलिए बोलिए।
1: वो भी हो जाएगा तो अच्छा रहेगा।
0: चलेगा चलेगा जरूर।
1: कागज हो तो बांस लो, कागज हो तो बांस लो, कर्म न बांस हो जाए,
0: कागज हो तो
1: सर यू भेजा बढ़िया रहेगा,
0: कागज हो तो बाज लो।
1: ठीक है जी,
0: कागज हो तो बाज लो।
1: हाँ कागज हो तो बाज लो।
0: हाँ हाँ हाँ।
1: कर्म ना बासी हो जाए
0: जी,
1: ये गाना है सर, ये हो जाएगा तो अच्छा रहेगा।
0: जी जी जरूर जरूर।
1: धन्यवाद। हम साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: जी जी जी जी जी जी जरूर जरूर, हम कोशिश करेंगे।
1: धन्यवाद।
0: ये आपको गाना सुनाने की हम कोशिश करते, कई बार क्या हो जाता है ऐसे ऐसे गाने मिलते नहीं कभी कभी, अगर मिलेंगे तो जरूर हम आपको सुनाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों हम बता रहे थे कि जीवन जीने की कला, किस प्रकार से हम जीवन जीने की कला को जी सकते हैं। और समय का हमने समय के बारे में कहा कि समय का सदुपयोग करो, तो उसके साथ साथ जीवन जीने की कला में आता है संबंधों का महत्व। परिवार मित्र समाज हमारे जीवन का आधार है, प्रेम सम्मान सहयोग और संवेदनशीलता रिश्ते मजबूत करती है। हम आपसी प्रेम बढ़ाएंगे, सम्मान देंगे, एक दो को सहयोग देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे संबंध मजबूत होंगे। एक मधुर व्यवहार कई समस्याओं का समाधान कर सकता है। दूसरों की भावनाओं को समझना और उसकी सहायता करना जीवन को अधिक सार्थक बनाता है। कई लोगों का स्वभाव थोड़ा कड़क रहता है, वो अपने को बहुत बड़े होशियार समझते, इतना कि जिससे भी आएंगे बात करेंगे जैसे कि बहुत बड़े वो कुछ व्यक्ति है, और किसी से प्यार से सम्मान से बात ही नहीं करते तो क्या हो जाता है, इससे लोग दूर भागते हैं। उससे बोलते ये तो अपने को बड़ा होशियार समझता है, तो इससे संबंध मधुर नहीं होते। इसीलिए परिवार में या आपसी मित्र संबंधी में, ऑफिस में, जहाँ पर भी हमारे संबंध मधुर हो न कि कड़क हो। इसके साथ स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। जीवन जीने की कला में हमारा शरीर स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि शरीर ठीक रहेगा तो सब कुछ ठीक है, अगर शरीर बीमार है तो हम आनंद कैसा लेंगे। इसलिए नियमित व्यायाम करें, संतुलित आहार लें, पर्याप्त नींद लें, तो ये अगर हम शरीर को स्वस्थ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, जीवन का आनंद भी हम अच्छी तरह से ले सकेंगे। और ये बात भी हम आपको बताना चाहेंगे कि असफलता से कभी भी घबराना नहीं, जीवन जीते समय सदा ही तुम्हें सफलताएं मिलती रहे ऐसा कभी होगा नहीं, असफलता आएगी। जैसे कि पहले भी कहा, इतिहास में ऐसे बहुत महान व्यक्ति है कि वो असफल हो गए लेकिन हिम्मत उन्होंने भी कभी हारी नहीं। साथ ही साथ सभी के प्रति हम कृतज्ञ संतोष व्यक्त करें। हमारे पास जो उपलब्ध साधन है, हमें जो अवसर मिलता है, हमें जो मौका मिलता है, उसके लिए भी हमें कृतज्ञ रहें। जी दोस्तों, जीवन जीने की कला किसी पुस्तक में बंद सिद्धांत नहीं, बल्कि ये हमारे दैनिक व्यवहार, सोच और कर्मों से दिखाई देती है। यदि हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक हो, सभी का सम्मान करें और निरंतर जीवन को सीखने का प्रयास करें, तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, जीवन जीने की कला को बहुत अच्छी तरह से अपना सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, वक्त हो गया अभी एक ब्रेक लेने का। तो फरमाइश थी, कागज होवे तो बाज लूँ, ये मारी भजन सुनाने सुनने की। तो चलिए दोस्तों, ये भजन भी हम आपको सुनाना चाहेंगे। आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
2: राजा भर्तृहरि ने पंडित जी महाराज बोले, माता

पंडित जी महाराज बोले कि 16 साल की उम्र में जो पूर्व दिशा में शिकार खेल में नजर है और घोड़ी पे सवार न हो सुपर घोड़ी पर तो जोगी न बने। राजा भर्तृहरि की माँ ये बात नहीं याद रहेगी कि 16 साल की उम्र में अपना बेटा ने शिकार खेल में नजर आ जाए।

16 साल की उम्र में ही शादी हुई राजा भर्तरी की। रानी पिंगला घर आई और उसी दिन आगे राजा शिकार खेलवा के लिए रवाना हो भला गया। राजा भर्तरी की महारानी पिंगला ने बोली कि बेटा थारा पति

बचपन की सुरक्षा है एक खास जिम्मेदारी, इस पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। आपातकालीन स्थिति के साथ उन्हें लंबे समय के पुनर्वास के लिए मदद भी करता है चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर। बच्चे या बड़े जो उनकी सहायता करना चाहते हैं डायल कर सकते हैं 1098 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए फिर से आपको हम बताना चाहेंगे कि आज के दिन किन किन लोगों का जन्मदिन है उसके बारे में। जी हाँ, आज जन्मदिन है योगी आदित्यनाथ जी का। उत्तर प्रदेश राज्य के नव निर्वाचित मुख्यमंत्री, उनका मूल नाम है अजय सिंह नेगी। क्या आप सभी को मालूम था कि योगी आदित्यनाथ का नाम क्या है? जी हाँ, उनका मूल नाम है अजय सिंह नेगी। उत्तर प्रदेश में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव 2017 में भारतीय जनता पार्टी की विजय के बाद उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। उनके साथ ही केशव प्रसाद मौर्य तथा दिनेश शर्मा को सूबे का उप मुख्यमंत्री बनाया गया। पूर्वांचल में गहरी पैठ रखने वाले योगी आदित्यनाथ अपनी हिंदुत्ववादी छवि के लिए खासकर विशेष तौर जाने जाते हैं। हिंदू युवा वाहिनी के संस्थापक आदित्यनाथ तमाम हिंदू संगठनों में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। 10 वर्षों से अधिक समय के तक वो भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े हुए थे। योगी

0: आदित्यनाथ 2014 के लोकसभा चुनाव पार्टी में गोरखपुर से सांसद भी चुने हुए थे और 98 से लगातार एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी कर रहे थे। आदित्यनाथ जी गोरक्षनाथ मंदिर के पूर्व महंत अवैद्यनाथ के उत्तराधिकारी भी हैं। अगर उनके बारे में, उनके जन्म के बारे में बताना चाहेंगे तो उनका जन्म 5 जून 1972 को गढ़वाल उत्तराखंड में हुआ था। उनका वास्तविक नाम अजय सिंह बिष्ट है। उन्होंने 22 वर्ष की अवस्था में ही गृह त्याग किया और संन्यास ग्रहण कर लिया। गोरक्षनाथ मंदिर के महंत अवैद्यनाथ के पुत्र योगी आदित्यनाथ 12वीं लोकसभा के सबसे युवा सांसद थे। उस समय उनकी उम्र महज 26 वर्ष थी। उन्होंने धर्मांतरण तथा गोवध रोकने की दिशा में सार्थक कार्य किए हैं। वे गोरखपुर से लगातार 5 सांसद हैं। आदित्यनाथ जी का भारतीय जनता पार्टी के साथ रिश्ता 1 से भी पुराना है। वे पूर्वी उत्तर प्रदेश के अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं। इससे पहले उनके पूर्वाधिकारी तथा गोरक्षनाथ मठ के पूर्व महंत अवैद्यनाथ भी भारतीय जनता पार्टी से 1991 से 1996 का लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। योगी आदित्यनाथ ने टिहरी के गजा के स्थानीय स्कूल में अपनी प्रारंभिक शिक्षा शुरू की। स्कूल और कॉलेज के प्रमाण पत्र में उनका नाम अजय सिंह नेगी है। उन्होंने 1987 में टिहरी के गजा स्कूल में 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। वर्ष 1989 में उन्होंने ऋषिकेश में भरत मंदिर इंटर कॉलेज से इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद 90 में अपने स्नातक की शिक्षा ग्रहण करते हुए ABVP अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से वो जुड़ गए और 92 में कोटद्वार के गढ़वाल विश्वविद्यालय से उन्होंने गणित में BSc की परीक्षा उत्तीर्ण की। योगी आदित्यनाथ वर्ष 93 में MSc की पढ़ाई के दौरान गुरु गोरक्षनाथ पर रिसर्च करने गोरखपुर आए। हाँ जी नमस्कार, ओम शांति।
1: ओम शांति, नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग। कैसे हो?
0: बस बढ़िया बढ़िया है। आप कैसे हैं?
1: तो बहुत अच्छा है सर।
0: जी जी,
1: और आप आ गए, बहुत अच्छा लगा।
0: जी जी,
1: कि आप आते हैं तो हमको भी खुशी रहती है आपसे बात करने की।
0: जी जी,
1: क्योंकि कभी कभी कोई नहीं होता तो बात किससे करे। लेकिन वही तो होते हैं ना, कोई आता है तो बात करने का एक अच्छा चांस भी मिल जाता है। हमारे कोई मेहमान आते हैं स्टूडियो में, से हमको भी खुशी रहती है कि हम सौभाग्य है कि हमारा भाग्य है कि हम जो कोई मेहमान आते हैं तो आपसे बात कर सकते हैं, मतलब मेहमान से भी बात आप करवा सकते हैं।
0: जी जी जी,
1: तो ये भी हमारे लिए खुशी की बात है। क्योंकि कहते हैं कि कोई मेहमान हमारे आते हैं, कोई दूर दराज से आते हैं, तो वहाँ की जो जानकारी, वहाँ का जो कोई अच्छा देखने लायक स्थल है, कोई मंदिर है, कोई वहाँ की जो खासियत है, वो हम जान पाते हैं इधर बैठे बैठे। तो हमारे और आपके वंदना जी से हर दम सुनते ही रहते हैं कि कहीं ना कहीं जाके खोज के अच्छी एक बातें सभी की बताते हैं।
0: जी जी जी,
1: और हम घर बैठे हम सभी यात्रा भी कर लेते हैं। जाने की जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि सभी बता देते हैं कि इधर वो मंदिर है, इधर ये मंदिर है, इधर आइए देखने लायक है, तो वहाँ झील है, वहाँ मंदिर है, वहाँ गुरुद्वार है, तो ये सब हम जानकारी यहाँ से बैठे बैठे ले सकते हैं।
0: जी जी जी जी,
1: तो इसीलिए तो हमारा रेडियो मतलब की खास खासियत है कि जिंदगी में बैठे बैठे सब कुछ यहाँ मिल ही जाता है। बहुत अच्छा लगा सर, शुभ करवाण है सबको, आज के दिन का शुभ प्रिया।
0: जी जी,
1: सब खुश रहे। अभी काला काला बादल आ गए हैं, अंधेरा सा छा गया है इधर हमारे यहाँ।
0: जी,
1: शायद बारिश हो ही जाए, आ ही जाए, कोई पता नहीं।
0: जी,
1: तो ऐसा मौसम हो गया है।
0: आएगा तो ठंड राहत तो मिलेगी, बहुत
1: थोड़ी गर्मी में से राहत आ जाए।
0: जी जी जी जी,
1: चलो शुक्रवार है तो हम संतोषी माँ तो हरदम याद करते रहते हैं, क्योंकि संतोषी माँ का जो सर्वार ऐसा होता है, पहले जमाने की मैं बताऊँ तो पहले जमाने में सर क्या था, हम छोटे छोटे थे तब जो हर घर महिलाएं संतोषी माँ का जी व्रत करती थी।
0: जी,
1: और व्रत करने के बाद गुड़ चढ़ा, सब बात में निकलते थे मोहल्ले में, तो ये गुड़ चने खाने का एक आनंद और था सर।
0: जी जी जी,
1: क्योंकि अभी तो गुड़ भी लोग खाते नहीं है, चने भी नहीं खाते।
0: बराबर,
1: इसीलिए देखो पहले गुड़ चना खाते थे तो तंदुरुस्त रहते थे, मजबूत रहते थे, क्योंकि गुड़ भी मजबूतदार है, चना भी मजबूतदार है।
0: जी जी,
1: लेकिन आजकल वो सब लुप्त हो गया है।
0: हमें भी याद आ रहा है बचपन में हमारे पास भी बस्ती में जहाँ रहते थे वहाँ पर भी व्रत रखते थे, तो वो प्रसाद बांटते थे, बहुत सारी माताएं बहुत सारी बहनें उपवास रखते थे।
1: यस यस,
0: और वहाँ का भाव भावना माहौल ही अलग था। लगभग 40 साल पहले की बात है, बहुत अच्छा वातावरण था।
1: हम भी छोटे छोटे थे, 10 साल 12 साल का था, तब की मैं बात कर रहा हूँ।
0: जी जी जी,
1: तो ये 20 के बाद 40-50 साल की बात है।
0: 40 साल पहले की बात बता रहा हूँ, बहुत अच्छा लगता था।
1: गुड़ चढ़ने के लिए हम लगड़ते चगड़ते थे कि भाई हमको नहीं दिया, हमको कम दिया, हमने छोटा उसको ज्यादा दिया, तो ये सभी बातें चलती थी बचपन में। वो भी एक खास थी
0: कि हम चढ़े
1: से आनंद लेते थे।
0: युग बदल रहा है तो सब कुछ बदल रहा है।
1: आज 32 जात के भोजन है फिर भी आनंद नहीं है सर। देखो पहले गुड़ चढ़े में आनंद था, आज 32 जात के भोजन हमारे सामने खड़े पड़े हैं, फिर भी हम खा नहीं पाते, खाते पाते लेकिन उसका स्वाद नहीं आता, क्योंकि हर घर टेंशन, हर मुसीबतें चलती रहती है माइंड में। बस ऐसा है, गाना सुना दीजिए संतोषी माँ का। मैं तो आरती उतारू जो संतोषी माता की, जय जय संतोषी माँ।
0: जरूर जरूर, हम कोशिश करेंगे।
1: नमस्ते सर, ओम शांति।
0: जरूर जरूर, ओम शांति, ओम शांति। तो चलिए दोस्तों, तुम बात कर रहे थे कि आज किन किन लोगों का जन्मदिन है उनके बारे में। तो आज योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन है, और योगी आदित्यनाथ जी के बारे में हमने बहुत सारी बातें बताई है। तो दोस्तों लेते एक छोटा सा ब्रेक, जैसे कि इन्होंने कहा था, एक गाना सुनाओ, मैं आरती उतारू रे संतोषी माता के। जी हाँ, ये पहले बचपन में हम बहुत गाना सुना करते थे, और उस समय का मज़ा ही अलग था। आप भी उस गीत का आनंद ले लो। आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन 107.8, सुनते रहो मस्करा।

0: तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए फिर से हम आपको बताना चाहेंगे कि आज किन किन लोगों का जन्मदिन है उनके बारे में। जी हाँ, हम बता रहे थे कि आज योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन है जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं। जी हाँ, उनके बारे में कहा जाए तो योगी आदित्यनाथ ने सन्यासियों के प्रचलित मिथक को तोड़ा। धर्मस्थल में बैठकर आराध्य की उपासना करने के स्थान पर आराध्य के द्वारा प्रतिस्थापित सत्य एवं उनकी संतानों के उत्थान हेतु एक योगी की भांति गांव गांव और गली गली भी निकल पड़े। सत्य के आग्रह पर देखते ही देखते शिव के उपासक की सेना चलती रही और शिव भक्तों की एक लंबी कतार उनके साथ जुड़ती चली गई। इस अभियान ने एक आंदोलन का स्वरूप ग्रहण किया और हिंदू पुनर्जागरण का इतिहास रचित हुआ। अपनी पीठ की परंपरा के अनुसार योगी आदित्यनाथ ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में व्यापक जन जागरण का अभियान चलाया। सहबोज के माध्यम से छुआछूत और अस्पृश्यता की भेदभावकारी रूढ़ियों पर जमकर प्रहार किया। व्रज हिंदू समाज को संगठित कर राष्ट्रवादी शक्ति के माध्यम से हजारों मतांतरित हिंदुओं की ससम्मान घर वापसी का भी कार्य किया। गोरक्षा के लिए आम जनमानस को जागरूक करने गौवंशों का संरक्षण एवं संवर्धन भी कराया। पूर्वी उत्तर प्रदेश के सक्रिय समाज विरोधी एवं राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने में उन्हें सफलता प्राप्त हुई। उनके हिंदू पुनर्जागरण अभियान से प्रभावित होकर गांव, देहात, शहर एवं अट्टालिकाओं में बैठी युवाओं ने इस अभियान में स्वयं को पूर्णतः समर्पित कर दिया। बहुआयामी प्रतिभा के धनी योगी जी धर्म के साथ साथ सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से राष्ट्र की सेवा में रत हो गए। गोरखनाथ मंदिर के पूर्व महंत वेदनाथ जी ने जब 1998 में राजनीति से संन्यास लिया तब उन्होंने योगी आदित्यनाथ को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। Hello. हाँ जी, नमस्कार।
1: नमस्कार,
0: बोलिए, कैसे हैं आप? बोलिए, आपको सभी सुन रहे हैं, कैसे हैं आप?
1: अच्छे हैं
0: जी, अच्छे हैं। आपका नाम बताइए और कहाँ से बात कर रहे हो बताइए, क्योंकि आप को सभी लोग रेडियो के माध्यम से सुन रहे हैं। जी जी, बोलिए।
1: हम तो भिंडवाड़ा से बोल रहे हैं।
0: भिंडवाड़ा से बोल रहे हैं, अच्छा, क्या नाम है आपका?
1: प्रीति।
0: जी, आवाज थोड़ा बड़ा।
1: प्रीति।
0: प्रीति जी, बहुत अच्छा, हिम्मत करिए, हिम्मत करेंगे तो आगे बढ़ सकते हैं। जी जी, देखो, आपको आपकी आवाज़ रेडियो से सारे लोग सुन रहे हैं। कभी भी शर्माना नहीं, कभी भी डरना नहीं कि मैं कैसे बात करूं, क्या करूं। आज आप हिम्मत करेंगे तो आप स्टेज पर भी आकर बड़े बड़े हजारों लोगों के साथ भाषण भी कर सकते। बोलिए, आप क्या करते हैं? जी जी, प्रीति जी बोलिए, आप क्या करते हैं? स्कूल जाते हैं? हाँ, कौन सी कक्षा में है?
1: आठवीं में।
0: जी, आठवीं में, बढ़िया बढ़िया, ऐसी हिम्मत करते रहिए और बात करते रहिए। चलियो, आपने रेडियो मधुबन को फोन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमेशा आप कुछ ना कुछ सोच समझ के कुछ क्या बोलना है, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, या आप कुछ गीत भी रेडियो के माध्यम से लोगों को सुना सकते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। तो चलिए दोस्तों, हम बात कर रहे थे गोरक्षनाथ जी के। हेलो जी, नमस्कार। हेलो,
1: हेलो,
0: हाँ नमस्कार।
1: नमस्कार,
0: बोलिए बोलिए, आपको कुछ कहना है? हाँ, गाइए, बिंदास गाइए, आपके लिए प्लेटफॉर्म मिल गया है, आप गा सकते हैं, लेकिन आवाज थोड़ा बड़ा हो। आवाज आपका कम आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, बच्चे आखिर बच्चे होते हैं, उनमें थोड़ी हिम्मत कम हो जाती है, तो इसीलिए थोड़ा शर्माते भी है और कैसे बात करें ऐसे ही चकते रहते हैं। तो हम आगे बढ़ते हुए आपको फिर से गीत सुनाना चाहेंगे। आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: हमारी मन की क्वालिटी कैसे है, और अक्सर करके डॉक्टर्स कहते हैं मोर देन 85% डिजीजेस है वो साइकोसोमैटिक है, मन से आरंभ होता है। और अक्सर करके जो तनाव भी होता है इट इज देयर इन द माइंड। और अक्सर करके देखते हैं कि पेरेंट्स को अपने बच्चों के प्रति इतनी शुभ भावना होती है कि जब बच्चों का एग्जाम्स होता ना तो उस समय मम्मी डैडी का प्यार बच्चों के प्रति कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है। और एग्जाम के दिन में मम्मी डैडी आकर कहेंगे बच्चा आज तेरा एग्जाम है तो है ना हॉर्लिक्स भी पी, बॉर्नविटा भी खा, ये भी कर वो भी कर, है ना, उसको बहुत जबरदस्ती खिलाएंगे। शरीर को तो हमने बहुत भोजन दिया, जरूरत है उसको मन को अच्छा भोजन देने के लिए। और मन का भोजन क्या है? विचार। मन का भोजन है विचार, बहुत पुराने विचार, बासी विचार। अगर उसको बार बार हम अपने मन में लेकर आएंगे तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे मन जो है वो कमजोर हो जाता है, धीरे धीरे द माइंड विल ऑल्सो बिकम वीक। तो फ्रेंड्स इस बात को चेक करना है कि सारे दिन में हमने अपने मन में जो विचार आ रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है। देखिए सोचने की बात है, आज हर एक व्यक्ति के पास मोबाइल है और हम बहुत ध्यान रखते हैं कि मोबाइल को चार्ज करना है। और जिस दिन रात को सोए और मोबाइल चार्ज करना भूल गए तो रात के 2 बजे उठेंगे और उसको चार्ज करेंगे, क्योंकि हमको ये बात महसूस होती है कि अगर हमने मोबाइल को चार्ज नहीं किया तो शायद दूसरे दिन हमारा कम्युनिकेशन नहीं हो सकेगा। उसी तरह हमें अपने मन को भी अच्छे विचार से सुबह सुबह चार्ज करना बहुत

0: ಜಾಗೃತಿ ಶರ್ಮಾ.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन के दौरे पर रहेंगे. लगभग 21,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ. प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप के प्रतिभागियों से आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत बनने का आह्वान किया. रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा. लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में निधन. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को विश्वसनीय साझेदार बताया. कहा, अमेरिका का दबाव भारत रूस संबंधों को प्रभावित नहीं करेगा. और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से. अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे. श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे. दोपहर में श्री मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे. आज शाम प्रधानमंत्री का दमन दौरा भी होगा. प्रधानमंत्री वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे. एक रिपोर्ट.
2: क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को बड़ी गति देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के महत्वपूर्ण पैकेज राष्ट्र को समर्पित करेंगे. वे राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के महत्वपूर्ण खंडों को 4-लेन बनाने की भी आधारशिला रखेंगे, जिससे आदिवासी क्षेत्रों और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुँच में सुधार होगा. जनकल्याण के तहत प्रधानमंत्री सूरत में 24 घंटे आपातकालीन और ट्रॉमा केयर सुविधाओं से लैस एक आधुनिक 200 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे. इसके अलावा गुजरात में ट्रांसमिशन नेटवर्क विस्तार, दहेज पीसीपीआईआर और सरिगाम जीआईडीसी में उन्नत अपशिष्ट निपटान प्रणाली और वलसाड में आधुनिक बिजली वितरण उन्नयन सहित कई महत्वपूर्ण औद्योगिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी आज शुभारंभ किया जाएगा. अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है. अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरुआत की है. 4 से 8 जून तक आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं. श्री मोदी ने कहा कि योग स्वस्थ रहने के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण है.
3: मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं. आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर्स बन सकते हैं. आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है.
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये चैंपियनशिप आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले विश्व स्तर पर योग के संदेश को पहुंचाने का अवसर है.
3: 21 जून को वर्ल्ड योगा डे भी मनाया जाएगा. उस दिन दुनिया के अलग अलग देशों में योग से जुड़े आयोजन होंगे और इसका प्रमुख कार्यक्रम भारत के एक और ऐतिहासिक शहर कोलकाता में होगा. वर्ल्ड योगा डे से पहले वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप अपने आप में हेल्थ और वेलनेस की डबल डोज लेकर आ गई है.
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं. ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं. समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है. रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा. बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे मुंबई में मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे. 6 सदस्यीय समिति ने बुधवार को 3 दिवसीय विचार विमर्श शुरू किया था. हमारे संवाददाता ने बताया है कि अप्रैल में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी प्रमुख नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया था.
0: खुदरा मुद्रा स्फीति पर आधारित महंगाई सूचकांक 4% तक सीमित रखने का लक्ष्य भारत सरकार ने रिजर्व बैंक को दिया है। असाधारण परिस्थितियों में यह सूचकांक 2-6% के दायरे में रखने की भी छूट है। सोने एवं चांदी के आभूषण तथा खानपान सामानों की कीमतें बढ़ने के कारण अप्रैल में यह सूचकांक 3.48 पर था, जो कि दिए गए दायरे के अंदर है। इसी कारण विश्लेषकों का मानना है कि रिजर्व बैंक इस बार भी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। पश्चिम एशिया में उत्पन्न संकट का महंगाई तथा आर्थिक वृद्धि पर होने वाला परिणाम देखते हुए रिजर्व बैंक सतर्क दृष्टिकोण अपनाएगा, ऐसा भी कहा जा रहा है। कुछ दिन पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सीएस शेट्टी ने भी कहा था कि रिजर्व बैंक ब्याज दरों में बदलाव नहीं करता है तो आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया को स्थिर रखने में मदद मिलेगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से जीवन भावसा।
1: मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। श्री कपूर का विस्तारित कार्यकाल 10 जून से 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारत को रूस के साथ सहयोग कम करने के लिए मजबूर करने के पश्चिमी देशों के प्रयास व्यर्थ और वैश्विक स्थिरता के लिए हानिकारक हैं। प्रमुख वैश्विक समाचार एजेंसियों के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री पुतिन ने कहा कि अमरीका के साथ भारत की राजनयिक भागीदारी दोनों देशों के चिरस्थायी संबंधों पर कोई प्रभाव नहीं डालती। उन्होंने कहा कि रूस भारत को एक विश्वसनीय साझेदार मानता है। श्री पुतिन ने भारत के साथ रूस के रक्षा और सैन्य संबंधों की भी चर्चा की और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के सह विकास और सह उत्पादन के बारे में भी बताया। श्री पुतिन ने कहा कि रूस ने भारत को 5वीं पीढ़ी के SU-57 लड़ाकू विमान के निर्माण में संयुक्त रूप से काम करने का प्रस्ताव दिया है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खानाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खानाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। व्यापार समझौते पर चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत का अपना 4 दिन का दौरा पूरा किया है। एक रिपोर्ट।
4: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि इस दौरान वस्तुओं के व्यापार, गैर टैरिफ उपायों, सीमा शुल्क और व्यापार सुविधा, आर्थिक सुरक्षा संरक्षण और पारस्परिक हित के अन्य क्षेत्रों सहित कई मुद्दों पर रचनात्मक और सकारात्मक चर्चा की गई। मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने वाले पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत और अमरीका ने 7 फरवरी को जारी एक संयुक्त वक्तव्य में व्यापार से संबंधित एक अंतरिम समझौते पर सहमति व्यक्त की। यह भारत अमरीका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के प्रति दोनों देशों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून 1973 को हुई थी।
5: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। विभिन्न अभियानों, कार्यक्रमों और पहलों के माध्यम से लोगों और समुदायों को पर्यावरण की रक्षा के लिए आगे आने तथा बेहतर और टिकाऊ भविष्य के निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया जाता है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने देशवासियों से जलवायु और भविष्य के लिए प्रकृति से प्रेरणा लेते रहने का संकल्प दोहराने का आग्रह किया है। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 97 वर्ष के थे। उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकों के लेखन का काम पूरा किया। वे 1983 से 1990 तक लोकसभा के महासचिव रहे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के दूसरे स्तर संघ चालक माधव सदाशिवराम गोलवलकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने कहा कि श्री गोलवलकर ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को एक मजबूत वैचारिक आधार दिया। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मैच जापान के काकामिगहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार आज शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। महिला अंडर 18 एशिया कप में भारत ने ग्रुप चरण में बिना कोई मैच हारे सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में गरज के साथ आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
4: धन्यवाद जागृति। प्रधानमंत्री मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति की मुलाकात को आज प्रकाशित अखबारों ने प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, वेनेजुएला से बढ़ेगी कच्चे तेल की खरीद, ऊर्जा साझेदारी पर भी चर्चा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का सेंट पीटर्सबर्ग में मीडिया को दिया बयान, अमर उजाला ने प्रथम पृष्ठ पर दिया है। भारत पर दबाव की कोशिश में अमरीका, लेकिन सभी जानते हैं मोदी पर दबाव बनाना नामुमकिन। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड पर दैनिक जागरण की खबर है, धुएं ने छीन ली सांसें पर आखिरी पल तक नहीं छोड़ा साथ। पंजाब केसरी की खबर है, मौत की इमारतों पर होगा एक्शन, उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने नगर निगम को दिए कार्रवाई के निर्देश। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पृष्ठ में हादसों की जवाबदेही का विश्लेषण दिया है, किसी भी हादसे का सबसे जरूरी सबक ये होना चाहिए कि भविष्य में ऐसे इंतजाम किए जाएं ताकि वैसी घटना दोबारा न हो। दैनिक भास्कर ने बड़ा कदम शीर्षक से इको फ्रेंडली खबर दी है, सिर्फ एथेनॉल से चलने वाली देश की पहली कार लॉन्च, 5,000 पंप खुलेंगे, इससे प्रदूषण घटेगा और किसानों की आय भी बढ़ेगी। राजस्थान पत्रिका ने मॉनसून की दस्तक को मंगल प्रवेश बताते हुए लिखा है, बूंदों की बारात लेकर मॉनसून केरलम पहुंचा, 20 को राजस्थान में आगवानी। अब उत्तर भारत में तपिश के गिने चुने दिन, पत्र ने विश्व पर्यावरण दिवस पर लिखा है, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा, धरती संकेत दे रही है, क्या हम सुन रहे हैं, पहले मौसम बदलता था अब बिगड़ता है, प्रकृति से सिर्फ लिया कभी कुछ जमा नहीं किया, अब धरती दे रही चेतावनी।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे। लगभग 21,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप के प्रतिभागियों से आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत बनने का आह्वान किया। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में निधन। और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए हम आपको बताना चाहेंगे कि आज किन किन लोगों का जन्मदिन है उनके बारे में। जी हाँ, आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन है, उनके बारे में हमने बहुत सारी जानकारी दी और कुछ राजनीतिक जानकारी भी हम आपको बताना चाहेंगे। जी हाँ, गोरखनाथ मंदिर के पूर्व महंत अवैधनाथ जी ने जब 1998 में राजनीति से संन्यास लिया, तब उन्होंने योगी आदित्यनाथ को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। यहीं से योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक पारी शुरू हुई। योगी आदित्यनाथ ने पूज्य गुरुदेव के आदेश एवं गोरखपुर संसदीय क्षेत्र की जनता की मांग पर 1998 में लोकसभा चुनाव लड़ा और मात्र 26 वर्ष की आयु में भारतीय संसद के सबसे युवा सांसद भी बने। जनता के बीच दैनिक उपस्थिति संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लगभग 1500 ग्राम सभाओं में प्रतिवर्ष भ्रमण तथा हिंदुत्व और विकास के कार्यक्रमों के कारण गोरखपुर संसदीय क्षेत्र की जनता ने उन्हें वर्ष 1999, 2004 और 2009 के चुनाव में निरंतर बढ़ते हुए मतों के लिए विजय बनाकर चार बार लोकसभा का सदस्य बनाया। संसद में सक्रिय उपस्थिति एवं संसदीय कार्य में रुचि लेने के कारण योगी आदित्यनाथ को केंद्र सरकार ने खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग और वितरण मंत्रालय, चीनी और खाद्य तेल वितरण, ग्रामीण विकास मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी, सड़क परिवहन, पोत, नागरिक विमानन, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय के स्थायी समिति के सदस्य तथा गृह मंत्रालय की सलाहकार समिति, काशी हिंदू विश्वविद्यालय और अलीगढ़ विश्वविद्यालय की समितियों में भी सदस्य के रूप में समय समय पर नामित भी किया। व्यवहार कुशलता, दृढ़ता और कर्मठता से उपजी योगी आदित्यनाथ की प्रबंधन शैली शोध का विषय है। इसी अलौकिक प्रबंधीय शैली के कारण आदित्यनाथ जी लगभग 36 शैक्षणिक एवं चिकित्सक संस्थाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री, प्रबंधक तथा संयुक्त सचिव भी रहे। ये कितनी बड़ी विशेष बात है। दिखने को बहुत साधारण और सन्यासी दिखते हैं, लेकिन वो असाधारण व्यक्तिमत्व है। जैसे कि 36 शैक्षणिक एवं चिकित्सक संस्था के अध्यक्ष भी है, उपाध्यक्ष और मंत्री प्रबंधक भी, संयुक्त सचिव भी रहे हुए हैं। हिंदुत्व के प्रति अगाध प्रेम तथा मन, वचन और कर्म से हिंदुत्व के प्रहरी योगी आदित्यनाथ जी को विश्व हिंदू महासंघ जैसी हिंदुओं की अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तथा भारत इकाई के अध्यक्ष का महत्वपूर्ण दायित्व दिया है, जिसका सफलतापूर्वक निर्वहन करते हुए आदित्यनाथ जी वर्ष 1997, 2003, 2006 में गोरखपुर और 2008 में तुलसीपुर जो बलरामपुर में विश्व हिंदू महासंघ के अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में संपन्न कराया। राजनीति में मैदान में आते ही उन्होंने सियासत की दूसरी डगर भी पकड़ ली। उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी का गठन किया और धर्म परिवर्तन के खिलाफ मुहिम छेड़ दी। और योगी आदित्यनाथ की बहुमुखी प्रतिमा का एक आयाम लेखन का भी है। अपने दैनिक वृत्त पत्र पर विज्ञप्ति लिखते हुए श्रमसाध्य के साथ साथ आप समय समय पर अपने विचार को स्तंभ के रूप में भी समाचार पत्र में भेजते रहते थे। अत्यल्प अवधि में ही आदित्यनाथ जी ने निम्न पुस्तकें लिखी है, जैसे कि योगिक षटकर्म, दूसरा है हठयोग स्वरूप एवं साधना, तीसरा है राजयोग स्वरूप एवं साधना, चौथा है हिंदू राष्ट्र नेपाल। श्री गोरखनाथ मंदिर से प्रकाशित होने वाली वार्षिक पुस्तक योगवाणी के योगी आदित्यनाथ प्रधान संपादक हैं। वे हिंदवी साप्ताहिक समाचार पत्र के प्रधान संपादक भी रहे हैं। उनका कुशल नेतृत्व युगांतकारी है और नया इतिहास रचने वाला भी है। योगी आदित्यनाथ के व्यक्तित्व के कई आयाम हैं। उनका जीवन एक योगी जीवन है, संत का जीवन है, पीड़ित गरीब असहाय के प्रति करुणा, किसी के भी प्रति अन्याय एवं भ्रष्टाचार के विरुद्ध तनकर खड़ा हो जाने का निर्भीक मन, विचारधारा एवं सिद्धांत के प्रति अटल, लाभ हानि मान सम्मान चिंता किए बगैर साहस के साथ किसी भी सीमा तक जाकर धर्म एवं संस्कृति की रक्षा
का प्रयास करना उनकी यह पहचान है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र को प्राथमिकता दिए जाने के गोरक्षपीठ द्वारा जारी किए अभियान को योगी आदित्यनाथ ने भी सशक्त ढंग से आगे बढ़ाया। उनके नेतृत्व में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद द्वारा आज 3 दर्जन से भी अधिक शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाएं गोरखपुर एवं महाराजगंज जनपद में कुष्ठ रोगियों एवं वन टांगियों के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा से लेकर बीएड एवं पॉलिटेक्निक जैसे रोजगार परक सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का भगीरथ प्रयास भी जारी है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में गुरु गोरक्षनाथ चिकित्सालय अमीर गरीब सभी के लिए एक समान उच्च कोटि की स्वास्थ्य सुविधा भी उपलब्ध कराई है। तो एजुकेशन के क्षेत्र में भी उनका कार्य है, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा उनका योगदान है, जो उन्होंने निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में समय प्रति समय उन्होंने किया है। गोरक्षपीठ का मंत्र है, जाति पाति पूछे नहीं, कोई हरि को भजे सो हरि का है। गोरक्षनाथ ने भारत की जाति रूढ़ी रूढ़िवादिता के विरुद्ध जो उद्घोष किया है उसे इस पीठ ने अनवरत जारी रखा है। जी हाँ, एक साथ बैठे एक साथ खाए, ये उन्होंने कहा कि ये मानवता धर्म है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: कनव हूँ, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। कल जब मैं स्कूल से घर आ रहा था तो पता है मैंने क्या देखा? एक अंकल सड़क पे कचरा फेंक रहे थे। मैंने उनको जाकर बोला कि अंकल सड़क पे कचरा नहीं फेंकना चाहिए, तो पता है उन्होंने क्या बोला?
1: अरे बड़ा है मुझे सिखाने वाला।
0: उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और वो चले गए, लेकिन मैंने खुद ही कचरा उठाकर कचरे के डब्बे में डाल दिया।

तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए फिर से हम आपको बताना चाहेंगे कि आज के दिन किन किन लोगों का जन्मदिन है उनके बारे में। जी हाँ, तो आज किनका जन्मदिन है? रमेश कृष्णन जी का भी आज जन्मदिन है। भारत के वो प्रसिद्ध टेनिस प्रशिक्षक और पूर्व टेनिस खिलाड़ी भी है। 1970 के दशक के अंत में कनिष्ठ खिलाड़ी के रूप में इन्होंने विंबलडन और फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का खिताब जीता था। वर्ष 1980 के दशक में तीन ग्रैंड स्लैम के क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे और डेविस कप टीम में भी फाइनल तक पहुंचे थे। रमेश कृष्णन ने 2007 में भारत के डेविस कप के कप्तान भी रहे। ये रामनाथन कृष्णन के पुत्र है जो भारत के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी रहे हैं। इन्हें 1998 में भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। रमेश कृष्णन का जन्म 5 जून सन 1961 को चेन्नई भारत में हुआ था। इनके पिता रामनाथन कृष्णन भी प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी रहे हुए हैं। रमेश कृष्णन ने अपने पिता की भांति भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाई। उन्होंने अपने पिता का अनुसरण करते हुए 1979 में जूनियर विंबलडन चैंपियनशिप जीत चुकी थी। जूनियर फ्रेंच टाइटल जीतकर वे नंबर एक जूनियर खिलाड़ी भी बन गए। सीनियर स्तर पर श्री रमेश कृष्णन ने 1986 में विंबलडन में क्वार्टर फाइनल तथा 1981 में और 1987 में यूएस ओपन में क्वार्टर फाइनल तक वो पहुंचे। और उनके करियर की बातें दूसरी बताना चाहेंगे तो डेविस कप का रिकॉर्ड भी प्रशंसनीय रहा है। 1987 में भारत रमेश कृष्णन के योगदान से ही तीसरी बार डेविस कप के फाइनल तक पहुंचा था। इस प्रतियोगिता में ऑस्ट्रेलिया के अति अनुभवी वली मसूर को सीधा सेंटों में हराकर वे निर्णायक स्थिति तक पहुंच गए थे। फिर 1992 में बार्सिलोना ओलंपिक खेलों में रमेश कृष्णन भारत के लिएंडर पेस के साथ जोड़ी बनाकर पुरुषों की डबल्स प्रतियोगिता में खेले और क्वार्टर फाइनल तक भी पहुंच गए। एटीपी टूर में लगातार अच्छा प्रदर्शन करते रहने के कारण रमेश कृष्णन 1985 में विश्व में एकल रैंकिंग के

में वो 23वां स्थान प्राप्त कर सके। तो इसी कारण उनको 1979 में विंबलडन खिताब मिला है और जूनियर फ्रेंच टाइटल जीतकर वे विश्व रैंकिंग में नंबर एक जूनियर खिलाड़ी भी बने हैं। और 1986 में विंबलडन में रमेश कृष्णन क्वार्टर फाइनल में पहुंचे और 87 में ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध खिलाड़ी वली मसर को भी हराया। और 1992 में बार्सिलोना ओलंपिक में युगल मुकाबले में खेलते हुए क्वार्टर फाइनल तक वो पहुंचे। तो ये थी रमेश कृष्णन के बारे में बहुत सारी जानकारी। तो चलिए दोस्तों, लेते एक छोटा सा ब्रेक। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया जब गाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो तब मेहरबानी करके शौचालय का उपयोग ना करें, जिससे स्टेशन परिसर में गंदगी फैलती है। इसमें रेलवे की सहायता करें।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: आवाज आ रही है मेरी?
1: जी जी आ गई आ
0: गई। हाँ जी हाँ जी।
1: और आपकी मतलब कुछ हंसते हुआ खुशी हुआ चेहरा भी नजर आ रहा।
0: जी जी जी जी बोलिए बोलिए।
1: और
0: कैसे हैं आप?
1: मैं बढ़िया हूँ सर। मैं ऑफलाइन में हूँ ऑनलाइन में हूँ?
0: ऑनलाइन ही ऑनलाइन। अभी सभी आप सुन रहे हैं?
1: अच्छा हमें सुन रहे हैं सब?
0: जी जी जी आपको सभी सुन रहे हैं। जी
1: सुनाए सबको कहानी सबको करो भाई राम राम लाली। तो हम रेडियो मधुबन को सलाम करते हैं, हमारे श्याम जी को नमस्कार करते हैं दिल से। आज शुक्रवार है तो शुक्रवार का शुक्रिया सभी को, और हमारे सभी दोस्तों को नमस्कार ओम शांति। और जिनका भी जन्मदिन है हमारी तरफ से बहुत बहुत थैंक्स है, चाहे वो गांव में शहर में कोई भी राज्य में है। और उन आत्मियों को हम सलाम करते हैं, और उन्होंने जो कार्य किया है हम उन्हें सलाम करते हैं, कार्य चलाया है और कितने ही लोगों का कल्याण किया और खुद का भी कल्याण किया है, ऐसे आदमियों को हम नमस्कार करते हैं। और अभी मैं कल अहमदाबाद गया था।
0: जी जी जी।
1: ऐसा लगता था कि कौन गरीब है कौन अमीर है कुछ मालूम ही नहीं पड़ रही थी। हाँ ये मालूम पड़ रही थी कि बस गरीब अमीर कोई नहीं है, मगर गर्मी जरूर थी।
0: जी जी जी जी।
1: गर्मी चारों तरफ से बहुत थी और और छाए में बैठने का छाए थी।
0: जी जी।
1: गांधीनगर में सभी जगह झाड़ है मगर बैठने का समा नहीं है।
0: जी
1: जी। क्योंकि दूर चली है और समय कम है, इसलिए कोई रिक्शा पकड़ रहा है तो कोई गाड़ी पकड़ रहा है तो कोई और इधर से निकलने की कर रहा है। तो मतलब बहुत गर्मी थी और हम देख के खुश हुए हैं कि ये अंत समय है, तो सबको ध्यान करना है और सबका सम्मान करना है। और बस नमस्कार करते हैं रेडियो को और बस गीत गाते हैं।
0: जरूर जरूर।
1: पीते भी जाने ना तू, जो भी है पल से, जो भी है पल से, एक पल उजाला है बाकी अंधेरा है, अंधे की बाहों ने हम सबको घेरा है। जीने वाले सोचते थे यही वक्त भी कर ले आरजू, आगे भी जाने ना सो, जीते भी जाने ना सो, जो भी है सच्ची मत पल है, जो भी है ये खूबसूरत पल है। नमस्कार सर।
0: नमस्कार नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने आकर सभी श्रोताओं से मिलन भी बनाया और गीत भी गाया। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए फिर से हम आपको गीत सुनाना चाहेंगे।

तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए हम आपको बताना चाहेंगे कि आज के दिन किन किन लोगों का जन्मदिन है उनके बारे में। जी हाँ, आज गोविंद शंकर कुरुप जी का भी जन्मदिन है, तो उनके बारे में कहना चाहेंगे कि ज्ञान पीठ पुरस्कार से सम्मानित मय लाली भाषा के एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे। उन्होंने कोचीन राज्य की पंडित परीक्षा पास करके अध्यापन की योग्यता प्राप्त की थी। उसके बाद 2 वर्ष तक के यहाँ वह अध्यापन कार्य भी करते रहे। महाकवि गोविंद शंकर कुरुप की 40 से अधिक मौलिक और अद्भुत कृतियां प्रकाशित हो चुकी है। गोविंद शंकर कुरुप जी का जन्म 5 जून 1901 में केरल के नायतोट नामक स्थान पर हुआ था। अपने मामा गोविंद के नाम पर ही उनका नाम गोविंद शंकर कुरुप पड़ा। परिवार में वंश परंपरा मातृकुल से चलने की परंपरा होने के कारण इनका कुल नाम भी कुरुप ही हुआ। सहयोग से उन्हीं दिनों नायतोट के एक प्राथमिक पाठशाला की स्थापना हुई। बालक कुरुप तो वहाँ भर्ती करा दिया। गोविंद शंकर ने वहाँ जाकर अनुभव किया कि प्राकृतिक दृश्य छवियों को देखकर उनके भीतर स्वतः स्फूर्त एक अरूप और चित्रित सा आलोड़न होता है, जिसका अब उन्हें ज्ञान होने लगा था। गोविंद शंकर के जीवन में 2 घटनाएं भी उसी समय घटी जो यूं तो सामान्य थी, पर कवि शंकर कुरुप की काव्य चेतना के प्रथम अंकुर फूटने में परोक्ष रूप से सहायक सिद्ध हुई। एक थी उस युग के वरिष्ठ मलयालम कवि कुंजुकट्टन तप्पुरान का नायतोट आना और दूसरी थी नौका से तोट्टुवाय देवालय जाते हुए उगते सूर्य के प्रथम स्पर्श लहरियों के नर्तन का दर्शन। बचपन में ही गोविंद शंकर के पिता की आशीष छाया सिर से उड़ जाने के बाद उनकी देखरेख और शिक्षा आदि का दायित्व उनके मामा गोविंद कुरुप ने निभाया। गांव की उस प्राथमिक पाठशाला में शिक्षा का प्रबंध 3री कक्षा तक ही था। फिर किसी प्रकार व्यवस्था करके बालक कुरुप को 7 मील दूर स्थित पेरुम पावर के मलयालम मिडिल स्कूल में भेजा गया। पेरुम पावर में छात्रावास के जीवन में मुक्त वातावरण मिला, जो कवि शंकर की स्फुट प्रतिभा को जागृत होने में विशेष प्रेरक और सहायक भी हुई। वहाँ एक संगन वन था जहाँ लता कुंजों से घिरा भगवती वन देवी का एक अर्धनग्न मंदिर भी था। नाना पक्षियों का कलरव कुंजन निरंतर चलता रहता था। प्रकृति की उस उन्मुक्त शोभा राशि से मुग्ध होकर शंकर घंटों घंटों वहाँ बैठे रहते और प्रायः संस्कृत छंदों में फूट कर श्लोकों की रचना करते। 7वीं कक्षा के गोविंद शंकर जी मुट्टा पुष्पा मलयालम हाई स्कूल पहुँचे। वहाँ 2 वर्ष रहे, पर ये 2 वर्ष उनके विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण और दिशा निर्णायक सिद्ध हुए। शंकर कुरुप ने कोचीन राज्य की पंडित परीक्षा पास करके अध्यापन की योग्यता प्राप्त की। वह 2 वर्ष तक यहाँ वह अध्यापन का काम भी करते रहे। उनका कविता संग्रह साहित्य कौतुकम के पहले भाग की कविताएं इसी काल की है, पर अपना अभीष्ट उन्हें तब प्राप्त हुआ जब वह तिरुमला हाई स्कूल के अध्यापक नियुक्त हुए। 1925 तक शंकर कुरुप तिरुविल्लमाला में रहे। प्रकृति के प्रति प्रारंभ में जो एक सच आकर्षण भाव था, उसने इन 4 वर्षों में अन्य उपासक की भावना का रूप ले लिया। तिरुविल्लमाला से कुरुप 1925 से चालकुटी हाई स्कूल पहुँचे। उसी वर्ष साहित्य कौतुकम का 2रा भाग प्रकाशित हुआ। फिर 1931 में नाले शीर्षक कविता के प्रकाशन ने साहित्य जगत में एक हलचल मचा दी। कुछ लोगों ने उसे राजद्रोहात्मक तक कहा। उसके कारण महाराजा कॉलेज एर्नाकुलम में प्राध्यापक पद पर उनकी नियुक्ति में भी एक बार बाधा आ गई। फिर 1937 से 56 में सेवानिवृत्त होने तक इस कॉलेज में मलयालम के प्राध्यापक रहे। यहाँ अवकाश प्राप्त कर लेने के उपरांत वह आकाशवाणी के त्रिवंदम केंद्र में प्रोड्यूसर भी रहे। गोविंद शंकर कुरुप की काव्य कृति ओटोकुष्ट का प्रथम संस्करण वर्ष 1950 में प्रकाशित हुआ। इसके मूल स्वरूप 60 कविताएं थी।
वर्तमान रूप में 58 कविता है। तो इस प्रकार से उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी है जो उन्हें इसके लिए बहुत सारे पुरस्कार भी मिले, जिस प्रकार से साहित्य अकादमी पुरस्कार 1963 में मिला और ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 से उन्हें सम्मानित किया गया। तो चलिए दोस्तों, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: बच्चों, सबको समझ आ गया आज का हमारा विषय? रोहित, तुम्हें कोई डाउट तो नहीं?
1: मैम, यह आपको कैसे बताएगा, ये तो बोल भी नहीं सकता।
0: रोहित बोल नहीं सकता, परंतु ये अपनी साइन लैंग्वेज से हमें समझा तो सकता है। बच्चों, मानसिक रूप से रोहित हम सब की तरह स्वस्थ है। कर्म इंद्रियां तो बस एक साधन है, मानसिक और बौद्धिक रूप से हम सब समान हैं।
2: रेडियो मधुबन की मुहिम का हिस्सा बने, पुरानी मानसिकता को बदलें और समझने का प्रयास करें। शारीरिक रचना का हमारी बुद्धिमत्ता से कोई ताल्लुक नहीं, मन स्वस्थ तो जीवन स्वस्थ।
3: मानवीय हो मानसिकता, सुखद हो व्यवहार, मन की आँखों से देखिए सुंदर ये संसार।

हेलो दोस्तों, मैं हूं आप सबका आलमगीर। सबको मेरा प्यार भरा सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर। सुनते रहिए, गाते रहिए और गुनगुनाते रहिए, झूमते रहिए और सबको प्यार से झुमाते रहिए। ओ, आज दर पे चल के आया है मौका।

तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए हम आपको बताना चाहेंगे कि आज के दिन किन किन लोगों का जन्मदिन है उनके बारे में। जी हाँ, आज यनम जोशी जी का भी जन्मदिन है। जी हाँ, भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के वो जन्मदाता थे। उन्होंने 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की और 1929 तक उसके सचिव भी रहे। कांग्रेस में साम्यवादियों के प्रभाव के कारण उन्होंने कांग्रेस छोड़कर ट्रेड यूनियन परिसंघ नामक एक नया संगठन भी बनाया था। वे केंद्रीय विधानसभा दिल्ली के निर्वाचित सदस्य भी रहे। नारायण मल्लार जोशी 20वीं सदी के प्रमुख श्रमिक नेताओं में गिने जाते हैं। इनका जन्म 5 जून 1879 में हुआ था और 1909 में भारत सेवक समाज के वे सदस्य बनकर इससे कई वर्षों तक संबद्ध रहे। वे बॉम्बे सोशल सर्विस लीग, रिलीज पेंशन एंड सोसाइटी, लीगल एंड सोसाइटी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन, इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस तथा सिविल लिबर्टीज यूनियन आदि संस्थाओं से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे। उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान श्रमिक कल्याण के कार्यों में ही हो रहा था। एमएम जोशी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस में लंबे समय तक रहे और नेतृत्व करते रहे। उनके नेतृत्व में भी ये कार्य बहुत अच्छा चलता रहा। तो इसी प्रकार से दोस्तों, भारत में ऐसे महान सपूत हो गए जो कोई ना कोई यूनियन को चलाते रहे, लोगों को न्याय दिलाने की कोशिश करते रहे और आज भी उनका नाम इतिहास में अजरामर होता आया है। तो दोस्तों, वक्त हो गया है अभी नहीं करने इस कार्यक्रम को यहीं पूरा करने का। कल शनिवार है, परसों रविवार है, फिर मिलते हैं सोमवार को नई किरण इस कार्यक्रम में। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम शांति।

पेड़ों की छांव में ही जीवन का सार है, पेड़ों की छांव में ही जीवन का सार है, नदियों की निर्मल धारा प्रकृति का उपहार है। आओ मिलकर धरती का सम्मान करें सभी, आओ मिलकर धरती का सम्मान करें सभी। स्वच्छ पर्यावरण ही आने वाले कल का आधार है, स्वच्छ पर्यावरण ही आने वाले कल का आधार है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है, तो इसकी ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ समय सुबह का तब बनता है खास जब आती है उषा अचानक के साथ। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा गणी सा। जो पेड़ हम आज लगाते हैं वही आने वाली पीढ़ियों को जीवन का उपहार देते हैं। कैसे, जरा विचार करेंगे। और जी हाँ, बहुत ही सुंदर घरेलू नुस्खे देने वाली हूँ। किशमिश कैसे फायदा करती है, गर्मी का मौसम है, किशमिश जरूर खानी चाहिए। तो कौन सी बीमारियाँ ठीक होगी वो आप सभी जानेंगे। फिर खुशनुमा जीवन की ढेर सारी बातें भी करेंगे। व्यंजन भला कैसे भूल सकते हैं, आज भी मैं आपको सिखाने वाली हूँ अचार, लेकिन कौन सा वाला वो अभी नहीं बताऊंगी, आप आशाना कार्यक्रम सुनिए जान जाएंगे। और आज का टंग ट्विस्टर बहुत सुंदर रहेगा, तो ये सब कुछ सुनेंगे आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

अगर आपातकालीन स्थिति में किसी को अस्पताल ले जाना हो तो घबराइए नहीं, डायल कीजिए एम्बुलेंस का इमरजेंसी नंबर 102 या फिर 108। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

गुड मॉर्निंग, नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका आशियाना कार्यक्रम में। आज का सुंदर सा विचार है, जो पेड़ हम आज लगाते हैं वही आने वाली पीढ़ियों को जीवन का उपहार देते हैं। कैसे? तो आइए आज के विचार का विस्तार इस प्रकार करेंगे। एक गांव था जहां पर एक लड़का रहता था, उसका नाम था मोहन। उसके घर के सामने एक बड़ा नीम का पेड़ था। गर्मियों में वह उसकी छांव में खेलता था, उसकी छांव में खेलता भी था, पक्षियों की चहचहाट सुनता और उसके नीचे बैठ करके पढ़ाई भी करता। समय बीता, मोहन बड़ा होकर के शहर चला गया। कुछ वर्षों बाद जब गांव लौटा तो देखा कि लोगों ने विकास के नाम पर कई पेड़ काट दिए हैं। अब गर्मी पहले से कहीं अधिक थी, पक्षियों की आवाज़ें भी कम सुनाई देती थी। मोहन को अपने बचपन का नीम याद आया, वह अभी भी खड़ा था, सबको छाया और शुद्ध हवा दे रहा था। तब मोहन ने गांव वालों को समझाने का एक प्लान बनाया। मोहन का जन्मदिन था, गांव वाले बड़े खुश थे कि अरे वाह, मोहन तो शहर से आया हुआ है, पढ़ लिख कर बड़ा होशियार हो गया है, अच्छी जॉब कर रहा है और हमारे गांव में आया है, तो चलिए मोहन को सभी बधाई देने जाते हैं, नौकरी की भी और जन्मदिन की भी। तो सभी आए मोहन के पास और मोहन को बोले कि मोहन, बहुत बहुत बधाई आपको जन्मदिन की भी और अच्छी जॉब की भी। मोहन ने कहा कि मैं ऐसे आपकी बधाई स्वीकार नहीं करूँगा। तो गांव वाले थोड़े से उदास हो गए कि ये क्या कह रहे हो मोहन, क्या शहर में जाकर के तुम बदल गए? मोहन ने कहा, नहीं मेरे भाइयों, मेरे साथियों, में नहीं बदला, लेकिन अगर आप मुझे बधाई देना चाहते हैं तो एक काम करना पड़ेगा। सभी ने कहा कि अच्छा बोलो बोलो, क्या काम करना पड़ेगा? तो फिर मोहन ने कहा कि देखो, आज मेरा जन्मदिन है, मैं लगाने जा रहा हूँ पेड़, मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ आप सभी भी एक एक पेड़ लगाए। हर साल कम से कम, साल में बीच में नहीं लगा सकते, तो हर पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ जरूर लगाए, तो साल में एक एक पेड़ आप सभी लगाएंगे तो गाँव हमारा हरा भरा हो जाएगा। यही मेरा असली जन्मदिन भी मनाना होगा और यही मेरे जॉब की मुबारकबाद भी होगी। बोलो, आप सभी मानने को तैयार हो? गांव वालों ने कहा, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, जरूर मानेंगे भाई, इसमें क्या मेहनत है, जरूर। तो सबसे पहले मोहन ने पेड़ लगाया, सभी ने तालियां बजाई, सभी खुश हो गए और सभी ने एक एक पेड़ लगाया। उसके बाद मोहन ने सभी से वायदा करवाया कि भाई, पेड़ लगाना ही सब कुछ नहीं होता है, अब बोलिए आप में से कौन पेड़ केयर करेगा, कौन पानी देगा, इनका ध्यान रखेगा, दो चार जने फटाफट तैयार हो जाओ। तो फिर चार जनों की टीम बनाई, जिम्मेदारी सौंपी, आपको पेड़ नहीं लगाना है लेकिन आपको पेड़ों को बचाना है, ये आप चारों की जिम्मेदारी है। आप और भी जिम्मेदारी किसी पर सौंप सकते हो लेकिन मैं आपको ये जिम्मेदारी देता हूँ। तो चारों ने वो जिम्मेदारी उठाई और बोला कि ठीक है, हम तैयार है पेड़ों को बचाने के लिए। तो इस तरह मोहन तो कह करके चला गया। फिर साल भर बाद आया वही छुट्टियों में, तो देखा कि गांव तो हरा भरा हो गया। तब मोहन ने सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद भी दी और सभी के साथ फिर से जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाया, सभी के साथ भोजन रखा, सभी को भोजन खिलाया। तो कहने का भाव यही है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, पेड़ लगाइए लेकिन पेड़ को बचाना भी जरूरी है, तो पेड़ों को बचाइए भी, ताकि आने वाले हमारे जो पीढ़ी है उनको हम ये पेड़ के रूप में धरोहर दे सके। तो ये हुआ आज का सुंदर सा विचार और आइए फिर से एक ब्रेक लेकर के पुनः लौटते हैं। तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: नमस्कार, मैं हूँ रवीना टंडन और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में आपको देंगे बहुत ही सुंदर घरेलू उपाय। किशमिश गर्मी में क्यों खानी चाहिए, क्या फ़ायदा करते हैं, तो हम आपको बताना चाहेंगे। गर्मी के दिनों में रात को 10-15 किशमिश धो करके एक गिलास पानी में भिगो दीजिए। सुबह खाली पेट किशमिश खाइए और उसका पानी पी लीजिए। यह आपको करना है। क्या करना है, 10-15 किशमिश धो करके एक गिलास पानी में भिगो दीजिए। सुबह खाली पेट किशमिश खाइए और उसका पानी पीना है। अब क्यों पीना है आप जानेंगे अब इसके लाभ। शरीर को ऊर्जा देने में मदद मिल सकती है, ठीक है। ऐसा अगर आप करके किशमिश खाते हैं तो शरीर को ऊर्जा मिलेगी, ठीक है। पाचन को बेहतर रखने में सहायक होगा। गर्मी में होने वाली कमजोरी और थकान कम करने में मदद कर सकती है। इसमें आयरन और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो सामान्य स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। शरीर में पानी की कमी होने पर संतुलित आहार के साथ ये एक अच्छा पूरक बन सकती है। इसलिए किशमिश खाने के ये लाभ है। अब आइए, कौन सी बीमारियां ठीक करेंगे वो भी आप जानेंगे कि कौन सी बीमारी से ठीक होगी। देखिए, सारे लाभ तो बीमारियों को ही ख़त्म करने वाले लाभ है जो आपने जाने हैं। फिर भी देखिए, 10 किशमिश खाते हैं गर्म दूध में उबाल करके, तो इससे खांसी जुकाम में फ़ायदा होगा, कब्जियत भी ठीक होगी।

लाइनें याद आ रही जो आपको सुनाना चाहूं कि गर्मी में रखे तन मन को तरोताजा और ताजगी से भरपूर, भीगी किशमिश का छोटा सा उपाय बन सकता है बड़ा दस्तूर। तो जरूर आप दस्तूर बना दीजिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए। और अब आज का टंग ट्विस्टर की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, आज का टंग ट्विस्टर पर्यावरण पर ही है, तो आपको अधिक से अधिक 5 बार और कम से कम 3 बार बोल के सुनाना है। ठीक है, तो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ आज का टंग ट्विस्टर। पौधे पर पानी पड़ा, पानी से पौधा पनपा, पन पे पौधे पर पंछी पहुंचे, पंछी पहुंचे तो पौधा चमका। तो मिनिमम आपको 3 बार बोल के तो सुनाना ही है। तो टंग ट्विस्टर सुनाने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15। और यहीं पर फिर से एक ब्रेक लेकर के पुनः लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: पेड़ है तो पंछियों का मधुर गान है, पेड़ है तो धरती पर जीवन की शान है। मत काटो इन्हें स्वार्थ की आंधी में कभी, इनसे ही हमारा आज और कल महान है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में खुशनुमा जीवन की बातें करेंगे। विषय आपके समक्ष रख चुकी हूँ, इस पर आप अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। और आज का टंग ट्विस्टर भी बड़ा सुंदर है, जिसको मैं फिर से दोहरा रही हूँ। पौधे पर पानी पड़ा, पानी से पौधा पनपा, पनपे पौधे पर पंछी पहुँचे, पंछी पहुँचे तो पौधा चमका। ये आज का टंग ट्विस्टर है, आपको कम से कम 3 बार बोल के तो सुनाना ही है। अगर कैपेबल है तो 5 बार बोल के सुनाइए, नहीं तो 3 बार बोल के आपको सुनाना है, ठीक है। तो विषय में भी आप अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, और आप टंग ट्विस्टर भी सुना सकते हैं। नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15। हमारे श्रोता बंधु जुड़ चुके हैं। हेलो,
1: हाँ दीदी नमस्ते, सुरेश भाई बोलता हूँ, जताना से, कैसे हो दीदी?
0: हाँ जी नमस्ते सुरेश भाई, हम बहुत अच्छे हैं, आप सुनाइए, आप कैसे हो?
1: बस हम भी बहुत अच्छे हैं, बैठे हैं, कार्यक्रम सुन रहे हैं, काम भी कर रहे हैं।
0: हाँ हाँ जी,
1: और अच्छा टंग ट्विस्टर भी सुना दिया, और अच्छा विषय भी आपने दिया है। आज का जो दिन, आज जो जो हो रहा है, इस पर आपने जो टंग ट्विस्टर भी सुनाया और उसने जीवन की भी बात रखी है, तो पहला मैं टंग ट्विस्टर ही आपको सुना दूं।
0: हाँ जी
1: ठीक है,
0: हाँ जी जरूर
1: जी। पौधे पर पानी पड़ा, पानी से पौधा पनबा, पनपे पे पौधे पर पंछी पहुंचे, पंछी पहुंचे थे पौधा चमका। पौधे पर पानी पड़ा, पानी से पौधा पनवा, भूल गया था राजा, पनपे पे पौधे पर पंछी पहुंचे, पंछी पहुंचे तो पौधा चमका। पौधे पर पानी पड़ा, पानी से पौधा पनपा, पनपे पौधे पर पंछी पहुंचे, पंछी पहुंचे तो पौधा चमका। पौधे पर पानी पड़ा, पानी से पौधा पनपा, पनपे पौधे पर पंछी पहुंचे तो पौधा चमका। पौधे पर पानी पड़ा, पानी से पौधा पनपा, पनपे पौधे पर पंछी पहुंचे तो पौधा चमका।
0: क्या बात है, क्या बात है, तालियां हम हाथ से ही बजा देते हैं, तालियां।
1: थोड़ी मिस्टेक हो गई थी,
0: हाँ हाँ, वो एक शब्द स्लिप हो गए थे, लेकिन फिर भी अच्छी कोशिश की आपने।
1: कभी कभी थोड़ा सा शब्द में ऐसा आ जाता
0: हो जाता है, मुझे ये टंग ट्विस्टर इसीलिए तो सुनाते हैं कि चलो पता चले ना। थोड़े जबान की एक्सरसाइज हो जाती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, और चलो अच्छा, मैं भी कोशिश तो हरदम करता ही रहता हूँ कि चाहे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाए ना हो जाए, लेकिन बोलना तो जरूरी है
0: जी।
1: चलो वो तो हो गई टंग ट्विस्टर की बात, अब मैं विषय पे आपको बताता हूँ दीदी की।
0: हाँ जी।
1: देखो आज पौधा धीरे धीरे, आज पर्यावरण में आज कई सारे पौधे जो कट रहे हैं, पौधे पर आज देखो पंछी भी क्या करे, पंछी भी कहाँ बैठे वो भी एक बात हो रही है। तो पौधे नहीं होते दीदी, पेड़ नहीं होते तो पंछी की तो बात सही है, लेकिन इससे ज्यादा हमारे भी प्रॉब्लम रहता है दीदी। देखो आज कोई भी, हम कहीं पहले तो क्या था दीदी, हम कहीं भी जाते थे पैदल चल के जाते थे, बीच में थोड़ा सा आराम लेते तो हम पेड़ नीचे बैठ जाते थे
0: जी बिल्कुल,
1: और वहाँ बैठ के हम इतना सुकून लेते थे, और वहाँ बैठे बस बैठते रहे, अच्छा हवा आती थी, अच्छा वहाँ का मौसम रहता था पेड़ के नीचे। लेकिन आज कहीं भी जाइए पेड़ नहीं है, इसलिए तो आज वो इतनी गर्मी बढ़ रही है। यही तो एक कारण है कि धीरे धीरे पेड़ कट गए हैं, और बहुत गर्मी हो रही है। तो बस हम तो दीदी ऐसा कहेंगे, पक्षियों भी की आज बैठने का कहाँ बैठे दीदी, यही हाल है। पहले तो देखो इतना कलरव करते थे पंछी पेड़ के बैठे बैठे
0: जी,
1: इतनी आवाज आती थी, आज वही आवाज बिल्कुल खत्म हो गई है, क्योंकि पेड़ ही नहीं रहे, जो ही वो सूख गए हैं
0: जी,
1: और धीरे धीरे पेड़ कट रहे हैं। और दूसरी बात बताओ दीदी, आज क्या हुआ, एक बात बताओ मैं दीदी, धीरे धीरे जो ये सड़के जो दीदी, पहले तो वनवे सड़के थी, तो वनवे सड़के पे दोनों साइड इतने पेड़ थे
0: जी,
1: कि कहीं भी जाए आप सामने ही जाते थे, कोई साधन में जाए कोई चल के जाए, दोनों ही साइड इतने पेड़ थे।
0: लेकिन
1: अब क्या हुआ, धीरे धीरे जो जो जो सड़के बड़ी हो रही है, जब बड़ी करते हैं तो पेड़ कट ही जाते हैं
0: जी,
1: पूरा एक साइड पूरी कट जाती है। तो वो दूसरी बात है, वो पेड़ तो दीदी लगते नहीं, लगते हैं तो बहुत देरी लगती है
0: जी।
1: आज इतने थोड़े सड़क हो गई है, इतनी बड़ी हो गई है, पेड़ कहाँ से हो? तो ये भी एक सही बात है कि आज धीरे धीरे जो रोड पोड़े हो रहे हैं, सड़कें पूरी हो रही है, बड़ी हो रही है, तो ये हादसा हो रहा है धीरे धीरे। पेड़ नहीं है दीदी, जो है वो कट जाता है, दूसरा कोई लगाता नहीं है
0: जी।
1: और आगे जाके क्या हाल होगा वो तो हम देख ही रहे हैं अभी।
0: सही बात है,
1: इतनी इतनी गर्मी बढ़ रही है तो आगे जाके क्या होगा
0: जी।
1: तो बस नमस्ते दीदी।
0: हाँ जी, बहुत बहुत आभार आपका सुरेश भाई। तो ये थे सुरेश भाई जोटाना से, आपने टंग ट्विस्टर बहुत ही अच्छी तरह बोल के सुनाया है, विषय को भी स्पष्ट करने की बहुत अच्छी कोशिश की है। अब आप जुड़िएगा, कोई भी जो भी जुड़ना चाहते हैं, आपका स्वागत है रेडियो मधुबन में। और आप भी जुड़ करके टंग ट्विस्टर सुना सकते हैं, आज के विषय पर अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। आज का विषय भी बहुत अच्छा है, देखिए पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हालत एक की नहीं सबकी खराब होगी। आपसी ईर्ष्या, आपसी दुश्मनाहट रखते हैं उसमें तो एक दो की हालत ख़राब होती है, लेकिन पेड़ पौधों से छेड़छाड़ करेंगे, प्रकृति के साथ अगर हम कुछ गलत करेंगे और प्रकृति हमारा साथ नहीं देगी तो सभी के साथ खराब होगा, है ना, सभी के साथ बुरा होगा। इसलिए कैसे बचाएंगे पेड़ पौधों को, क्या करेंगे कि हरियाली फिर से जीवित रहे? तो बहुत ही सुंदर विषय है, आप भी अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। आज का टंग ट्विस्टर भी बड़ा अच्छा है, पौधे पर पानी पड़ा, पानी से पौधा पनपा, पनपे पौधे पर पंछी पहुँचे, पंछी पहुँचे तो पौधा चमका। यह आपको अधिक से अधिक 5 बार, कम से कम 3 बार बोल के तो आपको सुनाना ही है। जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन का है 94-14-15-14-15। और हमारे कुछ श्रोता बंधुओं ने सुनाया भी है, तो आइए हम सुन लेते हैं उनके द्वारा, वो इस मैसेज करके भेजा है तो उनके आवाज़ में सुना देते हैं। कमला जी जैन भिलवाड़ा से है।
2: पानी पड़ा, पानी से पौधा पनपा, पनपे पौधे पर पंछी पहुँचे तो पौधा चमका। पौधे पर पानी पड़ा, पानी से पौधा पनपा, पनपे पौधे पर पंछी पहुँचे तो पौधा चमका। पौधे पर पानी पड़ा, पानी से पौधा पनपा, पनपे पौधे पर पंछी पहुँचे तो पौधा चमका। पौधे पर पानी पड़ा, पानी से पौधा पनपा, पनपे पौधे पर पंछी पहुँचे तो पौधा चमका। पौधे पर पानी पड़ा, पानी से पौधा पनपा, पनपे पौधे पर पंछी पहुँचे तो पौधा चमका।
0: क्या बात है, कमला जी के लिए भी डेड बहुत सुंदर। और हमारे श्रोता बंधु जुड़ चुके हैं। हेलो
3: हेलो उषा बहन जी।
0: हाँ जी नमस्ते कंचन भाई, कैसे हैं आप?
3: बस बहन जी दुकान पे है, काम कर रहे हैं, जो वनवासी गायों का जो काम चल रहा है, लग्न की सीजन चालू है
0: जी,
3: शादी ब्याह है, इन लोगों को अभी करते
0: जी,
3: तो वो भी सभी वन में ही रहते हैं जो वनस्पति से अभी थे। तो अब तो सरकार ने भी गैर घर गैस की व्यवस्था कर दी है, तो पेड़ कम काटते हैं, हम बोलते हैं
0: कहीं
3: यहाँ खाते हैं तो कैसे आप ये खाना पकड़ते हैं, तो बोलते हैं कि भाई हमारे यहाँ गैस है तो पेड़ों को कम काटते। पहले तो बहुत पेड़ काटते थे और 12 महीने का इकट्ठा कर लेते थे, इतने पेड़ काटते थे, लेकिन अब ये नहीं होता। और पेड़ तो जरूरी है गंदी, पेड़ है तो पर्यावरण को नुकसान करना है तो बड़ी ये बात
0: जी।
3: इसलिए तो ये बदल गया है, चक्र भी, ऋतु का चक्र भी बदल गया है। देखो अभी बारिश बारिश हो तो किसान भाइयों को तो नुकसान ही है ना, जो पकता है और बारिश आती है तो सब बिक जाता है, बिगड़ जाता है। तो पेड़ों को बचाना है कुल मिला के, पर्यावरण को नुकसान नहीं करना। देखो मोदी जी ने भी बताया है कई पेड़ माँ के नाम, जब हमारे माता जी की निर्वाण तिथि पिता जी की आती है तो पेड़ लगाना
0: जी,
3: और पेड़ ऐसी जगह लगाना है कि कोई नुकसान न करे, पशु इसको खा न जाए, ये ना करे, इसको पानी मिलता रहे, ऐसी जगह पे पेड़ लगाना। खाली फोटो खींचवा के पेड़ लगा दिया और जिसकी देखभाल बाद में नहीं की तो ये कोई काम का नहीं। हेलो।
0: हाँ जी सुन रही हूँ जी।
3: तो पेड़ ये करना हमें देखो खेतों में क्या है कि अपनी उम्र के हिसाब से ये पेड़ सूख जाता है और ये हो जाता है, ठीक है
0: जी।
3: तो हमें दूसरे पेड़ ये लगाने हैं वहाँ, जैसे कि पानी की व्यवस्था वहाँ से पानी निकलता हो ऐसी जगह पे करना है। मैं तो करता ही, मेरे पिताजी की माता जी की निर्वाण आती है तो मैं इसमें जाके ये पेड़ लगाता
0: जी।
3: और दूसरी बात तो ये मैं अभ्यास करना पड़ेगा, थोड़ा काम भी कर रहा हूँ, प्रेस कर रहा हूँ। देखो
0: जी,
3: वर राजा का जो शर्त है अभी लेने के लिए आने वाले है वो आज कपड़े
0: जी। जी फिर भी आप देखिए काम करते हुए भी रेडियो से जुड़ते हैं, आप है सुरेश भाई है, बहुत सारे हमारे श्रोता बंधु, तो बहुत अच्छा है कि देखिए मतलब रेडियो से विशेष प्रेम है, इसलिए काम करते हुए भी आप लोग जुड़ जाते हैं, सुरेश भाई जुटाने वाले और आप तो स्पेशल दोनों ही।
3: और जो अभ्यास थोड़ा करना पड़ेगा,
0: ठीक है, अभ्यास करके आप सुनाइए, पहले वॉइस मैसेज भेजिए, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बहुत आभार आपका भी। तो ये थे कंचन भाई मंडाली से, बहुत ही सुंदर आपने भी विषय को स्पष्ट किया है और टंग ट्विस्टर की भी कोशिश करेंगे। तो बहुत ही सुंदर, देखिए प्रैक्टिकल विषय है, आज विश्व पर्यावरण दिवस भी है और विश्व पर्यावरण दिवस तो एक दिन इसलिए मनाना पड़ता है कि लोगों को कम से कम जागरूक कर सके कि भाई पेड़ पौधों को बचाइए, काटिए मत, बाकी लगाना तो है ही है। एक दिवस मतलब एक दिन हम कोई भी तिथि तारीख को या कोई भी अच्छी चीज़ को मना लेते हैं, लेकिन मनाने का तात्पर्य उसके पीछे यही होता है कि पूरे साल भर मतलब हमेशा के लिए मनाइए। हमेशा आप प्रकृति का ख्याल रखिए, प्रकृति का ध्यान रखिए, बीच में समय मिले तो पेड़ पौधे लगाते रहिए। पेड़ पौधे लगाने के बाद वो पनप रहे हैं नहीं पनप रहे हैं वो भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बहुत जने क्या करते हैं, पेड़ पौधों को लगा करके छोड़ देते हैं, फिर पलट कर नहीं देखते कि वो पौधे जिंदा भी है या मर गए, क्योंकि केयर नहीं करेंगे तो उखड़ जाएंगे। कितनी बार पशु जैसे गाय है कुत्ता है वो भी निकाल देते हैं, कितनी बार बच्चे भी खेलते खेलते उसके ऊपर पेड़ दे देते हैं। तो लगाना अच्छी बात है लेकिन उसकी केयर करना और भी उससे अच्छी बात है कि कम से कम हम सावधान तो है कि नहीं हमने जो किया है या दूसरों ने भी जो किया है तो हम उसको नष्ट नहीं होने देंगे। तो ध्यान रखिएगा और पेड़ पौधे लगाते रहिएगा। अब आप जुड़ सकते हैं, हम और भी इस पर चर्चा करेंगे लेकिन हम चाहते हैं कि आप जुड़ें और आप अपनी बात को रखें कि आप किस तरह पेड़ पौधों की संभाल कर रहे हैं। एक समय था तब इतने घरों के अपने आंगन में इतने पेड़ पौधे नहीं लगाए जाते थे, एक क्यारी बना दी जाती थी, क्यारी के अंदर पेड़ भी लगा दिया जाता था, कुछ जैसे तुलसी का पौधा तो घर घर में होता ही है, उसके अलावा कुछ जैसे लौकी की है कद्दू की है बेले छोड़ दी जाती थी तो वो अपने छान पर जा कर के उसको सपोर्ट मिलता था और ऐसे फल लगते थे उसके ऊपर साग भाजी। अभी थोड़ा सा चेंज हुआ है पर मैं अपने श्रोता बंधु से बात करूँगी। हेलो
4: हेलो नमस्ते दीदी, मैं धानेरा से सुरेश भाई, आपको और सभी दोस्तों को नमस्कार।
0: जी नमस्ते सुरेश भाई, कैसे हैं आप?
4: बस बहुत अच्छे हैं, हम भी दोस्तों की तरह काम कर रहे हैं और रेडियो सुन रहे हैं और
0: जो रेडियो के रेगुलर लिसनर है हमारे, जो रेडियो मधुबन परिवार के जो सदस्य है वो काम करते हुए भी समय निकाल करके जुड़ते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि इतने बिजी होने के बाद भी रेडियो से प्रेम है इसलिए जुड़ते हैं, बहुत बहुत आभार आपका।
4: सही बात है, और दीदी सिर्फ प्रेम की बात नहीं है, हमें तो बहुत सारा जो ज्ञान मिलता है और बहुत सारी ऐसी चीज मिलती है ना तो हमारे जीवन में जो बहुत सारी काम करती है आने वाले समय में, हर विषय हमारे सामने जो आते हैं तो हम उसे लड़ पाते हैं, इस ऐसे करते हैं।
0: जी बिल्कुल,
4: और बहुत अच्छी बातें हो रही है, तो आज वर्ल्ड पर्यावरण दिन की सभी को शुभकामना। और दीदी मैं कहूँगा कि पहले तो चलो गांव में क्या होते थे, जो खेत होते हैं ना फार्म, उनके जो किनारे पर बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे। अब क्या करते हैं, वो काट देते हैं और जो तार काटा हुई तार का लगा देते हैं, मतलब सभी किनारे पर
0: जी।
4: तो पेड़ काट ही देते हैं, तो वो एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। और हमारे यहाँ तो ठीक ऐसा ही हो रहा है, कोई भी खेत में ज्यादातर 80-90% जो पेड़ काट के ये काटा वाला तार लगा देते हैं, तो क्या करें। वो लोगों को तो पता नहीं है क्योंकि पर्यावरण कितना जरूरी है, पेड़ पौधे कितना जरूरी है दीदी। ये बात
0: है, सही बात है, नॉलेज नहीं है तो कर ही क्या सकते हैं, उनको जागरूक करना जरूरी है।
4: जी जी, मैं दीदी मैं कहूँगा अगर मजाकिया अंदाज में, तो मैं मंत्री या प्रधानमंत्री होता तो क्या करता कि हर एक इंसान पर 5 पेड़ नाम होना चाहिए और 5 पेड़ लगाना जरूरी करना चाहिए, तभी नागरिकता और सरकारी सेवा उनको मिलती। तो मैं तो होता तो ये करता, क्योंकि दीदी बहुत जरूरी है, दीदी
0: बहुत जरूरी है, सही है।
4: हाँ, अभी कितनी गर्मी हो रही है ना दीदी, तो सिर्फ एसी और पंखे पर ही ये लोग चलते हैं, और छाव में कभी कभी छाव में रहते तो बहुत अच्छा जो फील होता है, लेकिन वो छाव लाए कहाँ से, पेड़ पौधे ही कट गए और कोई उगाने की कोशिश भी नहीं करता। छाव तो चाहिए
0: जी,
4: लेकिन पेड़ नहीं उगाते।
0: सही बात
4: ये
0: है,
4: तो मैं बस यही कहूँगा सुनने वालों को कि पेड़ पौधे की तरफ ध्यान दे और पर्यावरण को जरूर बचाए दीदी।
0: जी, बहुत सुंदर। हाँ जी,
4: संकृत सुनाने की कोशिश करता हूँ।
0: हाँ जी, जरूर जरूर।
4: पौधे पर पानी पड़ा, पानी से पौधा पनपा, पनपे पौधे पर पंछी पहुँचे, पंछी पहुँचे तो पौधा चमका। पौधे पर पानी पड़ा, पानी से पौधा पनपा, पनपे पौधे पर पंछी पहुँचे, पंछी पहुँचे तो पौधा चमका। पौधे पर पानी पड़ा, पानी से पौधा पनपा, पनपे पौधे पर पंछी पहुँचे, पंछी पहुँचे तो पौधा चमका। जी जी जी,
0: क्या बात है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, ढेर
4: धन्यवाद,
0: बहुत बहुत आभार सुरेश भाई। तो ये थे सुरेश भाई धानेराव से, बहुत ही सुंदर आपने विषय को भी स्पष्ट किया है, पौधा लगाना क्यों जरूरी है, पेड़ पौधा लगाना क्यों जरूरी है, और अगर आप प्रधानमंत्री होते तो क्या करते। बहुत ही सुंदर आपने अपना संकल्प रखा है और अपनी ख्वाहिश रखी है कि एक एक व्यक्ति 5-5 पौधे ज़रूर लगाता, ऐसा मैं सभी को कहता। बहुत आपका अपने देश के प्रति शुभ भावना है, ऐसी भावना हर एक के अंदर पनपे, हर एक के अंदर बनी रहे। और आइए यहाँ पर एक ब्रेक लेकर के पुनः वापस लौटेंगे इसी विषय पर चर्चा करने के लिए, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।
5: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

0: रुक, ओए रुक ओए रुक, हेलमेट कहाँ है तुम्हारा?
1: सर वो सर
0: ओए क्या सर सर करके सर सरा रहा है भाई? आए ओए तुम्हारे सर के लिए ही बोल रहा हूँ।
2: ओए चेहरे से तो समझदार लगते हो, पढ़े लिखे भी लगते हो। ओए इतनी धूप है धूल है, वो कम से कम अपने चेहरे का ही ख्याल रख लो। ओए ये चमकते हीरे जैसा चेहरा कहीं जीरे जैसा नहीं हो जाए।
1: सर आगे से ध्यान रखूंगा।
2: आगे से तो नहीं, मुझे तो तुम पीछे से निकलने वाले लगते हो हैं?
0: पर मुझसे कोई नहीं बच सकता क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं होलदार। सड़क पहले वो सामने की दुकान से लो हेलमेट फिर गाड़ी।
3: हमेशा बाइक पर हेलमेट पहनकर निकलना चाहिए, इसमें आपका ही भला है। जीवन अनमोल है, इसे यूं ही व्यर्थ न गवाएं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में ज्ञानेंद्र जी उत्तर प्रदेश से जुड़ चुके हैं। नमस्ते ज्ञानेंद्र जी।
1: नमस्ते दीदी, ओम शांति।
0: हाँ जी, ओम शांति। और सुनाइए, कैसे हो आप?
1: बढ़िया हैं
0: जी।
1: आप तो बढ़िया हैं?
0: हाँ जी बिल्कुल, आप सभी की दुआओं से बहुत अच्छे हैं। तो आज का विषय पर्यावरण दिवस पर है। पर्यावरण को बचाना बहुत जरूरी है और आज का टंग ट्विस्टर भी आपको सुना देते हैं। आप कोशिश करना सुनाने की। एक बार मैं सुना रही हूँ, ठीक है
1: जी।
0: पौधे पर पानी पड़ा, पानी से पौधा पनपा, पनपे पौधे पर पंछी पहुंचे, पंछी पहुंचे तो पौधा चमका। आपको कम से कम 3 बार बोल के सुनाना है, अगर ज्यादा सुनाना चाहते तो 5 बार।
1: पौधे पर पानी पड़ा, पानी पड़ने से पौधा चमका, चमके पौधे पर पक्षी आए, पक्षी आए तो पेड़ चमका,
0: पंछी पहुंचे। क्योंकि टंग ट्विस्टर पर एक एक शब्द का ध्यान रखना जरूरी है। टंग ट्विस्टर उसे कहता है कि एक शब्द भी स्लिप नहीं होना चाहिए। पूरी लाइन सुनिएगा। पौधे पर पानी पड़ा, पानी से पौधा पनपा, पनपे पौधे पर पंछी पहुंचे, पंछी पहुंचे तो पौधा चमका।
1: जी, पौधे पर पानी पड़ा, पानी से पौधा चमका,
0: पनपा,
1: पनपा
0: जी,
1: पौधे पर पक्षी आए, पक्षी आए तो पौधा चमका, पानी पड़ने से पौधा चमका, पनपा, पनपे पौधे पर पक्षी आए, पक्षी आए तो पौधा चमका, पानी पड़ने से पौधा पनपा, पनपे पौधे पर पक्षी आए, पक्षी आए तो पौधा चमका।
0: चलिए, शब्द तो बहुत इधर उधर स्लिप हुए, लेकिन बहुत अच्छी कोशिश की। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती जी। और आज पर्यावरण दिवस है, कैसे क्या कर रहे हैं आप, कैसे मना रहे हैं इस दिन को?
1: अभी तो हम धान की तैयारी चल रही है।
0: आप तो वैसे ही पूरा ही प्रकृति का ख्याल रखते हैं, आप तो खेत में काम करते हैं ना?
1: जी जी बिल्कुल
0: जी। तो आप किस तरह पौधों की केयर करते हैं?
1: पौधे को पहले लगा के फिर उसकी देखभाल करनी पड़ती है, समय समय पर पानी देना पड़ता है, बड़ा हो जाता है फिर उसकी देखभाल करने की जरूरत नहीं पड़ती
0: जी।
1: और हाँ, तो सबको चाहिए मगर पौधा लगाना कोई नहीं चाहता। पौधा लगा तो खेत जो जो, जो जगह घेरेगा कम होगी, इस वजह से ऑक्सीजन भी सबको चाहिए मगर पौधा नहीं चाहिए किसी को।
0: सही बात है,
1: सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। कोरोना में ऑक्सीजन की कमी हुई तो कितना प्रॉब्लम हुई
0: जी, बिल्कुल।
1: लाइन में लग लग के सिलेंडर लिए, जब तो कह भी रहे थे लोग कि हाँ पेड़ लगाएंगे, उसके बाद फिर सब नॉर्मल हो गया तो सब भूल जाते हैं।
0: सही है,
1: जब कि सबको पर्यावरण से हम करेंगे पर्यावरण की, तो पर्यावरण हमें ऑक्सीजन देगा, छाया देगा, बहुत सारे फायदे हैं। लकड़ी मिलती है पौधों से, तो बहुत फायदे होते हैं
0: जी।
1: ठीक है दीदी।
0: हाँ जी, आप तो किसान भाई है तो आप तो केयर करते हैं, प्रकृति का ख्याल रखते हैं, बहुत अच्छा। तो बहुत बहुत आभार ज्ञानेंद्र जी, बीच बीच में जुड़ते रहिए, ठीक है?
1: ओम शांति जी, वही बता रहा हूँ, किया था कोशिश पर।
0: हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू। हाँ जी जी, ओम शांति। तो ये थे ज्ञानेंद्र जी उत्तर प्रदेश से। आप खुद किसान है तो इस नाते प्रकृति का ध्यान तो रखते ही हैं, और बहुत ही सुंदर आपने फिर भी विषय को स्पष्ट किया है। तो कहने का भाव यही है मेरे प्यारे श्रोता बंधु, प्रकृति प्रेमी बनिए। खैर, आजकल तो हम देखते हैं जगह जगह हमारी बहनें भी कम नहीं हैं, छोटे छोटे गमले ला करके घर को इतना सुसज्जित करती है, इतना अच्छा सजाती, अच्छे अच्छे पौधे लगा करके। लेकिन एक समय था कि हम घरों में इतने गमले नहीं रखते थे, मोहल्लों में पेड़ पौधे हुआ करते थे, बड़े बड़े पेड़, जहाँ आज भी हम गीत गाते ना, सावन के, भादरवा के, घनघोर के, तीज के, तो ऐसे ही झूला नहीं डलता था, जगह जगह पेड़ हुआ करता था, पेड़ों पर झूले डले करते थे। थोड़े से गर्मी लगी नहीं तो पेड़ वो हवा देता था, पेड़ के नीचे बैठते थे लोग, राहगीर जो चलते चलते रास्ते में। इसलिए घरों में इतने पौधे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि घरों में तो बहनें जागरूक हो चुकी है जो गमले ला करके लगा रही है, लेकिन अब बाजार में जो बड़े बड़े पेड़ हैं वो कटते जा रहे हैं। जैसे कि हमारे एक हमारे रेडियो मधुबन परिवार के सदस्य शायद सुरेश भाई ने कहा है कि चौड़ी चौड़ी सड़कें बनने लग गई है, इसलिए पहले वन वे हुआ करता था, अब तो 4 लाइन 6 लाइन बन गई है, सड़क भी चौड़ी हो गई है, तो बड़े बड़े पेड़ भी ख़त्म हो रहे हैं। बिल्कुल सही कहा है। देखिए जनसंख्या बढ़ रही है वो बात अलग है, लेकिन फिर भी बड़े बड़े पेड़ों का होना बहुत ज़रूरी है, बहुत आपदाओं से ये पेड़ बचाते हैं। छोटे छोटे तो जल्दी गिर जाते हैं, लेकिन बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं वो अड़िग होकर खड़े रहते हैं, वो कितनी आपदाओं से बचाते हैं। और बैठे आप पेड़ के नीचे अच्छा लगता है, पहले बचपन याद कर लीजिए कि कैसे बैठा करते थे पेड़ के नीचे, थोड़ा सा चलते थे, गर्मी लगती थी तो पेड़ के नीचे बैठ जाते थे, ठंडा ठंडा पानी पी लेते थे, पहले प्याऊ भी लगा ही जाते थे, कोई भी बहन या भाई ऐसे ही पेड़ के नीचे पानी के मटके भर के बैठे रहते थे कि कोई आएगा राहगीर उनको पानी भी पिलाएंगे, थोड़ी देर वो या विश्राम भी खाएंगे फिर जाएंगे। कितनी अच्छी भावनाएं हुआ करती थी, ये कहाँ गई है भावनाएं? आजकल तो प्याऊ तो ख़त्म ही होता जा रहा है। खैर आजकल तो जहाँ जाओ पैसे दो बिस्लेरी की बोतल खरीद लो, पहले ऐसे पैसे नहीं, प्याऊ वाले ठंडा ठंडा पानी का मतलब मटके का पानी पिलाता था, ठंडा ठंडा पानी जिसको रखना हो, किसी ने 1 रुपये रख दिया, किसी ने नहीं रखा, मांगना बिल्कुल नहीं होता था। समय के साथ बदलाव आया है, तो पेड़ पौधे लगाइएगा, बड़े बड़े पेड़ जो लगा रहे हैं उसकी भी केयर करिएगा, अनावश्यक उसको काटिएगा मत। सूख गए हैं तो बात अलग है, ताज़ा है हरा है उसको क्यों काटना है, लेकिन कब कौन काट के ले जाता है पता ही नहीं चलता है। और प्रकृति में पेड़ पौधे तो है ही है, पहाड़ भी प्रकृति के अंदर ही आते हैं, ये पहाड़ है ये भी किसी से कम नहीं है, ये भी बहुत बड़ी बड़ी आपदाओं से बचाते हैं, इसलिए पहाड़ों को भी तोड़िए मत। आजकल इतने घर बनने लग गए हैं कि पहाड़ तोड़ तोड़ करके घर बनाने लग गए हैं। अरे घर आप चौड़े चौड़े घर बनाना ज़रूरी नहीं है, आप फ्लैट बना दीजिए, ऊपर पर बना दीजिए, मंजिल ऊपर खींच लीजिए, लेकिन पेड़ पौधों की सुरक्षा करिए और पहाड़ों को मत काटिए। पहाड़ों का आबू के देख लीजिए, कितने पहाड़ जंगी पहाड़ हुआ करते थे, आजकल तो पहाड़ भी छोटे छोटे, और देखिए आप सड़क पर जाइए, यहाँ से उदयपुर तक ही चले जाइए, बीच में सारे पहाड़, बहुत सारे पहाड़ टूट चुके हैं। जो एक समय ऐसा था कि दोनों तरफ पहाड़ थे और बीच में बस चलती थी, कहीं कुछ दिखाई नहीं देता था, ऊपर नज़र डालो तो पहाड़ ही दिखाई करते थे, और अब वो पहाड़ वो नज़ारा है ही नहीं। तो प्रकृति के पाँचों तत्व की रक्षा करिए, जल है तो जल का आप बूंद बूंद बचाइए। कितनी बार क्या है कि थोड़ा सा पानी चाहिए, फुल फास्ट नल खोल देंगे, वो पानी भर तो गया लेकिन अब बह रहा है, तो ऐसा भी नहीं करना है, चाहिए उतना खोलिए भरिए और वापस बंद करिए। नल का भी ध्यान रखिएगा, घरों में नल लगे होते हैं जगह जगह पर, वो थोड़े से खराब होने लगते, ढीले होने लगते हैं, तो कितना ही समय चला जाता है, ध्यान ही नहीं देते, वो बूंद बूंद टपकता रहता है, कितनी बार एकदम बारीक धार बह करके वो निकलता रहता है पानी, और ध्यान नहीं देंगे कि भाई इस टंकी को वापस ठीक करवानी है या इस नल को ठीक करवाना है, तो वो भी ध्यान दीजिएगा। कहते हैं ना प्रकृति की रक्षा हम करेंगे तो प्रकृति भी हमारी रक्षा करेगी, इसलिए हर एक चीज़ का ध्यान रखना है। अब लाइट है, देखिए ऊर्जा को बचाना भी बहुत ज़रूरी है, अनावश्यक लाइट जल रही है, हम आराम से बैठे हुए हैं, गप्पे मार रहे हैं, बड़ी बड़ी लाइटें 4-5 चालू कर रखी है, भाई एक लाइट से भी काम हो सकता है ना, तो हर चीज़ को बचाना है। पेड़ पौधों को तो बचाना ही है, लेकिन पेड़ पौधों के साथ प्रकृति के पाँचों तत्व के जिम्मेदारी उठानी है, उनके केयर करनी है, उनके सुरक्षा की जिम्मेदारी उठानी है, तो प्रकृति के पाँचों तत्वों का ध्यान रखिए, तो प्रकृति के पांचों तत्व भी हमारा ध्यान रखेंगे। ठीक है, पहले याद करिए, एक समय ऐसा था जगह जगह पर नदियां थी, तालाब थे, बावड़ियां थी, लोग घरों में कम नहाते थे और यहाँ नहाने का आनंद लेते थे, कोई तालाब जा रहे, कोई नदी में नहा रहे, तो कोई कुएं का पानी जो बेल खींचता था, चड़स चलती थी, आजकल तो खैर बहुत समय से तो मोटर से ही पानी चलता है, तो कोई किसी को मना नहीं करते, किसी के भी खेत में जा करके नहा लो, कोई मना नहीं करते, इस तरह कुएं का पानी निकलता तो कोई मना नहीं करता, और लोग वहाँ नहा करके आते थे, ताकि बहते पानी में वो खेतों में भी चला जाता था और बहते पानी में नहा लेते थे, तो एक्स्ट्रा पानी बर्बाद नहीं होता। और अब तो देखिए ठीक है भाई, नहीं जाते हैं कोई बात नहीं, कोई नहीं नहाने देते वो भी कोई बात नहीं, लेकिन घर में भी जहाँ एक बाल्टी की ज़रूरत है वहाँ चार चार बाल्टी एक एक जना यूज़ कर रहा है, तो पानी की भी केयर करिए, हर चीज़ की केयर करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तभी सही मायने में हम पर्यावरण का ख्याल रख पाएंगे। ध्वनि प्रदूषण भी अच्छी बात नहीं कि आप जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, हॉर्न बजा रहे हैं, अरे हमारे भारत देश में ऐसे ऐसे राज्य भी है जहाँ हॉर्न अगर आपने बजा दिया तो आपके पेनल्टी लग जाएगी, 2,000 रुपये आपसे रखवा दिया जाएगा। और यहाँ अनावश्यक भी हॉर्न बजाते रहते हैं, सामने कोई नहीं है तो भी हॉर्न बजा करके ध्वनि प्रदूषण फैलाता है, तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है। इसलिए कहा जाता है धरती मुस्कुराएगी जब हरियाली बढ़ाएंगे, सुनी राहों पर हम नए पौधे लगाएंगे, स्वच्छ हवा निर्मल जल का होगा सुंदर उपहार, आओ मिलकर पर्यावरण का मान बढ़ाएंगे। तो बस यही कहना चाहूँगी लास्ट में मैसेज कि एक पेड़ लगाना केवल पौधा रोपना नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए उम्मीद बोना है। इसलिए जैसा हम करेंगे हमें देखकर और करेंगे, तो हम अगर पेड़ पौधों की प्रकृति की केयर करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी भी सीखेगी, क्योंकि वो भी देख रही होती है तो वो भी जागरूक होगी और इसी तरह केयर करेगी। तो आइए अब आज के विषय को यही समाप्त करते हैं और आज के टंग ट्विस्टर की तरफ बढ़ते हैं। फिर से आज का टंग ट्विस्टर है, पौधे पर पानी पड़ा, पानी से पौधा पनपा, पनपे पौधे पर पंछी पहुँचे, पंछी पहुँचे तो पौधा चमका। यह आपको अधिक से अधिक 5 बार कम से कम 3 बार बोल के सुनाना है। नंबर है रेडियो मधुबन के 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आप टंग ट्विस्टर सुना सकते हैं। अब यहीं पर फिर से एक गीत सुनेंगे, उसके बाद पुनः आपसे रूबरू होंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

मैं अशोक खोसला बोल रहा हूँ और मैं रेडियो मधुबन सुनने वालों सभी श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ सबको। वो सबको बहुत बहुत खुश गवार गुजरे, सब बहुत खुश रहें और आगे भी प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलें, यही शुभकामना है। धन्यवाद। रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नई नई व्यंजन सिखाने का। तो इसमें मैं कुछ दिनों से आपको लगातार अचार ही बनाना सिखा रही हूँ। आज भी आपको अचार बनाना सिखाने जा रही हूँ, काबुली चने का। ठीक है, तो सामग्री आप ले लीजिएगा। काबुली चना लेना है। अगर 1 किलो चना ले रहे हैं तो आप पाव भर कच्ची केरी भी लीजिएगा। ठीक है, फिर आप लीजिए सौंफ, मेथी, राई की दाल, और हींग लीजिएगा, नमक, मिर्च मतलब मिर्च पाउडर, और हल्दी पाउडर, सरसों का तेल। तो ये हो गई सामग्री, जिसको मैं फिर से दोहरा रही हूँ। काबुली चने लीजिएगा, 1 किलो काबुली चने ले रहे हैं तो पाव भर लीजिएगा केरी। ठीक है, फिर आप लीजिएगा मेथी दाने, सौंफ, राई की दाल लेनी है आपको, आप लीजिएगा नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, सरसों का तेल और हींग। अब बनाने का तरीका भी और छाछ भी लेना है। ठीक है, बनाने का तरीका आपको सिखा रही हूँ। काबुली चने की धुलाई कर लीजिए। ठीक है, धुलाई करने के बाद अब इन चनों को आप 24 घंटे के लिए छाछ में भिगो के रख दीजिए। 24 घंटे के लिए छाछ में भिगो के रखना है इन चनों को। केरी की धुलाई कर लीजिए। धुलाई करने के बाद केरी को काट लीजिए, गुठली समेत काटना है। ठीक है, फिर अंदर से वो गुठली निकाल देनी है, लेकिन छोड़ा नहीं निकालना है। 2 गुठलियाँ होती है बीच में, वो सब्जी बनाने का मैंने आपको सिखाया था, उससे B12 पूरा होता है, पूर्ति होती है B12 की। और तो वो वाली अंदर से वो गुठली निकाल दीजिए और इन फाँकों को अच्छी तरह पोंछ लीजिए। ठीक है, ज़्यादा बड़ी नहीं काटनी है, क्योंकि काबुली चने का अचार है तो केरी के फाँके भी थोड़ी छोटी हो, बहुत बड़ी नहीं। ठीक है, और सौंफ, राई की दाल ये तो हमने ली है। मेथी को थोड़ा सा सेक लीजिए, थोड़ा सा ही सेकना है, 2-3 पलटी मारनी है, उसके बाद गैस बंद कर दीजिए। अब आप क्या करेंगे, चने आपके 24 घंटे गल गए, अब इनको निकाल दीजिए छाछ में से। छाछ में से निकालने के बाद अब इनको आप कोई सूती कपड़े पर, साड़ी पर, किसी पर भी आप सुखा दीजिए। ठीक है, ये अच्छी तरह सूख जाने चाहिए, तो इसको फिर से 24 घंटे धूप में नहीं, ठीक है, धूप में नहीं सुखाना है, छाँव में ही इसको सूखने दीजिए। इसका पानी का, छाछ का रेसा भी अंदर नहीं रहना चाहिए, इतना आप सुखा दीजिए 24 घंटे। 24 घंटे में नहीं सूखते हैं तो 30 घंटे लगाइए। लेकिन सुखाने के बाद आप क्या करेंगे, अब इन चनों को आप इकट्ठा कर लीजिए एक बड़े बर्तन में। फिर केरी की फाँके आपने काट रखी है, अच्छे से कपड़े से पोंछ ली है, वो आप इनके अंदर डाल दीजिए। छोले के

डाल दीजिए। अब आप मसाला डाल दीजिए, नमक डाल दीजिए, लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए, हल्दी पाउडर डाल दीजिए, फिर आप राई की दाल डालिए, सौंफ डालिए, मेथी डालिए, ये सब डाल दिया। तेल गरम करिए, सरसों का तेल गरम हो जाए तो तेल थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए, फिर इसमें हींग डालिए, अच्छी तरह हिलाइए थोड़ा सा तेल में, ठीक है। ज़्यादा तेल गरम किया है उसमें से थोड़ा निकाल दीजिए, उसमें हींग पाउडर डाल दीजिए और अब उसको ठंडा होने दीजिए। जब एकदम ठंडा हो जाए तेल, तो फिर ये मसालों में डाल दीजिए हींग वाला तेल, ठीक है। अच्छी तरह हिला दीजिए, काबुली चना, केरी और ये सारे मसाले हमने डाले हैं, अच्छी तरह हिला दीजिए। हिलाने के बाद एक कांच की बर्नी में भर दीजिए और ऊपर से जो ये तेल हमारा है एक्स्ट्रा ठंडा हो गया है उसको डालिएगा। मसाला नीचे डूब जाए, तेल ऊपर तैरता रहे, आपको इस तरह रखना है साल भर संभाल करने के लिए। तो आप शुरुआत में तेल थोड़ा कम डालिए, क्योंकि रात बीच में ये क्या है, मसाला बैठ जाता है, तेल ऊपर आ जाता है। अगर बहुत सारा तेल अभी से आप तेल ज़्यादा डाल देंगे, मसाले के ऊपर तैरा देंगे, तो फिर वो बोतल से बाहर निकलेगा या इतना तेल ऊपर आ जाएगा कि फिर आपको लगेगा कि अरे ये हमने क्या किया। फिर उसको वेस्ट तो नहीं करेंगे, वो तेल निकाल करके फिर सब्जी का छोक है या किसी अन्य में यूज़ करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप पहले आधा भरिए तेल, आधा डालिए रात के बीच, देखिए, क्योंकि 2-4 दिन कुछ नहीं बिगड़ेगा, ताज़ा ताज़ा अचार है भाई। तो रात के बीच में मसाला कितना बैठा है, तेल कितना ऊपर आया है देखिएगा, उसके बाद उस अनुमान से डालिएगा ताकि वो मसाला नीचे और तेल ऊपर रहे। तो इस तरह छोले का अचार बनाया जाता है, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा ये अचार, आप बना करके ज़रूर खाइएगा। फिर से विधि दोहरा रही हूँ, छोले को पूरी रात, क्या मतलब, आपको 24 घंटे भिगो के रखना है छाछ में, धुलाई करने के बाद। पहले पानी से धुलाई कर लीजिए, फिर भिगोइए, ठीक है। अब ये भीग गए हैं, उसके बाद छाछ निकाल दीजिए और छोले को सुखा दीजिए सूती कपड़े पर छाँव में। जब अच्छी तरह सूख जाए तो एक भगोने में भर दीजिए छोले। अब इसी में केरी काट करके स्वच्छ कपड़े से उसको अच्छी तरह पोंछ करके केरी भी डाल दीजिए। अब आप नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और आपको डाल देना है सौंफ, मेथी, राई की दाल, ये सब डाल के हिलाना है। अब आप तेल गरम करिए, तेल थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो हींग पाउडर डाल दीजिए, और फिर पूरा ठंडा हो जाए तो इस तेल को आप छोले और केरी में डालिए भगोने में, और सारा मसाला और ये छोला केरी मिक्स करिए। मिक्स करने के बाद एक कांच के या चीनी के बर्नी में भर दीजिएगा और फिर तेल दूसरा डाल दीजिएगा। और ध्यान रखना है तेल तरमा चाहिए, मसाला नीचे बैठा हुआ चाहिए, तो आपका फिर साल भर क्या 2 साल भी अचार का कुछ नहीं बिगड़ेगा, ठीक है। तो अपने इष्ट देव को भोग लगा करके ही छोले का अचार खाइएगा। तो ये हुआ आज का स्वादिष्ट अचार, और अब फिर से एक ब्रेक लेकर के लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: मुझे लड़का ही चाहिए।
1: माँ माँ माँ माँ माँ माँ, अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई, और उनसे पहले ही आप सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ मुझे जी लेने दो, अपनी कसम मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। माँ मेरी स्कूल फीस की चिंता मत करना, मैं भैया की किताबों से अपने आप ही पढ़ लिख जाऊंगी। और हाँ पापा से कहना मेरे दहेज की चिंता ना करे, मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी, तो आप इस ऑपरेशन पर भी खर्चा मत करना। मैं ही भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा मुंह देखे।
2: माँ अब तो बस करो।
3: बहू क्या सोच रही हो, घर चले, नन्ही परी के स्वागत की तैयारियां भी तो करनी है ना। चलो
4: शोक को कवर ना बनाए, खुशी खुशी बिटिया को दुनिया में लाए।
5: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में जैसा कि टंग ट्विस्टर आपको बोल के सुनाया है, तो हमारे तीन बहनों ने टंग ट्विस्टर बोल के भेजा है वॉइस मैसेज, उनका सुन लीजिए। लीला जी कपासन से।
6: पौधे पर पानी पड़ा, पानी से पौधा पनपा, पनपे पौधे पर पंछी पहुंचे, पंछी पहुंचे तो पौधा चमका। पौधे पर पानी पड़ा, पानी से पौधा पनपा, पनपे पौधे पर पंछी पहुंचे तो पौधा चमका। पौधे पर पानी पड़ा, पानी से पौधा पनपा, पनपे पौधे पर पंछी

0: पहुंचे तो पौधा चमका, पौधे पर पानी पड़ा, पानी से पौधा पनपा, पनपे पौधे पर पंछी पहुंचे तो पंछी पहुंचे तो पौधा चमका।
1: बहुत सुंदर। अब भगवती जी का सुनेंगे।
2: पौधे पर पानी पड़ा, पानी से पौधा पनपा, पनपे पौधे पर पंछी पहुंचे तो पौधा चमका। पौधे पर पानी पड़ा, पानी से पौधा पनपा, पनपे पौधे पर पंछी पहुंचे तो पौधा चमका। पौधे पर पानी पड़ा, पानी से पौधा पनपा, पनपे पौधे पर पंछी पहुंचे तो पौधा चमका।
1: तो आप तीनों के लिए ढेर सारी तालियां। बहुत ही सुंदर आप। टंग ट्विस्टर, आपने मैसेज के द्वारा, वॉइस मैसेज के द्वारा भेजा है, बहुत बहुत आभार। और बाकी आज के कार्यक्रम तो आपने सुने ही हैं, काफ़ी अच्छे रहे हैं। सुंदर सा जो विचार दिया है उस पर ज़रूर गौर करेंगे। नुस्खे भी बहुत ही अच्छे दिए हैं, कैसे किशमिश फ़ायदा करती है गर्मी के मौसम में विशेष करके। और खुशनुमा जीवन की बातें भी बहुत ही अच्छी हुई। बस हम तो यही कहना चाहेंगे कि पर्यावरण का ज़रूर ख्याल रखिएगा। और जो आपको काबुली चने का अचार सिखाया है, ज़रूर बना करके खाइएगा, ठीक है? और चिंता मत करिए, बच जाए तो पूरे साल भर का सवाल है। रखिएगा सहेज कर, मेहमान आएंगे तो उस समय भी काम आएगा। और आज का टंग ट्विस्टर बड़ा अच्छा था। मैं आज का टंग ट्विस्टर अब हमारे श्रोता बंधुओं ने तो सुनाया ही है, मैं भी बोल के सुना देती हूँ। पौधे पर पानी पड़ा, पानी से पौधा पनपा, पनपे पौधे पर पंछी पहुँचे तो पौधा चमका। पौधे पर पानी पड़ा, पानी से पौधा पनपा, पनपे पौधे पर पंछी पहुँचे तो पौधा चमका। पौधे पर पानी पड़ा, पानी से पौधा पनपा, पनपे पौधे पर पंछी पहुँचे तो पौधा चमका। पौधे पर पानी पड़ा, पानी से पौधा पनपा, पनपे पौधे पर पंछी पहुँचे तो पौधा चमका। पौधे पर पानी पड़ा, पानी से पौधा पनपा, पनपे पौधे पर पंछी पहुँचे तो पौधा चमका। हमने भी देखे, पांच बार बोल के सुनाया है, तो हम अपने लिए भी तालियां बजाते हैं। बाकी जुड़े हैं हमारे श्रोता बंधु में सुरेश भाई जोटाना से, कंचन भाई मंडाली से, अलका जी काबरा कप्पासन से, लीला जी चित्तौड़गढ़ से, कमला जी भिलवाड़ा से, सुरेश भाई धानेराव से, ज्ञानेंद्र भाई उत्तर प्रदेश से, भगवती जी गुजरात तारापुर से। तो आप सभी ने बहुत ही सुंदर, कंचन भाई ने नहीं सुनाया है टंग ट्विस्टर, उनके अलावा सभी ने टंग ट्विस्टर बोल के सुनाया। और आप जो कंचन भाई है, सुरेश भाई धानेराव से, सुरेश भाई जोटाना से और ज्ञानेंद्र भाई, आप सभी ने विषय को भी स्पष्ट किया है बहुत ही अच्छी तरह, इसके लिए भी ढेर सारी तारीफ। आज का मीठा मोती है, पहाड़ जैसी विपत्ति को दूर करने के लिए सिर्फ थोड़ा सा साहस ही पर्याप्त है। अब मैं आपको पर्यावरण पर प्यारी सी कविता सुनाऊंगी, आप लेंगे कविता का आनंद और मुझे देंगे इजाजत। कल क्या है? कल शनिवार है, कल अंताक्षरी कार्यक्रम रहेगा और कल की थीम रहेगी भजन, ठीक है? आध्यात्मिक गीत, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप भाग लीजिएगा और अंताक्षरी में ज़रूर जुड़िएगा। और तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, गणी खम्मा सा। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM। धरती माँ का संदेश सुनो, पेड़ों का भी मान करो, हरी भरी हो हर एक बगिया, ऐसा सुंदर काम करो। नदियाँ निर्मल बहती जाए, पंछी मधुर तराने गाए, स्वच्छ हवा का उपहार मिले, स्वच्छ हवा का उपहार मिले, मिलकर ऐसे वृक्ष लगाए। एक एक पौधा जब बढ़ेगा, जीवन में उल्लास चढ़ेगा, हरियाली का दीप जलेगा, सुख का नया सवेरा खिलेगा। आओ मिलकर प्रण ये ले, आओ मिलकर प्रण ये ले, प्रकृति का सम्मान करे, धरती को स्वर्ग बनाए हम, पर्यावरण का ध्यान करे, धरती को स्वर्ग बनाए हम, पर्यावरण का ध्यान करें।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का स्वागत है। जीना इसी का नाम है। कितना सुंदर बात है ना, अगर जीवन में कोई मोड़ ऐसा आए और हमें पता चले कि मुझे ऐसा ही जीना है, और इसी को कहते हैं कि जीना इसी का नाम है। कुछ ऐसे ही अनुभवों को लेकर के हमारे बीच में आए हैं आज के हमारे मेहमान ओंकार चंद शर्मा जी। आप ब्रह्म कुमारीज के मुख्यालय शांतिवन में 2014 से समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। एक योगी जीवन जीते हुए एक कार्य को करना, कैसा वो फर्क पड़ता है और किस मोड में उनको ऐसा लगा कि मुझे यही जीवन जीना है, चलिए जानते हैं। और उससे पहले हम स्वागत करते हैं ओंकार जी आपको जीना इसी का नाम है इस कार्यक्रम में और रेडियो मधुबन में। नमस्कार।
1: नमस्कार। ओम शांति।
0: ओम शांति। भाई जी, हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपका जो बचपन रहा है, आप कहाँ से और आपका पारिवारिक जीवन कैसा था और आपने क्या पढ़ाई किया और कब आपको ये महसूस हुआ कि मुझे आध्यात्मिक पढ़ाई भी करनी चाहिए?
1: मेरा लौकिक जन्म हिमाचल प्रदेश में एक छोटा सा कस्बा है, जिला है बिलासपुर, वहाँ पर 1980 में हुआ। तो मैं वहाँ रहता था। हमारा परिवार एक हिंदू ब्राह्मण परिवार है जहाँ पर सभी के अंदर भक्ति के संस्कार थे। बचपन से हम लोग भी नित स्नान इत्यादि करके बड़े प्यार से, घर में एक कोना था जहाँ पर सभी देवी देवताओं के मूर्तियाँ या उनकी पिक्चर्स वगैरह रखी होती थी, मंदिर की तरह था। वहाँ जाकर हम सब पूजा करते थे, अगरबत्ती जलाते थे। और बचपन से ही मेरा शिव के प्रति ज़्यादा प्यार था। मैंने शिव पुराण सुन रखा था, तो शिव पुराण सुनने के बाद मुझे लगा कि शिव ही सबसे बड़े हैं, तो उनको ही मन याद करता था। कभी कभी सोमवार का व्रत भी रख लेता था। तो बचपन बड़ा प्यारा बचपन था। हमारे घर में मेरे पिताजी, जब 93 में मैं 13 साल का हुआ, तो वो ब्रह्मा कुमारी आश्रम के संपर्क में आए और वहाँ पर बहनों ने उन्हें इनवाइट किया तो वो जाने लगे। तो जैसे ही वो जाने लगे, उन्हें बड़ा अच्छा लगा। तो उन्होंने जो नियम मर्यादाएं वहाँ बताई जाती थी कि आपका भोजन शुद्ध होना चाहिए, शाकाहारी होना चाहिए, तामसिक नहीं होना चाहिए, वो सारी उन्होंने घर पे भी घर वालों को, मदर को समझाने की कोशिश की कि आज से हम ये नॉनवेज और तामसिक भोजन वगैरह नहीं लेंगे। तो घर वालों ने कहा ठीक बात है, पर उन्हें थोड़ा लगा कि ये कहाँ जा रहे हैं, क्या इनमें चेंज हो गया। पिताजी मुझे भी सुनाते थे, मैं 9th क्लास में पढ़ता था, पर मुझे बड़ा अट्रैक्टिव लगा वो ज्ञान जो वो सुनाते थे कि वहाँ पर परमात्मा का बड़ा अच्छा ज्ञान दिया जाता है और परमात्मा का इस सृष्टि पर अवतरण हो चुका है और वो आकर फिर से सतयुगी सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं और ये दुनिया बदलने वाली है। तो जो वो सुनाते थे मुझे बड़ा अट्रैक्टिव लगता था। तो मैंने इच्छा व्यक्त की, अभी 3-4 दिन ही हुए थे, कि मैं भी चलता हूँ। तो उन्होंने कहा कि अगर वहाँ जाना है तो ये नियम है, अगर तुम इनको फॉलो करोगे तो मैं लेके जाऊँगा। पर मेरे अंदर इतनी इच्छा थी, मैंने कहा मैं सब फॉलो करूँगा, मुझे लेके चलो। 9th क्लास में पढ़ता था, बहुत छोटा था, लेकिन भगवान को जानने की इच्छा भी थी और भगवान का जो परिचय मैंने पिताजी से सुना कि वो निराकार हैं और परमात्मा शिव हैं, तो वो मुझे थोड़ा अट्रैक्टिव भी लगा और अच्छा भी लगा। तो मैंने इच्छा जाहिर की कि मैं जाऊंगा और मैं गया। मेरी सिस्टर भी साथ में गई। तो हमें पहले दिन ब्रह्मा कुमारी आश्रम में बैठा दिया गया। योग चला हुआ था, रेड लाइट थी। तो वहाँ पर क्या हुआ कि रेड लाइट में बड़े अच्छे अच्छे आध्यात्मिक भजन गीत चल रहे थे। तो मैंने देखा वहाँ का वातावरण इतना अट्रैक्टिव है और वो गीत इतने पावरफुल हैं जो दुनिया में कभी सुने नहीं थे, और उसमें परमात्मा के प्रति इतना प्यार, इतनी श्रद्धा, इतना सम्मान। तो मैं उन गीतों से बड़ा प्रभावित हुआ और साथ में वहाँ का जो वातावरण था, सब लोग योग कर रहे थे, किसी ने ज्ञान नहीं सुनाया पहले, केवल 1 घंटा मैं वहीं बैठा रहा पिताजी के साथ। तो मुझे लगा कि ये चीज़ अच्छी है, जहाँ मुझे आना चाहिए वो चीज़ यही है। फिर धीरे धीरे उन्होंने हमें 7 डेज का कोर्स कराया। तो कोर्स करने के बाद फिर निश्चय हुआ कि सचमुच ही इस संस्था में जुड़ने से हमें फ़ायदा होने वाला है और यहाँ आकर हमारे अंदर जो बुराइयाँ हैं, जो विकार हैं, वो बड़ी आसानी से छूट सकते हैं, ऐसा ज्ञान यहाँ दिया जा रहा है। साथ में जो ब्रह्मा कुमारी बहनें थी वहाँ जो रहते थे, उनका व्यवहार इतना अच्छा था, इतने स्नेह से, इतने सम्मान के साथ वो बात करते थे, तो उसने भी हमें बड़ा प्रभावित किया। घर में मुझे छोटा बच्चा था तो लोग ओंकार ही बोलते हैं, वहाँ ओंकार आश्रम में जाने लगा तो वहाँ ओंकार जी तो क्या, वो तो भाई जी बोल के बात करते थे। मैंने कहा यहाँ तो बड़ा सम्मान मिलता है भाई, सब लोग बड़े रिस्पेक्ट से एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं और अच्छे लोग हैं, और ऐसा लगा इन लोगों से जुड़कर इन जैसा मुझे भी बनना चाहिए।
0: इस बीच में आपकी लौकिक पढ़ाई का क्या हुआ? हाँ, लौकिक पढ़ाई की उम्र में तो आप स्कूल में जा रहे होंगे।
1: जी जी जी, मैं नाइन्थ में पढ़ता था, पढ़ाई में मैं पहले एवरेज था, लेकिन जैसे ही मैंने वहाँ मेडिटेशन ज्वाइन किया तो मेडिटेशन और राजयोग के से मेरे अंदर इतना अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट आया कि मुझे सेल्फ मोटिवेशन मिलने लगी कि मुझे पढ़ाई में टॉप करना चाहिए, मुझे कुछ बन के दिखाना है। और ये ना लोग कहें कि ये भगत बन गया है, वहाँ जा रहा है और अब इसने दुनिया भी छोड़ दी, नहीं, तो मुझे पढ़ाई में टॉप करना है। और उसका रिजल्ट आया, मेडिटेशन से मेरी मेमोरी पावर बढ़ी, कंसंट्रेशन पावर बढ़ी, मेरी फोकस करने की पावर बढ़ी और मेरी कंपनी अच्छी हो गई। जो लोग बैड कंपनीज में आके, बैड फ्रेंड्स के आके बिगड़ जाते हैं, वो उससे मैं बच गया और अच्छे लोगों की संपर्क में रहा, तो उससे ये बेनिफिट मेरी पढ़ाई का हुआ कि मैंने पढ़ाई में टॉप करना स्टार्ट कर दिया। और 3-4 साल 9th, 10th, +1, +2, +2 के बाद मेरी सिलेक्शन इंडिया के टॉप 10 कॉलेजेस में से एक NIT कुरुक्षेत्रा में हो गई।
0: अच्छा।
1: और वहाँ भी टॉप की ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग उस वक्त मुझे मिली, स्कॉलरशिप भी मिलता था, तो मुझे तो बहुत बेनिफिट हुआ मेडिटेशन करके। चलो शांति मिली, ये तो एक कॉमन चीज़ है, सबको मिलती है, खुशी मिली, वो भी मिली, पीस ऑफ माइंड हो गई। लेकिन जो दुनियावी लाइफ में मेरा जो एक प्रगति हुई, एक लाइफ अच्छी बन गई, एक लाइफ का गोल मिल गया, उसका भी बेनिफिट हुआ। तो उसका असर ये हुआ कि जो मेरे साथ दूसरे फ्रेंड्स थे, उनके पेरेंट्स मुझे कहते थे कि हमारे बच्चों को भी आश्रम लेके जाया करो, ताकि वो जैसे आप इंजीनियर बन गए, आप पढ़ाई में अच्छे हो गए हैं, तो वो भी अच्छे हो जाए। तो वो खुद मुझे कहते थे कि हमारे बच्चों को भी आश्रम के साथ जोड़ो और वहाँ जाने से उनको भी बेनिफिट मिलेगा। तो एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर सिटी में बना, सबको लगा कि ब्रह्मा कुमारीज में जो बच्चे जाते हैं वो उनकी सिलेक्शन ऐसे टॉप के कॉलेजेस में भी हो जाती है और वो कुछ बनते भी हैं। नहीं तो लोगों में ये मिसकंसेप्शन है कि जो धर्म से जुड़ता है वो पलायन कर जाता है, वो सब छोड़ देता है। लेकिन मेरे अंदर ये लक्ष्य था और जो वहाँ आते थे लोग हमारे ब्रह्मा,
0: मतलब बेसिकली ये है कि अगर अध्यात्म से जुड़ते हैं या ब्रह्म कुमारी संस्था से जो मेडिटेशन सीखते हैं वो आपकी लाइफ के अंदर एक्सेलेंस बढ़ाता है, लेकिन वैरागी या सन्यासी नहीं बनाता है।
1: हाँ, सन्यासी तो हमें सीखा, फिर हमने यहाँ से जुड़े कि सन्यास तो बुराइयों का है, सन्यास तो आपकी कमी कमजोरियों को उनको छोड़ने का है, जो चीज़ें आपको तंग कर रही हैं, गुस्से का सन्यास करना है, आपने अपने ईगो को छोड़ना है, ईर्ष्या को छोड़ना है। तो हमें लगा ये बात तो सही है, घर बार छोड़ना तो बड़ा आसान है। कहते हैं ना, एक बड़ी अच्छी बात किसी ने कही है, ना घर त्यागो ना हरि भूलो, रहो ऐसे जिंदगानी में जैसे कमल रहता है पानी में। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि भगवान को भी नहीं भूलना है, घर भी नहीं छोड़ना है। और ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान तो घर को अच्छा बनाने के लिए है कि हम घर गृहस्थ में रहते हुए एक जीवन को बेटर वे में, मूल्य आधारित जीवन, एक वैल्यू बेस्ड लाइफ कैसे जी सकते हैं, वो हमने यहाँ से सीखा।
0: तो ज्ञान की वो कौन सी बात थी? 13 साल की उम्र में तो आप थोड़ा बहुत तो दुनिया को भी समझ रहे हैं, जीवन में आगे भी बढ़ रहे, टीनेज बहुत चंचल वाला होता है, डिसीशन लेना भी बहुत मुश्किल होता है, हमको लगता है कि हम जो सोचते वो जानते वही सब कुछ है, वही सही है।
1: जी।
0: तो ऐसे में आपको जब ये राजयोग मेडिटेशन के बारे में सीखा, यही सत्य ज्ञान है, वो कौन सी बात थी जब आपको लगा कि हाँ मुझे इसको फॉलो करना चाहिए?
1: यहाँ की एक एक बात, अब एक मुख्य बात तो कई हो सकती हैं, लेकिन हर बात ने मुझे, जो चीज़ मैंने सुनी, जो पढ़ी, पूरा लिटरेचर मैंने पढ़ा,
0: यहाँ की मैगजीन्स, 13 साल की
1: 13 साल की उम्र में मैंने हर चीज़ स्टडी की, जो भी यहाँ की बुक्स होती थी, मैं जो भी बुक्स मेरे हाथ में आ जाती थी मैं पूरा पढ़ के जाता था। इवन जो बहन जी मुझे कोर्स कराते थे, तो कोर्स कराने से पहले वो बुक हमारे घर में थी, क्योंकि डैडी जी जा रहे थे, मैं पूरा पढ़ के जाता था, सारे क्वेश्चंस के जवाब उनके मेरे पहले ही आते थे। तो हर चीज ने अट्रैक्ट किया कि परमात्मा, एक तो ये बात बड़ी अच्छी लगी कि कोई भी देहधारी भगवान नहीं हो सकता, भगवान वो नहीं होता जो जन्म मरण में आता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा देवी देवता हो सकता है, देवात्मा हो सकती है, महान आत्मा हो सकती है, पर परमात्मा तो ज्योति बिंदु निराकार है। एक हमारे स्कूल टीचर थे, वो भी हमें मेडिटेशन कराते थे, कहते थे आपके अंदर ना लाइट प्रकट होगी, लाइट लाइट दिखेगी, तो हम करते थे, सिक्स्थ क्लास से मैं थोड़ा बहुत करता था, तो जब यहाँ आया तो वही रेड लाइट, वही शिव बाबा, मतलब नाम नहीं हो बताता था, तो कहता था लाइट होगी, तो मुझे लगा ये भी वही चीज़ कुछ है, तो जरूर भगवान लाइट ही होगा, प्रकाश स्वरूप होगा। और दूसरी बात, जब भगवान के वर्जन जो थे, जो उनके महावाक्य जिन्हें हम यहाँ मुरली कहते हैं, वो जब पढ़े तो और पढ़ना शुरू किया, तो समझ में आया कि अभी ये चीज़ें जो हमें सुनाई जा रही है, समझाई जा रही है, यहाँ कोई गुरु नहीं है, कोई बहन जी या भाई जी नहीं है जो हमें बता रहा है, बताने वाला साक्षात वो निराकार परमात्मा जिसने स्वयं गीता ज्ञान दिया, वो ज्ञान समझा रहा है। और वो ज्ञान की एक एक पॉइंट, कोई भी पॉइंट है, वो बुद्धि में मतलब इतनी स्टीक लगती थी कि ये मुझे करके ही छोड़ना है, ये मेरे जीवन से ही रिलेटेड है। जैसे कहा गया कि बदला ना लो, बदल के दिखाओ, मैं क्या, सही बात है, बदला लेना तो अच्छी बात नहीं है। हमने सुना कि माफ़ कर दो, तो माफ़ करना भी अच्छी बात है, क्या गलत है इसमें। हमने सुना कि निंदा नहीं करनी किसी की, किसी की आलोचना नहीं करनी, सबकी प्रशंसा करनी है, शुभ भावना शुभ कामना रखनी है, हमने कहा ये भी बिल्कुल सही बात है। हर चीज़ यहाँ की, अच्छा अन्न आपने शुद्ध खाना है, किसी को दया भाव मन में रखना है, किसी को मार के, और हम अगर अब सच्चे ब्राह्मण हैं और सच्चे सनातन वाले मानने वाले हैं, तो सनातन धर्म तो सिखाता है दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ना छोड़िए जब तक घट में प्राण, तो दया तो सबसे बड़ी चीज़ है। पहले हम चाहे लौकिक में ब्राह्मण थे, पर हम नॉन वेज भी खाते थे, लेकिन यहाँ आके समझ आया कि ये तो असुरों का भोजन है, ये तो अच्छे लोगों का, धार्मिक लोगों का भोजन नहीं है।
0: तो फिर जैसे आपने कहा कि आप लौकिक में ब्राह्मण थे और आपका अपना एक कल्चर और एक परंपरा होती है, और सनातन के हिसाब से देखा जाए तो ब्राह्मण जो होते हैं उनको सबसे ऊंचा मानते हैं
1: जी।
0: तो फिर आपकी अपनी कम्युनिटी, फिर जब आप अपनी व्यवहार और आपके जो भी लाइफस्टाइल है, खान पान सब बदल दिया, आपने संग बदला, तो कभी आपको विद्रोह नहीं हुआ आपके परिवार समाज में या आपकी जो कम्युनिटी है?
1: हमारे जो आसपास के रिश्तेदार और लोग थे, मैं समझता हूँ वो काफ़ी समझदार थे, बुद्धिजीवी थे, थोड़े मॉडर्न भी थे, ओपन माइंडेड भी थे, तो उनको तो लगा कि ये अच्छी जगह जुड़े हैं। मुझे नहीं लगता एक आधे को छोड़ के किसी ने हमारा थोड़ा बहुत मजाक तो चलो सब उड़ा लेते हैं, पर ज़्यादातर के आगे मेरा इम्प्रेशन अच्छा पड़ा कि ये वहाँ जुड़ा है, इसने पढ़ाई भी अच्छी की, कुछ लाइफ में अचीव भी किया, उनके जो बच्चे थे जो हमारे रिलेटिव्स थे वो उतने नहीं कुछ कर पाए क्योंकि वो बैड कंपनी में आके इधर उधर घूमते रहे, पढ़ाई नहीं की, और मेरा सारी चीज़ें पॉजिटिव जा रही थी, तो उनके आगे और ही अच्छा हुआ कि ये अच्छी जगह जुड़ा, तो इनकी लाइफ बन गई। उसका रिजल्ट ये आया कि बहुत से रिश्तेदार स्वतः ही संस्था से जुड़े, वो भी बीके बने, कोई 2 साल बाद बना, कोई 10 साल बाद बना, पर बने जरूर, तो किसी ने रोका नहीं हमें। और पेरेंट्स हमारे जुड़े हुए थे, तो किसी की हिम्मत भी नहीं थी क्योंकि पेरेंट्स साथ में अगर हैं तो फिर कौन किसको रोकेगा। हाँ, पेरेंट्स ये कहते थे आप वहाँ जा रहे हैं, हम भी जाते हैं, पर आपको बाबा का, शिव बाबा का नाम बदनाम नहीं करना, मतलब पढ़ाई में टॉप करना है और कोई ऐसा कर्म नहीं करना जिससे कोई आपके ऊपर उंगली उठाए। तो वो हमने करके दिखाया तो सब लोग हमें सपोर्ट करते थे और सबके आगे एक अच्छा मैसेज आता था, तो वो हमें बहुत अच्छा लगा
0: जी। तो इस तरीके से आपका जो जर्नी रहा है, 13 साल की उम्र में आपने इस ब्रह्मा कुमारी की राजयोग मेडिटेशन से आप जुड़े और उससे आपके जीवन में प्रभाव तो आपने देखा, तो आपकी पढ़ाई पूरी कब हुई और फिर आपके भाई बहने इस चीज़ को लेकर के आपका कितना फैमिली में सपोर्ट था?
1: जैसा मैंने कहा कि फैमिली का तो फुल सपोर्ट था, सबको था कि ये अच्छी जगह जुड़े हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो उन्होंने तो हर मोड़ पे हमें मोटिवेट ही किया क्योंकि वो खुद रेगुलर स्टूडेंट थे। उसके बाद पढ़ाई में फिर हमने पहले बीटेक किया, जब बीटेक कर रहे थे तो भी दूसरे शहर पे गए, कुरुक्षेत्र गए, वहाँ भी ब्रह्मा कुमारीज के सेंटर पे रोज जाना आना, प्रोफेसर्स की सेवा करना। एक बार कॉलेज में भी मैंने अपने आदरणीय उषा दीदी जी का प्रोग्राम रखवाया, कॉलेज के खर्चे पे करवाया, आना जाना रहना सारी चीज़ें, और कॉलेज में भी बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ा। मैं फाइनल ईयर में पढ़ता था तो माइंड मैनेजमेंट एंड मेडिटेशन के ऊपर उनका 2 घंटे का प्रोग्राम कॉलेज के ऑडिटोरियम में हुआ और अराउंड 500-600 की स्ट्रेंथ, सारे प्रोफेसर्स विद फैमिलीज, तो कॉलेज में भी अच्छी सेवा होती थी। बीच बीच में उनको कभी माउंट आबू भी किसी प्रोग्राम में बच्चों को, अपने साथियों को या जो प्रोफेसर्स थे उनको लाता रहता था। तो उस लाइफ में भी, कॉलेज लाइफ में भी मेरा मतलब एक मटेरियलिज्म की ओर झुकाव नहीं हुआ। मेरे मन में था कि मैंने जहाँ मेरा रास्ता है, जो भगवान के रास्ते पे हम चल रहे हैं वही सही है, जो दुनिया कर रही है वो उनकी अपनी सोच है, लेकिन हम सही रास्ते पे हैं। कॉलेज में दोस्त ट्राई करते थे, परखते भी रहते थे ये कितना पक्का है, कच्चा है, क्या कहता है, पर हम लगे रहे, डटे रहे, तो उसका बेनिफिट भी होता था। कॉलेज में भी हुआ एक पढ़ाई की, उसके बाद मैं उसी कॉलेज में जैसे ही मेरी डिग्री पूरी हुई वहीं मेरे को टीचिंग की जॉब मिल गई। तो फर्स्ट जॉब मेरी डिग्री करने के 1 महीने के बाद उसी सेम NIT कुरुक्षेत्र में एज ए लेक्चरर लग गई। तो लोगों को लगा अच्छा ये तो यहाँ टीचर भी लग गया। तो टीचर इसलिए लगा क्योंकि मैं वहाँ के जो डायरेक्टर्स थे, प्रोफेसर से सबसे मिलता जुलता रहता था, उनको ज्ञान सुनाता रहता था, तो प्रोग्राम भी कराए थे। तो जैसे ही मेरा हुआ तो उन्होंने कहा तो अच्छा आदमी है, तो उन्होंने मेरे को, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट बेस की जॉब थी, एडॉक पे थी, पर रही। उसके बाद फिर मैं चंडीगढ़ शिफ्ट हुआ, तो चंडीगढ़ में ब्रह्मा कुमारीज का क्षेत्रीय मुख्यालय, जोनल हेड ऑफिस है, बड़ा ऑफ सेंटर है, 1 एकड़ में है, राजयोग भवन। तो वहाँ संस्था के जो अच्छे टॉप के लोग हैं, हमारे आदरणीय आचल दीदी जी, आदरणीय अमीर चंद भाई जी, वो एक बहुत टॉप के तपस्वी योगी आत्माएं थी, तो उनके संपर्क में आया। तो फिर इस ज्ञान योग में थोड़ी और रिफाइनमेंट आई और हम एक्सपर्ट बने और झुकाव हमारा योग के प्रति और इस आध्यात्मिक पढ़ाई की ओर हुआ। फिर वहाँ रहते ही चंडीगढ़ के एक टॉप के कॉलेज में NITRR, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 4 ही NITRR है, फिर MTech मैंने की, वो भी स्टडी लीव पे आके अपने कॉलेज से, अच्छा चलता रहा, वहाँ भी सेवाएं करते रहे।
0: इतना सब कुछ आपका जीवन में अच्छा चल रहा था, तो आपको वो संकल्प क्यों आया कि मुझे अभी समर्पित होना है, मुझे अभी ये दुनिया की कोई काम नहीं करना है और मुझे मधुबन जाना है और मुझे समर्पित जीवन जीना है?
1: देखो, मैंने 10 साल जॉब की, प्रोफेसर रहा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी रहा, हर साल सैकड़ों बच्चों को पढ़ाया जाता था, उनको अच्छी बातें सिखाई भी जाती थी, तो और जगह भी मैं ब्रह्मा कुमारीज की सर्विसेज में लेक्चर वगैरह देने जाता था और भी सेवाएं करता था। लेकिन एंड में मैंने एक रिजल्ट लाया कि ये मैं लोगों को कर रहा हूँ एक लिमिट दायरे में। मैं कॉलेज

0: इसमें पढ़ा रहा हूँ, मुझे पैसे मिल जाते हैं 100-200 बच्चों को पढ़ा के, मेरा अर्निंग तो हो रही है, उनको मैं कुछ अच्छी बातें मान लो सिखा भी रहा हूँ, तो एक लिमिट दायरा है। लेकिन मैंने सोचा मुझे ये अपना जीवन ना केवल एक छोटे से कॉलेज के लिए, ना कि एक छोटे से कम्युनिटी के लिए, बल्कि पूरे देश और पूरी दुनिया के लिए, चलो दुनिया बहुत बड़ी बात होगी, कम से कम अपने देश में बड़े लेवल पर रह के लोगों के अंदर उनको सही जीवन जीने की कला सिखानी है। मेरे जीवन में पैसा है, प्राप्तियां हैं, सब कुछ है, खुशियां हैं, लेकिन मैं अकेला खुश रह के क्या करूँगा। जीना उसी का नाम है जो दूसरों काम आए, जो दूसरों के लिए कुछ कर सके, अपने देश के लिए कुछ कर सके, अपने समाज के लिए कुछ कर सकें। और दुनिया में कितने दुख हैं, कितनी समस्याएं हैं, कितनी परेशानियों टेंशन्स में लोग गुजर रहे हैं, कोई सुसाइड कर रहा है, कोई डिप्रेशन में आ गए हैं, कोई डिवोर्स हो रहे हैं। मैं कह इन लोगों को सही ज्ञान कैसे दिया जाए। अब मैं जॉब में हूँ तो बंधन है, मैं कहीं जाना है तो छुट्टी नहीं मिलती, कहेंगे जी कॉलेज में आज बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, आज तो मिलेगी नहीं, तो आप कहीं जा भी नहीं सकते। लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे अब पैसे के पीछे नहीं भागना, मैं अकेला हूँ, कोई परिवार का बंधन नहीं है कि मुझे माँ बाप मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, उनका खर्चा करना है। माता पिता से डिस्कस किया, कहते हैं बहुत अच्छी बात है, लग जाओ सेवा में, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। मैं कह माँ बाप भी कह रहे हैं, दिल भी कह रहा है, शिव बाबा का तो मैसेज रहता ही है कि बेहद की सेवा में लगो, देश की सेवा में लगो, लोगों को ये ज्ञान ईश्वर का पैगाम सब तक पहुंचाओ, सब सबको एक हैप्पी जीवन जीने की कला सिखाओ। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि अब मैंने भौतिक प्राप्तियों के पीछे ना लग के दुनियावी इस रेस में ना जाकर, कितना भी कमा लेंगे हम, टाटा बिरला अंबानी अडानी बनने वाले तो रहे नहीं, कितना भी कमा ले यार वो भी बन जाए तो उससे भी ऊपर बैठे हुए हैं बहुत लोग, कोई परमानेंट तो यहाँ रिच रहता नहीं। लेकिन जिन लोगों ने दूसरों के लिए काम किया वो देखो क्या से क्या बन गए। तो फिर मैंने भी संकल्प किया कि मुझे भी अब ये लाइफ अपने लिए ना जीकर अब ये लाइफ, और ये ब्रह्मा कुमारी जी एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है समाज सेवा करने का, लोगों से जुड़ने का, लोगों तक सच्चा ज्ञान पहुंचाने का। तो मुझे ऑफर मिला, उन्होंने कहा जो हमारे बड़े थे कि आप आइए, आपकी संस्था में पैसे देने वालों की जरूरत से भी ज़्यादा उन लोगों की ज़रूरत है जो टाइम देते हैं, जो अपनी एनर्जी फुल लगाते हैं। पैसा देने वाले कोई और भी दे सकता है, पर जो टाइम दे और अपनी एनर्जी पूरा यहाँ के लिए लगाए, ऐसे वॉलंटियर्स की हमें ज़रूरत है। तो मैंने कहा मैं इसके लिए तैयार हूँ, और जहाँ चाह होती है वहाँ राह मिल जाती है, वे देर इज विल देर इज वे। और मुझे, मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि ब्रह्मा कुमारीज के सबसे बड़े केंद्र माउंट आबू शांति वन में मुझे आने का सौभाग्य मिला।
1: अभी आप क्या सेवाएं करते हैं यहाँ पर?
0: यहाँ पर मुझे मुख्यतः मेरी सेवा रहती है जो संस्था का इंग्लिश मैगजीन है, मंथली मैगजीन है द वर्ल्ड रिन्यूअल, तो उसकी एडिटिंग, उसका मैं एडिटर हूँ। उसके लिए आर्टिकल्स लिखना, आर्टिकल्स तैयार करना, जो दूसरों के आर्टिकल जाते हैं उनको एडिट करना, सिलेक्ट करना, तो जो भी उसकी पब्लिशिंग से रिलेटेड जो भी काम होते हैं मेन वो रहता है। साथ में रही पूरे देश की बात, तो सारे स्टेट्स में बीच बीच में जाना रहता है सेवाओं के लिए। तो जहाँ हमारी ज़रूरत होती है लोग बुलाते हैं, हम किसी को मना नहीं करते वहाँ जाकर।
1: ओंकार जी, आपकी ये जो लंबी सफ़र है, हमने ये तो जाना कि जब आप 10 साल की उम्र में ब्रह्म कुमारीज के संपर्क में जब आए, जो मेडिटेशन सीखा, आपका संग बदल गया, आपका खान पान बदल गया, आपका जीवन में एक डिसिप्लिन आया है। लेकिन जब से आप समर्पित जीवन जीना शुरू किया
0: जी,
1: जैसे आपके अंदर ये श्रेष्ठ भावना जागृत हुई कि मुझे 2 कौड़ी की पैसों के लिए नहीं लेकिन देश के लिए जीना है, तो वो श्रेष्ठ भावना ने आप हद की प्राप्तियों के पीछे भागने की जगह एक अच्छी सेवा की भावना के लिए आप समर्पित हुए हैं। तो जब से आप समर्पित हुए हैं, लगभग 10 साल से आप ब्रह्म कुमारीज के हेडक्वार्टर्स में शांतिवन में रहते हैं, सेवाएं कर रहे हैं, ये 10 साल में आप अपने अंदर किस प्रकार की परिवर्तन या क्या नया सीखा आपने, कैसे आपने जीवन को और बेटर किया है
0: यहाँ रह के? देखो, जब हम घर में रहते हैं, अकेले रहते हैं या छोटी जगह पे रहते हैं, बहुत कम लोग होते हैं, वहाँ रहना बड़ा आसान होता है। सबसे बढ़िया यहाँ सीखा कि कैसे एक बहुत बड़े ग्रुप के में, आप संगठन में रह के एडजस्ट कैसे कर सकते हैं। जहां 2000 लोग परमानेंट रहते हैं, 24 घंटे वही मिलने जुलने वाले, जहां हर 15 दिन में 20-25 हजार लोगों का एक ग्रुप बाहर से भी आता हो। इतने अलग अलग वैरायटी तरह के लोगों में रहकर एडजस्ट करना और उनके साथ तालमेल बनाना और हर एक के लिए गुड विशेज रखना, कोऑपरेशन रखना, सबके प्रति इतने बड़े संगठन में रहते हुए भी दूसरों की बुराइयां या कमियां कमजोरियां ना देखते हुए उनकी पॉजिटिविटी पे ही फोकस करना, ये चीज़ें यहीं आके हो सकती हैं। परिवार में भी होती है, 4-5 लोगों के बीच में हम कर लेते हैं, थोड़ा अपनापन भी होता है, पर यहाँ बेहद का अपनापन लाना पड़ेगा। यहाँ आपको तमिलनाडु के लोग भी मिलेंगे, पंजाब के भी मिलेंगे, आसाम के भी मिलेंगे, कुछ फॉरेन कंट्रीज़ के भी मिलेंगे। कईयों की लैंग्वेज बैरियर है, कईयों की वे ऑफ थिंकिंग का बैरियर है, अच्छा कईयों की हैबिट्स का बैरियर है, लेकिन फिर भी सबके साथ रहना है। और सबसे कहीं ना कहीं अगर आपने सेवा करनी है तो उनको कोऑपरेशन भी लेना है, तो ये कला यहीं डिवेल्प हो सकती है, जिसे टीम स्पिरिट कहते हैं। टीम भावना मतलब इतनी बड़ी टीम में रहकर काम करना, वो यहाँ आके मैंने सीखी। और ये भी सीखा कि कैसे इतना बड़ा संगठन कैसे चलता है, क्या क्या इसके लिए गुड क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए, और कैसे इस संस्था के जो हमारे बड़े हुए हैं, दादियाँ हुई हैं, बड़े भाई हुए हैं, उनमें भी वो गुण हैं कि उन्होंने कैसे सबके बीच में तालमेल बनाया। क्योंकि एक व्यक्ति का विचार और दो का विचार कभी मिल ही नहीं सकता, पता है सबको, हर एक का वे ऑफ थिंकिंग है, फिर भी सबको एक विचार पे ला के एक काम करना, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो कर रहे हैं। तो हम भी कोशिश करते हैं कि उनके साथ तालमेल बैठा के हम भी उसमें कुछ कोऑपरेशन करें। उसके लिए अच्छा टॉलरेंस पावर यहाँ डिवेलप होगी। जब आप बड़े ग्रुप में रहेंगे तो आपको सहन शक्ति भी आएगी आपके अंदर, और सबके अंदर समाने की पावर
1: भी आएगा।
0: हाँ, वो भी आएगा। तो यहाँ रह के मतलब आपकी पर्सनैलिटी में वो निखार आता है, लीडरशिप क्वालिटी भी आ जाएगी। अगर कोई काम किसी से कराना है तो आपको लीडर भी बनना पड़ेगा, और बहुत सी चीज़ें आएंगी, तो वो हमें आती हैं। तो वो एक यहाँ का रहने का प्लस पॉइंट है जो घर में रह के नहीं हो सकता। वहाँ तो हमारे नखरे होते हैं माँ बाप के साथ, वहाँ तो हम सोचते हैं कि हम हक है हमारा, हमारे माँ बाप हैं, परिवार वाले हैं, लेकिन ये भी परिवार है, पर बड़ा परिवार है। तो बड़े परिवार में एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, एडजस्ट करने की भावना भी पैदा होती है, जो मुझे यहाँ आके सीखा। बाकी यहाँ टाइम हमारे पास काफ़ी है, तो हम उस टाइम में अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हैं, अच्छी चीज़ें पढ़ते हैं, अपनी डिवेलपमेंट करते हैं, किसी को अच्छी गाइडेंस देनी है, एडवाइस करना है, उसमें हेल्प कर देते हैं, तो लगता है कि हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं
1: जी। आखिर में कोई ऐसा गीत आपको लगता है कि यह आपके जीवन को डिफाइन करता है?
0: अब गीत तो बहुत अच्छे अच्छे हैं, अब मेरे जीवन के लिए जो डिफाइन करता हो उसके लिए कौन सा ऐसा गीत हो सकता है, ये तो सोचने का विषय है। फिर भी मैं सोच के बताता हूँ, किसी ने अपना बनाकर मुस्कुराना सिखा दिया।
1: किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच ओंकार जी। सच में जैसे रेडियो मधुबन का भी स्लोगन है, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जब अच्छे लोगों के संग में रहते हैं तो हमारी मुस्कुराहट ऑटोमेटिक निखर जाती है। और हमारी पर्सनालिटी में जिस तरीके की बदलाव आते हैं और हमारा जो व्यक्तित्व विकसित होता है वो भी बिना मेहनत का होता है। तो जिस तरीके से सरलता के साथ आपने अपने जीवन के बारे में बताया है, आसान तो नहीं है, लेकिन आपने जो सच्चा संग अपनाया है उस कारण से वो इतना सरल हो गया है आज जो हम देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने समय निकाला, रेडियो मधुबन के स्टूडियोस में आई और आपकी आध्यात्मिक जीवन के उन चंद पलों के बारे में हमारे श्रोताओं के साथ साझा किया। बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद, थैंक यू।
1: दोस्तों, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM। ऐसे ही अनुभवों को आपके बीच में लेके आते रहेंगे और हम और आप साथ में मिलकर के सीखते रहेंगे हमारे मेहमानों के जीवन से। जीना इसी का नाम है।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: are listening to Brahma Kumari's community radio station, Radio Madhuban. Keep listening, keep smiling.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम. सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए. आज है 24 नवंबर 2024, और 24 नवंबर 2024 को आप थोड़ा सा सोच के देख सकते हैं इसमें कॉमन क्या क्या चीज़ें हैं, और आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं. खैर, ये है कार्यक्रम जीवन रोशनी, और जीवन रोशनी में हम जीवन मूल्यों को जानते हैं, चाहे वो गाने के माध्यम से हो, चाहे वो दोहे के माध्यम से हो, या फिर किसी बड़े के जीवन को अध्ययन करते हुए हम जानते हैं इस कार्यक्रम के अंतर्गत. और इसके साथ साथ आप भी अपने राय हमें बताते हैं इस कार्यक्रम के अंतर्गत. और आज ये कार्यक्रम लाइव चल रहा है, और लाइव कार्यक्रम के दौरान अगर आपके मन में कुछ सवाल है तो आप हमें कॉल करके बता सकते हैं 94-14-15-14-15 पर, या फिर आप हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सअप पर. तो आज हमारे मध्य हमारे एक्सपर्ट हैं, जिनको हम ऑथर कहेंगे, स्पीकर कहेंगे, कोच कहेंगे, फैसिलिटेटर कहेंगे, मेडिटेशन एक्सपर्ट कहेंगे, दत्ता रोकड़े भाई जी. और इन्हें आप पहले भी सुन चुके हैं, इन्हें काफ़ी समय से एक्सपीरियंसेस है, अनुभव है, लगभग 15 साल से भी ज़्यादा. पर्सनल एम्पावरमेंट कोच और कॉरपोरेट फैसिलिटेटर के रूप में बहुत सारे विषय पर वो बात करते हैं. अगर इन जनरल में कहूँ, लगभग मेरे सामने जो है वो 50 से ज़्यादा विषय हैं. इन सारे विषय को बताऊंगी तो शायद जीवन रोशनी कार्यक्रम ही कम पड़ेगा. तो हम कह सकते हैं कि ज़िंदगी को कैसे जिया जाए, कैसे स्मूथ बनाया जाए, कैसे हेल्दी रिलेशनशिप बनाया जाए, इस बारे में वो यूथ को सिखाते हैं. तो आज हमारे मध्य ऐसे एक्सपर्ट है, तो हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे श्रोताओं के साथ वो बातचीत करेंगे, और हम उनसे बहुत सारे खजाने जो है वो निकालेंगे. दत्ता भाई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में.
2: थैंक यू सो मच. आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में मुझे इनवाइट करने के लिए.
1: जी, तो जैसे आप तो एक्सपर्ट हैं, तो एक सवाल आपसे करना चाहूँगी कि जो एक्सपर्ट होते हैं वो परफेक्ट होते हैं, या आज भी वो अपने मूल्यों को खोज रहे होते हैं कहीं ना कहीं?
2: ये तो देखिए, हर हमारे लाइफ में वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ये जो जीवन के जो मूल्य है या वैल्यूज़ है, ये हमें हर प्रकार से जैसे हमारी लाइफ को शेप देते रहते हैं.
1: जी.
2: और हमारी जैसे जैसे लाइफ के गोल्स हम सेट करते हैं, तो उस अनुसार हमारे अंदर वो गुण तो है ही, वो मूल्य तो है ही, लेकिन उसकी प्रायोरिटी मैं कहूँगा कि चेंज होती है.
1: जी.
2: है ना, जैसे अगर हम एक कोई स्टूडेंट है, उसके एग्ज़ाम है, तो वो डेफिनेटली बहुत हार्डवर्क करेगा, है ना, पढ़ाई करेगा, फोकस्ड रहेगा, कंसंट्रेशन रहेगा, तो ये उसकी प्रायोरिटी हो जाती है.
1: ओके.
2: और वही स्टूडेंट अगर छुट्टी है तो क्या करेगा? एंजॉय करेगा, खुश रहेगा, है ना, खेलेगा. तो ये इस तरह से उसके क्या होगी प्रायोरिटीज, वो गुण जो है, वो मूल्य जो है, वो प्रायोरिटी पे आ गए.
1: ओके. सो प्रायोरिटीज के बेसिस पे हमारे मूल्य चेंज होता रहता है.
2: गोल्स
1: चेंज होते हैं.
2: हाँ,
1: पर मूल्य वही रहते हैं.
2: हाँ, मूल्य तो हमारे अंदर सारे क्वालिटी, सारे जो वैल्यूज है, वो हमारे अंदर तो है ही. बस जैसे जैसे हमारे गोल्स होते हैं, उस अनुसार हम उन मूल्यों को प्राधान्य देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं.
1: जी. तो मूल्य होने से हमें फायदा क्या है?
2: मूल्य जो है, वैल्यूज कहे, मूल्य कहे, ये हमारे लाइफ के लिए एक गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं. जैसे हमें लाइफ में कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने हैं, तो अगर हम अपने जीवन के इन मूल्यों को, इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखें, तो हमारे लिए डिसीजन लेना बहुत ईजी हो जाता है.
1: जी.
2: फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आपको लाइफ में जैसे बिजनेस कर जॉब कर रहे हैं, बिजनेस करना है, तो आप अपने अपने से पूछते हो कि क्या मैं जॉब करते हुए खुश हूँ क्या? तो खुशी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. जॉब सेटिस्फैक्शन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है. क्या मुझे, मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें मुझे खुशी मिल रही है, या मुझे बहुत ऐसा लगता है सुबह उठ के, अरे यार आज वापस ऑफिस जाना है, क्या ये ख्याल आता है? क्योंकि बहुत सारे भाई बहन ऐसे मैं देखता हूँ जिनसे मिलता हूँ, जॉब कर रहे हैं, सैलरी बहुत अच्छा है, जो बाकी लोग आशा रखते हैं कि नहीं मेरी परफेक्ट लाइफ होनी चाहिए. जैसे होता है कि लोग कहते हैं नहीं, शादी हो, बच्चे हो, इतना बैंक बैलेंस हो, मतलब जो भी उनके एक एक्सपेक्टेशंस होते, एक परफेक्ट फ्रेम ऑफ लाइफ होता है, तो वो होते हुए भी वो सेटिस्फैक्शन अंदर नहीं रहता है. तो कहीं ना कहीं हम वो काम करते हैं, लेकिन वो वैल्यूज़ जो है वो हमारे, हम इंजॉय नहीं कर पाते, बिकॉज हमारे कहीं ना कहीं लाइफ में डिसीजंस गलत हो जाते हैं. तो डिसीजंस लेने के लिए हमें वैल्यूज़ बहुत हेल्प करते हैं.
1: जी ओके okay. कहीं ना कहीं क्या वैल्यूज एक इंसान को इंसान बनाता है, इंसानियत से भरपूर कर देता है?
2: ऑफ कोर्स, ये हमारे पूरे ओवरऑल पर्सनालिटी को शेप करता है
1: जी.
2: हमारे विचारों को एक अच्छी दिशा देता है, हमारा व्यवहार उससे बहुत अच्छा बनता है.
1: जी बिल्कुल. तो श्रोताओं, आप क्या सोच रहे हैं कि जो मूल्य हैं, जो अच्छाइयाँ हैं, वो हमारे जीवन को क्या बनाता है? आपके नज़रिया से आप क्या सोचते हैं, आप हमें कॉल करके बता सकते हैं 94-14-15-14-15 पर. तो आइए यहाँ पर एक अल्प विराम लेते हैं, फिर वापस आते हैं इस गाने के बाद. सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM, और ये है कार्यक्रम जीवन रोशनी.

0: अरे क्या बात है मैडम, आज तो आपकी चाल ही बदल गई है।
1: क्यों ना हो, त्रिशूल हवाई चप्पल जो पहन रखी है आप भी पहनिए त्रिशूल हवाई चप्पल और फर्क महसूस कीजिए।
0: त्रिशूल हवाई चप्पल मजबूत, आरामदायक और रंग बिरंगी डिजाइन में आपके नजदीकी स्टोर्स में उपलब्ध।
1: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें
0: 9414152250
1: या लॉग ऑन करें www.trishulfootwear.in। त्रिशूल हवाई चप्पल, पैरों में मखमल।
2: ए, रुको, रुक कुछ सुनाई नहीं देती। और ये पुकार है आपकी गड्डी की, तो कह रही है कि बिना पिए मेरे को चलाओ। और ये पुकार आपके बच्चों की भी हो सकती है, तो जो सलामत घर पहुंचना हो तो बिना पिए गाड़ी चलाना, समझे? चलो निकल लो अब। और हाँ, हैप्पी जर्नी मेरी तरफ से अवलदार कड़क। हाँ, जो आपको कहता है डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। और ठीक ना? ठीक।
3: ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: वेलकम बैक, सुन रहे हैं आप कार्यक्रम जीवन रोशनी और हम जीवन रोशनी में रिवाइज कर रहे हैं कितने सारे मूल्यों को हमने जाना है कहीं ना कहीं, लेकिन मूल्य क्यों ज़रूरी है, मूल्यों को पहचानेंगे कैसे, कहाँ पर हम अपने मूल्यों को दर्शाते हैं और अपने वैल्यूज़ के साथ हम कार्य क्षेत्र में आते हैं तो ये सब कैसे पहचाने। कई बार हम दूसरों के गुण को तो पहचान लेते हैं, उनके अवगुण को भी पहचान लेते हैं, जब खुद के बारे में सोचा जाता है, खुद के गुण अवगुण को पहचानने में बहुत बार मुश्किल लगता है। तो आज हमारे मध्य हमारे एक्सपर्ट दत्ता भाई जी हैं, आइए उनसे जानते हैं और इसे और विस्तृत रूप से डीपली समझते हैं मूल्यों को। आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम के अंतर्गत जी। तो जैसे ब्रेक से पहले आपने कहा कि मूल्य हमारे जीवन को एक दिशा प्रदान करता है और इसके साथ साथ एक हमें शेप देती है, तो अभी आपसे जानना चाहेंगे कि अपने अच्छाइयाँ या मूल्यों को हम कैसे पहचानेंगे।
1: बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब जैसे आपने बहुत अच्छे से कहा कि हम दूसरों के गुण अवगुण बहुत ईजीली देख सकते हैं और वो बहुत हमारे लिए इजी है क्योंकि हम बाहर की तरफ देख रहे हैं, लेकिन जब खुद की बारी आती है, खुद को देखना होता है तो हमारे लिए शायद थोड़ा मुश्किल हो। तो उसके लिए हम काफ़ी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल तरीके से समझ सकते हैं कैसे हमारे वैल्यूज़, कौन से वैल्यूज़ के साथ हम ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। आपने देखा होगा कि हर एक व्यक्ति अलग है, हर एक व्यक्ति की पसंद अलग है। अब आप चेक करो, जैसे अगर आपको कोई गीत बहुत पसंद है तो वो कौन सा गीत है, और उन गीतों में वो सुनते हुए आपको, आप अपने आप से पूछो कि मैं एक गीत सुन रहा हूँ तो मुझे उसमें क्या अच्छा लग रहा है, तो कौन सी क्वालिटीज मुझे उसमें बहुत अच्छी लग रही है। या फिर आप देखो आपके फेवरेट पर्सनालिटीज हैं, चाहे आपके आसपास है, आपके परिवार में है, आपके स्कूल या ऑफिस में है, या कोई हिस्टोरिकल फिगर्स है या पॉलिटिकल लीडर्स है, कोई भी हो सकता है, वो पर्सनालिटी हमें क्यों अच्छी लगती है, उनकी कौन से गुण, कौन सी क्वालिटीज हमें अच्छी लगती है।
0: ओके, जैसे कि मेरा एक गाना है, जब हम पढ़ाई करते थे तो ये फिल्म रिलीज हुई थी थ्री इडियट्स, और सब लोग गाते थे ये गाना कि जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, होटों को करके गोल, सीटी बजा के बोल, ऑल इज वेल। तो इसमें क्या मूल्य आएगा, ये तो है ना कि मतलब कुछ भी हो जाए ठीक है, ओके, ऑल इज वेल, तो इसमें कौन से गुण रिफ्लेक्ट करते हैं।
1: आप अपने आप से पूछो कि आप ये क्यों सुन रहे हैं गाना, वो सुन के आपको कौन सी फीलिंग्स आप इमर्ज होती है, या कौन सी फीलिंग्स के साथ आप कनेक्ट करते हैं, कैसा लगता है,
0: लाइटनेस, या फिर ऐसा करते कि ठीक है कोई बात नहीं है, मतलब टेंशन वेंशन तो है बट थोड़ा सा रिलैक्स करो और सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक है, ऐसा टाइप।
1: वेरी गुड, तो उसमें आप जैसे निश्चिंत हो जाते हैं।
0: ओके, तो बेफिक्र हो जाते हैं,
1: बेफिक्र हो जाते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं, आप एक करेज फील करते हैं, है ना, हिम्मत आ जाती है आप में। तो इस तरह से आप देखो कि ये जब सुन रहे हैं गाने भी, तो उसमें मुझे कौन सी क्वालिटीज के साथ मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ, या वो मुझे हिम्मत दे रही है। कोई गाने सुनते हैं, राष्ट्रभक्ति के गीत सुनते हैं, तो एकदम पेट्रियोटिज्म हमारे अंदर का जाग जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है, एंड एवरीवन इज लाइक मैं रेडी हूँ फाइट करने के लिए, वो वाली फीलिंग हर एक के अंदर आ जाती है। तो इस तरह से वो गीत सुनकर ही क्या हो जाता है, हमारा ऑटोमेटिक

0: वैल्यूज, टू दोज ब्यूटिफुल क्वालिटीज, और उसके साथ जैसे हम कनेक्ट कर लेते हैं. क्यों? क्योंकि मेरे अंदर भी वो क्वालिटी, आपके अंदर भी वो क्वालिटी, और वो क्वालिटीज़ के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, वो वैल्यूज़ के साथ जैसे हम जुड़ते जाते हैं और हम फील करते हैं कि येस वी आर वन, वी आर वन फैमिली.
1: जी जी बिल्कुल. और कभी कभी हमें वो किसी के मुस्कुराहटों पे हो निशार, है ना, ये गाना बहुत पसंद आता है लोगों को. जीना इसी का नाम है, तो ऐसे कनेक्ट करते हैं. तो जिसके जो भी फेवरेट गाने हैं दोस्तों, तो आप थोड़ा सोचिए कि वो गाना आपको क्यों पसंद है, तो आप ऑटोमेटिकली अपने मूल्य भी पहचान सकते हैं कि कहीं ना कहीं उस गाने के जो शब्द है उसके साथ आपकी जीवन मूल्य भी कनेक्ट कर रहा है.
0: Beautiful.
1: ये कहना चाह रहे हैं,
0: ये भी है गीत है, चाहे कोई वन लाइनर्स किसको बहुत पसंद आते हैं, कोई शेर है, कोई वन लाइनर्स है, या कुछ कुछ जैसे आपने लिटरेचर पढ़ा है वो लाइंस आपको बार बार याद आती रहती है.
1: ओके, जैसे तो, मुझे ऐसा लगता है कि ओखली में सिर दिया तो मुसलों से क्या डरना,
0: क्या डरना, राइट,
1: मतलब रेडी टू फेस,
0: रेडी टू फेस, यस. तो वो जो है आपका, अगेन यहाँ पे करेज भी दिखता है आपका, है ना. तो इस तरह से आप चेक करो कि वो जब आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, याद करते हैं, तो आपको कौन सी क्वालिटीज के साथ ज्यादा कनेक्ट करते हैं.
1: तो इसमें मजबूरी भी तो है, ये भी तो एक आप कह सकते हैं कि ये एक नेगेटिविटी नहीं है.
0: तो वैल्यूज जो है, अगर हम देखते हैं, जैसे एक बार ही ऐसे एक व्यक्ति के साथ मैं डिस्कस कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि हम जैसे वैल्यूज की बात करते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे लाइफ में जैसे आप पॉजिटिव वैल्यूज की बात करते हो, वैसे ये क्वालिटीज जो है ना, जो कुछ नेगेटिव वैल्यूज भी होते हैं.
1: ओके,
0: तो हमें क्या करना है, हमें ट्यून करना है टूवर्ड्स पॉजिटिविटी, टूवर्ड्स द राइट वैल्यूज, है ना. अब लोग गलत काम भी करते हैं, तो हमें क्या करना है, हमें हमारा फोकस जो हो वो अच्छाई की तरफ हो, हमें अपने आप को बेहतर बनाने की तरफ हो, हमें अपने विचारों को एक बहुत सुंदर दिशा देनी है, अपनी लाइफ को एक बहुत अच्छा डायरेक्शन देना है, तो हमें अच्छे थॉट्स के साथ ट्यून करना बहुत ज़रूरी है. और ये क्वालिटीज़ जो है हमारे अंदर की, जो गुड क्वालिटीज़ है, उस पर जितना फोकस करते रहेंगे उतना ज़्यादा बढ़ती जाएंगी. अब मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूँ, जैसे स्टूडेंट्स होते हैं या इवन यूथ्स, उनको समझने के लिए देखो, मैं ये कहता हूँ कि देखो, आप फॉर एग्जांपल, आपके दोस्त जो है, आपके बारे में जब आप नहीं रहते हो तो क्या बोलते हैं. सो बेसिकली दिस इज़ योर पर्सनल ब्रांड. तो आपने अपना ब्रांड कैसे बनाया है, लोग आपको कैसे जानते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो वो आपका नाम लेके आपको नहीं जानते, आपकी क्वालिटीज़ की वजह से आपको जानते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल वो क्या कहेंगे, नहीं ये बंदा जो है ना, ये बहुत रिस्पेक्ट करता है सबकी, ये बहुत हार्डवर्किंग है
1: जी,
0: ये बहुत डिसिप्लिन्ड है, इसमें बहुत पेशेंस है. तो क्या करेंगे वो, आपके क्वालिटीज़ को वो एक्सप्रेस करेंगे
1: जी,
0: उसका वर्णन करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे देखो, आप किसी, कोई आपको पूछे आपका सबसे फेवरेट पर्सन कौन है, तो स्टूडेंट्स को APJ अब्दुल कलाम बहुत अच्छे लगते हैं. तो क्यों अच्छे लगते हैं, नहीं ही वॉज दो ही वॉज अ पोलिटिकल लीडर, ही वॉज वेरी हम्बल
1: जी,
0: ही वॉज वेरी नॉलेजेबल, है ना. मतलब वो ह्यूमिलिटी है, वो पावर है, वो अथॉरिटी है उनमें, लेकिन फिर भी जैसे उनकी जो क्वालिटीज़ है उसकी वजह से क्या हो रहा है, वो उनके साथ कनेक्ट कर पा रहे. सो दीज वैल्यूज़, यू नो, वी हैव टू होल्ड इट वेरी स्ट्रांग. तो ये हमारे रूट्स है, और अगर हम इन रूट्स को पकड़ के रखेंगे तो हम लाइफ में बहुत ग्रो कर सकते हैं.
1: ओके, बहुत सारे इंसान हैं, सबके अंदर वैल्यूज़ हैं, और वो लोग अपने वैल्यूज़ को लेकर के चलते हैं, लेकिन कई बार वो अच्छे इंसान के साथ कुछ हो जाता है या फिर खुद से गलतियां हो जाती है, तो वो गिल्ट में चले जाते हैं. तो क्या अपने अंदर ऐसी कोई वैल्यूज़ है या ऐसा कोई टेक्निक है जिसके माध्यम से उस गिल्ट को हम पार करके फिर से वैल्यूबल बन जाए.
0: अब इसके लिए क्या होता है ना, जैसे हम अपनी वैल्यूज़ की जब बात कर रहे हैं, हमारा फोकस जो है, अब उसके कई तरीके हैं उस गिल्ट से बाहर आने के लिए. अगर हम वैल्यूज़ पे फोकस करना चाह रहे हैं, अगर हम उसके बारे में सोचें और हमारे थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करें हमारे लाइफ के पास्ट एक्सपीरियंसेस, लेट्स से मेरे जीवन में कभी कोई फेलियर आया हो, तो उन फेलियर से बाहर आने के लिए मुझे कौन सी चीज़ ने सबसे ज़्यादा हेल्प की.
1: ओके,
0: तो शायद आप गिव अप करने कर रहे थे. चलो कोई स्टूडेंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं स्टूडेंट बार बार इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स भी सुनते हैं, फेल होते हैं, तो फेल होने के बाद एक तो दो चीज़ें होती है, एक तो वो गिव अप कर देते हैं कि नहीं अब मुझे नहीं पढ़ना है और छोड़ देते पढ़ाई. कोई होते हैं जो और हिम्मत करते हैं, नहीं और अच्छे से पढ़ूंगा, नेक्स्ट टाइम तो मैं ना आउट ऑफ मार्क्स ले लूँगा उस टेस्ट में, लेट्स से मैथ्स का पेपर है फॉर एग्जांपल, या साइंस का है, या कोई भी सब्जेक्ट है. तो क्या होता है, वो एक डिटरमिनेंट, एक थॉट जो आता है, वो हिम्मत जो करता है, तो उस हिम्मत के आधार से उसको वो बल मिलता है और उस बल से वो सफल होता है.
1: ओके, जी जी बिल्कुल. तो

0: हम मतलब अकेले में कभी बैठ के ये सारे चिंतन कर सकते हैं कि जब पास्ट के एक्सपीरियंसेस हैं हमारे पास तो उसमें हम कैसे बाहर आए, तो हमारे कौन से मूल्य था उसमें
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: जी?
1: तो हम जैसे अपने साथ बैठते हैं, अपनी लाइफ को जैसे थोड़ा देखते हैं, अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस को देखते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये जैसे मेरा अपना पर्सनल कम्युनिकेशन है खुद के साथ में।
0: जी, तो क्या आप हमें कोई ऐसे रिफ्लेक्शन

0: है किसी ना किसी मोड़ पे हर एक के साथ ये सिचुएशन आती है, चाहे आप कितने भी अनुभवी हो, सक्सेसफुल हो, अमीर हो या किसी भी प्रकार का व्यक्ति है, कहीं ना कहीं लाइफ में इस दौर से उसको गुजरना ही पड़ता है। तो ऐसे समय पर हमें तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि पॉज लेना बहुत ज़रूरी है। और जैसे कोई कहता था ना कि यू नो दिस शल पास, दिस टाइम शल पास, है ना, ये भी समय जैसे बीत जाएगा
1: जी।
0: तो ये जब हम सुनते हैं, अपने आप को याद दिलाते हैं, तो हमें और हिम्मत आ जाती है। तो इससे समय पे मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ कि आप बैठो, थोड़ा अपने माइंड को पहले सेट कर दो। और इसके लिए राइटिंग इज़ द पावरफुल टूल। तो आपके मन में जो जो थॉट्स आ रहे हैं आप लिखो उसको, और देखो आपके मन में क्या चल रहा है इस वक्त, और अपने आप से पूछो मेरा फोकस कहाँ होना चाहिए। तो उस समय आपको वो ऑटोमेटिकली वो वैल्यूज़ हाईलाइट हो जाएंगे
1: जी।
0: ओके, सबसे पहली बात तो है कि मुझे लाइफ में खुश रहना बहुत ज़रूरी है, तो वो खुशी कहाँ से आएगी? सबसे पहले तो मुझे शांत रहना है, मुझे मन में स्थिरता बहुत ज़रूरी है, तो स्टेबिलिटी है, पीस है, तो मुझे शक्ति चाहिए, वो शक्ति कहाँ से आएगी? तो मुझे कुछ अच्छी बातें सुननी ज़रूरी है, किसी अच्छे व्यक्ति के संपर्क में रहना बहुत ज़रूरी है, तो वो जो संग है, वो जो मतलब आपका एक फ्रेंडशिप है, रिलेशनशिप है, तो ये देखो ये जो सारी क्वालिटीज़ अगर हम फोकस करते हैं, इन वैल्यूज़ पर फोकस करते हैं, तो ऑटोमेटिकली देखना आपको बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे और उससे बाहर आना आपको बहुत ईजी हो जाएगा।
1: जी जी बिल्कुल। मान लीजिए ये पास्ट की बातें हैं, या आपने कहा कि राइटिंग के द्वारा भी हम चीज़ें कर सकते हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि सिचुएशंस में और बेहतर क्या हो सकता था और हम क्या कर सकते हैं। मान लीजिए कोई करंट सिचुएशन है और वहाँ पर हमें गुस्सा आ रहा है, तो उस समय कैसे पॉज ले सकते हैं? क्या वो प्रैक्टिकल सिचुएशन जब हो रहा होता है तभी हम ऐसे कुछ कर सकते हैं कि हम उस सिचुएशन को वहाँ पर पहले जैसे हम बात करते थे या फिर हमारे रिएक्शंस जैसे होते थे उसे बदला जा सकता है?
0: अब जैसे हमारे बिहेवियर्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, और जैसे हम अपने पहले भी शायद किसी ने शेयर किया हो, हमारे बिहेवियर्स एक तो दो प्रकार के होते हैं, एक तो रिएक्टिव बिहेवियर है, एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है।
1: जी,
0: रिएक्टिव बिहेवियर वो है जैसे कोई बात आ गई और इमीडिएटली हमने रिएक्ट कर दिया, किसी ने कुछ बोल दिया और मैंने तुरंत गुस्सा कर दिया, उसको कुछ उल्टा सीधा बोल दिया या अपमान कर दिया उसका, या कुछ भी किसी मतलब बहुत रूड तरीके से बात किया, बहुत ज़ोर से बोला या कुछ और अपशब्द भी बोल दिया उसको, शायद गाली दे दी। तो इस तरह से मेरा एक रिएक्शन कुछ भी हो सकता है, मतलब बात आई और मैंने तुरंत रिएक्ट किया, दैट इज़ वन बिहेवियर, रिएक्टिव बिहेवियर। दूसरे टाइप का बिहेवियर है रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर।
1: जी,
0: रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर क्या है? कोई भी बात आई, मैंने पॉज लिया, सोचा आई हैव अ चॉइस, अभी बात करनी है, बाद में बात करनी है, या बात ही नहीं करनी है। तो आई हैव अ चॉइस। तो अब मैं हम इसीलिए कहते हैं ना बहुत बार आप सोच समझ कर बोलो, तो आपने सोचा, समझा, यू हैव अ चॉइस, एंड देन आपने रिस्पॉन्स दिया, तो वो मेरा रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर हो गया।
1: ओके, तो तभी आप अगर आप गुस्सा करते थे और आप चाहते हैं अभी पीस को अपनाने के लिए, तो ये टेक्निक्स
0: बिल्कुल
1: यूज कर सकते हैं।
0: हाँ, तो मेरा रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर क्या होगा कि आई हैव टू होल्ड टू दैट वैल्यू ऑफ पीस, लव सो स्ट्रांग कि मुझे अपने आप से भी प्यार करना है, क्योंकि मुझे बीमार नहीं होना है।
1: जी,
0: तो मैं अपने आप से प्यार करूँ पहले, और मैं अपने आप को कहूँ कि नहीं, आई लव माई सेल्फ एंड आई वॉन्ट टू बी पीसफुल बिकॉज ये मेरे लिए अच्छा है।
1: ओके,
0: तो मैं ये कहूँगा कि आप सिर्फ पीस तो ज़रूरी है डेफिनेटली, बट थोड़ा अपने आप पर प्यार करो, अपने आप से प्यार करो, क्योंकि योर बॉडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जिसमें आपको रहना है।
1: जी,
0: और जैसे हम कहते हैं ना गुस्सा आता है तो जैसे हमारा बॉडी पे उसका बहुत असर होता है, हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स को डैमेज करता है जो हमें शायद पता भी नहीं है।
1: जी जी,
0: तो इसीलिए दैट लव वाली फीलिंग अपने लिए अगर इमर्ज करेंगे विद दैट लव एंड पीस, तो बहुत अच्छा मैजिक हो सकता है, क्योंकि सबको सबसे ज़्यादा प्यार किसी से है तो वो खुद से होता है।
1: नहीं होता है करना चाहिए नहीं होता है
0: नहीं होता है ना, अभी देखो अगर आपको चोट लग जाए तो आप क्या करेंगे बताओ?
1: हमेशा
0: यही सोचेंगे
1: तो
0: हाँ मलम पट्टी पहले करेंगे।
1: हाँ।
0: क्यों? क्योंकि वो दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो उससे पहले छूटना चाहते हैं।
1: हाँ,
0: तो प्यार करते हैं इसीलिए, नहीं तो आप बोलेंगे नहीं मुझे क्या करना है, ठीक हो रहा है तो हो जाए, नहीं तो छोड़ तो नहीं देते ना उसको। तो आपको प्यार है इसीलिए तो आप उसकी फिक्र है, ठीक होना चाहते हैं, है ना।
1: तो सेल्फ लव और सेल्फ केयर में थोड़ी सी थिन लाइंस है क्या, कैसे पहचानेंगे हम सेल्फ केयर कर रहे हैं या सेल्फ लव है ये?
0: सेल्फ लव और सेल्फ केयर, जैसे आप अपने आप से प्यार कर रहे हैं, सिंपल, बहुत सिंपल तरीके से समझना इसे, और आप खुद का ध्यान रख रहे हैं, तो इट इज़ लाइक बेसिक

0: बेसिकली जैसे मैंने कहा कि चोट लगी, आप उसको इलाज करा रहे, तो व्हाट यू डूइंग, यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, और आप साथ साथ आप सोच क्या रहे हो, है ना, आपके थॉट्स किस तरफ है, है ना। मुझे अपने आप से प्यार करना है, लेकिन मुझे अपने थॉट्स को नेगेटिविटी की तरफ से जाने से बचाना है।
1: ओके, तो वो सेल्फ लव होगा,
0: वो केयर होगा मेरा, लव के साथ आई एम केयरिंग, मेरा खुद का ध्यान रख रहा हूँ मैं, कि नहीं तुझे ऐसे नहीं सोचना है, तुझे ऐसी परिस्थिति में ऐसा सोचना है। सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ। बच्चे को भी बोलते हैं ना, वहाँ नहीं जाना, नहीं तो चोट लग जाएगी या कुछ, मतलब है ना, इट इज़ नॉट सेफ, तो यू आर प्रोटेक्टिंग, तो यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर चाइल्ड। तो उसी तरह से हमें अपना भी ध्यान रखना जरूरी है।
1: जी बिल्कुल, ध्यान रखने से अच्छे अच्छे मूल्यों को अपना सकते हैं।
0: हाँ,
1: सेल्फ लव जरूरी है उसके।
0: हाँ, ये तो बिल्कुल अपने वैल्यूज ही है ये तो।
1: जी, एक बात और कही जाती है कि पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो, तभी आप मूल्यों को अपना सकते हो, तभी आप अपनी जो जिंदगी को दूसरे तरीके से देख सकते हो। तो ये पॉजिटिविटी है क्या, मतलब कैसे पॉजिटिव रहेंगे?
0: अब पॉजिटिविटी अपने एक वैल्यू ही है, राइट, एक मूल्य ही है,
1: मूल्य ही है,
0: राइट, पॉजिटिविटी। तो अब पॉजिटिव रहना है तो पॉजिटिविटी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत बड़ा टॉपिक भी है, राइट। तो पॉजिटिव रहना है क्यों, क्योंकि मुझे पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए। अच्छा सोचूंगा तो अच्छा मिलेगा, शुभ सोचेंगे तो शुभ होगा। तो अगर मैं अगर उल्टा सोच रहा हूँ, नेगेटिव सोच रहा हूँ, तो मेरा रिजल्ट क्या होगा? तो जो मेरा इनपुट रहेगा वही मुझे आउटपुट मिल रहा है।
1: जी,
0: तो इसीलिए आई हैव टू ट्यून माई सेल्फ टू पॉजिटिविटी, कि कुछ भी हो जाए नहीं, मुझे वो पॉजिटिविटी को बहुत स्ट्रांगली होल्ड करना है, है ना। बहुत लोग कहते हैं नहीं मैं इतना पॉजिटिव सोचता हूँ, कुछ नहीं होता है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि एक आप एक बहुत अच्छी बुक है, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, उसमें ऑथर ने लिखा हुआ है, एक एग्जांपल मुझे बहुत पसंद आता है, कहते हैं कि 100 टाइम्स ऑफ पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करो, वो काम नहीं करते, उसके दो ही रीजंस होते हैं।
1: जी,
0: एक तो आपने क्लियरली वो एक नेगेटिव थॉट क्रिएट किया, ये नहीं होगा, तो उसका इफेक्ट जीरो हो जाता है, दैट इज़ वेरी क्लियर, ऑब्वियस, है ना। लेकिन वो कहते हैं कि दूसरा एक रीज़न है जिसकी वजह से इतना पॉजिटिव सोचने के बाद भी वो नहीं होता, और वो है कि आपका डाउट।
1: जी, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में है।
0: हाँ, तो आप सोचते कि आपने सोच लिया कि नहीं मेरा ये काम हो जाएगा, हो जाएगा, फिर आप सोचते हैं और अपने आप से पूछते हैं कि मैं इतना सोच रहा हूँ ये काम होगा, लेकिन क्या सच में होगा? तो वो जो डाउट क्रिएट किया, तो वो पूरा उसका असर जीरो हो जाएगा।
1: जी,
0: तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट ऑलवेज आई हैव टू ट्यून माई सेल्फ, कुछ भी हो जाए नहीं, मुझे पॉजिटिव ही रहना है। और ये क्या होता है कि एक दिन में नहीं होता, एक इंस्टेंस से नहीं होता, एक एक्सपीरियंस से नहीं होता है, आपको कॉन्शियसली वो ट्यून करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा सोचना ज़रूरी है, अच्छा आपका चिंतन होना ज़रूरी है, लोगों में अच्छाई देखना ज़रूरी है। कि अगर मैं जिन लोगों के साथ भी रहता हूँ, चाहे कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन हो, लेकिन उसमें मेरे लिए अच्छा क्या है?
1: ओके, तो वो सोचने से वो आपको दिखाई देगा कि क्या पॉजिटिविटी है उस सिचुएशन में।
0: हाँ बिल्कुल, जैसे देखो बहुत लोग ये एग्जांपल तो कई बार देते हैं ना, जैसे देखो एक प्लेन पेपर है और उसमें अगर हम एक डॉट मतलब कर दें, तो कहते हैं कि अच्छा आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो सब कहते हैं नहीं वो डॉट दिखाई दे रहा है, इतना अच्छा पेपर है, लेकिन उस पर वो मार्क पे ज़्यादा जल्दी अटेंशन जाता है। तो हमारा भी क्या है, ओवरऑल ये सिर्फ पेपर की पेन वो डॉट की बात नहीं है, लेकिन हमें हमारे आसपास के जो लोग हैं उनका बिहेवियर अलग अलग हो सकता है, लेकिन उस बिहेवियर में भी उनके अंदर की अच्छाई क्या है उस पे मेरा फोकस जाना ज़रूरी है।
1: तो उसे निरंतर प्रैक्टिस करना पड़ेगा।
0: बिल्कुल, तो सबसे पहला तो है मैं क्या देख रहा हूँ।
1: जी,
0: जो देखूंगा वही मेरे संकल्प चलेंगे, वही मैं सोचूंगा, राइट। तो अगर वो जिस तरह से भी बात कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं, अपने आप से पूछो उसमें मेरे लिए क्या अच्छा है, ये क्वेश्चन आप अपने आप से पूछेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको अच्छाई वो आपको दिखाई देगी, एंड यू विल पिक ओनली दोज गुड क्वालिटीज, है ना। जैसे मम्मी पापा घर पे बच्चों को डांटते हैं, पढ़ाई कर पढ़ाई कर, अब बच्चों ने पूछना चाहिए अपने आप से क्यों डांटते इतना, उनको क्या फ़ायदा। लेकिन इनको बच्चे को अच्छे मार्क्स मिलेंगे तो उसको ज़्यादा खुशी होगी, और पेरेंट्स को तो उससे ज़्यादा खुशी होगी।
1: जी,
0: पढ़ाई तो अल्टीमेटली बच्चे को करनी है, लेकिन रिजल्ट से खुशी दोनों को मिलने वाली है।
1: जी, वो खुशी के लिए।
0: हाँ,
1: और इसके साथ साथ हमारे जीवन में कुछ अच्छा ही होगा जब हम पढ़ाई अच्छा करेंगे, तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। जी हाँ, और जैसे आपने कहा नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिव ढूंढने की हमें कोशिश करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं वर्क प्लेस के बारे में, जब जो उस कार्य क्षेत्र में हम कार्य कर रहे हैं, मान लीजिए आपको बहुत सारे डिफ़िकल्टीज वहाँ पर फेस करना पड़ रहा है, कंपटीशन वाला माहौल है, कंपैरिजन वाले माहौल है, तो उसमें हम दिन रात उन्हीं लोगों के साथ काम कर रहे हैं, तो कैसे पॉजिटिव वैल्यू को देखेंगे वहाँ पर?
0: अब ऐसे सिचुएशन में हमें एक जो वैल्यू है या क्वालिटी का है वो बहुत हेल्प करती है, वो है पेशेंस।
1: ओके,
0: जब मैं कहता हूँ मुझे पॉजिटिव रहना है, तो ऐसा नहीं है कि कोई दवाई है जो मैंने आज ले ली और उसका रिजल्ट मुझे कल दिखाई देगा।
1: जी,
0: सो आई हैव टू बी वेरी पेशेंट। और आपके पेशेंस और आपकी जो सबके लिए एक अंदर से बहुत शुभ भावना है, ये बहुत अच्छे है, तो ऑटोमेटिकली वो हमारा अच्छा सोचना उनको परिवर्तन कर देगा। मैं हमेशा कहता हूँ, जैसे मेरा एक
1: कितने दिन में कर सकता है, लेकिन आपने बोला मेडिसिन नहीं है ये। जी।
0: तो इट टेक्स टाइम। अभी आई रिमेम्बर मेरे एक लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ मैं जॉब करता था, तो वहाँ पे ना मेरा जो वर्क स्टेशन था उसके पहले जैसे हमारा अकाउंट्स का एक बंदा बैठता था, और उसकी एक टिपिकल आदत थी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं अगर आपके साथ बात कर रहा हूँ तो आपको ज़रूर देखूँगा, आई कॉन्टैक्ट होता है हमारा, एक दूसरे को देखते हैं। तो उसकी आदत थी कि वो कभी वो आई कॉन्टैक्ट नहीं करता था। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको सामने से बात कर रहा हूँ तो वो इधर लेफ्ट देखेगा, राइट देखेगा, बट मुझे नहीं देखेगा। तो मैं नया था तो मुझे समझ में नहीं आया ऐसे क्यों, तो मैं क्या करता था, उसके सामने जाता था तो वापस वो इधर मुँह कर देता था। तो और सब लोगों ने नोटिस किया था, और मैंने शायद किसी से पूछा नहीं, और मेरे लिए बहुत वियर्ड एक्सपीरियंस था वो। तो हुआ ये कि थोड़ा अजीब सा लगा, आई वॉज वेरी अनकम्फर्टेबल, बट लेटर आई रियलाइज कि अच्छा ये इसका हैबिट ही ऐसा है। तो होता ऐसा था कि सभी को कंप्लेन था इस बात का, लेकिन कोई कुछ बोलता नहीं था। और वो भी चेंज नहीं हुआ, काफ़ी टाइम से तो वैसे ही था। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस बोला कि नहीं ये अच्छा है, ये सोचा। और जैसे मैं ऑफिस में एंटर करता था तो उसका वर्क स्टेशन पहले था, और फिर मैं आगे जाता था
1: जी
0: उसको क्रॉस करते हुए। तो एवरीडे मैं कुछ नहीं, आता था उससे मिलता था, भले वो जैसे भी लेफ्ट देखे राइट देखे, मैं उसको ग्रीट करता था, दो मिनट बात करता था उससे, और फिर आगे चला जाता था। ना इसका असर ऐसा हुआ कि ओवर द पीरियड ऑफ 3 months, 3 महीने लगे उसको, 3 महीने के बाद धीरे धीरे उसका बिहेवियर थोड़ा सा चेंज हो गया। धीरे धीरे वो आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करने लगा। मैंने उसको बहुत प्यार से एक बार फीडबैक भी दिया था उसका, तो ही स्टार्टेड मेंटेनिंग दैट आई कॉन्टैक्ट, और उसका रिजल्ट मुझे इतना ब्यूटीफुल रहा कि यूजुअली क्या होता है कि हम काम करते हैं तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट के साथ तो काम रहता ही है कुछ ना कुछ।
1: जी, जी।
0: तो मेरा जब काम रहता था तो मैं उसको कॉल करता था कि मुझे आना है मिलने आपसे, तो वो कहता था कि नहीं तुम रुको मैं आता हूँ तुम्हारे पास।
1: जी।
0: एंड अदरवाइज ऑन द कॉन्ट्ररी, जैसे मेरा बॉस है तो वो कॉल करता था तो उसको वो बुला लेता था कि आप मेरे पास आओ। तो सी दिस इज द चेंज। आप किसी व्यक्ति के बारे में आप जज करने के बजाय आप उसके लिए बस वो प्यार वो शुभ भावना रखो कि ये अच्छे है, और उनकी अच्छाई पे फोकस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप वो रिजल्ट देखेंगे। ऑफकोर्स थोड़ा टाइम लगेगा, बट आप रिजल्ट ज़रूर देखेंगे।
1: जी, दुनिया के कुछ दस्तूर है आप कह सकते हैं, और कुछ हमारे सोसाइटी के बाइबल कह सकते हैं आप, श्रीमद कह सकते हैं, कि इंसान को ऐसा ही होना चाहिए। घर में अगर लड़की है तो उसको ऐसा होना चाहिए, और लड़का को ऐसा होना चाहिए, ऐसे बिहेव करना चाहिए सोसाइटी में। तो जज कैसे नहीं करें, वो तो बचपन से आदत है, तो जज नहीं किए बिना कैसे हम रह सकते हैं, या फिर उस मोमेंट में हमें क्या सोचना चाहिए?
0: उसके लिए तो एक कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। सबसे पहले तो जैसे हम आप पॉजिटिविटी की बात कर रहे थे, तो क्या हम जैसे पॉजिटिव सोचते हैं तो अगर हम जज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें वो दोनों पहलू दिखाई दे रहे हैं, या फिर हमारा अटेंशन ज़्यादातर वो एक नेगेटिविटी की तरफ जाता है, या कोई ना कोई नुक्स निकालने की कोशिश करते हैं, है ना, ये ऐसा ही होना चाहिए वो वैसा ही होना चाहिए। जब ये वाले कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स आते हैं या बहुत ज़्यादा हम एडमेंट रहते हैं, तो विच मीन्स आई एम बीइंग वेरी जजमेंटल।
1: जी, क्योंकि परवरिश कहो या फिर कहीं ना कहीं माहौल ही ऐसा है।
0: हाँ, बड़ों को देख के कभी कॉपी किया है तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि हम उन्हीं को देख देख के वो जैसा बिहेव करते हैं वैसे ही बच्चे सीखते हैं, वैसे ही फॉलो करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम अपना एक थोड़ा सा एक स्टेप बैक करके हम अपने आप को देखना चाहिए कि क्या ये मैं कर रहा हूँ ये राइट है, क्या इसका और कोई तरीका हो सकता है इस सिचुएशन के साथ डील करना, या इस व्यक्ति से अगर मैं इस तरह से बात करता हूँ तो शायद वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, तो क्या मैं कोई और तरीके से इनसे बात कर सकता हूँ।
1: जी,
0: तो हम कभी ये नहीं सोचते कि क्या व्हाट कुड बी अनदर वे टू डू इट। हम क्या करते हैं, पहले से अगर मैं इस तरह से काम कर रहा हूँ तो मैं उसी तरह से काम करना पसंद, क्यों? क्योंकि आदत हो गई है. जैसे आप देखो कि आपकी आदत जो होती है ना, आदत से इंसान मजबूर हो जाता है
1: जी.
0: अब आपका सिंपल हैबिट है, आप फॉर एग्जांपल राइट हैंड से ब्रश करते हैं रोज मॉर्निंग में, आप लेफ्ट हैंड से करना शुरू करो तो थोड़ा अनईजी होगा, डिफिकल्ट होगा
1: जी.
0: और आपका प्रेजेंट में रहेंगे आप. क्यों? क्योंकि राइट हैंड से करते तो हम भाई हाँ मुझे ऑफिस जाना है, ये करना है, आज मेरा दिन, मतलब वही वाला एक थॉट प्रोसेस रहेगा. तो उसको ब्रेक करना बहुत जरूरी है
1: जी.
0: तो उसको अलग तरह से सोचना जरूरी है, अलग पर्सपेक्टिव लाइफ में लेके आना बहुत जरूरी है, तब जाके हम ग्रो कर सकेंगे
1: जी. मतलब हर कोई यूनिक है ये हम सोच सकते हैं. हाँ, कोई गलत नहीं है.
0: और क्या होता है, जैसे मैंने अपने मेंटर से एक बात सीखी, मुझे बहुत अच्छी लगती है, कि कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो, आप उससे जब बात करते हैं तो स्टार्ट टेकिंग अ फ्रेश मेजरमेंट. फॉर एग्जांपल जैसे आप कोई टेलर के पास जाओ सिलाई करानी है, तो आप भले उसको एक हफ्ते बाद मिलो, एक महीने बाद मिलो, या अगले दिन भी मिलो, तो वो हमेशा फ्रेश मेजरमेंट लेगा
1: जी.
0: आप कहेंगे नहीं मैं तो कल परसों ही आया था, नहीं नहीं कोई बात नहीं, मुझे मेरा फ्रेश मेजरमेंट लेना. क्यों? क्योंकि उसको पता है शायद हो सकता है कुछ चेंजेस आए हो
1: जी.
0: तो हमें भी ये मेंटली अप्लाई करना है इस बात को, कि मैं सुबह से लेकर शाम तक उस व्यक्ति के लाइफ में कुछ भी हो सकता है
1: जी.
0: एक सिंपल सा कॉल उसकी लाइफ को, उसके पर्सपेक्टिव्स को, उसकी जो जीवन की जो वैल्यूज है, धारणाएं, वो सारी बदल सकता है, दिशा बदल सकता है. तो इसीलिए जब भी मैं किसी से मिलूं, लेट मी टेक अ फ्रेश मेजरमेंट. एंड इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल वे टू डील विद पीपल. एंड एक्सेप्टेंस इसकी वजह से मेरा बहुत स्ट्रांग हो जाता है.
1: एक्सेप्टेंस मतलब हर सिचुएशन को, और मतलब जो इंसान है उनको भी एक्सेप्ट करना जरूरी है. ऐसा
0: बिल्कुल इंसान हो, सिचुएशन हो, उस जो भी परिस्थिति में है, मैं उसको पूरी तरह से स्वीकार करूँ.
1: ओके. चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो पॉजिटिव हो.
0: बिल्कुल. अब मेरी टीम में लेट से कोई बंदा है जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कोई है नहीं कर रहा है, बट आई नीड टू फाइंड आउट द रीज़न. शायद उसकी उसका कोई फाइनेंशियल लॉस हो गया है, फैमिली में कोई शरीर छोड़ दिया है, कुछ और सिचुएशंस है उसकी, अप्स एंड डाउन्स है, मे बी उसका असर हो सकता है. तो आई नीड टू सिट एंड टॉक टू दैट पर्सन, फाइंड आउट क्या रीज़न है
1: जी.
0: भाई तुम तो बहुत अच्छा कर रहे थे, तो अचानक क्या हो गया? तो ये जो मेरा कनेक्शन है उसके साथ में, वो रिलेशन है, वो कहीं ना कहीं उसको एम्पावर करेगा. और उसको मैं अगर थोड़ा सा सपोर्ट करता हूँ इमोशनली, तो वो कमाल करके दिखा सकता है. और बहुत बार, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में हम देखते हैं कि यही चीज़ लैक करती है, कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप, और एक अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टेंस जो होता है वो कहीं ना कहीं वीक हो जाता है
1: जी. ये सारे ही जीवन मूल्य हैं.
0: बिल्कुल
1: जी, बिल्कुल. और जैसे भाई जी ने कहा कि किसी से हम मिलते हैं, ये बहुत ही यूनिक पॉइंट है. उन्होंने अपने मेंटर से सीखा और आज हमें उन्होंने शेयर किया ये बात हमारे साथ, कि जो मेन एसेंस मुझे लगा कि फ्रेश मेजरमेंट्स, जो आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस है या किसी की कही हुई बातों से आप किसी को जज करते हैं, तो ये हम अगर नहीं करेंगे तो बेहतर होगा, और हम बेहतर सीख पाएंगे और बेहतर एक्सेप्ट कर पाएंगे एक दूसरे को. फ्रेश मेजरमेंट्स होना बहुत ज़रूरी है आपने ये कहा. और एक्शन प्लान के बारे में आपसे पूछना चाहेंगे कि जब हम कार्य क्षेत्र में जा रहे हैं, चाहे वो हमारा घर हो, या हम ऑफिस में जा रहे हैं, या हम स्कूल्स और कॉलेज में जा रहे हैं, तो माइंडसेट को कैसे बना के जाएं सुबह से जब हम निकल रहे होते हैं?
0: इसके लिए ना मैं हमेशा लोगों को तीन जनरेशंस की बात करता हूँ. ओके. क्योंकि इम्पोर्टेंस समझेंगे तभी हम उसके साथ कनेक्ट कर पाएंगे, वो लाइफ में हम प्रैक्टिकल में कर पाएंगे
1: जी.
0: तो मैं सभी के साथ ये शेयर करना चाहूँगा. लेट से देर इज़ अ जनरेशन ए, जनरेशन बी एंड जनरेशन सी. अब ये ए बी सी क्या है, लेट्स लुक एट इट. ओके. तो जो जनरेशन ए की बात हम कर रहे हैं, हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स से का वो जो जनरेशन है, तो वो थोड़ा सा पीछे जाके अगर हम देखेंगे तो उनके लाइफ स्पैन में अगर हम देखेंगे, या उनके जीवन काल में अगर आप देखेंगे, कि जैसे वैल्यूज को बहुत स्ट्रांग होल्ड करके रखा था इन्होंने, है ना. जैसे एक फैमिली का, एक जॉइंट फैमिलीज थे, आपस में एक दूसरे को बहुत रिस्पेक्ट करते थे, बहुत प्यार से रहते थे, कम कमाते थे लेकिन खुशी बहुत ज़्यादा थी. गांव में अगर आप देखेंगे कोई चीज़ बाहर रखी तो इतना लोग ऑनेस्ट थे, या इतना लोग दूसरों पर ट्रस्ट करते थे कि चिंता नहीं थी उनको कि कोई लेके जाएगा या कुछ चोरी हो जाए, वो डर नहीं था
1: जी,
0: है ना, फियरलेस थे बिल्कुल. तो वो एक जनरेशन था, लोगों का एक कमिटमेंट है उस पे मतलब इतना ज़्यादा था कि किसी ने अगर किसी को कुछ प्रॉमिस कर दिया तो वो शरीर भी नहीं छोड़ते थे, वो कमिटमेंट पूरा किया। बहुत सारी मूवीज में भी दिखाते हैं कि उसने वो प्रॉमिस फुलफिल किया और शरीर छोड़ दिया
1: जी,
0: मतलब इतना वैल्यू था वो कमिटमेंट का, वो प्रॉमिस का। सो दैट इज द जनरेशन वेयर वैल्यूज वर वेरी स्ट्रांग
1: जी,
0: राइट। अब हुआ ये कि जनरेशन बी की बात करते हैं, जहाँ पे हुआ क्या कि लोगों ने कहा उनके बच्चे हैं या फॉर एग्जांपल, तो उन्होंने क्या कहा कि भाई ये वैल्यू से हमारा कुछ होने वाला नहीं है
1: जी,
0: हमें तो सुख चाहिए, हमें तो साधन चाहिए, हमें तो संपत्ति चाहिए। तो धीरे धीरे जॉइंट फैमिलीज न्यूक्लियर हो गई और फिर साधन तो बहुत सारे आ गए, सुविधा भी बहुत मिली, लेकिन खुशी कम
1: जी,
0: दुख बढ़ गया है ना, एवरीथिंग इज देयर टुडे, लेकिन क्या हो गया, कॉम्प्रोमाइज कर दिया वैल्यूज को
1: जी,
0: झूठ बोलना शुरू कर दिया। अरे ये इससे कुछ नहीं होता, थोड़ा झूठ तो ये अभी के जमाने में चलना है तो हमें थोड़ा तो कुछ झूठ बोलना ही पड़ेगा। तो अडल्ट्रेशन है, करप्शन है, सब मिलावट, ये वो सब बातें कहाँ से आई, ये मिक्स हो गए सारे वैल्यूज,
1: ओके,
0: कॉम्प्रोमाइज कर दिया वैल्यूज को, है ना। तो इसीलिए लोगों ने गलत काम करना शुरू कर दिया है ना
1: जी।
0: अब झूठ बोल दिया तो ट्रस्ट भरोसा तो रहा ही नहीं, प्रोडक्ट बना दिया लेकिन उसकी क्वालिटी में खराबी आ गई। तो क्वालिटी है, कोई भी ब्रांड को ब्रांड कैसे बनता है, ये सारी क्वालिटीज बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल।
0: अब बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में तो वैल्यूज लिखे रहते हैं, एक्सीलेंस है, क्वालिटी है, कस्टमर सर्विस है ना
1: जी।
0: तो ये क्या है, ये सारे तो वैल्यूज से ही बना हुआ है। अगर वो इंसान में वो क्वालिटीज है तभी तो उसके ब्रांड में आएगी
1: जी।
0: तो वो मिडिल वाला जनरेशन जहाँ पे कॉम्प्रोमाइज कर दिया वैल्यूज को,
1: ओके।
0: बट नाउ लेट्स लुक एट द थर्ड जनरेशन। अभी जो समय है या आने वाला जो समय है वहां पर वी आर फोर्स्ड टू लिव विद वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल किसी को जो जनरेशन बी में अगर हम देखेंगे वैल्यूज कॉम्प्रोमाइज हो गए, किसी को चोरी करने की आदत है, कोई चीजें चलते चलते उठा लेता है
1: जी।
0: अब देखो अभी के जमाने में हम देखते हैं कि भाई कहीं पर भी जाओ कैमरेज लगे हुए हैं, चाहे वो घर है, ऑफिसेज है, कहीं पर भी है, तो यू कॉन्स्टेंटली अंडर एक सर्विलेंस है ना, मतलब देख रहे लोग आपको, मतलब आप छूट ही नहीं सकते। किसी ने कोई चीज उठाने की सोची भी तो उसको पता है भी कैमरा लगा हुआ है, वो चल रहा है नहीं चल रहा है वो नहीं सोचेगा
1: जी।
0: वो कैमरे को देख के क्या होगा, अटेंशन आ जाएगा, नहीं मुझे गलत काम नहीं करना है। मतलब क्या हो रहा है कि आई एम फोर्स टू लिव विद दोज वैल्यूज
1: जी,
0: है ना। अगर कोई मर भी जाता है तो उसको फाइंड आउट करते भैया कहाँ से है
1: जी,
0: उसका डीएनए से पता चल जाता है या पता लगा लेते हैं। तो दिस तरह, इस तरह से हमारा वो सिस्टम कितना वो हमें हेल्प कर रहा है एंड वी आर फोर्स्ड टू लिव विद वैल्यूज। तो उससे अच्छा है कि मैं पहले ही अपने वैल्यूज के साथ अगर रहूं, उसको बहुत स्ट्रांगली पकड़ के रखूं अपनी लाइफ में और उन वैल्यूज के साथ अपना जीवन अगर स्पेंड करूं, तो मेरे जीवन में मुझे कुछ और करने की या सोचने की जरूरत ही नहीं है
1: जी। भले कैमराज हो लेकिन हाँ, मैं सेफ हूँ क्योंकि मैं अपने वैल्यूज के साथ।
0: बिल्कुल बिल्कुल। अभी लोग कहते हैं कि नहीं आज के जमाने में ऐसा नहीं होता है, तो मैं उनको कहता हूँ कि मैं अपने लाइफ में पर्सनली मैंने ये चीज एक्सपीरियंस की है एंड आई एम नॉट ब्रैगिंग अबाउट माई सेल्फ, या मैं खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जैसे मैं कॉर्पोरेट में प्रोग्राम्स करता हूँ तो एक जगह पे प्रोग्राम किया मैंने और बाद में आके वो एचआर मुझसे बात करता है। उसने कहा कि सर आपका प्रोग्राम तो बहुत अच्छा था, मुझे आपसे एक बात करनी है। तो मैंने कहा क्या हुआ, कुछ फीडबैक है क्या? बोला नहीं नहीं सर, मुझे इनफैक्ट आपको कुछ और बात बोलनी थी। तो कहा कि आप जब हमारे हेड एचआर हेड से मिलने आए थे तो उस वक्त हमारे पास 10 और प्रोफाइल्स थी
1: जी।
0: तो मैंने देखा कि आपका तो एक्सपीरियंस 15 इयर्स का है और उनका एक्सपीरियंस आपसे कई गुना ज़्यादा था, 30-30 साल के भी लोग थे। एजुकेशन वाइज भी मैंने देखा कि आपका एजुकेशन और उनके एजुकेशन में काफ़ी पीएचडी होल्डर्स थे या बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस थे, अलग अलग और सर्टिफिकेशंस किए थे। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है। तो उन्होंने कहा नहीं, अब मैं समझ गया कि क्या डिफरेंस है, हमारे मैम ने आपका प्रोफाइल क्यों सिलेक्ट किया। तो मेरा कहने का भाव यह है कि आप जब अपने वैल्यूज़ में बहुत स्ट्रांग रहते हो तो आप जो बोलते हो ऑटोमेटिकली आपको कन्वे बोलना नहीं पड़ता कि बिलीव मी और ट्रस्ट मी, यू डोंट हैव टू यूज़ दोज वर्ड्स। लेकिन आप जिस तरह से बोलते हो ऑटोमेटिकली वो एनर्जी आपके बोलने में, आपके व्यवहार में वो रिफ्लेक्ट करती है
1: जी।
0: और लोगों को दिल तक वो बातें पहुँचती है और उनको परिवर्तन करना बहुत ईजी हो जाता है।
1: अब जैसे हैं वैसे,
0: बिल्कुल, मतलब हम कहते हैं ना कि जैसे वॉक द टॉक। आप अगर वो चीज़ कर रहे हैं और वो आप बोल रहे हैं तो ऑटोमेटिकली लोगों में वो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। आपको जैसे वो चिल्लाने की जरूरत नहीं होगी, ये करो ये वो सब, मोटिवेशन तो थोड़े टाइम के लिए रहेगा फिर वापस गायब। सो नेक्स्ट डे जैसे आप नहा के फ्रेश हो गए बिल्कुल, तो मोटिवेशन भी चला जाएगा
1: जी जी।
0: तो ऐसा ना हो, मतलब आप जब वो चीज़ अपने लाइफ में फॉलो कर रहे हैं वैल्यूज को आप इतना स्ट्रांगली पकड़ के रखा, तो जैसे वो महात्मा गांधी के लिए भी एक स्टोरी सब लोग सुनाते हैं, एक माता हाँ कंप्लेन करती थी कि मेरा बच्चा बहुत गुड़ खा रहा है, तो आप उसको बोलो कि नहीं खाए, तो उनको कहा कि नहीं एक हफ्ते बाद आओ
1: जी,
0: तब तक उन्होंने एक छोड़ा और फिर उनको बोला। तो ये स्टोरी तो सभी ने सुना हुआ है। तो माना हम अगर कोई चीज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वैल्यूज़ भी ऐसे ही हैं, हम अपने जीवन में उसको प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली बाकी फॉलो करेंगे। एंड इसीलिए एक हमेशा ये कहा जाता है इंग्लिश में कि यू नो वैल्यूज़ आर नॉट टॉट, वैल्यूज़ आर कॉट।
1: जी बिल्कुल,
0: है ना, मतलब हमें सीख कर हम वैल्यूज़ नहीं सीखेंगे। बच्चों को हम कहे कि नहीं आपको बड़ों से बहुत रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए, और अगर उसने देखा कि अपने पिता अगर उसके माता पिता से अगर रिस्पेक्ट से बात नहीं कर रहे तो बच्चे वो कभी नहीं सीखेंगे।
1: राइट जी बिल्कुल। और अभी वक्त हो गया अलविदा कहने का, एंड बहुत ही अच्छा रहा ये प्रोग्राम, मुझे पर्सनली तो बहुत ही अच्छा लगा, रिवाइज हो गई कि क्या मूल्य एक्चुअली है और जीवन मूल्यों को कैसे अपनाना चाहिए। जीवन रोशनी में तो हम यूं ही कितने सालों से स्पॉटलाइट वैल्यू जीवन रोशनी कार्यक्रम के माध्यम से ये जानते आए हैं, तो आज रिवाइज हो गया। आपको कैसा लगा आप हमें कॉल करके या मैसेज करके बता सकते हैं। यहाँ पर हमारे सुभाष भाई जी का मैसेज आया है, धन्यवाद, वो बहुत ही रेगुलरली हमारे सारे कार्यक्रम सुनते हैं, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो उन्होंने हेल्दी रिलेशनशिप और गोल और स्वतंत्रता, ये बातें जो हैं आपकी बहुत उन्हें अच्छी लगी। इसके साथ साथ जीवन में हर बार एडजस्टमेंट और इसके साथ साथ समाने की शक्ति बढ़ाने पड़ती है, ऐसे उन्होंने कहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अपनी फीडबैक के लिए। यहीं पर हम रुकना चाहेंगे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दत्ता भाई जी आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू सो मच, मुझे भी बहुत अच्छा लगा और बहुत सुंदर रीति से आपने प्रश्न पूछे और बहुत सारी बातों को एक सरफेस पे ले आए और काफ़ी क्लैरिटी हुई। थैंक यू सो मच,
1: धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं जब जब आप शांतिवन आएँ तो हमारे स्टूडियोज में ज़रूर आएंगे।
0: ज़रूर ज़रूर ज़रूर, थैंक यू
1: जी। तो दोस्तों यहीं पर रुकते हैं, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM। नमस्ते।

0: ओम शांति। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस बातें मुलाकातें कार्यक्रम में। आशा करता हूँ आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए, आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ विशेष मेहमान महाराष्ट्र पुणे से उपस्थित हैं, मेघना जी हमारे साथ उपस्थित हैं। बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट है और इनकी खास बात यह है कि ये खास सावित्री बाई फुले के वेशभूषा में है, तो निश्चित तौर पर आप सोच रहे होंगे और सही सोच रहे हैं आप। मेघना जी जो है मास्टर सावित्री बाई फुले हैं, आज हमारे साथ में उनकी बातचीत होंगी और आप सावित्री बाई फुले की जीवन कहानी को हूबहू स्टोरी के रूप में लोगों को सुनाते हैं और साथ ही साथ लोगों को लगता भी है कि अरे भाई सावित्री बाई के जीवन हो तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा था वो। उनके सामने एक सावित्री बाई का जो दर्शन है वो आपके कहानी सुनने के बाद लोगों को फील हो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। क्योंकि हमने देखा कि स्कूल टाइम में हमने उसको पढ़ा था और शायद आज इतना वो चैप्टर है या नहीं वो भी मुझे पता नहीं, लेकिन स्कूल टाइम में हम लोग एक चैप्टर हमको सावित्री बाई फुले का मिला था, उनको सुना और वो उससे पता चला था कि उन्होंने कितना मेहनत किया है शिक्षा को, खास फीमेल यानी लड़कियों को शिक्षित करने के लिए उन्होंने अगर कुछ किया है तो बस उन्होंने किया है। और वो इतने सटीक बना उस समय का जो विरोधाभास सिचुएशन में अपने आप को सारे समाज की बातों को सुनते हुए फिर भी उन्होंने वो एक संकल्प था उनका कि मुझे लड़कियों को पढ़ाना है, दैट्स ऑल, महिलाओं को पढ़ाना है। और उन्होंने उसको देखा, बाकी किसी और चीज को नहीं देखा। और कहते हैं कि वो जब भी स्कूल में पढ़ाने जाती थी तो बैग में बुक के साथ साथ में एक साड़ी भी रखती थी, क्योंकि वो पढ़ाने जाती तो लोग उसके ऊपर कुछ ना कुछ फेंकते थे, तो उन्हें पता था। तो इसीलिए वो फिर स्कूल में जब जाती जहाँ पर पढ़ाने के लिए उनको बच्चों को बुलाती थी तो वहां पर वो फिर से करके अपना बच्चों को पढ़ा के रिटर्न। तो इतना जो आत्मीयता है कि एजुकेशन के प्रति और खास महिलाओं को या बच्चियों को पढ़ाने का जो आत्मीयता वो सावित्री बाई फुले से हमें मिलता है, तो उनको नमन जहाँ भी है उनको बहुत बहुत याद देते हैं। और उनकी जीवन के कुछ चुनिंदा अनुभवों को या उनके बताए हुए रास्ते पर हम लोग आज जो है जो आज हम लोग देख रहे हैं एक वंडरफुल थिंग कि आज लड़कियां अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं और अच्छे अहदे पे काम कर रहे हैं, ये देखकर खुशी होती है। शायद उनकी आत्मा को भी खुशी मिल रही होंगी ये सब चीजें देखकर वर्तमान। तो आइए मेघना जी, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में, कैसे हैं आप? नमस्ते।
1: नमस्ते, धन्यवाद।
0: जी जी जी जी,
1: मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि आज मैं पुणे से सीधा मधुबन में जाके उधर मतलब उधर से आज ये बात हो रही है, तो आई रियली फील इट। सो थैंक यू सो मच, बस आपके बहुत बहुत आभार, हमारे पाटिल दीदी के भी बहुत आभार कि उन्होंने ये
0: दिया,
1: हमारी आज बात हो रही है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और महाराष्ट्र से सुभाष जी ने याद किया है, वेलकम लिख के भेजा है। सुभाष सोनावने जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और आशा करता हूँ आप भी शिक्षक रहे हैं तो सावित्री बाई फुले के बारे में आप भी अच्छी तरह से जानते भी होंगे। तो आइए मेघना जी, मैं सबसे पहले तो आपका स्वागत करते हुए मुझे बताने की जरूरत है कि आपको कितने मेडल्स, कितने कार्यक्रम आपने किए हैं। आपने काफी कार्यक्रम किए, आप काफी व्यस्त भी रहते हैं और अच्छे अच्छे कार्यक्रम। स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ में आप विधवाओं के लिए काम करते हैं, जो विधवाएं हैं उनके ऊपर काम करते हैं और ट्रांसजेंडर इन लोगों के लिए भी काम करते हैं। हाल ही में काफी संस्थाएं जो हैं ट्रांसजेंडर पर अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनको अच्छा मानते हैं और इनके लिए काम करना शुरू हो गया। एक बहुत बड़ा चेंज जो है ये 20वीं सदी में जो है हम लोग चीजों को देख रहे हैं कि जिनके ऊपर बहुत ज्यादा मना मुश्किलें आई थी और उनका जो है कहीं ना कहीं एक ट्रांसफॉर्मेशन उनके लाइफ में अब आने की आने वाला है और हम देख भी रहे हैं, काफी चेंजेस देख रहे हैं। बस वही है कि हमारा लाइफस्टाइल जो एकदम से नीचे आ गया था उसको चेंज करने के लिए खुद को खड़ा होना पड़ेगा एक बार थोड़ा सा। अगर आप थोड़ा भी अगर अपनी साइड से नहीं खड़े होते तो फिर सावित्री बाई फुले ये मेघना जी जैसे कितने भी लोग आए आपको समझा तो फिर बदलना किसको है, हम बदलाव के लिए आपको एक सपोर्टिंग सब चीजें दे सकते हैं लेकिन चलना किसको है, आपको है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हम लोग जो है थोड़ा जागरूक होना बहुत जरूरी है और जागने के बाद थोड़े दो चार कदम अच्छा लगेगा तो यू कैन मूव, आप रन कर सकते हैं, आप दूसरों के लिए मिसाल बन सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि बहुत सारे लोग हैं और मुझे अच्छा लगा इस पर अभी हाल ही में ट्रांसजेंडर पर फिल्में भी बन, पहले ऐसे नहीं हुआ तो फिल्में भी बन रही हैं, यानी उनके ऊपर ज्यादा फोकस है, सरकार भी उनके लिए कुछ करना चाहती है, संसार में जो लोग हैं वो भी करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पे हम कहीं ना कहीं वो जो पीड़ादायी दुनिया है हमारी, उससे हम बाहर निकल के एक अच्छी दुनिया अपना क्रिएट कर सकते हैं, इसके लिए काफी लोग आगे आ रहे हैं। तो वही मेघना जी, मैं चाहूंगा कि वर्तमान में आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी मैं चाहूंगा कि आप अपने वर्तमान में कौन कौन सी चीजें आप कर रहे हैं। मेघना जी, वर्तमान में आप कहाँ पर हैं, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए।
1: एक्चुअली मैं पूना से हूँ, महाराष्ट्र पूना से। और 2011 तक मैं आईटी एसेट हेड थी, जब मैं इंडिया, मनीला और यूएस हैंडल कर रही, तब आई वाज वर्किंग फॉर द फार्मर्स। मतलब सैटरडे संडे मुझे छुट्टी थी। और कॉलेज के जमाने में मैं बहुत ड्रामाज वगैरह ऐसे करती थी, बहुत सारे स्ट्रीट प्लेज मैंने तभी लिखे हैं, बहुत सारे विलेजेस में जाती थी। मतलब ये जो मेरा है वो मैं कॉलेज के जमाने से ही गाँव गाँव में जाके उसके ऊपर जन जागृति करती थी। तो 2011 में सावित्रीबाई फुले के वंशज है जो मेरे घर पे आए और बोले कि आप बहुत अच्छा बोलते हो सावित्रीबाई के ऊपर, हमने सुना है, तो हम प्लीज हमारे पास भी आइए आप, और हमारे बहुत बड़ा प्रोग्राम है। तो तभी मैं बहुत बीमार थी, इट वॉज जस्ट लाइक पैरालिसिस, मतलब पैरालिसिस जैसा मुझे हो गया। हाथ पाव कुछ भी नहीं हिला पाती थी। इट वॉज नॉट पैरालिसिस बट इट वॉज जस्ट लाइक पैरालिसिस, इन आयुर्वेदा इट इज कॉल्ड एज वात प्रकृति एंड ऑल। तो 103 टेम्परेचर मुझे 4-5 महीने तक था, तो मुझे उठना भी नहीं आ रहा था। मैं उनको बोली भी, अरे मुझे कुछ भी नहीं हो रहा है, मैं कैसे आऊँ आपके पास। तो वो इंसिस्ट कर रही थी, नहीं 2 मिनट के लिए आ जाओ, 2 मिनट के लिए आ जाओ। तो मैंने हाँ बोल दिया उनको कि चलो आ जाते हैं और 2 मिनट हम लोग करते हैं। जब मैं उनको बोली कि मैं सावित्रीबाई फुले के गेटअप में आती हूँ तो ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, ऐसे मैंने उनको बोला, तो बोले चलेगा। तो मैं गई उधर, तो उधर क्राउड था अराउंड 3,500 लेडीज वो प्रोग्राम के लिए। तो अच्छा। मैंने पीछे से एंट्री लिया और मैं बोली कि अगर मला ओळखलत का, मी तुमची सावित्री, मतलब मुझे पहचाना क्या, मैं आपकी सावित्री बाई आई हूँ करके। तो सबने पीछे मुड़ के देखा, अरे सावित्री बाई आई है करके। तो मैं स्टेज के ऊपर चढ़ गई और मैं 3 मिनट्स के लिए खड़ी बोलना, मतलब तभी हमारा ये डिसाइड हुआ कि 3-4 मिनट्स में बोलूंगी। यू कांट बिलीव, मैंने 2 घंटा ऐसे ही बोल दिया खड़ा होके, और मुझे मैं भूल गई मैं बीमार हूँ, मुझे क्या हो रहा है। और जब खत्म होके मैं स्टेप्स ऐसे नीचे आ रही थी तो 3-4 रोज के जितने भी सारे लेडीज थे वो सब आए, मतलब प्रोग्राम चल रहा था स्टेज के ऊपर, लेकिन वो आए, मुझे उठाया और सब मुझे लेके गोल गोल गोल गोल राउंड वो ग्राउंड पे ले रहे और बोल रहे कि जो फोटो में वो सावित्रीबाई फुले हमको दिखाई दे रही है आप बिल्कुल वैसी हो, और हमको लगता है कि आप ही सावित्रीबाई फुले हो, तो आप ये काम बंद मत कीजिए। तब से लेके आज तक ये किरदार में निभा रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि सावित्रीबाई फुले का जो जीवन है वो एक मोटिवेशन है हमारे लिए। मतलब वो जो जमाना था कि एक लेडी बाहर भी आ नहीं सकती अपने घर के बाहर, तभी उन्होंने इतना बड़ा काम किया है। और हमारे पास तो मतलब हम तो अभी सो कॉल्ड मॉडर्न है, फिर भी हम लोग उनके जैसा नहीं बन पा रहे। तो एक मोटिवेशन जो है वो मैं चाहती हूँ कि वो समाज में जाए, इसलिए ये किरदार मैं अभी निभा रही हूँ और 1,000 के ऊपर मेरे शोज उसके हो गए।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेघना जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अपने बारे में बताने के लिए, और एक अच्छा एक्सपीरियंस आपने सावित्रीबाई फुले इस आर्ट के बारे में बताया। निश्चित तौर पे लोगों को काफी टाइम के बाद अगर कोई अच्छी बात लोगों के बीच में विद एक्टिंग विद डायलॉग्स जाता है तो लोगों के दिल में वो सारी चीजें जो है याद आ जाती है, वो एक कनेक्शन जुड़ जाता है निश्चित तौर पर।
1: और कोशिश भी मैं करती हूँ कि सावित्रीमाई लगे वो उनके सामने भी।
0: अच्छा, मैं चाहूंगा कि अभी जो आर्ट वगैरह आप करते हैं या ये जो कला के क्षेत्र में, कैसे आपका आना हुआ, क्या बचपन से आपको इसके प्रति लगाव था या फिर?
1: हाँ, बचपन से, मतलब मैं एक बचपन का किस्सा आपको बताना चाहूंगी कि मैं छोटी थी तो मेरे घर में टीवी भी नहीं था, टीवी वगैरह कुछ नहीं था तभी, लेकिन मेरे बाजू में एक बिल्डिंग थी तो उनके 4th फ्लोर पे ना एक टीवी का आवाज हमको सुनाई देता था। तो मैं क्या करती थी, आम का एक बहुत बड़ा पेड़ था तो मैं पेड़ के ऊपर चढ़ जाती थी और वहां से वो सुरभि करके एक सीरियल लगती थी, तभी आपको शायद पता भी होगा वो। तो सुरभि में ना ऐसे पेड़ के ऊपर खड़ी होती थी, बहुत चढ़ जाती थी ऊपर और फिर ऐसे कान लगाती थी वो वॉल के यहाँ, और फिर वो सुरभि में सुनती थी और फिर नीचे आती थी पेड़ से, और जितने भी सारे बच्चे थे मेरे भाई बहन या मेरे बाजू में जो रहते थे, उनको सबको मैं इकट्ठा करती थी। और मेरे पास तो माइक नहीं था, तो मैं क्या करती थी, एक ऐसे एक डब्बा रखती थी ऑयल का, उसमें एक लकड़ी डालती थी और उसमें एक चंबू डालती थी, और जस्ट लाइक अ माइक, और फिर मैं उनको पूरा स्टोरी बताती थी जो मैंने वहां से सुना है। तो ये बचपन से ही शायद मुझे उसकी चाहत है।
0: चलिए, बहुत ही अच्छा इंसिडेंट आपने सुनाया बचपन का, मुझे अच्छा लगा, और मुझे लगता है कि हमारे मित्रों को भी अच्छा लग रहा है कि आपको सुनकर। और इसके साथ में जैसे आप अभी अपना जो एनजीओ वगैरह कुछ संस्थान चला रहे हो, तो उसके बारे में बताइए, और कैसे वो काम शुरू हुआ और अभी किस तरह से वो काम कर रहे हैं, वो थोड़ा सा।
1: जब मैं 8th स्टैंडर्ड में थी, तो मेरे पिताजी के कंपनी में मतलब एम्प्लॉइज यूनियन हो गया और पूरी कंपनी बंद पड़ गई थी। तो मेरा 8th और 9th मम्मी ने कैसे भी संभाला, लेकिन जब मैं 10th में गई तभी भी बहुत बुरे हालत थे, क्योंकि सब पैसे भी खत्म हो गए थे और मेरे पास बुक लाने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं थे, ना मुझे अच्छा ड्रेस था, तो मम्मी ने वही ड्रेस ऐसा थोड़ा बड़ा करके वगैरह मुझे दिया था। तो मैं क्या करती थी, मेरे फ्रेंड्स को पढ़ाती थी और उनके बुक्स में लेके आके रात में बैठ के वो पूरा डाइजेस्ट वगैरह सब लिख के ऐसे रेडी करती थी सब नोट्स, और वापस उनको पढ़ाती थी। मतलब ना मुझे ट्यूशन था ना कुछ था, लेकिन मेरे पास ना कुछ बुक नहीं थे, तो मैं मेरे क्लास टीचर से मिली और बोली कि मैडम मेरे पास बुक्स नहीं है और आपने आज मुझे खड़ा कर दिया बाहर, लेकिन मैं क्या करूं, मतलब अभी घर पे पैसा नहीं है और मम्मी के पास मैं नहीं मांग सकती कि मुझे पैसा दे दो, क्योंकि मुझे घर की हालत पता है कि मैं नहीं मांग सकती। तो उनको बहुत बुरा लगा। तो हमारे स्कूल में तभी सावित्रीबाई फुले दत्तक योजना करके एक स्कीम था, वो स्कीम के अंडर आपको बुक्स देते थे, तो वो स्कीम के अंडर से मुझे बुक मिल गए। तभी मैंने प्रण लिया था कि मैं आगे जाके जब बड़ी हो जाऊंगी मैं यही सावित्रीबाई फुले दत्तक योजना चालू करूंगी और जो जितने भी गरीब बच्चे हैं उनके लिए हेल्प करूंगी। और कोइंसिडेंटली मैंने सावित्रीबाई फुले के वन एक्ट प्ले चालू किया, तो जितना भी मुझे उसमें से डोनेशन मिलता है तो मैं अभी सावित्रीबाई फुले दत्तक योजना करके वो जितने भी स्कूल्स है उसको हेल्प करती हूँ। तभी से मेरा वो सोशल वर्क चालू हो गया। मतलब जो खुद ने मतलब आप इमेजिन कर सकते हो कि मुझे वो एक्सपीरियंस हुआ है कि यदि फीस नहीं है बुक्स नहीं है तो हम क्या कर सकते। अभी बीच का ही आपको बोलती हूँ कि मैं एक बहुत गांव में गई थी, मुलसी करके है महाराष्ट्र में, तो उधर गई थी। तो उधर उन्होंने मुझे बिठाया प्रिंसिपल ने उनके केबिन में, बहुत बहुत बारिश थी और बेचारे जो प्रिंसिपल थे उनके ऊपर से ऐसे पानी गिर रहा था। मैंने ऊपर देखा तो मेरी पूरी साड़ी भीग गई थी। अरे ये क्या ऐसे स्कूल में ऐसे। और फिर बाद में पता चला कि वो बच्चे तो बहुत दूर से चल के आ रहे हैं, मतलब उनको कुछ बस वगैरह कुछ भी नहीं। तो बीच में देखा तो मतलब उनका जो प्यून था वो आया और उन्होंने वो कबर्ड ओपन किया। मैंने बोला ये क्या है इस कबर्ड में, तो बोले ये हमारी लैब है। मैं बोले ये लैब है, मतलब कांट इमेजिन कि यही ऊपर का जो कबर्ड का एक सेक्शन है वो उनकी लैब है, उसके ऊपर लाइब्रेरी है। मैं बोली अरे स्कूल कैसे होगा, बच्चे कैसे पढ़ते होंगे। और फिर मैं गई और जब मेरा वन एक्ट प्ले चालू हो गया, मेरा प्रयोग चालू हो गया, तो पता चला कि बच्चों को ना बच्चों ने इधर के कंप्यूटर देखे हैं ना इधर कुछ है। तो जब मेरा ये खत्म हो गया उसके बाद तुरंत ही बाद हमने उधर बहुत अच्छा लैब और बच्चों को कंप्यूटर दिए, तो अभी उधर कंप्यूटर भी है। तो ऐसे बहुत सारे स्कूल्स हैं कि जिनको जो फैसिलिटी नहीं है वो एटलीस्ट मतलब आपके जैसे भाई बहन जो जुड़ जाते हैं उनकी मदद से मैं उनको हेल्प करती हूँ।
0: क्या बात, बहुत बढ़िया बात।
1: और ये हो गया बच्चों का। अभी जो अपने फार्मर्स है मतलब वो खेती तो कर रहे हैं लेकिन उनको उतना मतलब उनका जो माल है उसको उतना पैसा नहीं मिलता। तो मैं आईटी फेयर्स लगाती हूँ उनके लिए, उनके जो वुमेन्स है उनको ट्रेनिंग देती हूँ मैं कि कैसे ये देखो ये बिग बाजार है, ये बिग बाजार में कैसे इन्होंने पैकेजिंग किया आप देखो। ये उनको दिखाने के मैं लाती हूँ, उनको दिखाती हूँ मैं और मेरी सिस्टर, फिर उनको पैकिंग सिखाते हम कैसे रहना है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट अपनी कैसी करनी है वो उनको सिखाते, फिर उनके जो प्रोडक्ट है वो हम आईटी फेयर्स लगाते हैं और उसका जो प्रॉफिट है वो हम लोग उनको देते हैं। तो मुझे बहुत खुशियां होती है कि चलो हमारे हाथ से कुछ ना कुछ अच्छा होता है, ऐसे कुछ थोड़ा बहुत काम चालू है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और सुभाष जी ने याद भेजा है और उन्होंने लिखा है कि बहुत ही अच्छा लगा उनको, सुंदर आपका उनको सुन के। और सबसे पहले पूना में बहुत जो है ये
1: मानसिक तकलीफ झेलकर खुद
0: सहकर
1: की
0: खुद को अच्छा बनाया आपने, महिला स्कूलों को ओपन किया और उन्हें हेल्प किया। थैंक यू सुभाष जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और मानसी जी भी याद कर रहे हैं, ओम शांति लिख के भेजा है और नाइस वर्क करके उन्होंने मैसेज लिया है। मानसी जी धन्यवाद, शुक्रिया। और अभी आइए फिर से मैं जुड़ना चाहूंगा, आप जो पहले से ही आपको आर्टिस्ट का तो शौक था ही, उसका आपने
1: हाँ
0: एग्जाम्पल भी दिया, उससे पता चल जाता है। तो ये जो कारवा है, अब जैसे इस्टेब्लिश हम कोई चीज नया करते हैं तो शुरू शुरू में थोड़ी मुश्किलें आती है, बाद में एक बार
1: हाँ
0: वो आइडिया आ जाता है तो सब चीजें आसान हो जाती है। तो
1: हाँ
0: शुरू शुरू में आपको कोई दिक्कतें हुई या स्मूथली चला?
1: पहला वो जो मैं मेरा वन एक्ट प्ले हो गया, उसके बाद एक स्कूल से मुझे आया रिक्वायरमेंट, बोअर स्कूल करके है, कि मैडम हमारे इधर आप आ जाएंगे क्या? मैं बोली चलो उधर भी कर देते हैं। बाद में ये नहीं पता था कि मैं इतना सारा करूंगी या पूरे महाराष्ट्र में घूमूंगी, ये कुछ मुझे पता ही नहीं था। फिर बोअर स्कूल का आया, फिर उसके बाद मुझे लगा कि मुझे अभी सावित्रीबाई फुले का स्टडी करना चाहिए, क्योंकि आई हैव टू नो ईच एंड एवरीथिंग। तो मैंने उनके जितने भी सारे प्लेसेस थे वो विजिट किया, मतलब उनका जन्म स्थल, उनका वो प्लेस, पूरा पुना का प्लेस, फिर उनके बहुत सारे बुक्स। और अनफॉर्चुनेटली अभी बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है, लेकिन जब 2010-2011 में जब मैंने वन एक्ट प्ले चालू किया था, तो हमारे पुणे में अप्पा वर्मन चौक करके है, मतलब आपको जो बुक चाहिए वो उधर मिल जाता है।
0: वहां
1: मैं
0: पे मिल
1: उधर
0: जाता है।
1: गई, बहुत सारे शॉप्स देखे, लेकिन बुक ही अवेलेबल नहीं था। तो मुझे बहुत
0: अच्छा।
1: बुरा लगा, अरे सावित्रीबाई फुले के ऊपर मुझे बुक भी नहीं मिल रहा है। तो बहुत ढूंढ के मुझे एक बुक मिला। उसके बाद मैंने स्टडी चालू किया, फिर गवर्नमेंट ऑफिसेस में गई, उधर कुछ बुक मिलते हैं क्या, ऐसे करते करते फिर उसका वो स्टडी हुआ। लेकिन मतलब अभी बताने में मुझे बहुत दुख होता है, लेकिन कभी कभी ना, मतलब सावित्रीबाई फुले ने कभी जातिवाद नहीं किया, उन्होंने हमको सर्वधर्म समभाव सिखाया है। महात्मा ज्योतिराव फुले ने सर्वधर्म समभाव सिखाया है। लेकिन कभी कभी लोग बोलते हैं अरे ये तो माली नहीं है, माली समाज की नहीं है, फिर भी ये क्यों कर रही है। मतलब बीच का एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको। मेरे एक दोस्त है, वो बोले अरे आपके थाउजेंड्स ऑफ प्ले हो गए तो आपको गवर्नमेंट का पुरस्कार मिलना चाहिए। मैं बोली अरे मैं तो पुरस्कार के लिए कुछ नहीं करती, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर भी उन्होंने मुझसे वो फाइल लिया और सबमिट किया। लेकिन जो उनके पॉलिटिकल फ्रेंड थे वो, उन्होंने बोला अरे ये माली समाज से नहीं है तो इनको हम पुरस्कार नहीं दे सकते। तो मैंने फ्रेंड को ही डांटा, अरे मैं जन जागृति कर रही हूँ और तू वही मुझे जातिवाद में धकेल रहा है, मुझे पुरस्कार की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब मैं पुरस्कार के लिए नहीं कर रही हूँ, समाज
0: सही
1: में
0: बात।
1: हम कुछ प्रबोधन करें, क्योंकि

0: खेत नहीं था, कुछ नहीं था, तो मैंने दूसरों के खेत में जाके मजदूरी करके मेरे बच्चे को पढ़ाया। मेरा बच्चा बी हो गया और मेरे बच्चे की शादी थी अभी 2 महीने के पहले। तो मुझे बहुत ये लगा, खुशी हो गई कि मेरा मेरा ही बच्चा है, तो मेरे बच्चे को मैं आरती कर लूँ। तो मैंने ना सिर्फ आरती का ताट लिया हाथ में और उसको ऐसे टीका कर रही थी, तभी मेरे समाज के लोग आए, मुझे ऐसे पकड़ा। मतलब ये जमाने की स्टोरी है कि उनको ऐसे पकड़ा और धकेल के बाहर निकाल दिया वो हॉल से। तो उन्होंने जो प्रसंग बताया ना, तो मुझे खुद को रोना आ गया। घर आके उनके सामने मैं रोई नहीं, लेकिन मैं 8 दिन बिल्कुल सोई नहीं। मैं बोली कि मैं सावित्री बाई फुले का किरदार निभा रही हूँ, क्या मैं सच्ची तरह से निभा रही हूँ क्या? तभी मैंने ये जो मेरा किरदार है वो डेडिकेट किया, और मैं विधवा ये सब्जेक्ट के लिए अभी जनजागृति कर रही हूँ कि ये स्टॉप होना चाहिए, क्योंकि उसका हस्बैंड गया, उसमें उसका कुछ दोष नहीं है, तो क्यों नहीं? मतलब जब उसका हस्बैंड जाता है तो उसका बिंदी जो है, उसका जो कुंकू है, पहले एक औरत पूछती है, उसका मंगलसूत्र छीन जाते हैं। मतलब सिर्फ ऐसे निकालते नहीं है या उसको बोलते नहीं है कि बाबा निकालो प्यार से, वो खींचते हैं। मतलब कितना दर्द भरा है, उसका हस्बैंड गया है और उसको आप कितना तकलीफ दे रहे हो, उसको निकालते हैं, उसकी बंगड़ी जो है वो सामने उसको फोड़ने के लिए बोल रहे हो, उसके हाथ में पूरे वो खून आ जाता है। मतलब क्या आप हालत कर रहे हो? उसको उल्टा गले लगाना चाहिए, उसको प्यार देना चाहिए। और जब भी कोई फंक्शन है तो उसको हम दूर रखते हैं, क्या ये विधवा है? अरे ये कौन से जमाने में आप रह रहे हो? उसको प्यार की
1: बिल्कुल
0: जरूरत है। ये मेरा जन जागृति का भी कारण है कि ये बंद करो भाई। ये आप एक लड़की हो के, आप औरत हो के, आप किसी की माँ हो, किसी की मासी हो, फिर भी आप किसी का उनको कैसे पूछ सकते हो? मतलब आप इंजीनियर है, डॉक्टर है, फिर भी आप घर की औरत को विधवा कह रहे हैं, उसको बोल रहे हैं पूजा में शामिल मत हो, उसको बोल रहे हैं शादी में शामिल मत हो। ये कौन से जमाने में रह रहे? उसी जमाने में, सावित्री बाई फुले के जमाने में, सावित्री बाई फुले ने मतलब कितना बड़ा ये किया है कि तभी मुंडन था। मुंडन मतलब पूरे, मतलब स्त्री का यदि हस्बैंड मर जाता है तो पूरे बाल उसके निकाले जाते थे, उसके उसको एक अंधेरे खोली में रखा जाता था और कोई भी आके उसके ऊपर बलात्कार करता था, फिर उसको बच्चा होता था वो फेंक देती थी। ऐसा इतना बड़ा जालिम जमाना था। उसी मतलब ऐसे समय में सावित्रीबाई फुले ने वो बंद किया है, सती की चाल बंद की है। सती मतलब क्या? उसका हस्बैंड जाता है तो उसके साथ ही उसको जला देते थे। तो ये जो बहुत सारे डेंजर ट्रेडिशन थे वो सावित्रीबाई फुले ने क्रांति करके तभी बंद किया है, और अभी हम खुद को सो कॉल्ड मॉडर्न समझ रहे हैं। हम इंजीनियर डॉक्टर हैं, हम एरोप्लेन में बैठ रहे हैं, और फिर भी हमारे घर के औरत को हम विधवा विधवा बोल रहे हैं, और ना ही उसको पूजा का हक दे रहे, ना हमारे किसी सम्मिलित कर किया जा रहा है। तो एक जुल्म है ये स्त्री के ऊपर, और ये बंद करना चाहिए। मतलब आपके तरफ से भी मैं यही प्रार्थना सबको करूंगी, प्लीज ये
1: बिल्कुल
0: बंद कीजिए करके, ये प्रथा बंद होनी चाहिए विधवा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी चीजें अभी
0: या
1: बंद के कगार पे ही है। खाली कुछ लोग गांव में रहते हैं, वो शायद
0: और
1: हो
0: नहीं,
1: सकता है
0: आप बोल
1: लोग।
0: रहे हैं इसे गांव में करके, शायद गांव में भी अच्छा रहेंगे। आप सिटी में भी आओगे तो सिटी में भी यही मतलब अभी मैं एक हल्दी कुंकू में गई थी बीच में, तो एक का हस्बैंड गया था, तो सबको हल्दी कुंकू लगा रहे जा रहा था, उसको छोड़ के सबको लगाया। ये सिटी का है और वो डॉक्टर्स थे पूरे, फिर भी आपको बोल रही है ऐसे नहीं है। मतलब एजुकेटेड होके भी माइंडसेट एजुकेटेड नहीं है, दैट इज द प्रॉब्लम। और
1: वो
0: हमको
1: कहीं
0: सिर्फ
1: ना
0: पुस्तक
1: कहीं
0: कीड़ा बनना
1: उसका
0: नहीं है, पुस्तक कीड़ा नहीं बनना है, हमको खुद को ऐसे बनाना है कि मतलब एक प्योर माइंड होना चाहिए हमारा। यदि प्योर माइंड
1: बिल्कुल
0: नहीं है तो कुछ फायदा नहीं है।
1: सही बात, सही बात। मेघना जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया, एक समाज के लिए आईना का काम कर रही हैं आप। और जितना हम लोग देखते हैं कि एजुकेटेड होने के बावजूद भी हमारे पुराने संस्कार जो है वो हमेशा
0: हाँ
1: जिंदा रहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें जो है उसमें परिवर्तन करने की जरूरत
0: या
1: है, और
0: परिवर्तन बहुत
1: सबको
0: जरूरत
1: सामने
0: है।
1: सामने आके ही करना चाहिए, क्योंकि
0: या
1: अब ऐसी चीजें हम लोग अगर करेंगे तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन भी वही सीखेगी। तो
0: यस
1: इसीलिए हमें जो है वहां पर कहीं ना कहीं ब्रेक की जरूरत है, और वो ब्रेक हम ही
0: वही
1: लगा सकते हैं। तो
0: वही
1: निश्चित
0: वही
1: तौर पर हमें सबको जो है सम्मान देना चाहिए, प्यार देना चाहिए, और ज्यादा उनको सम्मान करना चाहिए, उल्टा हम लोग उनको छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके पास इतनी मना सिचुएशन अभी
0: हाँ
1: वो ऐसी है, तो उनको तो
0: वही
1: ज्यादा
0: ना,
1: प्यार की जरूरत है।
0: ज्यादा
1: और
0: प्यार
1: अगर
0: की
1: वो
0: जरूरत
1: अपने प्रोग्राम में हिस्सा ले रही है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। उनको
0: या
1: सबसे पहले टीका करना चाहिए ताकि लोगों को एक चेंज जो है लोगों के बीच में आ सके। तो एक इंसानियत का जो
0: चेंज होता है, मतलब हम कुछ जन जागृति करते हैं तो चेंज

0: होता है उसका बहुत एक्सपीरियंस आपको मैं बीच का ही बताती हूँ। मेरा एक वन
1: बिल्कुल.
0: एक्ट प्ले हो गया था फुलेवाड़ा में, तो उधर एक लेडी आई, तो उन्होंने मेरा वो सुन लिया था पूरा। उसके 3 महीने बाद उनके हस्बैंड चले गए ड्यू टू कोरोना, तो उनका मंगल सूत्र लेने के लिए जब लेडी उठे ना सिरे पूरे, तो
1: जी.
0: उन्होंने उनका हाथ रोका और बोले नहीं मैं हाथ लगाने नहीं दूंगी। वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि दूसरी स्त्री आके उनका ये मंगलसूत्र छीन रही है, तो उन्होंने उनका हाथ पकड़ लिया और बोले कि मैं छीनने नहीं दूंगी और ना ही मैं निकालूंगी। और उन्होंने फोन करके मुझे बात बताई कि दीदी मैंने उनको आज ये किया, ये मुझसे आपसे मुझे ये मिल गया कि मैं कुछ करूं, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरा मंगलसूत्र मेरे गले में है। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा, जागृति हो रही है करके।
1: बिल्कुल बिल्कुल. चलिए, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया, और मुझे लगता है कि इस तरह की चीजें भी होनी चाहिए ताकि समाज में बदलाव ला सके. और मानसी जी हमारे साथ जुड़ना चाहती हैं, वो शायद आपको कुछ पूछना चाहती हैं. तो कोई
0: ओके
1: बात नहीं, मानसी जी आप बिल्कुल जुड़िएगा, आपको जो है आपको लिंक दे देते हैं, आप आइएगा. और तो मैं चाहूंगा कि कुछ, जैसे कि अगर जो एक्ट आप करते हैं सावित्री, कितना मिनट का रहता है, कैसे आप शॉर्ट में अगर थोड़ा सा डायलॉग हमें भी सुनाए तो अच्छा होगा.
0: जरूर जरूर। लेकिन मेरा एक्ट मराठी में है, चलेगा क्या?
1: हाँ, चलेगा चलेगा, लेकिन उसको थोड़ा
0: क्योंकि
1: शॉर्ट में
0: कहते
1: हमें
0: हैं
1: दस दस पंद्रह
0: या
1: मिनट में अगर आप कर पाए ना तो हम लोग
0: हाँ,
1: सुन.
0: चलेगा चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं।
1: और कुछ क्वेश्चन आए हैं सुभाष जी वगैरह का तो हम लोग बाद में ले लेंगे. ठीक है, यस.
0: चलेगा। अरे लई बर वाटल र पोरांनो, आज मला बाबानो या सावित्रीचा वर बाबानो भरून आला र। अरे त्या काळात माझा जन्म झाला ज्या काळात एखादी पोरगी जन्माला आली म्हणजे काहीतरी झालं असा पाही तो समाज, पण अशा काळामध्ये बी माझ्या बाबांनी साखर वाटली मी जन्माला आल्यावरती। बाई त्या काळात पोरींची लग्न 5-6 वर्षाची झाली की लगीन व्हायला म्हणून समजा, मग काय माझं बी लगीन 7व्या वर्षी झालं पोरांनो, आणि या पुण्यामध्ये मी आले। बाई आमचं शेटजी शिकलेलं र, बाई शेटजी सकाळी उठायचं आणि तालमीला जायचं, नंतर यायचं ही बुक वाचत बसायचं, मग जायचं शाळेला। मी म्हणायचे बाई ये एवढं करतात तरी काय, तो म्हणायचे सावित्री अगं व्यायाम केला तर बुद्धी शाबूत राहतीया आणि बुक वाचली तर जगाची द्वार उघडतीया। म्हटलं बाई शेटजी एवढं ज्ञान मिळतंय वय याच्यातून, तो म्हणतात वय एवढं ज्ञान मिळतंय। आता बाबांनो तो काळ असा होता ज्या काळात बाई बायकांना शिकायची काय बी सोय नव्हती असा तो काळ। आता माझ्यासारख्या सावित्रीला कोण गो शिकवणार, आणि एक दिवशी हे आलं की पाटी पेन्सिल घेऊन, पोरांनो पाटी पेन्सिल घेऊन पाटी त्या काळात हातात धरली म्हणजे बाई मोरा आपला मरतोय अशी खुडी समजू। आता बाई शेटजीनी मला पाटी आणली आणि पोरानो हातातच दिली की मी गप्पन पाटी खाली थांबली, म्हणलं बाबा माझ्या हातात पाटी नको। पाटी घेतली तर शेटजी अहो तुम्हाला काय झालं तर, शेटजी म्हणाले अगं सावे अगं मला काय बी होणार नाही, तू पाटी हातात घे। आणि माझ्या शेटजीनी माझ्या हातानं हातात घेतला आणि पाटीवरती पहिला पोरानो शब्द लिहिला शेटजी। शेटजी हा शब्द नव्हता लेकरांनो, हा शब्द होता स्त्री स्वातंत्र्याचा उगवता सूर्य। हा नुसता शब्द पाटी नव्हती, ही होती आपल्या समस्त स्त्री वर्गाची पाटी, आणि हा शब्द होता तो आपल्याला लिहाया वाचाया शिकवणारा पहिला शब्द। आता एवढ्यावर शेटजी थांबले नाही, तर बाई शेटजीने ठरवलं आता पोरींसाठी शाळा काढायची। बाई अशा काळामध्ये शाळा काढायची जेव्हा इंग्रजांनी कितीतरी वेळा प्रयत्न केला, बर बाई त्यांना शाळा काढता आली नाही, आणि एक शाळा काढली तरी ती 10 दिवसाच्या वर बी चालली नाही। मग काय शेटजीनी शाळा काढली, शेटजी तिसऱ्या दिवशी घरला म्हणाले सावित्री अगं उद्यापासून तू शाळेला जायचं। म्हटलं शेटजी अहो मी शाळेला, मी कशी शाळेला जाणार, ओंबरटा कसा वळणार। तर म्हणाले ते काय नाही उद्यापासून तू शाळेला जायचं। आणि पोरानो रात्रभर रडून काढली, म्हटलं बाई जायचं कसं उमरा कसा ओलांडायचा। आणि पोरानो म्हटलं नाही उमरा तर बाई ओलांडावं लागल, माझ्या पोरीसनी माझ्या पोरा बाळासनी शिकवायचं असल तर उमरा ओलांडावंच लागल। पोरानो कसा बसा उमरा ओलांडलो, ही हजारो माणसं माझ्या पाठीमागून धावत होती, कुणी मला दगड मारत होत कुणी शेण मारत होत, एवढ्यात एक दगड आला पोरानो, माझं कपाळ रक्तबंबाळ झालं, माझं लुगडं संपूर्ण रक्ताना भरलं. म्हटलं घरला जाऊ की काय, घरला जाऊ की काय, पर म्हटलं नाही घरला जायचं नाही, आपण शाळेला जायचं. पोरानं तशी शाळेत गेली, सगळ्या दारा खिडक्या बंद करून घेतल्या आणि पोरींच्याकडे बघितलं तर एवढ्या छोट्या छोट्या चार पोरी माझ्या समोर बसल्या होत्या. म्हटलं पोरीनो शाळेत कसं शिकवायचं हे मला ठाव नाही, पर हा माझ्या शेटजींनी जे शिकवले ते तुम्हाला शिकवेल. मग काय, घरला गेले की शेटजी मला शिकवायचे, तिकडून शिकून आलं की इकडे शिकायचे. आता बाई सावित्रीला शियन मारलं, दगड मारली तरी सावित्री काय ऐकना म्हटल्यावर एक दिवशी अप्पाराव माझ्यामध्ये आला आणि माझ्या हात घातला असा मध्ये आणि म्हणाला सावित्री तू शाळेला जायचं नाही, जा घरला. पोरानो काय करावं मला काय कळना, पण अप्पारावचा हात माझ्या पुढे असा जसा आला का नाय तसं माझं मस्तकात कळ गेली, कळतला पदर खोचला आणि त्या काळात अप्पारावच्या खडा खड मुस्काडी मारून दिल्या. पोरानो प्रश्न हाच, जर त्या काळात मी मुस्काडीत मारून देऊ शकते ज्या काळात बाई उमऱ्याच्या बाहेर भी येऊ शकत नाही, तर तुम्ही ह्या काळात आधुनिकतेची जोड तुमच्याकडे. तुमच्याकडे एकीकडे पोलीस डिपार्टमेंट आहे, आज तुम्ही इंजिनियर हायसा डॉक्टर हायसा, तरी बी अजून बी तुम्ही किती अन्याय सहन करतासा. अजून मी खेड्यात गेला तर माझी पोरगी अजून बी चुलमुलच करतील, हा अन्याय थांबला पाहिजे पोरांनो. अन बाई शेजीने एक म्हणता म्हणता दोन, दोन म्हणता म्हणता तीन, 13 शाळा काढल्या. त्या काळात बाई एवढ्या एवढ्याशा पोरींची लग्न म्हाताऱ्या माणसा संगत लावून द्यायची. मग काय, म्हातारे मेले की पोरींना त्या सरणावर घालायचे रे. पोरी वरपळायच्या, पोरी रडायच्या, म्हणायच्या नका नका आम्हाला मारू, नका आम्हाला मारू. पोरी रडून मारायच्या आणि ज्या पोरी जित्या आहे ती त्यांचं मुंडन करायचे, त्यांना अंधाऱ्या खोलीत टाकून द्यायचे. मग कोणी बी यायचा, देर यायचा, सासरा यायचा, अत्याचार करायचा, पोरी पोटोशा राहायच्या, पोराला जलम द्यायच्या आणि त्याच शेतात पोराला गाडून मोकळ्या व्हायच्या, नाही तर स्वतः तरी हिरेतना जीव देऊन मोकळ्या व्हायच्या. मग शेजी म्हणालो आता ह्यांच्यासाठी सावित्री काहीतरी केलं पाहिजे. मग काय, बाल प्रतिबंध गृहाची स्थापना केली, जिथं कुणी बी यावं आणि आमच्याकडे बाळंत होऊन जावं म्हणून बागो जागी नोटिशा लावल्या. पोरानो एक म्हणता म्हणता दोन, दोन म्हणता म्हणता तीन, 100 बाळणपण मी केली. आणि तेवढ्या आमच्या यशवंताचा जन्म झाला. यशवंत हा बामन बाईचा पोरगा, पर बाई माझा पोरगा झाला. पुढे त्याला मोठा डॉक्टर केला लेकरांनो. त्या दिवशी शेटजी लईच थकल्यावाणी जाणत होते. म्हणले शेटजी काय वो असं थकल्यासारखं काय जातात, तर म्हणाले अगं भाई आता 25 वर्ष झाली, आता काहीतरी संस्था काढली पाहिजे. तो म्हंटल होय शेटजी अहो पण संस्था म्हणजे काय, तो म्हणतात अगं बाई एक ईश्वर हाय, समधी आपण एकाच ईश्वराची लेकर, जर एकाच ईश्वराची लेकर हाय तर त्या ईश्वराला प्रणाम करायसाठी त्याला भेटायसाठी भटजीग कशाला पाहिजे, अगं लगीन लावायसाठी भटजी कशाला पाहिजे, तर बिना भटजीचं लगीन लावून देऊ. आणि बाई काय सगळ्या मंगलाष्टका मी मराठीतून लिहून काढल्या पोरांनो, आणि राधेच्या पोराचं पहिलं लगीन आम्ही सत्यशोधक समाजाप्रमाणे केलं, ना हुंडा पाहिजे न कशासाठी पाहिजे. आणि पोरांनो सत्यशोधक समाजाचं काम सुरू झालं. बाई त्या काळात लई दुष्काळ पडला होता, इतका दुष्काळ की बाई महारवाड्याची काय अवस्था सांगू, त्या पोरांना रस्त्यावर यायची सोय नव्हती, एवढा मोठा माठ त्याच्या तोंडाला बांधलेला असायचा आणि एवढं मोठं झावळ पाठीमागे का, तर पोरांची थुंकी सुद्धा रस्त्यावर येऊ नये म्हणून. आणि त्या दिवशी दोन बायका पाण्यासाठी कळवळून रडवत होत्या ग, आणि वरून त्यांना चापकानी मारत होते. तेवढ्या शेटजी आले, म्हणाले सावित्री अगं ह्यांच्यासाठी काहीतरी केलं पाहिजे. म्हटलं शेटजी हाव आपलाच हौद आहे की, आणि हौदातून पाणी पोरानं मी बाहेर काढलं. आणि त्या दिवसापासून कुठल्या बी जातीच्या लोकांनी आमच्याकडे यावं आणि आमच्या हौदाचं पाणी घेऊन जावं असं पोरानं सांगून टाकलं. शेटजी आज लईच थकल्यासारखे दिसत होते. आणि बाई म्हणता म्हणता शेटजी पडले, म्हणले शेटजी काय झालं, शेटजी काय झालं. शेटजीसनी पक्षकाराचा झटका आणला. म्हटलं भाई शेटजी डॉक्टर घोले बघा तरी शेटजीसनी काय झालंय. डॉक्टर घोलेनी बघितलं तर ह्यांची समधी उजवी बाजू लोळी पडली होती. मग काय, एक महिना गेला, दोन महिने गेले, पण शेटजींना बरं वाटेना. तेव्हा शेटजी सार्वजनिक सत्य धर्माचं पुस्तक लिहित होते. म्हणलं शेटजी मला सांगा मी लिहून काढते. तर म्हणतात कसे, नको तुझं काम तूच कर, माझं काम मी करण. माझे शेटजींनी डाव्या हाताने पुस्तक लिहून काढलं पोरांनो. आणि बाई असं म्हणतात मृत्यूची चाहूल समजासनी आधीच कळतीया, माझी शेटजीसनी बी आधीच कळल्या का काय कुणास ठेव. त्या दिवशी म्हणाल सावित्री आता मृत्यूपत्र केलं पाहिजे. यशवंता बामनबाईचा पोरगा म्हणून तुला जीवन सोडणार नाही. म्हणलं शेठजी अवंगार कशापाई काय बोलतसा? म्हणाले नाय मृत्यू अटळ हाय. समद्यासनी बोलवून घेतलं अन ह्यांनी मृत्यूपत्र तयार केलं. म्हटलं बाई शेठजी काय करताय? शेठजी एवढी साबुदाण्याची पेस्ट तरी खावा. अहो सकाळ धरणं काय खाल्लं नाही काय प्यालं नाही, खावा की शेठजी एवढं तरी. शेठजींच्या तोंडात ही एक पेज घालणार. तेवढ्यात आपलं शेठजी गेलं पोरांनो, आपलं शेठजी गेलं पोरांनो. ज्यांनी आपल्याला स्वातंत्र्याचा सूर्य दाखवला ते आपले शेठजी गेले. शेठजी उठा हो, शेठजी उठा. तेवढ्यात बाईक बाहेरून आवाज आला. डॉक्टर घोले म्हणत होते पोलिसांनी बोलू. डॉक्टर घोले पोलिसांनी का बोलवतात? म्हणून मी बाहेर आले. बघते तर बाई टिटव्याला कुणी बी हात लावायचा नाय म्हणून आमचीच भाऊबंद बोलत होती. म्हटलं का हात लावू देत नाही? तर यशवंत हा बामनबाईचा पोरगा म्हणून यशवंतानी हात लावायचा नाही म्हणून सांगत होती. पोरानो ज्या काळात बाई उमऱ्याच्या बाहेर बी येऊ शकत नव्हती त्या काळात मी टिटवं उचललं. म्हणलं अरे ही सावित्री हाय, अरे माळ्याचीच पाहिजे ना व हाय ही सावित्री. म्हणून पोरानो माझ्या शेजींच्या संगत यशवंताचा हात धरून टिटवं मी उचललं. पोरानो असा काळ ज्या काळामध्ये बाबा इतकी क्रांती आम्ही केली त्या काळात पहिलं हळदी कुंकू मी केलं की सगळ्या जाती धर्माच्या बायका एकत्र यावेत म्हणून. म्हणता म्हणता प्लेगची साथ आली. पुण्यात लोक उंदरावानी मरायला लागली. तोपर्यंत यशवंता डॉक्टर झाला होता. म्हटलं यशवंता ये तडक पुण्यात निघून. लोक उंदरावानी मरून लई वाईट वाटत होत. तेवढ्यात गायकवाडाचं सांगणं आलं. त्याचं पोरग तापानं फणफणले. पोरानं तिकडे गेले. म्हटलं पांडुरंगा काय र झालं? पांडुरंगाला उचललं. पांडुरंगाला उचललं. पांडुरंग जगला. पण मी तुमच्यातून गेले लेकरांनो. पण प्रश्न हेच रे, त्या काळामध्ये शेठजीने दारूबंदी करू नये म्हणून लायसन देऊ नका म्हणून इंग्रजांनी सांगितलं. आणि आज आमच्या कोरोनाच्या काळात बी सरकार दारूची दुकानं पहिलं उघडतंय रे. अरे माझ्या आया बहिणींचे संसार किती उद्ध्वस्त होत आहे याची काळजी कुणालाच काय नाही काय रे. आज एकीकडे पोरगी डॉक्टर आहे, दुसरीकडे खेड्यात गेला तर डॉक्टर आई ना माझी पोरगी मरतीये रे. आज एक बाई एका बाईचा नवरा मेला तर तिचं कुकू पुसायला एक बाई येते, तिचं मंगळसूत्र ओढायला एक बाई येते, तिचं जोडवं मी एक बाईच काढून टाकते. हे करताना हात थरथर कापत नाहीत का ग पोरीनं तुमचे? एक तुम्ही आई हाय एक बाई हाय हे समजत नाही तुम्हाला? अगं कधी किती दिवस हे चालवणार तुम्ही? आज एकीकडे डॉक्टर व्हायचा एकीकडे इंजिनियर व्हायचा आणि आपल्या घरातल्याच बाईला इदवा इदवा म्हणून हे नव्हत्याशीत ग. हे थांबवाले की नो? अगं जिच्या हाती पाळण्याची दोरी ती संपूर्ण जगाला उद्धारी हे शेठजींनी त्या काळात सांगून ठेवलं ग. आणि खरं सांगू भारत सुजलाम सुफलाम बनवायचा असेल तर पाळण्याची दोरी आपल्याला हाती घ्यायची आहे. आणि ती पाळण्याची दोरी जर आपल्याला हाती घ्यायची असेल नव तर मशाल ज्ञानाची पेटवायलाच हवी. म्हणले की नो या सावित्रीची कळकळीची विनंती, मशाल घ्या ज्ञानाची. धन्यवाद.
1: खूपच सुंदर
0: समज मी आया आपको कोश मराठी.
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया सुनाया आपने. बहुत सावित्री बाई की जीवन कहानी को आपने बहुत ही अच्छी तरह से प्रेजेंट किया. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत शुभकामनाएं.
0: थैंक यू.
1: तो आइए मानसी जी अगर आप है तो कुछ पूछना हो तो यू कैन, अदरवाइज फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं. और चलिए दोस्तों जैसे कि मानसी जी अगर आती हैं तब तक मेघना जी आपने बहुत अच्छी तरह से उस प्ले को जो है नरेट किया और हर चीज को आपने बहुत ही अच्छी तरह से डायरेक्शन दिया और कहीं ना कहीं वो एक जीवंत कैरेक्टर का जो फील है वो आपके वॉइस मॉड्यूलेशन में आपके हाव भाव में दिखाई देता तो व्यक्ति जो है अपने आप ही उससे जुड़ जाता है.
0: क्योंकि हम वो एक्ट में चले गए. मतलब मुझे थोड़ा टेंशन था कि मैं शॉर्ट में करूंगी या नहीं करूंगी क्योंकि एक बार आप वो किरदार में जाते हो तो बाहर आना मुश्किल होता है. लेकिन मैंने कोशिश की कि सावित्री बाई फुले का किरदार मैं निभाऊ या शॉर्टली. क्योंकि एक वो इतना मोटिवेशन है उनका लाइफ तो वो
1: पूरा ही उनका जो है वो स्टोरी में जैसे आपने बताया वैसे सारी चीजें जो है एक मोटिवेशनल है. और मानो उस समय कितना अज्ञानता था वो एक ऐसा पीरियड था.
0: हाँ,
1: आज पूरा ज्ञान होने के बाद भी कुछ चीजें देखते
0: हैं. हाँ, तो यही है कि वहाँ एटलीस्ट लोगों को अज्ञान था लेकिन अब तो हम ज्ञानी है फिर भी अज्ञानी है. तो कुछ बदलना चाहिए समाज। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं अभी प्रजापिता ब्रह्म कुमारी से जुड़ गई हूँ, क्योंकि जो ज्ञान है, या हम लोग बोल रहे हैं कि ज्ञान का सागर जो है वो आप लोग सबको दे रहे हैं एक अमृत की, तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आपसे जुड़ गई हूँ आज की। वो जो अमृत का एक ये है वो सबको मिलना चाहिए और आप लोग वही कर रहे हैं, पॉजिटिवनेस दे रहे हो सबको।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे वही लगता है कि हमारे जो इन लोगों ने जितना कष्ट सहन किया और उन चीजों को कष्ट सहन करके वो चीजें बताने,
0: हाँ।
1: और आज वैसा कुछ नहीं है। आपको अगर प्रॉब्लम है तो आपके पास बहुत सारे एसेट है, पुलिस है, सोशल वर्कर का ग्रुप है, कहीं भी आप जाके उन चीजों को शॉर्ट आउट कर सकते हैं और वो ठीक कर सकते। लेकिन फिर भी
0: अभी हम लोग सिर्फ सेल्फी में गुम हो जाते हैं, मतलब सावित्रीबाई फुले या जो जो हमारे, तो बस उधर जाते हैं उनकी जयंती पे, या हार चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, सेल्फी निकालते हैं, फिर हमारा स्टेटस ये वो हम उस दिन पूरा चल जाता है। उसके बाद जो उनके विचार है वो हम इधर लेके नहीं चलते, बस सेल्फी में खुश हो जाते हैं हम। टेम्पररी आनंद जिसको बोलते हैं उसमें ही हम लोग खुश है। तो वो बदलना चाहिए, उनके विचार है वो हमको मन में लाना चाहिए, तभी हमारा भारत देश सुजलाम सुफलाम हो जाएगा। क्योंकि हमको हमारे देश के बारे में, पूरे वर्ल्ड के बारे में सोचना है, ना कि खुद के बारे में।
1: और देखा गया है कि हमारा आनंद नहीं पता हमको, एक स्थायी जो
0: वही
1: सुकून
0: वही
1: है वो कहीं ना कहीं खो गया,
0: हाँ,
1: मतलब
0: हो
1: वो
0: गया है
1: सुख को ढूंढ रहा है, एक शांति को ढूंढ रहा है, और वो कहीं ना कहीं हमें पूरी तरह से नहीं मिल रहा है। और हम लोग टेक्नोलॉजी जो भी चीज आ रहे हैं उसमें वो टेम्पररी सुख फील करते हैं और निकल जा रहे हैं। तो वो स्थायी चीज पाने के लिए हमें जो है कुछ चीजों को इम्प्लीमेंट करना होगा, जैसे आपने सावित्रीबाई सुना है। अगर ऐसी चीजें आज भी हैं तो कहीं ना कहीं अगर हमारे समाज में है तो हमें इनिशिएटिव लेकर उन चीजों को अवॉइड करना चाहिए, और वहां पर जो है अपना अच्छा प्रदर्शन करें और लोगों को भी जागरूक करें। और उन्हें कई बार होता है कि समटाइम वी डू, वरना कई बार होता है समाज में हम वो चीजें करते हैं लेकिन वो कैसे करते हैं वो करके हम चुप हो जाते हैं। लेकिन एक्चुअली में ना वहाँ एक मुहिम की एक जागृति जो बोलते हैं वो चाहिए। वापस वही प्रोग्राम रिपीट करो और लोगों को समझाओ और दूसरे लोगों से वो चीज करो। तो शायद जो गिव एंड टेक वाली जो चीजें है ना, वो डोर एक रस्ती कनेक्शन की, वो चलाने पड़ेगी, तब जाके वो थोड़ा सा लंबा अगर हो जाता है तो लोगों को लगता है कि अरे ये चीज यहाँ से हो रही है तो हम भी देखते हैं। फिर आपके समाज के आपके दूसरे समाज में, तीसरे समाज में, गाँव से गाँव में, फिर गाँव से शहरों में, इससे वो ट्रांसफॉर्मेशन की बहुत जरूरत है। शायद वो चीजें कहीं ना कहीं वो मिस हो रही है, और हम लोग कुछ चीजें जो है वो जन जागृति का जो कार्यक्रम हम लोग करते हैं उसमें जो अलग होना चाहिए, दूर तक जाना चाहिए, वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है। तो निश्चित तौर पे आपके द्वारा और आपने जो ज्ञान दिया है उसको शायद वो अलग मिल जाए तो सारी दुनिया में जैसे प्रकाश हो जाए। तो आइए जाते जाते मैं यही कहूंगा कि हमारे जीवन में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, उसको हम लोग मैनेज करते हैं। तो आप जब संभल गए उसके बाद भी कुछ ऐसी चीजें हुई जो उसको आपको लग रहा है कि ये नहीं होना चाहिए, इसको ठीक करना चाहिए, आपके पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है। तो मैं चाहूंगा कि कौन सा एक संघर्ष या कौन सा एक ऐसी चीज है जो आपको अभी करना है, या वो चीज आई थी और चली गई।
0: ऐसे है कि हमारे सबका जीवन तो संघर्ष में ही होता है, लेकिन मैं एक चीज मानती हूँ कि अभी देखिए मुझे तभी उसी टाइम पैरालिसिस टाइप हो गया था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मतलब डॉक्टर ने तो छोड़ दिया था कि नहीं
1: अच्छा,
0: अभी ये नहीं रहेगी करके। तभी मेरा बच्चा छोटा था और मेरा बच्चा मेरे बाजू में बैठा था और रोता था कि मतलब उसको ऐसे लगता कि अभी मम्मी को क्या होगा। और मुझे तभी 102 ऐसे टेम्परेचर रहता था, तो वो खाना भी नहीं खाता था। और तभी कोइंसिडेंटली क्या हुआ कि मेरे बाजू में जो मेरे बच्चे का उतना ही उनके जो डैडी थे, हम दोनों भी आईटी में थे, वो चल बसे। तो मेरा बच्चा और डर गया कि अरे अभी अपनी मम्मी को भी कुछ होगा क्या। तो वो बहुत रोता था, खाना नहीं खाता था। तो मेरी अंदर की जो माँ थी ना वो उधर ये हो, और फिर मैंने ही सोचा कि नहीं मुझे उठना चाहिए। तो मतलब हमको पॉजिटिव लेना चाहिए। और उसे के बाद मतलब मैंने आई लेफ्ट माय आरटी जॉब, मतलब मेरा जो फर्स्ट वन एप प्ले हो गया उसके बाद मैंने जॉब छोड़ दिया और मैं ये कर रही हूँ। तो ये पॉजिटिवली मैं ले रही हूँ कि तभी मैं शायद बीमार नहीं होती थी तो आज मैं सावित्रीबाई फुले का किरदार नहीं निभाती थी, और ना ही मैं जन जागृति इतनी अच्छी तरह से कर पाती थी। तो मैं हर एक प्रसंग को पॉजिटिवली लेती हूँ, ऑलवेज पॉजिटिवली। जब आप पॉजिटिवली लेते हो तो ऑटोमेटिकली आपको पॉजिटिव, मतलब आपको मुझे बोल रहे हैं कि आप क्या संघर्ष कर रहे हो, तो जीवन में संघर्ष तो बहुत ही होगा, तो उसमें कुछ ये नहीं है। मतलब जब मैंने हमारे अभी आपके होम मिनिस्टर करके, पता है या मुझे पता नहीं, होम मिनिस्टर करके हमारे एक एंटरटेनमेंट प्रोग्राम रहता है जो भी मैं करती हूँ, मतलब सावित्रीबाई फुले का भी वन एक्ट प्ले करती हूँ और होम मिनिस्टर करके करती हूँ, जिसमें मैं बेटी बचाओ, कैंसर मुक्ति, व्यसन मुक्ति, ये सब लेके वो एंटरटेनमेंट प्रोग्राम रहता है। तो वो सब मतलब एक फीमेल कर रही है, क्योंकि वो पूरे मेल का डिपार्टमेंट था हमारे इधर महाराष्ट्र में, कि सारे मेल ही वो प्रोग्राम करते थे। लेकिन जब मैंने वो चालू किया तो उसमें मैंने बहुत संघर्ष किया है कि एक लेडी होके भी ये प्रोग्राम कर रही है ऐसा वैसा। उसको भी मैंने पॉजिटिवली ले लिया, और जब हम लोग कुछ पॉजिटिवली ले लेते हैं तो मेरे ख्याल से वो सक्सेस हो ही जाता है। तो मुझे सबको यही बताना है कि बी पॉजिटिव ऑलवेज।
1: बहुत अच्छी बात आपने बताया, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं संघर्ष आता है तो वो अपॉर्चुनिटी देने के लिए आता है।
0: संघर्ष तो बहुत आता है, बहुत ही, मतलब अभी मैंने बीच में ही आपको बताया कि जातीयवाद अभी भी है, मतलब मुझे ही बता, मतलब मैं सावित्रीबाई फुले का किरदार निभा रही, फिर भी मुझे कभी कभी मुझे ही सामना करना पड़ता है कि आप मेरी समझ की नहीं हो ऐसा वैसा, तो मैं इग्नोर करती हूँ वो सब चीजों
1: सही बात,
0: को,
1: सही बात।
0: फिर भी मेरा काम करती हूँ।
1: हाँ, वो तो जरूरत नहीं है, आउट ऑफ द बॉक्स ही काम करना पड़ेगा, लोग अभी भी कहाँ अटक गए हैं 21वीं सदी में।
0: और मैं पिताजी ने सिखाया है कि जीवन में ना कितना भी संघर्ष आए लेकिन प्योर माइंड रहना चाहिए, और कभी भी झूठ का सामना मत ले लो। ये दो चीजें मैंने जिंदगी में मेरी अभी तक मतलब उसके वही रास्ते पे मैं चल रही हूँ, तो इसलिए ज्यादा खुश हूँ।
1: मेघना जी, बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया कि कैसे आपके जीवन में जो टर्निंग पॉइंट था उसको आपने बताया, और निश्चित तौर पे हम सभी को वो चीजें हमारे पास आती हैं तो थोड़ा सा अगर हमने वहाँ हिम्मत दिखाई है तो हम बहुत आगे बढ़े, और जिन लोगों ने हिम्मत नहीं दिखाई है उनका जीवन थोड़ा सा डर गया, तो ये हमें एक्चुअली में एक छोटा सा जो है मोमेंट अंदर से जीने का और अच्छा बेहतर करने का एक जो अलाक है वो आपके अंदर जग जाए। तो
0: और
1: अच्छा,
0: इससे ज्यादा मैं ये मानती हूँ कि ये मेरा जीवन है, लेकिन यदि मैं ऐसा कुछ कर जाऊं कि सामने वालों को उससे कुछ खुशियां मिले तो मुझे ज्यादा खुशियां मिलेगी। वो सबके मन में ये भावना रखनी चाहिए कि मैं कौन हूँ, सिर्फ मैं ये विचार नहीं रखने चाहिए, वो पूरे सबके बारे में सोचना चाहिए, तभी वो सफल होगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और सुभाष जी लिखते हैं, दीदी आपने बहुत ही सुंदर इमोशनल ड्रामा ऑफ सावित्री बाई आपने रोल अदा किया, बहुत बहुत साकार किया, गॉड ब्लेस यू करके लिखा है, थैंक यू सो मच,
0: धन्यवाद।
1: ममता सोबत जी लिखे हैं, ओम शांति, ग्रेट करके मैसेज किया है, और वेरी गुड जॉब, ओम शांति। निवेदिता जी ओडिशा से आपको लिखा है, और नीता जी ने राइट बात है, आपकी बातों से सहमत है उन्होंने, और निवेदिता जी लिखते हैं, बाबा ने बहुत ही बेस्ट क्वालिटीज आपको दी है, गॉड ब्लेस यू। ममता सबत जी मुंबई से आपको याद, तो मुझे लगता है कि सभी को आपका एक्ट पसंद आता है इसलिए लोग जुड़ जाते हैं, और फिर मैं चाहूंगा कि आपने अभी ब्रह्मा कुमारीज का जो मेन अमृत जहां पहुंचना था आप पहुंच गए हैं, अभी सावित्री बाई के सर पे एक कलश अमृत का है, और वो कलर्स में से सबको अमृत बटा जाएगा तो उनका जीवन जो है अच्छा हो जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं वो मिसिंग गैप है, शायद वो नहीं समझ पाए, लेकिन हम लोग समझ पाते हैं, आप समझ पाएंगे, क्योंकि हम लोग उसमें काम कर रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि हम लोग इतना आगे आने के बावजूद भी हमारा मानसिकता कितना पीछे रह गया और कितना छोटा है, ये आप समझ पाए। तो मानसिकता को ठीक से समझाना या उसको ठीक से पकड़वा देना उनके हाथ में, ताकि वो अपनी मानसिकता को अच्छा बनाए और सुंदर बनाए, उसके हाथ में है, लेकिन वो कलम या वो ताकत, वो शक्ति जो है कहाँ से मिलेगा, कैसे उसको बना सकते हैं, वो उतना जो है अमृत का बूंद उनके हाथों में पहुंच जाए तो उनका जीवन भी बल्ले बल्ले हो जाएगा।
0: और हमको यही करना चाहिए सबको।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
0: चाहे सबके मार्ग अलग हो या कुछ, लेकिन सबको यही करना है मेरे ख्याल से, जो जितना मतलब पूरे, मुझे तो ऐसे लगता है कि पूरे विश्व में शांति आना चाहिए, बस एक बार पूरी शांति आ गई ना हम सुकून से जी लेंगे।
1: सही बात, सही बात। तो दोस्तों आज हमने मेघना जी को सुना, और मेघना जी ने जिस तरह से बातों को बताया, और सावित्रीबाई की कहानी जो है आज भी उतना ही जीवंत क्यों लगता है, उतना ही हमें आकर्षण क्यों लगता है, कहीं ना कहीं हमने उसको पूरी तरह से टेक ओवर नहीं किया है। और पूरी दुनिया में हम लोग इवन महाराष्ट्र में जहाँ पर उनका जन्म स्थान है वहीं पर अभी भी बहुत सारी मानसिकता ऐसी, तो उन्हें भी हमको जो है मिलकर काम करना होगा। और एक व्यक्ति से नहीं, हम लोगों को एक मिशन की तरह, मतलब बहुत सारे लोगों को जुड़कर ये काम कर, तो साथ में मिलकर हम लोग जब भी प्रोग्राम करते हैं तो वहां पर उनको खास बुलाइए विधवा, और उनको सम्मानित कीजिए, हल्दी कुमकुम में उनको बुलाइए और सम्मानित करके उनको वहां से पहले उनको जो है सम्मान करें, उनको उनको बोले कि वो अपने लाइफ को, उनके बारे में, उनके परिवार के बारे में कुछ बातें बताएं, और उनको कुछ हेल्प चाहिए तो जरूर आप सभी लोग, हल्दी कुमकुम करने में हम लोग कभी कभी बहुत खर्चा भी कर लेते हैं, तो उससे अच्छा वो उनको थोड़ा सा अगर सपोर्ट करें हम लोग, तो आपका हल्दी कुमकुम रियल में सफल हो जाएगा, है ना। तो वो चीजें हमको थोड़ा सा शायद आगे बढ़ के करना पड़ेगा, अदरवाइज चीजें जो है फिर मेघना जैसे बहुत सारे आर्टिस्ट आएंगे बताएंगे, आप ड्रामा की तरह देखेंगे चले जाएंगे, तो वो चीज तो अच्छा नहीं।
0: सिर्फ ड्रामा नहीं, हम कृति में भी करते हैं, बीच में भी मैंने अभी फुलेवाड़ा में प्रोग्राम किया था, उस प्रोग्राम में मैंने ऐसे सभी मतलब वुमेन्स को बुलाया था, उनको हमने हल्दी कुमकुम लगाया, उनके गले में मंगलसूत्र डाला, उनको बंगड़ी मतलब जितना भी साज सिंगार है वो पूरा उनको वो डाल के उनका साड़ी विड़ी सब देके उनको हल्दी कुमकुम किया, क्योंकि जब हम कुछ बोल रहे हैं तो सिर्फ बोलना नहीं चाहिए, पहले उसकी कृति करो। मतलब यदि मैं समाज में बोल रही हूँ कि जन जागृति करना है तो बोलने से कुछ नहीं होगा, सो आई एम ट्राइंग टू, वो कृति कर रही हूँ मैं कि ये करो, मतलब ये करने से और अच्छा लगेगा। तो उसका फोटो जब फेसबुक पे देखा, एक हमारी एक नगर की उसके पास गया, तो वो भाभी ने फोन किया कि अरे मैं ऐसी हूँ, विधवा हूँ और 10 साल हो गए मैंने अभी तक मंगलसूत्र पहना नहीं, ये नहीं लगाया, टीका नहीं लगाया वगैरह। तो मैं बोली आप क्यों नहीं हल्दी कुमकुम करते आपके उधर ऐसा, तो पहले वो डर गए, मैं बोली डरिए मत, आप खुद अरेंज कीजिए। तो वो मुझे बोले आप आएंगे क्या, मैं बोले मैं आती थी, मेरा एक प्रोग्राम है उसी सेम दिन, और मुझे पुणे से खेड़ आते तक उतना 5 घंटा लगता है, 5 घंटे का ट्रैवलिंग, मैं वीडियो पे आपका जरूर देखूंगी, मैं बोला। तो उन्होंने वीडियो चालू रखा था, और मुझे बहुत खुशी है कि उनके जैसे 20-25 फ्रेंड्स वो गांव में उनको मिल गए, उन्होंने सब मिलके हल्दी कुमकुम किया, बहुत एंजॉय किया, सब लोग रोए बैठ के, वो रोना उनका खुशी का था, मतलब जो आंसू थे खुशी के थे, क्योंकि बहुत सालों के बाद उन्होंने हल्दी कुमकुम मनाया था, फिर उनकी लाइफ जैसे किटी पार्टी हो गई, फिर वड़ा पाव वगैरह ऐसे ऐसे, मतलब ये जो खुशियां है ना, मतलब ये शायद एक मेल अंडरस्टैंड नहीं करेगा कि क्या दुख है वो, मतलब आपको लगेगा सारे टिकली तो लगानी है, बिंदी तो लगानी है, कुमकुम तो लगाना है, इसमें क्या है, लेकिन उसमें बहुत है, उसमें बहुत खुशियां है। वो जब खुशियां कोई आपसे छीन लेगा तो आपको कैसा लगेगा ये आप इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे, मतलब ये समाज इमेजिन ही नहीं कर पाता कि उनको क्या दुख है, मतलब नरक यातना जिसको बोलते हैं ना वो यातना उनको होती है। इसलिए जस्ट कृति में सबको करना है, और मेरे ख्याल से सबको मैं यही बोलूंगी आप भी कृति करो तो ऑटोमेटिक जन जागृति हो जाएगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल मेघना जी, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही प्यारा सा जो संदेश भी आपके द्वारा मिलता है, और कहीं ना कहीं जन जागृति की बात हुई तो आप ये सब काम कर रहे हैं और करते जाएं, और मैं चाहूंगा कि इस माध्यम से भी जो भी हमें बाद में सुनेंगे उन सभी को यही कहना चाहूंगा, अभी सुन रहे हैं उनको भी, कि भाई आप भी कहीं ना कहीं एक इनिशिएटिव जरूर लें, और जैसे कि गेट टुगेदर बुलाइए, महाराष्ट्र में हल्दी कुमकुम मनाते हैं तो आप अपने यहाँ गेट टुगेदर बनाइए, छोटा सा पार्टी रखिए और उसमें इन सारे लोगों को बुला के एक सम्मान जो है उनको दे, ताकि उनके जीवन में भी वो खुशियां वापस लौटाएं और नॉर्मल जीवन जिए, उनके प्रति जो है हमारी कोई भावना जो है हायर हो जाए। कई बार हम लोग उनको लगता है कि हम लोग उनको अपने साथ नहीं रख, तो वैसा ना उनको लगे, उनको लगे आप उनके साथ हो, वो आपके साथ सुरक्षित और अच्छा महसूस करे, है ना। तो थैंक यू सो मच मेघना जी, बहुत ही अच्छा लगा, और हम लोग चाहेंगे कि आपसे बार बार जुड़ना और आपकी बातें सुनना और सुनाना हमें अच्छा लगेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं आपको।
0: आरजे रमेश दादा बहुत अच्छे हो आप, बहुत अच्छी बातें भी हुई, और हमारे हड़प सर के पाटिल दीदी और मेरी फ्रेंड सपना सुराना, इन सबका भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन दोनों के वजह से मैं आपसे जुड़ गई, और अब जैसे और एक भाई मुझे मिल गए तो थैंक यू सो मच, थैंक यू।
1: चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में जहाँ पर हमने मेघना जी को सुना, एक आर्टिस्ट अपने जीवन में किस तरह से काम करता है, अगर आर्टिस्ट चाहे तो वो लाइफ में, अपने लाइफ में भी काफी कुछ चेंज पाते हुए अपने जीवन को बदल सकता है। तो आप आईटी सेक्टर को छोड़कर एक आर्टिस्ट के लाइफ को अगर अपना प्रोफेशन बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक अंदर की दिली तमन्ना और दिली वो एक अनुभव है जो लोगों तक जा रही है। तो निश्चित तौर पर आपका जब भी प्ले होगा, लोगों को वो सावित्री बाई की यादें और उनकी जीवन कहानी और उनका मैसेज उन तक पहुंचेगा ही। तो मैं चाहूंगा कि हमारे जीवन में हमको खाली चीजें जो बताएं वो करें, उससे अच्छा कि हम खुद उसको स्टार्टअप करें, हम खुद अपने आप को देखें कि हमारी मानसिकता तो वैसे नहीं है, हम कहाँ कहाँ उस मानसिकता का शिकार हो जाते हैं। अभी मैं अकेला हूँ तो अब मैं अच्छी तरह से बोल सकता हूँ मैं ऐसा नहीं वैसा हूँ, लेकिन क्या मैं समाज के साथ जुड़ जाता हूँ, 10 लोग मेरे घर पे आ जाते, तब मैं क्या वही प्यार वही स्नेह उन लोगों को देता हूँ? तो वो सवाल अपने आप से पूछिए और उसका प्रयोग कीजिए और उसमें आप आगे आइए, है ना। और अपने लोगों को भी बताइए ये चीजें कि हमें उस मानसिकता से आगे आना है और सबको साथ लेके चलना है। तो ये अगर हम लोग प्रयोग करेंगे अपने लाइफ में, अपने साथ, अपने ही परिवार में, तो आपका परिवार, आपका व्यक्तित्व एक मिसाल बने। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलेंगे हम लोग अगले एपिसोड में, और मैं चाहूंगा कि छोटों को बहुत प्यार, बड़ों को सम्मान, और आप जब भी जाएं बाहर तो महिलाएं आपके साथ सुरक्षा महसूस करें, अच्छा महसूस करें, और उनको सम्मान उतना ही मिले, और समाज में एक प्यार, प्रेम, शांति, वैसे आपके जीवन में जो शांति, प्रेम, आनंद की गुण हो और उसे देखकर लोगों में खुशी और बढ़े। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलते हैं। सलाम नमस्ते, खवा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति।

0: नमस्ते दोस्तों, आज मीना के स्कूल में बहुत मजा आने वाला है। वो हुआ यूँ कि मीना के स्कूल की दूसरी टीचर बहन जी एक दो दिन की छुट्टियों पे गई हुई हैं, इसलिए स्कूल के सारे बच्चे आज बैठेंगे मीना की क्लास में। अब चलो जल्दी से चलते हैं स्कूल के मैदान में, जहाँ मीना लल्ला और भोलू के साथ खाना खा रही है।
1: भोलू भैया, आप खाना क्यों नहीं खा रहे हो?
2: क्यों नहीं खा रहे हो? प्लेट को देखे जा रहे हो।
3: लल्ला, मुझे गाजर की सब्जी अच्छी नहीं लगती।
1: मुझे तो बहुत अच्छी लगती है।
4: भोलू भैया, बहन जी कहती है कि पालक और गाजर जैसी सब्जियों में विटामिन ए होता है, और विटामिन ए हमारी आँखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छा होता है।
3: वो सब मुझे नहीं पता मीना, मैं गाजर की सब्जी नहीं खाऊंगा, मतलब नहीं खाऊंगा।
4: चलो जल्दी से क्लास में चलते हैं।
5: बच्चों, आज हम सब मिलकर सीखेंगे एक अरे ये बिल्ली की आवाज अपनी क्लास में कैसे?
6: बहन जी, सुनील अपनी कमीज में छुपा के लाया है एक बिल्ली का बच्चा, सबको दिखाओ ना सुनील।
7: कितना प्यारा है ना ये बिल्ली का बच्चा, छोटा सा सफेद रंग का।
3: अरे छोड़ो सोमा, मेरी बकरी भूरी के सामने तो ये कुछ भी नहीं है।
7: भोलू भैया, आपके भूरी से तो बहुत सुंदर है ये, इसका नाम क्या है सुनील?
1: हम तो प्यार से इसे मियाओ कहते हैं।
5: सुनील, तुम इसे क्लास में लेके क्यों आए? तुम्हें पता है ना, क्लास में कोई भी अपने पालतू जानवर को लेके नहीं आ सकता।
1: बहन जी, सब मियाओ को देखना चाहते थे तो।
5: लेकिन नियम तो नियम होते हैं, इसीलिए तुम्हें इसे क्लास से बाहर ले जाना पड़ेगा। एक काम करो, तुम इसे मेरे कमरे में छोड़ाओ।
1: जी बहन जी।
0: और अगले दिन यानी रविवार की सुबह, जब मीना भोलू दीपू और सोमा के साथ खेल रही थी।
1: मीना, मीना, मीना।
4: सुनील, क्या हुआ, तुम इतने घबराए हुए?
1: मीना, किसी ने मेरे मियाओ को चुरा लिया।
4: क्या?
1: हाँ, मेरा मियाओ।
4: सुनील, हो सकता है मियाओ घर के आसपास ही कहीं।
1: नहीं मीना, सब जगह देख लिया लेकिन कहीं नहीं मिला।
4: तुम चिंता मत करो सुनील, लल्ला के घर चल के पूछते हैं, हो सकता है उसने कहीं देखा हो मियाओ को। भोलू भैया, आप भी हमारे साथ चलिए।
3: मीना, तुम लोग जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगा।
6: मीना, सोमा, सुनील, मुझे तो लगता है भोलू भैया ने ही चुराया है मियाओ को।
4: नहीं दीपू, भोलू भैया ऐसा क्यों करेंगे?
1: लेकिन मीना, कल क्लास में भी वो मियाओ की तारीफ सुन के खुश नहीं थे।
7: सुनील, ये सब बातें बाद में।
4: हाँ, लल्ला के घर चलते हैं।
0: सुनील, दीपू, सोमा और मीना लल्ला के घर पहुँचे, जो कि सुनील के घर से थोड़ी दूर ही था। लल्ला आंगन में अपने छोटे भाई मुन्ना के साथ आम खा रहा था।
1: लल्ला, क्या तुमने मियाओ को कहीं देखा है?
8: मियाओ को नहीं, लेकिन बात क्या है?
4: लल्ला, सुनील कहता है किसी ने उसकी मियाओ को चुरा लिया, हमने सोचा शायद तुमने किसी को देखा हो मियाओ को ले जाते हुए।
8: मीना दीदी, मैं और मुन्ना रोज की तरह कल रात भी यहीं आंगन में सो रहे थे, मैंने तो किसी को भी नहीं देखा।
9: मियाओ चढ़ गया पेड़ पर, म्याओ चढ़ गया पेड़ पर।
8: मुन्ना चुप, हमें तंग मत करो।
10: उसे बोलने दो लल्ला।
8: लेकिन माँ,
9: म्याओ चढ़ गया पेड़ पर।
10: कौन से पेड़ पर मुन्ना?
9: म्याओ चढ़ गया पेड़ पर, वो पेड़ पर रात को।
4: मुन्ना तो सामने वाले पीपल के पेड़ की तरफ इशारा कर रहा है, आओ वहीं चल के देखते हैं।
0: मीना और उसके दोस्त पीपल के पेड़ के पास पहुंचे, और वहां जाके उन्होंने देखा कि पेड़ की सबसे ऊंची वाली डाल पे बैठा है म्याओ।
1: मीना, वो देखो मेरा म्याओ। आओ आओ, म्याओ नीचे उतरो। ओफ हो, ये तो नीचे उतर ही नहीं रहा।
4: तुम फिक्र मत करो सुनील, मैं अभी पेड़ पर चढ़कर म्याओ को उतारती हूँ।
3: रुको मीना।
2: भोलू भैया।
0: भोलू तेजी से पेड़ पर चढ़ा और बड़ी सावधानी से म्याओ को नीचे ले आया।
3: ये लो सुनील, तुम्हारा म्याओ।
6: मुझे माफ कर दो भोलू भैया, मुझे लगा कि आपने ये म्याओ को कहीं ले जाकर छुपा दिया है। अभी थोड़ी देर पहले आप एकदम से चले भी गए थे, तो हमने सोचा कि
3: दीपू, मैं तो अपने दोस्तों से ये कहने गया था कि वो सब भी म्याओ को पूरे गांव में ढूंढे, लेकिन तुम्हें पता कैसे चला कि म्याओ इस पेड़ पर चढ़ा हुआ है?
4: मुन्ना की वजह से।
3: मुन्ना की वजह से?
4: हाँ भोलू भैया, मुन्ना की नजर बहुत तेज है, जो उसने इतनी दूर से रात के अंधेरे में भी म्याओ को पेड़ पे चढ़ते हुए देख लिया।
3: अच्छा, ये तो कमाल की बात है।
10: ये कमाल तो विटामिन ए का है।
3: विटामिन ए का?
10: हाँ भोलू, लल्ला और मुन्ना दोनों की आंखें बहुत तेज हैं, क्योंकि मैं उन्हें विटामिन ए से भरपूर सब्जियाँ और फल जो खिलाती हूँ।
3: लेकिन विटामिन ए से होता क्या है चाची जी?
10: भोलू बेटा, विटामिन ए हमारे शरीर के विकास और आँखों की रोशनी के लिए बहुत जरूरी है, और ये पीले फलों जैसे आम, पपीता या फिर लाल और हरी पत्तेदार सब्जियाँ जैसे पालक, गाजर, इनमें खूब पाया जाता है।
2: खूब पाया जाता है, मिट्ठू भी खाता है।
7: मेरी छोटी बहन पारो तो हरी पत्तेदार सब्जियाँ बिल्कुल नहीं खाती। माँ कहती है कि तुम चिंता मत करो सोमा, जब पारो थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो अपने आप सब खाना शुरू कर देगी।
5: ऐसा सोचना गलत है सोमा, क्योंकि 5 साल से छोटे बच्चों के लिए तो विटामिन ए से भरपूर सब्जियाँ और फल खाना बहुत जरूरी है, वरना उनका शारीरिक विकास सही ढंग से नहीं हो पाता और उनकी आँखों की रोशनी पे भी बुरा असर पड़ सकता है।
4: हाँ चाची, नर्स बहन जी कहती है कि विटामिन ए की कमी होने से हमें कम रोशनी में सब धुंधला नजर आता है।
3: ओ, आज मैं समझा हूँ विटामिन ए का महत्व। चाची जी, आज से मैं भी हरी और लाल सब्जियाँ खाया करूँगा।
0: देखा दोस्तों, है ना मीना से मिलने में फायदा, मजे का मजा और काम की बात भी पता चल गई। चलो अब सुनते हैं मीना और मिट्टू की एक नई कविता।
4: बढ़ती है आँखों की रोशनी, सेहत मिलती पूरी,
2: 5 साल तक के बच्चों के लिए विटामिन ए जरूरी।
0: वाह वाह, क्या बात कही है अपनी मीना और मिट्टू ने, तो इसी बात पे हो जाए गाना।

0: गाना सुन के तो सचमुच बहुत मजा आया है ना। अब चलना है खेलने मीना की क्लास में।
1: बच्चों आज हम खेलेंगे कड़ियां जोड़ पहेली
2: तोड़।
1: हाँ, मैं तुम्हें तीन कड़ियां बता के एक पहेली पूछूंगी और तुम्हें पूछना है उस पहेली का सही जवाब। तो शुरू करें आज का खेल।
2: जी बहन जी।
1: तो सुनो पहली कड़ी। बुझो बुझो कौन हूँ मैं, तुम नाम मेरा बतलाओ, हरे रंग से लाल हो जाती जो पानी मुझ में मिलाओ।
3: क्या हो सकता है?
4: ये पहेली तो बहुत मुश्किल लग रही है बहन जी।
5: हाँ बहन जी, इसमें तो बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा।
1: दीपू, मोनू, अगर पहेली बूझने में दिमाग न लगाना पड़े तो फिर मजा ही क्या। चलो चलो बच्चों, शाबाश, जल्दी से सोचो।
6: दूसरी कड़ी बताइए ना बहन जी।
1: ठीक है गोलू। बच्चों अब सुनो दूसरी कड़ी। अक्सर मैं मिल जाती हूँ तुम सब लोगों के घर में, कोई लगाए हाथ पैर पे, कोई लगाए सर में।
7: कोई लगाए हाथ पैर पे, कोई लगाए सर में।
1: फिर से बोलती हूँ। बूझो बूझो कौन हूँ मैं, तुम नाम मेरा बतलाओ, हरे रंग से लाल हो जाती जो पानी मुझ में मिलाओ। अक्सर मैं मिल जाती हूँ तुम सब लोगों के घर में, कोई लगाए हाथ पैर पे, कोई लगाए सर में।
8: इस पहेली को बूझना बहुत मुश्किल लग रहा है बहन जी, तीसरी कड़ी भी बता ही दीजिए।
1: ठीक है कृष्णा। बच्चों ये रही तीसरी कड़ी। जब होती है कोई भी शादी, दुल्हन मुझे लगाती, रंग मेरा जब चढ़ता गाढ़ा, और भी खुश हो जाती।
9: मैं समझ गई बहन जी, सही जवाब है मेहंदी।
1: हाँ मीना, शाबाश। तो बच्चों मजा आया ना?
2: जी बहन जी।
0: आपको भी मजा आया ना? फिर ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं एक चटपटी कहानी, गुदगुदाते गीत और मजेदार खेल के साथ। तब तक अपनी प्यारी मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना, चाहे वो आपके सुझाव हो, आपके विचार हो या आपके अनुभव।
10: और मेरा पता है मीना की दुनिया, यूनिसेफ, पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 1100003।

0: क्या आपका फोन चोरी हो गया है? क्या आप जानते हैं कि अपना मोबाइल फोन कैसे ब्लॉक करें और ट्रेस करें? आप sanchar-saathi.gov.in पर संचार साथी की मदद ले सकते हैं। सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज के अंदर ब्लॉक योर लॉस्ट स्टोलन मोबाइल CEIR पर क्लिक करें। आपको केवल फोन नंबर, फोन का ब्रांड, फोन बिल, FIR कॉपी, फोन का IMEI नंबर की जरूरत है। पूरी जानकारी भरे और अपने चोरी हुए फोन के दुरुपयोग से बचें। किसी भी साइबर अपराध की रिपोर्ट cybercrime.gov.in पर करें। सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें।
1: दादाजी और नवीनीकरणीय संसाधन। पात्र परिचय। दादाजी के रूप में पंकज, राहुल के रूप में आदित्य और रिया कृष्णा।
2: दादाजी, आप पौधा लगा रहे हैं?
3: हाँ, पौधा लगाने से पर्यावरण तो स्वच्छ होता ही है, साथ ही नवीनीकरणीय संसाधनों का भी विकास होता है।
1: ये संसाधन क्या होता है दादाजी?
3: ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो समय के साथ प्राकृतिक या जैव वैज्ञानिक रूप से बदले और जरूरत के हिसाब से दोबारा प्रयोग में लाए जा सकते हैं, उन्हें नवीनीकरणीय संसाधन कहते हैं।
2: ये कौन कौन से होते हैं?
3: इन नवीनीकरणीय संसाधनों में पेड़ पौधे, जीव जंतु, हवा, सूर्य का प्रकाश आदि सभी आते हैं, जिन्हें समय के साथ दोबारा प्राप्त करके लाया जा सकता है।
1: लेकिन दादाजी, इन्हें नवीनीकरणीय संसाधन क्यों कहते हैं?
3: राहुल, इन वस्तुओं का प्रयोग अनेक बार विभिन्न रूप से किया जा सकता है, इसलिए इन्हें नवीनीकरणीय संसाधन कहते हैं। उदाहरण के रूप में पेड़ पौधों को ही ले सकते हो, ये हमें फल फूल तथा सांस लेने के लिए शुद्ध हवा तो देते ही हैं, इनकी लकड़ियों द्वारा फर्नीचर तथा कागज आदि भी बनाए जाते हैं।
2: दादाजी, नवीनीकरणीय संसाधनों से और क्या क्या लाभ है?
3: नवीनीकरणीय संसाधनों से बायोप्लास्टिक, बायो एस्फॉल्ट, बायोफ्यूल, बायोगैस आदि भी प्राप्त होते हैं।
2: वाह, फिर तो हमें इन संसाधनों का खूब प्रयोग करना चाहिए।
3: रिया, लेकिन इनके अत्यधिक प्रयोग से इन वस्तुओं के विलुप्त होने की भी संभावना उत्पन्न हो सकती है।
1: मैं कुछ समझा नहीं दादाजी।
3: राहुल, उदाहरण के रूप में तुम मछलियों के प्रयोगों को ही ले सकते हो। समुद्र की मछलियों को जितनी अधिक मात्रा में पकड़ा जाता है, उतनी अधिक मात्रा में वह शीघ्र ही पुनः उत्पन्न नहीं हो पाती, इसलिए उनकी मात्रा में कमी आती जा रही है, और अगर ऐसा ही रहा तो मछलियों की अनेक प्रजातियां विलुप्त भी हो सकती है।
2: इसका मतलब हमें नवीनीकरणीय संसाधनों का प्रयोग भी करना चाहिए, लेकिन खूब सोच समझ कर, जिससे संसाधनों को हमें लाभ भी प्राप्त होता रहे और इन संसाधनों को क्षति भी ना पहुंचे।

0: नमस्कार, मेरा नाम है अमन वर्मा और इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपका अपने घर पर कोई इंतज़ार कर रहा है, इसलिए कृपया हेलमेट लगाकर अपनी मोटरसाइकिल चलाएं, याद रखिएगा।
1: हेलो स्टूडेंट्स, अगेन दिस इज संदीप त्रिवेदी। आई वेलकम यू इन आवर इंग्लिश लर्निंग क्लास। Today I am going to teach you the lesson number 8, which is

a discourse on prayer. And this lesson has been written by Father of Nation, Mr. M.K. Gandhi. The name of the book is Golden Rays and the class is class 10th, RBSE, Rajasthan Board of Secondary Education. Okay, so let's begin. First, about the author. Mahatma Gandhi, the father of our nation, was born on October 2nd, 1869 at Porbandar, गुजरात. गुजरात के पोरबंदर में इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था. ये तो आप सब जानते ही हैं. He was a preeminent leader of Indian National Movement. भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन था उसके वो बहुत ही प्रसिद्ध नेता थे. इन ब्रिटिश रूल्ड जब हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था. गांधी जी डेडिकेटेड हिज लाइफ टू द डिस्कवरिंग ऑफ ट्रुथ. गांधी जी ने अपना पूरा जीवन सत्य की खोज में लगा दिया. एंड लेड द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस. और हमेशा अहिंसा के मार्ग पर वो रहे. अहिंसा का रास्ता उन्होंने कभी भी नहीं छोड़ा. इन पॉलिटिकल फील्ड, राजनीतिक मामलों में, ही प्रैक्टिस्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रुथ. उन्होंने हमेशा सत्य का पालन किया एंड नॉन वायलेंस और अहिंसा का. नॉट ओनली इन हिज पर्सनल लाइफ, केवल अपने निजी जीवन में नहीं, बट अप्लाइड देम इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल फील्ड. उनको राजनीतिक मामलों में भी उन्होंने प्रयोग करके देखा. हिज फेमस ऑटोबायोग्राफी इज माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ. उनकी जो प्रसिद्ध जीवनी है उसका नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग. He is also called Bapu. उन्हें बापू भी कहा जाता है. About the text, the present extract is from Gandhiji's lecture on the necessity of prayer. ये जो है हमारा अध्याय जो है वो उनकी एक जो व्याख्यान था उनका, the necessity of prayer, प्रार्थना की आवश्यकता में से लिया गया, which he delivered to a group of students, जो कि एक विद्यार्थियों के समूह के सामने उन्होंने वो स्पीच दिया था, वो भाषण दिया था, एट साबरमती आश्रम गुजरात में, अहमदाबाद में जो उनका प्रसिद्ध आश्रम है साबरमती, जिसका नाम है, वहां पर दिया था साबरमती आश्रम में. द ऑथर हाईलाइट्स द नीड ऑफ प्योरिटी. जो पवित्रता है उसकी आवश्यकता पर लेखक ध्यान जोर देते हैं. Of mind, खासकर मस्तिष्क की, and heart और हृदय की, which may be obtained through sincere prayers, जो कि बहुत ही ईमानदारी से प्रार्थना करने से ही संभव है. The faith in religion, और धर्म में आस्था, teaches us a sense of discipline. धर्म में आस्था होने से हमारे अंदर अनुशासन पैदा होता है और कर्तव्य की भावना हमारे अंदर आती है. इसका मतलब प्रेयर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा गांधी जी कहते हैं. अब हम लेसन को स्टार्ट करते हैं. सो प्लीज लिसन इट केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. ओके, आई एम ग्लैड दैट यू ऑल वांट मी टू स्पीक टू यू ऑन द मीनिंग ऑफ एंड द नेसेसिटी फॉर प्रेयर्स. मुझे जानकर के बड़ी खुशी हुई कि आप लोग सब मुझसे प्रार्थना के अर्थ और प्रार्थना के लिए क्या आवश्यक है इस पर कुछ कहलवाना चाहते हैं, उस पर चाहते हैं कि मैं कुछ बोलूं. आई बिलीव दैट प्रेयर इज द वेरी सोल एंड एसेंस ऑफ रिलीजन. मैं ये मानता हूं कि धर्म का आधार प्रार्थना है. धर्म का सबसे महत्वपूर्ण भाग अगर कुछ है तो वो प्रार्थना है. एंड और देयरफॉर प्रेयर मस्ट बी द वेरी कोर ऑफ द लाइफ ऑफ मैन. हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है प्रार्थना. फॉर नो मैन कैन लिव विदाउट रिलीजन. क्योंकि कोई व्यक्ति धर्म के बगैर नहीं है. इस धरती पर जो भी है उसका धर्म जरूर, ऐसा गांधी जी कहते हैं. देर आर सम, ऐसे कुछ लोग हैं इस दुनिया में हु इन द
egotism of their reason, वो अपने अहंकार में, वो अपने अहंकार के वशीभूत होकर के, अपने अहंकार के कारण declared that, वो घोषणा करते हैं कि they have nothing to do with religion, उन्हें धर्म से कोई लेना देना नहीं है. ऐसे लोग हैं जो अपने अहंकार में ये बात कहते हैं. But लेकिन it is like a man saying that, लेकिन ये ठीक वैसा ही है कि एक आदमी कहता है he breathes, वो सांस तो लेता है, but that he has no nose, लेकिन उसकी नाक नहीं है. Whether by reason or by instinct, चाहे किसी कारण से या अंतरात्मा से, और by superstition या फिर अंधविश्वास से, man acknowledges some sort of relationship with the divine. मनुष्य किसी तरीके से वो जो सर्वशक्तिमान है, वो परमात्मा है, उससे संपर्क बनाता है. The rankest agnostic or atheist, सबसे बड़ा अहंकारी या नास्तिक, does acknowledge the need of moral principle, वो भी कुछ नैतिक सिद्धांतों को मानता है, and associates something good with its observance and something bad with its non-observance. इसके पालन में कुछ अच्छा महसूस करता है सिद्धांतों के, और इसके पालन नहीं करने पर कुछ बुरा महसूस करता है. Now, अब I come to the next thing. अब मैं दूसरी बात पर आता हूं. That prayer is the very core of man's life. कि इंसान के जीवन का महत्वपूर्ण अंग प्रार्थना क्यों है? As it is the most vital part of religion. क्योंकि ये धर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है. Prayer is either petitional. प्रार्थना जो है वो किसी याचिका के तौर पर, किसी याचना के तौर पर भी की जा सकती है, किसी याचक के तौर पर भी की जा सकती है, और या इन इट्स वाइडर सेंस, या इसका जो व्यापक अर्थ अगर हम देखें, इज इनवर्ड कम्युनियन, या फिर अंतरात्मा का सर्वशक्तिमान से संबंध स्थापित करने का भी एक माध्यम हो सकता है. ठीक है. इवन वेन इट इज पिटिशनल, जब ये याचिका के तौर पर हो प्रार्थना, द पिटिशन शुड बी फॉर द क्लेंसिंग एंड प्योरिफिकेशन ऑफ द सोल, तो फिर वो याचिका किसके लिए होती है? हमारी आत्मा की पवित्रता के लिए, हमारी आत्मा की शुद्धता के लिए, फॉर फ्रीइंग इट फ्रॉम द लेयर्स ऑफ इग्नोरेंस, अंधकार, अज्ञानता जो है उससे बाहर निकालने के लिए, उससे आजाद करने के लिए, दैट एनवलप इट, जिसने हमारे हमारी अंतरात्मा पर अधिकार कर रखा है, जिसने हमारी अंतरात्मा को ढक रखा है, उससे बाहर लाने के लिए. किसने? अंधकार और अज्ञानता ने, जो हमें हमें पूरी तरह से बांध रखा है, उससे बाहर लाने के लिए प्रार्थना होती है. ही देयरफॉर हु हंगर्स फॉर द अवेकनिंग ऑफ द डिवाइन इन हिम मस्ट फॉल बैक ऑन प्रेयर. वो जो इंसान अपने अंदर ईश्वर को पैदा करना चाहता है, ईश्वर से संबंध स्थापित करना चाहता है, उसे तो प्रार्थना करनी ही करनी होगी. बट लेकिन प्रेयर इज नो मेयर एक्सरसाइज ऑफ वर्ड्स और ऑफ द ईयर्स, लेकिन प्रार्थना केवल कुछ शब्दों का अभ्यास नहीं है, या कान से सुनने भर मात्र की वस्तु नहीं है. इट इज नो मेयर रिपीटिशन ऑफ एम्प्टी फॉर्मूला, या ये केवल कोई खाली कुछ सूत्रों को दोहराने का नाम भी नहीं है. एनी अमाउंट ऑफ रिपीटिशन ऑफ राम नाम इज फ्यूटाइल. राम नाम का बार बार दोहरान करना किसी भी तरीके से वो बेकार है, इफ इट फेल्स टू स्टिर द सोल, जब तक कि वो आत्मा से जुड़ाव ना हो, जब तक कि वो हमारी अंतरात्मा से वो आवाज ना आए, तब तक सब कुछ बेकार है, सब कुछ व्यर्थ है. इट इज बेटर इन प्रेयर टू हैव अ हार्ट विदाउट वर्ड्स. प्रार्थना के लिए ये आवश्यक है, ज्यादा आवश्यक है कि शब्द के बिना हृदय हो, दिल से जुड़े हम, देन वर्ड्स विदाउट अ हार्ट.
केवल शब्द बोलते रहे, हमारा दिल कहीं और घूम रहा है, हम तो मंगल की यात्रा करके आ रहे हैं, अमेरिका की यात्रा करके आ रहे हैं, और हम बोल रहे हैं भाई भगवान का नाम ले रहे हैं, सब प्रार्थना कर रहे हैं, हम तो इतनी शक्ति हमें देना दाता, लेकिन हमारी हमारा विश्वास ही नहीं जुड़ा हुआ है तो फिर कैसे शक्ति मिलेगी, दाता सुनेंगे ही नहीं। एंड आई एम गिविंग यू अ बिट ऑफ माई एक्सपीरियंस, और मैं आपको थोड़ा सा मेरा जो अनुभव है वो बताता हूं, एंड दैट ऑफ माई कंपेनियंस व्हेन आई से, और खासकर मेरे साथियों के बारे में जब मैं ये कहता हूं दैट कि ही हु हैज एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ प्रेयर, जिसने प्रार्थना के जादू को महसूस किया है, मे डू विदाउट फूड फॉर डेज टूगेदर, जो कि कई दिनों तक बिना भोजन के भी वो जीवित रह सकता है, जिसने प्रार्थना की ताकत को समझा, बट नॉट अ सिंगल मोमेंट विदाउट प्रेयर, लेकिन वो प्रार्थना के बगैर एक क्षण मात्र भी नहीं रह सकता है। For without prayer there is no inward peace. प्रार्थना के बिना आंतरिक शांति, मन की शांति कभी भी नहीं मिल सकती है। If that is the case, अगर यही बात है, someone will say, कोई कहेगा, we should be offering our prayer every minute for our lives. तो हम हमारे जीवन के लिए क्या हर मिनट प्रार्थना करें? There is no doubt about it. इसमें कोई संदेह नहीं है, but लेकिन we erring mortals. लेकिन हम जो इंसान हैं, हम जो मनुष्य हैं, हम गलती करते हैं. Who find it difficult to retire within ourselves for inward communion, even for a single moment? एक क्षण के लिए भी हम ईश्वर से अपना संपर्क स्थापित करने में असफल हो जाते हैं, यही हम गलती कर बैठते हैं। विल फाइंड इट इम्पॉसिबल, हमारे लिए ये असंभव होगा टू रिमेन परपेक्चुअली इन कम्युनियन विद द डिवाइन, लगातार हम ईश्वर से संपर्क बना करके रखें, ये हमारे लिए असंभव होगा, मुश्किल होगा। वी देयरफॉर, इसलिए हम फिक्स सम आवर्स, कुछ समय निर्धारित कर देते हैं, व्हेन वी मेक अ सीरियस एफर्ट, जब हम एक बहुत ही गंभीर, बहुत ही ईमानदार प्रयास कर सकते हैं टू थ्रो ऑफ द अटैचमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, सांसारिक जितने भी बंधन है उससे अपने आप को बाहर निकाल करके फॉर ए वाइल, कुछ देर के लिए वी मेक अ सीरियस एंडेवर टू रिमेन, हम इस बात को स्वीकार करते हुए कुछ देर तक अगर रहते हैं, सो टू से मैं ये कहता हूं आउट ऑफ द फ्लैश, कि जब हम ऐसा लगे कि हमारा शरीर जैसे हमने छोड़ दिया हो, केवल हमारी आत्मा काम कर रही हो, हमें पता ही नहीं कि हमारे आसपास, कहते हैं ना, कोई सुई भी चुभोए तो पता ना चले, इस तरीके से अगर हम करें तो फिर प्रार्थना का मतलब है। आई हैव टॉक्ड ऑफ द नेसेसिटी फॉर प्रेयर, मैंने प्रार्थना की आवश्यकता पर बात की, एंड आई हैव डेल्ट विद द एसेंस ऑफ प्रेयर, और मैंने बहुत अच्छी तरीके से प्रार्थना के महत्व को समझा है। प्रार्थना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वी आर बॉर्न टू सर्व आवर फेलो मैन, हमारा जन्म क्यों हुआ है? हमारा जन्म हुआ है हमारे लोगों की सेवा करने के लिए, हमारे आसपास के लोगों का भला करने के लिए। ईश्वर ने हमें जीवन दिया है तो हम कुछ करके जाएं, ऐसा कुछ करके जाएं कि पीछे लोग हमें याद करें। एंड वी कैनॉट प्रॉपरली डू सो अनलेस वी आर वाइड अवेकन, और जब तक हम पूरी तरह से जागृत नहीं है, वाइड अवेक, हमें ज्ञान नहीं मिला है, हमें नॉलेज, हमें ट्रुथ, हमें सच्चाई का पता नहीं चला है, अगर हम पूरी तरह से जागृत नहीं हैं, तो फिर हम लोगों की सेवा क्या करेंगे? और जागृत का मतलब है कि जब हमें ही नहीं पता कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा मार्ग क्या है, हमें बाधाएं कौन कौन से आने वाली है, उनसे बाहर कैसे निकलना है, तो हम कैसे सेवा करेंगे? देयर इज एन एक्सटर्नल स्ट्रगल
रैगिंग इन मेंस ब्रेस्ट बिटवीन द पावर्स ऑफ डार्कनेस एंड द लाइट. इंसान हमेशा अंधकार की ताकतों और उजाला यानी अज्ञानता और ज्ञान के बीच में संघर्ष करता रहता है, हमेशा उसका युद्ध जारी रहता है. एंड ही और वो हु हैज नॉट द शीट एंकर ऑफ प्रेयर, और जिसके पास प्रार्थना की ताकत नहीं है, जिसने प्रार्थना को समझा नहीं है, जिसने प्रार्थना की शक्ति को पहचाना नहीं है, जिसके पास प्रार्थना रूपी लंगर नहीं है टू रिलाई अपॉन, खुद पर भरोसा करने के लिए. मानिए कि हमारा जीवन एक जहाज है, हमारा शरीर एक जहाज है, और उस जहाज को इस शरीर को बहकने से रोकने के, जिस प्रकार जहाज को आगे पीछे होने से लंगर डाला जाता है, इस प्रकार अगर हमारे इस शरीर को इधर उधर भटकने से रोकने के लिए अगर हम प्रार्थना रूपी लंगर नहीं लगाएंगे, खुद पर भरोसा नहीं पैदा करेंगे, विल बी अ विक्टिम टू द पावर्स ऑफ डार्कनेस. तो फिर हम जो अंधकार है उसका शिकार बन जाएंगे. अंधकार तो चाहता ही है, अज्ञान तो चाहता ही है. ये शक्तिमान में आता ना, वो अंधेरा कायम रहे हमेशा. तो क्यों है वो? क्योंकि हम जागृत नहीं है, हम सच्चाई को समझ नहीं पा रहे हैं. द मैन ऑफ प्रेयर विल बी एट पीस विद हिमसेल्फ. जो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति होता है वो हमेशा शांत चित्त रहता है, एंड विद द होल वर्ल्ड, और पूरे संसार के साथ ही वो शांत बना रहता है हमेशा. ओम शांति, हमेशा. कभी भी उसके अंदर अहंकार नहीं आता है, कभी भी उत्तेजना उसके अंदर नहीं आती है. द मैन हु गोज अबाउट द अफेयर्स ऑफ द वर्ल्ड, और वो व्यक्ति जब सांसारिक कार्य करता है विदाउट ए प्रेयरफुल हार्ट, बिना प्रार्थना के हृदय के, विल बी मिजरेबल. वो परेशान रहता है, वो हमेशा दुखी रहता है, एंड विल मेक द वर्ल्ड ऑल्सो मिजरेबल. वो संसार को भी दुखी करता रहता है, खुद तो दुखी होता ही है, संसार को भी दुखी करता रहता है अपार्ट. इसके अलावा देयरफॉर फ्रॉम इट्स बियरिंग ऑन मैन्स कंडीशन आफ्टर डेथ, मरने के बाद प्रेयर हैज इनकैलकुलेबल वैल्यू. तो प्रार्थना की तो असीमित मूल्य होता है, उसका कोई मूल्य नहीं है. फॉर मैन इन दिस वर्ल्ड, संसार में जब तक वो है ऑफ लिविंग, तभी तक प्रार्थना का महत्व है. बाद में तो प्रार्थना ही प्रार्थना करनी है मरने के बाद. तो वी इनमेट्स ऑफ द आश्रम, हम जो आश्रम के लोग हैं, निवासी हैं, हु कम हियर इन सर्च ऑफ ट्रुथ, जो कि सत्य की खोज में आए, एंड फॉर इंसिस्टेंस ऑन ट्रुथ, और सत्य पर ही जो कि ध्यान देना चाहते हैं, प्रोफेस्ड to believe in the efficacy of prayer. तो हम सब ये संकल्प लेते हैं कि हम प्रार्थना की महत्व पर, प्रार्थना की उत्पादकता पर, प्रभावोत्पादकता पर विश्वास करेंगे. But had never up to now made it a matter of vital concern. लेकिन हमेशा हम कभी भी प्रार्थना को छोड़ेंगे नहीं, हमेशा प्रार्थना को महत्वपूर्ण अंग ही बनाएंगे हमारे जीवन का. We did not bestow on it and care that we did on other matters. कि हम केवल दूसरी बातों पर ही ध्यान नहीं देंगे, बल्कि हमें प्रार्थना पर भी ध्यान देना. I awoke from my slumber, मैं अपनी नींद से जब जागता हूँ, जागा one day, एक दिन, and realized that, और मुझे ये महसूस हुआ कि I had been woefully negligent of my duty, कि मैं बहुत बुरी तरह से अपने कर्तव्यों से विमुख हो रहा हूं, अपने कर्तव्यों से भाग रहा हूं. In the matter, हर मामले में, I have therefore suggested a measure of stern discipline. तो फिर मैंने अपने आप से अनुशासित रहने का निर्णय लिया, मैंने अपने अंदर अनुशासन पैदा किया. And far from being any the वर्स, और जो कुछ भी बुरा हो सकता था उससे मैं बाहर निकला. आई होप, मैं ये मानता हूं, वी आर द बेटर फॉर इट, हम इसके लिए सर्वाधिक उत्तम हैं, सबसे अच्छे हैं. फॉर इट इज सो ऑब्वियस,
क्योंकि ये

बहुत महत्वपूर्ण है। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपना ध्यान रखें, एंड द थिंग्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्फ, वो चीजें अपने आप ठीक होती जाएंगी। रेक्टिफाई वन एंगल ऑफ द स्क्वायर, जो आयत होता है, वर्ग होता है, उसका एक सिरा ठीक कर दो, एंड द अदर एंगल्स विल बी ऑटोमेटिकली राइट, बाकी के सिरे अपने आप ठीक हो जाए। बिगिन देयर फॉर योर डे विद प्रेयर, इसलिए अपना दिन प्रार्थना के साथ प्रारंभ कीजिए। एंड आप जानते हैं, स्कूल में भी जब हम जाते हैं, सबसे पहले शुरुआत प्रेयर से क्यों की जाती है, प्रार्थना से क्यों की जाती है, ताकि हम बाकी सब बातों को भूल करके अब 4-6 घंटे हमें जो विद्यालय में बिताने हैं, जो काम हमें करना है, जो पढ़ना है, बस उसी पर हमारा ध्यान केंद्रित रहे, अच्छी अच्छी बातों पर हमारा ध्यान केंद्रित रहे, इसलिए। एंड मेक इट सो सोलफुल दैट, और उसको आत्मा का हिस्सा बना लें, दैट कीप इट मे रिमेन विद यू अंटिल द इवनिंग, शाम तक वो आपके साथ रहे, क्लोज द डे, दिन की समाप्ति पर आपके साथ रहे विद प्रेयर, दिन का समापन भी आप प्रार्थना के साथ करें, सो दैट ताकि यू मे हैव अ पीसफुल नाइट, ताकि आप रात को शांति से सो सकें, फ्री फ्रॉम ड्रीम, सपने नहीं आए, क्योंकि सपने आते हैं तो नींद टूटेगी, एंड नाइटमेयर्स और बुरे सपने तो बिल्कुल नहीं आए। डो नॉट वरी अबाउट द फॉर्म ऑफ प्रेयर, प्रार्थना के किसी तरीके के बारे में चिंता मत करिए, लेट इट बी एनी फॉर्म, कोई भी तरीका हो सकता है, इट शुड बी सच एज अ पुट अस कम्युनियन विद द डिवाइन, जो तरीका हमें ईश्वर से जोड़े वो कोई भी तरीका प्रार्थना के लिए अपनाया जा सकता है। All things in the universe, इस ब्रह्मांड में सारी चीजें, including the sun, सूर्य के साथ साथ, and the moon, चंद्रमा, and the stars, और तारे, सितारे, obey certain laws, वो भी कुछ नियमों का पालन करते हैं। Without the restraining influence of these laws, इन कानूनों के बिना, इन कानूनों के प्रभाव के बगैर, the world will not go on, संसार कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता है, for a single moment, एक क्षण के लिए भी नहीं, यानी कोई ना कोई ताकत है जिसने सबको बांध करके रखा है। यू, तुम, whose mission in life is service, जिनका की जीवन में लक्ष्य ही सेवा करना है, of your fellow men, अपने साथियों का, will go to pieces if you do not impose on yourselves some sort of discipline. जब अब तक आप अपने अंदर कोई अनुशासन नहीं लाएंगे, तो आप जितने भी लोग हो, आप जितने भी लोग मिलकर के समाज के लिए कुछ करना चाहते हो, आप सब टुकड़ों में बढ़ जाओगे, टुकड़े टुकड़े हो जाओगे, कोई ताकत आपको जोड़ करके नहीं रखेगी। एंड प्रेयर और प्रार्थना इज अ नेसेसरी स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, और आत्मा की अनुशासन का नाम ही प्रार्थना है, इट इज डिसिप्लिन, ये अनुशासन ही है, एंड रेस्ट्रेंस दैट सेपरेट अस फ्रॉम द ब्रूट, जो कि हमें जानवरों से अलग करता है, क्योंकि प्रार्थना ने ही हमें इस काबिल बनाया है कि हम इंसान हैं, हम अच्छा बुरा सोच सकते हैं, हम समझ सकते हैं चीजों को। सो स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेसन फॉर नॉट ओनली फॉर द स्टूडेंट्स बट ऑल द अदर पीपल ऑल्सो। So always keep in mind that prayer is the core of our life. तो बच्चों, आज का ये लेसन तो यहीं पे पूरा होता है, लेसन नंबर 8 कंप्लीट हुआ, अब हम लेसन नंबर 9 स्टार्ट करेंगे, लेकिन आज नहीं, वो तो हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग मी।

मैं जानकी हिमलानी, मैं अध्यापिका हूँ। कुछ कहना चाहती हूँ। लेफ्ट साइड में ही हमें चलना चाहिए और हमेशा तेज आते वाहनों से स्वयं को बचाना चाहिए। जो कार चलाते हैं उनसे भी मेरा ये निवेदन है कि जब भी आप कार चलाएं तो बेल्ट दे रखी है, सीट बेल्ट का उपयोग करें, इससे सुरक्षा बनी रहेगी। जान है तो जहान है। रेडियो मधुबन

0: तो बिजली बचाओ देश बनाओ।
1: क्या आपका फोन चोरी हो गया है? क्या आप जानते हैं कि अपना मोबाइल फोन कैसे ब्लॉक करें और ट्रेस करें? आप sancharsathi.gov.in पर संचार साथी की मदद ले सकते हैं। सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज के अंदर ब्लॉक योर लॉस्ट स्टोलन मोबाइल CEIR पर क्लिक करें। आपको केवल फोन नंबर, फोन का ब्रांड, फोन बिल, FIR कॉपी, फोन का IMEI नंबर की जरूरत है। पूरी जानकारी भरें और अपने चोरी हुए फोन के दुरुपयोग से बचें। किसी भी साइबर अपराध की रिपोर्ट cybercrime.gov.in पर करें। सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें।

0: शांति, तुम्हें पता है मुझे गेम्स बहुत पसंद है।
1: हाँ, मुझे भी बहुत पसंद है। शिक्षा, तुम्हें पसंद है गेम्स?
2: हाँ, मुझे भी गेम्स पसंद है।
0: तुम्हें कौन से गेम्स पसंद है? मुझे तो फुटबॉल और क्रिकेट ज्यादा अच्छे लगते हैं।
1: मुझे तो सारे गेम्स अच्छे लगते हैं, कुछ भी खेलने के लिए दे दो। ओके, तो यहाँ पे लग रहा है खेल कूद की सिर्फ बातें हो रही हैं, पर गर्मी की छुट्टियों में तो असल में बाहर जाके खेला जाता है। क्या बातें हो रही हैं भाई?
0: गेम्स के बारे में बातें हो रही हैं।
1: गेम्स गेम्स किसको नहीं पसंद? ऐसा कोई है क्या जिसको नहीं पसंद होगा?
0: पता नहीं, हो भी सकते हैं।
1: हो सकता है। वैसे जब बड़े हो जाते हैं ना, तो सच में ऐसा लगता है कि काश बच्चे होते और सारे गेम्स खेल सकते। तो चलिए एक काम करते हैं, बच्चों की दुनिया में आज गेम्स के ऊपर ही बातें करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं जो आप लोग गेम्स खेलते हैं उनको। तो स्वागत है आप सभी का इस कार्यक्रम में। और हमारे साथ आज कौन कौन है बच्चों की दुनिया में?
0: मेरा नाम राघव है, मैं 6th क्लास में हूँ।
2: मेरा नाम शिक्षा है, मैं 10th क्लास में हूँ।
3: मेरा नाम शिवांशी है, मैं क्लास 10th में हूँ।
1: ओके, तो आप लोग को कौन कौन से गेम्स खेलना बहुत बहुत पसंद है?
0: मुझे तो सब गेम्स अच्छे लगते हैं, पर उनमें से मुझे सबसे ज्यादा क्रिकेट और फुटबॉल ही अच्छा लगता है।
1: क्रिकेट और फुटबॉल अच्छा लगता है? ओके, और शिवांशी को?
3: दीदी, मुझे हाइड एंड सीक और क्रिकेट।
1: ओके,
2: मुझे खो खो, क्रिकेट और फुटबॉल वगैरह ये सारे गेम अच्छे लगते हैं।
1: हाँ, खो खो भी अच्छा लगता है, और शिवांशी को तो भाई हाइड एंड सीक भी अच्छा लगता है। राघव को नहीं अच्छा लगता हाइड एंड सीक?
0: लगता है,
1: थोड़ा कम अच्छा लगता है।
0: नहीं, अच्छा लगता है मेरे को।
1: छुपना अच्छा लगता है कि पकड़ना अच्छा लगता है?
0: छुपना।
1: नई नई जगह ढूंढ लेते हो क्या छुपने की?
3: दीदी, हाइड एंड सीक खेलने का तो मजा रात को ही आता है, रात को जब सारी गली की लाइटें बंद होती है और छुपे होते हैं।
1: रात को खेलते हो आप लोग?
3: हाँ जी, रात को ही खेलते हैं, दिन में हम नहीं खेलते। रात को खेलने में जो मजा आता है ना, वो तो बस कोई मिलता ही नहीं है।
1: ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता होगा।
3: 1-2 घंटे तक ऐसे ढाई चलती रहती है। हाँ,
1: 1-2 घंटे तक?
3: हाँ जी, कोई मिलता ही नहीं जल्दी, पता नहीं कहाँ कहाँ छुपते हैं।
0: कभी कभी तो 1 घंटे की ढाई के बाद ढप्पा हो जाता है, तो उसको वापस 1-2 घंटे की ढाई देनी पड़ती है।
1: हाँ, फिर से वापस से करना पड़ता होगा। लेकिन अंधेरे में ऐसे कहाँ छुप जाते हो? अकेले डर नहीं लगता छुपने में?
0: नहीं, डर नहीं लगता,
1: बिल्कुल नहीं लगता। ओके,
3: दीदी घर पे चाहे अंधेरे से डर लग जाए, पर खेलने के टाइम पे कभी नहीं लगता।
1: खेलने के टाइम नहीं लगता अंधेरे में डर?
3: खेलने के टाइम पे तो बस छुपना है, बस
1: बस
3: नहीं किसी को
1: पकड़ ना पाए।
3: हाँ।
1: कहाँ है सीक्रेट प्लेसेस आप लोग की छुपने की?
3: दीदी बता देंगे तो फिर छुपेंगे कहाँ पे?
1: हाँ, ये बात भी सही है, लेकिन संभल के छिपा करो, किसी ऐसी जगह नहीं जाना जहाँ पे कोई ना हो एकदम।
0: दीदी हमारी सब जगह ही सेफ होती है।
1: ये अच्छी बात है, सेफ्टी के साथ खेलना चाहिए ना कोई भी गेम। और शिक्षा खेलती है हाइड एंड सीक की नहीं?
2: हाँ खेलते हैं। हम सब बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, फिर हम जब छुपते हैं ना, सब लोग पकड़ में आ जाते हैं, बस मैं नहीं मिलती।
1: अच्छा?
2: हाँ, क्योंकि मैं पतली हूँ, तो मैं ना किसी भी चीज के बगल में जाके खड़ी हो जाती हूँ, वहाँ पे अंधेरा होता है, और मैं ना बैठ जाती हूँ वहाँ पे, दिखाई नहीं देती किसी को।
1: तो आपको ढूंढ नहीं पाते?
2: नहीं ढूंढ पाते। तो मुझे तो मजा आता है, क्योंकि है ना कोई मुझे ढूंढ नहीं पाता, तो मुझे तो हाइड एंड सीक पसंद है बहुत।
1: हाइड एंड सीक तो हमने भी बहुत खेला है, बहुत खेलते थे हमेशा, कहीं ना कहीं छुप जाओ फिर ढूंढते रहो। और ये तो ऐसा गेम है ना कि 3-4 लोगों में भी खेल सकते हो, ज्यादा लोगों में भी खेल सकते हैं, है ना? आप लोग कौन कौन खेलता है हाइड एंड सीक जब खेलते हो तब?
0: मैं भी खेलता हूँ।
1: और किस किस के साथ खेलते हो आप?
0: मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ।
1: अच्छा, और आप लोग?
3: हम तो दीदी गली के सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, छोटे बड़े जो भी, मतलब खेलना चाहे। जब पहली बारी आ जाती है ना हाइड एंड सीक की बारी देने की, तब तो बुरा लगता है कि हाँ नहीं खेलना चाहिए था, पहली बारी आ गई है।
1: और कैसे सिलेक्ट करते हो कि कौन किसकी आएगी पहली बारी?
3: पूछते हैं।
1: हाँ ओके, मतलब हम भी यही करते थे, अभी भी यही होता है। और कौन कौन से गर्मी की छुट्टियों में कौन से गेम्स खेलते हो? कोई ऐसे गेम्स है?
2: आइस वाटर।
1: आइस वाटर खेलते हो?
2: हाँ, सब बच्चे छोटे छोटे इकट्ठे कर लेते हैं।
1: हाँ?
2: जो भाग नहीं पाते उनको भी इकट्ठा कर लेते हैं। वो बैठ के ताली बजाते हैं कि ये वाली दीदी जीतेंगी।
1: अच्छा?
2: हम रेस लगाते हैं, जब गली शांत हो जाती है ना, गाड़ी नहीं चलती, हम सब बच्चे रेस लगाते हैं।
1: अच्छा?
2: हाँ।
1: अरे वाह, रेस लगाना भी अच्छा है वैसे तो। और बर्फ पानी या आइस वाटर खेलते हो आप लोग?
0: हाँ खेलते हैं
3: दीदी। हमारे तो लोहा लक्कड़ भी खेलते हैं गेम।
1: लोहा लक्कड़ ये क्या होता है?
3: दीदी इसमें ना गली में ना मतलब लोहा या लकड़ी को हाथ लगाना होता है
1: okay.
3: और किसी के घर का नाम बोलते हैं कि हाँ मतलब मेरे घर को जाके टच करके आओ और जब कोई लोहा या लकड़ी को छोड़ देगा तब उसको पकड़ना है, अगर उसको पकड़ लिया तो वो ढाई देगा, नहीं तो जब सारे बच्चे उधर पहुंच जाएंगे फिर मैं दूसरा घर बताऊंगी. ऐसे ऐसे जब अगर वो बीच में से जंजीर भी बना सकते हैं,
0: अगर वो अगर अपा उसको पकड़ रहे होंगे तो अगर अपा उसको पकड़ रहे होंगे तो ना अगर अपा लोहे को हाथ लगा लेंगे या फिर लकड़ी को हाथ लगा लेंगे तो वो हमें ढाई नहीं कर सकता.
1: अच्छा तो ये बात है, तो पकड़ के रखना पड़ता है.
3: हाँ जी, लोहा या लकड़ी को ऐसे पकड़ के रखना पड़ता है.
1: ओके
0: दीदी हम तो ऐसे करते हैं, मैं तो पकड़ता ही नहीं, वो किसी और को पकड़ने में बिजी होता है, इतना मैं भाग के पकड़ के आ जाता हूँ.
1: ओके अच्छा जल्दी जल्दी भागते हो आप. और जब पकड़ना होता है तब पकड़ लेते हो.
0: हाँ पकड़ लेता हूँ.
1: आप लोगों ने वो खेला है टिप्पी टिप्पी टॉप खेला है क्या, व्हाट कलर यू वांट?
0: हाँ
3: हमारे उधर बोलते हैं कटी पतंग तेरा कौन सा रंग.
1: कटी पतंग तेरा कौन सा रंग?
3: हाँ
1: तो फिर क्या बोलते हैं उसके बाद?
3: मैं ना ऐसे जो मतलब जो
0: कलर
3: जिनमें ढाई नहीं होती ना वो बोलते कटी पतंग तेरा कौन सा रंग, जो ढाई दे रहा होता है ना वो कलर बताता है, फिर उस कलर को टच करना होता है, अगर कोई टच नहीं कर पाता तो उसको पकड़ते हैं.
1: हाँ ये वाला गेम तो हम भी बहुत खेलते थे. लाल बोला तो लाल ढूंढ के ही लाना है कहीं से और जल्दी जल्दी भागो.
0: दीदी अगर किसी के एक टी शर्ट में लाल रंग हो तो हम तो उसको पकड़ लेते थे.
1: हर कोई उसे कहीं पकड़ लेगा ना.
3: कई बार तो वो गिर भी जाता था.
1: इतने सारे बच्चे एकदम से पकड़ेंगे.
2: और हम जब खेलते हैं ना अगर मेरे पास वो कलर होता है तो मैं तो भगती हूँ क्योंकि मेरे पास है.
1: हाँ.
2: अब मैं भगती हूँ पर सब मेरे पीछे भगते हैं मुझे पकड़ने के लिए.
1: हाँ तो उनको डिफिकल्ट हो जाता है वो कलर फिर पकड़ना ना कोई तो पकड़ा जाएगा. हाँ.
3: कलर भी ऐसा बोलना पड़ता जो पूरी गली में बहुत मुश्किल से मिला.
1: अच्छा ऐसा कौन सा कलर होता है?
3: वो तो ग्रे कलर होता है सबसे ज्यादा.
1: ग्रे मुश्किल होता है ढूंढना. आपको आसान लगता है ग्रे? हाँ तो फिर राघव की टी शर्ट में होता है तब तो आप अपनी टी शर्ट को पकड़ सकते हो, है ना? आज वाली टी शर्ट में ढूंढ रहे हो आप, आज तो पर्पल कलर की है.
3: दीदी हम तो भूतों वाले भी गेम खेलते हैं.
1: अच्छा ये कौन सा गेम है?
3: एक तो है पीपल के पेड़ की भूतनी.
1: अच्छा
3: नलके वाली भूतनी, एक अंडा. हाँ. भूत.
1: अच्छा ठीक है ये क्या होता है इसमें कहते क्या?
3: अंडा भूत ऐसे है कि एक तो कोई पहले टीवी दीदी उस गेम में ना जिस मतलब जिसमें ढाई होती है ना वो पहले न्यू मतलब रिपोर्टर बनता है, वो बताता है कि आपके शहर में अंडा भूत घूम रहा है तो रात को अपने सारे खिड़की दरवाजे बंद करके रखना, सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस बंद करके रखना.
1: ओके
3: फिर उसके बाद घर की लाइट चली जाती है और टीवी चलता रहता है, आज रात को 12 बजे अंडा भूत आएगा, ये लाइन बार बार रिपीट होती है.
1: अच्छा.
3: फिर उसके बाद थोड़ी एक्टिंग करनी होती है, फिर टीवी का जो प्लग होता है उसको उतार देते हैं.
1: अच्छा
3: उसके बाद पहले दूध वाला आता है. फिर दूध वाला आता है तो कहते हैं मतलब बाहर तो भूत होता है पर अब अंदर वाले कहते कौन है, फिर बाहर वाला कहते दूध वाला, फिर ऐसे दूध दे के चला जाता है, फिर आता है सब्जी वाला, फिर तीसरी बार किसी का दोस्त बन के आता है तो दोस्त बन के आता है तो वो गेट खोलते तो सारे एक मतलब अंडा भूत सबका नाम पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, वो सारे अपना गलत नाम बताते हैं पर जब सारे लोग उससे पूछते ना वो कहते अंडा भूत, फिर सारे भाग जाते हैं तो किसी को पकड़ना होता है फिर वो बनता है.
1: अच्छा मतलब किसी को भी भूत बना सकते हो जिसको पकड़ा.
3: हाँ जी.
1: ओके तो ये कौन कौन खेलता है ये गेम? राघव खेलते हैं? और ये क्या घर में खेलते हो गए? तो?
3: नहीं गली में. बाहर.
1: अच्छा गली में खेलते हो.
3: नलके वाली भूतनी भी है उसमें एक बच्चा है वो नरका बनता है.
1: अच्छा
3: एक चलाता है और सारे पानी पीते हैं, फिर जो नरका चला रहा होता है वो लास्ट में पानी पीता है और जब वो पानी पीता है वो कहता है ये तो खून है, फिर सारे भागते हैं, फिर उनमें से कोई भूत बनता है.
1: अच्छा तो भूत कौन बनता है जो पकड़ा जाता है?
3: हाँ.
1: ओके बाप रे इतने खतरनाक खतरनाक गेम्स कहाँ से ढूंढ के लाए हो तुम लोग?
0: दीदी खुद इन्वेंट किया है.
1: खुद इन्वेंट किए हुए गेम्स?
3: नहीं पहले से प्रथा चलती आ रही है.
1: प्रथा चलती आ रही है? बाप रे ये वाली तो मैंने नहीं सुनी.
3: कभी आप भी हमारे साथ खेलना.
1: अरे बाप रे भूत बनना पड़ेगा फिर तो. अच्छा ओके तो आप लोग के पास तो बड़े सारे गेम्स है, तो फिर सारे तो आउटडोर गेम्स है, फिर क्या घर के अंदर भी खेलते हो आप लोग?
3: हाँ जी दीदी घर के अंदर भी खेलते हैं.
1: क्या खेलते हो घर के अंदर?
0: दीदी 13-in-1 गेम है हमारे पास, उसमें ही सब खेल लेते हैं.
1: वो क्या होता है 13-in-1?
0: मतलब एक उसमें 13 गेम्स होते हैं इन वन बॉक्स में होते हैं, वो मैग्नेटिक होते हैं मतलब नॉर्मल से जैसे लूडो होती है वैसे.
1: अच्छा लूडो होता है मतलब उसमें?
0: लूडो होता है अलग, सांप सीढ़ी होती है, सब मतलब 13 अलग अलग गेम्स होते हैं.
1: ओके
3: कई बार घर पे बैठ के बिजनेस खेलते हैं. बिजनेस हो गया और आउटडोर गेम्स भी घर के अंदर खेलते हैं. कभी पकड़म पकड़ाई भी खेलते हैं, कभी सोफे के ऊपर चढ़ गए, कभी बेड के ऊपर चढ़ गए,
1: डांटनी पड़ती है फिर सोफे के ऊपर चढ़,
3: मतलब लड़ाई लड़ाई में होती है ना पकड़म पकड़ाई तो।
1: अच्छा

0: अच्छा, लड़ाई लड़ाई में गेम हो जाता है।
1: हाँ जी
2: दीदी ये बीच में गंदा सा गाना गाने लग जाती है ऐसे, हिम शमशा शहनशाह, फिर मुझे पकड़ना आती है।
1: दीदी थोड़ा गेम का मूड बनाने के लिए करना पड़ता है।
0: सही बात है ना, म्यूजिक से गेम और अच्छा हो जाता है, नहीं रागा?
1: और फनी म्यूजिक की तो बात ही अलग है।
0: हाँ, फनी म्यूजिक की तो बात ही अलग है, तो फिर आपको हंसाने के लिए करती है वो। देखो
1: कितना ध्यान रखती हूँ मैं,
0: कितना ध्यान रखती हूँ। तो आप लोग लूडो और सांप सीढ़ी वगैरह भी खेलते हो अभी?
1: हाँ जी।
0: आप लोगों ने वो खेला है क्या, गिट्टियों से जो खेला जाता है, उसमें छोटे छोटे पत्थर होते हैं, उसे उछालना होता है, फिर हाथ पे पकड़ना होता है, वो खेला है कभी?
1: नहीं, स्टेपू में खेला है।
0: नहीं, कंचे नहीं होते, छोटे छोटे पत्थर होते हैं।
2: हाँ, खेला
0: और
2: है।
0: उसको उछालना होता है, फिर हथेली से नहीं, हाँ कौड़ियाँ होती हैं, कौड़ियाँ भी छोटे छोटे पत्थर होते हैं एक्चुअली, वो उछालना होता है,
2: ऐसे
0: फिर आपको, हाँ मतलब एक बार में चार कब पकड़ने हैं, कभी सात पकड़ने हैं, ऊपर उछाल के फिर हाथ से पकड़ने होते हैं, वो आप लोगों ने नहीं खेला होगा ना शायद।
2: खेला है,
0: खेला है?
1: स्टेपू में खेला है। स्टेपू में जब होता है ना चार खाने वाला स्टेपू, उसमें खुद का घर बनाने के लिए कभी हाथ में पत्थर लेके चलना होता है, कभी उल्टे हाथ पे, कभी सिर पे, ऐसे उसमें।
0: वो पिट्टू फोड़ की बात कर रहे हो क्या?
1: नहीं, स्टेपू
0: उसमें क्या होता है?
1: मतलब पहले तो नॉर्मली चल रहा होता है कि पहले लंगड़ी टांग चलना है, फिर डिस्को चलना है, फिर कृष्णा चलना है, फिर खुले पैर, फिर ये सब होने के बाद, फिर जब घर बनने की बारी आती है ना, जब सारा कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद सात खेल होते हैं उसमें।
0: अच्छा,
1: मुंह बंद करके लंगड़ी लंगड़ी पैर से हार, कभी सीधे हाथ में पत्थर रख के, मतलब एक भी पत्थर नीचे नहीं गिरना चाहिए, पत्थर रख के फिर उल्टे हाथ पे, फिर मतलब कोनी के बीच में, कभी सिर पे कभी कंधे पे, ऐसे रख के चलना होता है।
0: ओके, तो बहुत सारे गेम्स हैं आप लोगों के पास खेलने के लिए।
1: हाँ जी।
0: तो फिर वीडियो गेम्स खेलने का तो फिर टाइम ही नहीं मिलता होगा, इतने सारे तो अच्छे अच्छे गेम्स हैं आपके पास।
1: दीदी क्यों वीडियो गेम्स जाके खराब करने, बाहर ही खेलते हम तो,
0: है ना, बाहर खेलने में ज्यादा मजा आता है। हाँ, क्या कहते हो राघव?
2: बाहर खेलने में ज्यादा मजा आता है।
0: तो फिर आप नहीं खेलते वीडियो गेम्स?
2: खेलता हूँ कभी कभी।
0: क्या खेलते हो उसमें, गेम्स क्या क्या खेलते हो, कुछ बताओ।
1: माइनक्राफ्ट खेलता है, रोब्लॉक्स खेलता है, ब्लॉक्स फ्रूट खेलता है।
0: और क्या खेलते हो? तो बस राघव को पसंद है वीडियो गेम्स खेलना। अकेले खेलते हो कि साथ में खेलते हो किसी के?
2: मेरे भाई के साथ खेलता हूँ।
0: ओके, हाँ शिक्षा?
3: मुझे भी वीडियो गेम्स पसंद है, मैं भी खेलती हूँ, जैसे कि जब घर में कोई होता नहीं है, छोटे भाई लोग हैं उनके साथ खेलती हूँ, वो अगर चले जाते हैं अपने दोस्तों के साथ खेलने तो वीडियो गेम ही खेलती हूँ।
0: अच्छा,
3: हाँ, बाकी घर पे जैसे कि है भाई लोग हैं सब लोग, बहन वगैरह, तो हम लूडो, चेस, सांप सीढ़ी ये सब खेलते हैं घर के।
2: शिवांशी भी खेलती है, वो ऐसे ही बोल रही है दीदी, वो मेरे साथ सब खेलती है, माइनक्राफ्ट, लूडो।
1: दीदी वो पहले खेलती थी,
2: दीदी अब भी खेलती है,
0: अभी इतना मजा नहीं आता।
1: फोन, पहले तो मैं पूरा टाइम ऐसे फोन में ही खेलती थी, इतना बाहर खेलने में मजा नहीं आता था। फिर अब मेरी पहले जितनी भी फोन में गेम्स थी ना, सारी डिलीट करती अब तो।
0: अच्छा,
1: अब बस बाहर ही खेलते।
0: बाहर खेलने में वैसे ज्यादा मजा तो आता है।
1: हाँ, फोन में बैठे बैठे ना ऐसे लगते कि एक तो आंखें खराब हो जाएंगी, और अकेले खेल रहे, अकेले खेलने में क्या मजा।
0: हाँ ये तो है, खेलना तो सबके साथ अच्छा लगता है ना।
2: अकेले नहीं खेलता।
0: अकेले नहीं खेलते?
2: मल्टीप्लेयर होता है।
0: मल्टीप्लेयर होता है, तो किसके साथ खेलते हो फिर?
1: दीदी खेलता तो सिंगल प्लेयर है, बट ऑनलाइन अपने भाई के साथ खेलता।
0: अच्छा, ऑनलाइन खेलते हो। तो उसमें क्या करना होता है, आजकल तो बड़े सारे गेम्स आ गए हैं।
2: दीदी मैं तो कोई भी रैंडम सी गेम खेल लेता हूँ, जब मेरा कोई मतलब जो मैं रोज खेलता हूँ वो खेलने का मन नहीं होता। तो
0: रैंडम गेम मतलब कैसी रैंडम गेम?
2: मतलब कोई भी ऐसे
1: रैंडमली कोई भी आंख बंद करके चूज कर ली।
0: अच्छा ओके, कोई फेवरेट गेम है आपकी?
2: हाँ है।
0: कौन सी?
2: छुपन छुपाई।
0: और वीडियो गेम में?
2: माइनक्राफ्ट और रोब्लॉक्स।
0: उसमें क्या होता है?
1: बस चीजों को माइन करना होता है और क्राफ्ट करना होता
2: है। दीदी झूठ बोल रही है, उसमें बहुत सारी ग्राइंडिंग होती है, मुझे इसीलिए ग्राइंडिंग गेम्स अच्छी लगती है, मैं इसीलिए वो खेलता, वरना मैं वो भी नहीं खेलता।
0: चलो, मतलब आपको अपने माइंड को यूज करना अच्छा लगता है। अच्छा, घर वालों के साथ कौन कौन गेम्स खेलता है?
2: दीदी मैं खेलता हूँ।
1: दीदी मैं भी खेलती हूँ।
2: मैं भी खेलती हूँ।
0: क्या खेलते हो घर वालों के साथ?
2: मैं कभी कभी लूडो खेलता हूँ, कभी चेस खेलता हूँ।
0: अरे वाह, चेस भी खेलना आता है, वेरी गुड। और आप लोग क्या खेलते हो?
3: हम तो मम्मी जब फ्री होती है ना, काम करके बैठ जाती है, तो मम्मी वैसे तो नहीं खेलती, मम्मी को बड़ी मुश्किल से मनाते हैं, मम्मी प्लीज आप खेलो, आप कभी खेलते नहीं हो, फिर मम्मी के साथ सांप सीढ़ी वगैरह, मम्मी यही गेम खेलते हैं तो यही खेलते हैं उनके साथ। या फिर वो 16 पर्ची होते हैं ना,
0: 16 पर्ची वो क्या होता है?
3: हाँ 16 पर्ची में ऐसा होता है कहना, उसमें 16 पर्ची बनानी होती है, चार चार पर्ची सेम होती है।
0: ओके।
3: और उन पर्चियों को बंद करके हम एक साथ मिक्स कर देते हैं, फिर उनको हम नीचे रख देते हैं। कोई चार लोग होते हैं, चार लोग उनमें से चार पर्ची उठाते हैं, अलग अलग आती है, अलग अलग पर्ची को दिखाते नहीं है, हम दूसरे को पास करेंगे, दूसरा दूसरे को पास करेगा, ऐसे करते करते जिसकी भी चार सेम हो जाती है वो बोल देता है 16 पर्ची थप। उसके फिर जितने नंबर की पर्ची होती है, पर्ची पर जैसे कि 500 लिखे हैं तो वो उतने मार्क्स हो जाते हैं उसके, जिसके अच्छा। सबसे ज्यादा होता है वो गेम जीत जाता है।
0: ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। और ये
3: भी चोर पर्ची,
2: उसमें राम लक्ष्मण सीता ऐसे
0: लिख देते हैं नाम अलग अलग, है ना, और एक जैसे चाहिए चारों पर्चियाँ। हाँ।
1: राम आए तो 1000, सीता आए तो 900।
0: अच्छा ऐसे नंबर दे दिए। हाँ। जाते हैं। ओके ये तो बड़ा मजेदार है, इसमें तो कोई चीज भी नहीं चाहिए, बैठे बैठे खेल भी सकते हो।
3: ऐसे घर पे जब मम्मी चिल्लाती है तो हम जैसे कि चार ही लोग होते हैं, कुछ खेलना नहीं है, जैसे 16 पर्ची खेलने का मन नहीं तो उसी के जैसे चोर पर्ची खेल लेते हैं। उसमें भी चार पर्ची होती है सिर्फ, एक पे चोर सिपाही, एक पे राजा, एक पे मंत्री लिखा होता है। चोर के 0 नंबर होते हैं, राजा के 1000 होते हैं, ऐसे नंबर होते हैं,
0: चोर को ढूंढना होता है ना इसमें।
3: हाँ, फिर उसमें 4 पर्ची होती है, कोई भी एक उठा लेता है। जो राजा होता है वो बोलता है, राजा पूछता है कहना मंत्री कौन है, मंत्री बोलता है जी सरकार मैं हूँ, फिर बोलता है चोर सिपाही का पता लगाओ, फिर वो अंदाजे से बोलता है कि ये चोर है। अगर वो चोर होता है तो है ना उसको मंत्री को नंबर मिलते हैं और सिपाही बच जाता है। ऐसे
2: वो रानी होती है तो
1: अगर उसने सिपाही को बोल दिया कि वो चोर है तो सिपाही के तो 700 ही लगेंगे पर मंत्री का 0 लग जाएगा।
0: ये वाला गेम तो कितना पुराना है पता है, राजा वजीर चोर सिपाही, ये हाँ। गेम तो मतलब हम भी खेलते थे, हमारे मम्मी पापा भी खेलते थे उनके बचपन में,
1: अकबर बीरबल के जमाने का,
0: बहुत बहुत समय से चला रहे ये गेम।
1: दीदी हम तो कप प्लेट ताजमहल भी खेलते हैं।
0: कप प्लेट ताजमहल,
1: ये क्या होता है? ऐसा ही होता है, बस पेयर्स बनाने होते हैं।
0: अच्छा इसमें पेयर्स बनाते हैं,
1: बस इसमें 3 लोग चाहिए।
0: अच्छा
1: ये 3 लोग हैं, फिर उनमें से उठाएंगे एक पर्ची तो एक का पेयर तो नीचे रहेगा, जिसका पेयर बनेगा उनको मार्क्स मिलेंगे।
0: ओके तो आप लोगों के पास बड़ी इंटरेस्टिंग गेम्स हैं।
1: एट प्रेजेंट तो अभी मम्मी और के साथ तो लूडो खेलते हैं, पर जब कोविड आया था ना उस टाइम पूरे दिन हम ऐसे खेलते थे, सारे घर पे ही थे, किसी को कोई काम नहीं था, रात को खाना खाने के बाद लूडो खेलते थे, फिर हम पर्चियाँ बनाते थे। तो उस टाइम ज़्यादा लोग होते थे ना तो कप प्लेट ताजमहल झाड़ू पोछा थप्पड़ मुका सारे ऐसे ऐड करके फिर उसको खेलते थे।
0: ओके
1: फिर रात को 12-1 बजे तक सोते थे फिर आराम से
0: खेल के
1: तो फिर सुबह उठ के वापस कैरम कभी लूडो।
0: हाँ कैरम खेलने में बड़ा मजा आता है ना, है ना। हाँ। निशाना लगाना होता है, किसका निशाना अच्छा लगता है,
2: उसकी उंगलियां टूट जाती है।
1: दीदी कभी कभी ना मतलब जो रानी की गीटी होती है ना वो चली गई होती है, बट जो उसके बाद वाली गीटी जो जानी होती है वो कभी नहीं जाती।
0: हाँ ये बड़ा मुश्किल होता है, क्वीन लेने के बाद जो कवर लेना होता है ना उसका वो ना जाए तो बड़ा बुरा लगता है।
2: दीदी वो बहुत आसान होता है।
0: आसान होता है? आपको आसान लगता है?
1: दीदी इसका तुक्का भिड़ता है ना, हमारी तो पूरी पॉइंट पे पड़ी होती है ना तो भी नहीं जाती हमारी तो।
2: दीदी तुक्का नहीं भिड़ता, अगर इधर गिटी है और अप्पा को उधर मारनी है तो इसके सीधा कोने में मारनी चाहिए तो वो उधर सीधा होल में जाएगी।
0: निशाना लगाना आता है आपको? अरे वाह, तो उसमें तो कैरम में भी मजा आता है, लूडो में भी मजा आता है, बड़े सारे गेम्स हैं मतलब जो घर के अंदर भी खेले जा सकते हैं विदाउट फोन। आप लोगों ने आज तो इतने सारे गेम्स बता दिए, अब मन करने लगा है कि कुछ खेल ही लिया जाए, है ना। तो जो हमारे दोस्त सुन रहे हैं हमें, अगर आपको भी अच्छे लगे इनमें से कोई गेम्स या कुछ और एडिशनल गेम्स हैं आपके पास तो आप हमें बता सकते हैं मैसेज व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर। हमारा नंबर है 9414151415, यानी कि 9414151415। और अगर समय मिले तो फ़ोन में मत गवाइए, आप अपनों के साथ घर वालों के साथ दोस्तों के साथ ये मज़ेदार गेम्स खेल लीजिए और यकीन मानिए आपको उससे कई गुना ज़्यादा मज़ा आने वाला है ना। और ये मुझे लगता है बड़ों को भी याद आ गए होंगे ये वाले गेम्स, तो फिर अपने लिए भी समय निकालिए और खुद बच्चा बन जाइए, है ना। बच्चों की दुनिया होती ही इतनी सुंदर है, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है गुड बाय कहने का, तो हम लेते हैं इजाजत और दोस्तों से कहते हैं बाय बाय।
4: बाय बाय।
0: रेडियो मधुबन 107.8 FM,
4: सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: ये गीत तो आप लोगों ने सुना होगा।
1: क्या आप जानते हैं कि बाल विवाह एक कानूनी अपराध है?
0: इसीलिए अपनी बच्ची की कम उम्र में शादी ना कराएं।
1: उनके स्वास्थ्य और उनके अच्छे भविष्य के लिए उन्हें खूब पढ़ाएं। बेटी कुदरत का है उपहार, नहीं करो उसका तिरस्कार। जो बेटी को दे पहचान

0: स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों से आप परिचित हुए हैं। वैसे तो वे बहुत आकर्षक व्यक्तित्व के धनी थे। उनका दमकता चेहरा, उज्ज्वल आंखें, उनकी विद्वता, बोलने की कला और आत्मविश्वास सभी को मोह लेता था। जिनसे वे वार्तालाप करते थे वे ही उनके हास परिहास करने की क्षमता का परिचय पा जाते थे। सभी से स्वामी जी हंसकर बातें किया करते थे। गंभीर से गंभीर विषयों पर आख्यान देते समय भी वे विषय को सरस भाव से प्रस्तुत करते थे ताकि विषय उबाऊ न बन जाए।
1: बातों के बीच हल्की फुल्की कहानियां, चुटकुले, संस्मरणों का पुट देना उनकी खासियत थी। उनकी बताई गई कुछ कहानियां हम आपको पहले भी बता चुके हैं। आप उनके व्यंग विनोद के बारे में कुछ और बातें करेंगे?
0: श्री रामकृष्ण ने काली माता से निवेदन किया था, माँ मुझे नीरस साधु मत बनाना, मुझे सरस साधु ही बनाना। स्वामी विवेकानंद भी सरस साधु थे। वे बचपन से ही विनोद प्रिय थे। कहा करते थे,
2: मैं साधु हूँ तो क्या अपने हृदय को भी उखाड़ कर फेंक दूं? जो तो सन्यास मनुष्य को पाषाण बना देता है, पर ऐसा सन्यास मुझे पसंद नहीं है।
1: स्वामी जी महान प्रतिभाशाली थे और वे अपनी बातचीत, साहित्य और भाषण में परिहास और व्यंग का पर्याप्त प्रयोग करते थे। बचपन में स्वामी जी बहुत से चुटकुले कहा करते थे।

0: उन्हें एक कहानी बहुत अच्छी लगती थी।
1: किसी बुढ़िया के पास एक बकरी थी। एक ठग ने एक दिन उसकी बकरी चुरा ली और उसके पास जाकर बोला,
2: राम राम अम्मा, राम राम,
3: राम राम, राम राम, कैसा है रे?
2: सब ठीक है, आपका आशीर्वाद है अम्मा, और क्या। एक बात बताऊं आपको?
3: हाँ बोल।
2: अम्मा तुम्हारी जो बकरी है ना, वो आज अदालत में जज बन गई है, आपको पता है?
3: अरे बाप रे, ये कौन सी खबर सुना रहे हो बेटा?
1: बुढ़िया बड़ी सरल थी, उसने ठग की बात पर विश्वास कर दिया। वो अदालत गई, उसने देखा कि वहां जो जज के रूप में काम कर रहा है, उसके मुंह पर भी बकरी के समान दाढ़ी है। ये देखकर हाथ में रस्सी लेकर जज के पास जा पहुंची और कहने लगी,
3: आजा, आजा मेरी बकरी, आजा।
4: अरे अम्मा, अरे दूर हटो,
3: आजा, आजा।
4: अरे दूर हटो, दूर हटो अम्मा। अरे मैं बकरी? ओहो, अरे सिपाही, अरे इसे यहाँ से कोई हटाओ, अरे दूर हटो अम्मा,
3: आजा, आजा।
1: जज की बात सुनकर बुढ़िया को भी गुस्सा आ गया और वो बोली,
3: क्या तुझे अपने पूर्व जन्म की बात याद नहीं है? तू मेरी बकरी था, मैंने बड़े जतन से तेरा पालन किया और तू सब भूल गई। आजा, आजा।
1: अदालत में कुछ लोग उस बुढ़िया को पहचानते थे, उन्होंने उससे पूछा कि आखिर बात क्या है। बुढ़िया का किस्सा सुनने पर सब हंसने लगे। अंत में ठग को पकड़कर थाने भेज दिया गया।
5: स्वामी जी जब श्री रामकृष्ण के पास जाने लगे, तब बहुत से लोगों के साथ उनकी पहचान हुई। स्वामी जी ने मजाक में सब लोगों को एक एक मजेदार नाम दे दिया था। हरमोहन को उन्होंने हारमोनियम कहा, गंगाधर को गेंजेज, और हरिप्रसन्न को इलाहाबाद का बिशप।
0: बाबूराम बड़े भक्त थे। ईश्वर का नाम सुनते ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगते थे। स्वामी जी ने उनको नाम दिया भोपू। किशोरी मोहन दाढ़ी रखते थे और बहुत अच्छी उर्दू बोलते थे। वे बन गए अब्दुल। यज्ञेश्वर भट्टाचार्य की भी दाढ़ी थी और उन्हें स्वामी जी फकीर कहते थे। स्वामी जी ने उनका नाम बनाया फकीरुद्दीन हैदर।
5: अमेरिका में भी स्वामी जी ने अनेक लोगों को मजेदार नाम दिए थे। जॉर्ज हिल और उनकी पत्नी बड़े भक्त थे। स्वामी जी ने उन दोनों को फादर पोप और मदर चर्च बना दिया। गुडविन बैडविन बन गए। सिंगरावेलु मुदलियार स्वल्पाहारी थे, उनका नाम किड्डी हो गया। तमिल भाषा में किड्डी का अर्थ होता है पंछी, यानी चिड़ियों जैसा स्वल्पाहारी। जापानी पंडित ओकाकुर को उन्होंने अक्रूर काका कहा।
0: स्वामी जी को दिखावटीपन से बहुत चिढ़ थी। कहते थे, भक्त हो ठीक है, उसका प्रदर्शन करने की क्या जरूरत। जो लोग ऐसा करते थे वे उनका मजाक बनाते थे।
5: गाजीपुरा में एक आदमी रहता था जिसे सब लोग ठाकुरदा कहते थे। गांजा, अफीम और भांग में तो वो सिद्ध पुरुष था। उसकी धारणा थी कि रोना ही धर्म का लक्षण है। स्वामी जी ने एक दिन उससे कहा, आओ ठाकुरदा, आज मैं तुम्हें वेद सुनाऊंगा। ठाकुरदा बड़े आनंद से वेद सुनने बैठे। स्वामी जी ने मजाक में कहा, वेद का प्रथम श्रोत है,
1: कस्मिंश्चित वने भासुरको नाम सेह कति वसति स्म।
5: ठाकुरदा को पता ही नहीं चला था कि ये वाक्य हितोपदेश का है और उसका अर्थ है, किसी वन में भासुरक नामक सेह रहता था। उन्होंने तो इसे वेद मंत्र समझ लिया और सुनते ही रोना शुरू कर दिया। स्वामी जी ने इसकी व्याख्या करते हुए कहने लगे,
1: आहा, क्या पद लालित्य है, कैसा शब्द विन्यास है, कितना भावपूर्ण श्लोक है।
5: इस प्रकार स्वामी जी वेद पाठ कर रहे थे और ठाकुरदा जमीन पर लोट लोट कर रो रहे थे। इसी बीच जब शिरीष चंद्र कमरे में घुसे तो स्वामी जी ने उनसे कहा,
1: अभी तुम भागो, मैं ठाकुर दा को वेद सुना रहा हूँ।
5: शिरीष तुरंत दूसरे कमरे में पहुंचकर जोरों से हंसने लगा।
0: जयपुर में पंडित सूर्य नारायण एक बार स्वामी जी से बोले,
2: मेरा अवतारवाद में जरा भी विश्वास नहीं है। यदि कहूँ कि मैं भी एक अवतार हूँ तो क्या आप प्रमाणित कर सकते हैं कि मैं अवतार नहीं हूँ?
0: स्वामी जी ने हंसते हुए उत्तर दिया,
1: नहीं भाई, हिंदू शास्त्र में तो सुअर, मछली और कछुए को भी अवतार माना गया है। आप बताइए कि आप इनमें से कौन से अवतार हैं?
5: बंगाल के प्रख्यात नाट्यविद अभिनेता गिरीश चंद्र घोष श्री रामकृष्ण देव के शिष्य थे। उनका लिखा नाटक बुद्ध चरित बहुत जनप्रिय हुआ। एक दिन स्वामी जी उस नाटक का मंचन देखने गए। नाटक समाप्त होने के बाद स्वामी जी गिरीश बाबू के कमरे में बैठे। वहां और लोग भी थे। जिस अभिनेता ने बुद्ध की भूमिका की थी वो भी वहां मौजूद था। इसके अतिरिक्त एक ऐसा विद्याविलासी व्यक्ति भी था जो सदैव अपनी विद्या की धाक जमाने का अवसर देखा करता था। उस गर्वीले आदमी ने गिरीश बाबू से पूछा,
6: क्या बुद्ध देव नास्तिक थे?
5: गिरीश बाबू ने उनसे कहा,
7: स्वामी जी से ही पूछिए।
5: उसने जब स्वामी जी से पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया,
1: यहाँ तो बुद्ध देव स्वयं हाजिर हैं, उन्हीं से पूछ लीजिए।
0: भ्रमण करते हुए जब स्वामी राजस्थान पहुँचे तब एक राजपूत उनके पास आकर बोला,
8: स्वामी जी, राजस्थान में सब आदमी कहते हैं वे बहुत ऊंचे कुल के हैं। कोई आपने सूर्यवंश को कहवे तो कोई चंद्रवंश को, तो आप मने बताओ कि मैं कौन वंश को हूँ?
0: तब स्वामी जी ने उत्तर दिया,
1: देखो भैया, सूर्य वंश और चंद्र वंश तो पुराने पड़ गए हैं, तुम एक नया वंश शुरू करो, आज से तुम तारा वंश के हो जाओ।
5: परिव्राजक अवस्था में स्वामी जी ने अच्छी तरह से देश की हालत देखी समझी थी। उन्होंने देखा कि सभी लोग छुआछूत और जात पात आदि को ही धर्म मानते हैं। ये देखकर उनका हृदय बड़ा दुखी था, पर कभी कभी वे इसे लेकर मजाक भी किया करते थे। उन्हें अहिंसा परमो धर्म नामक कहानी बड़ी पसंद थी। इसे सुनाते हुए वे कहते थे,
1: किसी मकान का नाम था अहिंसा परमो धर्म। एक दिन एक चोर उस घर में घुस गया।
9: अरे बाप रे बाप, कितना बड़ा घर! अरे वाह, कितना सारा माल है इस सेठ के पास! कराटे मार के सो रहा है, चल अपना काम शुरू कर दे उस्ताद। अरे वाह, मोतियों के हार, सोने के हार।

0: सारा के सारा बाल पोटली में डाले।
1: जल्दी से सब कुछ समेट ले, चल जल्दी भाग। अरे बाप रे बाप, रास्ता रास्ता कहां से? अरे भाग,
2: अरे उधर
1: रास्ता कहां से?
2: कौन है? अरे देखो कौन है, देखो भाई
3: आवाज कहां से?
2: चलो अरे चोर है, चोर चोर देखो,
1: अरे एक काम करो, को बुलाओ, सेठ जी को जाके बोलो।
3: हाँ जाता हूँ,
1: छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। सेठ सेठ जी को बुलाओ,
2: सेठ जी सेठ जी उठो जल्दी, चोर घुसा है अपने घर में।
4: कौन घुसाया?
2: अरे चोर, चलो उठो।
4: अरे अरे चोर घुसाया? अरे अरे बाप रे, अरे मेरी लाठी
2: है, चलो आपकी लाठी,
4: अरे पकड़ उसे, नहीं तो भाग जाएगा, मेरा माल लूट के ले गया। अरे मेरा माल लूट के ले गया,
2: चोर हो।
4: अरे क्यों मारते हो बेचारे को? अरे हटो हटो, तुम हटो, ऐसे मारा जाता है क्या? अरे ठीक है चुप रहो चुप रहो। अरे जानते नहीं हो क्या, अहिंसा परमो धर्मा।
2: तो फिर इस चोर का क्या करें?
4: अरे शांत हो जाओ, मैं बताता हूँ ना इस चोर का क्या करना है। एक काम करो, तुम लोग ध्यान से सुनो, रक्तपात करना बहुत खराब है, उसको मारने से रक्तपात हो जाएगा, इसीलिए तुम सब मिलके इस चोर को पत्थर से बांध दो। क्या करो?
2: पत्थर से बांध देते हैं।
4: हाँ, उसके बाद इस चोर को नदी में फेंक दो।
2: हाँ, ये सही है, ये सही है,
4: ठीक है ना?
2: अरे मुझे माफ कर दो।
5: सही है।
6: लोकाचार के आडंबर को ही लोग धर्म समझते हैं। स्वामी जी ये सब देख सुनकर हैरान हो जाते थे, इस बात का मजाक भी बनाते थे। वो कहते थे,
7: सनातन हिंदू धर्म का गगनचुंबी मंदिर है, उस मंदिर के अंदर जाने के न जाने कितने मार्ग हैं, और वहां क्या नहीं, वेदांती के निर्गुण ब्रह्म से लेकर ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति चूहे पर सवार गणेश जी छोटे देवता गण जैसे षष्ठी मां काल इत्यादि, और भी न जाने वहां क्या क्या मौजूद है। फिर वेद वेदांत दर्शन पुराण एवं तंत्र में ऐसी बहुत सी सामग्री है जिसकी एक एक बात से भाव बंधन टूट जाता है, और लोगों की भीड़ का तो कहना ही क्या, 33 करोड़ लोग उस ओर दौड़ रही हैं। मुझे भी उत्सुकता हुई और मैं भी दौड़ने लगा, किंतु ये क्या, मैं तो वहां जाकर एक अद्भुत कांड देखता हूं। कोई भी व्यक्ति मंदिर के अंदर नहीं जा रहा है, दरवाजे के पास एक 50 सिर वाले 100 हाथ वाली 200 पेट वाली है 500 पैर वाली मूर्ति खड़ी है, उसी के पैरों के नीचे सब लोट पोट हो रही हैं।
8: स्वामी जी सरस भाव से कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं,
7: एक व्यक्ति से इसका कारण पूछने पर उत्तर मिला,
9: भीतर जितने देवता हैं, उन्हें दूर से प्रणाम कर लेने अथवा 2 फूल डाल देने से ही उनकी पूजा हो जाती है, असली पूजा तो इनकी होनी चाहिए जो दरवाजे पर विद्यमान है, जो वेद वेदांत दर्शन पुराण और शास्त्र तुम देख रहे हो, उन्हें कभी कभार सुन लो तो भी हानि नहीं, पर इनका हुक्म तो मानना ही पड़ेगा।
7: तब मैंने फिर पूछा, इन देवता जी का भला क्या नाम है? उत्तर मिला,
9: इनका नाम लोकाचार है।

0: चेन्नई के ब्राह्मणों को चंदन तिलक देखकर एक बार स्वामी जी ने कहा,
1: बंगाल से वैष्णव लोगों के तिलक पर इनका इतना विश्वास है कि तिलक विलक सब कोई कहें, पर रामानंदी तिलक दिखत गंगा पार से यम गौ द्वार के खिड़क।
2: बंगाल के साहित्यकारों के नारी सुलभ आचार व्यवहार को देखकर स्वामी जी ने लिखा है,
1: ये एक दल देश में उमड़ रहा है जिसमें पैदा लोग औरतों की तरह पहनते ओढ़ते नजाकत भरी बोली छांटते तिरछी चाल से चलते हैं। ये किसी की आंख पर आंख रखकर नहीं बोल सकते, ये पैदा होने के दिन से ही प्रेम की कविताएं लिखते हैं और विरह की आग में रो रो कर जिया करते हैं।
2: स्वामी जी सिर्फ दूसरों का मजाक ही नहीं बनाते थे, अपने विषय में भी मजाक करते थे। एक बार उन्होंने अपने दोस्तों से कहा,
1: जब मेरी तबीयत अच्छी रहती है तब तो मैं समझता हूं कि अहम ब्रह्मास्मि, पर जब मेरे पेट में दर्द होता है तब मां कहकर प्रार्थना करता हूं। देखा मैं कितना स्वार्थी और मौका परस्त हूं।
0: परिव्रजन के बाद स्वामी अमेरिका गए और वहां उन्होंने देखा कि लोग धर्म को अच्छी तरह से नहीं समझते, वो कट्टर भी बहुत हैं।
2: स्वामी जी किसी भी संप्रदाय को छोड़ते नहीं थे। हमारे देश के पंडित पुजारी और पंडे पैसे वसूलने में तो तेज हैं ही, पर दूसरे धर्मों के ढोंगी पुरोहितों की भी कमी नहीं है। स्वामी जी मजाकिया अंदाज में एक कहानी सुनाते थे।
1: एक जापानी जहाज समुद्र में चलते चलते खतरे में आ गया। आकाश में बादल छा गए और तूफान शुरू हो गया। सब यात्री मिलकर जहाज के पुरोहित के पास गए और बोले,
3: स्वामी जी बहुत विपदा का समय है। स्वामी जी क्यों भाइयों,
4: बहुत बहुत बहुत बड़ी विपदा आ गई है महाराज।
3: स्वामी जी कुछ धर्म की बातें सुनाइए जिससे हम सबका कल्याण हो।
4: हाँ हाँ।
1: ये सुनते ही उन्होंने अपनी टोपी उतारी और चंदा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उनका धर्म तत्व चंदा उगाहने में ही निहित था। सब पंडे एक जैसे हैं।
0: अमेरिका में रहते समय स्वामी जी अपने गुरु भाइयों के बारे में बहुत मजाक करते थे और वे कहते थे,
1: शरद जब अंग्रेजी में लेक्चर देता है तो ऐसा लगता है जैसे चंडी पाठ कर रहा हो, और गंगाधर उसकी तो नाक इतनी लंबी है और उत्तेजित हो जाने पर नाक से बोलने लगता है।
2: डॉक्टर राइट स्वामी जी के बड़े भक्त थे। एक बार उन्होंने पूछा,
5: स्वामी जी क्या मैं डॉक्टर राइट भी ब्रह्म हूं?
1: जरूर।
2: एक दिन जब सब लोग खाने की मेज पर बैठे थे तो डॉक्टर राइट को थोड़ी देर हो गई। जब वे वहां पहुंचे तो स्वामी जी ऊंचे स्वर में बोले,
1: आप लोग सावधान हो जाइए, ब्रह्म आ रहे हैं।

अलग अलग संस्कृति और अलग अलग धर्मों के मानने वाले जब इकट्ठे होते हैं तो एक दूसरे के संस्कारों को न जानने पर भी कभी कभी बहुत ही हास्यकर परिस्थिति बन जाती है। स्वामी जी जब राजस्थान भ्रमण कर रहे थे तो वे अपने को एक नए माहौल में पाए। वहां की रीति रिवाजों से वे अपरिचित थे, कई बार वे गलती भी कर बैठते थे।

0: स्वामी जी खाने पीने के बहुत शौकीन थे। वे कहते थे,
1: अच्छे सन्यासी बनने के लिए अच्छा रसोईया भी बनना पड़ता है।
0: बहुत ही सादे भोजन को भी वे बेहतर तरीके से पका सकते थे, जिसे लोग तृप्त होकर खाते थे। स्वामी जी पुलाव बहुत अच्छा पकाते थे। तरह तरह के पुलाव पकाना उनको बहुत अच्छा लगता था। इस मामले में वे बहुत उदार थे। बंगाली भोजन में विलायती और मुगलई व्यंजन की मिलावट वे अक्सर करते थे।
2: स्वामी जी को मीठा बहुत पसंद था। बचपन में उनके घर पर मिठाई वाला आता था, सब बच्चे उसे घेर कर बैठ जाते थे। स्वामी जी, जिनका नाम नरेन था, बहुत शरारती थे। एक बार मिठाई की हांडी से एक मिठाई उठाकर अपनी जीभ से छुआकर उसे फिर से हांडी में डाल दिया। सब शोर मचाने लगे, मिठाई वाला भी बिगड़ने लगा। नरेन बोले,
3: अब क्या होगा, पूरी हांडी की मिठाई तो झूठी हो गई है। अब तो मुझे ही सारी मिठाई खानी पड़ेगी, तुम लोग मेरी झूठन थोड़ी खाओगे।
0: स्वामी जी मिर्च बहुत खाते थे। 8-10 हरी मिर्च के बगैर उनका भोजन पूरा नहीं होता था। अमेरिका में जब कभी भी वे खाना पकाते थे, कोई खा नहीं पाता था। उनके लिए स्वामी जी अलग सब्जी पका कर देते थे। वे लोग भी मजाक में कहते थे कि स्वामी जी मिर्च डालकर काली मिर्च की सब्जी बनाते हैं।
2: स्वामी जी भोजन रसिक तो थे ही, पर उनका आधे से ज्यादा जीवन अर्धाहार में बीता था, अनाहार में बीता था। पिता की मृत्यु के बाद अधिकतर दिन वे फांका कशी में ही बिताते थे। फिर भारत भ्रमण के दौरान ज्यादातर दिन अनाहार के ही होते थे। कलकत्ते के मठ के प्रारंभिक दिनों में सभी सन्यासी भीख के अनाज पर ही आश्रित थे।
0: अपने भूखे रहने की कहानी स्वामी जी सबको सुनाते थे, और उनकी एक प्रिय कहानी थी, भ्रमण के दौरान हाथरस स्टेशन पर शरत चंद्र गुप्त से मुलाकात की कहानी। शरत चंद्र हाथरस स्टेशन के असिस्टेंट स्टेशन मास्टर थे। भूखे प्यासे स्वामी जी स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर लेटे थे। शरत चंद्र की नजर पड़ी। उन्होंने पूछा,
4: स्वामी जी क्या आप भूखे हैं?
5: हाँ, तो फिर घर चलिए, आइए, क्या खिलाओगे?
0: शरत चंद्र ने एक उर्दू शेर कहा था, जिसका मतलब है, हे प्रिय, तुम मेरे घर आए हो, मैं तुम्हें अपना कलेजा भी मसाले में पकाकर खिला सकता हूँ। यही शरत चंद्र बाद के दिनों में स्वामी जी के प्रिय शिष्य शरत महाराज बने थे।
2: स्वामी जी को फल बहुत पसंद थे। एक बार सन 1896 में लंदन में एक अद्भुत घटना घटी। वहां की सबसे बड़ी फलों की दुकान का नाम था विलियम व्हाइटली। स्वामी जी के किसी भक्त ने वहां काफी पैसा जमा करवा कर ये कहलवा दिया कि बढ़िया फल का टोकरा रोज सुबह स्वामी जी के पास पहुंचाया जाए। रोज सुबह 11 बजे फल स्वामी जी के पास पहुंच जाते थे। स्वामी जी के पूछने पर भी पता नहीं चला कि वो फल कौन भेजता है। एक दिन अनानास पाकर स्वामी जी बेहद खुश हुए। लंदन में अनानास, अजीब बात है, पर गुडविन जो उनके साथ रहते थे, अनानास छील ही नहीं पा रहे थे, कभी देखा जो नहीं था। स्वामी जी ने हंसते हुए उनसे चाकू ले लिया, छील कर काट कर थोड़ा चीनी डालकर सबको खिलाया। पहली बार सबने वो फल चखा, पर दाता का नाम किसी को मालूम न पड़ा। लोग अंदाजा लगाते हैं कि वो दाता श्रीमती मैकलाउड ही थी।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। अब हमें आज्ञा दीजिए, हम आपसे मिलते रहेंगे अपने इस कार्यक्रम युग प्रवर्तक

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आइए आगे बढ़ते हैं और एक सुंदर विचार के साथ कार्यक्रम को शुरू करते हैं। कई लोग मुझको गिराने में लगे हैं, कई लोग मुझको गिराने में लगे हैं, सारे आम चिराग बुझाने में लगे हैं। उनसे कह दो कतरा नहीं मैं समुंदर हूँ, डूब गए वो खुद जो डुबाने में लगे हैं। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर जी हाँ सफर इस कार्यक्रम को। आइए आज के दिन विशेष के बारे में बात करते हैं। 5 जून की आज कृतिका नक्षत्र है और इसके साथ में योगी आदित्यनाथ, रमेश कृष्ण, गोविंद शंकर कुरूप, NM जोशी, इन सभी का जन्मदिन है और इसके साथ में वेद मारवा, मास्टर मदन, कुबेरनाथ राय, इन सभी का पुण्य दिवस है। तो आइए इन सभी चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं, कुछ खास लोगों की जीवन कहानी को याद करते हैं आज के इस प्रोग्राम में। और अभी कार्यक्रम की शुरुआत में आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा गीत सुनते रहो, मस्कराते रहो।

0: मैं जानकी हिमलानी, मैं अध्यापिका हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ। लेफ्ट साइड में ही हमें चलना चाहिए और हमेशा तेज आते वाहनों से स्वयं को बचाना चाहिए। जो कार चलाते हैं उनसे भी मेरा ये निवेदन है कि जब भी आप कार चलाएं तो बेल्ट दे रखी है, सीट बेल्ट का उपयोग करें, इससे सुरक्षा बनी रहेगी। जान है तो जहान है।
1: रेडियो मधुबन, नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना और 1929 तक उसे सचिव रहे उनके साम्यवादी के प्रभाव के कारण उन्होंने दल बदल लिया और ट्रेड यूनियन परिसंघ नामक एक संगठन बनाया और वे केंद्रीय विधानसभा दिल्ली के निर्वाचित सदस्य भी बन गए थे। तो आइए ऐसे विशेष व्यक्ति के बारे में बात करें, तो ये है नारायण मल्लार जोशी। जी हाँ, नारायण मल्लार जोशी का जन्म आज ही के दिन 1879 में हुआ था। और जोशी 20वीं सदी के मुख्य श्रमिक नेताओं में गिने जाते हैं और भारत के सेवक समाज के सदस्य बनकर ये इससे कई वर्षों तक समृद्ध रहे। बॉम्बे सोशल सर्विस लीग, रिलीज पेंशन एंड सोसाइटी, लीगल एंड सोसाइटी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी सोशल रिफॉर्मर एसोसिएशन, इंडियन ट्रेड यूनियन तथा सिविल लेबरटरीज यूनियन आदि संस्थाओं से घनिष्ठ रूप से जुड़े रहे। और एनएम जोशी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान श्रमिक कल्याण के लिए कार्य करना तथा श्रमिक हितों से संघर्ष, उनके संघर्ष को कम करना था। और इसमें उन्होंने यथाशक्ति अपना काम किया और समाज सेवा में एम जोशी जो है ऑल इंडिया ट्रेड में विशेष रूप से लंबे समय तक जो है नरमपंथी वर्ग का नेतृत्व करते रहे हैं। और नारायण मल्लार जोशी एनएम जोशी 1947 में केंद्रीय वेतन आयोग के एक सदस्य भी रहे। समाज सेवा में रुचि ली तथा महिलाओं व बच्चों हेतु चिकित्सा का जो फ्री सर्विस जो है उसके लिए भी काम किया। औद्योगिक परीक्षण के लिए भी विद्यालयों की स्थापना कराई थी। और अपने इन्हीं सब कार्यों को करते हुए देश की सेवा में जीवन व्यतीत करने वाले इस महान व्यक्तित्व का 1955 में निधन हुआ 30 मई को। तो आइए, ये एक ऐसे दार्शनिक क्रांतिकारी विचारक थे जिन्होंने हमेशा समाज में एक नए बदलाव के लिए पूरी तरह से काम किया था। आप सुनाए हैं रेडियो माधुबन पर जी हाँ सफर, इस कार्यक्रम को सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
2: बाजू।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: गर्मी होगी तो आई एम फाइन विद इट, लेकिन ठंड मेरे से जहन नहीं होती। ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है, तो मैंने अपने आप को कंडीशनिंग दे दी कि गर्मी में आई विल बी फाइन, लेकिन ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है, विच मीन्स मैं अपना ध्यान नहीं रखूंगी, ठंड में बीमार पड़ना अलाउड है। तो अब एक महीना दो महीना मैंने अपने आप को बीमार रहना अलाउड हुआ, अगले साल ठंड 6 महीने रही और मेरी प्रोग्रामिंग मैंने चेंज नहीं की और मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं किया, तो अगले साल मैं 6 महीने बीमार रही। उसके 2 साल के बाद इतनी ठंड आई, और क्योंकि मेरा इम्यूनिटी सिस्टम हर साल बीमार होते होते होते होते कमजोर होता जा रहा था, उसके 4 साल बाद इतनी ठंड आई दैट आई जस्ट कुडंट टेक इट, एंड देन वी से डिप्रेशन, नर्वस ब्रेकडाउन, दिस। क्योंकि करते करते करते करते ताकत तो कम होती जाएगी और दुनिया की परिस्थितियां बढ़ती जाएंगी।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं। आइए बात करते हैं अब एक विशेष व्यक्ति के बारे में, योगी आदित्यनाथ के बारे में। जी हाँ, इनका भी जन्म आज ही के दिन 1972 को गढ़वाल उत्तराखंड में हुआ। उत्तर प्रदेश राज्य के निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं और इनका मूल नाम अजय सिंह नेगी है। उत्तर प्रदेश में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव 2017 में विशेष विजय के बाद उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया और उनके साथ ही केशव प्रसाद मौर्य तथा दिनेश शर्मा को सूबे का उपमंत्री बनाया गया। पूर्वांचल में गहरी पैठ रखने वाले योगी आदित्यनाथ अपने हिंदुत्ववादी छवि के लिए विशेष तौर पर जाने जाते हैं। हिंदू युवा वाहिनी के संस्थापक आदित्यनाथ तमाम हिंदू संगठनों में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। 10 वर्षों से अधिक समय से वे भारतीय पार्टी से जुड़े हुए, जनता पार्टी से जुड़े रहे। योगी आदित्यनाथ 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी के टिकट पर गोरखपुर के लोकसभा सांसद चुने गए और 1998 में लगातार इस

क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करते रहे हैं और आदित्यनाथ जी गोरखपुर मंदिर के पूर्व महंत अवैद्यनाथ के उत्तर अधिकारी भी हैं। तो आइए इनके बारे में इनकी वास्तविक जीवन से कुछ बातें आपको जोड़ना चाहूँगा। 22 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर छोड़ दिया और संन्यास ग्रहण कर लिया। गोरखनाथ मंदिर के महंत अवैद्यनाथ के पुत्र योगी आदित्यनाथ 12वीं लोकसभा के सबसे युवा सांसद बन गए और उस समय उनकी उम्र 26 साल की थी। धर्मांतर तथा गोवध करने की दिशा में सार्थक कार्य किए और गोरखपुर से लगातार 5 बार ये सांसद बने। आदित्यनाथ जी का भारतीय रिश्ता एक का जो है एक दशक से भी पुराना है। वो पूर्वोत्तर में अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं। इससे पहले उनके पूर्वाधिकारी तथा गोरखनाथ मठ के पूर्व महंत अवैद्यनाथ भी विशेष रूप से इसी संस्थान से जुड़े रहे और 1996 का लोकसभा चुनाव जीत चुके थे। योगी आदित्यनाथ ने टहरी के गाजा में स्थानीय स्कूल में अपनी शुरुआती शिक्षा पूरी की। स्कूल और कॉलेज में प्रमाण पत्र में उनका नाम अजय सिंह नेगी है और 1987 में टिहरी के गाजा स्कूल से 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद ऋषिकेश के भारत मंदिर ट्रस्ट कॉलेज से इंटरमीडिएट की परीक्षा पूरी की। उसके बाद 90 में अपनी हायर एजुकेशन पूरी करते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ गए और कोटद्वार के गढ़वाल विश्वविद्यालय से उन्होंने गणित में बीएससी की परीक्षा पास की और योगी आदित्यनाथ 1993 में एमएससी की पढ़ाई पूरा करके गुरु गोरखनाथ पर रिसर्च करने गोरखपुर आए थे और ये गोरक्षनाथ पीठ के महंत अवैद्यनाथ की नज़र अजय सिंह नेगी पर पड़ी। इसके बाद 1994 में सांसारिक मोहमाया त्याग कर वे पूर्ण रूप से सन्यासी बन गए। दीक्षा लेने के बाद उनका नाम अजय सिंह नेगी से योगी आदित्यनाथ हो गया। तो ये थी कहानी योगी आदित्यनाथ के बारे में। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर, जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। आइए बात कर रहे थे योगी आदित्यनाथ के बारे में। योगी आदित्यनाथ जो है बहुमुखी प्रतिभा का एक आयाम व्यक्ति है। अपने दैनिक जीवन के साथ साथ लिखने का भी बड़ा उनको शौक है। जैसे समसाध्य कार्य के साथ साथ आप समय समय पर अपने विचारों को स्तंभ के रूप में समाचार पत्रों में भेजते रहते हैं। अल्प अवधि में ही आदित्यनाथ जी ने कुछ पुस्तकें लिखी हैं, योगिक षटकर्म, हठयोग स्वरूप एवं साधना, और तीसरा राजयोग स्वरूप एवं साधना, और चौथा हिंदू राष्ट्र नेपाल। इन चार पुस्तकों को आपने रिलीज किया है। और योगी योगवाणी के योगी आदित्यनाथ प्रथम संस्थापक रहे और वे हिंदवी साप्ताहिक समाचार पत्र के प्रधान संपादक भी रहे हैं। उनका कुशल नेतृत्व युगांतकारी है और एक नया इतिहास रच रहा है। और व्यक्तित्व आयाम की बात करें तो योगी आदित्यनाथ के व्यक्तित्व के कई आयाम हैं। उनका जीवन एक योगी का जीवन है, संत का जीवन है, पीड़ित गरीब असहाय के प्रति करुणा, किसी के भी प्रति अन्याय और भ्रष्टाचार के विरोध खड़े हो जाना, ये निर्भीक मन, विचारधारा और सिद्धांत के प्रति अटल, लाभ हानि मान सम्मान की चिंता किए बगैर साहस के साथ किसी भी सीमा तक जाकर धर्म और संस्कृति की रक्षा का प्रयास करना, ये उनकी पहचान है। सामाजिक समरसता के अग्रदूत के रूप में उन्हें याद किया जाता है। गोरक्षा पीठ का मंत्र है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को बौजे सो हरि का होए। तो ये मंत्र है, एक साथ इस मंत्र का उच्चारण जो है करते रहते हैं, और विशेष रूप से गांव-गांव में सहभोज के माध्यम से एक साथ बैठ के एक साथ खाए मंत्र का भी उन्होंने उद्घोषण किया है। और मानवता को समर्पित उनका जीवन, वैभवपूर्ण ऐश्वर्य का त्याग कर कंठकर्णी पगडंडी का मार्ग योगी आदित्य ने स्वीकार किया है। उनका जीवन का उद्देश्य यही है कि अर्थार्थ हे प्रभु, मैं लोक जीवन में राजपाट पाने की कामना नहीं करता हूँ, मैं लोकोत्तर जीवन में स्वर्ग और मोक्ष पाने की कामना नहीं करता, मैं अपने लिए इन तमाम सुखों के बदले केवल प्राणी मात्र के कष्टों का निवारण ही चाहता हूँ, ये उनका भाव है। तो चलिए, ये थी कुछ खास बातें योगी आदित्यनाथ के जीवन से जुड़ी उनके व्यक्तित्व के बारे में। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर, जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ चलिए एक और खूबसूरत गीत आपके लिए खास सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: मैं हूं ममता शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। जी हां, सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आप। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रमेश कृष्ण के बारे में। जी हाँ, ये बहुत ही पॉपुलर टेनिस खिलाड़ी है और 1970 के दशक में अंत में कनिष्ठ खिलाड़ी के रूप में उन्होंने विंबलडन और फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का खिताब जीता था। 1980 के दशक में 3 ग्रैंड स्लैम के क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे और डेविस कप टीम में भी फाइनल तक पहुंचे थे। रमेश कृष्ण 2007 में भारत के डेविस कप कप्तान रहे थे। ये रामनाथन कृष्ण के पुत्र हैं जो भारत के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी रहे हैं। 1998 में भारत सरकार ने पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया था उन्हें। और बात करें इनकी तो रामकृष्ण का जन्म आज ही के दिन 1961 को चेन्नई भारत में हुआ। इनके पिता रामनाथन कृष्णन भी बहुत ही पॉपुलर टेनिस के खिलाड़ी रहे। रामकृष्णन ने अपने पिता की भांति भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाई। अपने पिता का अनुसरण करते हुए 1979 में जूनियर विंबलडन चैंपियनशिप जीती थी और जूनियर फ्रेंच टाइटल जीत कर वे नंबर 1 जूनियर खिलाड़ी बन गए थे। अब बात करें करियर की तो सीनियर स्तर पर भी रमेश कृष्णन 1986 में विंबलडन में क्वार्टर फाइनल के साथ साथ 1981 और 87 में यूएस ओपन के क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे थे। तो इस तरह से खेल की नई नई उपलब्धियां प्राप्त करते हुए वो सीनियर स्तर पर भी रमेश कृष्ण 1986 में विशेष रूप से ने रिकॉर्ड बनाया, 87 में भी रिकॉर्ड बनाया और 92 में बार्सिलोना ओलंपिक खेलों में रमेश कृष्ण भारत के लिए लिजेंडर पेस के साथ जोड़ी बनाकर पुरुषों की डबल प्रतियोगिता में खेले और क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे। और एटीपी दूर में लगातार अच्छा प्रदर्शन करते रहने के कारण रमेश कृष्ण को 1985 में विश्व में एकल रैंकिंग में 23वां स्थान प्राप्त कर सके। तो ये थी कुछ खास बातें रमेश कृष्णन टेनिस खिलाड़ी के बारे में। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर। जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और इसी के साथ चलिए आपसे मैं लेता हूँ इजाज़त और जाते जाते आपके लिए एक सुंदर विचार। कहते हैं, हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत आपकी है ऐ दोस्त, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। है ना खूबसूरत विचार? तो चलिए इसी खूबसूरत विचार के साथ आपको यहीं पर छोड़े जा रहा हूँ। फिर मिलते हैं कल एक नए विचार के साथ, एक नए व्यक्तित्व को लेकर आएंगे और उनके बारे में बताएंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ यानी रेडियो मधुबन के साथ। सलाम नमस्ते खमा गणिसा, जय हिंद जय भारत, ओम शांति।

नमस्ते मित्रों, मैं हूं कवयित्री डॉक्टर कविता किरण और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: आप दुनिया के किसी भी रास्ते से गुजर जाइए, आपको कुछ लोग ऐसे जरूर मिल जाएंगे जो अपनी मजबूरियों का वास्ता देकर आपसे आर्थिक मदद चाहते हैं। इनमें से कुछ तो वास्तव में अपनी मजबूरियों से मजबूर हैं, तो कुछ अपनी आदत से। परंतु कुछ ऐसे भी हैं जो देखने में तो इनके जैसे ही लगते हैं, पर उन्हें इनकी श्रेणी में रखना उनके साथ अन्याय होगा और हम उनके अपराधी। कॉलेज बंद होने के बाद मैं अपने दोस्तों के साथ बस के इंतजार में बस स्टॉप पर खड़ा था, तभी एक आवाज हमारे कानों में गूंजी।
1: भैया, जूतों पर पॉलिश कर दूं क्या?
0: हमने देखा हमारे सामने लगभग 7-8 साल का लड़का खड़ा था, जिसके कंधे से एक फटा पुराना गंदा सा थैला लटका था। कमीज के एक दो बटन भी गायब थे और जो लगे भी थे उनका कमीज से कोई वास्ता नहीं था। कमीज और पैंट पर पड़ी सलवटें कपड़ों की वृद्धावस्था का प्रमाण दे रही थी। पैरों में जो चप्पलें थी उनकी शक्ल सूरत में बहुत ज्यादा अंतर था और दोनों ही अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। मेरे सभी दोस्तों के पॉलिश कराने से मना करने पर उसके चेहरे पर निराशा फैल गई। उसकी आंखों में पानी तो था पर इतना नहीं कि छलक पाए। यह देखकर मैंने पूछा, आप कितना लेते हो पॉलिश करने का? उसने बड़े ही करुण स्वर में कहा, 5 रुपए भैया। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला और 5 रुपए के आसपास की राशि वाला नोट तलाशने लगा। यूं तो पर्स में कई नोट थे पर खुले पैसे अक्सर जेब में यूं ही पड़े रहते थे। जब मैंने जेब से हाथ बाहर निकाला तो हाथ में 10 रुपए का नोट था, शायद जेब के किसी कोने में रहा होगा। मैंने 10 रुपए का नोट उसकी ओर बढ़ाया और कहा कि हमें पॉलिश नहीं करानी है, तुम ये ले सकते हो। लेकिन उसके स्वाभिमान ने इसकी अनुमति नहीं दी और आंखों के इशारे से उसने इस प्रकार से पैसे लेने से मना कर दिया। लेकिन मैंने दोबारा जोर देकर कहा, तुम ये रख लो, तुम्हें इसकी जरूरत है। इस बार उसकी मजबूरी उसके स्वाभिमान और आत्मसम्मान पर भारी पड़ी। उसने हाथ बढ़ाकर मेरे हाथ से पैसे ले लिए, पर अब उसकी आंखों के पानी पर शर्म हावी हो रही थी, क्योंकि उसकी मजबूरी उसके स्वाभिमान का कत्ल कर चुकी थी। शायद उसकी मजबूरी इतनी बड़ी न रही होती तो मुझसे कभी इस प्रकार से पैसे न लेता। शर्म इस हद तक थी कि उसके बाद वो पल भर भी वहां ठहर न सका। मेरे सभी दोस्त मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे और मैं उसे। उसकी शर्म से भरी आंखों में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि पलट कर मुझे देख सके। वो 7-8 साल का लड़का जो शायद पढ़ना लिखना भी नहीं जानता था, पर मुझे समझा गया कि आत्मसम्मान और स्वाभिमान का एक व्यक्ति के जीवन में क्या अर्थ है और उसका उम्र से कोई संबंध नहीं है। शायद अब उससे कभी मुलाकात हो भी तो मैं उसे पहचान न सकूं, पर 2008 में हुई उससे वो पल भर की मुलाकात मुझे सारी उम्र याद रहेगी। दोस्तों, आप सुन रहे थे कुमार अखिलेश जी की लिखी लघु कथा वो पल भर की मुलाकात, जो कि कहीं ना कहीं उनके जीवन में वास्तविक में घटित हुई थी। वैसे भी कहानियां केवल कल्पनाएं मात्र नहीं होती, कहीं ना कहीं सच्ची घटनाओं का कुछ न कुछ इंस्पिरेशन, कुछ न कुछ प्रेरक तत्व उनमें जरूर शामिल होता ही है। और ये कहानी क्योंकि हमें बताती है कि जीवन मूल्य केवल कुछ घरानों तक ही सीमित नहीं रहते, कुछ निश्चित कुल या लोगों तक ही उनका अधिकार नहीं है। स्वाभिमान या आत्मसम्मान जैसे जीवन मूल्य ये ये तो हर आत्मा में समाहित होते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी मजबूरी के वश। कभी कभी इंसान को उससे समझौता करना पड़ जाता है। हां, यह भी होता है कि सच्चे लोगों के बीच में कुछ लोग ऐसे भी आ जाते हैं जिनका जिक्र कहानी के शुरू में किया गया कि वो आदत से मजबूर होते हैं। पर हां, हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि अपनी परखने की शक्ति को बढ़ा सकते हैं। किसी की आंखों में झांक लेना, खुद की सच्चाई पहले चाहिए और तब सामने वाले की सच्चाई भी समझ में आती है। शायद क्योंकि आंखों के पीछे आंखें खिड़कियां हैं ना आत्मा की, आंखों के पीछे आत्मा बसी होती है और आत्मा में ही वो सब गुण, शक्तियां, जीवन मूल्य सब समाहित रहते हैं और सबसे पहले आंखों से बाहर आते हैं। केवल मजे हुए एक्टर्स ही सच्चाई को छुपाने में कामयाब हो पाते हैं। और मंझे हुए एक्टर्स केवल फिल्म या टीवी कलाकारों की बात नहीं है यह आजकल दुनिया के किसी भी स्टेज पर किसी भी रोल में देखे और समझे जा सकते हैं। फिलहाल हम अगर अपने परखने की शक्ति को बढ़ाएंगे तो हमें शायद ऐसे लोग भी नजर आएंगे जो कहीं ना कहीं किसी न किसी मजबूरी के वश अपने स्वाभिमान के साथ समझौता कर रहे हैं, और उस समय मदद का हाथ बढ़ाना, क्योंकि मदद या सहयोग यह भी एक जीवन मूल्य है, वो हमारी आपकी अच्छाई को प्रदर्शित करता है। उम्मीद है ये लघु कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। आपके जीवन से रिलेटेड ऐसी कोई घटना हुई हो वो भी आप लिख सकते हैं, हमारे साथ साझा कर सकते हैं। अगले पड़ाव पर एक नई कहानी के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, रखिए अपना बेहतर ख्याल। अमित का बहुत बहुत नमस्कार।

दुनिया शब्द विहीन हो जाए तो कैसा होगा? मन के अंतर में उथल पुथल, कोई आवाज ना सुनाई दे कहीं से। इन सारी उलझनों से, ऐसी कई कठिनाइयों से अकेले जूझती एक प्यारी सी लड़की। पता है वो उंगलियों की भाषा बोलती है, समझती है। मैं भी जब भी उसके पास रहता हूं तो शब्दों को जैसे किनारे रख उंगलियों की ही भाषा बोलता हूं। वो बहुत प्यारी है, उसके पास रहना अच्छा लगता है। हर छुट्टी के दिन उसे मिलने जाता हूं। मेरा घर सामान्य है, माँ बाबा, छोटा सा प्यारा सा परिवार। मेरी शादी की बात भी चल रही है, पर मेरा मन अक्षरा में लगा रहता है। मां के लाख मनाने पर मैं करुणा को देखने गया। भोली भाली, खूबसूरत, पढ़ी लिखी, समझदार, घरेलू लड़की, जैसी मुझे और मां को चाहिए। मैं हां कर देता, पर अक्षरा का ख्याल मेरे जहन से जा नहीं रहा था। मैंने हिम्मत करके करुणा से मिलने के लिए रविवार का दिन मांगा। घर वालों ने भी छोटी बहन को साथ भेज दिया। हम तीनों होम केयर गए। वहां मैंने अक्षरा को करुणा से मिलवाया और बताया मैं अक्षरा को साथ रखना चाहता हूं। करुणा अक्षरा की मासूमियत को अपने में समेट रही थी। अक्षरा थी ही इतनी प्यारी, बस 5 साल की मासूम बच्ची। और करुणा अपने नाम के अनुसार करुणामयी थी, इस बात का एहसास मुझे उन दोनों के साथ बिताए समय से हुआ। पर करुणा ने सोचने के लिए थोड़ा वक्त मांगा। आखिर बात जिंदगी की थी। घर वालों के काफी नानुकुर के बाद करुणा ने हां में जवाब दिया। हमारी शादी धूमधाम से हुई। अक्षरा हर रस्म में हमारे साथ थी। अब हमने अक्षरा को गोद ले लिया है और हम सब साथ हैं। दोस्तों, आप सुन रहे थे सचिन बिलोरे जी की लिखी लघु कथा शब्द विहीन अक्षरा। ऐसी रचना जो कुछ भी टिप्पणी करने के लिए भी शब्द विहीन कर देती है। अगर ये कहानी सच है तो शत शत नमन। वैसे ऐसा हो सकता है कि ये कहानी सच्ची ही हो। कई शहरों में, कई जगहों पर कई लोग ऐसे हैं जिनके मन में करुणा और वात्सल्य कूट कूट कर भरा हुआ है, और फिर वो अपना पराया नहीं देखते। वो तन में या शरीर में छिपी कमियां नहीं देखते, वो आत्मा की सच्चाई देख लेते हैं। चाहे वो किसी बच्चे को गोद लेना हो या फिर किसी दिव्यांग से विवाह करने की बात हो, क्योंकि संबंध शरीर तक सीमित नहीं रहते, संबंध आत्माओं के बीच जुड़ता है। और ये बात हम भूल चुके हैं। बॉडी कॉन्शियसनेस, देह अभिमान हमें केवल ऊपरी आवरण, ऊपरी पैकेजिंग वही दिखा रहा है, और उसके देखने की वजह से हम धोखा खा रहे हैं। क्योंकि भले ही कोई कितना भी सुंदर हो, गोरे रंग का हो, मगर मन काला और जुबान कड़वी हो तो क्या कर लेंगे। मगर कई लोगों में अभी भी समझ बाकी है, और उन समझदार लोगों के हिसाब से, उन समझदार लोगों के अस्तित्व को, उनकी खूबियों को दर्शाती ही आज की ये लघु कथा है जो हमने सुनी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मैं एक नई कहानी लेकर अगले पड़ाव पर फिर आपसे मिलने आऊंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, रखिए अपना बेहतर ख्याल। अमित का बहुत बहुत नमस्कार।

मैं हूं सुनील खरे, मैं ग्लोबल हॉस्पिटल आबू रोड में काम करता हूं। अब सुनिए आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन को 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

सभी लोग ये बताइए, भारत सरकार का गृह मंत्रालय का कौन सा हेल्पलाइन नंबर है जिसके माध्यम से अगर कोई भी वित्तीय धोखाधड़ी हो जाती है तो उसकी आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं।

होंगे हम तो विघ्न हार जाएंगे, विघ्न हार जाएंगे। शिक्षा बनेगी बल, स्वस्थ होगा कल। सहयोग की ईंटों से सफलता बनाएंगे।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वक्त हो गया कार्यक्रम युवा मंच का, और युवाओं के मंच इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हमारे मध्य हमारे एक्सपर्ट हितेश जी और मोनिका जी हैं। तो दोनों डिस्कशन करेंगे, टॉपिक रहेगा कि फ़ोन एडिक्शन एंड टेक्नोलॉजी। तो ये क्या है, ये सब हम सबको तो पता ही है, लेकिन कैसे यूज़ करना है, कितना यूज़ करना है, आप सोच रहे होंगे ये भी हमें पता है, लेकिन कई बार क्या होता है, पता होते हुए भी हम थोड़ा फिसल जाते हैं, थोड़ा कंट्रोलिंग पावर खो देते हैं। ये क्यों होता है, इसे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, और इसे कंट्रोल करने से फ़ायदा क्या है, ये चर्चा करेंगे आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम के अंतर्गत।
1: थैंक यू सो मच
2: जी, शुक्रिया
0: जी। तो आइए मोनिका जी की ओर चलते हैं, और हितेश जी से भी जानते हैं कि क्या क्वेश्चंस मोनिका के पास हैं और हितेश जी के पास क्या जवाब है इसका।
2: जी, टॉपिक तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है आज का हमारा। ये मोस्टली आजकल जो यंगस्टर्स हैं, जो यूथ है उनका, और जो आजकल बच्चे भी फ़ोन ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनको आदत पड़ गई है, उनको ऐसे बोल सकते हैं उनको लत लग गई है। और कोई कोई जिन्हें पता है कि हम बहुत टाइम वेस्ट करते हैं इसके पीछे, और वो बाहर आना चाहते हैं इसमें से, लेकिन बहुत कोशिश करते हैं पर वो आ नहीं पाते हैं। तो ये सेशन खास उनके लिए है, और मैंने ऐसे सवाल तैयार किए हैं जो उनके मन में भी आ सकते हैं, आपके श्रोताओं के मन में भी आ सकते हैं। अगर आपको कोई सवाल है तो आप हमें टेक्स्ट कर सकते हो, हमें व्हाट्सएप पर भेज सकते हो या कॉल कर सकते हो। तो हम सवाल हम चर्चा करेंगे इस विषय पर। वैसे फ़ायदे तो बहुत हैं फ़ोन के और इंटरनेट के, फ़ायदे नुकसान दोनों हैं। आपका क्या कहना है, क्या फ़ायदे हैं तेज जी?
1: बिल्कुल, फ़ायदे तो बहुत ही ज़्यादा हैं। पहले हम कुछ करने का सोचते थे तो हमें कितना कुछ स्ट्रगल करना पड़ता था, कोई पढ़ाई करनी है, किसी चीज़ के बारे में नॉलेज लेनी है। आज कितना ईजी हो गया है ना, किसी भी चीज़ के बारे में अवेयरनेस लेनी है, इतना कि अगर कॉलेज भी नहीं जाएं तो भी उतना नॉलेज हमें घर बैठे मिल सकता है जितना पहले हम सोच भी नहीं सकते थे, है ना
2: जी।
1: और चाहे दुनिया की बात करें, चाहे अपने माइंड की बात करें, कोई भी आप टॉपिक ले लीजिए, इतनी भर भर कर इन्फॉर्मेशन है। तो ये तो बहुत बहुत अच्छी चीज़ हुई है कि इस वजह से हम बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए हैं, हमारा माइंड बहुत एडवांस हो गया है, हम बहुत अवेयर हो गए हैं दुनिया में क्या हुआ है, दुनिया में क्या चल रहा था, हमसे पहले क्या हुआ, सच्चाई क्या है, है ना। ये भी फ़ायदा है कि कई बार जैसे हमें स्कूल में पढ़ाया कुछ और जाता है ना, लेकिन उसका सच्चाई क्या है वो भी हमें कभी कभी इंटरनेट के थ्रू पता चलती है। कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, कुछ अच्छे लोग भी हैं, कुछ अच्छे चैनल्स भी हैं जो हमें बहुत अच्छी चीज़ें बताते हैं
2: जी। खास करके अभी जब लॉकडाउन हो गया था तो उस टाइम पे ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी थी, मुझे नहीं लगता उसके बिना हम अभी कोई बचता भी था।
1: बिल्कुल बिल्कुल, वो कहते ही हैं कि अगर लॉकडाउन में इंटरनेट नहीं होता ना तो लोग पागल हो जाते,
2: बीमार पड़ जाते सारे।
1: बिल्कुल,
2: वो हमको टच भी नहीं करना था कहीं पे, हमें खुद ही सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, तो ऑनलाइन हम पेमेंट करते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, और ऑनलाइन क्लासेस होती थी, ऑनलाइन जॉब होती थी, सब कुछ ऑनलाइन हो गया, वो सब इंटरनेट की वजह से हुआ। तो
1: Definitely.
2: कितना फ़ायदा भी है, लेकिन हमें उस फ़ायदे के लिए यूज़ करना है। नुकसान नहीं, हमें अब ज़्यादा उसका एडिक्शन ना हो, हमें कोशिश करनी है। फ़ायदे
1: मतलब,
2: वैसे
1: जैसे आपने बोला ना कि हम मोबाइल को यूज़ करें, हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, लेकिन अभी उल्टा हो गया है, टेक्नोलॉजी हमें यूज़ कर रही है, उस चीज़ को हमें ठीक करना है।
2: जी, हमें कॉल्स करने हैं कहीं पे, कॉल करने के लिए तो ऑब्वियसली फ़ोन यूज़ करेंगे। और उसके लिए कम्युनिकेशन के लिए अच्छा है, इन्फॉर्मेशन हम सेंड कर सकते हैं, भेज सकते हैं, कितनी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आपने कहा और
1: बात करना बहुत इजी हो गया है. पहले तो पता नहीं क्या क्या करना पड़ता था बात करने के लिए. सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा हो गया है ना. अपने हम अपना वेयर अबाउट्स मतलब लोकेशन आ गया है. लास्ट कॉल किसको किया था, अभी हम कहाँ पर हैं. जगह ढूंढना कितना इजी हो गया है. हम लोग कहीं जाना होता था तो पहले कितने लोगों से पूछ पूछ कर जाते थे, अभी सिर्फ गूगल मैप्स डालते हैं, है ना. तो अच्छा तो बहुत कुछ हुआ है देखा जाए तो.
2: जी बिल्कुल, ये तो हम सबको पता है उसके फायदे हैं.
1: हाँ.
2: और अभी इसके नुकसान भी है काफी, तो हमें उसको भी ध्यान में रखना है. इसके क्या नुकसान है वैसे?
1: हाँ, नुकसान तो अगर शुरू करना चाहें तो मुझे लगता है कि काफ़ी दिन लग जाएंगे बताने में. बट हाँ, अगर हम धीरे धीरे शुरुआत करें नुकसान की, तो जितना ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ता है उतना ही ज़्यादा गलत इन्फॉर्मेशन भी जाती है ना. जैसे कहते हैं इन्फॉर्मेशन, और एक होता है मिस इन्फॉर्मेशन, मतलब कि कुछ गलत भी जा रहा है, गलत भी हमें बहुत कुछ सुनने को मिलता है और हमें इतना समझ नहीं होती कि हम उसको डिफ्रेंशिएट कर पाए कि क्या सही है क्या गलत है ना. और धीरे धीरे फिर क्या हुआ कि इसकी आदत पड़ गई, अब इसके बिना चीजें ही नहीं होती है ना. बात करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जब बहुत ज्यादा इजी हो गया बात करना तो क्या हुआ, हम ज्यादा बात करने लग गए और ज्यादा बात करने से प्रॉब्लम होने लग जाती है ना. धीरे धीरे जब हम किसी भी चीज़ को, चाहे टेक्नोलॉजी हो चाहे कोई भी चीज़ हम लाइफ में देखें, जब उसका ओवर यूज़ होने लग जाता है तो चीज़ें खराब होने लग जाती हैं, है ना. तो धीरे धीरे क्या हुआ कि लोगों को समझ आने लग गया कि ये लोग, इंसान जो है ये टेक्नोलॉजी का धीरे धीरे एडिक्टेड होता जा रहा है. तो क्या हुआ, धीरे धीरे और चीज़ें डालने लग गए. मतलब पहले आपको पता होगा, बहुत साल पहले एक दूरदर्शन होता था या एक दो चैनल ही होते थे, है ना. हफ्ते में एक बार एक मूवी आती थी. लेकिन अभी क्या हुआ, धीरे धीरे समझ आ गया लोगों को, दुनिया को, कि अरे ये तो बड़ा अच्छा बिजनेस है, लो एक और वेब सीरीज डाल देते हैं, एक और मूवी बना देते हैं. और आजकल कौन सी मूवी चल रही है, कौन सा जॉनर चल रहा है, क्राइम थ्रिलर, है ना. मर्डर, मिस्ट्री, किसी ने चीट किया, किसी ने गलत किया. तो क्या हुआ, ये हमारी लाइफ में इतना अंदर घुस गए हैं ना, हमारे ब्रेन में, हमारे माइंड में इतना अंदर चली गई हैं ये चीज़ें, कि वही हमारा थॉट पैटर्न हो गया है.
2: जी.
1: वही हमारा वे ऑफ लिविंग हो गया है, वही हमारा वे ऑफ थिंकिंग हो गया है. और किसी पर विश्वास खत्म हो गया है, क्योंकि मूवी में क्या देखते हैं, क्राइम पेट्रोल में क्या देखते हैं, कि पड़ोसी किसी को मार रहा है. तो हमें भी लगने लग जाता है पूरा दिन कि अरे कहीं ये पड़ोसी मेरे साथ कुछ गलत नहीं कर दे. बात नहीं करते, चलो अपने चार दीवारी में ही रहते हैं.
2: हाँ.
1: तो धीरे धीरे वो जो एक वॉर्म्थ था आपस में, बात करना, ट्रस्ट करना, वो बिल्कुल ही खत्म हो गया है. और ये बहुत बड़ा फैक्टर है ये टेक्नोलॉजी ओवर यूज का या इंटरनेट ओवर यूज का.
2: जी, हम फ़ोन में ही ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हैं. सोशल मीडिया में बहुत इन्वॉल्व हो जाते हैं.
1: हाँ.
2: फैमिली में ज़्यादा मम्मी पापा से बात नहीं, ज़्यादा नहीं कर पाते. फैमिली को टाइम देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर बाद में कभी लगता है, कभी हम बाहर हॉस्टल में चले गए या फिर, तो फिर हमें ऐसे लगता है कि यार जब पास में थे तब हम बात नहीं कर पाए, फिर याद बहुत आती है, फिर तब पता चलता है इम्पोर्टेंस घर वालों की. और फ़ोन से हमें क्या ही आउटपुट मिल रहा है, ज़ीरो आउटपुट मिल रहा है. और हमें नुकसान कितने होते हैं, आईज़ में पेन होता है और नेक में पेन हो सकता है, बॉडी स्टिफ हो जाती है एक जगह पर बैठ के. हमको मिल क्या रहा है एक्चुअली, एक चीज़ है ये जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं और जो भी वेबसाइट्स हैं, इनके पास है ना, ये रिसर्च करके इन्होंने बनाया है.
1: हाँ.
2: कि लोगों का ध्यान खींचे, लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस पे टाइम स्पेंड करें. लोगों का ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट है. हमें हमारा अटेंशन कहाँ देना है, हमारा ध्यान कहाँ देना है, टाइम कहाँ देना है, ये बहुत ज़रूरी है. और ये उन लोगों के लिए उनका बिजनेस है.
1: Yes.
2: तो वो इसमें सफल हो जाते हैं अगर हम इसमें बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं. तो उनका फ़ायदा हो रहा है लेकिन नुकसान हमारा हो रहा है.
1: बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा पॉइंट टच किया कि ये होता है कि पूरा टीम होती है उनकी, साइकोलॉजिस्ट की, जो प्रॉपर उन्हें गाइड करते हैं कि ये देखो ह्यूमन माइंड ना ऐसे काम करता है, थोड़ी सी ना इसमें क्यूरियोसिटी डाल दो थोड़ा सा इसमें नेगेटिविटी डाल दो, लोग देखेंगे. आपने देखा ना न्यूज़ कौन सी ज़्यादा लोग देखते हैं या वीडियोस वायरल कौन सी होती हैं जिसमें नेगेटिविटी होती है, है ना. तो इस वजह से जैसा आपने कहा ना कि इवन अगर हम किसी क्रिकेट की बात करें तो वो भी कैसा बना दिया है, इसी तरीके से बना दिया है कि अच्छा इसमें और क्या मसाला डालें कि लोग ज़्यादा देखें उस चीज़ को, है ना. अपनी दुनिया भूल जाएं कि मेरी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है क्या है, बस उसी चीज़ के अंदर पूरा इन्वॉल्व हो जाते हैं. वो तो बेचारे अपनी लाइफ, बेचारे नहीं, वो बेचारे नहीं, हम बेचारे, वो तो अपनी लाइफ में करोड़ों कमा रहे हैं, अपना ड्रीम पूरा कर रहे हैं, और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम उनको देखते हैं सिर्फ, अरे बड़ा अच्छा खेल रहा है, बहुत अच्छा. सिमिलरली जैसा आपने कहा कि हम मूवीज़ देखते हैं, हम सोचते हैं अरे बड़ा अच्छा लग रहा है, खुशी सी मिली मूवी देख कर, पर अल्टीमेटली वो खुशी नहीं मिली. वो फ़ायदा किसका हुआ, उन्हीं लोगों का हुआ जिनका वो बिजनेस है, अटेंशन स्पैन, है ना. और आपने एक चीज़ और अच्छा कहा कि जब हम मोबाइल यूज़ करते हैं तो ज़्यादातर हम कैसे यूज़ करते हैं, हमारा जो सिर है वो झुका हुआ होता है, है ना. और इसे टेक नेक बोलते हैं कि ये कैसे होता है, जैसे मान लीजिए एक 8 साल का बच्चा आपने अपने गर्दन पर रखा हो, इतना प्रेशर हमारी गर्दन पर पड़ता है जब हम टेक्स्ट करते हैं नीचे सिर करके. इसलिए एक चीज़ और प्लीज़ यूज़ करें कि अपने सिर को सीधा रखकर सामने मोबाइल यूज़ करें. मुझे पता है ऑकवर्ड होगा, मुझे पता है कि आपको ऐसे लगेगा अरे लोग क्या सोचेंगे, पर नहीं, मुझे यहाँ पेन फील नहीं करना है ना, तो इसलिए इस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखना है, है ना
2: जी.
1: और बिल्कुल स्लीपिंग साइकिल की तो हम क्या ही बात करें, क्योंकि वो पूरी तरह ही डिस्टर्ब हो गई है. क्यों? क्योंकि कोई भी, चाहे मोबाइल का स्क्रीन या लैपटॉप का स्क्रीन, वो ब्लू लाइट रेडिएट करता है, और वो ब्लू लाइट से क्या होता है, हमारे ब्रेन में

0: केमिकल होता है मेलेटोनिन, जो नींद के लिए जरूरी होता है, और जब ब्लू लाइट उस पर पड़ती है ब्रेन पर, तो वो रिलीज नहीं होता. क्यों? क्योंकि ब्रेन को लगता है अरे अभी तो दिन है, इतनी लाइट कहाँ से आ रही है, राइट? तो इस वजह से हम जब रात को सोने लगते हैं, 10 बजते हैं, 10:30 बजते हैं, हम कहते हैं नींद नहीं आ रही, मोबाइल यूज़ कर लेते हैं. इनफैक्ट मोबाइल देखने से ही नींद नहीं आ रही है, हमें समझना है. जो ये स्लीपिंग पिल्स होती है ना, उसमें मेलेटोनिन डाला जाता है कि चलो नींद आ जाए लोगों को. तो हम अगर बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करेंगे, तो हमारी स्लीप साइकिल में, हमारी नींद में बहुत बहुत गलत इफेक्ट पड़ेगा, और फिर वही स्टोरी सेम पूरा दिन चलती रहेगी कि नींद पूरी नहीं होगी तो इरिटेटेड रहेंगे, इरिटेटेड रहेंगे तो कहेंगे चलो रील्स देख लेते हैं, ये देख लेते हैं, राइट? और बस इसमें एक लाइन और ऐड करूँगा कि हुआ क्या, अगर इसके नुकसान की बात करें, तो हम रियल लाइफ से दूर होकर रील लाइफ में चले गए, है ना, सोशल मीडिया की लाइफ में चले गए, और वो बिल्कुल भी रियल नहीं है ना, सच नहीं है वो बिल्कुल भी. इसी में एक और चीज़ अगर मैं ऐड करूँ, जैसे नींद ना आने को इंसोमेनिया कहते हैं, है ना, और इसी से कनेक्टेड एक बात कहूँ तो इंसोमेनिया क्यों हो रहा है, क्योंकि इन्फोमेनिया हो रहा है. अगर बहुत ज़्यादा पूरा दिन, जैसे अभी भाई साहब ने बताया कि इलेक्शन चल रहे हैं, या बहुत सी चीज़ें सुनते रहते हैं, तो रात को क्या चलेगा? जब सोएंगे तो वही सब तो चलेगा ना, जो पूरा दिन अपने आप को खिलाया हमने, राइट? तो इस वजह से माइंड बहुत एक्टिव रहता है. और सही बताऊं तो 90% पीपल, लोगों को यही नींद का इश्यू है, क्वालिटी स्लीप नहीं है, इसी वजह से वो पूरा दिन इरिटेटेड रहते हैं.
1: जी, मैं इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगी. मैंने ना एक्चुअली शिवानी दीदी का एक वीडियो देखी थी, तो उसमें उन्होंने बोला था कि हम जब सोने से पहले जो चीज़ हम सुनते हैं, या अगर हमने फ़ोन में कुछ देखा, तो हमारे दिमाग में वही सब चीज़ें चलती है. और सोने से 1 घंटा पहले हमने अगर फ़ोन यूज़ किया ना, तो हमारी नींद अच्छे से नहीं होती है, ब्रेन को उतना आराम नहीं मिलता है, ब्रेन वही थॉट्स प्रोसेस करता है, और फिर हमारा उतना आराम नहीं हो पाता है. आराम बहुत ज़रूरी है हमारे ब्रेन के लिए, तो नेक्स्ट डे पे हमें थकान फील हो सकती है. और जब हम खाना खाते हैं, हम जिस टाइप का, अगर हम खाना खाते खाते टीवी देख रहे हैं या फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे अंदर वही सब चीज़ें जाती है. अगर हम खाना शांति से बैठ के खाएंगे, तो हमारे अंदर बहुत सारी ताकत आती है, और ख़ास करके अगर भगवान को याद करके खाया, तो उसमें और ज़्यादा पावर्स, बहुत ताकत मिलती है. तो वो कंटेंट वो हम जो देख रहे हैं, वो भी नेगेटिव उस हद तक वो असर कर रहा है हमारे ऊपर.
0: बिल्कुल बिल्कुल. एक एक कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि अरे, जैसे बच्चे कहते हैं कि भैया क्या हुआ, देख लिया तो क्या हुआ, ये रील देख लिया तो. एक एक चीज़ जो हमने देखी है ना आज तक, उसका इम्पैक्ट हमारे, उसका असर हमारे मन पर हुआ है. वो अलग बात है कि वो धीरे धीरे क्या होता है, वो पीछे की तरफ चला जाता है, मतलब गहराई में चला जाता है हमारे मन के, उसका पता नहीं चलता, लेकिन वो धीरे धीरे बहुत टॉक्सिक, बहुत जहरीला हो रहा है, और हमें उसकी उसका पता भी नहीं है, है ना. इसलिए छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन का, अब इसी में अगर मैं एक लाइन ऐड करूं तो ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं किसी इंसान की एडिक्शन के ना, ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं. मतलब मान लीजिए आप रील्स देख रहे हैं, एकदम से रील में कुछ ऐसी वीडियो आ गई जो थोड़ी सी डिस्टर्बिंग है, तो किसी इंसान को ट्रिगर हो जाता है. जैसे एक चाय पीने वाले इंसान को क्या होता है, थोड़ा सा मौसम अच्छा हो गया, उसको ट्रिगर हो जाता है चाय पीने का, है ना. ऐसे ही मान लो हम, अगर हम बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं आजकल, मूवीज, सोशल मीडिया, वेब सीरीज, इसमें हर तरह का कंटेंट है ना, नेगेटिव भी है, अजीब सा भी है, वो जैसी देखते हैं लोगों को ट्रिगर हो जाता है नेगेटिविटी का, उनकी जो गलत आदतें हैं वो ट्रिगर हो जाती हैं. तो इसलिए एक एक चीज़ मैं क्या देख रहा हूँ, उसका बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है.
1: जी बिल्कुल. इसके अलावा कितने नुकसान है, हमें नुकसान भी पता है, फ़ायदे भी पता है, और ये भी पता है कि अगर आदत लग गई, उसकी लत लग गई, तो हमें कितना नुकसान हो जाता है. हम पढ़ाई, अगर जो पढ़ाई करते हैं, या जिनके पास बहुत सारा काम है, वो काम छोड़ के, पढ़ाई छोड़ के, फिर वो फ़ोन यूज़ करते हैं, उसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें इस चीज़ की लत लग गई है, कि क्या मतलब लक्षण होते हैं?
0: हाँ देखिए, सबसे पहला लक्षण तो वही होता है कि जैसे ही फ्री हुए, है ना, कुछ काम कर रहे हैं, जैसे ही फ्री हुए तो आप देखना एकदम से ध्यान आपका आपके मोबाइल की तरफ जाएगा, कुछ करना भी नहीं होगा, बस एकदम से क्या होगा, कुछ देख लेते हैं, शायद किसी का मैसेज आया होगा, नोटिफिकेशन चेक करने लग जाते हैं, या लाइक्स कितने आए, कमेंट्स कितने आए, वो देखने लग जाते हैं, कुछ नहीं हुआ तो चलो रील्स देख लेते हैं, है ना। जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो दिखाना नहीं चाहते कि यू नो मैं अकेला हूँ। मान लो जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं ना, ये मेरे साथ भी होता था पहले, कि मैं दिखाना नहीं चाहता था कि मैं फ्री हूँ या अकेला हूँ, तो मैं क्या करता था, कुछ काम नहीं, ऐसी मोबाइल खोलकर कुछ नहीं कर रहा, बस रील्स देख रहा हूँ या प्रिटेंड कर रहा हूँ, दिखावा कर रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ, है ना। तो पहला पॉइंट तो ये कि जब आप फ्री होते हो तो क्या सीधा ध्यान मेरा मेरे मोबाइल की तरफ जाता है, इट मीन्स वो चीज एडिक्शन का रूप ले चुकी है। जैसे ही सुबह उठे तो क्या ये थॉट आता है कि मोबाइल कहाँ है मेरा, मोबाइल कहाँ है, चलो कुछ किसी का मैसेज आया होगा। पहली चीज अगर आप मोबाइल यूज करते हो तो इसका मतलब क्या है कि वो एडिक्शन का रूप ले चुकी है ना, ये भी चीज है। और अगर आपको लगता है कि जैसे ही आप फ्री भी होते हैं, ट्रैवल कर रहे हैं या कुछ भी, आप घर से घर के काम से फ्री हुए, अब आप सोचते हो चलो यार अब वो एपिसोड में क्या हुआ था पिछला, अब नेक्स्ट एपिसोड देख लेते हैं, या चलो यार देखते हैं कि मूवी कौन सी आई है नहीं, है ना। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेते रहने का अगर आपका आदत हो गई है, इसका मतलब आप एडिक्टेड हो गए हो।
1: जी, हम ऐसे बोल सकते हैं ना कि कोई ना कोई बहाना चाहिए फ़ोन यूज़ करने का, कोई ना कोई, कुछ भी हो, मूवी हो या कोई न्यूज़ हो या कोई सॉन्ग प्ले करना है, किसी से फ़ोन पे बात करना है, मतलब कोई भी बहाना हो, पर फ़ोन से दूर नहीं रह सकते, बार बार हमको फ़ोन यूज़ करना है, उसको हम एडिक्शन बोल सकते हैं।
0: यस यस, दूसरा मैं ये कह रहा था कि आजकल एक टर्म है नोमोफोबिया, मतलब कि नो मोबाइल फोबिया, कि जैसे ही आपको एकदम से ध्यान आता है अरे मेरा फ़ोन कहाँ है, मान लीजिए वो फ़ोन दूर है या नेटवर्क नहीं आ रहा है ना, तो बहुत अजीब सा होने लग जाता है। सेम जो हम बात कर रहे थे कि एक एडिक्टेड इंसान को जब वो चीज़ नहीं मिलती तो वो कैसा रेस्टलेस हो जाता है।
1: जी बिल्कुल,
0: है ना, ये विड्रॉल सिम्टम्स इन्हें कह सकते हैं। तो ये कुछ साइंस हैं चेक करने के कि क्या सही में ये एडिक्शन हो गई है क्या।
1: जी, ऐसे बार बार चेक करना फ़ोन, और कभी कोई ज़्यादा एंग्जाइटी रहती है किसी में और ज़्यादा डिप्रेस भी रहता है, तो वो भी जब ये एक्सपीरियंस करते हैं तो वो भी ज़रा ज़रा सी बात पे अगर किसी ने कुछ बोल दिया और मूड ख़राब हो गया और वो फिर फ़ोन यूज़ करेंगे। ये भी चीज होती है।
0: यस यस, सेम एज एडिक्शन, है ना, जब स्ट्रेस आ जाता है ना एकदम से, तो वो इंसान उसी तरफ भागता है जो उसको, जिस बात की उस इंसान को एडिक्शन है। तो अगर हम मोबाइल की तरफ जा रहे हैं तो इट मींस कि वो एडिक्ट हो, एडिक्शन हो गया है उसका, क्योंकि अपने साथ कंफर्टेबल नहीं हूं मैं, जो हमने कल भी बात की ना, वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल इमोशंस जो आ जाते हैं उसको फेस करने की बजाय उसे अवॉइड करते हैं। इट मींस वो उसने एडिक्शन का रूप ले लिया है।
1: जी, और हम अपने जो ज़रूरी काम होते हैं हम उनको छोड़ के फ़ोन यूज़ करते हैं, तो वो भी एक एडिक्शन, हम पता चलता है कि हमें इसकी आदत लग गई है। और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम यूज़ करना और लोगों की प्रोफाइल्स चेक करना, बार बार कुछ भी करते रहो फ़ोन पे, और काम हमारे टालते रहना, बाद में करना, और सोशल लाइफ, हम लोगों से बातचीत कम कर देते हैं, फ़ोन में ही ज़्यादा लगे रहते हैं, वो भी तो लग गई है ना फ़ोन की।
0: बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली।
1: और ऐसे हम ऐसे बोलते हैं ना, फोमो बोलते हैं जिसको, फियर ऑफ मिसिंग आउट, मतलब अगर हम फ़ोन नहीं यूज़ करेंगे तो हमें ऐसा लगता है कि हम लोगों से अलग होंगे, बाकी सब यूज़ कर रहे हैं हम भी यूज़ करेंगे, अगर हम
0: हमें पीछे ना रह जाऊं,
1: पीछे ना रह जाऊं। जी वही, तो वही एक चीज़ होती है बहुत। और जब फ़ोन यूज़ करके हमें अच्छा फील होता है ना, डोपामिन रिलीज होता है, तो वो भी एक कारण बोल सकते हैं। तो और ये इन चीज़

0: जैसिक मोड पर एक दोस्त है हमारे साथ, आइए उनसे बात कर लेते हैं और फिर लौटते हैं हितेश जी और मोनिका जी की ओर। हेलो नमस्ते।
1: तो शुभा जी, एक ऐसा सवाल है
0: जी
1: कि ये जो फेक न्यूज आते हैं, फेक मैसेज आते हैं
0: जी,
1: अभी हम पुराने जमाने के सीनियर सिटीजन है, कभी कभी कुछ समझता है, कभी नहीं समझता है, और कभी कभी क्लिक भी वो हो जाता है, तो उसके बारे में कुछ प्लीज सर हितेश जी भाई जी को कहना कि इसके बारे में फेक न्यूज से कैसे बचे, और जिनको ज्ञान नहीं है वो भाई बहने कैसे बचे, इसके बारे में बोलना प्लीज, जानकारी दी।
0: बिल्कुल, थैंक यू सो मच आपके सवाल के लिए। लौटते हैं हमारे मेहमानों के पास।
2: जी, जो मैं कारण बता रहा था उसी से कनेक्ट करके ये बात बता देता हूँ कि हमारा एक स्वभाव होता है नॉलेज लेना, है ना। मतलब हम चाहते हैं हमें हिस्ट्री का भी पता हो, क्या हुआ था, मुगल कब आए थे, दुनिया कैसे शुरू हुई, है ना, हमें सब जानना होता है। वो एक छोटे बच्चे की तरह हम सबके अंदर वो क्यूरियोसिटी रहती है, वो रहनी भी चाहिए, है ना। लेकिन जैसे कि फेक न्यूज की बात उन्होंने कहा कि अब क्या होता है, लोग इसका फायदा उठाते हैं। क्या फायदा उठाते हैं कि समझ आ गया कि इंसान क्यूरियस है। अब आप देखना वही बात कि वेब सीरीज भी ऐसी दिखाई जाती है कि जब एंड होता है ना तो क्या होता है, एक क्यूरियोसिटी के साथ, हाय आगे क्या होगा, मन करता है कि यार अगला भी अभी देख लो, है ना। और भी जो भी हम चीज़ें हैं, सोशल मीडिया की बात करें, है ना, तो वो उसी पर निर्धारित होती हैं कि ह्यूमंस आर क्यूरियस, हम क्यूरियस हैं, हम जानना चाहते हैं चीज़ों को। अब उस चीज़ का फ़ायदा उठाया जाता है। अब इसमें एक, अगर मैं सॉल्यूशन अभी बात नहीं करेंगे, है ना
0: जी,
2: तो उस पर बाद में जाएंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन का आंसर दूँ तो यही कहूँ कि अगर जो फेक न्यूज़ है, पहली चीज़ तो व्हाट्सएप फॉरवर्ड जो होते हैं ना, जैसे दुनिया में बोलते हैं कि जैसे यूनिवर्सिटी है वैसे ही एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है। मतलब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे लोग क्या करते हैं, फॉरवर्ड भेजते हैं, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, इसने ऐसा कर दिया। वो बिल्कुल भी सच नहीं होता है। इसलिए पहली चीज, व्हाट्सएप पे जो भी फॉरवर्डेड मैसेजेस है उसे मुझे देखना ही नहीं है, पढ़ना तो दूर की बात है, मुझे बस इग्नोर कर देना है उसे, क्योंकि वो अगर सच होता तो वो सही जगह से आ जाता, इस चीज को मुझे छोड़ना है। पहली बात तो ये करनी है, ठीक है। दूसरा, मैं मानता हूं कि अब न्यूज में जो दिखाया जाता है वही हम सच मानते हैं, इसलिए अपना बुद्धि को पावरफुल, शक्तिशाली बनाना बहुत जरूरी है, खुद परखना जरूरी है कि क्या सही है क्या गलत है, है ना। और उसके लिए बहुत ज्यादा, जैसे मैं बिल्कुल भी न्यूज नहीं देखता हूँ। आप मुझसे पूछोगे इलेक्शन कहाँ पे, कौन सी डेट को चल रहा है, कब है, क्या है, कोई आइडिया नहीं है। लेकिन फिर भी जो बहुत जरूरी न्यूज होती है ना, बहुत जरूरी, वो पहुंच ही जाती है। कोई ना कोई फ्रेंड, कोई ना कोई कुछ बता ही देता है जो मेरी जो मेरे जीवन में शायद कुछ वैल्यू एडिशन करेगा, जो शायद जरूरी होगा, वो कोई ना कोई तो मुझे जरूर बता ही देता है, है ना। इसलिए किसी फ्रेंड ने कहा, किसी पड़ोसी ने कहा, या व्हाट्सएप पे किसी ने फॉरवर्ड भेजा, वो सब फेक है, उसको तो मुझे देखना ही नहीं है। पहली बात तो ये करनी है ना। तो बाकी कॉजेस की अगर हम बात करें सोशल मीडिया एडिक्शन की, तो दूसरा कारण होता है कि हमारा जो इंसान का मन है ना, वो नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा उसका प्रभाव होता है, उसे नेगेटिविटी थोड़ा अट्रैक्ट करती है, ये कारण हो जाता है एडिक्शन का। जैसा आपने कहा ना कि प्रॉपर टीम बैठी होती है लोगों की, है ना, क्योंकि उन्हें पता है कि हमें दूसरों की लाइफ को देखना बड़ा अच्छा लगता है। अब बात सिंपल सी है, अगर आज से हम 30-40 साल पहले जाएं, जब मोबाइल नहीं थे, तो गांव के लोग क्या करते थे, अपने घर के बाहर एक प्लेटफॉर्म होता है ना, उस पर बैठ जाते थे। आपने देखा होगा गांव में पेड़ के नीचे बैठ जाते थे, फिर क्या करते थे, वो आसपास लोगों को देखते थे जो गुजर रहे हैं और उनके बारे में कमेंट करते थे। बात वही है, लेकिन अभी क्या हो गई, अभी ऑनलाइन हो गई, अभी डिजिटल हो गई, पर इंसान की आदत तो वही है ना कि दूसरों की लाइफ में झांकने की आदत है।
3: बैठते थे कभी साथ में बैठ के गपशप करते थे,
2: इधर उधर की बातें करते थे।
3: हाँ।
2: अभी हम क्या कर

0: जैसा आपने कहा किसी की प्रोफाइल चेक कर ली, कौन कहाँ घूम रहा है वो चेक कर लिया, क्योंकि वो आदत है, एक आदत हो चुकी है. मैं ये नहीं कहूँगा आदत है, आदत हो चुकी
1: हो चुकी है
0: है. हम अगला कारण एडिक्शन का होता है, हम अकेले नहीं रहना चाहते.
1: जी, बिल्कुल।
0: और अकेले वैसे भी नहीं रहना है, बट हमें क्या लगता है कि 24 घंटे कोई ना कोई चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए, किसी से बात होती रहे, कुछ ना कुछ देखता रहूं. डर लगता है हमें, जैसे हमने बात की थी कि अपने आप का डर लगता है.
1: ये बहुत आजकल सबकी कंप्लेंट रहती है कि अकेला नहीं रहना है, कोई ना कोई बात करने के लिए चाहिए।
0: चाहिए. और ये लोनलीनेस तो अगेन, जैसे मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, आप कहेंगे सब सब कुछ है क्या, पर असली में 80% लोग लोनलीनेस फील करते हैं, चाहे वो मैरिड हो, चाहे वो 30 साल से भी मैरिड हो, 40 साल भी हो, फिर भी वो अकेलापन फील करते हैं. क्यों? उसके कारण बहुत सारे हैं, बट ये समझना जरूरी है कि ये सोशल मीडिया से, मोबाइल से, ये अकेलापन जाने वाला नहीं है, ये और ज्यादा फील होगा मुझे, है ना. कहते हैं ना, हमारे दोस्त तो बहुत बन गए, लेकिन जो रियल कनेक्शन होते हैं ना, वो नहीं बने हैं. वो बस कहने की बातें हैं कि इतने लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, कर रही हूँ, पर वो काम की बात नहीं हो पाती है. ठीक है
1: जी.
0: और रीजन होता है पीयर प्रेशर, जैसा आपने कहा कि मेरे सभी दोस्त मोबाइल यूज कर रहे हैं, सभी दोस्त, मान लो आप कॉलेज में हो तो कॉलेज में क्या बातें होती हैं, अरे तुमने वो लेटेस्ट वेब सीरीज देखी क्या. अब सभी दोस्त वो बात कर रहे हैं तो मेरे ऊपर भी तो पीयर प्रेशर आएगा ना. आपके सभी दोस्त रील्स बना रहे हैं, डांस की वीडियोस डाल रहे हैं, तो आपको भी प्रेशर आ जाएगा.
1: बोलते अरे तूने नहीं देखा, अरे यार क्या बात हुई.
0: तो हमारा मन इतना पावरफुल अभी नहीं है काफी चीजों की वजह से, तो हम भी अफेक्ट हो जाते हैं उन बातों से
1: जी.
0: तो ये कारण है जो हम एडिक्टेड हो जाते हैं.
1: जी. और टेक्नोलॉजिकल रीजंस होते हैं, गेम्स होती है, और हमें गेम्स इस तरह से डिजाइन की होती है जो हमें उसमें बहुत इंटरेस्ट, हम उसमें घुस जाते हैं.
0: तो मुझे याद है, मैं एक बच्चे से बात कर रहा था, मैंने पूछा क्यों गेम खेल रहे हो, बोलते कि इतने पॉइंट्स ले लूंगा ना भैया मुझे टी शर्ट मिलेगी. तो मैंने बोला यार मैं टी शर्ट दिला देता हूँ आपको, आप ये गेम छोड़ दो. तो वो रियल लाइफ में कुछ कर नहीं पाते ना. तो बिल्कुल आपने सच बोला, रियल लाइफ में कुछ अच्छा सा नहीं होता है ना, तो हम गेम में ढूंढते हैं अपने आप को. कि मैं गेम में अच्छा करूंगा, मैं ऐसा दिखता हूँ गेम में, मेरे पास इतने पॉइंट्स हैं, इतना कुछ है. तो बहुत फेक लाइफ हो गई है
1: जी.
0: और कोई पॉइंट इसमें
1: जी? नोटिफिकेशन आते हैं हमको फोन पे, वो हमको डिस्ट्रैक्ट करते हैं. तो हम ये सारे हमने देख लिए, इसके कॉजेज तो वैसे बहुत हैं, पर कॉजेज हमें, हम सब जानते हैं इसके कारण, हमें पता होते हैं कि क्या कारण है, क्यों हमें फ़ोन की लत लग गई है. पर हमारे लिए अभी इम्पॉर्टेंट है कि उस लत से बाहर कैसे आना है, इसकी हम अच्छी से चर्चा करेंगे आगे.
2: ब्रेक ले ले यहाँ पर एक.
1: जी बिल्कुल.
2: तो लेते हैं यहाँ पर एक अल्पविराम, मिलते हैं ब्रेक के बाद. हमारे मध्य आज हैं हितेश जी, आप एक लाइफ कोच हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और इसके साथ साथ आप राजयोगा भी प्रैक्टिस करते हैं. तो अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हितेश जी से पूछ सकते हैं, आप एक इंजीनियर भी हैं. तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM.

रेडियो पर प्रसारित किसी भी कार्यक्रम या उससे जुड़ी किसी सामग्री से समुदाय के किसी भी श्रोता को आपत्ति हो तो आप अपनी शिकायत सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में दर्ज करा सकते हैं। डिप्टी सेक्रेटरी, डिप्टी डायरेक्टर, रूम नंबर 116, एविंग शास्त्री भवन, नई दिल्ली 110001, फोन नंबर 0112338647, ईमेल prabhudat.sharma@nic.in या CISCELL-MOIB@NIC.IN।

0: आप सभी का फिर से स्वागत है प्रोग्राम युवा मंच पर, और आज हमारे मध्य मोनिका और हितेश जी हैं। आज हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के एडिक्शंस के बारे में, फ़ोन के एडिक्शंस के बारे में, और बहुत सारे रीजंस आपको पता चला और कैसे अच्छे से यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में भी हमने जाना, और इसके साथ साथ जो बैड इफ़ेक्ट्स है उससे कैसे हम दूर रह सकते हैं उस बारे में भी हम बातचीत कर रहे हैं इस प्रोग्राम के अंतर्गत। आप दोनों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू
2: जी। हम इसके सॉल्यूशंस देखेंगे, लेकिन एक शॉर्ट में हम देखेंगे कि हमें यार कोई कोई लोग सीरियसली नहीं लेते हैं। अभी काफ़ी श्रोता हमें सुन भी रहे होंगे, उनको पता भी है कि ये हमें इससे बाहर आना है, लेकिन वो सीरियसली नहीं भी लेंगे शायद कोई। पर हमें पता होगा कि यार इसका नुकसान क्या है, इसके नेगेटिव साइड्स क्या है, हमारे लाइफ में क्या नेगेटिव हो रहा है उसकी वजह से, फिज़िकल बॉडी में या मतलब साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं कुछ, और मेंटली हम कैसे उसमें प्रभावित हो रहे हैं, तो ये सब जानना भी बहुत ज़रूरी है। हम एक क्विक चर्चा करेंगे इस पर कि क्या क्या क्या होते हैं, जस्ट पॉइंट्स अगर आप बता
1: सॉल्यूशन ना।
2: सॉल्यूशन के पहले हम जानेंगे कि क्या इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, इफ़ेक्ट्स क्या हैं इसके, क्या प्रभाव बनाता है ये।
1: हमने वैसे काफ़ी बात कर लिया इस बारे में कि पहली चीज़ तो वही कि ये हमारा रियलिटी से कनेक्शन तोड़ देता है
2: जी।
1: मतलब जो सही में जीवन में ज़रूरी है उससे हमारा ध्यान हटकर गलत चीज़ों में चला जाता है
2: जी।
1: मतलब मेंटल हेल्थ की बात करें तो हमारी सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है, हमारे अंदर कन्फ्यूजन रहती है, हमारी खुशी गायब हो जाती है, एक अजीब सी नेगेटिविटी, एक अजीब सा गिल्ट रहता है पूरा दिन, क्योंकि अच्छा काम नहीं किया ना, टाइम वेस्ट किया है ना। और फिजिकल हेल्थ की बात करें तो वही बात कि बहुत से लोगों को आंखों में पेन होता है, बहुत से लोगों को, मुझे याद है जब मैं इतना अवेयर नहीं था तो आंखों में पेन होता था, बॉडी पूरा स्टिफ हो जाता है, और अगर प्रॉपरली आप लैपटॉप भी प्रॉपरली यूज़ ना करो तो जैसे मैंने टेकनेक कहा वो भी हो जाता है, पोस्चर ख़राब हो जाता है, तो ओवरऑल हमारा हेल्थ भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, और हमें उसका समझ नहीं आता है कि ये क्यों हो रहा है। अगर हम सर्वाइकल की बात करें वो भी बहुत बड़ी चीज़ है, ये इस चीज़ को ऐड करता है ना
2: जी।
1: और इमोशनली स्लीप की तो हमने बात की ही कि अगर नींद ही ठीक नहीं होगी तो उसका असर हमारे पूरे दिन में, हमारे काम में, हर जगह पे पड़ेगा
2: जी। और हमारे काम हम अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं, फ़ोन जितना ज़्यादा यूज़ करते हैं उतनी हमारी काम करने की जो क्षमता रहती है ना वो कम होती है, हम पढ़ाई उतनी अच्छे से नहीं कर पाते हैं, जॉब हमारी है तो अच्छे से नहीं कर पाते हैं, असाइनमेंट्स हैं स्कूल के कॉलेज के, और हेल्थ के इश्यूज़ अलग हैं, मेंटल हेल्थ भी अफेक्ट होती है हमारी, हमारा सोने का स्लीप डिस्टर्बेंसेस होते हैं, हमारे स्केड्यूल ऊपर नीचे हो जाते हैं, और हमारा मीन्स फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं, लाइक हम ज़्यादा स्पेंड करने लगते हैं, सब्सक्रिप्शंस होते हैं, अगर हमें लगता है कि यार ज़्यादा मूवीज़ देखनी है तो हम उसमें उसको ख़रीद भी लेते हैं, कि नेटफ्लिक्स हो गया, जैसे अमेज़ॉन प्राइम हो गया,
1: शॉपिंग भी हो गया ना,
2: शॉपिंग
1: भी हो गया, इजी है कि घर में बैठे बैठे मिलेगा तो खर्चा कर देते हैं, बाद में फिर सोचते हैं, ये भी बहुत बड़ा
2: बहुत
1: डिटेल में बात करने वाली बात है ये, कि लोग क्रेडिट कार्ड लोन ले लेकर गलत मतलब सही डिसीजन नहीं लेते हैं, और फिर बाद में प्रेशर आता है हर महीने।
2: जैसे कि हमने पहले भी बोला था कि उनके पास टेक्निक रहती है लोगों का ध्यान खींचने वाली, वही सब काम करती है, उनका तो फायदा हो रहा है ना, हमें पता नहीं चलता, हम उसमें इतने डूब जाते हैं, हमें पता नहीं चलता है कि हमारा नुकसान हो रहा है कहीं ना कहीं।
1: राइट।
2: और इसके अलावा हमारे कभी फ़ोन, गाड़ी चलाते वक्त हमने फ़ोन यूज़ किया तो एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं, और
1: वो भी बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि हमें लगता है अरे मेरा ध्यान तो पूरा है रोड पर, लेकिन एक सेकंड का ध्यान हटता है तो वो एक्सीडेंट हो जाता है
2: जी। और हमें कभी काम पे जाना है और हम फ़ोन ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं तो हम लेट पहुँचते हैं, या फ़ोन पे बात कर लिया ज़्यादा, इतने 2-3 घंटे, तो ये तो आजकल मतलब जो यूथ है बहुत बातें करते हैं फोन पे, ये चीज़ बहुत कॉमन है यूथ में, फ़ोन पे बहुत देर बात करते हैं, फिर उससे ना बहुत रेडिएशंस, अगर हम ब्लूटूथ ईयरफोन्स भी कनेक्ट कर लेते हैं लेकिन उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है, मीन्स क्या मिल रहा है आपको अगर बात करनी है, ठीक है दो तीन घंटे
1: ज़्यादा बात करने से उल्टा प्रॉब्लम बढ़ती है कम नहीं होती है।
2: बात करनी है हम फेस टू फेस अच्छे से बात कर सकते हैं, फ़ोन पे बात करना वो दो तीन घंटे वो कुछ आउटपुट नहीं होता है ना मिल, लेकिन हाँ वो जैसे हमने बोला कि डोपामिन रिलीज होता है उसका कोई सोल्यूशन,
1: हाँ वही ना कि कुछ और, वही बात है कुछ और लाइफ में करने को नहीं है ना, तो हम सोचते चलो यही कर लेते हैं
2: जी, हमें खुशी मिलती है जिसमें
1: कुछ कंस्ट्रक्टिव नहीं है, पता नहीं आज क्या करना है कल क्या करना है, कुछ बड़ा करना है कुछ वैल्यूएबल करना है, वो सब लाइफ में नहीं होता। मैं हमेशा ये एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए मैं एक ओलंपिक मेडल की तैयारी कर रहा हूँ, ओलंपिक्स की तैयारी कर रहा हूँ, तो क्या मैं ये सब चीज़ें करूँगा क्या, ये क्या मैं लेट नाइट किसी से बात करूँगा, तीन तीन घंटे बात करूँगा क्या किसी
2: नहीं।
1: से क्यों नहीं करूँगा,
2: क्योंकि हमारे पास लक्ष्य है, हमें हम उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं।
1: यस, मिलिट्री में मैं हूँ, आर्मी में मैं हूँ, तो क्या मैं तीन तीन घंटे बात करूँगा किसी से, मन होगा तो भी नहीं कर पाऊँगा। तो एक लाइफ में बहुत बड़ा एम होना बहुत ज़रूरी है और वो हम सबकी लाइफ में मिसिंग है, इस वजह से वो इशू आने लग जाते हैं।
2: जी एक बात बताना चाहूँगी, मुझे भी एक बार फ़ोन एडिक्शन हो गया था और फिर अब भी मैं इतनी सारी चीज़ों में बिजी हो गई हूँ ना, फिर अभी लगता है कि मैं कितना कुछ कर रही हूँ, इतना सीख भी रही हूँ, इतना जितना हम करते हैं ना लाइफ में, पढ़ाई कर ली या जॉब कर ली या कुछ भी सेवा कर ली, तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और फ़ोन में तो, और मुझे अभी लगता है कि मैंने टाइम वेस्ट किया था और मुझे तो कुछ मिलता ही नहीं था उसमें से, उल्टा मेरा नुकसान होता था, मुझे भी नेक का पेन अभी थोड़ा बहुत वो क्योर हो गया, एक्सरसाइज स्टार्ट की है ना तो वो तो ठीक हो गया है, पर अभी तो मैं फिर से फ़ोन एडिक्शन में बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहूँगी क्योंकि मैंने देखा हुआ है, तो अभी हम इसके सॉल्यूशंस की तरफ भी बढ़ेंगे।
1: सबसे ज़रूरी बात जो हमें करनी चाहिए
2: जी,
1: अगर बिल्कुल प्रैक्टिकल बताऊँ ना, पहली चीज़ हमें ये करनी चाहिए जो मैं करता हूँ कि एक दिन में मैं दो घंटे का ब्रेक लेता हूँ कि मुझे मोबाइल यूज़ नहीं करना है।
2: ओके।
1: और एक हफ्ते में एक दिन का, जैसे मंडे को हम एक इनिशिएटिव करते हैं कि नो इंटरनेट मंडे, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक मुझे इंटरनेट यूज़ नहीं करना है, ठीक है। अब बहुत से लोगों का क्या आता है, मोबाइल काम होता है, मेल होता है, ठीक है आप कीजिए, बट आई विल नॉट चेक सोशल मीडिया, कैन आई डू इट और नॉट, मैं ये कर सकता हूँ या नहीं, ये बहुत प्रैक्टिकल टिप है, आपको इतना अच्छा लगेगा करने के बाद और आपको समझ आएगा कि ये इशू था मेरी लाइफ में, है ना। इसलिए दो घंटे का बीच में एक दिन का डिजिटल फास्टिंग, है ना, डिजिटल डिटॉक्स जरूर करें। और दूसरा, जितना हो सके हम नेचर में टाइम स्पेंड करें, जितना सुबह सुबह जाएंगे, पार्क में जाएंगे, बेयर फुट नंगे पांव चलेंगे, जितना सनलाइट को अपने अंदर लेंगे, तो क्या होगा, हमारी स्लीप साइकिल अच्छी होगी और जो डोपामीन है वो अच्छी जगह से रिलीज होगा, हेल्दी रिलीज होगा। तो आप अपने आप देखना, आप सुबह एक घंटा एक्सरसाइज कर लीजिए, वॉक कर लीजिए, आपका मोबाइल देखने का मन ही नहीं करेगा, आप ये ट्राई करके देखना
2: जी, बिल्कुल।
1: स्पोर्ट्स खेलिए, कुछ बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल, योगा, कुछ भी ऐसा कीजिए जिससे आप इन्वॉल्व हों, बाहर ज़्यादा रहे, चार दीवारी में कम से कम हमें रहना है। और जैसा आपने कहा कि सर्व कीजिए, सेवा कीजिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ज्वाइन कीजिए, कोई कम्युनिटी के साथ ज्वाइन कीजिए, चाहे वो बच्चों का ध्यान रखने वाले हों, चाहे वो महिलाओं का ध्यान रखने वाले हों, चाहे वो एडिक्शन का ध्यान रखने वाले हों, चाहे वो मेडिटेशन का ध्यान रखने वाले हों, किसी ना किसी काम में अपने आप को अच्छे से इन्वॉल्व कर लीजिए, है ना। ऐसे बहुत से मिलेंगे, आप करने वाले बनिए, वॉलंटियर्स तो सबको चाहिए होते हैं, ऑनलाइन भी आप कर सकते हो, आप देखना बहुत बहुत लाइफ डिफरेंट हो जाए
2: जी, उसमें कितना पुण्य भी जमा होता है हमारा, वो उसमें से फायदा हो रहा है।
1: यस यस, इनडायरेक्टली बहुत पुण्य हमारा जमा होता है। और एक बात मैं कहूँगा कि स्ट्रेस फ्री रहिए, अगर आप सोशल मीडिया एडिक्शन से बचना चाहते हो, क्योंकि आप ध्यान देना, कब मन करता है ये सब चीजें देखने का, जब स्ट्रेस हो जाता है, अंदर खालीपन अकेलापन फील होता है, इसलिए बहुत खुश रहना है, लाइट रहना है, मजे में रहना है, और ये रियल लाइफ को एंजॉय करना है। जब आप पार्क में वॉक कर रहे हैं ना, तो ये अपने आप को याद दिलाना जरूरी है कि ये रियल लाइफ है, इसको मुझे एंजॉय करना है, ना कि वो सोशल मीडिया वाली लाइफ।
2: जी, वो बहुत अच्छा लगता है, बहुत रिलैक्सिंग लगता है जब नेचर में जाते हैं, खुली हवा में ऐसे लंबी सांस लेके, इतना अच्छा
1: वो
2: लगता
1: असली
2: है,
1: लाइफ है,
2: बहुत अच्छा लगता है।
1: आपको बार बार बताना पड़ेगा, ऐसे बहुत सी सेल्फ टॉक और मेडिटेशन, ये वो तो अल्टीमेट है, वो करना पड़ेगा, खुद से बात करनी पड़ेगी, बार बार समझाना पड़ेगा कि मैं अपने आप में कंप्लीट हूँ, भरपूर हूँ, मुझे बाहर की चीज़ें, बाहर की नॉलेज, बाहर की मूवीज़, बाहर की इन्फॉर्मेशन कंप्लीट फील नहीं करवा सकती, मैं अपने आप में कंप्लीट हूँ, है ना। और जैसे न्यूज़ की बात कर रहे थे, मुझे नहीं जानना किसी की लाइफ में इधर उधर क्या हो रहा है, है ना। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो वो अननेसेसरी सुनते हैं, नहीं जानना मुझे कि IPL में कौन जीत रहा है ना। ऐसे थोड़ा अपने आप को समझाना पड़ेगा कि मुझे नहीं देखना दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है। मैं इंस्टाग्राम पे हूँ, मैं सोशल मीडिया पे हूँ, पर मैं किसी भी अकाउंट को देखता भी नहीं हूँ। मैं मजाक में कहता हूँ कि मेरे अकाउंट में सिर्फ आउटगोइंग है, इनकमिंग नहीं है। थोड़ा रूल बनाना पड़ेगा कि मुझे नहीं देखना किसी की लाइफ में क्या चल रहा है, जो बात मेरे काम की नहीं है मुझे देखना ही नहीं है। ऐसे बात अपने आप से करनी पड़ेगी, और मेडिटेशन में अपने आप को हीलिंग करना, क्योंकि हीलिंग नहीं होती तभी ये सब चीज़ें होती हैं ना। तो अच्छे से मेडिटेशन सीख कर अपनी हीलिंग करेंगे, अपने अंदर खालीपन अकेलापन दूर करेंगे, तो ये बाहर से ढूंढना हम बंद कर देंगे।
2: जी, इसके अलावा आपके पास और कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हैं?
1: और
2: मेरे पास है एक्चुअली, मैंने भी
1: बताइए।
2: जी, हमें जैसे कि मैंने कल भी बताया था कि हम अगर हमें बहुत आलस हो रहा है या हम टाल रहे हैं, हमें जिस चीज़ में खुशी मिलती है हम उसको प्रायोरिटाइज करते हैं, उसको करते हैं कि इसमें मिल रही है यार, ये मेरे को पढ़ाई नहीं करनी है, तो वो मैंने जैसे बोला था 5 मिनट रूल वाला, वो हम कर सकते हैं, उससे भी हम फ़ोन की लत से बाहर आ सकते हैं। वो एक बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ हम कर सकते हैं। आपके जो सॉल्यूशंस थे वो तो बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत अच्छे, नेचर में टाइम स्पेंड करना, एक्सरसाइज करना, उसमें ये भी हम ऐड कर सकते हैं 5 मिनट रूल्स, और फ़ोन फ्री एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। हमने एक्सरसाइज कर ली, कुकिंग कर ली, हमारी हॉबीज़ होती हैं, और क्रिएटिव चीज़ें कर ली, क्राफ्ट कर लिया। हमने एक बार इसका सेशन भी लिया था कि हम कितनी सारी चीज़ें बना सकते हैं घर में, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट बना सकते हैं, बॉटल में से, आइसक्रीम स्टिक्स में से, कितना हमने इस पर डिस्कशन भी किया था। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं तो वैसे यूट्यूब पे भी बहुत चीज़ें मिल जाएंगी, और हम इसको बेच भी सकते हैं, ऐसे काफ़ी हम क्रिएटिव चीज़ें कर सकते हैं। और हम म्यूज़िक तो सुन सकते हैं, म्यूज़िक के लिए हम फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप फ़ोन यूज़ करो, लेकिन अच्छी चीज़ों के लिए। फ़ोन यूज़ करने के लिए मना बिल्कुल नहीं है।
1: हाँ, फ़ोन यूज़ करो, फ़ोन आपको यूज़ ना करे, बस ये ध्यान रखना है।
2: जी, और अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा ही हो रहा है, हम नहीं आ पा रहे इससे बाहर, तो हम किसी प्रोफेशनल की भी सहायता ले सकते हैं।
1: बिल्कुल, ये ज़रूरी है। आपको लग रहा है कि स्टक हो, तो किसी ना किसी से गाइडेंस लेना बहुत ज़रूरी है।
2: जी, और हम अपने फ्रेंड्स को या फिर फैमिली में किसी को बोल सकते हैं कि वो हमें चेक करें कि हम फ़ोन का कितना यूज़ कर रहे हैं, और हमें रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। और हम ऐसे ऐप्स भी आते हैं जो ब्लॉक करते हैं कोई भी ऐप, हमें अगर ज़्यादा हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, तो हमें लगता है कि हमें पता है कि हम इसको बहुत यूज़ कर रहे हैं, हमें इसकी आदत छोड़नी है, तो हम ऐसा ऐप होता है जो ब्लॉक करता है इन ऐप्स को, अगर हमने खोला तो वो तुरंत उसको बंद कर देता है। तो ऐसे ऐप्स भी हम इंस्टॉल कर सकते हैं, वो बहुत ही प्रैक्टिकल है, और ऐसे काफ़ी सॉल्यूशंस हैं, इनको हम कर सकते हैं।
1: मेन सॉल्यूशन जो हमें ट्राई करना है कि मंडे को इंटरनेट नहीं यूज़ करना, वो ट्राई करके देखिए, फिर बहुत बहुत चेंज आएगा और बहुत मज़ा आएगा।
0: जी बिल्कुल, तो इन्हीं सभी बातों के साथ यहीं पर रुकना चाहेंगे, फिर मुलाकात होगी अगली कड़ी में। फैक्ट चेक्स के कुछ रूल्स हैं, कुछ टूल्स हैं, वो आपको बताएंगे, लेकिन अगले कड़ियों में बताएंगे। तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM। अगला कार्यक्रम है उड़ान मोना जी के साथ। मोनिका एंड हितेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत
2: थैंक यू।

0: गुड इवनिंग नमस्ते, रेडियो मधुबन 107.8 एफएम में आप जुड़ चुके हैं आपके फेवरेट कार्यक्रम उड़ान के साथ। मैं हूँ आपकी दोस्त मोना, मेरे साथ है
1: रूहानी।
0: हम दोनों साथी लेकर आएंगे आज विश्व पर्यावरण दिवस पर कुछ प्यारी कविता कहानी, और साथ ही साथ पूछा जाएगा आपसे सवाल और होमवर्क भी हम आप तक पहुँचाएंगे। तो हमारे साथ जरूर जुड़े रहिएगा, सुनते रहिएगा,
1: मुस्कुराते रहिएगा।
2: क्या आप जानते हैं साइबर फ्रॉडस्टर्स फिशिंग ईमेल को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि वे वास्तविक दिखते हैं, लेकिन अगर आप उन ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक करते हैं तो स्कैमर्स धोखाधड़ी कर सकते हैं। कभी भी असत्यापित लिंक पर क्लिक ना करें।

0: होता है?
1: अरे टिकुनी पता क्या, इसमें पता है लोग धुएं में अपनी फिक्र उड़ा देते। अरे गाना नहीं सुना क्या तूने?
2: हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया।
0: अच्छा तो फिर मेरे नंबर कम आए तो क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ?
1: अरे कोई भी कर सकता है, तंबाकू तो बड़ा ही कूल होता है।
3: ऐसी बातें बचपन में होती हैं, युवावस्था में या और बड़े होने के बाद भी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तंबाकू या धूम्रपान व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य के साथ शारीरिक सेहत पर बहुत बुरा असर डालता है। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा इत्यादि के सेवन से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। धूम्रपान करने से धमनियां कमजोर होने लगती हैं और कोरोनरी हार्ट डिजीज या स्ट्रोक भी हो सकता है। सलाह लीजिए डॉक्टर की और हिम्मत बढ़ाइए अपनों की। रेडियो मधुबन द्वारा जानकारी जनहित में जारी।
4: वेलकम बैक दोस्तों, रेडियो मधुबन 107.8 एफएम में आप जुड़ चुके हैं उड़ान के साथ। और प्रकृति का उपहार विश्व पर्यावरण दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा सकारात्मक पर्यावरण कार्य हेतु दुनिया भर में मनाया जाने वाला सबसे बड़ा उत्सव पर्यावरण और जीवन को अन्योत्रशी संबंध में, यानी एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए हमें अलग से यह दिवस मनाकर पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन और विकास का संकल्प लेने की आवश्यकता पड़ी। चिंताजनक भी है ये कि हम जिस तरीके से पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। पर्यावरण का प्रदूषण की समस्या आज की नहीं, काफी पुराने समय से शुरू हो गई। 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्टॉकहोम में विश्व भर के देशों को पहली बार एकत्र करके ये पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया। 119 देशों ने भाग लिया और पहली बार एक ही पृथ्वी का सिद्धांत मान्य है। इसी सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का जन्म भी हुआ और तब से हर वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस विशेष रूप से मनाया जाता है।
5: इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाते हुए राजनीतिक चेतना जागृत करना और आम जनता को प्रेरित करना था। उक्त गोष्ठी में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने पर्यावरण की बिगड़ती स्थिति एवं उसका विश्व के भविष्य पर प्रभाव विषय का व्याख्यान दिया था। पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में यह भारत का प्रारंभिक कदम था। तभी से हम प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते आ रहे हैं।
4: चलिए दोस्तों, इसके साथ साथ एक गीत भी हम आप तक पेश कर रहे हैं।

पापा हमारे जंगल कहाँ गए, पानी इतना गंदा क्यों हो गया, ये मासूम सवाल है चेतावनी, क्या हम देंगे सही कहानी। आज

0: वेल दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और एक प्यारी सी कविता धरा की पुकार लेकर आते। कटते जंगल, सिमटती हरियाली, आसमान में छाई जहरीली लाली।
1: स्वार्थ में डूबा आज का इंसान भूल गया है अपना ही विज्ञान।
0: सांसों की डोरी अब टूटने लगी है, प्रकृति की ममता भी रूठने लगी है।
1: आओ सब मिलकर ये संकल्प लें, मिट्टी पानी और हवा को संभाल लें।
0: एक पेड़ हम भी आज लगाएं, इस धरती को फिर से स्वर्ग बनाएं।
1: पर्यावरण का जो हम मान बढ़ाएंगे, तभी एक सुरक्षित कल हम पाएंगे।
0: बिल्कुल, एकदम सत्य बात है। एक सुरक्षित कल के लिए पर्यावरण को अच्छा बनाना आवश्यक है। और आज का सवाल आपके लिए है, भारत का कौन सा शहर सबसे साफ सुथरा माना जाता है? क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? आपके सामने ऑप्शन है ए भोपाल, बी इंदौर, सी आबू रोड। सही जवाब झटपट देना 9414151415 पर देना। सुनते रहो,
1: मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, रेडियो मधुबन में बहुत बहुत स्वागत है। कौन बोल रहे सर?
1: ओम शांति, गुड इवनिंग दीदी।
0: सुभाष जी, कैसे हैं आप? बाप रे, हम तो कितने दिनों से आपको याद कर रहे थे। सुभाष जी, आपकी तबीयत कैसी है और आप कैसे हैं और इतने दिनों बाद क्यों कॉल करें?
1: सही है बात दीदी आपकी, मैं भी 4-5 दिन से कोशिश कर रहा हूँ आपसे जुड़ने का
0: जी।
1: पर कुछ ना कुछ वैसे आ रहा था।
0: ओके ओके ओके,
1: देखो मैं बताता हूँ। और आज का प्रोग्राम विश्व पर्यावरण दिन पर आपने जो जानकारी और रोहिणी के साथ गीत कविता सुनाई अच्छी लगी।
0: शुक्रिया।
1: हमेशा की तरह। और देखो, मैंने रेडियो मधुबन द्वारा जो बहुत ही अच्छे प्रोग्राम सुनाए जा रहे नए नए, जैसा अभी राठौड़ परिवार की कहानी
0: जी, जी, जी,
1: मैंने सुनी, दोनों तीन शायद 2-3 पार्ट हुए, तीनों पार्ट मैंने सुने जिसमें आपका ही पार्ट दीदी आज मोना जी और हमारे बाल कलाकार शायद रोहिणी या अमीक्षा का भी पार्ट है,
0: रूहानी का पार्ट है उसमें।
1: मम्मी इतने जल्दी क्यों हमको सुबह सुबह उठाती है, अभी तो 6 बजे। तो ये प्रोग्राम और सभी का पार्ट बहुत ही अच्छा लगा दीदी। और सभी को नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: और आज का सवाल का जवाब इंदौर है।
0: इंदौर है, ओके, थैंक यू। नमस्कार। हाँ। नमस्कार, बहुत अच्छा लगा।
1: नमस्ते।
0: नमस्ते।
1: नमस्ते।
0: वेल दोस्तों, हमारे बीच खास थे सुभाष जी, इस कार्यक्रम के दौरान वो जुड़े और आज के सवाल का जवाब भी दिया। अंतिम समय जब कोई नहीं जाएगा, साथ एक वृक्ष जाएगा, अपनी गौरैयों गिलहरियों से बिछुड़कर साथ जाएगा एक वृक्ष, अग्नि में प्रवेश करेगा वही मुझसे पहले।
2: कितनी लकड़ी लगेगी शमशान की टाल वाला पूछेगा, गरीब से गरीब भी साथ मन तो लेता ही है।
0: लिखता हूँ अंतिम इच्छाओं में कि बिजली के दाह घर में हो मेरा संस्कार, तभी मेरे बाद एक बेटा और एक बेटी के साथ एक वृक्ष भी बचा रहे इस संसार में। बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जिस प्रकार वैसे भारतीय संस्कृति में जो जो अग्नि दाह का जो एक कर्म है वो बिल्कुल लकड़ियों के साथ ही जुड़ा हुआ है, लेकिन धीरे धीरे चूल्हे एक सिस्टम हमारे भारत देश में, प्रगतिशील भारत देश में ये लागू हुआ है, जिससे बहुत सारे पेड़ बच भी जाते हैं, पर आज भी काफ़ी बड़ी संख्या में इसी नियम का ही पालन होता है। खैर, आगे बढ़ते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस है विशेष तौर पर, और 19 नवंबर 1986 से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुए, तब तक उसके बाद जल, वायु और भूमि, इन तीनों से संबंधित कारक तथा मानव पौधों साथ ही साथ सूक्ष्म जीव, अन्य जीवित पदार्थ आदि पर्यावरण के अंतर्गत आने लगे। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं।
2: जैसे पहला है, पर्यावरण की गुणवत्ता के संरक्षण हेतु सभी आवश्यक कदम उठाना।
0: दूसरा, पर्यावरण प्रदूषण के निवारण के नियंत्रण और उपशमन हेतु राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की योजना बनाना और उसे क्रियान्वित करना।
2: तीसरा है, पर्यावरण की गुणवत्ता के मानक निर्धारित करना।
0: चौथा, पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित अधिनियमों के अंतर्गत राज्य सरकारों, अधिकारियों और संबंधित के काम में समन्वय स्थापित करना।
2: पांचवा है ऐसे क्षेत्रों पर परिसीमन करना जहां किसी भी उद्योग की स्थापना अथवा औद्योगिक गतिविधियों संचालित न किए जा सके आदि आदि। उक्त अधिनियम का उल्लंघन करने वालों के लिए कठोर दंड का प्रावधान है।
0: चलिए दोस्तों, इसके साथ साथ हमारे साथ दूसरे श्रोता भी जुड़ चुके हैं। नमस्कार।
3: ओम शांति दीदी।
0: नमस्कार सर, कैसे हैं आप? कौन बोल रहे हैं?
3: बढ़िया है।
0: कौन बोल रहे हैं?
3: ज्ञानेंद्र यादव बोल रहा हूँ, अलीगढ़ यूपी से।
0: जी शुक्रिया सर, कार्यक्रम सुन रहे हैं आपको। कैसा लग रहा है सर, आज विशेष पर्यावरण दिवस है और आपको बहुत बहुत बधाई। जी जी जी जी, शुक्रिया कॉल करने के लिए। और आज का सवाल जो है खास सुन लीजिए ज्ञानेंद्र जी, सवाल है कि भारत का सबसे साफ सुथरा शहर या जिसे हम कह सकते हैं क्लीनेस्ट सिटी

0: आओ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू. नमस्कार,
1: ओम शांति.
0: ओम शांति. हमारे अलीगढ़ से एक साथी जो कार्यक्रम सुन रहे थे लाइव और कार्यक्रम के सवालों का जवाब भी दिया. आगे बढ़ते हैं और एक सचमुच इस गर्मी के मौसम में ये गीत सूरज की गर्मी से सुना देते अपने साथियों को. सुनते रहो,
2: मुस्कुराते रहो.

नरेंद्र मोदी जी के मिशन लाइफ के संकल्प को आप सजग रहकर मजबूती दे सकते हैं और रोजाना के कामकाज में कुछ आसान उपायों से अपना योगदान दे सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। पौधों, फर्श और वाहनों आदि में पानी के उपयोग के लिए होस पाइप या पाइप के बजाय बाल्टी का उपयोग करें। एसी और आरओ से निकले पानी का पुनः उपयोग करें।

0: जल इकाइयों को रिचार्ज करने के काम को बढ़ावा दें और औरों को भी प्रेरित करें। सब्जियों को साफ करने के बाद पानी का पुनः उपयोग पौधों को पानी देने या ऐसे किसी अन्य कार्यों के लिए करें। घर, स्कूल और कार्यालयों में वाटर हार्वेस्टिंग बॉडीज का निर्माण करवाएं। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अपनाइए। मिशन लाइफ से दुनिया बेहतर बनाइए।
1: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

तारो भरी ना मैंने तो दिन का दीपक जलाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है।

0: अंधेर नगरी नगर के एक दृश्य में कुछ साधु आपस में बात करते हुए।
1: बच्चा नारायण दास, ये नगर तो दूर से बड़ा ही सुंदर दिखाई पड़ता है। अरे जरा देख, कुछ भिक्षा मिले तो भगवान को भोग लगाए।
2: गुरुजी महाराज, नगर तो बहुत ही सुंदर है, पर भिक्षा भी सुंदर मिले तो बड़ा आनंद हो।
1: बच्चा गोवर्धन दास, तू पश्चिम की ओर जा और नारायण दास पूर्व की ओर जाएगा।

0: क्यों भाई बनिए, आटे का क्या भाव है?
1: टके सेर।
0: और चावल?
1: टके सेर।
0: और चीनी?
1: चीनी भी टके सेर।
0: क्यों भाजी का क्या भाव है?
2: बाबा जी टके सेर।

0: भाई हलवाई, मिठाई किस भाव देते हो?
1: 100% से।
0: वाह वाह, बड़ा आनंद है, सचमुच टके से।
1: हाँ बाबा जी, सचमुच सब ही टके शेर। यहाँ सब चीजें टके शेर ही बिकती हैं।
0: क्यों बच्चा, इस नगरी का क्या नाम है?
1: अंधेर नगरी।
0: वाह वाह वाह, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा।
1: तो बाबा कुछ लेना हो तो ले जाओ।
0: बच्चा मांग कर 7 पैसे लाया हूँ, 3.5 शेर मिठाई दे दो।

0: बच्चा गोवर्धन दास क्या भिक्षा लाए? गठरी तो बहुत भारी मालूम पड़ती है।
1: गुरुजी महाराज 7 पैसे भीख में मिले थे, उससे 3.5 शेर मिठाई मोल ली है।
0: अरे बच्चा, ये कौन सी नगरी है?
1: अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा।
0: तो बच्चा, ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टके शेर भाजी और टके शेर खाजा बिकता है।
1: गुरुजी, ऐसा तो संसार भर में कोई देश ही नहीं है। 2 पैसे पास रहने से मजे में पेट भरता है, मैं तो इस नगरी को छोड़कर नहीं जाऊंगा।
0: देख बच्चा, पीछे पछताएगा। मैं तो इस नगर में अब एक क्षण भी नहीं रहूंगा। देख, मेरी बात मान, नहीं तो पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कहे देता हूँ कि कभी संकट पड़े तो याद करना मुझे।

0: बोलो क्या हुआ?
1: महाराज, कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। दुहाई है महाराज, न्याय हो।
0: अच्छा, तो कल्लू बनिए को पकड़ लाओ। क्यों बनिए, इसकी बकरी क्यों दबकर मर गई?
1: महाराज, मेरा कुछ दोष नहीं, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी।
0: अच्छा, इस कल्लू को छोड़ दो और कारीगर को पकड़ लाओ। क्यों कारीगर, इसकी बकरी कैसे मर गई?
1: महाराज, मेरा कुछ कसूर नहीं, चूने वाले ने चूना ही ऐसा खराब बनाया कि दीवार गिर पड़ी।
0: ये बात है। अच्छा, तो चलो उस चूने वाले को बुलवाओ। क्यों चूने वाले, तुमने खराब चूना क्यों दिया?
2: महाराज, मेरा कुछ दोष नहीं, भिश्ती ने चूने में पानी ज्यादा डाल दिया, इसी से चूना कमजोर हो गया होगा। हाँ।
0: अच्छा, अब समझ आई बात, तो चलो उस भिश्ती को लाओ। क्यों भाई भिश्ती, इतना पानी क्यों डाल दिया तूने कि इसकी दीवार गिर पड़ी और बकरी दब गई?
3: महाराज, गुलाम का कोई कसूर नहीं, कसाई ने मश्क इतनी बड़ी बना दी थी कि उसमें पानी ज्यादा आ गया।
0: अच्छा, तो चलो कसाई को लाओ और इस भिश्ती को निकालो यहाँ से। क्यों भाई कसाई, तुमने ऐसी मशक क्यों बनाई?
1: महाराज, गडरिया ने टके शेर पर ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची कि मशक बड़ी बन गई।
0: अच्छा, चलो कसाई को निकालो और अब गडरिया को लेकर आओ। क्यों भाई गडरिये, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची तूने?
1: महाराज, उधर से कोतवाल साहब की सवारी आ रही थी, इस कारण मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल ही नहीं किया, मेरा कुछ कसूर नहीं।
0: चलो अच्छा, इसको निकालो अब और कोतवाल को पकड़ कर लाओ। क्यों भाई कोतवाल, तूने ऐसी शानदार सवारी निकाली कि गडरिया ने घबरा कर बड़ी भेड़ बेच दी हैं?
1: महाराज, मैंने कोई कसूर नहीं किया, मैं तो शहर के इंतजाम के लिए जाता था।
4: ये तो बड़ा गजब हुआ, ऐसा ना हो कि ये बेवकूफ इस बात पर सारे नगर को फूंक दे या फांसी दे दे।
5: नहीं, तुमने इतनी धूम से सवारी क्यों निकाली?
0: हाँ, ये नहीं, तुमने ऐसी धूम से सवारी क्यों निकाली जिसका परिणाम ये हुआ कि बकरी मर गई?
1: महाराज, महाराज।
0: कुछ नहीं महाराज, महाराज, ले जाओ कोतवाल को और शीघ्र फांसी पर चढ़ा दो।
1: महाराज। गुरुजी ने हमको नाहक यहाँ रहने को मना किया था, माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या, हम किसी राजकाज में थोड़े ही है कि कुछ डर हो।
0: चल जरा चल, मिठाई खाकर खूब मोटा हो गया है, आज मजा मिलेगा तुझे।
1: ये आफत कहाँ से आई? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़ते हो?
0: आप तो बड़े मोटे हैं, इसलिए फांसी लगेगी आपको।
1: मोटा होने से फांसी? अरे अरे, ये कहाँ का न्याय है? अरे, साधुओं से हंसी नहीं की जाती बच्चा।
0: जब सूली पर चढ़ जाओगे तब मालूम होगा कि फांसी है या हंसी। सीधी तरह चलते हो क्या, घसीट कर ले चलें।
1: बात क्या है कि एक साधु आदमी को नाहक फांसी पर चढ़ाना चाहते हो?
0: बात ये है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था, जब फांसी देने को उसे ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा निकला, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं। हम लोगों ने महाराज से अर्ज की, इस पर हुक्म हुआ कि एक मोटा आदमी पकड़ कर फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मरने के अपराध में किसी न किसी को सजा होना जरूरी है, नहीं तो सच्चा न्याय ना होगा।
1: हे प्रभु।

बाप रे, मुझ पे कसूर को क्यों फांसी दे रहे हैं? अरे भाइयों, कुछ तो धर्म का ख्याल करो। अरे मुझे छोड़ दो। हाय हाय हाय, मैंने गुरुजी का कहना ना माना, उसी का फल है। गुरुजी

0: अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी ये क्या दशा है?
1: गुरुजी, दीवार के नीचे बकरी दब गई, जिसके लिए मुझे फांसी दी जा रही है। गुरुजी, बचाइए मुझे, बचाइए।
0: अरे बच्चा, मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था कि ऐसे नगर में रहना ठीक नहीं, पर तूने मेरी बात नहीं सुनी।
1: मैंने आपका कहा नहीं माना, उसी का फल मिला मुझे। बचाइए गुरुजी, बचाइए।
0: कोई चिंता नहीं, नारायण सब ठीक करेंगे। अरे सुनो, मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। तुम लोग जरा चलो किनारे हो जाओ।
2: महाराज, हम हट जाते हैं, आप बेशक उपदेश दीजिए।
1: तब तो गुरुजी हम अभी फांसी पर चढ़ेंगे।
0: अरे नहीं बच्चा, हमने इतना समझाया, नहीं मानता। हम बूढ़े हुए, हमको चढ़ने दो फांसी।
1: स्वर्ग जाने में बूढ़ा जवान क्या, आप सिद्ध हैं गुरुजी, आपको गति अगति से क्या। मैं चढ़ूंगा फांसी पर, भाइयों चढ़ाओ फांसी पर।
2: भाई ये क्या मामला है, कुछ समझ में नहीं आता।
0: ये क्या गोलमाल है?
3: महाराज, चेला कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा, गुरु कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा, कुछ नहीं मालूम पड़ता, क्या बात है?
0: बाबा जी बोलो, आप फांसी पर क्यों चढ़ना चाहते हैं?
4: महाराज, इस समय ऐसी शुभ घड़ी है कि जो मरेगा सीधा स्वर्ग जाएगा।
5: तब तो हम ही फांसी चढ़ेंगे।
1: नहीं, हमको हुक्म है, हम फांसी चढ़ेंगे। भाइयों जल्दी करो, मुझे फांसी पर चढ़ाओ।
6: हम लटकेंगे, हमारे कारण ही तो दीवार गिरी थी।
0: चुप रहो सब लोग, राजा के जीते जी कौन स्वर्ग जा सकता है? हमको फांसी चढ़ाओ, चलो जल्दी करो, आओ जल्दी करो।
7: मूल्य, अनुभव, समझ, लालच, बुरी बला, यथा राजा।

नमस्कार, मैं हूं सुरेश कुमार जांगड़ा, हरियाणा पुलिस सेवा सुरक्षा सहयोग। हरियाणा पुलिस व होमगार्ड आपकी सेवा में हर समय तत्पर है। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: दोस्तों आज का होमवर्क, उससे पहले आज का सवाल. सवाल था कि भारत का सबसे क्लीनेस्ट सिटी कौन सा है. जी हाँ, सबसे साफ सुथरा शहर कौन सा है. आपके सामने हमने ऑप्शन रखा था, ए भोपाल, बी इंदौर, सी
1: आबू रोड.
0: झटपट जवाब देना 9414151415 पर देना. और होमवर्क है,
1: अब हम टिंगरी के विशाल मैदान में थे जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती थी. उसी पहाड़ी का नाम है टिंगरी समाधि गिरी. आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे. कपड़े की पतली पतली चीरी बत्तियां के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे.
0: वो अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे. मैंने सोचा ये तो हफ्ते भर उधर ही लगा देंगे. मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ. इसके लिए मैं तुम्हें लासा पहुंचाकर रुपए दे दूंगा.
1: सुमति ने स्वीकार कर लिया. दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई न मिला. सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे से तेज धूप में चलना पड़ रहा था. तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती थी. यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढांक ले तो गर्मी खत्म हो जाती है.
0: आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं. ललाहट धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है. फिर हमने पीठ पर अपनी चीजें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े.
1: यद्यपि सुमति के परिचित टिंगरी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा. तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी थी. इन जागीरों की बहुत ज्यादा हिस्सा मठों विहारों के हाथ में है.
0: अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीर कुछ खेती खुद भी करता है, जिसके लिए मजदूर बेघर में मिल जाते हैं. खेती का इंतजाम देखने के लिए वहां कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता है.
1: शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नम से बड़े भद्र पुरुष थे. वह बहुत प्रेम से मिले. हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था. यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर बुद्ध वचन अनुवाचन की हस्तलिखित 103 पोथियां रखी हुई थी. मेरा आसन भी वहीं लगा.
0: वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी. एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं रह रही होगी. सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा. मैं अब पुस्तकों के भीतर था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया.
1: दूसरे दिन वह गया. मैंने समझा 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए. टिंगरी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था. हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदा लेकर चल पड़े.
0: जी दोस्तों, आज का होमवर्क इतना ही. सोमवार को मिलने का वादा करते हैं, लेकिन साथ में जाते जाते आज के सवाल का जवाब भी जरूर देते हैं. सवाल का जवाब, जी हाँ, सबसे क्लीनेस्ट सिटी भारत का कौन सा है. भाई मुझे तो आबू रोड लगता है.
1: नहीं,
0: तुमने सही कहा. हमारा आबू रोड सचमुच अच्छा है, लेकिन लोगों की आदत खराब है. लोगों को कचरा गिराने में बहुत आनंद आता है. भाई यथार्थ स्थान कचरा गिराया जा सकता है, लेकिन बहाना गिराकर बिल्कुल एक झटके में गिरा देते हैं. और सबसे बड़ी बात है, यदि गीला कचरा है तो गीले कचरे में डालिए, या फिर आपके आसपास गाय वगैरह है उन्हें खिला दीजिए, लेकिन सूखे कचरे को सही जगह डालने की जरूरत है. और सोचिए, जब धूल धक्कड़ उड़ता है तो मुंह पे हमारे ही तो आता है, तो साफ रखना अनिवार्य है। तो क्या भोपाल है साफ क्लीनेस्ट सिटी?
1: नहीं।
0: तो
1: ऑप्शन बी है इंदौर।
0: जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी इंदौर सिटी को सबसे साफ सिटी माना गया है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, सोमवार को जरूर मिलेंगे ठीक शाम 6 बजे। तब तक के लिए उड़ान से कहना चाहेंगे गुड बाय।
1: सुनते रहो, मुस्कुराते रहो,
0: आपका शनिवार और रविवार बेहतर बीते। साथ ही साथ हमारा कार्यक्रम घर ऑन एयर सुनना ना भूले। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए,
1: रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा आंचल यानी माय विलेज माय एरिया और अपना आंचलिक भाषा लोक भाषा में कहते हैं मारो गांव मारो अंचल। सही में नाम जब सुनते प्रोग्राम का कार्यक्रम का नाम मेरा गाँव मेरा अंचल, जिस गाँव और अंचल में हमें सब कुछ मिलता है उस चीज़ को कभी भूल नहीं पाते। और गांव तो स्वर्ग जैसे, हम हर एपिसोड में हर प्रोग्राम में गांव का महिमा करना ही चाहिए क्योंकि उसी गांव और अंचल को लेकर ही हमारा विश्व बनता है। तो आज इस कार्यक्रम को सजाने के लिए आपको समझ में आ गया होगा, आज है विश्व पर्यावरण दिवस यानी 5 जून। हर साल की तरफ इस साल का जो सरकार का जो थीम है वह विश्व का जो थीम है पर्यावरण दिवस को लेकर विश्व भर मनाते हैं। तो आज रेडियो मधुबन भी क्यों पीछे रहेगा, और इस कार्यक्रम को हम हर संडे को पर्यावरण का ऊपर में हम बातचीत करते रहते हैं, लेकिन पर्यावरण दिवस स्पेशल में एनवायरमेंट डे स्पेशल में आज मुखातिब करने के लिए हमारा जो पर्यावरणविद, और आप उनको भलीभांति जानते हैं, शिक्षा जगत में रहते हुए CBO पोस्ट से सेवानिवृत्त होने के बाद ईश्वरीय विश्वविद्यालय में अपना सहयोग दे रहे, निस्वार्थ स्वइच्छा से दे रहे हैं, ये हमारे लिए गर्व का बात है क्योंकि कम्युनिटी रेडियो कम्युनिटी के लिए। तो कम्युनिटी से उभर कर जब आते हैं यहाँ के जो गिने चुने लोग आ पाते हैं तो हमें खुशी होता है। तो आज ये आज हमारा कार्यक्रम को सजाने के लिए श्रीमान भूपाल राम पुरे जी को धन्यवाद देते हैं, उनको स्वागत करते हैं ग्रामवासियों की तरफ से, अंचलवासियों की तरफ से और खासकर रेडियो मधुबन टीम के तरफ से, ईश्वरीय विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से। तो आज विश्व पर्यावरण दिवस के लिए सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, और हमारा खासकर पर्यावरणविद जो इस कार्यक्रम की इस मुहिम को चलाते हैं भिन्न भिन्न तरीका से, उनको भी सलाम करते हैं क्योंकि एक जनहित में एक देश हित में विश्व हित में अपना अंगुली देना ये कम बात नहीं है क्योंकि एक कदम हमारा है और हजार कदम सभी का मिलता है। तो आज इस कार्यक्रम को सजाने के लिए भूपाल राम पुरोहित जी को स्वागत करते, सर आपको स्वागत करते, आपको पहले आपका स्वागत करते हुए आपको विश्व पर्यावरण दिवस में बहुत सारा धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं क्योंकि आज एनवायरमेंट डे। तो इस कार्यक्रम को रूपरेखा क्या होगा और इसका परिभाषा क्या है और इसका इतिहास क्या है, हमारा श्रोता मित्र तो हमेशा आपको सुनते हैं लेकिन आज खास ये जो एपिसोड जो आज का कार्यक्रम पर्यावरण क्या है क्यों है और कब से और इससे हमें कैसे प्रकृति को बचाना ये सब को जानेंगे, लेकिन पहले हमें उनका परिचय लेंगे और परिचय का साथ साथ व्हाट इज एनवायरमेंट डे और इसका हिस्ट्री। सर आपको स्वागत करते हैं, आप अपना परिचय का साथ आज का प्रश्न का सभी को कुछ लाभ मिले।
1: ओम शांति। नमस्कार भाई साहब, आज विश्व पर्यावरण दिवस है और इसके लिए आपने मुझे जिस तरह से अभी याद किया है बहुत बहुत खुशी की बात है कि पर्यावरण पर चर्चा हम प्रति रविवार रेडियो मधुबन के माध्यम से और आपके द्वारा जो आंचलिक क्षेत्र है उसमें जा करके इस पर जो जागरूकता कार्यक्रम है उसके अंदर मैं भी सहयोग करता रहता हूं, और उस पर हमने हमारे गांव में इस प्रकृति विशेष के लिए किस तरह से परिंदों की व्यवस्था की है सर, किस तरह से ये हरे भरे पेड़ हमने बनाए हैं और किस तरह से हमारा पूरा गांव लग करके यहाँ जल की व्यवस्था कर रहा है, किस तरह से लोग बाल्टियाँ ले ले करके सर इस समय भी पूरे दिन ये इस वाटिका को सजाने में लगे हुए हैं, पक्षियों के लिए सर दाना ये स्टोरेज यहाँ पर, मोर मेरे ख्याल से इस तरह का वातावरण इस क्षेत्र में, ये पर्यावरण को बिल्कुल हरा भरा देख करके ये हमको लगता है कि वास्तव में आपके द्वारा कितनी बड़ी प्रेरणा दी है और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जो रेडियो मधुबन की टीम है इस चीज़ को किस तरह से एडवोकेसी के माध्यम से आगे ला रही है। आपने निरंतर मुझे भी प्रेरित किया है और मैं लंबे समय से इसके लिए उत्साहित होकर के जिस तरह से आप आते हो मुझे दुगुने उत्साह के साथ में मैं यहाँ पर इस कार्य को करने का प्रयास करता हूँ, मोटिवेट करने का प्रयास करता हूँ। और यहाँ पर जिस तरह से आप ये देख रहे हो कि किस तरह से हमने इसको सजाया है, आप वास्तव में शांति के इस प्रयास में सारी दुनिया में एक अनोखी मिसाल है प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जो दुनिया के 140 देशों में किस तरह से सेवा भाव से समर्पित होकर के विश्व पर्यावरण के लिए समर्पित होकर के, और सर जो जैव उत्पाद है, भोजन पानी में भी जैव उत्पाद है, यहाँ पर सर उसको करते हुए किस तरह से विश्व को स्वस्थ बनाने की ओर आपका कदम है, वास्तव में जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। यहाँ पर सर जिस तरह से गिलहरिया इसमें पानी पी रही है परिंडों के अंदर घुस घुस करके, जिस तरह से पानी की व्यवस्था दी गई है, जिस तरह से सर ये जो कुत्ते वगैरह यहाँ पर सर जो ही घर से बाहर निकलते ये पीछा करते हैं। अभी मैं रास्ते में आ रहा था सर, तब लोगों ने कहा कि आप इधर कहाँ भागे जा रहे हैं थैली में कुछ लेकर के। अरे भाई मेरा आज पर्यावरण दिवस है, ये जो हवा है प्रकृति ये किस तरह से इस ग्रीनरी को झुला रही है, मुझे लगता है ऐसा सुशांत वातावरण इस प्रकृति के अलावा यहाँ का ये संभव इस धरती पर है। तो जहाँ पर इंसान है, जहाँ पर भावना है, जहाँ पर आप जैसे लोग हैं और जो इस दुनिया के लिए प्रयास कर रहे हैं, सब जगह सर सर सभी गांवों में इस तरह की वाटिकाएं बनी हैं। और अगर ये मुहिम और आगे बढ़ जाए और अगर ग्राम पंचायतों को एक्टिवेट करते हुए इस काम को सभी लोग काम में लेने लग जाए, तो मुझे लगता है इस पूरी सृष्टि को हम एक सुंदरतम सुंदर से सुंदर हम बना सकते हैं आप लोगों के माध्यम से। इस तरह का जो प्रकृति के प्रति आपका जो स्नेह है, आपने इसे दिया है तपोवन में, आपने इसे एस्टैब्लिश किया है मानसरोवर में, आपने एस्टैब्लिश किया है गुलजार गार्डन में, आपने इसको एस्टैब्लिश किया है ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मुख्यालय आबू पर्वत में, वास्तव में इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और चूँकि ये कार्बन डाइऑक्साइड तो लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं सर, शुद्ध जल, शुद्ध भोजन और शुद्ध वातावरण और शुद्ध विचार, क्योंकि यहाँ पर जो राजयोग की जो शिक्षा दी जाती है उसके माध्यम से अपना अंतरतम भी अगर इस तरह से प्रेरित हो जाए कि हम प्रकृति के लिए समर्पित रहेंगे, तो मुझे लगता है इस प्रकृति को हरा भरा बनाने में हमारा एक छोटा कदम भी बहुत बड़ा काम कर जाएगा। बहुत बड़ा क्या, आपके सर यह कदम रखने से हमारा उत्साह बढ़ता है और हम निरंतर कई चीज़ों को प्लस करते हुए गांव वालों को जोड़ते हुए इस काम को करते हैं। सर इस गांव में केवरली में जहां आप पधार रहे हैं पर्यावरण दिवस पर विशेष काम, वैसे तो निरंतर प्रतिदिन पर्यावरण दिवस हो रहा है लेकिन इस पर विशेष हमने सर यहाँ पर एक बुढ़िया है उसको प्रेरित किया और वो दाना डेली लाती है और दाना यहाँ पर इस चबूतरे पर और एक और हमने पानी का स्टोरेज बनाया है बीच में वहाँ पर, और डेली इतने सुबह पशु पक्षी आते हैं जिसकी मतलब आप सराहना जितनी करें उतनी कम है। गायों के लिए चारा, हरा चारा सर प्रतिदिन एक ट्रॉली चारा वहाँ गायों के लिए डाला जाता है, छोटे जीव जंतु कीड़े मकोड़े उनके लिए सारी व्यवस्था। सर ये मोटे से व्यक्ति यहाँ पर आकर के देखो सर अभी इस समय भी वो पानी पिलाते हुए नजर आएंगे, गांव वाले भी सभी अपने अपने प्रयास से करते, नरेगा भी यहाँ पर सर बहुत अच्छा प्रयास कर रहा है, हमारी ग्राम पंचायत भी जुट करके प्रयास कर रही है और आगे प्रयास के लिए आप लोगों के माध्यम से हम प्रतिबद्ध है। सर आगे आपका जो आदेश है।
0: ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दोनों का, और विश्व पर्यावरण दिवस हम मना रहे हैं सुबह से शाम तक और हर जगह में अपना अंदाज से, ना ज़्यादा ना कम, जितना हो सके सभी तत्परता में खुशी है। इस तरह जो पर्यावरण से जुड़ाव रखते हैं, मित्रता रखते हैं और कुछ देने की भावना रखते हैं और जो नहीं दे पाते दूसरे को देने के लिए भी प्रेरित करते हैं, ये काम बात नहीं, ये भी पुनीत काम है। और प्रकृति पर्यावरण हमारा कितना आवश्यकता हम भलीभांति जानते हैं, एक पेड़ हमें कितना कुछ देता है तो उसका कभी भी रिटर्न हम नहीं दे पाएंगे, एक पेड़ इतना ऑक्सीजन और फल फूल छाया क्या क्या नहीं देते, लकड़ी से लेकर सब चीज देते हैं और हमें तो कुछ देना सीखे जैसे तो आज प्रकृति को देने के लिए एक दिन क्यों सिर्फ 5 जून क्यों 5 जून को कल और प्रतिदिन पर्यावरण जैसे केवली का जब हम बाटी का जो आए हैं तो उसी हिसाब से हम देख रहे थे, सभी अपना अपना जो भी समय मिलता है पुनीत काम कर रहे हैं क्योंकि आज पर्यावरण दिवस के तहत इसका परिभाषा और उसका इतिहास पहले जानेंगे लेकिन इसका बारे में थोड़ा विस्तार रूप में बताएं हमारा श्रोता मित्रों और सभी पर्यावरणविद सुन रहे हैं और जो भी पर्यावरण नहीं संरक्षण कर पाते हैं तो उनको भी एक मोटिवेशन एक प्रेरणा मिले ये हमारा भावना है, क्योंकि हम उसी प्रकृति का गोद में बसे हुए बैठे हुए हैं और प्रकृति हमें सब कुछ फ्री में देता है। एक हवा के लिए हमें कितना पैसा खर्च करना पड़ता है, मैंने एक पंखा लगाते हैं कि एसी लगाते हैं तो कितना आता है, तो उसी हिसाब से कितना शुद्धता मिलता है हमें जानते हैं। नेचुरल प्रकृति तो सब कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन हमें प्रकृति का साथ अच्छा व्यवहार करें, उनसे बात करें, ये हमारा भावना है। तो प्रकृति के साथ साथ हम इसका बारे में थोड़ा जानेंगे पर्यावरण के बारे में। सर आपको स्वागत पुनः।
1: सर आपने सर्वप्रथम तो हमने परिचय दिया, अब सर प्रकृति जिस तरह से हिलोरा ले रही है सर ये हवा के साथ में, पृथ्वी, शुद्ध जल, प्रकाश और ये वायु और ये आकाश, पंच तत्व जो जिससे ये सभी खुश होकर के अपने को इतना कुछ देते हैं, आपने बताया कि इसकी परिभाषा जो इसमें हम यूं कहें कि प्राकृतिक प्रभावों का वह समूह, वही पंच तत्वों का वह समूह जो अपने भौतिक तथा जैविक शक्तियों से किसी जीव की उत्पत्ति, विकास और मृत्यु को प्रभावित करता है, वही पर्यावरण है।
2: क्या बात,
1: सब मिलकर के इस चारों तरफ का जो भी वातावरण है वो जो सर बैलेंस रहेगा और शरीर भी उसको बैलेंस से ग्रहण करेगा तब तो वह स्वस्थ रहेगा, और अगर ये तत्व भी सर इम्बैलेंस हो गए तो असंतुलित होकर के वह रोगग्रस्त हो जाएगा और अंततः वह मृत्यु को प्राप्त होगा, यानी कि वो अपघटित हो जाएगा, चाहे मनुष्य है, चाहे जीव है, चाहे वो जीवित है, चाहे वो निष्प्राण है, वो अपघटित हो ही जाएगा जैविक निम्नीकरण के तहत। ठीक है, तो सर कहने का मतलब है कि ये प्रकृति उसको प्रभावित करती है, सारी प्रकृति मिलकर के। यूं कहें सामान्य, बिल्कुल सामान्य प्राकृतिक संरचना जिससे पृथ्वी घिरी हुई है, जलमंडल, थलमंडल, वायुमंडल, ये तो अजैव घटक इसके
2: जी,
1: इसमें रहने वाले जीव भी और जैव घटक जितने भी हैं, स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल, इसका जो अजैव तत्व है वो भी और जैव तत्व जो भी इसमें काम करते हैं वो सब मिल करके जिस सिस्टम को बनाते हैं इसी को हम पर्यावरण कह रहे हैं। सर पर्यावरण को समझाने के लिए हमने आपके माध्यम से प्रजापिता ब्रह्म कुमार ईश्वरीय विश्वविद्यालय के माध्यम से मैंने एक बार एक बात बताई थी कि जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तब अक्सर हम बाह्य पर्यावरण ही होता है उसमें, क्योंकि पर्यावरण को जो परिभाषित किया है वो ऊपर से किया हुआ है, जबकि वो प्रभावित तो अंदर तक करता है। यानी कि तब हमने ये बात निकाली थी कि अंतः पर्यावरण जिसको नाम दिया था, जो
2: निकल कर आता
1: है। हाँ, जो सर शरीर तीन है, स्थूल शरीर,
2: सूक्ष्म शरीर,
1: सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, तो जो सूक्ष्म शरीर है उसके ऊपर जो आवरण है उसको हम अंतः पर्यावरण कहना चाह रहे हैं, और वो जब अंदर से जब बात पैदा होगी तब आप जैसे लोग, प्रजापिता ब्रह्म कुमार ईश्वरीय विश्वविद्यालय जैसे लोग, शांति प्रिय लोग, प्रकृति प्रेमी जिनको भी कहेंगे, जो भी सहयोग की भावना रखते हैं वो सब लोग, जीव जंतुओं के लिए जब जल कम है तब जल की व्यवस्था करने वाले लोग, वो सभी लोग जो प्रकृति प्रेमी हैं, पशु प्रेमी हैं, वो सब मिल करके प्रकृति के संरक्षण के लिए प्रयास करेंगे। सरकारें सर कर रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम हो रहा है, जब ये सरकारें सब मिल करके ये जब काम करी हो, जब हम सब भी मिल करके करेंगे, उनके संसाधनों का सरकार दे रही है सर। सर सरकार ने आज के दिन 5 जून के दिन सभी ग्राम पंचायतों को निर्देशित किया है कि सब जगह जल संरक्षण की बढ़िया व्यवस्था करते हुए प्रकृति के प्रति अपनापन अपनाएं और उसके लिए अपना सहयोग करना है। सरकारों को सर बजट दिया है, बजट तो खर्च तो आपको करवाना, हमको करवाना होगा, जो प्रकृति प्रेमी है उसको करवाना होगा, और उंगली पकड़ के उनको वहाँ ले जाके खड़ा रह करके आपको काम करवाना होगा, तब जाके सर ये काम संभव है। अन्यथा फिर वो बजट भी वहीं रहेगा, वो बजट सर लैप्स हो जाएगा, समय के साथ लैप्स हो जाएगा, आपने यूज कर दिया तो यूज हो जाएगा, नहीं तो अब हम अक्सर अपेक्षा करते हैं किसी एनजीओ की वो काम करे। अरे भाई एनजीओ काम करेगा, दृष्टि दे देगा, उसका उद्देश्य, लेकिन बाद में तो आपको करना है, क्योंकि उसका लाभ हम ले रहे हैं तो हमको करना पड़ेगा ना। तो इस तरह से सरकार पैसा दे रही है, जब सरकार पैसा दे रही है तो उसका उपयोग कौन करेगा सर? उसका उपयोग तो आपको हमको ही करना पड़ेगा। तो जब हम उपयोग करेंगे उस पैसे का, सदुपयोग करेंगे, उसके लिए उनको दिशा देंगे, उनको बात करेंगे, तब न जा करके ये काम होना है, अन्यथा तो फिर सर, इसलिए हमको अंतः प्रेरित होना होगा। अंतः प्रेरित होकर के हमारा जो अंतः पर्यावरण है, आत्मिक पर्यावरण है, हमारा आध्यात्मिक पर्यावरण है, हमारा राजयोगी का जो पर्यावरण है वो सही होगा, तब जा करके हम इस प्रकृति के साथ में अपना अपना कर्तव्य निभा पाएंगे। ये अपना कर्तव्य है सर, अपना अधिकार तो ये है कि ये प्रकृति जो दे रही है कई गुना ऑक्सीजन दे रही है वो हम लेंगे, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है कि इनको सही खाद देवें, इनको सही पानी देवें, इनको काटे नहीं कुल्हाड़ी से, जहाँ भी इसको छटनी करनी है वो बात अलग है उसके वृद्धि के लिए, लेकिन उसको काटे नहीं, तो निश्चित रूप से ये जो पूरी सृष्टि में जहाँ कई तरह के दुष्प्रभाव की बात हमने अगले एपिसोड्स में करी है, तो ये वातावरण को एकदम शुद्ध कर देगा सर, और उससे हमारा आध्यात्मिक विकास भी होगा, भौतिक विकास भी होगा, और जिस तरह का स्वस्थ शरीर चाहिए वो भी आपके पास में उपलब्ध होगा सर।
0: सर आपने बताया जी भाई बाह्य पर्यावरण हम तो जानते भली भ्रांति और करते भी है, और जो बाह्य पर्यावरण हमें प्रेरित करता है अंतर जो पर्यावरण को जागृत कराने के लिए, जैसे ये जो प्रकृति से हमें मिलता है तो हमें बोला भाई हमें भी तो कुछ करना चाहिए, और अंदर में जो भावना जनहित में बार खुद स्वहित में और प्रकृति के हित में हम जो पेड़ लगाते हैं, कोई अभी जो देख रहे थे आपका यहाँ पर आए थे जो प्रोग्राम में रिकॉर्डिंग करने के लिए, उस समय एक भाई अपना पानी दे रहा, वो अपना कर्तव्य

0: समझकर उसका प्रेरणा अंतर जो पर्यावरण को प्रेरित जो अंतर प्रेरणा जैसे अपना मन विचार शुद्ध जब होता है सात्विक जो होता है कल्याणकर भावना जो जागृत होता है मन में तब जाकर कोई गिने चुने व्यक्ति कर पाते हैं जैसे आपने बताया। तो ये चीज जो अंतर प्रेरणा सबका पास आता नहीं, सभी के पास आता तो सत्य जो आ जाएगा सभी अच्छा बन जाए, लेकिन आज भ्रष्टाचार चोरी वगैरह सब जगह में हो रहा है क्योंकि उनका अंतर चेतना जागृत होता तो चोरी नहीं करता
1: बिल्कुल
0: पुनित काम में भी। तो हम तो चाहते सभी अच्छा बन जाए और समय करा देगा और हमारा अंतर प्रेरणा अंतर जो पर्यावरण है जो कि मन बुद्धि संस्कार
1: बिल्कुल
0: शुद्धता पवित्रता और ज्ञान युक्त हो समझ युक्त हो तो जरूर काम कर पाएंगे क्योंकि इसमें ही सबका कल्याण है। क्योंकि पर्यावरण का परिभाषा उसका साथ साथ किस तरह हमारा अंतकरण जागृत हो उसके लिए हम राजयोग जिसे आपने बताया आप किए होंगे वह ब्रह्मा कुमार ईश्वरी विश्वविद्यालय में जाकर इसको तब जाकर अपना जो पुनित काम करने के लिए एक मंच जब मिला रेडियो का उस मंच का माध्यम से आप बता पा रहे ये भी हमारे बहुत खुशी लग रहा है। जब समय मिलता है सुशांत वाटिका किवली में जाते आप भी सब सुन रहे कभी एक बार देखिए वहाँ के परिवेश नदी का किनारे किवली ग्राम पंचायत में वो डेवलप किया एक मॉडल है तो आप भी आकर देख सकते हैं। तो पर्यावरण दिवस में हमें कुछ अपना गांव को सिर्फ किवली क्यों हम अपना गांव अपना घर अपना जहाँ जमीन है वहाँ पर भी आप पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं। तो ये हमारा लिए बहुत प्रेरणा होगा जब हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंच रहे हैं। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद हम जानेंगे इसका इतिहास क्या है और इससे हमें क्या सीख मिलेगी और हमें क्या प्रेरणा मिलेगी। सभी लोग तो करते हैं बात तो बहुत करते हैं लेकिन हम जब तक खुद बदलेंगे नहीं हमें कोई बदल नहीं सकता। बदलना हमारे हाथ में भगवान भी नहीं कर सकता है और पड़ोस पड़ोसी छोड़ा हमारा रेडियो मधुबन भी क्या कर सकता बोलते हैं लेकिन उसको धारण करेंगे तब जाकर होगा। इसको लेंगे और तो विराम के बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। खासकर एनवायरनमेंट डे स्पेशल में आज किवली स्थित जो सुशांत वाटिका में आपका कवरेज दे पा रहे हैं वो भी रिकॉर्डिंग प्रोग्राम के माध्यम से सुनते हैं एक गीत, इसके बाद सुनेंगे इतिहास।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: चलिए कार्यक्रम का आगे बढ़ाते हैं। पुनः आप सभी को दिल से, आंतरिक से, प्रकृति, परमात्मा और आत्मा तीनों का एक्टर, डायरेक्टर और स्टेज, स्टेज में पंच तत्व आ जाता है और वो परमपिता परमात्मा सबका मालिक है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, सभी आत्मा का पिता परमपिता परमात्मा जो मालिक है, प्रकृति पति है और हम लेने वाले करने वाले आत्माएं जो जीवात्माएं, क्योंकि जीवात्मा ही इस सृष्टि का देखभाल करने में अपना अंतर चेतना से जागृत होते तो परमात्मा तो प्रेरणा देते, लेकिन करने वाले हम करना करेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए चलिए पुनः स्वागत करते हैं हमारा श्रीमान गोपाल रामपुर जी को, जो पर्यावरण भी थे और सेवानिवृत्ति का बाद ईश्वरीय विश्वविद्यालय में अपना सहयोग दे रहे हैं रेडियो मधुबन कार्यक्रम का माध्यम से। हर संडे को शाम को 7 से 8 बजे आता है प्रोग्राम उनका कार्यक्रम और आप जरूर सुने होंगे और फीडबैक हमारे पास आता है, बहुत सुंदर कार्यक्रम ऐसे कंटिन्यू रखने के लिए भी मैसेज आता है तो उसमें खुशी लगता है हमें भी। चलो तो पुनः स्वागत कर सर, आप बताइए पर्यावरण दिवस का बारे में, खासकर इसका इतिहास क्या है और इसको कैसे बनाना चाहिए, कब बनाना चाहिए और प्रकृति का जो आजकल हम देख रहे हैं सभी जगह में प्रकृति को, पर्यावरण को ध्यान देते हैं, तो इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे खासकर
2: हाँ इसके इतिहास के बारे में और इस ये सरकार मतलब मानवता के लिए क्या क्या किया जा रहा है, ये सारी चीज सर इस पर बात करके भी आप और मेरा मन बिल्कुल बाग बाग हो रहा है। जी। जब सर हम खुश होते हैं तब भी प्रकृति की बात करते हैं कि हम बाग बाग हो रहे हैं। अच्छा सर, जब जब व्यक्ति सुंदरता को देखता है सर, प्रकृति के माध्यम से उसको सजाया गया, जैसे दांत।
3: जी,
2: दांतों की उपमा सर किससे की है, हमारे साहित्यकार जितने भी हुए हैं दांतों की उपमा की है सर दाढ़िम से। अच्छा। दाढ़िम जैसे दांत, राइट। नाक तोते जैसी नाक, आंखें हिरणी जैसी आंखें।
3: जी
2: सर, तो जब प्रकृति इतनी सुंदर है

0: आज तक मेरा ये जो शरीर है ये स्थूल शरीर है, अध्यात्म के साथ जिस तरह से बैलेंस करते हुए मैं दौड़ लगाता हूँ, आप जानते हैं, आप भी लगाते हो, इस उम्र में भी किसी तरह की कोई बीमारी आज तक लगभग तो नहीं है। कभी कभार बस इसका राज ही प्रकृति, मैं सर प्रकृति ही सब कुछ है हमारे लिए। सुबह शाम उसका ध्यान करते हैं, इसका चिंतन करते हैं, पूरे दिन इसमें लगे रहते हैं, सामाजिक घर के कामों के साथ इस काम को करते हैं, ईश्वरीय सेवा करते हैं, तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति रोग मुक्त। मैं इसका पक्का उदाहरण हूँ सर, 63 वर्ष की उम्र में मुझे किसी प्रकार की कोई भी बीमारी नहीं है, ना मेरे परिवार में है। वजह यही है कि हम प्रकृति के प्रति सचेत हैं, हम बिल्कुल जैव भोजन करते हैं, वो आप भी करिए। तो ये सर इसका संदेश है, ये सीख है। अब हम उसके इतिहास को सर, इसे स्वस्थ रहने के लिए सर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंथन किया जा रहा है। अब सर आप ये कहेंगे कि इसका सेंटर पॉइंट कहाँ है। सर इसको याद करने के लिए प्रति वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। सर जब इंटरनेशनल लेवल पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं, जैसे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी जेश्वरी विश्वविद्यालय और जितने भी एनजीओज हैं, वो सभी थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा प्रयास करते हैं, तभी जा करके काम बनता है। क्योंकि ये बात जब हम एडवोकेसी के माध्यम से या रेडियोज के माध्यम से या प्रसारण के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से जब हम कहेंगे, तब जा करके ही व्यक्ति प्रेरित तो होंगे। आप और हमारे जैसे करोड़ों लोग काम कर रहे होंगे सर। तो सर ये जो कार्य है सर, इसके लिए एक बार महात्मा गांधी ने कहा था।
1: क्या कहा था
0: सर? क्या कहा था वही बात मैं कहता हूं कि सर पृथ्वी हम सबकी सर नीड को तो पूरा कर सकती है। सर प्रकृति के पास सर इतने संसाधन है, हम सबकी नीड को तो पूरा कर सकती है, लेकिन सर हमारी ग्रीड को पूरा नहीं कर सकती, हमारी लालच को वो पूरा नहीं कर सकती। आपके जो भोजन दे सकती है, सब कुछ अच्छा अच्छा दे सकती है, आपके साथ अच्छा पंच तत्व का जो भी उसका जो प्रसाद है वो आपको दे सकती है, लेकिन सर जब आपकी ग्रीड है सर, सब आप खुद के लिए इकट्ठा करना चाहते हैं, तो फिर आपको नष्ट हो जाना है एक दिन। आप देख लीजिए इतिहास में जाकर के, ये सर उन्होंने उस समय ठीक कहा था। मतलब प्रकृति सबके लिए कुछ दे सकती है, लेकिन आपकी लालच को पूरा नहीं कर सकती, और व्यक्ति लालच में ही इस प्रकृति के साथ में जो खिलवाड़ कर रहा है, वहीं पर आपके जितनी भी समस्याएं हैं, ग्लोबल वार्मिंग है, प्राकृतिक आपदाएं हैं, वो जो भी सारी समस्याएं हैं उस पर विस्तृत चर्चा हम एपिसोड्स में कर चुके हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो सर उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर सर मंथन हुआ। और सर अगर हम थोड़ा सा बैक में जावें सर, 2025 था, 25-26 सर, 2025 में सरकार ने फोकस किया था सर कोरिया सर, इसको एक स्पेशल नेशन को ये काम दिया था सर। और सर उसका जो जेजू प्रांत है उस पर फोकस था, और जेजू में सर यह प्लीज ली गई, शपथ ली गई कि 2040 तक जेजू को प्लास्टिक मुक्त कर दिया जाएगा, ताकि उस पर पर्यावरण जो है वो बिल्कुल ही वहां पर शुद्ध विशुद्ध और केमिकल रहित हो जाए। सर उसकी थीम थी प्लास्टिक पॉल्यूशन को कम करना। तो सर 2040 तक उनको मिशन दिया गया है और उन्होंने ये शपथ ली है कि हम उसको प्लास्टिक मुक्त कर देंगे सर। अब सर इसका इतिहास के बारे में आपने पूछा है कि इसका इतिहास क्या है, तो सभी जानना चाहेंगे कि प्रकृति की बात करते हैं, पर्यावरण की बात करते हैं, सर क्यों करते हैं? इसका उत्तर तो दे दिया कि हमको स्वस्थ होना है, हमको आध्यात्मिक चेतना लानी होगी, अंतः प्रेरित होकर के हम सब करेंगे, तब जाके ये काम होगा, और वो सब लोग स्वस्थ होंगे जो प्रकृति की शरण में जाते हैं, जो प्रकृति को जल पिलाते हैं, जो प्रकृति को खाद देते हैं, जो प्रकृति के प्रकाश की व्यवस्था करते हैं, जो प्रकृति में सेवा कार्य करते हैं, वो सभी लोग सर सामान्य तौर पर, ये अतिशयोक्ति नहीं है, रोग मुक्त ही रहते हैं। जैव उत्पादों का प्रयोग करेंगे, हमारा ब्रह्मा कुमारी तपोवन में कर रहा है, गुलजार उपवन में कर रहा है हमारा। तो जब जब आप इस जैव उत्पाद है उसका प्रयोग करेंगे, जैव खाद का प्रयोग करते हुए करेंगे, केमिकल मुक्त होकर के करेंगे, और फिर आध्यात्मिक ध्यान करेंगे, राजयोग वगैरह, सर निश्चित रूप से

0: यह प्रकृति आपको बिल्कुल स्वस्थ बना देगी और जीने का एक अनुकूल माहौल, जब तक आपकी एक एक एक एक, एक उम्र होती है सर, हर जीव की सर उम्र होती है। जैसे सर आपने देखा होगा कुत्ते की एक उम्र होती है सर, पशु गाय की एक उम्र होती है सर, इंसान की भी एक उम्र है। पहले ज्यादा थी क्योंकि सर वो प्रकृति के प्रति ज्यादा सजग था, अब सर थोड़ी घटी है क्योंकि उसकी लालच बढ़ी है, उसकी ग्रीड बढ़ी है और उसकी ग्रीड बढ़ने की वजह से वो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहा है अपने भौतिक उपयोग के लिए। तो सर वो प्रकृति उसको धीरे धीरे, सर प्रकृति उसको अस्वस्थ नहीं करी है, मैं यहाँ पर ये सुधार करना चाहता हूँ, वो व्यक्ति स्वयं अस्वस्थ हो रहा है क्योंकि वो प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहा है तो उसको वो चीज कम मिल रही है। एक पौधा सूखेगा देखो ऑक्सीजन कम हो जाएगी, ऑक्सीजन का बहुत बड़ा स्टोर कम हो जाएगा, सीधी सी बात है। केमिकल युक्त जल पिलाओगे तो फिर वो भी रोगग्रस्त होगा तो वो भी कम देगा।
1: जैसा मेरा इनपुट होगा उस तरह आउटपुट होगा, भले वो निर्जीव है, मैंने निर्जीव तो नहीं कहेंगे, बोल नहीं पाते हैं, लेकिन उनका तो जीवन है प्रकृति सजीव है, सजीव है तो वो बोल नहीं पाते, लेकिन उनका मन में जो आत्मा में जो उसका पास तो शक्ति होगी ना, भले विचार शक्ति नहीं होगा लेकिन मन तो होगा उनका भी प्रकृति, तो मन में वो भी जब संकल्प बुरा संकल्प देगा तो उसका अभिशाप श्राप श्राप मिल जाता है जिसके लिए, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं भले बोल नहीं पा रहे, गूंगा है प्रकृति, इसे सोचकर लोग क्या करते हैं उसको काटते हैं, उसका साथ जो करते हैं सबको पता है, तो कहीं ना कहीं वो जब थोड़ा सा नेगेटिव उनका संकल्प दे देगा वो तो श्राप पड़ेगा जिसका अंदर उसका पूरा पूरा खानदान तक पड़, जैसे हम देख रहे हैं क्योंकि वो पौधा काटने के बाद उनका घर में क्या क्या होता है सबको पता है।
2: बिल्कुल,
1: क्योंकि हम तो लालची जो ग्रीडी कहते हैं ना, ग्रीडी का चलते आपने को लकड़ी चाहिए सब पूरे एक साथ काट देते हैं, जैसे सोना अंडा पाने के लिए मुर्गी काट देते हैं।
2: बिल्कुल,
1: तो ऐसे ही जो होता है आज का समय में, तो उसको थोड़ा सा ध्यान देंगे तो जरूर प्रकृति आपको अभिषेक का आशीर्वाद देगा और वो तो देने के लिए तैयार है, लेकिन उसका खेल भर करेंगे तो वो तो छोड़ेगा नहीं, हाँ तो देख रहे। तो चलिए उसको और आगे बढ़ाने के लिए कहानी के माध्यम से सुनेंगे तो और अच्छा होगा। और
0: सर कहानी के माध्यम से एक बात बताते हैं कि कविता व्यक्ति को जगाती है, कहानी सरलता से अपनी बात कहने का एक एक अच्छा जरिया है कि हम कैसे। सर कहानी ये है कि सर एक सामान्य व्यक्ति है गांव के अंदर, कई बार रोजगार की समस्याएं रहती है, तो सर वो व्यक्ति अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए कोई अच्छा जरिया नहीं ढूंढ पाता, तो सर वह क्या करता है, सर सबसे शॉर्ट व्यक्ति को क्या लगता है, प्रकृति की शरण में जाता है और वहां जाकर के फिर वो लकड़ियां काटता है, सूखी सूखी लकड़ियां काटता है और उससे अपना पेट भरता है। क्या होता है सर कि उसके परिवार में थोड़ी सी बीमारी आ जाती है और जब बीमारी आती है तब क्या करता है, वो सूखी के साथ में गीली लकड़ियाँ भी काटने लगता है, तब उसको पैसा ज़्यादा मिलता है और ज्यों ज्यों उसको ज़्यादा पैसा मिलने लगा त्यों त्यों वो ज़्यादा मेहनत करने लगता है और वो बेच करके अपना, जब वो सोच रहा है कि मैं समृद्ध हो रहा हूँ और वो फिर उसके इलाज में पैसा खर्च करता है, वैद्य के पास जाता है जहाँ भी जाता है और उसका इलाज करवाता है, तो उसका जो मर्ज है वो कभी ठीक होता है फिर वापस बढ़ जाता है, फिर ठीक होता है वापस बढ़ जाता है, तो फिर वो किसी सज्जन से, एक आध्यात्मिक सज्जन से, जो आप जैसा कोई पुरुष सज्जन मिला उससे बात करता है, तब वो उस व्यक्ति ने कहा कि आप धन कहाँ से कमाते हैं। सर ये सत्य बात है कि धन कहाँ से आ रहा है, किस सोर्स से आ रहा है और कैसे आ रहा है। अगर आप लूट के लाए हैं तो सर पहले भी बड़े बड़े बादशाहों ने महाराजाओं ने धन जब लूटा है तो भी वो सब यहीं छोड़ के गए, साथ में तो कोई लेके गया नहीं, जिसने खुशी से बांटा है सभी जीव जंतुओं में वो खुशी के साथ छोड़ के चला जाता है, नहीं तो वो हाय मेरा धन, हाय मेरा धन, कैसे करूँ कैसे करूँ, उसके हाथों के आगे देख करके वो सर उसकी आँखें मूंद लेता है और उसका जीवन पूरा हो जाता है। तो सर वो जो व्यक्ति है वो उस सज्जन ने जब उनसे पूछा तो कि भाई आप धन कहाँ से कमाते हैं, उन्होंने कहा कि मैं तो लकड़ियाँ काट के अपना ये गुजारा चलाता हूँ। कैसी लकड़ियाँ सर, पहले सूखी काटता था गीली भी लकड़ियाँ काट रहा हूँ। अच्छा, तो फिर भाई साहब आपका जो ये तरीका है वही आपके घर में बीमारी लाता है, क्योंकि ये प्रकृति जैसा आपने बताया था थोड़ी देर पहले कि प्रकृति श्राप देती है, उसके साथ में आप गलत व्यवहार करोगे तो वो श्राप देगी, अच्छा व्यवहार करोगे तो जैसे मनुष्य आपको आशीर्वाद देती है, इस तरह से ये भी आपको फिर प्रकृति श्राप तो क्या देती है, वो निश्चित रूप से उससे उसके प्रति आप असंवेदनशील है तो फिर वैसी ही भावनाएं निकलती है, तो सर उसके परिवार में फिर वो काम बंद कर देता है और दूसरा काम धंधा शुरू कर देता है, मजदूरी वगैरह, उसमें वास्तव में उसके घर में वो प्रकृति की सेवा करता है, सर वो तुलसी की सेवा करता है, गुलाब की सेवा करता है, नीम की सेवा करता है, तो उसके औषधीय फायदे उसको होने लगती है और उसके घर से वो धीरे धीरे बीमारी दूर हो जाती है। सर यकीन मानिए ऐसा आप भी करिए, आप में भी बीमारियों में निश्चित रूप से कमी आएगी और वह व्यक्ति धीरे धीरे अपने स्वस्थ होने लग जाता है। सर ये सर प्रकृति का एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है, हमको भी लेना चाहिए।
1: कहानी का माध्यम से इतना सीख भरी दिए बात, समझदार को इशारा काफ़ी है, हम ज़्यादा बोलेंगे क्यों, बोलने का पहले करेंगे तो ज़रूर हमें अच्छा चीज़ मिलेगा और हम सब अच्छे हैं और अच्छा रहना चाहते हैं, जब हम अच्छे देंगे तो हमें अच्छा मिलेगा, ये तो सिद्धांत है, जैसे बोएंगे उस तो काटना ही है, तो अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा।
0: इतिहास थोड़ा सा इतिहास में बता दूं और उसके पास कहानी। सर बात से जब बात निकली तो मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि सर प्रकृति के बारे में, सर पहले मनुष्य की आयु ज्यादा हुआ करती थी, ये बात अपन ने अभी करी और ये बात बिल्कुल सत्य भी है,
2: 150 साल बचते थे भाई सत्ययुग में,
0: 150 साल जीते थे सर, ऐसा सुना तो है ही हमने, इसका मतलब ऐसा होता था,
2: अभी भी
0: 100 साल वाले लोग हैं, अभी भी 105 वाले भी हैं,
2: आगे जाएंगे तो
0: इसका बिल्कुल सर, तो इसका मतलब उसकी इम्यूनिटी ज्यादा क्यों थी सर, उसकी इम्यूनिटी ज्यादा इसलिए थी कि वो प्रकृति के प्रति संवेदनशील थे, प्रकृति उनके प्रति संवेदनशील थी, जल बिल्कुल शुद्ध था। सर मैं मेरी बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर हमारी ये जो बनास नदी है ये बिल्कुल पेरेनियल रिवर थी, मतलब सदाबहार नदी थी सर, और आज हमें देख रहा हूँ तो हमारी ये समझो कि मैं 10-11 वर्ष का था सर, नदी में नहाने जाते थे, शुद्ध पानी सर, और सर इतने बड़े बड़े जैविक टमाटर, तरबूज, खरबूज, और ये शुद्ध सर, शुद्धता उसकी, शीतल बयार सर, आज वो देखने को नहीं मिलती सर, वो टमाटर का टेस्ट आज भी मुझे पता है कि वो टेस्ट ही नहीं है आज के टमाटर में, आज के फलों में वो मिठास नहीं है, तो सर इसका मतलब ये है कि प्रकृति सर मेरे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन हुआ कि सर आज वहाँ बिल्कुल भी पानी नहीं है, और है तो वो केमिकल युक्त है, तो कहने का मतलब है तो फिर वो जैसा उसमें आप मिलाएंगे केमिकल आप उसमें छोड़ रहे हैं, हम छोड़ रहे हैं ना, तो वो रिटर्न कैसा देगा सर। सर वो गंगा जल था, हम नहा रहे थे उस समय में, मेरा खुद का उदाहरण दे रहा हूँ, और आज वो जल मैला कर दिया, किसने, हमने, उसके प्रति हमारी धारणा बदल गई, हमारा अपशिष्ट उसमें जा रहा है, हम उसमें गाड़ियां धो रहे हैं। सर आपने भी देखा होगा कि यहाँ पर जो रपट थी वो जब ये पुलिया बना तो लोग यहाँ गाड़ियां धोने के लिए इसका उपयोग करते थे, सर उसमें गाड़ियां धुलेगी तो उसमें जो जो सारा अशुद्ध वो पानी आएगा तो वो फिर क्या करेगा, उसका एक सिस्टम होना चाहिए जो हम नहीं करें तो ये कौन करेगा, हम स्वयं करेंगे,
2: यहाँ पर खाली है तो क्या करेगा,
0: तो हाँ तो उसके लिए चार्ज होने वाली बात है, हमको चार्ज होना पड़ेगा। तो सर इस प्रकृति के प्रति हमने ध्यान नहीं दिया तो हम अपने आप की गिरावट की तरफ ही जा रहे हैं, हमारी उम्र घट रही है, हमारी बीमारियां लग रही है हमारे को, तो सारा कुछ हो रहा था, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हम प्रकृति के प्रति सकारात्मक रूप से संवेदनशील नहीं है, इसलिए हुआ है, जितना केमिकल युक्त खाद का प्रयोग हुआ है इसलिए हो रहा है। तो सर सर अच्छे रहने के लिए, रोग मुक्त रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, ये इतिहास की बात कर रहा हूँ कि ये सरकार कब से चेती, दुनिया अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर सर इस काम का जो सेंटर पॉइंट है वो सर यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम करके संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में सेंटर एजेंसी सर इसकी ये है, और सर 1973 में 5 जून को प्रथम बार ये मीटिंग हुई, और तब से ही 5 जून को ये विश्व पर्यावरण दिवस घोषित हुआ, और तब से ही ये मनाया जा रहा है, प्रतिवर्ष एक देश को दिया जाता है कार्यक्रम, एक जो विशेष पर्टिकुलर स्पॉट पर किया जाता है, और जिस तरह से ये कार्यक्रम होते रहते हैं, फिर COPs भी होते हैं, कई मीटिंग्स भी होती हैं, हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय भी उसमें प्रतिनिधि हैं, तो इस तरह से सभी देश, एक दुनिया के 150 देश ये इस काम को कई मतलब संख्या घटती बढ़ती रहती है, ये मिल करके इसको चला रहे हैं, तो सर बजट भी अलॉट होता है, काम भी हो रहा है, मतलब उसमें वादे भी किए जाते हैं कि हर एक COP में क्या होगा, इसकी चर्चा है हमने अगले एपिसोड्स में काफ़ी विस्तार से की है। सर जो ये जो था सर 5 जून 73 से जो लागू हुआ सर, यहाँ पर ह्यूमन एनवायरमेंटल कन्वेंशन करके ये फर्स्ट मीटिंग हुई थी, और सर उसके 3 उद्देश्य थे सर, पॉल्यूशन को कम करना, वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करना और विश्व पर्यावरण दिवस मनाना। तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की प्रेरणा भी वहीं से चली, मतलब ये आपका मेरा या वो कार्यक्रम नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम बनाया है, क्योंकि सर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस आवश्यकता को मानव कल्याण के लिए इसको महत्वपूर्ण समझा गया, पर्यावरण को इस आवश्यकता को समझा गया, और तब जा करके ये सारे देश इस पर काम कर रहे हैं। सर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया एक रामसर कन्वेंशन हुआ था सर 1971 में सर, और उसमें ये था कि जितने वेटलैंड्स हैं वो सर जो हमारा जो इकोसिस्टम है, कौन सा एक्वेटिक इकोसिस्टम, मतलब जो जलीय इकोसिस्टम था, उससे सर ये पर्यावरण ज़्यादा दुष्प्रभावित होता है, उसको ठीक करने के जितने भी वेटलैंड्स हैं सर उन पर बराबर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो वो सारे के सारे वहाँ जीव सर लुप्त हो रहे हैं, प्रजातियाँ लुप्त हो रही है। तो इसके लिए सरकारों ने मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किया है, तो उसको सर रामसर कन्वेंशन कहते हैं, और सर इंडिया 1982 में इसमें शामिल हुआ, भारत में हमेशा अपना योगदान ढंग से दिया है, वो समय से शामिल होता रहा है। 1973 में सर सिटेज करके एक कार्यक्रम हुआ जिसमें कई सारी बातें हुई, और इसमें भारत सर सिटेज में शामिल हुआ है सर। 1973 का तो ये मीटिंग थी, 76 से भारत में इसको ज्वाइन किया है, और सर सिटेज में 4 लिस्टें हैं सर, और 4 लिस्टों में मतलब जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अपने भारत में भी बनाया सर, उसमें सर 4 लिस्टें हैं।
3: ओके,
0: और 4 लिस्ट में सर पहली और दूसरी लिस्ट तो है जानवरों के प्रोटेक्शन के लिए, पहली और दूसरी, और तीसरी लिस्ट है सर प्लांटेशन के लिए, और सर चौथी लिस्ट है जो स्पीसीज जो गायब हो रही है, जो खत्म हो रही है, समाप्ति के कगार पर है, उसके अंदर है, और उसके लिए सर हमारे पास में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत हमारा जो वन विभाग है उसके ऊपर विशेष काम करता है, और वो इसके लिए प्रतिबद्ध है। अभी सर कुछ दिन पहले अपने यहाँ सिरोही में भी मीटिंग हुई है जिसमें अपने जो वन्य जीव संरक्षक है, जिला कलेक्टर महोदय, उन सब ने मिलकर के इसके प्रोटेक्शन के लिए एक काफ़ी अच्छा अभियान चलाया है सर। और सर इसको भारत का अम्ब्रेला लेजिस्लेशन कहा गया है, इसको सर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, उसको अम्ब्रेला मतलब इन सभी जीवों को बचाने का प्रयास, मतलब मनुष्य को जो बचाना है उसके साथ में जीवों को भी बचाना है। भारत ने सर ग्लोबल टाइगर फोरम को भी एस्टेब्लिश किया है। सर कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो पर्यावरण दिवस मनाया ही इसलिए जाता है कि हम पर्यावरण के प्रति सजग रहें, सचेत रहें, हम आध्यात्मिक उन्नति करें, और सभी थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे तो इस विश्व को स्वस्थ और सुंदर, हरा भरा और सभी लोगों के लिए कल्याणकारी हम ईश्वरीय कृपा से बना पाएंगे, जहाँ पर बिल्कुल शांति हो। सर यहाँ पर आपका एक था कि ये तो मैंने इतिहास बताया सिंपली, पंच तत्व का सही उपयोग कैसे और कब। सर पंच तत्व यही प्रकृति है सर, यही पर्यावरण है, और जब इसके प्रति आप समर्पित होंगे तो इसका जो प्रसाद हमको मिलेगा सर, हमारा आकाश तत्व जब बिगड़ता है ना तो शरीर में जो आकाश तत्व से जिस जहाँ पर पोषण मिलता है वो सारी रिक्तता पैदा होती है सर, उसको बैलेंस करने के लिए हमको सर ध्यान करना पड़ता है, तब मानसिक शांति आती है। मानसिक अशांति है मतलब आपका आकाश तत्व बिगड़ गया है, आपका वायु तत्व बिगड़ता है तब वायु की अधिकता हो जाती है, सामान्य चीज़ है, हम दवाइयाँ खाते हैं, विभिन्न प्रकार की औषधियाँ, फिर भी प्रकृति के शरण में जाते हैं सर, तब जाके हम ठीक होते हैं। हमारा जल तत्व बिगड़ता है तो टाइफाइड है, हैजा है, इस तरह की बीमारी होती है, तब भी हम प्रकृति की शरण में जाते हैं, वही ठीक करती है। जब हमारा पृथ्वी तत्व बिगड़ता है तब हमारा शरीर का स्केलेटन बिगड़ जाता है सर, सारा उसी से संचालित है। तो सर क्यों नहीं उसी की शरण में जाए, उसी ईश्वर की शरण में जाए, उसी शांति की शरण में जाए, और इस प्रकृति के साथ में रह करके बड़े आनंद के साथ में जीव जंतुओं के साथ में हम इनके दाने पाने की सर व्यवस्था करें। देखिए सर ये चबूतरे पर दाना सब तरफ, परिंडे गांव वालों ने परिंडों की व्यवस्था की है सर, पूरी पंचायत इसके लिए लगी, सभी गाँव वाले इस सुशांत वाटिका को देख करके, इस तपोवन को देख करके, आपके संस्थान को देख करके थोड़ा थोड़ा प्रयास करें ना, सर ये धरती स्वर्ग बन जाएगी और स्वर्ग है, स्वर्ग है। कमी किसकी है सर? आपकी और हमारी, कि हम ही उस प्रयास को करने के लिए थोड़ा और तेज करना पड़ेगा, थोड़े और लोगों को मिलाना पड़ेगा, लोग तैयार खड़े हैं उनको सर लाना पड़ेगा। तो प्रकृति की शरण में रहें सर, मैं तो ये कहूँगा इस प्रकृति की छाया में बैठिए सर। गर्मी में भी हम बैठते कितनी शीतल छाया देता है सर, एसी का काम करता है, एसी की आवश्यकता ही नहीं है सर, ये पोषण देता है, किसी चीज़ के फल देता है सर, किसी की आवश्यकता नहीं है सर। तो सर क्यों नहीं इस प्रकृति प्रभु के शरण में रह करके, ध्यान योग करके, शांति का अनुभव करके, मानव कल्याण के लिए हम भी एक कदम आगे बढ़ाएं। आइए हम सब मिल करके आपके साथ आशीर्वाद प्राप्त करें प्रकृति का और मिल बैठ के आगे चलें। धन्यवाद,
1: बहुत बहुत धन्यवाद। कितने सुंदर रूप में और शॉर्ट एंड स्वीट में समय को देखते हुए भी अपना कार्यक्रम को हेल्दी वेल्दी और हैप्पी बना दिया, और प्रकृति भी खुश हो रहे होंगे क्योंकि उनका आज, हमेशा तो करते हैं लेकिन आज स्पेशल उनके लिए भी हमें कुछ समय निकल कर सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। ये कम बात नहीं है, ये भी त्याग है, इस त्याग में ही फायदा है क्योंकि कुछ तो कर रहे हैं पुनित काम के लिए, जनहित में और गांव हित में, पंचायत हित में और स्वहित में। खुद को जब संतुष्टि मिलता है, जब उस संतुष्टि मिलता है खुद को, तो उससे बड़ा धन है नहीं, संतोष बड़ा धन है। तो संतोष रहिए और संतोष बांटिए, जैसे खुश रहिए और खुशियां बांटिए। जब भी मिलता है मौका अपना भाग्य बनाइए। कोई ने ठीक कहा है, भाग्य की सूरज, भाग्य की सूरज अंधेरे में ही उदय होता है।
0: बिल्कुल सर, अंधेरे के।
1: तो आज वो अंधेरा है तो उसको उजागर करने के लिए भाग्य का सूरज को उदय होना ही है, और हम सब भाग्य का हो जो सूरज उगा रहे हैं, उदय कर रहे हैं, और उसी में ही सफलता हमें प्राप्त होगा। ये सरलता से, कोई खर्च नहीं, सरलता से वो अंधकार को दूर करके विजयी बनेंगे सफलता का साथ, इन सुभावना का साथ। हमें दीजिए इजाजत आज का स्पेशल, खासकर पर्यावरण दिवस के तहत सुशांत बाटिका, जो कि हर एपिसोड में सुशांत बाटिका का नाम आता है और आना भी चाहिए, इतना लगाए हैं, तो उसी हिसाब से आज आपके पास रखें जो रिकॉर्डिंग प्रोग्राम किया था, और आज शाम को आप सुन रहे इस कार्यक्रम को। बहुत खुशी लग रहा है क्योंकि सभी तो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो हमें क्यों पीछे रहे, हम भी जो कर रहे हैं सब तक पहुँचे, और आप भी जब करेंगे तो हमारे पास पहुँचाइए। इन शुभ भावना का साथ हमें और श्रीमान भूपाल राम पुरोहित जी को दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे कल इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर, ये खासकर पर्यावरण स्पेशल जोन 5 का तहत आज का आपके पास रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, सुनते रहिए मुस्कुराते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: महाराज की जय।
1: रुक, तो सुनाई नहीं देती? तो ये पुकार है आपकी गड्डी की, तो कह रही है कि बिना पिए मेरे को चलाओ, और ये पुकार आपके बच्चों की भी हो सकती है। तो जो सलामत घर पहुंचना हो तो बिना पिए गाड़ी चलाना, समझे? चलो निकल लो आप, और हाँ, हैप्पी जर्नी मेरी तरफ से अवलदार कड़क। हाँ, जो आपको कहता है डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, और ठीक ना? ठीक।
2: ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

मैं हूं जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी ओंकारानंद सरस्वती जी परमात्मा मठ प्रयागपीठ से आप सभी सुन रहे श्रोताओं को ब्रह्मा कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन से रेडियो मधुबन सुनते रहो मुस्कुराते रहो। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा शुभ प्रेम। ओम शांति।

याद रखें, एक बाइक पर कभी भी दो से ज्यादा लोग एक साथ ना जाएं। यह एक दंडनीय अपराध है। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: अपने आप को देखे एंड प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर टुडे। आज सारा दिन में बातें आएंगी, लोग कुछ कुछ ऐसा करेंगे या कहेंगे विच विल नॉट बी अकॉर्डिंग टू द वे आई वॉन्ट देम टू बी। आज सारा दिन अवेयरनेस एंड चेकिंग, कौन ज्यादा पावरफुल है, बातें, सिचुएशंस और मी, किसका प्रभाव किस पर पड़ता है। आज सारा दिन सिर्फ चेकिंग, बात आई बात गई, मुझ पर उसका कितना प्रभाव पड़ा।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: डिप्रेशन इज एंगर टर्न्ड इनवर्ड्स। जब आप औरों पे नहीं गुस्सा करते तो आप अपने पर ही करने लग जाते हैं, लेकिन शायद जब आप औरों पे भी गुस्सा करते हैं तब भी अपने पर गुस्सा कर रहे हैं। आपको गुस्सा देने के लिए वो मेरे से होते हुए ही गुजरेगा, वो एनर्जी पहले यहाँ क्रिएट करनी पड़ेगी। इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं आपको कुछ भी दे दूँ विदाउट क्रिएटिंग इट। पहले मुझे कूट कूट के गुस्सा अपने अंदर क्रिएट करनी पड़ेगी कि मुझे अपने आप को क्या देना है। नहीं, मुझे तो इसे गुस्सा करना ही है। कीजिए, बट ओनली रिमेम्बर द एनर्जी दैट एंगर आई क्रिएट देन आई गिव।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

0: année.
1: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में, नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
2: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, 107.8 एफएम पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

नमस्कार, मैं हूं बसवराज बबलेश्वर और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

अगर कहीं भी आग लगने की देनी हो जानकारी तो तुरंत कॉल कीजिए फायर ब्रिगेड के इमरजेंसी नंबर पर। डायल कीजिए 101 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: अरे हाँ, ये कौन सा महीना है?
1: जनवरी। ऋतु सुहानी झूमती है।
0: ये पुलिस क्यों घूमती है?
1: अरे बाबा, तुम्हें नहीं किसी चोर को ढूंढती है।

0: तो तुम क्या?
1: हाँ तो मैं क्या कह रहा था?
0: हाँ तो
1: मैं कुछ कह रहा था।
0: बोलो ना, भूल गए?
1: अरे हाँ भूल गया। चो, चो।
2: पांच YouTube वीडियो को लाइक करके पांच लोगों को स्क्रीनशॉट भेजने से पर वीडियो 500 रुपए अर्न करे।
3: क्या बात कर रहा है?
2: हाँ देख,
3: तुझे क्या लगता है ये जेन्यून है?
2: अरे हमें कहाँ पैसे देने हैं, ट्राई करके देखते हैं ना। ला देख। अरे हाँ यार, मुझे 500 रुपए मिल गए, इट मीन्स ये जेन्यून है।
3: अरे अब तो मुझे भी ये करना है।
2: 20,000 रुपए में प्राइम मेंबरशिप लेने से 50,000 तक अर्न कर सकते हैं।
4: क्या बात है यार।
5: अरे ठहरो, ये क्या करने जा रहे हो?
2: ऑनलाइन टास्क से पैसे कमा रहे हैं।
5: अननोन लिंक पर क्लिक करके पैसे देकर ऐसा नहीं करना चाहिए। एसएमएस, व्हाट्सएप, ईमेल या टेलीग्राम पर आने वाले किसी भी अननोन लिंक को क्लिक ना करें। ऑनलाइन टास्क के जरिए ज्यादा पैसा कमाने के लालच देने वाले विज्ञापनों से दूर रहें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है।

0: 107.8 FM सुन रहे हैं आप और कार्यक्रम है बहुत ही खूबसूरत, क्योंकि जिंदगी से प्यार करना सिखाता है, खुद से हमें मिलवाता है, एक ऐसे डायरेक्शन में हमें ले जाता है जहाँ पे हम भूल जाते हैं कि उन परेशानियों को पहाड़ जैसा बनाते बनाते कहीं उसी में खो तो नहीं गए हम, बल्कि वापस आ जाते हैं खुद की तरफ, वापस आ जाते हैं खुशियों की तरफ। और आज इस कार्यक्रम में हम खुद से प्यार करना थोड़ा सा और सीखेंगे। कहते हैं वो किसी और से प्यार नहीं कर सकता जो खुद से प्यार करना न जानता, और हम तो अपने रिश्तों में, जिंदगी में न जाने कितने लोगों से प्यार करते आए, तो क्या कुछ ऐसा प्यार भी है जो हमने एक्सप्लोर नहीं किया अभी तक? आइए जानते हैं। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ी हैं कल्पना जी ग्लोबल अस्पताल से, जो कि साइकोथेरेपिस्ट भी हैं, स्पिरिचुअल काउंसलर भी हैं। दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद अरुषि जी, फिर से एक बार श्रोताओं से मिलकर हमें बहुत बहुत खुशी हो रही है।
0: थैंक यू सो मच आप यहाँ पर आए अपना समय निकालकर। और हमारे साथ हमारे दूसरे एक्सपर्ट जुड़ गए हैं श्रीनिधि जी, जो कि जाने माने रेडियो मधुबन के आरजे भी हैं और साथ साथ मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत बहुत शुक्रिया आरुषि जी। कल्पना जी नमस्कार, सभी हमारे श्रोता मित्रों को नमस्कार। हर बार रेडियो के जरिए ही सही, जब हम एक दूसरे से ऐसे मुलाकात करते हैं तो बड़ी खुशी होती है कि हम एक दूसरे के लिए वक्त निकाल पा रहे हैं, और यही हम सबको करना भी चाहिए।
0: और आजकल हम प्यार दिखाने का, दर्शाने का बहुत सारा मटेरियल भी हमें मिलता है ना। आजकल हम YouTube पे रील्स में भी देखते हैं, सरप्राइज करना, कुछ नया करना, कुछ बड़ा करना, कुछ क्रिएटिव करना, बहुत सारे तरीके हम अपना रहे हैं। लेकिन हम सबसे पहले अगर जानने की कोशिश करें कि, क्योंकि वर्ड सेल्फ लव शायद कुछ साल पहले तक हम इस बारे में बातचीत नहीं करते थे, पर सोशल मीडिया का कल्चर आज इतना है कि ये वर्ड जगह जगह सुनाई देता है, तो ये वर्ड है क्या सही मायने में, जो शायद 30 सेकंड की रील्स में हमें नहीं पता पड़ पाता कभी कभी, अगर आप लोग इसे डिफाइन करें कि क्या है ये सेल्फ लव?
1: धन्यवाद आरुषि जी, बहुत सुंदर सब्जेक्ट है। कहा जाता है वो व्यक्ति अपने आप में खुश और संतुष्ट रहता है जो खुद से प्यार करता है। हम जब भी किसी से प्यार करते हैं तो हम उस व्यक्ति को पहचानते हैं, इसलिए उनसे प्यार करते हैं। हम जानते हैं कि उनके अंदर कौन से गुण हैं, कौन सी विशेषताएं हैं, और उनसे कहीं ना कहीं हम कनेक्ट करते हैं, तब हमें उनसे प्यार होता है। और जब हमें किसी से प्यार होता है, चाहे वो दोस्त हो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, परंतु जब हमें किसी से प्यार होता है तब हम उसकी कमजोरियों को नजरअंदाज करके वो जो है जैसा है उसे स्वीकार करते हैं। तो वही चीज जब हम खुद से प्यार करने के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले मैं जो हूं जैसा हूं, अपने आप को स्वीकार करना बहुत जरूरी है। खुद से प्यार करना क्यों जरूरी है? क्योंकि आरुषि जी या श्रीनिधि भाई भी, सॉरी श्रीनिधि जी भी मेरे से सहमत होंगे कि खुद से प्यार करना क्यों जरूरी है। अरे, आप अपने आप से ही प्यार नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? अगर आप खुद ही खुद से प्यार नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? और अगर आप खुद से प्यार करेंगे तो वो डेफिनेटली प्योर भी होगा, 100% भी होगा, सच्चा भी होगा, है ना? क्योंकि आप अपने आप से ऐसा प्यार कर सकते हैं जिस प्यार की अपेक्षा हम दूसरों से करते हैं, कि मेरी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड जो है वो बहुत प्यार करने वाला हो, मुझे रिस्पेक्ट देने वाला हो, मेरी केयर करने वाला हो, मुझे समय देने वाला हो, मुझे अंडरस्टैंड करने वाला हो। सो जब हम अपेक्षा रखते हैं दूसरों से ऐसे, चाहे वो फ्रेंड हो या गर्लफ्रेंड हो, तो कई बार हमें निराशा मिलती है, और फिर उस निराशा में हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, ओवरथिंकिंग में चले जाते हैं, या वो जो निराशा है उसको हम कैरी करते हैं अपने लाइफ में। क्यों ना हम सबसे पहले खुद से प्यार करें? खुद से प्यार करने का मतलब सबसे पहले मैं जो हूं जैसा हूं अपने आप को एक्सेप्ट करना, है ना? कुदरत ने हम सभी को बहुत सारे गुण, शक्तियां और पोटेंशियल से नवाजा है, अगर हम अपने आप में देखें कि मेरे में ये गुण है, मेरे में ये कला है, मैं इसमें माहिर हूं, तो मैं अपने आप को अच्छी तरह से प्यार से सबसे पहले एक्सेप्ट कर पाऊंगा।
0: वंडरफुल। अब मैं श्रीनिधि जी आपसे भी जानना चाहूंगी, जैसे सेल्फ लव का मीनिंग बताया कल्पना जी ने बहुत ही सुंदर, ये क्यों कहा जाता है कि जो खुद से प्यार करना नहीं जानता वो किसी और से प्यार नहीं कर सकता? क्योंकि हम जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं तो हम प्यार करते हैं, अपने माता पिता से प्यार करते हैं, अपने सिबलिंग से, भाई बहनों से, दोस्तों से, कितने लोगों से, लेकिन खुद से प्यार करना के बारे में सोचा नहीं होता कभी। तो ये लाइन, इसका मतलब क्या है और क्या ये सच है?
2: जैसे अभी कल्पना जी ये बात कह रहे थे तो मेरे को वो शेर याद आया, खुद से ही जब मोहब्बत हो, खुद से ही जब मोहब्बत हो गई तब हर गम से राहत हो गई, ये बात कही जाती है। अक्सर हम देखते हैं कि हम दुखी होते हैं या हमें किसी प्रकार का गम जिंदगी में देखने को मिलता है तो हम ये सोचते हैं कि उसकी वजह कोई और है। हम कहते हैं कि मुझे वो नहीं मिला या ये चीज नहीं मिली, या हम जो चीजें हमारे पास कमी पेशियां हैं उसकी वजह से हम नाराज या गमगीन होते हैं। अक्सर कभी कभार ये भी चीज देखने को मिलती है कि कुछ खराब हालतों में लोगों की सोच ऐसी हो गई होती है कि किसी और को मिला और वो चीज मुझे नहीं मिली, इसलिए वो ज्यादा दुखी हो जाते हैं। तो यहां पर देखने वाली बात यही है कि हमारा गम आखिर है क्या, हमारा गम कमी है किसी चीज की। हम ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि किसी से हमें कोई चीज मिले, जरूरी नहीं ये चीज कोई फिजिकल चीज हो, ये मोहब्बत हो सकती है, प्यार हो सकता है, रिस्पेक्ट हो सकता है, किसी ने मेरे मुझे पूछा नहीं, ये सिंपल सी बात पर भी लोग नाराज हो जाते हैं या वो दुखी हो जाते हैं। तो ये तब होता है जब हमारी एक्सपेक्टेशंस दूसरों से होती है। मैं ये सिर्फ रिलेशनशिप्स की बात नहीं कर रहा, हालांकि कल्पना जी ने रिलेशनशिप्स का जिक्र किया, आज हम रिलेशनशिप्स में भी एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीद लगाते हैं कि सामने वाला या सामने वाली मुझे ये चीज दें और इस तरीके से मेरे साथ पेश आए। तो हमारी उम्मीदें दूसरों से कोई चीज की जो है वो हमें अक्सर परेशान करती है जब वो चीजें नहीं मिलती हैं। तो अगर मुझे खुद ही से मोहब्बत हो जाए, जैसे ये शेर कह रहा था कि अगर मुझे अपने आप से मोहब्बत है तो मैं हर गम से मेरी राहत हो गई है, मतलब मुझे राहत मिल गया, अब मुझे किसी और से गम ही नहीं है क्योंकि मैं दूसरों से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं अपने आप से प्यार कर रहा हूं। मुझे प्यार की जब बात कही जाती है, या प्यार का मतलब आई लव यू कहना नहीं है कि हर दिन हम आईने के सामने खड़े हो जाएं और सुबह सुबह उठ के बोले आई लव यू, हालांकि कहना भी चाहिए, अच्छी बात है, यदा कदाप कर भी लें, मगर कहने का भाव वो नहीं है कि मैं अपने आप को प्यार से इतना भरपूर कर लूं कि मुझे कहीं और से प्यार की तमन्ना या प्यार को भरने की जरूरत नहीं पड़े। अब जैसे आप ये बात कह रहे थे आरुषि जी, मैं आपके सवाल पर आता हूँ। जब हम सेल्फ लव की बात करते हैं तो हम माँ बाप से प्यार करते हैं, भाई बहनों से प्यार करते हैं, हमारे दोस्तों से प्यार करते हैं, अगर आप शादीशुदा हैं तो आप अपने परिवार में बीवी बच्चों से या अपने पति से, सबसे आप प्यार करते हैं। अगर आप मैरिड नहीं है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी संबंध आप हैं, आप प्यार तो करते ही होंगे, मगर कभी कभार इंसान प्यार की कमी महसूस करता है, किसी से नाराज हो जाता है या किसी ने टाइम पे मेरा फोन नहीं उठाया, मेरे से ठीक से बात नहीं की, मेरी बात नहीं सुनी, तो इन लम्हातों में हम प्यार की कमी महसूस करते हैं क्योंकि हम अपेक्षा रखते हैं कि वो तो मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। हम ये भूल जाते हैं कि प्यार देने का सिलसिला है, अगर हम उसे लेने के बारे में सोचने लगे तो शायद हमें तकलीफ होने लगती है। अक्सर करके हमें माँ बाप के प्यार की कमी महसूस नहीं होती, खासकर तब, समझ ले अगर हमारे माँ बाप जिंदा हैं, हमारे साथ रहते हैं, आसपास रहते हैं, तो कभी कोई बच्चा अपने माँ बाप से ये शिकायत नहीं करता, मम्मी आप मेरे से प्यार नहीं करते, पापा मेरे से प्यार नहीं करते, नहीं करता है सब। हाँ, छोटे बच्चे जब घर में दो बच्चे होते हैं, दो से ज्यादा होते हैं, तो तब जरूर कंपेयर कर लेते हैं, आप मेरे से ज्यादा तुम भाई को प्यार करती हो, मेरे से ज्यादा तुम बहन को प्यार करती हो, ये जरूर कह सकते हैं, मगर ये नहीं कहते कोई भी बच्चे कि माँ बाप उनसे प्यार नहीं करते। हालांकि आप रिलेशनशिप्स में ये जरूर सुनेंगे कि एक समय के बाद गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड या जो भी जिस प्रकार के संबंध है, पति पत्नी जो भी संबंधों में वो है, एक समय के बाद में लोग कह रहे थे तुम तो मुझसे प्यार ही नहीं करते।
0: सालों बाद ऐसा डायलॉग सुनने को मिलता है।
2: क्यों? क्योंकि माँ बाप का प्यार देने का प्यार है, वो हमेशा ही इससे देते रहते हैं, उनसे उनको कभी उम्मीद नहीं होती कि बच्चे उनके लिए कुछ करें या उन्हें कुछ रिटर्न करें, नहीं। और दूसरे संबंधों में जब हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई नहीं वो हमसे प्यार नहीं करते, जब हम ये समझने लगते हैं इसका मतलब ये है कि हम उनसे उम्मीद लगाए बैठे थे और वहां से वो चीज मिली नहीं। और इसलिए सेल्फ लव बहुत जरूरी है कि जब मैं खुद को खुद मोहब्बत करने लगूं, यानी खुद ही अपने आप को फुलफिल रखूं, मैं उस प्यार का स्रोत बना रहा हूं और अपने आप को भरता रहूं। हम प्यार तो देने का नाम ये कहते भी हैं कि हम प्यार देते हैं दूसरों को, मगर कभी कभार अगर हम अपने आप को भर लें, अपने आप को दे दें प्यार, शायद हम खाली होंगे ही नहीं, किसी और से मांगने की उम्मीद ही नहीं होगी।
0: मतलब वो भरपूर रखता है हमें जब हम खुद से प्यार रखते हैं, खालीपन की महसूसता नहीं होती। कल्पना जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, कभी कभी ऐसा होता है रिलेशनशिप्स की क्योंकि बात की कि मान लीजिए प्यार तो बहुत है लेकिन किसी ने मान लीजिए फोन नहीं उठाया, और कोई फोन ना उठाए उसमें इतना पैनिक हो जाता है कि उसको मतलब 40 बार 50 बार 100 बार भी कॉल मिला देते हैं, कैसे नहीं उठाया या क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में या क्या कर रहे होंगे, मुझे क्यों नहीं बताया। वो जो एंजाइटी हो जाती है या वो ऊपर नीचे हो जाते हैं इतने सारे थॉट्स, और तब तक कुछ और नहीं सोचता जब तक वो बात ना हो जाए, तो क्या ये भी इस लेवल का प्यार है जो लेकिन वो मतलब ये सब चीजें भी लेकर आता है प्यार, उतार चढ़ाव ऐसी चीजें भी लेकर आता है प्यार?
1: आरुषि जी, जिनसे हम प्यार करते हैं चाहते हैं कि उनके साथ हम हमेशा जुड़े रहे, उनका अटेंशन हमें हमेशा मिलता रहे, ये तो एक कपल्स के बीच की बात है, अटेंशन प्यार मुझे चाहिए उनका। लेकिन बाकी सभी रिलेशंस में जब हम फोन करते हैं और बहुत लंबे समय तक हमारा फोन नहीं उठाया जाता है, समझो कि एक लड़की घर से निकलती है कॉलेज के लिए और शाम को वापस नहीं लौटती है, तो उसके माता पिता उसको हजारों बार कॉल करेंगे, और बेदरकार वृत्ति से अगर लड़की उन्हें जवाब न दे तो माँ बाप क्या सोचेंगे, सोचेंगे ना कि कहीं कुछ गलत हो गया है। सो इसलिए वो एंग्जाइटी तो नॉर्मल है, नेचुरल है, होगी ही। परंतु कोई व्यक्ति काम पर गया है, बिजी है, लोगों के बीच में है और वो हमारा फोन अटेंड नहीं कर रहा है केवल इस अहंकार के कारण कि मेरा फोन क्यों नहीं अटेंड किया, मुझे जवाब क्यों नहीं दिया, मुझे इंपॉर्टेंस नहीं दिया,
0: मुझे इग्नोर कैसे
1: इस
0: किया?
1: बात को लेकर इग्नोर कैसे किया, तो ये दर्शाता है कि आप अंदर से कितने खाली हैं। तो अंदर से खाली जो व्यक्ति होता है वो हमेशा दूसरों के अटेंशन, प्यार नहीं कहेंगे हम, अटेंशन के बारे में इनसिक्योर रहता है। उसको अटेंशन भी चाहिए, उसको पजेसिवनेस भी होती है कि ये व्यक्ति केवल मेरा है, ये किसी और से बात नहीं करना चाहिए, किसी और से उसका कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, ये मेरी अमानत है और हर समय मेरी आसपास रहनी चाहिए। तो ये जब चीजें आती है लाइफ में तब हम साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब रहना शुरू होते हैं, है ना। तो ऐसे समय पर हमें क्या करना चाहिए? सो सेल्फ लव के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो हमें अपने आप के साथ दोस्ती करनी चाहिए, अपने लिए एक बेस्ट फ्रेंड मैं बन जाऊं तो मैं अपने साथ टाइम, अकेले में टाइम बिताने में बहुत खुश रहूं, और मैं ढूंढूं कि कब मैं लोगों से फ्री हूं और खुद के साथ टाइम स्पेंड करूं। जब हम खुद के साथ अकेले में बिना कुछ मोबाइल वगैरह यूज किए नेचर के सानिध्य में बैठकर टाइम स्पेंड करते हैं तो बहुत सारी बातें हम अपने आप में रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, पुरानी यादों को ताजा कर सकते हैं, पुरानी घटनाओं से मिली हुई शिक्षा को दोहरा सकते हैं, प्रकृति के साथ संबंध बना सकते हैं, अपनी हार्ट बीट्स को सुन सकते हैं, अपने शरीर की जो कई बार शरीर चीख पुकार करता है, कई बार शरीर मैसेज देता है, उनको हम साइलेंस में सुन सकते हैं। शरीर के साथ हम अपने मन की बात को सुन सकते हैं, मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या पसंद है, मेरा मन किस में लगता है, मुझे खुशी किस चीज में मिलती है। जब हम खुद के साथ बातें करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, खुद से सवाल पूछते हैं, तो अपने आप से हमारी दोस्ती होने लगती है। मेरे साथ अक्सर पहले ये होता था कि जब भी मैं कभी फ्री होती थी तो मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील होता था कि अरे कोई नहीं है, मैं किससे बात करूं, मैं अकेली फील कर रही हूँ, लोनलीनेस आ रहा है, और मुझे बहुत रोना आता था कि अरे मैं अकेली हूँ, कोई आसपास नहीं, मैं किससे बात करूं। मैं जाकर किसी से बात करती थी या फोन करके किसी को। तो लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा कि आपके लिए कोई भी हमेशा अवेलेबल नहीं रह सकता है
0: जी।
1: आपको खुद के लिए खुद अवेलेबल रहने की आवश्यकता है। सो मैं अपने लिए अवेलेबल नहीं हूँ, बाकी सबके लिए अवेलेबल हूँ। जैसे मैं मदर्स की बात करूं, तो किसी भी मदर को पूछो कि आपको क्या चाहिए, मैं अपने बच्चों की, परिवार की खुशी चाहती हूँ, उनकी प्रोग्रेस। मैं फिर से पूछती हूँ उनको, आपको अपने लिए क्या चाहिए? नहीं, मेरे लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे नींद ना मिले चलेगा, मुझे खाना ना मिले, कोई खाना नहीं बचे और मेरे बच्चे प्यार से खा ले, मुझे चलेगा, मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े मैं आराम नहीं करूंगी जब तक मेरे बच्चों को मैं स्टेबल या सेटल नहीं करूं।
0: बिल्कुल।
1: सो ये है महिलाओं के बीच में, माताओं के बीच में, स्पेशली अभी अभी रिसेंटली हमने मदर्स डे भी सेलिब्रेट किया। और जब ये खुद को निग्लेक्ट करती है मदर्स अपने बच्चों के या अपने परिवार के खातिर, तो वो वहां पर सेल्फ लव को डेवलप करने की जरूरत है। उनको चाहिए कि अपने लिए कुछ क्षण फुर्सत के निकाले, खुद के साथ टाइम स्पेंड करे। मुझे चाय पसंद है, चलो ना मैं अपने लिए चाय बनाऊं और बैठकर कहीं आराम से गा। मदर्स की जब हम बात करते हैं, कभी अपने लिए नहीं सोचती है कि मेरा वेट बढ़ता जा रहा है, मुझे आजकल थकावट हो रही है, मेरे घुटने और पैर दर्द कर रहे हैं, मेरा सिर दर्द होता है, मुझे नींद पूरी नहीं मिल रही। किनारे करके अपने बच्चों के लिए दिन रात, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करती है। परंतु ऐसी ही मदर्स को चाहिए, सेल्फ लव का मतलब है कि थोड़ा सा टाइम 24 घंटे में अपने लिए भी निकाले। जब आप अपने मनपसंद की चीज बनाकर खुद एकांत में बैठ के आराम से एंजॉय करें
0: जी,
1: तो हमें अपने आप के साथ दोस्ती करना बहुत जरूरी है।
0: और बड़ा इंटरेस्टिंग जो आपने बातें बताई कल्पना जी, मुझे ये समझ में आया उससे कि खुद के साथ टाइम बिताने को हम कभी कभी, खुद के साथ प्यार करने को हम ये समझते हैं जैसे किसी और का शेयर हमें बांटना पड़ेगा, इससे अच्छा बच्चों को प्यार कर लें, इससे अच्छा रिश्तों को प्यार कर लें। लेकिन ऐसा है नहीं, खुद के साथ प्यार करेंगे तो उनको भी ज्यादा दे पाएंगे। तो वो टाइम स्पेंड करना कितना जरूरी है खुद के लिए, वरना हम खाली होते जाएंगे तो प्यार देना मुश्किल होता जाएगा, जैसा आपने बताया। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये बात। श्री जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी श्रीनिधि जी कि सेल्फ लव क्या, हमने कोई चीज कभी एक्सपीरियंस नहीं की होती तो हमें उसकी वैल्यू नहीं पता होती कभी कभी, तो कैसी महसूसता होती है, मतलब क्या फील होता है जब हम खुद से प्यार करना सीख जाते हैं, क्या अनुभव कैसा होता है वो?
2: सबसे पहला तो मैं ये चीज कहना चाहूंगा, जैसे कल्पना जी कह रहे थे कि कभी क्या मैंने अपने लिए वक्त निकाला है, कभी मैं नेचर में, प्रकृति के सानिध्य में, कहीं बगीचे में, कहीं बाहर सैर करने के लिए मैं निकलूं, कभी मैंने अपने पसंद का संगीत सुना, कभी मैंने अपने लिए वक्त निकाल कर मैंने अपनी दिल की धड़कनों को सुना। जब वो ये बात कह रहे थे तो मैंने कहा कि जब भी मैं ये चीज करता हूं अपने लिए, और मैं उन खुश नसीब लोगों में से हूं जो प्रकृति के सानिध्य को पसंद करते हैं और मेरे आसपास प्राकृतिक सौंदर्य की छटाएं हर दिन मौजूद हैं, मैं एक हिल स्टेशन पर रहता हूं, तो इस वजह से मैं आबू की इन पहाड़ियों का लुत्फ लेता हूं और लगभग हर दिन ही मैं लेता हूं। और मैं कोशिश ये करता हूं कि मैं इस सौंदर्य को, ये जो खूबसूरती कुदरत ने बख्शी है इसका आनंद खुद लूं और अपने लिए मैं लेता हूं ये चीजें। और जब भी हम अपने लिए कुछ ऐसी चीजें करते हैं तो हम सभी को अच्छा लगता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे जब कल्पना जी बात कह रहे थे कि अपनी धड़कनों को कभी सुनना चाहिए, तो मुझे कैफी आजमी के लिखे हुए आशार याद आते हैं। उन्होंने कहा कि तू अपनी दिल की जवां धड़कनों को गिन के बता, तू अपने दिल की जवां धड़कनों को गिन के बता, मेरी तरह तेरा दिल बेकरार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं। बहुत ही सुंदर गाना भी है, फिल्म में इसका इस्तेमाल किया गया,
0: बहुत सुंदर गीत।
2: तो ये लाइनें याद दिलाती हैं कि हम अक्सर ये सोचते हैं कि ये रोमांटिक गाने जो लिखे गए हैं वो एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के लिए लिखे हैं, मगर कभी कभार अगर आप अपने लिए इन लाइनों को अप्लाई करके देखें तो अपने लिए भी कभी कभी जांच करके देख लें कि दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, मैं अपने आप से प्यार करता हूं नहीं, कि अपने लिए मैं कुछ कर रहा हूं या नहीं, ये भी पूछना बहुत जरूरी है। जब हम ये चीजें करते हैं तो तब हमें समझ में आता है कि अपने साथ जो हमने वक्त बिताया है वो कितने खूबसूरत लम्हात हैं और वो लम्हे बेशकीमती होते हैं। कभी कभार आप देख रहे होंगे कि घर में कोई गृहिणियां होती हैं, घर का काम कर रही होती हैं, मगर वो अपने पसंद का म्यूजिक लगाकर या फिर रेडियो सुनते हुए झूमते हुए गाना गाते हुए काम कर रही हैं, वही घर का काम कर रही हैं, झाड़ू पोछा कर रही होंगी या घर की साफ सफाई कर रही होंगी या खाना बना रही होंगी, मगर वो एंजॉय करते हुए चीजें कर रही हैं। मैं ये नहीं कहता कि हर दिन ऐसा कर पाना संभव है या नहीं, मगर जिस रोज उन्होंने इस तरीके से अपने काम को एंजॉय किया होगा उस दिन के बारे में अगर आप उनसे पूछेंगे तो ये कहेंगे वाह आज का दिन तो क्या दिन गया है,
0: क्या दिन गया है।
2: तो ऐसा हर किसी के साथ होता है, जरूरी नहीं कि हम हॉलीडे पे चले जाएं, हम सोचें कि भैया चलो श्री जी माउंट आबू में रहते हैं हम भी चले जाएं माउंट आबू में और ऊपर नक्की झील के किनारे
0: पहाड़ों पे जाके सेल्फ लव हो पाएगा,
2: नहीं ऐसा नहीं है,
0: ऐसा नहीं है
2: बिल्कुल। आपको कभी कभार अपने लिए ब्रेक लेना चाहिए, बिल्कुल जरूरी भी है, और इसलिए मैंने कहा कि मैं खुशकिस्मत हूं कि मेरे आसपास ये चीजें मौजूद हैं। आपके पास भी ऐसे बहुत सारी चीजें मौजूद होंगी। मैं आज से कई सालों पहले मैं बैंगलोर में रहता था और बैंगलोर को जैसे आप जानते होंगे उसे गार्डन सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है कि भारत की उद्यान नगरी उसको कहा जाता है कि इतने सारे बगीचे और बाग और पार्क्स बैंगलोर में हैं जिसकी वजह से उसे उद्यान नगरी कहा जाता है। तो कितने लोग होंगे जो बैंगलोर के इतने बड़े शहर में रहते हो अपने आसपास के बगीचे को जानते होंगे या पार्क को जानते होंगे और कितने लोग हर दिन अपना समय वहां बिताने जाते होंगे। ये भी एक प्रकार का सेल्फ लव है, आप अपने लिए समय निकाल कर बाहर जा रहे हो, घर से बाहर जा रहे हो। चलिए आप ऑफिस का काम कर रहे हैं, ऑफिस से आने के बाद भी या ऑफिस जाने से पहले आप अपने लिए क्या 5 मिनट 10 मिनट निकाल पा रहे हैं। तो ये चीजें बताती हैं कि हम एक्चुअली में क्या चीजें हम कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, और अपने आसपास ही कर सकते हैं, जैसा आपने बताया अलग अलग शहरों का भी बताया, तो भले हम ट्रिप्स पे भी जाएं लेकिन अपने आसपास का वेट ना करें कि ट्रिप पे जाएंगे तो ही खुद के साथ समय बिताएंगे, अभी भी छोटी छोटी खुशियां छोटी छोटी चीजें अपने लिए करना शुरू कर दें और वो अनुभव करें कि खुद से प्यार करना कैसा होता है। थैंक यू सो मच कल्पना जी, थैंक यू सो मच श्रीनिधि जी, आप दोनों ने मुझे लगता है हम एक्सपीरियंस कर रहे थे आप जो जो बोल रहे थे साथ साथ, तो कुछ एक स्टेप तो और आगे लेंगे ही, क्योंकि अगर जिंदगी इससे बेहतर होती है खूबसूरत होती है सिर्फ इतना सा कदम बढ़ाने से, तो क्यों ना बढ़ाएं हम खुद से प्यार सबसे पहले, क्यों ना निभाएं हम। तो थैंक यू सो मच आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए आज स्टूडियो में,
2: बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी आरुषि जी, और मैं यही उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आज आप अपने लिए कुछ कीजिए, अपने आप से प्यार करने के मायने समझें, अपने पसंद का गाना लगाइए, थोड़ा झूम लीजिए, थोड़ा घूम लीजिए, घर से बाहर निकलिए या घर के काम करते हुए भी आपकी पसंद की चीजें जो हैं वो करें और आप ये समझें कि मैं अपने आप को प्यार करते हुए ये चीज कर रहा हूं। अगर आपको ये सारी चीजें मुश्किल लगे तो आईने के सामने खड़े हो जाइए और बोलिए मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। कभी कभार ये भी चीज कर लेने से हमारा दिन बेहतर हो जाता है।
0: मैं तो डेफिनेटली जाके अभी अपना फेवरेट गाना प्ले करने वाली हूँ और अकेले में उसे एंजॉय करने वाली हूँ। तो दोस्तों आप भी जरूर कीजिएगा ये और बताइएगा आपको कैसा लग रहा है। हमें व्हाट्सएप में मैसेज करके, हमारा नंबर है 9414151415, यानी कि 9414151415। लव यू जिंदगी की अगली कड़ी में मुलाकात होगी। तब तक के लिए रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जिंदगी से कह दीजिए लव यू जिंदगी।
3: अरे दिल को संभाल, तू गम न पाल, दबे दबे सोए सोए अरमान निकाल।

सभी भाई बहनों को नमस्कार। मैं हूं अन्ना हजारे और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहे हैं उसका भी कारण यही है कि जीवन का अज्ञान। अज्ञान क्या है? खाओ पियो चैन बजे करो एक दिन मरना है। ये जो अज्ञान है इसके कारण ये बुराइयां बढ़ रही है। दूसरा है पश्चिमी संस्कृति का अतिक्रमण, चंगलवाद, भोगवाद, और वो संस्कृति हमें यही बता रही है खाओ पियो चैन बजे करो एक दिन मरना है। इसीलिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो विद्या सिखाई जाती है और वो जो बाबा ने संदेश दिया है, अरे खाना पीना और मरना जीवन नहीं है, मनुष्य जीवन में आया है, खाया पिया और एक दिन चला गया, तो पशु और तेरे में क्या अंतर है? अंतर इतना है कि पशु हरा घास खाते, सूखा घास खाते, आप ज्वार बाजरा की रोटी खाते, गेहूं की रोटी खाते। खाना पीना और मरना जीवन नहीं है। मानवीय जीवन कोई विशिष्ट जीवन है। भगवान ने आपके प्रति ज्ञान दिया, बुद्धि दी, शक्ति दी। मैं कौन है, मैं कहाँ से आया है, मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे जाना कहाँ है, इन बात को सोचो। ये ज्ञान अगर हर इंसान के दिल में आ गया तो बहन और भाई में कोई फर्क नहीं होगा, स्त्री और पुरुष में कोई फर्क नहीं होगा, भगवान के घर में वो सब एक ही संतान है। ये समझ में आएगा, ये समझ में आने के बाद ये परिवर्तन होगा। ये चंगलवाद, भोगवाद, ये संस्कृति जो हमारे देश में अतिक्रमण कर रही है उसके कारण आज महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार होते हैं चंगलवाद, भोगवाद के कारण।

0: एक गीत एक नारा राष्ट्रगीत हमारा कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। हम सुन रहे हैं वीर क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा की साहस भरी कहानी। वो शूरवीर जिनके फांसी पर चढ़ते हुए आखिरी शब्द थे वंदे मातरम। ये एक ऐसा मंत्र था जिसने स्वतंत्रता आंदोलन में जबरदस्त ऊर्जा भर दी थी। जब रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे संगीतबद्ध किया तो ये पूरे राष्ट्र की आवाज बन गया। तमिलनाडु में भारती, पंजाब में क्रांतिकारी, सभी इससे प्रेरित हुए। ब्रिटिश पाबंदियों के बावजूद लोग इसे गाते एवं गुनगुनाते रहे। यहाँ तक कि 1906 के बारीसाल आंदोलन के रक्तपात के बीच भी यही मंत्र गदर पार्टी, आजाद हिंद फौज और 1946 के नौ सैनिक विद्रोह में गूंजता रहा। खुदीराम, अश्वाकुल्ला, आजाद और तिरुपुर कुमारन सभी का नारा एक ही था, वंदे मातरम। जब अंग्रेजों ने भारतीयों पर अत्याचार किए और अपनी आवाज उठाना एक अपराध बन गया, जब लाठीचार्ज, गोलियां और जेलें भी भारतीयों को रोक नहीं पाई, तब हमारे क्रांतिकारियों ने पुकारा था, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ब्रिटिश सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। वो जानते थे कि वंदे मातरम की गूंज में डर के लिए कोई जगह नहीं है। तभी तो मृत्यु को सामने खड़ा देखकर भी क्रांतिकारी मदनलाल ढींगरा का साहस नहीं टूटा।
1: दीदी, सच में मदनलाल का साहस देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
2: यही तो वीरों की विशेषता होती है बन्नो, वे किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते। पुलिस हिरासत में जाने से लेकर अदालती कार्यवाही शुरू होने तक मदनलाल के चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं आई।
0: वाइली की मौत की जांच कैनसिंगटन टाउन हॉल में कोरोनर सी लक्समूर ड्रू के सामने चल रही थी। वहां ब्रैड्सफोर्ड गार्डन्स हैम्पस्टेड के एक पूर्व सैनिक अधिकारी कैप्टन चार्ल्स रोलरटन वहां मौजूद थे, लेकिन मदनलाल ने इस कार्यवाही में हिस्सा लेने से मना कर दिया था। कोर्ट में एक गवाह ने ढींगरा पर कुछ अजीब से आरोप लगाए।
3: ढींगरा ने शायद भांग नाम का नशा किया था, क्योंकि वे थोड़े सुस्त और खोए से थे। भारतीय लोग इस तरह का जघन्य अपराध करने से पहले अक्सर भांग का सेवन करते हैं।
4: क्या आपने ढींगरा को किसी नशे के असर में देखा था?
5: नहीं, ढींगरा बिल्कुल सामान्य स्थिति में लग रहे थे और पूरी तरह शांत थे।
0: मुकदमे के दौरान मदन लाल ढींगरा की मकान मालकिन हैरिस ने भी अपना पक्ष रखा।
6: मुझे नहीं लगता कि ढींगरा किसी तरह का नशा करते थे।
0: वॉक्सहॉल ब्रिज के डॉक्टर जॉन बुकानन हत्या की जगह पर पहुंचने वाले पहले डॉक्टर थे, उन्होंने भी गवाही दी।
7: भीड़ में वह सबसे शांत व्यक्ति लग रहे थे।
0: मुकदमे के दौरान मदनलाल ढींगरा की मानसिक जांच मनोचिकित्सकों द्वारा की गई थी, ताकि ये पता चल सके कि क्या उनकी मानसिक स्थिति सामान्य से कमजोर है। लेकिन जांच के नतीजे सामान्य आए। जब वेस्टमिंस्टर के कोरोनर जॉन ट्राउट बेक के सामने जांच हुई तो ढींगरा ने अपना पक्ष रखा।
8: मुझे लाल काका की आकस्मिक मृत्यु पर गहरा अफसोस है। अगर वे बीच में ना आए होते तो उनकी जान न जाती।
0: ढींगरा को वेस्टमिंस्टर पुलिस कोर्ट के मजिस्ट्रेट हॉरिस स्मिथ के सामने पेश किया गया। वहां उन्होंने कहा,
8: मैं दया की भीख नहीं मांगता और ना ही मैं अपने ऊपर आपके अधिकार को स्वीकार करता हूं।
0: ढींगरा का मामला सेशंस कोर्ट को सौंप दिया गया। उन्होंने कोर्ट से सीधे सीधे पूछा,
8: अगर जर्मनों को इंग्लैंड पर राज करने का कोई अधिकार नहीं है तो फिर अंग्रेजों को भारत पर राज करने का क्या अधिकार है?
0: मुकदमे के दौरान भारतीयों को कोर्ट के अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। अपने अंतिम दिनों में मदन लाल ढींगरा ने इच्छा जाहिर की थी कि अपने कपड़े, किताबें और अन्य सामान बेच दिए जाएं।
9: उससे जो भी पैसा मिले उसे नेशनल फंड में जमा करा दिया जाए। हालांकि इन्हें लंदन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने जब्त कर लिया। दो ट्रंक चीफ इंस्पेक्टर मैकार्थी ले गए। ढींगरा ने चिट्ठी दी थी जिसमें उन्होंने नितिन सेन द्वारका दास को अपनी निजी चीजों का मालिक बनाया था, लेकिन लंदन टाइम्स की 1 जनवरी 1910 की एक रिपोर्ट के अनुसार 31 दिसंबर 1909 को जब ये मामला बो स्ट्रीट मजिस्ट्रेट की अदालत में आया तो उन्होंने फैसला सुनाया कि पुलिस ढींगरा की चीजें नितिन सेन को लौटाने के लिए बाध्य नहीं है क्योंकि मदनलाल ढींगरा ने कोई वसीयत नहीं बनाई थी।
1: दीदी, क्या किसी ने मदनलाल ढींगरा को बचाने का प्रयास नहीं किया? और सावरकर जी ने?
2: बुरे वक्त में ही अपनों की असल पहचान होती है बन्नू। खुद मदनलाल के भाई भजनलाल ने उनका साथ छोड़ दिया जबकि वे लंदन में ही कानून की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन सावरकर जी ने साथ नहीं छोड़ा।
9: असल में 5 जुलाई 1909 को कैक्सटन हॉल में मदनलाल ढींगरा की निंदा करने के लिए एक बैठक आयोजित की गई थी। इसमें भजनलाल भी शामिल थे। सभा की अध्यक्षता आगा खान कर रहे थे। भावनगरी ने प्रस्ताव पेश किया था और अमीर अली ने उसका समर्थन किया था। जब प्रस्ताव पर मतदान हुआ तो कई लोगों ने हाथ ऊपर उठाए। आगा खान को घोषणा करनी पड़ी कि प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो गया है। तब सावरकर ने उसका पुरजोर विरोध किया और कहा,
10: नहीं, सर्वसम्मति से नहीं, इस प्रस्ताव के विरोधी भी मौजूद है, मेरा नाम दर्ज करें, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।
11: पकड़ो इसे।
2: जानती हो, इस बात पर वहां भारी हंगामा मच गया। भावनगरी गुस्से से आग बबूला हो गए और सावरकर को पकड़कर हॉल से बाहर निकालने की कोशिश की। तब आगा खान ने उन्हें फटकार लगाई। पामर नामक एक यूरेशियन व्यक्ति ने सावरकर पर वार किया। उनके शरीर से खून बहने लगा। इसके बावजूद सावरकर ने कहा,
10: मैं अब भी इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।
9: तभी सावरकर के मित्र एमपीटी आचार्य ने छड़ी से पामर पर वार कर दिया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इस घटना पर अपना रोष व्यक्त किया।
12: सावरकर को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार था। उन पर हमला करना अत्यंत निंदनीय और घोर अन्यायपूर्ण है।
9: इस घटना के बाद सावरकर चुप नहीं बैठे। उन्होंने टाइम्स और अन्य समाचार पत्रों को एक पत्र लिखा।
10: चूंकि यह मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए सार्वजनिक रूप से इस मुकदमे पर चर्चा करना और इसके लिए अपराध तथा अपराधी जैसे शब्दों का प्रयोग करना कोर्ट की अवमानना के समान है।
9: सावरकर का यह पत्र 6 जुलाई 1909 को टाइम्स समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ। उधर मदनलाल ढींगरा की निडर देशभक्ति ने कुछ अंग्रेजों को इतना प्रभावित किया कि वो उनके लिए दया की अपील तक करना चाहते थे। उनमें से एक थे रिव्यू ऑफ रिव्यूज के संपादक W.T. स्टेड। स्टेड सावरकर के प्रशंसक और भारत की आजादी के समर्थक दोनों ही थे। उन्होंने अपने घर पर बिपिन चंद्र पाल के भारतीय सभ्यता पर व्याख्यानों का आयोजन किया था, लेकिन दया याचिका दायर करने की बात कहने की वजह से स्टेड को 3 महीने की जेल काटनी पड़ी। बाद में ऑब्जर्वर को लिखे एक पत्र में स्टेड ने तर्क दिया,
12: ढींगरा ने पागलपन के दौरे में यह हत्या की थी, इसलिए उनकी मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया जाना चाहिए।
9: स्टेट के अलावा सचिव मौर्ली के परिषद के कई सदस्य मदन लाल ढींगरा की मौत की सजा के बजाय आजीवन कारावास देने के पक्ष में थे। उन्हें डर था कि उनकी शहादत से हिंसा और भी भड़क सकती है। कैबिनेट के कुछ सदस्य भी आजीवन कारावास के पक्ष में थे, लेकिन मौर्ली अपने बात पर अड़े रहे।
13: जो भी हत्यारा पकड़ा जाएगा उसे फांसी पर लटकाया जाएगा, ढींगरा का भी यही हश्र होगा।
9: ढींगरा की बहादुरी ने सम्राट एडवर्ड सेवन को भी बेहद क्रोधित कर दिया था। 17 अगस्त 1909 को लिखे एक पत्र में उन्होंने मॉर्ली को सख्त निर्देश दिया,
4: भारतीयों को बिना किसी ठोस कारण के इंग्लैंड आने से रोक दिया जाए। ऐसे छात्र इंग्लैंड में रहते हुए राजद्रोह सीखते हैं और अपने देश लौटकर दूसरों को भी भड़काते हैं।
9: आखिरकार 17 अगस्त 1909 का दिन आ ही गया जब ढींगरा को फांसी पर चढ़ाया जाता। उनके कई दोस्तों ने पेंटन विले जेल में उनसे आखिरी बार मिलने की कोशिश की। सावरकर के सुझाव पर मुंबई से निकलने वाले गुजराती दैनिक पारसी के संपादक जे एस मास्टर ने लंदन के अंडर शेरिफ और गृह मंत्रालय को एक लिखित अर्जी भेजी और जवाब का इंतजार करने लगे, लेकिन दोनों ही जगहों से उनकी अर्जी ठुकरा दी गई। जेल में मदन लाल को इसकी भनक लगी।
8: मुझे पता है कि मैं अपने दोस्तों से मिले बिना ही इस दुनिया से चला जाऊंगा।
9: जेल के अंदर और बाहर दोनों ओर इस चर्चा ने काफी जोर पकड़ लिया था। कई भारतीय नौजवान जेल के दरवाजे के बाहर उदास जमा हो गए थे। उन्हें जेल के अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली थी। यहाँ तक कि बाहर इंतजार कर रहे पत्रकारों को भी अंदर जाने से रोक दिया गया था।
14: गजब का तेज है मदनलाल के चेहरे पर। अपनी मौत को सामने देखकर भी वे कितने शांत और संयमित हैं।
9: फांसी से एक दिन पहले मदनलाल चैन की नींद सोए थे। फांसी वाले दिन उन्हें जगाना पड़ा था। उन्होंने रोज की तरह अपने सुबह के काम काज निपटाए और पेट भर नाश्ता किया। ठीक 9 बजे मदन लाल फांसी के फंदे पर लटकने के लिए निकल पड़े। हटसन नाम का एक ईसाई पादरी उनके पास आया, लेकिन मदन लाल ढींगरा ने उसे यह कहकर लौटा दिया कि वो एक हिंदू है। तब लंदन के डिप्टी अंडर शेरिफ मेटकाफ ने पेंटन विले जेल के डिप्टी गवर्नर हेल्स की मौजूदगी में ढींगरा को उनकी मौत का वारंट पढ़कर सुनाया और उनसे कुछ औपचारिक सवाल पूछे। मदन लाल ढींगरा ने उनके सवालों पर कोई ध्यान नहीं दिया और शांत कदमों से फांसी के फंदे की ओर बढ़ गए। उनकी इस बहादुरी को देखकर उनके साथ चल रहे अधिकारी भी हक्के बक्के थे। ढींगरा ने वहां खड़े जल्लाद पियर पॉइंट को देखकर हल्की सी मुस्कान दी और फांसी के तख्ते की सीढ़ियां चढ़ गए। उन्होंने खुद ही अपने गले में फांसी का फंदा डाल लिया। इस दौरान मुख से सिर्फ 2 शब्द निकले, वंदे मातरम।
15: वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।

0: दीदी, क्या मदनलाल जी का शव उनके दोस्तों या रिश्तेदारों को दिया गया?
1: रिश्तेदार कैसे, मदनलाल को फांसी दिए जाने के कुछ ही समय बाद उनके भाइयों ने ढींगरा उपनाम छोड़ दिया, सिवाय डॉक्टर बिहारी लाल के।
0: फिर किसे मिला शव?
1: मास्टर जी को मदनलाल ढींगरा के शव का पोस्टमार्टम देखने की इजाजत दी गई, लेकिन उन्हें ढींगरा का शव ले जाने की इजाजत नहीं मिली, जबकि ढींगरा की इच्छा थी कि उनके शव का अंतिम संस्कार हिंदू धर्म के रीति रिवाजों के अनुसार किया जाए, यानी दाह संस्कार हो। कई लोगों ने गृह सचिव हर्बर्ट ग्लैडस्टोन से इसकी गुजारिश की, लेकिन उसे नामंजूर कर दिया गया। ये कैसी विडंबना थी बन्नो, कि फांसी के फंदे पर चढ़ने वाले एक इंसान की आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं होने दी गई। उनके शव को एक ताबूत में बंद करके जेल परिसर के अंदर ही दफना दिया गया।
0: क्या इस जेल में और भी क्रांतिकारियों को सजा दी गई?
1: हाँ बन्नू, इस जेल में दो भारतीय क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी, मदनलाल ढींगरा और उधम सिंह। उन्हें 31 जुलाई 1940 को फांसी पर लटकाया गया था।
2: मदनलाल की फांसी के बाद मास्टर जी जब अंडर शेरिफ के साथ जेल के बाहर गए तो पत्रकारों ने उन्हें घेर लिया। डेली मिरर के संवाददाता ने मास्टर जी से पूछा,
3: क्या भारतीय लोग ढींगरा को शहीद मानेंगे?
4: बिल्कुल, उन्होंने अपने देश की भलाई के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी है। अब भलाई के बारे में उनका जो नजरिया था वो सही था या गलत, ये तो अपनी अपनी राय की बात है।
2: अगस्त 1909 के द टाइम्स लंदन के पेज 7 पर एक रिपोर्ट छपी कि 9 बजे के कुछ ही देर बाद मदन लाल की मृत्यु की घोषणा की गई। पियर पॉइंट जल्लाद था। शव का दाह संस्कार करने की इजाजत के लिए दी गई अर्जी को नामंजूर कर दिया गया था। इस कारण जेल की चार दीवारी के अंदर ही आम रिवाज के मुताबिक शव को दफनाया जाएगा। इससे पहले इसी अखबार ने 24 जुलाई 1909 को ढींगरा की सजा शीर्षक के नाम से एक संपादकीय लिखा था, जिसमें कहा गया था कि हत्यारे ने जिस बेपरवाही का प्रदर्शन किया वो इस तरह की थी जो सौभाग्य से इस देश में होने वाले ऐसे मुकदमों में आम तौर पर देखने को नहीं मिलती। उसने कोई सवाल नहीं पूछा, उसने जानबूझकर अपनाई गई उदासीनता और अवज्ञा का रवैया बनाए रखा। वो मुस्कुराते हुए कटघरे से बाहर निकला। ज्ञानचंद वर्मा की इच्छा के अनुसार सरदार सिंह राणा ने मदनलाल ढींगरा का अंतिम बयान एक पोस्टकार्ड पर उनकी तस्वीर के साथ प्रकाशित करवाया। उनका ये अंतिम बयान भी कम प्रेरणादायक नहीं था। चुनौती शीर्षक वाले इस बयान में मदनलाल ने लिखा था,
5: मैं स्वीकार करता हूं कि कुछ दिन पहले मैंने देशभक्त भारतीय युवाओं को अमानवीय तरीके से फांसी दिए जाने और देश निकाला दिए जाने के बदले में एक विनम्र प्रतिशोध के तौर पर अंग्रेजों का खून बहाने का प्रयास किया। इस प्रयास में मैंने अपनी अंतरात्मा के अलावा किसी से सलाह नहीं ली। मैंने अपने कर्तव्य के अलावा किसी के साथ कोई षड्यंत्र नहीं रचा। मेरा मानना है कि कोई भी राष्ट्र जिसे विदेशी संगीनों के जोर पर गुलामी की बेड़ियों में जकड़कर रखा गया हो वह हमेशा युद्ध की स्थिति में रहता है। चूंकि एक निहत्थी कौम के लिए खुले मैदान में युद्ध करना असंभव है, इसलिए मैंने अचानक हमला किया। चूंकि मुझे बंदूकें रखने की अनुमति नहीं थी, इसलिए मैंने अपनी पिस्तौल निकाली और गोली चला दी। एक हिंदू होने के नाते मुझे लगा कि मेरे देश के साथ किया गया कोई भी अन्याय ईश्वर का अपमान है। उसका उद्देश्य ही श्री राम का उद्देश्य है, उसकी सेवा ही श्री कृष्ण की सेवा है। स्वास्थ्य और बुद्धि से कमजोर मुझ जैसा एक पुत्र अपनी माँ को अपने रक्त के सिवाय और कुछ नहीं दे सकता, इसलिए मैंने उसी रक्त को उसकी वेदी पर अर्पित कर दिया। वर्तमान में भारत को केवल एक ही पाठ सीखने की आवश्यकता है, वह है मरना कैसे है, और इसे सिखाने का एकमात्र तरीका है स्वयं मर जाना। इसलिए मैं मरता हूं और अपनी शहादत पर गर्व करता हूं। ईश्वर से मेरी एकमात्र प्रार्थना यही है, काश मैं इसी मां की कोख से पुनः जन्म लूं और इसी पवित्र उद्देश्य के लिए बार बार अपने प्राणों की आहुति देता रहूं। तब तक जब तक कि यह उद्देश्य सफल न हो जाए और भारत माता मानवता के कल्याण तथा ईश्वर की महिमा के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होकर खड़ी न हो जाए। वंदे मातरम,
6: वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
2: यही है वंदे मातरम की ताकत, हमारी संस्कृति की विरासत और चेतना की अभिव्यक्ति है। ये हमारी मिट्टी की धड़कन, अस्तित्व की पहचान है। ये हमें याद दिलाता है कि हम केवल एक देश के नागरिक ही नहीं बल्कि भारत माता के पुत्र हैं। मदन लाल ढींगरा की शहादत से कई अंग्रेज भी प्रभावित हुए बिना नहीं रहे। खुद विंस्टन चर्चिल ने ब्लंट से ये बात साझा की। माई डायरीज में ब्लंट लिखते हैं,
7: हम फिर से देर रात तक बैठे रहे। चर्चिल ने कई यादगार बातें कही। मदनलाल ढींगरा के बारे में उन्होंने कहा कि कैबिनेट में उनके बारे में काफी चर्चा हुई है। लॉयड जॉर्ज ने उनके सामने एक देशभक्त के तौर पर ढींगरा की तारीफ की। चर्चिल भी उनके साथ थे। उन्होंने कहा कि 2000 साल बाद भी मदनलाल ढींगरा को याद किया जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे हम रेगुलस, कैरेक्टिकस और प्लूटार्क के नायकों को याद करते हैं। चर्चिल ने ढींगरा के आखिरी शब्दों को भी दोहराया।
2: मदन लाल ढींगरा का ताबूत 12 दिसंबर 1976 को भारत के तत्कालीन कार्यवाहक उच्चायुक्त नटवर सिंह की उपस्थिति में कब्र से बाहर निकाला गया। इस ताबूत को फिर हवाई मार्ग से भारत लाया गया। आज की कड़ी में इतना ही। एक गीत एक नारा राष्ट्रगीत हमारा के अगले एपिसोड में मिलेंगे एक और वीर क्रांतिकारी से।

पेड़ों की छांव में ही जीवन का सार है, पेड़ों की छांव में ही जीवन का सार है, नदियों की निर्मल धारा प्रकृति का उपहार है। आओ मिलकर धरती का सम्मान करें सभी, आओ मिलकर धरती का सम्मान करें सभी। स्वच्छ पर्यावरण ही आने वाले कल का आधार है, स्वच्छ पर्यावरण ही आने वाले कल का आधार है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है, तो इसकी ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ समय सुबह का तब बनता है खास जब आती है उषा अचानक के साथ। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खमा गणी सा। जो पेड़ हम आज लगाते हैं वही आने वाली पीढ़ियों को जीवन का उपहार देते हैं। कैसे, जरा विचार करेंगे। और जी हाँ, बहुत ही सुंदर घरेलू नुस्खे देने वाली हूँ। किशमिश कैसे फायदा करती है, गर्मी का मौसम है, किशमिश जरूर खानी चाहिए। तो कौन सी बीमारियाँ ठीक होगी वो आप सभी जानेंगे। फिर खुशनुमा जीवन की ढेर सारी बातें भी करेंगे। व्यंजन भला कैसे भूल सकते हैं, आज भी मैं आपको सिखाने वाली हूँ अचार, लेकिन कौन सा वाला वो अभी नहीं बताऊंगी। आप आशा ना कार्यक्रम सुनिए, जान जाएंगे। और आज का टंग ट्विस्टर बहुत सुंदर रहेगा, तो ये सब कुछ सुनेंगे आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.

अगर आपातकालीन स्थिति में किसी को अस्पताल ले जाना हो तो घबराइए नहीं, डायल कीजिए एम्बुलेंस का इमरजेंसी नंबर 102 या फिर 108। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

गुड मॉर्निंग, नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका आशियाना कार्यक्रम में। आज का सुंदर सा विचार है, जो पेड़ हम आज लगाते हैं वही आने वाली पीढ़ियों को जीवन का उपहार देते हैं। कैसे, तो आइए आज के विचार का विस्तार इस प्रकार करेंगे। एक गांव था जहां पर एक लड़का रहता था, उसका नाम था मोहन। उसके घर के सामने एक बड़ा नीम का पेड़ था। गर्मियों में वह उसकी छांव में खेलता था, उसकी छांव में खेलता भी था, पक्षियों की चहचहाट सुनता और उसके नीचे बैठ करके पढ़ाई भी करता। समय बीता, मोहन बड़ा होकर के शहर चला गया। कुछ वर्षों बाद जब गांव लौटा तो देखा कि लोगों ने विकास के नाम पर कई पेड़ काट दिए हैं। अब गर्मी पहले से कहीं अधिक थी, पक्षियों की आवाजें भी कम सुनाई देती थी। मोहन को अपने बचपन का नीम याद आया, वह अभी भी खड़ा था, सबको छाया और शुद्ध हवा दे रहा था। तब मोहन ने गांव वालों को समझाने का एक प्लान बनाया। मोहन का जन्मदिन था, गांव वाले बड़े खुश थे कि अरे वाह, मोहन तो शहर से आया हुआ है, पढ़ लिख कर बड़ा होशियार हो गया है, अच्छी जॉब कर रहा है और हमारे गांव में आया है, तो चलिए मोहन को सभी बधाई देने जाते हैं, नौकरी की भी और जन्मदिन की भी। तो सभी आए मोहन के पास और मोहन को बोले कि मोहन, बहुत बहुत बधाई आपको जन्मदिन की भी और अच्छी जॉब की भी। मोहन ने कहा कि मैं ऐसे आपकी बधाई स्वीकार नहीं करूँगा। तो गांव वाले थोड़े से उदास हो गए कि ये क्या कह रहे हो मोहन, क्या शहर में जाकर के तुम बदल गए? मोहन ने कहा, नहीं मेरे भाइयों, मेरे साथियों, में नहीं बदला, लेकिन अगर आप मुझे बधाई देना चाहते हैं तो एक काम करना पड़ेगा। सभी ने कहा कि अच्छा, बोलो बोलो क्या काम करना पड़ेगा। तो फिर मोहन ने कहा कि देखो, आज मेरा जन्मदिन है, मैं लगाने जा रहा हूँ पेड़, मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ आप सभी भी एक एक पेड़ लगाए। हर साल, कम से कम साल में बीच में नहीं लगा सकते, तो हर पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ जरूर लगाए, तो साल में एक एक पेड़ आप सभी लगाएंगे तो गांव हमारा हरा भरा हो जाएगा। यही मेरा असली जन्मदिन भी मनाना होगा और यही मेरे जॉब की मुबारकबाद भी होगी। बोलो, आप सभी मानने को तैयार हो? गांव वालों ने कहा, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, जरूर मानेंगे भाई, इसमें क्या मेहनत है, जरूर। तो सबसे पहले मोहन ने पेड़ लगाया, मोहन ने पेड़ लगाया, सभी ने तालियां बजाई, सभी खुश हो गए और सभी ने एक एक पेड़ लगाया। उसके बाद मोहन ने सभी से वायदा करवाया कि भाई, पेड़ लगाना ही सब कुछ नहीं होता है, अब बोलिए आप में से कौन पेड़ केयर करेगा, कौन पानी देगा, इनका ध्यान रखेगा, दो चार जने फटाफट तैयार हो जाओ। तो फिर चार जनों की टीम बनाई, जिम्मेदारी सौंपी, आपको पेड़ नहीं लगाना है लेकिन आपको पेड़ों को बचाना है, ये आप चारों की जिम्मेदारी है। आप और भी जिम्मेदारी किसी पर सौंप सकते हो लेकिन मैं आपको ये जिम्मेदारी देता हूँ। तो चारों ने वो जिम्मेदारी उठाई और बोला कि ठीक है, हम तैयार है पेड़ों को बचाने के लिए। तो इस तरह मोहन तो कह करके चला गया। फिर साल भर बाद आया वही छुट्टियों में, तो देखा कि गांव तो हरा भरा हो गया। तब मोहन ने सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद भी दी और सभी के साथ फिर से जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाया, सभी के साथ भोजन रखा, सभी को भोजन खिलाया। तो कहने का भाव यही है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, पेड़ लगाइए लेकिन पेड़ को बचाना भी जरूरी है, तो पेड़ों को बचाइए भी, ताकि आने वाले हमारे जो पीढ़ी है उनको हम ये पेड़ के रूप में धरोहर दे सके। तो ये हुआ आज का सुंदर सा विचार और आइए फिर से एक ब्रेक लेकर के पुनः लौटते हैं। तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: टंडन और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में आपको देंगे बहुत ही सुंदर घरेलू उपाय। किशमिश गर्मी में क्यों खानी चाहिए, क्या फायदा करते हैं, तो हम आपको बताना चाहेंगे। गर्मी के दिनों में रात को 10-15 किशमिश धो करके एक गिलास पानी में भिगो दीजिए। सुबह खाली पेट किशमिश खाइए और उसका पानी पी लीजिए। यह आपको करना है। क्या करना है, 10-15 किशमिश धो करके एक गिलास पानी में भिगो दीजिए। सुबह खाली पेट किशमिश खाइए और उसका पानी पीना है। अब क्यों पीना है आप जानेंगे अब इसके लाभ। शरीर को ऊर्जा देने में मदद मिल सकती है, ठीक है। ऐसा अगर आप करके किशमिश खाते हैं तो शरीर को ऊर्जा मिलेगी, ठीक है। पाचन को बेहतर रखने में सहायक होगा। गर्मी में होने वाली कमजोरी और थकान कम करने में मदद कर सकती है। इसमें आयरन और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो सामान्य स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। शरीर में पानी की कमी होने पर संतुलित आहार के साथ ये एक अच्छा पूरक बन सकती है। इसलिए किशमिश खाने के ये लाभ है। अब आइए कौन सी बीमारियां ठीक करेंगे वो भी आप जानेंगे कि कौन सी बीमारी इससे ठीक होगी। देखिए सारे लाभ तो बीमारियों को ही ख़त्म करने वाले लाभ है जो आपने जाने हैं। फिर भी देखिए 10 किशमिश खाते हैं गर्म दूध में उबाल करके, तो इससे खांसी जुकाम में फायदा होगा, कब्जियत भी ठीक होगी, ठीक है। और वो कहते हैं ना कि अगर चक्कर आ रहा हो तो आप थोड़े से किशमिश में काला नमक मिला करके भी आप खा सकते हैं तो चक्कर आना बंद हो जाएगा। पानी की कमी भी पूरी करती है किशमिश। भाई बहुत प्यास लग रही है, पानी नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, किशमिश आपके पास है तो 2-4 किशमिश खा लीजिए, चूसिए उसको, धीरे धीरे पानी की पूर्ति भी करेगा। तो इस तरह किशमिश हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी है, आप खा सकते हैं और अपने आप को फिट रख सकते हैं। आइए अब आज के टंग ट्विस्टर की तरफ बढ़ते हैं। वो कहते हैं ना किशमिश पर मुझे 2 लाइनें याद आ रही जो आपको सुनाना चाहूँगी। गर्मी में रखे तन मन को तरोताज़ा और ताजगी से भरपूर, भीगी किशमिश का छोटा सा उपाय बन सकता है बड़ा दस्तूर। तो ज़रूर आप दस्तूर बना दीजिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए। और अब आज का टंग ट्विस्टर की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, आज का टंग ट्विस्टर पर्यावरण पर ही है। तो आपको अधिक से अधिक 5 बार और कम से कम 3 बार बोल के सुनाना है, ठीक है। तो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ आज का टंग ट्विस्टर। पौधे पर पानी पड़ा, पानी से पौधा पनपा, पनपे पौधे पर पंछी पहुँचे, पंछी पहुँचे तो पौधा चमका। तो मिनिमम आपको 3 बार बोल के तो सुनाना ही है। तो टंग ट्विस्टर सुनाने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15। और यहीं पर फिर से एक ब्रेक लेकर के पुनः लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: पेड़ है तो पंछियों का मधुर गान है, पेड़ है तो धरती पर जीवन की शान है। मत काटो इन्हें स्वार्थ की आंधी में कभी, इनसे ही हमारा आज और कल महान है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में खुशनुमा जीवन की बातें करेंगे। विषय आपके समक्ष रख चुकी हूँ, इस पर आप अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। और आज का टंग ट्विस्टर भी बड़ा सुंदर है, जिसको मैं फिर से दोहरा रही हूँ। पौधे पर पानी पड़ा, पानी से पौधा पनपा, पनपे पौधे पर पंछी पहुंचे, पंछी पहुंचे तो पौधा चमका। ये आज का टंग ट्विस्टर है, आपको कम से कम 3 बार बोल के तो सुनाना ही है। अगर कैपेबल है तो 5 बार बोल के सुनाइए, नहीं तो 3 बार बोल के आपको सुनाना है, ठीक है। तो विषय में भी आप अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, और आप टंग ट्विस्टर भी सुना सकते हैं। नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15। हमारे श्रोता बंधु जुड़ चुके हैं। हेलो,
1: हाँ दीदी नमस्ते, सुरेश भाई बोलता हूँ, जताना से। कैसे हो दीदी?
0: हाँ जी नमस्ते सुरेश भाई, हम बहुत अच्छे हैं, आप सुनाइए आप कैसे हो?
1: बस हम भी बहुत अच्छे हैं, बैठे हैं, कार्यक्रम सुन रहे हैं, काम भी कर रहे हैं।
0: हाँ जी,
1: और अच्छा टंग ट्विस्टर भी सुना दिया, और अच्छा विषय भी आपने दिया है। आज का जो दिन, आज जो जो हो रहा है, इस पर आपने जो टंग ट्विस्टर भी सुना।

0: और कृष्ण वज्जन की भी बात रखी है, तो पहला मैं टर्म टेस्ट ही आपको सुना दूं।
1: हाँ जी
0: ठीक है।
1: हाँ जी जरूर
0: जी। पौधे पर पानी पड़ा, पानी से पौधा पनबा, पनते थे पौधे पर पंछी पहुँचे, पंछी पहुँचे थे पौधा चमका। पौधे पर पानी पड़ा, पानी से पौधा पनवा, भूल गया राजा, पनते थे पौधे पर पंछी पहुँचे, पंछी पहुँचे तो पौधा चमका। पौधे पर पानी पड़ा, पानी से पौधा पनपा, पनपे पौधे पर पंछी पहुँचे, पंछी पहुँचे तो पौधा चमका। पौधे पर पानी पड़ा, पानी से पौधा पनपा, पनपे पौधे पर पंछी पहुँचे, पंछी पहुँचे तो पौधा चमका। पौधे पर पानी पड़ा, पानी से पौधा पनपा, पनपे पौधे पर पंछी पहुँचे, पंछी पहुँचे तो पौधा चमका।
1: क्या बात है, तालियां हाथ से ही बजा देते हैं तालियां।
0: थोड़ी मिस्टेक हो गई थी बीच
1: में। हाँ, वो शब्द स्लिप हो गए थे, लेकिन फिर भी अच्छी कोशिश की आपने।
0: कभी कभी थोड़ा सा शब्द में ऐसा आ जाता
1: हो जाता है वो जी, ये टंग ट्विस्टर इसीलिए तो सुनाते हैं कि चलो पता चले ना।
0: हाँ,
1: थोड़े जबान की एक्सरसाइज हो जाती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और चलो अच्छा, मैं भी कोशिश तो हरदम करता ही रहता हूँ कि चाहे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाए ना हो जाए, लेकिन बोलना तो जरूरी है
1: जी।
0: चलो वो तो हो गई टर्म टेस्टर की बात। अब मैं विषय पे आपको बताता हूँ दीदी की।
1: हाँ जी।
0: देखो आज पौधा धीरे धीरे आज पर्यावरण में आज कई सारे पौधे जो कट रहे हैं पौधे पर। आज देखो पंछी भी क्या करे, पंछी भी कहाँ बैठे वो भी एक बात हो रही है। तो पौधे नहीं होते दीदी, पेड़ नहीं होते तो पंछी की भी तो बात सही है, लेकिन साथ साथ हमारे भी प्रॉब्लम रहता है दीदी। देखो आज कोई भी हम कहीं, पहले तो क्या था दीदी, हम कहीं भी जाते थे पैदल चल के जाते थे, बीच में थोड़ा सा आराम लेते तो हम पेड़ नीचे बैठ जाते थे
1: जी बिल्कुल,
0: और वहाँ बैठ के हम इतना सुकून लेते थे, और वहाँ बैठे बस बैठते रहे, अच्छा हवा आती थी, अच्छा वहाँ का मौसम रहता था पेड़ के नीचे। लेकिन आज कहीं भी जाइए पेड़ नहीं है, इसलिए तो आज वो इतनी गर्मी बढ़ रही है। यही तो एक कारण है कि धीरे धीरे पेड़ कट गए हैं और बहुत गर्मी हो रही है। तो बस हम तो दीदी ऐसा कहेंगे पक्षियों भी कि आज बैठने का कहाँ बैठे दीदी, यही हाल है। पहले तो देखो इतना कलरव करते थे पंछी पेड़ के बैठे बैठे
1: जी,
0: इतनी आवाज ही आती थी, आज वही आवाज बिल्कुल खत्म हो गई है, क्योंकि पेड़ ही नहीं रहे, जो ही वो सूख गए हैं
1: जी,
0: और धीरे धीरे पेड़ कट रहे हैं। और दूसरी बात बताओ दीदी, आज क्या हुआ, एक बात बताओ मैं दीदी, धीरे धीरे जो सड़क के जो दीदी पहले तो वनवे सड़क थी, तो वनवे सड़क के दोनों साइड इतने पेड़ थे
1: जी
0: कि कहीं भी जाए आप सामने ही जाते थे, कोई साधन में जाए कोई चल के जाए, दोनों ही साइड इतने पेड़ रहते थे।
1: लेकिन
0: अब क्या हुआ, धीरे धीरे जो जो जो सड़कें बड़ी हो रही है, जब बड़ी करते हैं तो पेड़ कट ही जाते हैं
1: जी,
0: पूरा एक साइड पूरी कट जाती है। तो वो दूसरी बार वो पेड़ तो दीदी लगते नहीं, लगते हैं तो बहुत देरी लगती है
1: जी।
0: आज इतने थोड़े सड़क हो गई है, इतनी बड़ी हो गई है, पेड़ कहाँ से हो। तो ये भी एक सही बात है कि आज धीरे धीरे जो रोड पोड़े हो रहे हैं, सड़कें पूरी हो रही है, बड़ी हो रही है, तो ये हादसा हो रहा है धीरे धीरे। पेड़ नहीं है दीदी, आज जो है वो कट जाता है, दूसरा कोई लगाता नहीं है
1: जी।
0: और आगे जाके क्या हाल होगा वो तो हम देख ही रहे हैं अभी।
1: सही बात है,
0: इतनी इतनी गर्मी बढ़ रही है तो आगे जाके क्या होगा
1: जी।
0: तो बस नमस्ते दीदी।
1: हाँ जी, बहुत बहुत आभार आपका सुरेश भाई। तो ये थे सुरेश भाई जोटाना से, आपने टंग ट्विस्टर बहुत ही अच्छी तरह बोल के सुनाया है, विषय को भी स्पष्ट करने की बहुत अच्छी कोशिश की है। अब आप जुड़िएगा, कोई भी जो भी जुड़ना चाहते हैं आपका स्वागत है रेडियो मधुबन में, और आप भी जुड़ करके टंग ट्विस्टर सुना सकते हैं, आज का आज के विषय पर अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। आज का विषय भी बहुत अच्छा है, देखिए पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हालत एक की नहीं सबकी खराब होगी। आपसी ईर्ष्या आपसी दुश्मनाहट रखते हैं उसमें तो एक दो की हालत खराब होती है, लेकिन पेड़ पौधों से छेड़छाड़ करेंगे, प्रकृति के साथ अगर हम कुछ गलत करेंगे और प्रकृति हमारा साथ नहीं देगी तो ये सभी के साथ खराब होगा, है ना, सभी के साथ बुरा होगा। इसलिए कैसे बचाएंगे पेड़ पौधों को, क्या करेंगे कि हरियाली फिर से जीवित रहे, तो बहुत ही सुंदर विषय है, आप भी अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। आज का टंग ट्विस्टर भी बड़ा अच्छा है, पौधे पर पानी पड़ा, पानी से पौधा पनपा, पनपे पौधे पर पंछी पहुंचे, पंछी पहुंचे तो पौधा चमका। यह आपको अधिक से अधिक 5 बार, कम से कम 3 बार बोल के तो आपको सुनाना ही है। जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन का है 94-14-15-14-15, और हमारे कुछ श्रोता बंधुओं ने सुनाया भी है, तो आइए हम सुन लेते हैं उनके द्वारा। वो इस मैसेज करके भेजा है तो उनके आवाज में सुना देते हैं। कमला जी जैन भिलवाड़ा से है।
2: पानी पड़ा, पानी से पौधा पनपा, पनपे पौधे पर पंछी पहुंचे तो पौधा चमका। पौधे पर पानी पड़ा, पानी से पौधा पनपा, पनपे पौधे पर पंछी पहुंचे तो पौधा चमका। पौधे पर पानी पड़ा, पानी से पौधा पनपा, पनपे पौधे पर पंछी पहुंचे तो पौधा चमका। पौधे पर पानी पड़ा, पानी से पौधा पनपा, पनपे पौधे पर पंछी पहुंचे तो पौधा चमका। पौधे पर पानी पड़ा, पानी से पौधा पनपा, पनपे पौधे पर पंछी पहुंचे तो पौधा चमका।
1: क्या बात है, कमला जी के लिए भी बहुत सुंदर। और हमारे श्रोता बंधु जुड़ चुके हैं। हेलो
3: हेलो उषा बहन जी।
1: हाँ जी नमस्ते कंचन भाई, कैसे हैं आप?
3: बस बहन जी दुकान पे है, काम कर रहे हैं, जो वनवासी भाइयों का जो काम चल रहा है, लग्न की सीजन चालू है
1: जी,
3: तो शादी ब्याह है, इन लोगों को अभी करते
1: जी,
3: तो वो भी सभी वन में ही रहते हैं, जो वनस्पति से अधिक है। तो अब तो सरकार ने भी गैर घर गैस की व्यवस्था कर दी है, तो पेड़ कम काटते हैं। हम बोलते हैं कि
1: हाँ जी
3: खाते हैं, तो कैसे आप ये खाना पकाते हैं? तो बोलते हैं कि हमारे यहाँ गैस है, ये है, तो पेड़ों को कम काटते। पहले तो बहुत पेड़ काटते थे, और 12 महीने का इकट्ठा कर लेते थे, इतने पेड़ काटते थे, लेकिन अब ये नहीं होता। और पेड़ तो जरूरी है बहन जी, पेड़ है तो पर्यावरण को नुकसान करना, ये तो बड़ी ये बात
1: जी।
3: इसलिए तो ये बदल गया है ना चक्र भी, ऋतु का चक्र भी बदल गया है। देखो अभी बारिश बारह मास को, तो किसान भाइयों को तो नुकसान ही है ना, जो पकता है और बारिश आती है तो सब बिक जाता है, बिगड़ जाता है। तो पेड़ों को बचाना है कुल मिला के, पर्यावरण को नुकसान नहीं करना। देखो मोदी जी ने भी बताया है कि पेड़ माँ के नाम, जब हमारे माता जी की निर्वाण तिथि पिता जी की आती है तो पेड़ लगाना
1: जी,
3: और पेड़ ऐसी जगह लगाना है कि कोई नुकसान न करे, पशु इसको खा न जाए, ये ना करे, इसको पानी मिलता रहे, ऐसी जगह पे पेड़ लगाना। खाली फोटो खिंचवा के पेड़ लगा दिया और इसकी देखभाल बाद में नहीं की, ये कोई काम का नहीं। हेलो
1: हाँ जी सुन रही हूँ जी।
3: तो पेड़ ये करना हमें, देखो खेतों में क्या है कि अपनी उम्र के हिसाब से ये पेड़ सूख जाता है और ये हो जाता है, ठीक है
1: जी।
3: तो हमें दूसरे पेड़ ये लगाने वहाँ के पानी की व्यवस्था, वहाँ से पानी निकलता हो, ऐसी जगह से करना है। मैं तो करता ही, मेरे पिताजी की माता जी की निर्वाण तिथि आती है तो मैं इसमें जाके ये पेड़ लगाता
1: जी।
3: और दूसरी बात तो ये मैं अभ्यास करना पड़ेगा, थोड़ा काम भी कर रहा हूँ, प्रेस कर रहा हूँ। देखो वर राजा का जो शर्त है अभी लेने के लिए आने वाले है, वो आज कपड़े
1: जी जी। फिर भी आप देखिए काम करते हुए भी रेडियो से जुड़ते हैं, आप है सुरेश भाई है, बहुत सारे हमारे श्रोता बंधु, तो बहुत अच्छा है कि देखिए मतलब रेडियो से विशेष प्रेम है, इसलिए काम करते हुए भी आप लोग जुड़ जाते हैं, सुरेश भाई जुटाने वाले और आप तो स्पेशल दोनों ही।
3: और सबका जो अभ्यास थोड़ा करना पड़ेगा।
1: ठीक है, अभ्यास करके आप सुनाइए, पहले वॉइस मैसेज भेजिए, ठीक है?
3: हाँ जी,
1: हाँ जी,
3: थैंक यू सभी दोस्तों का।
1: हाँ जी, बहुत बहुत आभार आपका भी। तो ये थे कंचन भाई मंडाली से, बहुत ही सुंदर आपने भी विषय को स्पष्ट किया है, और टंग ट्विस्टर की भी कोशिश करेंगे। तो बहुत ही सुंदर, देखिए प्रैक्टिकल विषय है, आज विश्व पर्यावरण दिवस भी है, और विश्व पर्यावरण दिवस तो एक दिन इसलिए मनाना पड़ता है कि लोगों को कम से कम जागरूक कर सके कि भाई पेड़ पौधों को बचाइए, काटिए मत, बाकी लगाना तो है ही है। एक दिवस मतलब एक दिन हम कोई भी तिथि तारीख को या कोई भी अच्छी चीज़ को मना लेते हैं, लेकिन मनाने का तात्पर्य उसके पीछे यही होता है कि पूरे साल भर मतलब हमेशा के लिए मनाइए। हमेशा आप प्रकृति का ख्याल रखिए, प्रकृति का ध्यान रखिए, बीच में समय मिले तो पेड़ पौधे लगाते रहिए। पेड़ पौधे लगाने के बाद वो पनप रहे हैं नहीं पनप रहे हैं वो भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बहुत जने क्या करते हैं, पेड़ पौधों को लगा करके छोड़ देते हैं, फिर पलट कर नहीं देखते कि वो पौधे जिंदा भी है या मर गए, क्योंकि केयर नहीं करेंगे तो उखड़ जाएंगे। कितनी बार पशु जैसे गाय है कुत्ता है वो भी निकाल देते हैं, कितनी बार बच्चे भी खेलते खेलते उसके ऊपर पेड़ दे देते हैं। तो लगाना अच्छी बात है, लेकिन उसकी केयर करना और भी उससे अच्छी बात है कि कम से कम हम सावधान तो है कि नहीं हमने जो किया है या दूसरों ने भी जो किया है तो हम उसको नष्ट नहीं होने देंगे। तो ध्यान रखिएगा और पेड़ पौधे लगाते रहिएगा। अब आप जुड़ सकते हैं, हम और भी इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप जुड़े और आप अपनी बात को रखें कि आप किस तरह पेड़ पौधों की संभाल कर रहे हैं। एक समय था तब इतने घरों के अपने आंगन में इतने पेड़ पौधे नहीं लगाए जाते थे, एक क्यारी बना दी जाती थी, क्यारी के अंदर पेड़ भी लगा दिया जाता था। कुछ जैसे तुलसी का पौधा तो घर घर में होता ही है, उसके अलावा कुछ जैसे लौकी की है, कद्दू की है, बेले छोड़ दी जाती थी तो वो अपने छान पर जा करके उसको सपोर्ट मिलता था और ऐसे फल लगते थे उसके ऊपर साग भाजी। अभी थोड़ा सा चेंज हुआ है, पर मैं अपने श्रोता बंधु से बात करूंगी। हेलो,
4: हेलो, नमस्ते दीदी, मैं जाने रहते सुरेश भाई, आपको और सभी दोस्तों को नमस्कार।
1: जी नमस्ते सुरेश भाई, कैसे हैं आप?
4: बस बहुत अच्छे हैं, हम भी दोस्तों की तरह काम कर रहे हैं और रेडियो सुन रहे हैं।
1: जो रेडियो के रेगुलर लिसनर है हमारे, जो रेडियो मधुबन परिवार के जो सदस्य है, वो काम करते हुए भी समय निकाल करके जुड़ते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि इतने बिजी होने के बाद भी रेडियो से प्रेम है इसलिए जुड़ते हैं। बहुत बहुत आभार आपका।
4: सही सही बात है, और दीदी सिर्फ प्रेम की बात नहीं है, हमें तो बहुत सारा जो ज्ञान मिलता है और बहुत सारी ऐसी चीज मिलती है ना, तो हमारे जीवन में जो बहुत सारे काम करती है आने वाले समय में, हर विषय हमारे सामने जो आते हैं तो हम उसे लड़ पाते हैं, इस ऐसे करते हैं।
1: जी जी जी बिल्कुल,
4: और बहुत अच्छी बातें हो रही है, तो आज विश्व पर्यावरण दिन की सभी को शुभकामना। और दीदी मैं कहूँगा कि पहले तो चलो गांव में क्या होते थे, जो खेत होते हैं ना फार्म, उनके जो किनारे पर बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे। अब क्या करते हैं, वो काट देते हैं और जो तार कांटा तार का लगा देते हैं, मतलब सभी किनारे पर
1: जी।
4: तो पेड़ काट ही देते हैं, तो वो एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। और हमारे यहाँ तो ठीक ऐसा ही हो रहा है, कोई भी खेत में ज्यादातर 80-90% जो पेड़ काट के ये कांटा वाला तार लगा देते हैं। तो क्या करें, वो लोगों को तो पता नहीं है क्योंकि पर्यावरण कितना जरूरी है, पेड़ पौधे कितना जरूरी है दीदी। ये बात है,
1: सही बात है, नॉलेज नहीं है तो कर ही क्या सकते हैं, उनको जागरूक करना जरूरी है।
4: जी जी, मैं दीदी मैं कहूँगा, अगर मजाकिया अंदाज में, तो मैं मंत्री या प्रधानमंत्री होता तो क्या करता कि हर एक इंसान पर 5 पेड़ नाम होना चाहिए और 5 पेड़ लगाना जरूरी करना चाहिए, तभी नागरिकता और सरकारी सेवा उनको मिलती। तो मैं तो होता तो ये करता, क्योंकि दीदी बहुत जरूरी है दीदी।
1: बहुत जरूरी है, सही है।
4: हाँ अभी कितनी गर्मी हो रही है नदी जी, तो सिर्फ एसी और पंखे पर ही ये लोग चलते हैं
1: जी।
4: और छाव में कभी कभी छाव में रहते तो बहुत अच्छा तो फील होता है, लेकिन वो छाव लाए कहाँ से, पेड़ पौधे ही कट गए और कोई उगाने की कोशिश भी नहीं करता। छाव तो चाहिए
1: जी,
4: लेकिन पेड़ नहीं उगाते।
1: सही बात
4: ये
1: है।
4: तो मैं बस यही कहूंगा सुनने वालों को कि पेड़ पौधे की तरफ ध्यान दे और पर्यावरण को जरूर बचाए। जी दीदी
1: जी, बहुत सुंदर। हाँ जी,
4: संक्रिप्ट सुनाने की कोशिश करता हूँ।
1: हाँ जी, जरूर जरूर।
4: पौधे पर पानी पड़ा, पानी से पौधा पनपा, पनपे पौधे पर पंछी पहुँचे, पंछी पहुँचे तो पौधा चमका। पौधे पर पानी पड़ा, पानी से पौधा पनपा, पनपे पौधे पर पंछी पहुँचे तो पौधा चमका। पौधे पर पानी पड़ा, पानी से पौधा पनपा, पनपे पौधे पर पंछी पहुँचे तो पौधा चमका। जी जी जी,
1: क्या बात है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। ढेर
4: धन्यवाद,
1: बहुत बहुत आभार सुरेश भाई। तो ये थे सुरेश भाई धानेरा से, बहुत ही सुंदर आपने विषय को भी स्पष्ट किया है, पौधा लगाना क्यों जरूरी है, पेड़ पौधा लगाना क्यों जरूरी है, और अगर आप प्रधानमंत्री होते तो क्या करते। बहुत ही सुंदर आपने अपना संकल्प रखा है और अपनी ख्वाहिश रखी है कि एक एक व्यक्ति 5-5 पौधे जरूर लगाता, ऐसा मैं सभी को कहता। बहुत आपका अपने देश के प्रति शुभ भावना है, ऐसी भावना हर एक के अंदर पनपे, हर एक के अंदर बनी रहे। और आइए यहाँ पर एक ब्रेक लेकर के पुनः वापस लौटेंगे इसी विषय पर चर्चा करने के लिए, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM।
5: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

0: रुक भाई, रुक भाई रुक, हेलमेट कहां है तुम्हारा?
1: सर वो सर सर
0: ओए क्या सर सर करके सरसरा रहा है भाई? आए ओए, तुम्हारे सर के लिए ही बोल रहा हूँ। ओए चेहरे से तो समझदार लगते हो, पढ़े लिखे भी लगते हो, कोई इतनी धूप है धूल है वो कम से कम अपने चेहरे का ही ख्याल रख लो, तो ये चमकते हीरे जैसा चेहरा कहीं जीरे जैसा नहीं हो जाए।
1: सर आगे से ध्यान रखूंगा।
0: तो आगे से तो नहीं, मुझे तो तुम पीछे से निकलने वाले लगते हो हैं? पर मुझसे कोई नहीं बच सकता क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं होदार। कड़क, पहले वो सामने की दुकान से लो हेलमेट फिर गाड़ी।
2: हमेशा बाइक पर हेलमेट पहनकर निकलना चाहिए, इसमें आपका ही भला है। जीवन अनमोल है, इसे यूं ही व्यर्थ न गवाएं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में ज्ञानेंद्र जी उत्तर प्रदेश से जुड़ चुके हैं। नमस्ते ज्ञानेंद्र जी।
1: नमस्ते दीदी, ओम शांति।
0: हाँ जी, ओम शांति। और सुनाइए, कैसे हो आप?
1: बढ़िया हैं
0: जी।
1: आप तो बढ़िया हैं?
0: हाँ जी बिल्कुल, आप सभी की दुआओं से बहुत अच्छे हैं। तो आज का विषय पर्यावरण दिवस पर है। पर्यावरण को बचाना बहुत जरूरी है और आज का टंग ट्विस्टर भी आपको सुना देते हैं। आप कोशिश करना सुनाने की। एक बार मैं सुना रही हूँ, ठीक है
1: जी।
0: पौधे पर पानी पड़ा, पानी से पौधा पनपा, पनपे पौधे पर पंछी पहुँचे, पंछी पहुँचे तो पौधा चमका। आपको कम से कम 3 बार बोल के सुनाना है, अगर ज्यादा सुनाना चाहते तो 5 बार।
1: पौधे पर पानी पड़ा, पानी पड़ने से पौधा चमका, चमके पौधे पर पक्षी आए, पक्षी आए तो पेड़ चमका,
0: पंछी पहुँचे। क्योंकि टंग ट्विस्टर पर एक एक शब्द का ध्यान रखना जरूरी है। टंग ट्विस्टर उसे कहते हैं कि एक शब्द भी स्लिप नहीं होना चाहिए। पूरी लाइन सुनिएगा। पौधे पर पानी पड़ा, पानी से पौधा पनपा, पनपे पौधे पर पंछी पहुँचे, पंछी पहुँचे तो पौधा चमका।
1: जी, पौधे पर पानी पड़ा, पानी से पौधा चमका,
0: पनपा,
1: पनपा, पनपे पौधे पर पक्षी आए, पक्षी आए तो पौधा चमका, पानी पड़ने से पौधा चमका, पनपा, पनपे पौधे पर पक्षी आए, पक्षी आए तो पौधा चमका, पानी पड़ने से पौधा पनपा, पनपे पौधे पर पक्षी आए, पक्षी आए तो पौधा चमका।
0: चलिए, शब्द तो बहुत इधर उधर स्लिप हुए, लेकिन बहुत अच्छी कोशिश की। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती जी। और आज पर्यावरण दिवस है, कैसे क्या कर रहे हैं आप, कैसे मना रहे हैं इस दिन को?
1: अभी तो हम धान की तैयारी चल रही है।
0: आप तो वैसे ही पूरा ही प्रकृति का ख्याल रखते हैं, आप तो खेत में काम करते हैं ना?
1: जी जी बिल्कुल
0: जी। तो आप किस तरह पौधों की केयर करते हैं?
1: पौधे को पहले लगा के फिर उसकी देखभाल करनी पड़ती है, समय समय पे पानी देना पड़ता है, बड़ा हो जाता है फिर उसकी देखभाल करने की जरूरत नहीं पड़ती
0: जी।
1: और हाँ, तो सबको चाहिए मगर पौधा लगाना कोई नहीं चाहता। पौधा लगा तो खेत जो जो, जो जगह घेरेगा तो कम होगी, इस वजह से ऑक्सीजन भी सबको चाहिए मगर पौधा नहीं चाहिए किसी।
0: सही बात है,
1: सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। कोरोना में ऑक्सीजन की कमी हुई तो कितना प्रॉब्लम हुई
0: जी, बिल्कुल।
1: लाइन में लग लग के सिलेंडर लिए, जब तो कह भी रहे थे लोग हाँ पेड़ लगाएंगे, उसके बाद फिर सब नॉर्मल हो गया तो सब भूल जाते हैं।
0: सही है,
1: जब कि सबको पर्यावरण से हम करेंगे पर्यावरण की, तो पर्यावरण हमें ऑक्सीजन देगा, छाया देगा, बहुत सारे फायदे हैं। लकड़ी मिलती है पौधों से, तो बहुत फायदे हैं
0: जी।
1: ठीक है दीदी।
0: हाँ जी, आप तो किसान भाई है तो आप तो केयर करते हैं, प्रकृति का ख्याल रखते हैं, बहुत अच्छा। तो बहुत बहुत आभार ज्ञानेंद्र जी, बीच बीच में जुड़ते रहिए, ठीक है?
1: ओम शांति। जो वही बता रहा हूँ कि आधा कोशिश पर मिलता
0: है। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू।
1: हाँ
0: जी जी, ओम शांति। तो ये थे ज्ञानेंद्र जी उत्तर प्रदेश से। आप खुद किसान है तो इस नाते प्रकृति का ध्यान तो रखते ही हैं, और बहुत ही सुंदर आपने फिर भी विषय को स्पष्ट किया है। तो कहने का भाव यही है मेरे प्यारे श्रोता बंधु, प्रकृति प्रेमी बनिए। खैर, आजकल तो हम देखते हैं जगह जगह हमारी बहनें भी कम नहीं है, छोटे छोटे गमले ला करके घर को इतना सुसज्जित करती है, इतना अच्छा सजाती, अच्छे अच्छे पौधे लगा करके। लेकिन एक समय था कि हम घरों में इतने गमले नहीं रखते थे, मोहल्लों में पेड़ पौधे हुआ करते थे, बड़े बड़े पेड़, जहाँ आज भी हम गीत गाते ना सावन के, भादरवा के, घनघोर के, तीज के, तो ऐसे ही झूला नहीं डलता था, जगह जगह पेड़ हुआ करता था, पेड़ों पर झूले डले करते थे, थोड़े से गर्मी लगी नहीं तो पेड़ वो हवा देता था, पेड़ के नीचे बैठते थे लोग, राहगीर जो चलते चलते रास्ते में। इसलिए घरों में इतने पौधे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि घरों में तो बहनें जागरूक हो चुकी है जो गमले ला करके लगा रही है, लेकिन अब बाजार में जो बड़े बड़े पेड़ है वो कटते जा रहे हैं। जैसे कि हमारे रेडियो मधुबन परिवार के सदस्य शायद सुरेश भाई ने कहा है कि चौड़ी चौड़ी सड़कें बनने लग गई है, इसलिए पहले वन वे हुआ करता था, अब तो 4 लाइन 6 लाइन बन गई है, सड़क भी चौड़ी हो गई है, तो बड़े बड़े पेड़ भी खत्म हो रहे हैं। बिल्कुल सही कहा है, देखिए जनसंख्या बढ़ रही है वो बात अलग है, लेकिन फिर भी बड़े बड़े पेड़ों का होना बहुत ज़रूरी है, बहुत आपदाओं से ये पेड़ बचाते हैं। छोटे छोटे तो जल्दी गिर जाते हैं, लेकिन बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं वो अड़िग होकर खड़े रहते हैं, वो कितनी आपदाओं से बचाते हैं। और बैठे आप पेड़ के नीचे अच्छा लगता है, पहले बचपन याद कर लीजिए कि कैसे बैठा करते थे पेड़ के नीचे, थोड़ा सा चलते थे, गर्मी लगती थी तो पेड़ के नीचे बैठ जाते थे, ठंडा ठंडा पानी पी लेते थे, पहले प्याऊ भी लगाई जाते थे, कोई भी बहन या भाई ऐसे ही पेड़ के नीचे पानी के मटके भर के बैठे रहते थे कि कोई आएगा राहगीर उनको पानी भी पिलाएंगे, थोड़ी देर वो या विश्राम भी खाएंगे फिर जाएंगे, कितनी अच्छी भावनाएं हुआ करती थी। ये कहाँ गई ये भावनाएं, आजकल तो प्याऊ तो खत्म ही होता जा रहा है। खैर आजकल तो जहाँ जाओ पैसे दो बिस्लेरी की बोतल खरीद लो, पहले ऐसे पैसे नहीं, प्याऊ वाले ठंडा ठंडा पानी का मतलब मटके का पानी पिलाता था, ठंडा ठंडा पानी जिसको रखना हो, किसी ने 1 रुपये रख दिया, किसी ने नहीं रखा, मांगना बिल्कुल नहीं होता था। समय के साथ बदलाव आया है, तो पेड़ पौधे लगाइएगा, बड़े बड़े पेड़ जो लगा रहे हैं उसकी भी केयर करिएगा, अनावश्यक उसको काटिएगा मत, सूख गए है तो बात अलग है, ताज़ा है हरा है उसको क्यों काटना है, लेकिन कब कौन काट के ले जाता है पता ही नहीं चलता है। और प्रकृति में पेड़ पौधे तो है ही है, पहाड़ भी प्रकृति के अंदर ही आते हैं, ये पहाड़ है ये भी किसी से कम नहीं है, ये भी बहुत बड़ी बड़ी आपदाओं से बचाते हैं, इसलिए पहाड़ों को भी तोड़िए मत। आजकल इतने घर बनने लग गए हैं कि पहाड़ तोड़ तोड़ करके घर बनाने लग गए हैं। अरे घर आप चौड़े चौड़े घर बनाना ज़रूरी नहीं है, आप फ्लैट बना दीजिए, ऊपर पर बना दीजिए, मंजिल ऊपर खींच लीजिए, लेकिन पेड़ पौधों की सुरक्षा करिए और पहाड़ों को मत काटिए। पहाड़ों का आबू के देख लीजिए, कितने पहाड़ जंगी पहाड़ हुआ करते थे, आजकल तो पहाड़ भी छोटे छोटे, और देखिए आप सड़क पर जाइए, यहाँ से उदयपुर तक ही चले जाइए, बीच में सारे पहाड़, बहुत सारे पहाड़ टूट चुके हैं। जो एक समय ऐसा था कि दोनों तरफ पहाड़ थे और बीच में बस चलती थी, कहीं कुछ दिखाई नहीं देता था, ऊपर नज़र डालो तो पहाड़ ही दिखाई करते थे, और अब वो पहाड़ वो नज़ारा है ही नहीं। तो प्रकृति के पांचों तत्व की रक्षा करिए, जल है तो जल का आप बूंद बूंद बचाइए। कितनी बार क्या है कि थोड़ा सा पानी चाहिए, फुल फास्ट नल खोल देंगे, वो पानी भर तो गया लेकिन अब बह रहा है, तो ऐसा भी नहीं करना है, चाहिए उतना खोलिए भरिए और वापस बंद करिए। नल का भी ध्यान रखिएगा, घरों में नल लगे होते हैं जगह जगह पर, वो थोड़े से खराब होने लगते, ढीले होने लगते हैं, तो कितना ही समय चला जाता है, ध्यान ही नहीं देते, वो बूंद बूंद टपकता रहता है, कितनी बार एकदम बारीक धार बह करके वो निकलता रहता है पानी, और ध्यान नहीं देंगे कि भाई इस टंकी को वापस ठीक करवानी है या इस नल को ठीक करवाना है, तो वो भी ध्यान दीजिएगा। कहते हैं ना, प्रकृति की रक्षा हम करेंगे तो प्रकृति भी हमारी रक्षा करेगी, इसलिए हर एक चीज़ का ध्यान रखना है। अब लाइट है, देखिए ऊर्जा को बचाना भी बहुत ज़रूरी है, अनावश्यक लाइट जल रही है, हम आराम से बैठे हुए हैं, गप्पे मार रहे हैं, बड़ी बड़ी लाइटें 4-5 चालू कर रखी है, भाई एक लाइट से भी काम हो सकता है ना, तो हर चीज़ को बचाना है। पेड़ पौधों को तो बचाना ही है, लेकिन पेड़ पौधों के साथ प्रकृति के पाँचों तत्व के जिम्मेदारी उठानी है, उनके केयर करनी है, उनके सुरक्षा की जिम्मेदारी उठानी है, तो प्रकृति के पांचों तत्वों का ध्यान रखिए। तो प्रकृति के पांचों तत्व भी हमारा ध्यान रखेंगे, ठीक है। पहले याद करिए, एक समय ऐसा था जगह जगह पर नदियां थी, तालाब थे, बावड़ियां थी, लोग घरों में कम नहाते थे और यहाँ नहाने का आनंद लेते थे, कोई तालाब जा रहे, कोई नदी में नहा रहे, तो कोई कुएं का पानी जो बेल खींचता था, चड़स चलती थी, आजकल तो खैर बहुत समय से तो मोटर से ही पानी चलता है, तो कोई किसी को मना नहीं करते, किसी के भी खेत में जा करके नहा लो, कोई मना नहीं करते, इस तरह कुएं का पानी निकलता तो कोई मना नहीं करता, और लोग वहाँ नहा करके आते थे, ताकि बहते पानी में वो खेतों में भी चला जाता था और बहते पानी में नहा लेते थे, तो एक्स्ट्रा पानी बर्बाद नहीं होता। और अब तो देखिए ठीक है भाई, नहीं जाते हैं कोई बात नहीं, कोई नहीं नहाने देते वो भी कोई बात नहीं, लेकिन घर में भी जहाँ एक बाल्टी की ज़रूरत है वहाँ चार चार बाल्टी एक एक जना यूज़ कर रहा है, तो पानी की भी केयर करिए, हर चीज़ की केयर करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तभी सही मायने में हम पर्यावरण का ख्याल रख पाएंगे। ध्वनि प्रदूषण भी अच्छी बात नहीं कि आप जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, हॉर्न बजा रहे हैं। अरे हमारे भारत देश में ऐसे ऐसे राज्य भी है जहाँ हॉर्न अगर आपने बजा दिया तो आपके पेनल्टी लग जाएगी, 2,000 रुपये आपसे रखवा दिया जाएगा। और यहाँ अनावश्यक भी हॉर्न बजाते रहते हैं, सामने कोई नहीं है तो भी हॉर्न बजा करके ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है, इसलिए कहा जाता है धरती मुस्कुराएगी जब हरियाली बढ़ाएंगे, सुनी राहों पर हम नए पौधे लगाएंगे, स्वच्छ हवा निर्मल जल का होगा सुंदर उपहार, आओ मिलकर पर्यावरण का मान बढ़ाएंगे। तो बस यही कहना चाहूंगी लास्ट में मैसेज कि एक पेड़ लगाना केवल पौधा रोपना नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए उम्मीद बोना है। इसलिए जैसा हम करेंगे हमें देखकर और करेंगे, तो हम अगर पेड़ पौधों की प्रकृति की केयर करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी भी सीखेगी, क्योंकि वो भी देख रही होती है तो वो भी जागरूक होगी और इसी तरह केयर करेगी। तो आइए अब आज के विषय को यही समाप्त करते हैं और आज के टंग ट्विस्टर की तरफ बढ़ते हैं। फिर से आज का टंग ट्विस्टर है, पौधे पर पानी पड़ा पानी से पौधा पनपा, पनपे पौधे पर पंछी पहुँचे, पंछी पहुँचे तो पौधा चमका। यह आपको अधिक से अधिक 5 बार कम से कम 3 बार बोल के सुनाना है। नंबर है रेडियो मधुबन के 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आप टंग ट्विस्टर सुना सकते हैं। अब यहीं पर फिर से एक गीत सुनेंगे, उसके बाद पुनः आपसे रूबरू होंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

मैं अशोक खोसला बोल रहा हूँ और मैं रेडियो मधुबन सुनने वालों सभी श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ सबको। वो सबको बहुत बहुत खुश गवार गुजरे, सब बहुत खुश रहें और आगे भी प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलें, यही शुभकामना है। धन्यवाद। रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नई नई व्यंजन सिखाने का। तो इसमें मैं कुछ दिनों से आपको लगातार अचार ही बनाना सिखा रही हूँ। आज भी आपको अचार बनाना सिखाने जा रही हूँ काबुली चने का। ठीक है, तो सामग्री आप ले लीजिएगा। काबुली चना लेना है। अगर एक किलो चना ले रहे हैं तो आप पाव भर कच्ची केरी भी लीजिएगा। ठीक है, फिर आप लीजिए सौंफ, मेथी, राई की दाल और हींग लीजिएगा, नमक, मिर्च मतलब मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर, सरसों का तेल। तो ये हो गई सामग्री जिसको मैं फिर से दोहरा रही हूँ। काबुली चने लीजिएगा, एक किलो काबुली चने ले रहे हैं तो पाव भर लीजिएगा केरी। ठीक है, फिर आप लीजिएगा मेथी दाने, सौंफ, राई की दाल लेनी है आपको, आप लीजिएगा नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, सरसों का तेल और हींग। अब बनाने का तरीका भी और छाछ भी लेना है। ठीक है, बनाने का तरीका आपको सिखा रही हूँ। काबुली चने की धुलाई कर लीजिए। ठीक है, धुलाई करने के बाद अब इन चनों को आप 24 घंटे के लिए छाछ में भिगो के रख दीजिए। 24 घंटे के लिए छाछ में भिगो के रखना है इन चनों को। केरी की धुलाई कर लीजिए। धुलाई करने के बाद केरी को काट लीजिए, गुठली समेत काटना है। ठीक है, फिर अंदर से वो गुठली निकाल देनी है, लेकिन छोड़ा नहीं निकालना है। दो गुठलियाँ होती है बीच में, वो सब्जी बनाने का मैंने आपको सिखाया था, उससे B12 पूरा होता है, पूर्ति होती है B12 की। और तो वो वाली अंदर से वो गुठली निकाल दीजिए और इन फाँकों को अच्छी तरह पोंछ लीजिए। ठीक है, ज़्यादा बड़ी नहीं काटनी है क्योंकि काबुली चने का अचार है, तो केरी के फाँके भी थोड़ी छोटी हो, बहुत बड़ी नहीं। ठीक है, और सौंफ, राई की दाल ये तो हमने ली है। मेथी को थोड़ा सा सेक लीजिए, थोड़ा सा ही सेकना है, 2-3 पलटी मारनी है, उसके बाद गैस बंद कर दीजिए। अब आप क्या करेंगे, चने आपके 24 घंटे गल गए, अब इनको निकाल दीजिए छाछ में से। छाछ में से निकालने के बाद अब इनको आप कोई सूती कपड़े पर, साड़ी पर, किसी पर भी आप सुखा दीजिए। ठीक है, ये अच्छी तरह सूख जाने चाहिए, तो इसको फिर से 24 घंटे धूप में नहीं, ठीक है, धूप में नहीं सुखाना है, छाँव में ही इसको सूखने दीजिए। इसका पानी का, छाछ का रेसा भी अंदर नहीं रहना चाहिए, इतना आप सुखा दीजिए 24 घंटे। 24 घंटे में नहीं सूखते हैं तो 30 घंटे लगाइए। लेकिन सुखाने के बाद आप क्या करेंगे, अब इन चनों को आप इकट्ठा कर लीजिए एक बड़े बर्तन में। फिर केरी की फाँके आपने काट रखी है, अच्छे से कपड़े से पोंछ ली है, वो आप इनके अंदर डाल दीजिए, छोले के साथ डाल दीजिए। अब आप मसाला डाल दीजिए, नमक डाल दीजिए, लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए, हल्दी पाउडर डाल दीजिए, फिर आप राई की दाल डालिए, सौंफ डालिए, मेथी डालिए, ये सब डाल दिया। तेल गरम करिए सरसों का, तेल गरम हो जाए तो तेल थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए, फिर इसमें हींग डालिए, अच्छी तरह हिलाइए थोड़ा से तेल में। ठीक है, ज़्यादा तेल गरम किया है उसमें से थोड़ा निकाल दीजिए, उसमें हींग पाउडर डाल दीजिए और अब उसको ठंडा होने दीजिए। जब एकदम ठंडा हो जाए तेल, तो फिर ये मसालों में डाल दीजिए हींग वाला तेल। ठीक है, अच्छी तरह हिला दीजिए, काबुली चना, केरी और ये सारे मसाले हमने डाले हैं, अच्छी तरह हिला दीजिए। हिलाने के बाद एक कांच की बर्नी में भर दीजिए और ऊपर से जो ये तेल हमारा है एक्स्ट्रा ठंडा हो गया है उसको डालिएगा। मसाला नीचे डूब जाए, तेल ऊपर तैरता रहे, आपको इस तरह रखना है साल भर संभाल करने के लिए। तो आप शुरुआत में तेल थोड़ा कम डालिए क्योंकि रात बीच में ये क्या है, मसाला बैठ जाता है, तेल ऊपर आ जाता है। अगर बहुत सारा तेल, अभी से आप तेल ज़्यादा डाल देंगे, मसाले के ऊपर तैरा देंगे, तो फिर वो बोतल से बाहर निकलेगा या इतना तेल ऊपर आ जाएगा कि फिर आपको लगेगा कि अरे ये हमने क्या किया। फिर उसको वेस्ट तो नहीं करेंगे, वो तेल निकाल करके फिर सब्जी का छोंक है या किसी अन्य में यूज़ करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप पहले आधा भरिए तेल, आधा डालिए, रात के बीच देखिए, क्योंकि 2-4 दिन कुछ नहीं बिगड़ेगा, ताज़ा ताज़ा अचार है भाई, तो रात के बीच में मसाला कितना बैठा है, तेल कितना ऊपर आया है देखिएगा, उसके बाद उस अनुमान से डालिएगा ताकि वो मसाला नीचे और तेल ऊपर रहे। तो इस तरह छोले का अचार बनाया जाता है, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा ये अचार, आप बना करके ज़रूर खाइएगा।
फिर से विधि दोहरा रही हूँ, छोले को पूरी रात क्या मतलब आपको 24 घंटे भिगो के रखना है छाछ में धुलाई करने के बाद। पहले पानी से धुलाई कर लीजिए फिर भिगोइए, ठीक है। अब ये भीग गए हैं, उसके बाद छाछ निकाल दीजिए और छोले को सुखा दीजिए सूती कपड़े पर छांव में। जब अच्छी तरह सूख जाए तो एक भगोने में भर दीजिए छोले। अब इसी में केरी काट करके स्वच्छ कपड़े से उसको अच्छी तरह पोंछ करके केरी भी डाल दीजिए। अब आप नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और

आपको डाल देना है सौंफ, मेथी, राई की दाल, ये सब डाल के हिलाना है। अब आप तेल गरम करिए, तेल थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो हींग पाउडर डाल दीजिए, और फिर पूरा ठंडा हो जाए तो इस तेल को आप छोले और केरी में डालिए भगोने में, और सारा मसाला और ये छोला केरी मिक्स करिए। मिक्स करने के बाद एक कांच के या चीनी के बर्नी में भर दीजिएगा, और फिर तेल दूसरा डाल दीजिएगा। और ध्यान रखना है तेल तरमा चाहिए, मसाला नीचे बैठा हुआ चाहिए, तो आपका फिर साल भर क्या 2 साल भी अचार का कुछ नहीं बिगड़ेगा। ठीक है, तो अपने इष्ट देव को भोग लगा करके ही छोले का अचार खाइएगा। तो ये हुआ आज का स्वादिष्ट अचार, और अब फिर से एक ब्रेक लेकर के लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: मुझे लड़का ही चाहिए।
1: तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई और उनसे पहले ही आप सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ मुझे जी लेने दो, अपनी कसम मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। माँ मेरी स्कूल फीस की चिंता मत करना, मैं भैया की किताबों से अपने आप ही पढ़ लिख जाऊंगी। और हाँ पापा से कहना मेरे दहेज की चिंता ना करे, मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी तो आप इस ऑपरेशन पर भी खर्चा मत करना। मैं ही भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा मुंह देखे।
2: माँ अब तो बस करो।
3: बहू क्या सोच रही हो, घर चले? नन्ही परी के स्वागत की तैयारियां भी तो करनी है ना।
4: को कवर ना बनाए, खुशी खुशी बिटिया को दुनिया में लाए।
5: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में जैसा कि टंग ट्विस्टर आपको बोल के सुनाया है, तो हमारे तीन बहनों ने टंग ट्विस्टर बोल के भेजा है वो इस मैसेज, उनका सुन लीजिए। लीला जी कपासन से।
6: पौधे पर पानी पड़ा, पानी से पौधा पनपा, पनपे पौधे पर पंछी पहुंचे, पंछी पहुंचे तो पौधा चमका। पौधे पर पानी पड़ा, पानी से पौधा पनपा, पनपे पौधे पर पंछी पहुंचे, पंछी पहुंचे तो पौधा चमका।
5: अब अलका जी।
7: पानी पड़ा, पानी से पौधा पनपा, पनपे पौधे पर पंछी पहुंचे, पंछी पहुंचे तो पौधा चमका। पौधे पर पानी पड़ा, पानी से पौधा पनपा, पनपे पौधे पर पंछी पहुंचे, पंछी पहुंचे तो पौधा चमका। पौधे पर पानी पड़ा, पानी से पौधा पनपा, पनपे पौधे पर पंछी पहुंचे, पंछी पहुंचे तो पौधा चमका। पौधे पर पानी पड़ा, पानी से पौधा पनपा, पनपे पौधे पर पंछी पहुंचे, पंछी पहुंचे तो पौधा चमका। पौधे पर पानी पड़ा, पानी से पौधा पनपा, पनपे पौधे पर पंछी पहुंचे, पंछी पहुंचे तो पौधा चमका। पौधे पर पानी पड़ा, पानी से पौधा पनपा, पनपे पौधे पर पंछी पहुंचे तो पौधा चमका।
5: बहुत सुंदर। अब भगवती जी का सुनेंगे।
8: पौधे पर पानी पड़ा, पानी से पौधा पनपा, पनपे पौधे पर पंछी पहुंचे, पंछी पहुंचे तो पौधा चमका। पौधे पर पानी पड़ा, पानी से पौधा पनपा, पनपे पौधे पर पंछी पहुंचे तो पौधा चमका। पौधे पर पानी पड़ा, पानी से पौधा पनपा, पनपे पौधे पर पंछी पहुंचे तो पौधा चमका।
5: तो आप तीनों के लिए ढेर सारी तालियां, बहुत ही सुंदर। टंग ट्विस्टर आपने मैसेज के द्वारा, वॉइस मैसेज के द्वारा भेजा है, बहुत बहुत आभार। और बाकी आज के कार्यक्रम तो आपने सुने ही हैं, काफ़ी अच्छे रहे हैं। सुंदर सा जो विचार दिया है उस पर जरूर गौर करेंगे, नुस्खे भी बहुत ही अच्छे दिए हैं, कैसे किशमिश फ़ायदा करती है गर्मी के मौसम में विशेष करके। और खुशनुमा जीवन की बातें भी बहुत ही अच्छी हुई। बस हम तो यही कहना चाहेंगे कि पर्यावरण का ज़रूर ख्याल रखिएगा। और जो आपको काबुली चने का अचार सिखाया है ज़रूर बना करके खाइएगा, ठीक है? और चिंता मत करिए, बच जाए तो पूरे साल भर का सवाल है। रखिएगा सहेज कर, मेहमान आएंगे तो उस समय भी काम आएगा। और आज का टंग ट्विस्टर बड़ा अच्छा था। मैं आज का टंग ट्विस्टर अब हमारे श्रोता बंधुओं ने तो सुनाया ही है, मैं भी बोल के सुना देती हूँ। पौधे पर पानी पड़ा, पानी से पौधा पनपा, पनपे पौधे पर पंछी पहुंचे तो पौधा चमका। पौधे पर पानी पड़ा, पानी से पौधा पनपा, पनपे पौधे

कंचन भाई मंडाली से, अलका जी काबरा कप्पासन से, लीला जी चित्तौड़गढ़ से, कमला जी भीलवाड़ा से, सुरेश भाई धानेराव से, ज्ञानेंद्र भाई उत्तर प्रदेश से, भगवती जी गुजरात तारापुर से। तो आप सभी ने बहुत ही सुंदर, कंचन भाई ने नहीं सुनाया है टंग ट्विस्टर, उनके अलावा सभी ने टंग ट्विस्टर बोल के सुनाया। और आप जो कंचन भाई है, सुरेश भाई धानेराव से, सुरेश भाई जोटाना से और ज्ञानेंद्र भाई, आप सभी ने विषय को भी स्पष्ट किया है बहुत ही अच्छी तरह। इसके लिए भी ढेर सारी आज का मीठा मोती है, पहाड़ जैसी विपत्ति को दूर करने के लिए सिर्फ थोड़ा सा साहस ही पर्याप्त है। अब मैं आपको पर्यावरण पर प्यारी सी कविता सुनाऊंगी, आप लेंगे कविता का आनंद और मुझे देंगे इजाजत। कल क्या है? कल शनिवार है, कल अंताक्षरी कार्यक्रम रहेगा और कल की थीम रहेगी भजन, ठीक है, आध्यात्मिक गीत। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप भाग लीजिएगा और अंताक्षरी में जरूर जुड़िएगा। और तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, गणी खम्मा सा। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM। धरती माँ का संदेश सुनो, पेड़ों का भी मान करो, हरी भरी हो हर एक बगिया, ऐसा सुंदर काम करो, नदियां निर्मल बहती जाए, पंछी मधुर तराने गाए, स्वच्छ हवा का उपहार मिले, मिलकर ऐसे वृक्ष लगाए, एक एक पौधा जब बढ़ेगा, जीवन में उल्लास चढ़ेगा, हरियाली का दीप जलेगा, सुख का नया सवेरा खिलेगा, आओ मिलकर प्रण ये ले, प्रकृति का सम्मान करे, धरती को स्वर्ग बनाए हम, पर्यावरण का ध्यान करे, धरती को स्वर्ग बनाए हम, पर्यावरण का ध्यान करें।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का स्वागत है। जीना इसी का नाम है। कितना सुंदर बात है ना, अगर जीवन में कोई मोड़ ऐसा आए और हमें पता चले कि मुझे ऐसा ही जीना है और इसी को कहते हैं कि जीना इसी का नाम है। कुछ ऐसे ही अनुभवों को लेकर के हमारे बीच में आए हैं आज के हमारे मेहमान ओंकार चंद शर्मा जी। आप ब्रह्म कुमारीज के मुख्यालय शांतिवन में 2014 से समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। एक योगी जीवन जीते हुए एक कार्य को करना, कैसा वो फर्क पड़ता है और किस मोड में उनको ऐसा लगा कि मुझे यही जीवन जीना है, चलिए जानते हैं। और उससे पहले हम स्वागत करते हैं ओंकार जी आपको जीना इसी का नाम है इस कार्यक्रम में और रेडियो मधुबन में। नमस्कार।
1: नमस्कार। ओम शांति।
0: ओम शांति। भाई जी, हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपका जो बचपन रहा है, आप कहाँ से और आपका पारिवारिक जीवन कैसा था और आपने क्या पढ़ाई किया और कब आपको ये महसूस हुआ कि मुझे आध्यात्मिक पढ़ाई भी करनी चाहिए?
1: मेरा लौकिक जन्म हिमाचल प्रदेश में एक छोटा सा कस्बा है, जिला है बिलासपुर, वहाँ पर 1980 में हुआ। तो मैं वहाँ रहता था। हमारा परिवार एक हिंदू ब्राह्मण परिवार है जहाँ पर सभी के अंदर भक्ति के संस्कार थे। बचपन से हम लोग भी नित स्नान इत्यादि करके बड़े प्यार से, घर में एक कोना था जहाँ पर सभी देवी देवताओं के मूर्तियाँ या उनकी पिक्चर्स वगैरह रखी होती थी, मंदिर की तरह था, वहाँ जाकर हम सब पूजा करते थे, अगरबत्ती जलाते थे। और बचपन से ही मेरा शिव के प्रति ज़्यादा प्यार था। मैंने शिव पुराण सुन रखा था, तो शिव पुराण सुनने के बाद मुझे लगा कि शिव ही सबसे बड़े हैं, तो उनको ही मन याद करता था। कभी कभी सोमवार का व्रत भी रख लेता था। तो बचपन बड़ा प्यारा बचपन था। हमारे घर में मेरे पिताजी, जब 93 में मैं 13 साल का हुआ, तो वो ब्रह्मा कुमारी आश्रम के संपर्क में आए और वहाँ पर बहनों ने उन्हें इनवाइट किया तो वो जाने लगे। तो जैसे

0: वो जाने लगे, उन्हें बड़ा अच्छा लगा। तो उन्होंने जो नियम मर्यादाएं वहाँ बताई जाती थी कि आपका भोजन शुद्ध होना चाहिए, शाकाहारी होना चाहिए, तामसिक नहीं होना चाहिए, वो सारी उन्होंने घर पे भी घर वालों को, मदर को समझाने की कोशिश की कि आज से हम ये नॉनवेज और तामसिक भोजन वगैरह नहीं लेंगे। तो घर वालों ने कहा ठीक बात है, पर उन्हें थोड़ा लगा कि ये कहाँ जा रहे हैं, क्या इनमें चेंज हो गया। पिताजी मुझे भी सुनाते थे, मैं 9th क्लास में पढ़ता था, पर मुझे बड़ा अट्रैक्टिव लगा वो ज्ञान जो वो सुनाते थे कि वहाँ पर परमात्मा का बड़ा अच्छा ज्ञान दिया जाता है और परमात्मा का इस सृष्टि पर अवतरण हो चुका है और वो आकर फिर से सतयुगी सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं और ये दुनिया बदलने वाली है। तो जो वो सुनाते थे मुझे बड़ा अट्रैक्टिव लगता था, तो मैंने इच्छा व्यक्त की, अभी 3-4 दिन ही हुए थे, कि मैं भी चलता हूँ। तो उन्होंने कहा कि अगर वहाँ जाना है तो ये नियम है, अगर तुम इनको फॉलो करोगे तो मैं लेके जाऊँगा। पर मेरे अंदर इतनी इच्छा थी, मैंने कहा मैं सब फॉलो करूँगा, मुझे लेके चलो। 9th क्लास में पढ़ता था, बहुत छोटा था, लेकिन भगवान को जानने की इच्छा भी थी और भगवान का जो परिचय मैंने पिताजी से सुना कि वो निराकार हैं और परमात्मा शिव हैं, तो वो मुझे थोड़ा अट्रैक्टिव भी लगा और अच्छा भी लगा। तो मैंने इच्छा जाहिर की कि मैं जाऊंगा और मैं गया, मेरी सिस्टर भी साथ में गई। तो हमें पहले दिन ब्रह्मा कुमारी आश्रम में बैठा दिया गया, योग चला हुआ था, रेड लाइट थी। तो वहाँ पर क्या हुआ कि रेड लाइट में बड़े अच्छे अच्छे आध्यात्मिक भजन गीत चल रहे थे, तो मैंने देखा वहाँ का वातावरण इतना अट्रैक्टिव है और वो गीत इतने पावरफुल हैं जो दुनिया में कभी सुने नहीं थे, और उसमें परमात्मा के प्रति इतना प्यार, इतनी श्रद्धा, इतना सम्मान। तो मैं उन गीतों से बड़ा प्रभावित हुआ और साथ में वहाँ का जो वातावरण था, सब लोग योग कर रहे थे, किसी ने ज्ञान नहीं सुनाया पहले, केवल 1 घंटा मैं वहीं बैठा रहा पिताजी के साथ। तो मुझे लगा कि ये चीज़ अच्छी है, जहाँ मुझे आना चाहिए वो चीज़ यही है। फिर धीरे धीरे उन्होंने हमें 7 डेज का कोर्स कराया, तो कोर्स करने के बाद फिर निश्चय हुआ कि सचमुच ही इस संस्था में जुड़ने से हमें फायदा होने वाला है और यहाँ आकर हमारे अंदर जो बुराइयाँ हैं, जो विकार हैं, वो बड़ी आसानी से छूट सकते हैं, ऐसा ज्ञान यहाँ दिया जा रहा है। साथ में जो ब्रह्मा कुमारी बहनें थी वहाँ जो रहते थे, उनका व्यवहार इतना अच्छा था, इतने स्नेह से, इतने सम्मान के साथ वो बात करते थे, तो उसने भी हमें बड़ा प्रभावित किया। घर में मुझे छोटा बच्चा था तो लोग ओंकार ही बोलते हैं, वहाँ ओंकार आश्रम में जाने लगा तो वहाँ ओंकार जी तो क्या, वो तो भाई जी बोल के बात करते थे। मैंने कहा यहाँ तो बड़ा सम्मान मिलता है भाई, सब लोग बड़े रिस्पेक्ट से एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं और अच्छे लोग हैं, और ऐसा लगा इन लोगों से जुड़कर इन जैसा मुझे भी बनना चाहिए।
1: इस बीच में आपकी लौकिक पढ़ाई का क्या हुआ? हाँ, लौकिक पढ़ाई की उम्र में तो आप स्कूल में जा रहे होंगे।
0: जी जी जी, मैं 9th में पढ़ता था, पढ़ाई में मैं पहले एवरेज था, लेकिन जैसे ही मैंने वहाँ मेडिटेशन ज्वाइन किया तो मेडिटेशन और राजयोग के से मेरे अंदर इतना अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट आया कि मुझे सेल्फ मोटिवेशन मिलने लगी कि मुझे पढ़ाई में टॉप करना चाहिए, मुझे कुछ बन के दिखाना है। और ये ना लोग कहें कि ये भगत बन गया है, वहाँ जा रहा है और अब इसने दुनिया भी छोड़ दी, नहीं, तो मुझे पढ़ाई में टॉप करना है। और उसका रिजल्ट आया, मेडिटेशन से मेरी मेमोरी पावर बढ़ी, कंसंट्रेशन पावर बढ़ी, मेरी फोकस करने की पावर बढ़ी और मेरी कंपनी अच्छी हो गई। जो लोग बैड कंपनीज में आके, बैड फ्रेंड्स के आके बिगड़ जाते हैं, वो उससे मैं बच गया और अच्छे लोगों की संपर्क में रहा। तो उससे ये बेनिफिट मेरी पढ़ाई का हुआ कि मैंने पढ़ाई में टॉप करना स्टार्ट कर दिया और 3-4 साल 9th, 10th, +1, +2, +2 के बाद मेरी सिलेक्शन इंडिया के टॉप 10 कॉलेजेस में से एक NIT कुरुक्षेत्रा में हो गई।
1: अच्छा।
0: और वहाँ भी टॉप की ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग उस वक्त मुझे मिली, स्कॉलरशिप भी मिलता था, तो मुझे तो बहुत बेनिफिट हुआ मेडिटेशन करके। चलो शांति मिली, ये तो एक कॉमन चीज़ है, सबको मिलती है, खुशी मिली, वो भी मिली, पीस ऑफ माइंड हो गई। लेकिन जो दुनियावी लाइफ में मेरा जो एक प्रगति हुई, एक लाइफ अच्छी बन गई, एक लाइफ का गोल मिल गया, उसका भी बेनिफिट हुआ। तो उसका असर ये हुआ कि जो मेरे साथ दूसरे फ्रेंड्स थे, उनके पेरेंट्स मुझे कहते थे कि हमारे बच्चों को भी आश्रम लेके जाया करो, ताकि वो जैसे आप इंजीनियर बन गए, आप पढ़ाई में अच्छे हो गए हैं तो वो भी अच्छे हो जाए। तो वो खुद मुझे कहते थे कि हमारे बच्चों को भी आश्रम के साथ जोड़ो और वहाँ जाने से उनको भी बेनिफिट मिलेगा। तो एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर सिटी में बना, सबको लगा कि ब्रह्मा कुमारीज में जो बच्चे जाते हैं वो उनकी सिलेक्शन ऐसे टॉप के कॉलेजेस में भी हो जाती है और वो कुछ बनते भी हैं। नहीं तो लोगों में ये मिसकंसेप्शन है कि जो धर्म से जुड़ता है वो पलायन कर जाता है, वो सब छोड़ देता है। लेकिन मेरे अंदर ये लक्ष्य था और जो वहाँ आते थे लोग हमारे ब्रह्मा,
1: मतलब बेसिकली ये है कि अगर अध्यात्म से जुड़ते हैं या ब्रह्म कुमारी संस्था से जो मेडिटेशन सीखते हैं वो आपकी लाइफ के अंदर एक्सेलेंस बढ़ाता है, लेकिन वैरागी या सन्यासी नहीं बनाता है।
0: हाँ, सन्यासी तो हमें सीखा, फिर हमने यहाँ से जुड़े कि सन्यास तो बुराइयों का है, सन्यास तो आपकी कमी कमजोरियों को उनको छोड़ने का है जो चीज़ें आपको तंग कर रही हैं। गुस्से का सन्यास करना है, आपने अपने ईगो को छोड़ना है, ईर्ष्या को छोड़ना है। तो हमें लगा ये बात तो सही है, घर बार छोड़ना तो बड़ा आसान है। कहते हैं ना, एक बड़ी अच्छी बात किसी ने कही है, ना घर त्यागो ना हरि भूलो, रहो ऐसे जिंदगानी में जैसे कमल रहता है पानी में। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि भगवान को भी नहीं भूलना है, घर भी नहीं छोड़ना है। और ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान तो घर को अच्छा बनाने के लिए है कि हम घर गृहस्थ में रहते हुए एक जीवन को बेटर वे में, मूल्य आधारित जीवन, एक वैल्यू बेस्ड लाइफ कैसे जी सकते हैं, वो हमने यहाँ से सीखा।
1: तो ज्ञान की वो कौन सी बात थी, 13 साल की उम्र में तो आप थोड़ा बहुत तो दुनिया को भी समझ रहे हैं, जीवन में आगे भी बढ़ रहे। टीनेज बहुत चंचल वाला होता है, डिसीशन लेना भी बहुत मुश्किल होता है, हमको लगता है कि हम जो सोचते वो जानते वही सब कुछ है, वही सही है
0: जी।
1: तो ऐसे में आपको जब ये राजयोग मेडिटेशन के बारे में सीखा, यही सत्य ज्ञान है, वो कौन सी बात थी जब आपको लगा कि हाँ मुझे इसको फॉलो करना चाहिए?
0: यहाँ की एक एक बात, अब एक मुख्य बात तो कई हो सकती हैं, लेकिन हर बात ने मुझे, जो चीज़ मैंने सुनी, जो पढ़ी, पूरा लिटरेचर मैंने पढ़ा,
1: यहाँ की बालिकाओं में 13 साल की
0: 13 साल की उम्र में मैंने हर चीज़ स्टडी की, जो भी यहाँ की बुक्स होती थी, मैं जो भी बुक्स मेरे हाथ में आ जाती थी मैं पूरा पढ़ के जाता था। इवन जो बहन जी मुझे कोर्स कराते थे तो कोर्स कराने से पहले वो बुक हमारे घर में थी, क्योंकि डैडी जी जा रहे थे, मैं पूरा पढ़ के जाता था, सारे क्वेश्चन के जवाब उनके मेरे पहले ही आते थे। तो हर चीज़ ने अट्रैक्ट किया कि परमात्मा, एक तो ये बात बड़ी अच्छी लगी कि कोई भी देहधारी भगवान नहीं हो सकता, भगवान वो नहीं होता जो जन्म मरण में आता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा देवी देवता हो सकता है, देवात्मा हो सकती है, महान आत्मा हो सकती है, पर परमात्मा तो ज्योति बिंदु निराकार है। एक हमारे स्कूल टीचर थे, वो भी हमें मेडिटेशन कराते थे, कहते थे आपके अंदर ना लाइट प्रकट होगी, लाइट लाइट दिखेगी। तो हम करते थे, 6th क्लास से मैं थोड़ा बहुत करता था, तो जब यहाँ आया तो वही रेड लाइट, वही शिव बाबा, मतलब नाम नहीं वो बताता था, तो कहता था लाइट होगी। तो मुझे लगा ये भी वही चीज़ कुछ है, तो ज़रूर भगवान लाइट ही होगा, प्रकाश स्वरूप होगा। और दूसरी बात, जब भगवान के वर्जन जो थे, जो उनके महावाक्य जिन्हें हम यहाँ मुरली कहते हैं, वो जब पढ़े तो और पढ़ना शुरू किया तो समझ में आया कि अभी ये चीज़ें जो हमें सुनाई जा रही है, समझाई जा रही है, यहाँ कोई गुरु नहीं है, कोई बहन जी या भाई जी नहीं है जो हमें बता रहा है, बताने वाला साक्षात वो निराकार परमात्मा जिसने स्वयं गीता ज्ञान दिया, वो ज्ञान समझा रहा है। और वो ज्ञान की एक एक पॉइंट, कोई भी पॉइंट है, वो बुद्धि में मतलब इतनी स्टीक लगती थी कि ये मुझे करके ही छोड़ना है, ये मेरे जीवन से ही रिलेटेड है। जैसे कहा गया कि बदला ना लो, बदल के दिखाओ, मैं क्या, सही बात है, बदला लेना तो अच्छी बात नहीं है। हमने सुना कि माफ़ कर दो, तो माफ़ करना भी अच्छी बात है, क्या गलत है इसमें। हमने सुना कि निंदा नहीं करनी किसी की, किसी की आलोचना नहीं करनी, सबकी प्रशंसा करनी है, शुभ भावना शुभ कामना रखनी है, हमने कहा ये भी बिल्कुल सही बात है। हर चीज़ यहाँ की, अच्छा अन्न आपने शुद्ध खाना है, किसी को दया भाव मन में रखना है, किसी को मार के, और हम अगर अब सच्चे ब्राह्मण हैं और सच्चे सनातन वाले मानने वाले हैं, तो सनातन धर्म तो सिखाता है दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ना छोड़िए जब तक घट में प्राण। तो दया तो सबसे बड़ी चीज़ है, पहले हम चाहे लौकिक में ब्राह्मण थे पर हम नॉन वेज भी खाते थे, लेकिन यहाँ आके समझ आया कि ये तो असुरों का भोजन है, ये तो अच्छे लोगों का धार्मिक लोगों का भोजन नहीं है।
1: तो फिर जैसे आपने कहा कि आप लौकिक में ब्राह्मण थे और आपका अपना एक कल्चर और एक परंपरा होती है, और सनातन के हिसाब से देखा जाए तो ब्राह्मण जो होते हैं उनको सबसे ऊंचा मानते हैं
0: जी।
1: तो फिर आपकी अपनी कम्युनिटी, फिर जब आप अपनी व्यवहार और आपके जो भी लाइफस्टाइल है खान पान सब बदल दिया, आपने संग बदला, तो कभी आपको विद्रोह नहीं हुआ आपके परिवार समाज में या आपकी जो कम्युनिटी है?
0: हमारे जो आसपास के रिश्तेदार और लोग थे, मैं समझता हूँ वो काफ़ी समझदार थे, बुद्धिजीवी थे, थोड़े मॉडर्न भी थे, ओपन माइंडेड भी थे, तो उनको तो लगा कि ये अच्छी जगह जुड़े हैं। मुझे नहीं लगता एक आधे को छोड़ के किसी ने हमारा थोड़ा बहुत मजाक तो चलो सब उड़ा लेते हैं, पर ज़्यादातर के आगे मेरा इम्प्रेशन अच्छा पड़ा कि ये वहाँ जुड़ा है, इसने पढ़ाई भी अच्छी की, कुछ लाइफ में अचीव भी किया। उनके जो बच्चे थे जो हमारे रिलेटिव्स थे वो उतने नहीं कुछ कर पाए क्योंकि वो बैड कंपनी में आके इधर उधर घूमते रहे, पढ़ाई नहीं की, और मेरा सारी चीज़ें पॉजिटिव जा रही थी, तो उनके आगे और ही अच्छा हुआ कि ये अच्छी जगह जुड़ा, तो इनकी लाइफ बन गई। उसका रिजल्ट ये आया कि बहुत से रिश्तेदार स्वतः ही संस्था से जुड़े, वो भी बीके बने, कोई 2 साल बाद बना, कोई 10 साल बाद बना, पर बने जरूर। तो किसी ने रोका नहीं हमें, और पेरेंट्स हमारे जुड़े हुए थे तो किसी की हिम्मत भी नहीं थी क्योंकि पेरेंट्स साथ में अगर हैं तो फिर कौन किसको रोकेगा। हाँ, पेरेंट्स ये कहते थे आप वहाँ जा रहे हैं, हम भी जाते हैं, पर आपको बाबा का, शिव बाबा का नाम बदनाम नहीं करना, मतलब पढ़ाई में टॉप करना है और कोई ऐसा कर्म नहीं करना जिससे कोई आपके ऊपर उंगली उठाए। तो वो हमने करके दिखाया तो सब लोग हमें सपोर्ट करते थे और सबके आगे एक अच्छा मैसेज आता था, तो वो हमें बहुत अच्छा लगा
1: जी। तो इस तरीके से आपका जो जर्नी रहा है, 13 साल की उम्र में आपने इस ब्रह्मा कुमारी की राजयोग मेडिटेशन से आप जुड़े और उससे आपके जीवन में प्रभाव तो आपने देखा। तो आपकी पढ़ाई पूरी कब हुई और फिर आपके भाई बहने इस चीज़ को लेकर के आपका कितना फैमिली में सपोर्ट था?
0: जैसा मैंने कहा कि फैमिली का तो फुल सपोर्ट था, सबको था कि ये अच्छी जगह जुड़े हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो उन्होंने तो हर मोड़ पर हमें मोटिवेट ही किया क्योंकि वो खुद रेगुलर स्टूडेंट थे। उसके बाद पढ़ाई में फिर हमने पहले बीटेक किया, जब बीटेक कर रहे थे तो भी दूसरे शहर पे गए, कुरुक्षेत्र गए, वहाँ भी ब्रह्मा कुमारी के सेंटर पे रोज जाना आना, प्रोफेसर्स की सेवा करना। एक बार कॉलेज में भी मैंने अपने आदरणीय उषा दीदी जी का प्रोग्राम रखवाया, कॉलेज के खर्चे पे करवाया, आना जाना रहना सारी चीज़ें, और कॉलेज में भी बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ा। मैं फाइनल ईयर में पढ़ता था तो माइंड मैनेजमेंट एंड मेडिटेशन के ऊपर उनका 2 घंटे का प्रोग्राम कॉलेज के ऑडिटोरियम में हुआ और अराउंड 500-600 की स्ट्रेंथ, सारे प्रोफेसर्स विद फैमिलीज, तो कॉलेज में भी अच्छी सेवा होती थी। बीच बीच में उनको कभी माउंट आबू भी किसी प्रोग्राम में बच्चों को, अपने साथियों को या जो प्रोफेसर्स थे उनको लाता रहता था। तो उस लाइफ में भी, कॉलेज लाइफ में भी मेरा मतलब एक मटेरियलिज्म की ओर झुकाव नहीं हुआ। मेरे मन में था कि मैंने जहाँ मेरा रास्ता है, जो भगवान के रास्ते पे हम चल रहे हैं वही सही है, जो दुनिया कर रही है वो उनकी अपनी सोच है, लेकिन हम सही रास्ते पे हैं। कॉलेज में दोस्त ट्राई करते थे, परखते भी रहते थे ये कितना पक्का है, कच्चा है, क्या कहता है, पर हम लगे रहे, डटे रहे, तो उसका बेनिफिट भी होता था। कॉलेज में भी हुआ, एक पढ़ाई की, उसके बाद मैं उसी कॉलेज में जैसे ही मेरी डिग्री पूरी हुई वहीं मेरे को टीचिंग की जॉब मिल गई। तो फर्स्ट जॉब मेरी डिग्री करने के 1 महीने के बाद उसी सेम NIT कुरुक्षेत्र में एज ए लेक्चरर लग गई। तो लोगों को लगा अच्छा ये तो यहाँ टीचर भी लग गया, तो टीचर इसलिए लगा क्योंकि मैं वहाँ के जो डायरेक्टर्स थे, प्रोफेसर से सबसे मिलता जुलता रहता था, उनको ज्ञान सुनाता रहता था, तो प्रोग्राम भी कराए थे। तो जैसे ही मेरा हुआ तो उन्होंने कहा तो अच्छा आदमी है, तो उन्होंने मेरे को, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट बेस की जॉब थी, एडॉक पे थी, पर रही। उसके बाद फिर मैं चंडीगढ़ शिफ्ट हुआ, तो चंडीगढ़ में ब्रह्मा कुमारी इसका क्षेत्रीय मुख्यालय, जोनल हेड ऑफिस है, बड़ा ऑफ सेंटर है, 1 एकड़ में है राजयोग भवन। तो वहाँ संस्था के जो अच्छे टॉप के लोग हैं, हमारे आदरणीय आचल दीदी जी, आदरणीय अमीर चंद भाई जी, वो एक बहुत टॉप के तपस्वी योगी आत्माएं थी, तो उनके संपर्क में आया, तो फिर इस ज्ञान योग में थोड़ी और रिफाइनमेंट आई और हम एक्सपर्ट बने और झुकाव हमारा योग के प्रति और इस आध्यात्मिक पढ़ाई की ओर हुआ। फिर वहाँ रहते ही चंडीगढ़ के एक टॉप के कॉलेज में NITRRR, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के चार ही NITRRR है, फिर MTech मैंने की, वो भी स्टडी लीव पे आके अपने कॉलेज से। अच्छा चलता रहा, वहाँ भी सेवाएं करते रहे।
1: इतना सब कुछ आपका जीवन में अच्छा चल रहा था, तो आपको वो संकल्प क्यों आया कि मुझे अभी समर्पित होना है, मुझे अभी ये दुनिया की कोई काम नहीं करना है और मुझे मधुबन जाना है और मुझे समर्पित जीवन जीना है?
0: देखो, मैंने 10 साल जॉब की, प्रोफेसर रहा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी रहा, हर साल सैकड़ों बच्चों को पढ़ाया जाता था, उनको अच्छी बातें सिखाई भी जाती थी, तो और जगह भी मैं ब्रह्मा कुमारीज की सर्विसेज में लेक्चर वगैरह देने जाता था और भी सेवाएं करता था। लेकिन एंड में मैंने एक रिजल्ट लाया कि ये मैं लोगों को कर रहा हूँ एक लिमिट दायरे में। मैं कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, मुझे पैसे मिल जाते हैं, 100-200 बच्चों को पढ़ा के मेरा अर्निंग तो हो रही है, उनको मैं कुछ अच्छी बातें मान लो सिखा भी रहा हूँ, तो एक लिमिट दायरा है। लेकिन मैंने सोचा मुझे ये अपना जीवन ना केवल एक छोटे से कॉलेज के लिए, ना कि एक छोटे से कम्युनिटी के लिए, बल्कि पूरे देश और पूरी दुनिया के लिए, चलो दुनिया बहुत बड़ी बात होगी, कम से कम अपने देश में बड़े लेवल पर रह के लोगों के अंदर उनको सही जीवन जीने की कला सिखानी है। मेरे जीवन में पैसा है, प्राप्तियां हैं, सब कुछ है, खुशियां हैं, लेकिन मैं अकेला खुश रह के क्या करूँगा? जीना उसी का नाम है जो दूसरों काम आए, जो दूसरों के लिए कुछ कर सके, अपने देश के लिए कुछ कर सके, अपने समाज के लिए कुछ कर सकें। और दुनिया में कितने दुख हैं, कितनी समस्याएं हैं, कितनी परेशानियों टेंशन्स में लोग गुजर रहे हैं, कोई सुसाइड कर रहा है, कोई डिप्रेशन में आ गए हैं, कोई डिवोर्स हो रहे हैं। मैं कह इन लोगों को सही ज्ञान कैसे दिया जाए? अब मैं जॉब में हूँ तो बंधन है, मैं कहीं जाना है तो छुट्टी नहीं मिलती, कहेंगे जी कॉलेज में आज बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, आज तो मिलेगी नहीं, तो आप कहीं जा भी नहीं सकते। लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे अब पैसे के पीछे नहीं भागना, मैं अकेला हूँ, कोई परिवार का बंधन नहीं है कि मुझे माँ बाप मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, उनका खर्चा करना है। माता पिता से डिस्कस किया, कहते हैं बहुत अच्छी बात है, लग जाओ सेवा में, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। मैं कह माँ बाप भी कह रहे हैं, दिल भी कह रहा है, शिव बाबा का तो मैसेज रहता ही है कि बेहद की सेवा में लगो, देश की सेवा में लगो, लोगों को ये ज्ञान ईश्वर का पैगाम सब तक पहुंचाओ, सबको एक हैप्पी जीवन जीने की कला सिखाओ। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि अब मैंने भौतिक प्राप्तियों के पीछे ना लग के दुनियावी इस रेस में ना जाकर, कितना भी कमा लेंगे हम, टाटा बिरला अंबानी अडानी बनने वाले तो रहे नहीं, कितना भी कमा ले यार वो भी बन जाए तो उससे भी ऊपर बैठे हुए हैं बहुत लोग, कोई परमानेंट तो यहाँ रिच रहता नहीं। लेकिन जिन लोगों ने दूसरों के लिए काम किया वो देखो क्या से क्या बन गए। तो फिर मैंने भी संकल्प किया कि मुझे भी अब ये लाइफ अपने लिए ना जीकर, अब ये लाइफ और ये ब्रह्मा कुमारी जी एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है समाज सेवा करने का, लोगों से जुड़ने का, लोगों तक सच्चा ज्ञान पहुंचाने का। तो मुझे ऑफर मिला, उन्होंने कहा जो हमारे बड़े थे कि आप आइए, आपकी संस्था में पैसे देने वालों की जरूरत से भी ज़्यादा उन लोगों की ज़रूरत है जो टाइम देते हैं, जो अपनी एनर्जी फुल लगाते हैं। पैसा देने वाले कोई और भी दे सकता है, पर जो टाइम दे और अपनी एनर्जी पूरा यहाँ के लिए लगाए, ऐसे वॉलंटियर्स की हमें ज़रूरत है। तो मैंने कहा मैं इसके लिए तैयार हूँ, और जहाँ चाह होती है वहाँ राह मिल जाती है, वेयर देयर इज विल देयर इज वे। और मुझे, मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि ब्रह्मा कुमारीज के सबसे बड़े केंद्र माउंट आबू शांति वन में मुझे आने का सौभाग्य मिला।
1: अभी जो भी सेवा आप क्या सेवाएं करते हैं यहाँ पर?
0: यहाँ पर मुझे मुख्यतः मेरी सेवा रहती है जो संस्था का इंग्लिश मैगजीन है, मंथली मैगजीन है द वर्ल्ड रिन्यूअल, तो उसकी एडिटिंग, उसका मैं एडिटर हूँ, उसके लिए आर्टिकल्स लिखना, आर्टिकल्स तैयार करना, जो दूसरों के आर्टिकल जाते हैं उनको एडिट करना, सिलेक्ट करना, तो जो भी उसकी पब्लिशिंग से रिलेटेड जो भी काम होते हैं मेन वो रहता है। साथ में रही पूरे देश की बात, तो सारे स्टेट्स में बीच बीच में जाना रहता है सेवाओं के लिए, तो जहाँ हमारी ज़रूरत होती है लोग बुलाते हैं, हम किसी को मना नहीं करते। वहाँ जाकर।
1: तो ओंकार जी, आपकी ये जो लंबी सफर है, हमने ये तो जाना कि जब आप 18 साल की उम्र में ब्रह्म कुमारी के संपर्क में जब आए, जो मेडिटेशन सीखा, आपका संग बदल गया, आपका खान पान बदल गया, आपका जीवन में एक डिसिप्लिन आया है। लेकिन जब से आप समर्पित जीवन जीना शुरू किया
0: जी,
1: जैसे आपके अंदर ये श्रेष्ठ भावना जागृत हुई कि मुझे 2 कौड़ी की पैसों के लिए नहीं लेकिन देश के लिए जीना है, तो वो श्रेष्ठ भावना ने आप हद की प्राप्तियों के पीछे भागने की जगह एक अच्छी सेवा की भावना के लिए आप समर्पित हुए हैं। तो जब से आप समर्पित हुए हैं, लगभग 10 साल से आप ब्रह्म कुमारीज के हेडक्वार्टर्स में शांतिवन में रहते हैं, सेवाएं कर रहे हैं, ये 10 साल में आप अपने अंदर किस प्रकार की परिवर्तन या क्या नया सीखा आपने, कैसे आपने जीवन को और बेटर किया है?
0: यहाँ रह के देखो, जब हम घर में रहते हैं, अकेले रहते हैं या छोटी जगह पे रहते हैं, बहुत कम लोग होते हैं, वहाँ रहना बड़ा आसान होता है। सबसे बढ़िया यहाँ सीखा कि कैसे एक बहुत बड़े ग्रुप के में, आप संगठन में रह के एडजस्ट कैसे कर सकते हैं, जहाँ 2000 लोग परमानेंट रहते हैं, 24 घंटे वही मिलने जुलने वाले, जहाँ हर 15 दिन में 20-25 हज़ार लोगों का एक ग्रुप बाहर से भी आता हो, इतने अलग अलग वैरायटी तरह के लोगों में रहकर एडजस्ट करना और उनके साथ तालमेल बनाना और हर एक के लिए गुड विशेज रखना, कोऑपरेशन रखना, सबके प्रति इतने बड़े संगठन में रहते हुए भी दूसरों की बुराइयां या कमियां कमजोरियां ना देखते हुए उनकी पॉजिटिविटी पे ही फोकस करना, ये चीज़ें यहीं आके हो सकती हैं। परिवार में भी होती है, 4-5 लोगों के बीच में हम कर लेते हैं, थोड़ा अपनापन भी होता है, पर यहाँ बेहद का अपनापन लाना पड़ेगा। यहाँ आपको तमिलनाडु के लोग भी मिलेंगे, पंजाब के भी मिलेंगे, आसाम के भी मिलेंगे, कुछ फॉरेन कंट्रीज़ के भी मिलेंगे, कईयों की लैंग्वेज बैरियर है, कईयों की वे ऑफ थिंकिंग का बैरियर है, अच्छा कईयों की हैबिट्स का बैरियर है, लेकिन फिर भी सबके साथ रहना है। और सबसे कहीं ना कहीं अगर आपने सेवा करनी है तो उनको कोऑपरेशन भी लेना है, तो ये कला यहीं डिवेल्प हो सकती है, जिसे टीम स्पिरिट कहते हैं। टीम भावना मतलब इतनी बड़ी टीम में रहकर काम करना, वो यहाँ आके मैंने सीखी। और ये भी सीखा कि कैसे इतना बड़ा संगठन कैसे चलता है, क्या क्या इसके लिए गुड क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए, और कैसे इस संस्था के जो हमारे बड़े हुए हैं, दादियाँ हुई हैं, बड़े भाई हुए हैं, उनमें भी वो गुण हैं कि उन्होंने कैसे सबके बीच में तालमेल बनाया। क्योंकि एक व्यक्ति का विचार और 2 का विचार कभी मिल ही नहीं सकता, पता है सबको, हर एक का वे ऑफ थिंकिंग है, फिर भी सबको एक विचार पे ला के एक काम करना, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो कर रहे हैं। तो हम भी कोशिश करते हैं कि उनके साथ तालमेल बैठा के हम भी उसमें कुछ कोऑपरेशन करें। उसके लिए अच्छा टॉलरेंस पावर यहाँ डिवेलप होगी, जब आप बड़े ग्रुप में रहेंगे तो आपको सहन शक्ति भी आएगी आपके अंदर, और सबके अंदर समाने की पावर
1: भी आएगा।
0: हाँ, वो भी आएगा। तो यहाँ रह के मतलब आपकी पर्सनैलिटी में वो निखार आता है, लीडरशिप क्वालिटी भी आ जाएगी। अगर कोई काम किसी से कराना है तो आपको लीडर भी बनना पड़ेगा, और बहुत सी चीज़ें आएंगी, तो वो हमें आती हैं, तो वो एक यहाँ का रहने का प्लस पॉइंट है जो घर में रह के नहीं हो सकता। वहाँ तो हमारे नखरे होते हैं माँ बाप के साथ, वहाँ तो हम सोचते हैं कि हम हक है हमारा, हमारे माँ बाप हैं, परिवार वाले हैं, लेकिन ये भी परिवार है पर बड़ा परिवार है। तो बड़े परिवार में एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, एडजस्ट करने की भावना भी पैदा होती है, जो मुझे यहाँ आके सीखा। बाकी यहाँ टाइम हमारे पास काफ़ी है, तो हम उस टाइम में अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हैं, अच्छी चीज़ें पढ़ते हैं, अपनी डिवेलपमेंट करते हैं, किसी को अच्छी गाइडेंस देनी है, एडवाइस करना है, उसमें हेल्प कर देते हैं, तो लगता है कि हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं
1: जी। आखिर में कोई ऐसा गीत आपको लगता है कि यह आपके जीवन को डिफाइन करता है?
0: अब गीत तो बहुत अच्छे अच्छे हैं, अब मेरे जीवन के लिए जो डिफाइन करता हो उसके लिए कौन सा ऐसा गीत हो सकता है, ये तो सोचने का विषय है। फिर भी मैं सोच के बताता हूँ, किसी ने अपना बनाकर मुस्कुराना सिखा दिया,
1: किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच ओंकार जी। सच में जैसे रेडियो मधुबन का भी स्लोगन है, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जब अच्छे लोगों के संग में रहते हैं तो हमारी मुस्कुराहट ऑटोमेटिक निखर जाती है और हमारी पर्सनालिटी में जिस तरीके की बदलाव आते हैं और हमारा जो व्यक्तित्व विकसित होता है वो भी बिना मेहनत का होता है। तो जिस तरीके से सरलता के साथ आपने अपने जीवन के बारे में बताया है, आसान तो नहीं है, लेकिन आपने जो सच्चा संग अपनाया है उस कारण से वो इतना सरल हो गया है आज जो हम देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने समय निकाला, रेडियो मधुबन के स्टूडियोज में आई और आपकी आध्यात्मिक जीवन के उन चंद पलों के बारे में हमारे श्रोताओं के साथ साझा किया। बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद, थैंक यू।
1: दोस्तों, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM। ऐसे ही अनुभवों को आपके बीच में लेके आते रहेंगे और हम और आप साथ में मिलकर के सीखते रहेंगे हमारे मेहमानों के जीवन से। जीना इसी का नाम है।

0: and you are listening to Brahma Kumari's community radio station, Radio Madhuban. Keep listening, keep smiling.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम. सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए. आज है 24 नवंबर 2024, और 24 नवंबर 2024 को आप थोड़ा सा सोच के देख सकते हैं इसमें कॉमन क्या क्या चीज़ें हैं, और आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं. और खैर, ये है कार्यक्रम जीवन रोशनी, और जीवन रोशनी में हम जीवन मूल्यों को जानते हैं, चाहे वो गाने के माध्यम से हो, चाहे वो दोहे के माध्यम से हो, या फिर किसी बड़े के जीवन को अध्ययन करते हुए हम जानते हैं इस कार्यक्रम के अंतर्गत. और इसके साथ साथ आप भी अपने राय हमें बताते हैं इस कार्यक्रम के अंतर्गत. और आज ये कार्यक्रम लाइव चल रहा है, और लाइव कार्यक्रम के दौरान अगर आपके मन में कुछ सवाल है तो आप हमें कॉल करके बता सकते हैं 94-14-15-14-15 पर, या फिर आप हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सअप पर. तो आज हमारे मध्य हमारे एक्सपर्ट हैं, जिनको हम ऑथर कहेंगे, स्पीकर कहेंगे, कोच कहेंगे, फैसिलिटेटर कहेंगे, मेडिटेशन एक्सपर्ट कहेंगे, दत्ता रोकड़े भाई जी. और इन्हें आप पहले भी सुन चुके हैं, इन्हें काफ़ी समय से एक्सपीरियंसेस है, अनुभव है, लगभग 15 साल से भी ज़्यादा. पर्सनल एम्पावरमेंट कोच और कॉरपोरेट फैसिलिटेटर के रूप में बहुत सारे विषय पर वो बात करते हैं. अगर इन जनरल में कहूँ, लगभग मेरे सामने जो है वो 50 से ज़्यादा विषय हैं. इन सारे विषय को बताऊंगी तो शायद जीवन रोशनी कार्यक्रम ही कम पड़ेगा. तो हम कह सकते हैं कि ज़िंदगी को कैसे जिया जाए, कैसे स्मूथ बनाया जाए, कैसे हेल्दी रिलेशनशिप बनाया जाए, इस बारे में वो यूथ को सिखाते हैं. तो आज हमारे मध्य ऐसे एक्सपर्ट है, तो हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे श्रोताओं के साथ वो बातचीत करेंगे, और हम उनसे बहुत सारे खजाने जो है वो निकालेंगे. दत्ता भाई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में.
2: थैंक यू सो मच. आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में मुझे इनवाइट करने के लिए.
1: जी, तो जैसे आप तो एक्सपर्ट हैं, तो एक सवाल आपसे करना चाहूँगी कि जो एक्सपर्ट होते हैं वो परफेक्ट होते हैं, या आज भी वो अपने मूल्यों को खोज रहे होते हैं कहीं ना कहीं?
2: ये तो देखिए, हमारे लाइफ में वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ये जो जीवन के जो मूल्य है या वैल्यूज़ है, ये हमें हर प्रकार से जैसे हमारी लाइफ को शेप देते रहते हैं.
1: जी.
2: और हमारी जैसे जैसे लाइफ के गोल्स हम सेट करते हैं, तो उस अनुसार हमारे अंदर वो गुण तो है ही, वो मूल्य तो है ही, लेकिन उसकी प्रायोरिटी मैं कहूँगा कि चेंज होती है.
1: जी.
2: है ना, जैसे अगर हम एक कोई स्टूडेंट है, उसके एग्ज़ाम है, तो वो डेफिनेटली बहुत हार्डवर्क करेगा, है ना, पढ़ाई करेगा, फोकस्ड रहेगा, कंसंट्रेशन रहेगा, तो ये उसकी प्रायोरिटी हो जाती है.
1: ओके.
2: और वही स्टूडेंट अगर छुट्टी है तो क्या करेगा? एंजॉय करेगा, खुश रहेगा, है ना, खेलेगा. तो ये इस तरह से उसके क्या होगी प्रायोरिटीज, वो गुण जो है, वो मूल्य जो है, वो प्रायोरिटी पे आ गए.
1: ओके. सो प्रायोरिटीज के बेसिस पे हमारे मूल्य चेंज होता रहता है.
2: गोल्स
1: चेंज होते हैं, पर मूल्य वही रहते हैं.
2: हाँ, मूल्य तो हमारे अंदर सारे क्वालिटी, सारे जो वैल्यूज है, वो हमारे अंदर तो है ही. बस जैसे जैसे हमारे गोल्स होते हैं, उस अनुसार हम उन मूल्यों को प्राधान्य देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं.
1: जी. तो मूल्य होने से हमें फायदा क्या है?
2: मूल्य जो है, वैल्यूज कहे, मूल्य कहे, ये हमारे लाइफ के लिए एक गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं. जैसे हमें लाइफ में कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने हैं, तो अगर हम अपने जीवन के इन मूल्यों को, इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखें, तो हमारे लिए डिसीजन लेना बहुत ईजी हो जाता है.
1: जी.
2: फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आपको लाइफ में जैसे बिजनेस करना है, तो आप अपने से पूछते हो कि क्या मैं जॉब करते हुए खुश हूँ क्या? तो खुशी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. जॉब सेटिस्फैक्शन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है. क्या मुझे, मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें मुझे खुशी मिल रही है, या मुझे बहुत ऐसा लगता है सुबह उठ के, अरे यार आज वापस ऑफिस जाना है, क्या ये ख्याल आता है? क्योंकि बहुत सारे भाई बहन ऐसे मैं देखता हूँ, जिनसे मिलता हूँ, जॉब कर रहे हैं, सैलरी बहुत अच्छा है, जो बाकी लोग आशा रखते हैं कि नहीं मेरी एक परफेक्ट लाइफ होनी चाहिए. जैसे होता है कि लोग कहते हैं नहीं, शादी हो, बच्चे हो, इतना बैंक बैलेंस हो, मतलब जो भी उनके एक एक्सपेक्टेशंस होते, एक परफेक्ट फ्रेम ऑफ लाइफ होता है, तो वो होते हुए भी वो सेटिस्फैक्शन अंदर नहीं रहता है. तो कहीं ना कहीं हम वो काम करते हैं, लेकिन वो वैल्यूज़ जो है वो हमारे, हम इंजॉय नहीं कर पाते, बिकॉज हमारे कहीं ना कहीं लाइफ में डिसीजंस गलत हो जाते हैं. तो डिसीजंस लेने के लिए हमें वैल्यूज़ बहुत हेल्प करते हैं.
1: जी ओके. कहीं ना कहीं क्या वैल्यूज एक इंसान को इंसान बनाता है, इंसानियत से भरपूर कर देता है?
2: ऑफ कोर्स, ये हमारे पूरे ओवरऑल पर्सनालिटी को शेप करता है
1: जी.
2: हमारे विचारों को एक अच्छी दिशा देता है, हमारा व्यवहार उससे बहुत अच्छा बनता है.
1: जी बिल्कुल. तो श्रोताओं, आप क्या सोच रहे हैं कि जो मूल्य हैं, जो अच्छाइयाँ हैं, वो हमारे जीवन को क्या बनाता है? आपके नज़रिया से आप क्या सोचते हैं, आप हमें कॉल करके बता सकते हैं 94-14-15-14-15 पर. तो आइए यहाँ पर एक अल्प विराम लेते हैं, फिर वापस आते हैं इस गाने के बाद. सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM, और ये है कार्यक्रम जीवन रोशनी.

0: अरे क्या बात है मैडम, आज तो आपकी चाल ही बदल गई है।
1: क्यों ना हो, त्रिशूल हवाई चप्पल जो पहन रखी है आप भी पहनिए त्रिशूल हवाई चप्पल और फर्क महसूस कीजिए।
0: त्रिशूल हवाई चप्पल मजबूत, आरामदायक और रंग बिरंगी डिजाइन में आपके नजदीकी स्टोर्स में उपलब्ध।
1: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें
0: 9414152250
1: या लॉग ऑन करें www.trishulfootwear.in। त्रिशूल हवाई चप्पल, पैरों में मखमल।
2: ए रुक, कुछ सुनाई नहीं देती। और ये पुकार है आपकी गड्डी की, जो कह रही है कि बिना पिए मेरे को चलाओ। और ये पुकार आपके बच्चों की भी हो सकती है, तो जो सलामत घर पहुंचना हो तो बिना पिए गाड़ी चलाना, समझे? चलो निकल लो अब। और हाँ, हैप्पी जर्नी मेरी तरफ से अवलदार कड़क। हाँ, जो आपको कहता है डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। और ठीक ना? ठीक।
3: ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: वेलकम बैक। सुन रहे हैं आप कार्यक्रम जीवन रोशनी, और हम जीवन रोशनी में रिवाइज कर रहे हैं कितने सारे मूल्यों को हमने जाना है कहीं ना कहीं, लेकिन मूल्य क्यों ज़रूरी है, मूल्यों को पहचानेंगे कैसे, कहाँ पर हम अपने मूल्यों को दर्शाते हैं और अपने वैल्यूज़ के साथ हम कार्य क्षेत्र में आते हैं, तो ये सब कैसे पहचाने। कई बार हम दूसरों के गुण को तो पहचान लेते हैं, उनके अवगुण को भी पहचान लेते हैं, जब खुद के बारे में सोचा जाता है, खुद के गुण अवगुण को पहचानने में बहुत बार मुश्किल लगता है। तो आज हमारे मध्य हमारे एक्सपर्ट दत्ता भाई जी हैं, आइए उनसे जानते हैं और इसे और विस्तृत रूप से डीपली समझते हैं मूल्यों को। आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम के अंतर्गत जी। तो जैसे ब्रेक से पहले आपने कहा कि मूल्य हमारे जीवन को एक दिशा प्रदान करता है और इसके साथ साथ एक हमें शेप देती है, तो अभी आपसे जानना चाहेंगे कि अपने अच्छाइयाँ या मूल्यों को हम कैसे पहचानेंगे।
1: बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब जैसे आपने बहुत अच्छे से कहा कि हम दूसरों के गुण अवगुण बहुत ईजीली देख सकते हैं, और वो बहुत हमारे लिए इजी है क्योंकि हम बाहर की तरफ देख रहे हैं, लेकिन जब खुद की बारी आती है, खुद को देखना होता है, तो हमारे लिए शायद थोड़ा मुश्किल हो। तो उसके लिए हम काफ़ी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल तरीके से समझ सकते हैं कैसे हमारे वैल्यूज़, कौन से वैल्यूज़ के साथ हम ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। आपने देखा होगा कि हर एक व्यक्ति अलग है, हर एक व्यक्ति की पसंद अलग है। अब आप चेक करो, जैसे अगर आपको कोई गीत बहुत पसंद है तो वो कौन सा गीत है, और उन गीतों में वो सुनते हुए आपको, आप अपने आप से पूछो कि मैं एक गीत सुन रहा हूँ तो मुझे उसमें क्या अच्छा लग रहा है, तो कौन सी क्वालिटीज़ मुझे उसमें बहुत अच्छी लग रही है। या फिर आप देखो, आपके फेवरेट पर्सनालिटीज़ हैं, चाहे आपके आसपास है, आपके परिवार में है, आपके स्कूल या ऑफिस में है, या कोई हिस्टोरिकल फिगर्स है, या पॉलिटिकल लीडर्स है, कोई भी हो सकता है, वो पर्सनालिटी हमें क्यों अच्छी लगती है, उनकी कौन से गुण, कौन सी क्वालिटीज़ हमें अच्छी लगती है।
0: ओके, जैसे कि मेरा एक गाना है, जब हम पढ़ाई करते थे तो ये फिल्म रिलीज हुई थी थ्री इडियट्स, और सब लोग गाते थे ये गाना कि जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, कोटों को करके गोल, सीटी बजा के बोल, ऑल इज वेल। तो इसमें क्या मूल्य आएगा, ये तो है ना कि मतलब कुछ भी हो जाए ठीक है, ओके, ऑल इज वेल, तो इसमें कौन से गुण रिफ्लेक्ट करते हैं।
1: आप अपने आप से पूछो कि आप ये क्यों सुन रहे हैं गाना, वो सुन के आपको कौन सी फीलिंग्स आप इमर्ज होती है, या कौन सी फीलिंग्स के साथ आप कनेक्ट करते हैं, कैसा लगता है,
0: लाइटनेस, या फिर ऐसा करते कि ठीक है कोई बात नहीं है, मतलब टेंशन वेंशन तो है बट थोड़ा सा रिलैक्स करो और सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक है, ऐसा टाइप।
1: वेरी गुड, तो उसमें आप जैसे निश्चिंत हो जाते हैं।
0: ओके, तो बेफिक्र हो जाते हैं,
1: बेफिक्र हो जाते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं, आप एक करेज फील करते हैं, है ना, हिम्मत आ जाती है आप में। तो इस तरह से आप देखो कि ये जब सुन रहे हैं गाने भी, तो उसमें मुझे कौन सी क्वालिटीज़ के साथ मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ, या वो मुझे हिम्मत दे रही है। कोई गाने सुनते हैं, राष्ट्रभक्ति के गीत सुनते हैं, तो एकदम पेट्रियोटिज्म हमारे अंदर का जाग जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है, एंड एवरीवन इज लाइक मैं रेडी हूँ फाइट करने के लिए, वो वाली फीलिंग हर एक के अंदर आ जाती है। तो इस तरह से वो गीत सुनकर ही क्या हो जाता है, हमारा ऑटोमेटिकली वी ट्यून टू दोज वैल्यूज, टू दोज ब्यूटिफुल क्वालिटीज, और उसके साथ जैसे हम कनेक्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर भी वो क्वालिटी, आपके अंदर भी वो क्वालिटी, और वो क्वालिटीज़ के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, वो वैल्यूज़ के साथ जैसे हम जुड़ते जाते हैं और हम फील करते हैं कि यस वी आर वन फैमिली।
0: जी जी बिल्कुल, और कभी कभी हमें वो किसी के मुस्कुराहटों पे हो निशार, है ना, ये गाना बहुत पसंद आता है लोगों को, जीना इसी का नाम है, तो ऐसे कनेक्ट करते हैं। तो जिसके जो भी फेवरेट गाने हैं दोस्तों, तो आप थोड़ा सोचिए कि वो गाना आपको क्यों पसंद है, तो आप ऑटोमेटिकली अपने मूल्य भी पहचान सकते हैं कि कहीं ना कहीं उस गाने के जो शब्द है उसके साथ आपकी जीवन मूल्य भी कनेक्ट कर रहा है।
1: Beautiful.
0: ये कहना चाह रहे हैं,
1: ये भी है गीत है, चाहे कोई वन लाइनर्स किसको बहुत पसंद आते हैं, कोई शेर है, कोई वन लाइनर्स है, या कुछ कुछ जैसे आपने लिटरेचर पढ़ा है वो लाइंस आपको बार बार याद आती रहती है।
0: ओके, जैसे तो, मुझे ऐसा लगता है कि ओखली में सिर दिया तो मुसलों से क्या डरना,
1: क्या डरना, राइट,
0: मतलब रेडी टू फेस,
1: रेडी टू फेस, यस। तो वो जो है आपका, अगेन यहाँ पे करेज भी दिखता है आपका, है ना, तो इस तरह से आप चेक करो कि वो जब आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, याद करते हैं, तो आपको कौन सी क्वालिटीज के साथ ज्यादा कनेक्ट करते हैं।
0: इसमें मजबूरी भी तो है, ये भी तो एक आप कह सकते हैं कि ये एक नेगेटिविटी नहीं है।
1: तो वैल्यूज़ जो है, अगर हम देखते हैं, जैसे एक बार ऐसे एक व्यक्ति के साथ मैं डिस्कस कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि हम जैसे वैल्यूज़ की बात करते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे लाइफ में जैसे आप पॉजिटिव वैल्यूज की बात करते हो, वैसे ये क्वालिटीज जो है ना, जो कुछ नेगेटिव वैल्यूज भी होते हैं.
0: ओके.
1: तो हमें क्या करना है, हमें ट्यून करना है टुवर्ड्स पॉजिटिविटी, टुवर्ड्स द राइट वैल्यूज, है ना. अब लोग गलत काम भी करते हैं, तो हमें क्या करना है, हमें हमारा फोकस जो हो वो अच्छाई की तरफ हो, हमें अपने आप को बेहतर बनाने की तरफ हो, हमें अपने विचारों को एक बहुत सुंदर दिशा देनी है, अपनी लाइफ को एक बहुत अच्छा डायरेक्शन देना है. तो हमें अच्छे थॉट्स के साथ ट्यून करना बहुत ज़रूरी है. और ये क्वालिटीज़ जो है हमारे अंदर की, जो गुड क्वालिटीज़ है, उस पर जितना फोकस करते रहेंगे उतना ज़्यादा बढ़ती जाएंगी. अब मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूँ. जैसे स्टूडेंट्स होते हैं या इवन यूथ्स, उनको समझने के लिए देखो, मैं ये कहता हूँ कि देखो, आप फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके दोस्त जो है, आपके बारे में जब आप नहीं रहते हो तो क्या बोलते हैं. सो बेसिकली दिस इज़ योर पर्सनल ब्रांड. तो आपने अपना ब्रांड कैसे बनाया है, लोग आपको कैसे जानते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं. तो वो आपका नाम लेके आपको नहीं जानते, आपकी क्वालिटीज़ की वजह से आपको जानते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल वो क्या कहेंगे, नहीं ये बंदा जो है ना, ये बहुत रिस्पेक्ट करता है सबकी, ये बहुत हार्डवर्किंग है
0: जी,
1: ये बहुत डिसिप्लिन्ड है, इसमें बहुत पेशेंस है. तो क्या करेंगे वो, आपके क्वालिटीज़ को वो एक्सप्रेस करेंगे
0: जी,
1: उसका वर्णन करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे देखो, आप किसी, कोई आपको पूछे आपका सबसे फेवरेट पर्सन कौन है, तो स्टूडेंट्स को APJ अब्दुल कलाम बहुत अच्छे लगते हैं. तो क्यों अच्छे लगते हैं, नहीं ही वॉज, दो ही वॉज अ पोलिटिकल लीडर, ही वॉज वेरी हम्बल
0: जी,
1: ही वॉज वेरी नॉलेजेबल, है ना. मतलब वो ह्यूमिलिटी है, वो पावर है, वो अथॉरिटी है उनमें, लेकिन फिर भी जैसे उनकी जो क्वालिटीज़ है उसकी वजह से क्या हो रहा है, वो उनके साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं. सो दीज वैल्यूज़ यू नो वी हैव टू होल्ड इट वेरी स्ट्रांग. तो ये हमारे रूट्स है, और अगर हम इन रूट्स को पकड़ के रखेंगे तो हम लाइफ में बहुत ग्रो कर सकते हैं.
0: ओके. बहुत सारे इंसान हैं, सबके अंदर वैल्यूज़ हैं, और वो लोग अपने वैल्यूज़ को लेकर के चलते हैं, लेकिन कई बार वो अच्छे इंसान के साथ कुछ हो जाता है या फिर खुद से गलतियाँ हो जाती है, तो वो गिल्ट में चले जाते हैं. तो क्या अपने अंदर ऐसी कोई वैल्यूज़ है या ऐसा कोई टेक्निक है जिसके माध्यम से उस गिल्ट को हम पार करके फिर से वैल्यूबल बन जाए.
1: अब इसके लिए क्या होता है ना, जैसे हम अपनी वैल्यूज़ की जब बात कर रहे हैं, हमारा फोकस जो है, अब उसके कई तरीके हैं उस गिल्ट से बाहर आने के लिए. अगर हम वैल्यूज़ पे फोकस करना चाह रहे हैं, अगर हम उसके बारे में सोचें और हमारे थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करें हमारे लाइफ के पास्ट एक्सपीरियंसेस, लेट से मेरे जीवन में कभी कोई फेलियर आया हो, तो उन फेलियर से बाहर आने के लिए मुझे कौन सी चीज़ ने सबसे ज़्यादा हेल्प की.
0: ओके.
1: तो शायद आप गिवअप करने कर रहे थे, चलो कोई स्टूडेंट है फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं स्टूडेंट बार बार इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स भी सुनते हैं, फेल होते हैं
0: जी, जी.
1: तो फेल होने के बाद एक तो दो चीज़ें होती है, एक तो वो गिवअप कर देते हैं कि नहीं अब मुझे नहीं पढ़ना है, और छोड़ देते पढ़ाई. कोई होते हैं जो और हिम्मत करते हैं, नहीं और अच्छे से पढ़ूंगा, नेक्स्ट टाइम तो मैं ना आउट ऑफ मार्क्स ले लूँगा उस टेस्ट में, लेट से मैथ्स का पेपर है फॉर एग्ज़ाम्पल, या साइंस का है, या कोई भी सब्जेक्ट है. तो क्या होता है, वो एक डिटरमिंड, एक थॉट जो आता है, वो हिम्मत जो करता है, तो उस हिम्मत के आधार से उसको वो बल मिलता है और उस बल से वो सफल होता है.
0: ओके. जी जी बिल्कुल. तो ऐसे हम मतलब अकेले में कभी बैठ के ये सारे चिंतन कर सकते हैं कि जब पास्ट के एक्सपीरियंसेस हैं हमारे पास, तो उसमें हम कैसे बाहर आए, तो हमारे कौन से मूल्य था उसमें.
1: बिल्कुल बिल्कुल. तो हम जैसे अपने साथ बैठते हैं, अपनी लाइफ को जैसे थोड़ा देखते हैं, अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस को देखते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये जैसे मेरा अपना पर्सनल कम्युनिकेशन है खुद के साथ में.
0: जी. तो क्या आप हमें कोई ऐसे रिफ्लेक्शन गाइडेंस कमेंट्री के द्वारा बता सकते हैं कि कैसे हम अपने पास्ट की सिचुएशन को सोचें और फिर रिफ्लेक्ट करें कि कौन से मूल्य था जिससे हम अपना करके उभर सकें.
1: डेफिनेटली. जैसे एक होता है कि हम किसी के गाइडेड थॉट्स के साथ चले, और दूसरा ये होता है कि हम अपने लिए जैसे कुछ राइटिंग करें. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बात आ गई.

0: आप परेशान हो गए, दुखी हो गए, फेल हो गए, या फेलियर का को फेस करना पड़ रहा है, कोई लाइफ में ऐसी स्टेज आ गई जैसे अभी ऐसे हो रहा है कि अभी सामने बिल्कुल अंधेरा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में आप रुको थोड़ा.
1: अच्छा, पॉज,
0: टेक अ पॉज. कोई बात नहीं, ये सबके साथ होता है लाइफ में, किसी ना किसी मोड पे हर एक के साथ ये सिचुएशन आती है. चाहे आप कितने भी अनुभवी हो, सक्सेसफुल हो, अमीर हो, या किसी भी प्रकार का व्यक्ति है, कहीं ना कहीं लाइफ में इस दौर से उसको गुजरना ही पड़ता है. तो ऐसे समय पर हमें तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि पॉज लेना बहुत ज़रूरी है. और जैसे कोई कहता था ना कि यू नो दिस शल पास, दिस टाइम शल पास, है ना, ये भी समय जैसे बीत जाएगा
1: जी.
0: तो ये जब हम सुनते हैं, अपने आप को याद दिलाते हैं, तो हमें और हिम्मत आ जाती है. तो इससे समय पे मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ कि आप बैठो, थोड़ा अपने माइंड को पहले सेट कर दो. और इसके लिए राइटिंग इज़ द पावरफुल टूल. तो आपके मन में जो जो थॉट्स आ रहे हैं, आप लिखो उसको और देखो आपके मन में क्या चल रहा है इस वक्त, और अपने आप से पूछो मेरा फोकस कहाँ होना चाहिए. तो उस समय आपको वो ऑटोमेटिकली वो वैल्यूज़ हाईलाइट हो जाएंगे
1: जी.
0: ओके. सबसे पहली बात तो है कि मुझे लाइफ में खुश रहना बहुत ज़रूरी है, तो वो खुशी कहाँ से आएगी. सबसे पहले तो मुझे शांत रहना है, मुझे मन में स्थिरता बहुत ज़रूरी है, तो स्टेबिलिटी है, पीस है, तो मुझे शक्ति चाहिए, वो शक्ति कहाँ से आएगी. तो मुझे कुछ अच्छी बातें सुननी ज़रूरी है, किसी अच्छे व्यक्ति के संपर्क में रहना बहुत ज़रूरी है. तो वो जो संग है, वो जो मतलब आपका एक फ्रेंडशिप है, रिलेशनशिप है, तो ये देखो ये जो सारी क्वालिटीज़ अगर हम फोकस करते हैं, इन वैल्यूज़ पर फोकस करते हैं, तो ऑटोमेटिकली देखना आपको बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे और उससे बाहर आना आपको बहुत ईजी हो जाएगा.
1: जी जी बिल्कुल. मान लीजिए ये पास्ट की बातें हैं, या आपने कहा कि राइटिंग के द्वारा भी हम चीज़ें कर सकते हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि सिचुएशंस में और बेहतर क्या हो सकता था और हम क्या कर सकते हैं. मान लीजिए कोई करंट सिचुएशन है और वहाँ पर हमें गुस्सा आ रहा है, तो उस समय कैसे पॉज ले सकते हैं? क्या वो प्रैक्टिकल सिचुएशन जब हो रहा होता है तभी हम ऐसे कुछ कर सकते हैं कि हम उस सिचुएशन को वहाँ पर पहले जैसे हम बात करते थे या फिर हमारे रिएक्शंस जैसे होते थे उसे बदला जा सकता है?
0: अब जैसे हमारे बिहेवियर्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, और जैसे हम अपने पहले भी शायद किसी ने शेयर किया हो, हमारे बिहेवियर्स एक तो दो प्रकार के होते हैं, एक तो रिएक्टिव बिहेवियर है, एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है.
1: जी.
0: रिएक्टिव बिहेवियर वो है जैसे कोई बात आ गई और इमीडिएटली हमने रिएक्ट कर दिया. किसी ने कुछ बोल दिया और मैंने तुरंत गुस्सा कर दिया, उसको कुछ उल्टा सीधा बोल दिया या अपमान कर दिया उसका, या कुछ भी किसी मतलब बहुत रूढ़ तरीके से बात किया, बहुत ज़ोर से बोला या कुछ और अपशब्द भी बोल दिया उसको, शायद गाली दे दी. तो इस तरह से मेरा एक रिएक्शन कुछ भी हो सकता है, मतलब बात आई और मैंने तुरंत रिएक्ट किया, दैट इज़ वन बिहेवियर, रिएक्टिव बिहेवियर. दूसरे टाइप का बिहेवियर है रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर.
1: जी.
0: रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर क्या है? कोई भी बात आई, मैंने पॉज लिया, सोचा आई हैव अ चॉइस, अभी बात करनी है, बाद में बात करनी है, या बात ही नहीं करनी. तो आई हैव अ चॉइस. तो अब मैं हम इसीलिए कहते हैं ना बहुत बार आप सोच समझ कर बोलो. तो आपने सोचा, समझा, यू हैव अ चॉइस, एंड देन आपने रिस्पॉन्स दिया, तो वो मेरा रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर हो गया.
1: ओके. तो तभी आप अगर आप गुस्सा करते थे और आप चाहते हैं अभी पीस को अपनाने के लिए, तो ये टेक्निक्स
0: बिल्कुल
1: यूज कर सकते
0: हैं. तो मेरा रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर क्या होगा कि आई हैव टू होल्ड टू दैट वैल्यू ऑफ पीस, लव सो स्ट्रॉन्ग, कि मुझे अपने आप से भी प्यार करना है क्योंकि मुझे बीमार नहीं होना है.
1: जी.
0: तो मैं अपने आप से प्यार करूँ पहले, और मैं अपने आप को कहूँ कि नहीं, आई लव माई सेल्फ एंड आई वॉन्ट टू बी पीसफुल बिकॉज ये मेरे लिए अच्छा है.
1: ओके.
0: तो मैं ये कहूँगा कि आप सिर्फ पीस तो ज़रूरी है डेफिनेटली, बट थोड़ा अपने आप पर प्यार करो, अपने आप से प्यार करो, क्योंकि योर बॉडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जिसमें आपको रहना है.
1: जी.
0: और जैसे हम कहते हैं ना गुस्सा आता है तो जैसे हमारा बॉडी पे उसका बहुत असर होता है, हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स को डैमेज करता है जो हमें शायद पता भी नहीं है.
1: जी जी.
0: तो इसीलिए दैट लव वाली फीलिंग अपने लिए अगर इमर्ज करेंगे विद दैट लव एंड पीस, तो बहुत अच्छा मैजिक हो सकता है. क्योंकि सबको सबसे ज्यादा प्यार किसी से है तो वो खुद से होता है.
1: नहीं होता है. करना चाहिए. नहीं होता है.
0: नहीं होता है ना. अभी देखो अगर आपको चोट लग जाए तो आप क्या करेंगे बताओ? हमेशा यही सोचेंगे
1: तो
0: हाँ, मलम पट्टी पहले करेंगे.
1: हाँ.
0: क्यों? क्योंकि वो दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो उससे पहले छूटना चाहते हैं.
1: हाँ,
0: तो प्यार करते हैं इसीलिए. नहीं तो आप बोलेंगे नहीं मुझे क्या करना है, ठीक हो रहा है तो हो जाए, नहीं तो छोड़ तो नहीं देते ना उसको. तो आपको प्यार है इसीलिए तो आप उसकी फिक्र है, ठीक होना चाहते हैं, है ना।
1: तो सेल्फ लव और सेल्फ केयर में थोड़ी सी थिन लाइंस है क्या, कैसे पहचानेंगे हम सेल्फ केयर कर रहे हैं या सेल्फ लव है ये?
0: सेल्फ लव और सेल्फ केयर, जैसे आप अपने आप से प्यार कर रहे हैं, सिंपल, बहुत सिंपल तरीके से समझना इसे, और आप खुद का ध्यान रख रहे हैं, तो इट इज़ लाइक बेसिकली जैसे मैंने कहा कि चोट लगी आप उसको इलाज करा रहे, तो व्हाट यू डूइंग, यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ,
1: राइट।
0: और आप साथ साथ आप सोच क्या रहे हो, है ना, आपके थॉट्स किस तरफ है, है ना। मुझे अपने आप से प्यार करना है लेकिन मुझे अपने थॉट्स को नेगेटिविटी की तरफ से जाने से बचाना है,
1: ओके, तो वो सेल्फ लव होगा,
0: वो केयर होगा मेरा, लव के साथ आई एम केयरिंग, मेरा खुद का ध्यान रख रहा हूँ मैं कि नहीं तुझे ऐसे नहीं सोचना है, तुझे ऐसी परिस्थिति में ऐसा सोचना है, सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम टेकिंग केयर ऑफ माय सेल्फ। बच्चे को भी बोलते हैं ना वहाँ नहीं जाना, नहीं तो चोट लग जाएगी या कुछ, मतलब है ना, इट इज़ नॉट सेफ, तो यू आर प्रोटेक्टिंग, तो यू टेकिंग केयर ऑफ योर चाइल्ड। तो उसी तरह से हमें अपना भी ध्यान रखना जरूरी है।
1: जी बिल्कुल, ध्यान रखने से अच्छे अच्छे मूल्यों को अपना सकते हैं।
0: हाँ,
1: सेल्फ लव जरूरी है उसके।
0: हाँ, ये तो बिल्कुल अपने वैल्यूज ही है ये तो।
1: जी एक बात और कही जाती है कि पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो, तभी आप मूल्यों को अपना सकते हो, तभी आप अपनी जो जिंदगी को दूसरे तरीके से देख सकते हो। तो ये पॉजिटिविटी है क्या, मतलब कैसे पॉजिटिव रहेंगे?
0: अब पॉजिटिविटी अपने एक वैल्यू ही है, राइट, एक मूल्य ही है,
1: मूल्य ही,
0: राइट, पॉजिटिविटी। तो अब पॉजिटिव रहना है तो पॉजिटिविटी एक, आई मीन, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत बड़ा टॉपिक भी है, राइट। तो पॉजिटिव रहना है क्यों, क्योंकि मुझे पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए, अच्छा सोचूंगा तो अच्छा मिलेगा, शुभ सोचेंगे तो शुभ होगा। तो अगर मैं अगर उल्टा सोच रहा हूँ, नेगेटिव सोच रहा हूँ, तो मेरा रिजल्ट क्या होगा, तो जो मेरा इनपुट रहेगा वही मुझे आउटपुट मिल रहा है।
1: जी,
0: तो इसीलिए आई हैव टू ट्यून माई सेल्फ टू पॉजिटिविटी, कि कुछ भी हो जाए नहीं, मुझे वो पॉजिटिविटी को बहुत स्ट्रांगली होल्ड करना है, है ना। बहुत लोग कहते हैं नहीं मैं इतना पॉजिटिव सोचता हूँ, कुछ नहीं होता है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि एक आप एक बहुत अच्छी बुक है, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, उसमें ऑथर ने लिखा हुआ है, एक एग्जांपल मुझे बहुत पसंद आता है, कहते हैं कि 100 times ऑफ पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करो, वो काम नहीं करते, उसके दो ही रीजंस होते हैं।
1: जी,
0: एक तो आपने क्लियरली वो एक नेगेटिव थॉट क्रिएट किया, ये नहीं होगा, तो उसका इफेक्ट जीरो हो जाता है, दैट इज़ वेरी क्लियर, ऑब्वियस, है ना। लेकिन वो कहते हैं कि दूसरा एक रीज़न है जिसकी वजह से इतना पॉजिटिव सोचने के बाद भी वो नहीं होता, और वो है कि आपका डाउट।
1: जी, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में है।
0: हाँ, तो आप सोचते कि आपने सोच लिया कि नहीं मेरा ये काम हो जाएगा, हो जाएगा, फिर आप सोचते हैं और अपने आप से पूछते हैं कि मैं इतना सोच रहा हूँ ये काम होगा, लेकिन क्या सच में होगा? तो वो जो डाउट क्रिएट किया, तो वो पूरा उसका असर जीरो हो जाएगा।
1: जी,
0: तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट ऑलवेज आई हैव टू ट्यून माई सेल्फ, कुछ भी हो जाए नहीं, मुझे पॉजिटिव ही रहना है। और ये क्या होता है कि एक दिन में नहीं होता, एक इंस्टेंस से नहीं होता है, एक एक्सपीरियंस से नहीं होता है, आपको कॉन्शियसली वो ट्यून करना बहुत ज़रूरी है, अच्छा सोचना ज़रूरी है, अच्छा आपका चिंतन होना ज़रूरी है, लोगों में अच्छाई देखना ज़रूरी है। कि अगर मैं जिन लोगों के साथ भी रहता हूँ, चाहे कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन हो, लेकिन उसमें मेरे लिए अच्छा क्या है?
1: ओके, तो वो सोचने से वो आपको दिखाई देगा कि क्या पॉजिटिविटी है उस सिचुएशन में।
0: हाँ बिल्कुल, जैसे देखो बहुत लोग ये एग्जांपल तो कई बार देते हैं ना, जैसे देखो एक प्लेन पेपर है और उसमें अगर हम एक डॉट मतलब कर दे, तो कहते हैं कि अच्छा आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो सब कहते हैं नहीं वो डॉट दिखाई दे रहा है, इतना अच्छा पेपर है, लेकिन उस पर वो मार्क पे ज्यादा जल्दी अटेंशन जाता है। तो हमारा भी क्या है, ओवरऑल ये सिर्फ पेपर की पेन वो डॉट की बात नहीं है, लेकिन हमें हमारे आसपास के जो लोग हैं उनका बिहेवियर अलग अलग हो सकता है, लेकिन उस बिहेवियर में भी उनके अंदर की अच्छाई क्या है उस पे मेरा फोकस जाना ज़रूरी है।
1: तो उसे निरंतर प्रैक्टिस करना पड़ेगा।
0: बिल्कुल, तो सबसे पहला तो है मैं क्या देख रहा हूँ।
1: जी,
0: जो देखूंगा वही मेरे संकल्प चलेंगे, वही मैं सोचूंगा, राइट। तो अगर वो जिस तरह से भी बात कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं, अपने आप से पूछो उसमें मेरे लिए क्या अच्छा है, ये क्वेश्चन आप अपने आप से पूछेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको अच्छा ही वो आपको दिखाई देगी, एंड यू विल पिक ओनली दोज गुड क्वालिटीज, है ना। जैसे मम्मी पापा घर पे बच्चों को डांटते हैं, पढ़ाई कर पढ़ाई कर, अब बच्चों ने पूछना चाहिए अपने आप से क्यों डांटते इतना, उनको क्या फ़ायदा। लेकिन इनको, बच्चे को अच्छे मार्क्स मिलेंगे तो उसको ज़्यादा खुशी होगी, और पेरेंट्स को तो उससे ज़्यादा खुशी होगी।
1: जी,
0: पढ़ाई तो अल्टीमेटली बच्चे को करनी है, लेकिन रिजल्ट से खुशी दोनों को मिलने वाली है।
1: जी, वो खुशी के लिए।
0: हाँ,
1: और इसके साथ साथ हमारे जीवन में कुछ अच्छा ही होगा जब हम पढ़ाई अच्छा करेंगे, तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं. जी हाँ, और जैसे आपने कहा नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिव ढूंढने की हमें कोशिश करनी चाहिए.

0: रिजल्ट मुझे कल दिखाई देगा
1: जी.
0: सो आई हैव टू बी वेरी पेशेंट. और आपके पेशेंस और आपकी जो सबके लिए एक अंदर से बहुत शुभ भावना है, ये बहुत अच्छे है, तो ऑटोमेटिकली वो हमारा अच्छा सोचना उनको परिवर्तन कर देगा. मैं हमेशा कहता हूँ, जैसे मेरा एक
1: कितने दिन में कर सकता है, लेकिन आपने बोला मेडिसिन नहीं है ये.
0: तो इट टेक्स टाइम. अभी आई रिमेम्बर मेरे एक लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ मैं जॉब करता था, तो वहाँ पे ना मेरा जो वर्क स्टेशन था उसके पहले जैसे हमारा अकाउंट्स का एक बंदा बैठता था, और उसकी एक टिपिकल आदत थी. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अगर आपके साथ बात कर रहा हूँ तो आपको ज़रूर देखूँगा, आई कांटेक्ट होता है हमारा, एक दूसरे को देखते हैं. तो उसकी आदत थी कि वो कभी वो आई कांटेक्ट नहीं करता था. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सामने से बात कर रहा हूँ तो वो एकदर लेफ्ट देखेगा राइट देखेगा बट मुझे नहीं देखेगा. तो मैं नया था तो मुझे समझ में नहीं आया ऐसे क्यों, तो मैं क्या करता था, उसके सामने जाता था तो वापस वो इधर मुँह कर देता था. तो और सब लोगों ने नोटिस किया था, और मैंने शायद किसी से पूछा नहीं, और मेरे लिए बहुत वियर्ड एक्सपीरियंस था वो. तो हुआ ये कि थोड़ा अजीब सा लगा, आई वॉज वेरी अनकम्फर्टेबल, बट लेटर आई रियलाइज कि अच्छा ये इसका हैबिट ही ऐसा है. तो होता ऐसा था कि सभी को कंप्लेन था इस बात का, लेकिन कोई कुछ बोलता नहीं था. और वो भी चेंज नहीं हुआ, काफ़ी टाइम से तो वैसे ही था. तो मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस बोला कि नहीं ये अच्छा है, ये सोचा. और जैसे मैं ऑफिस में एंटर करता था तो उसका वर्क स्टेशन पहले था, और फिर मैं आगे जाता था
1: जी
0: उसको क्रॉस करते हुए. तो एवरीडे मैं कुछ नहीं, आता था उससे मिलता था, भले वो जैसे भी लेफ्ट देखे राइट देखे मैं उसको ग्रीट करता था, दो मिनट बात करता था उससे, और फिर आगे चला जाता था. नाउ इसका असर ऐसा हुआ कि ओवर द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, 3 महीने लगे उसको, 3 महीने के बाद धीरे धीरे उसका बिहेवियर थोड़ा सा चेंज हो गया. धीरे धीरे वो आई कांटेक्ट मेंटेन करने लगा. मैंने उसको बहुत प्यार से एक बार फीडबैक भी दिया था उसका, तो ही स्टार्टेड मेंटेनिंग दैट आई कांटेक्ट. और उसका रिजल्ट मुझे इतना ब्यूटीफुल रहा कि यूजुअली क्या होता है कि हम काम करते हैं तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट के साथ तो काम रहता ही है कुछ ना कुछ.
1: जी.
0: तो मेरा जब काम रहता था तो मैं उसको कॉल करता था कि मुझे आना है मिलने आपसे, तो वो कहता था कि नहीं तुम रुको मैं आता हूँ तुम्हारे पास.
1: जी.
0: एंड अदरवाइज ऑन द कॉन्ट्ररी जैसे मेरा बॉस है तो वो कॉल करता था तो उसको वो बुला लेता था कि आप मेरे पास आओ. तो सी दिस इज द चेंज. आप किसी व्यक्ति के बारे में आप जज करने के बजाय आप उसके लिए बस वो प्यार वो शुभ भावना रखो कि ये अच्छे है और उनकी अच्छाई पे फोकस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप वो रिजल्ट देखेंगे. ऑफकोर्स थोड़ा टाइम लगेगा बट आप रिजल्ट ज़रूर देखेंगे.
1: जी. दुनिया के कुछ दस्तूर है आप कह सकते हैं, और कुछ हमारे सोसाइटी के बाइबल कह सकते हैं, आप श्रीमद कह सकते हैं, कि इंसान को ऐसा ही होना चाहिए. घर में अगर लड़की है तो उसको ऐसा होना चाहिए और लड़का को ऐसा होना चाहिए, ऐसे बिहेव करना चाहिए सोसाइटी में. तो जज कैसे नहीं करें, वो तो बचपन से आदत है. तो जज नहीं किए बिना कैसे हम रह सकते हैं, या फिर उस मोमेंट में हमें क्या सोचना चाहिए?
0: उसके लिए तो एक कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस होना ज़रूरी है. सबसे पहले तो जैसे हम आप पॉजिटिविटी की बात कर रहे थे, तो क्या हम जैसे पॉजिटिव सोचते हैं तो अगर हम जज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें वो दोनों पहलू दिखाई दे रहे हैं, या फिर हमारा अटेंशन ज़्यादातर वो एक नेगेटिविटी की तरफ जाता है, या कोई ना कोई नुक्स निकालने की कोशिश करते हैं, है ना, ये ऐसा ही होना चाहिए वो वैसा ही होना चाहिए. जब ये वाले कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स आते हैं या बहुत ज़्यादा हम एडमेंट रहते हैं तो विच मीन्स आई एम बीइंग वेरी जजमेंटल.
1: जी, क्योंकि परवरिश कहो या फिर कहीं ना कहीं माहौल ही ऐसा है.
0: हाँ, बड़ों को देख के कभी कॉपी किया है तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि हम उन्हीं को देख देख के वो जैसा बिहेव करते हैं वैसे ही बच्चे सीखते हैं, वैसे ही फॉलो करते हैं. तो कहीं ना कहीं हम अपना एक थोड़ा सा एक स्टेप बैक करके हम अपने आप को देखना चाहिए कि क्या ये मैं कर रहा हूँ ये राइट है, क्या इसका और कोई तरीका हो सकता है इस सिचुएशन के साथ डील करना, या इस व्यक्ति से अगर मैं इस तरह से बात करता हूँ तो शायद वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, तो क्या मैं कोई और तरीके से इनसे बात कर सकता हूँ.
1: जी,
0: तो हम कभी ये नहीं सोचते कि क्या व्हाट कुड बी अनदर वे टू डू इट. हम क्या करते हैं, पहले से अगर मैं इस तरह से काम कर रहा हूँ तो मैं उसी तरह से काम करना पसंद, क्यों, क्योंकि आदत हो गई है. जैसे आप देखो कि आपकी आदत जो होती है ना, आदत से इंसान मजबूर हो जाता है.
1: जी.
0: अब आपका सिंपल हैबिट है, आप फॉर एग्जांपल राइट हैंड से ब्रश करते हैं रोज मॉर्निंग में, आप लेफ्ट हैंड से करना शुरू करो तो थोड़ा अनईजी होगा, डिफिकल्ट होगा
1: जी,
0: और आपका प्रेजेंट में रहेंगे आप. क्यों? क्योंकि राइट हैंड से करते तो हम भाई हाँ मुझे ऑफिस जाना है, ये करना है, आज मेरा दिन, मतलब वही वाला एक थॉट प्रोसेस रहेगा, तो उसको ब्रेक करना बहुत

0: जरूरी है
1: जी,
0: तो उसको अलग तरह से सोचना जरूरी है, अलग पर्सपेक्टिव्स लाइफ में लेके आना बहुत जरूरी है, तब जाके हम ग्रो कर सकेंगे
1: जी। मतलब हर कोई यूनिक है ये हम सोच सकते हैं, कोई गलत नहीं है।
0: और क्या होता है, जैसे मैंने अपने मेंटर से एक बात सीखी, मुझे बहुत अच्छी लगती है, कि कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो, आप उससे जब बात करते हैं तो स्टार्ट टेकिंग अ फ्रेश मेजरमेंट। फॉर एग्जांपल, जैसे आप कोई टेलर के पास जाओ सिलाई करानी है, तो आप भले उसको एक हफ्ते बाद मिलो, एक महीने बाद मिलो, या अगले दिन भी मिलो, तो वो हमेशा फ्रेश मेजरमेंट लेगा
1: जी।
0: आप कहेंगे नहीं मैं तो कल परसों ही आया था, नहीं नहीं कोई बात नहीं, मुझे मेरा फ्रेश मेजरमेंट लेना। क्यों? क्योंकि उसको पता है शायद हो सकता है कुछ चेंजेस आए हो
1: जी।
0: तो हमें भी ये मेंटली अप्लाई करना है इस बात को, कि मैं सुबह से लेकर शाम तक उस व्यक्ति के लाइफ में कुछ भी हो सकता है
1: जी।
0: एक सिंपल सा कॉल उसकी लाइफ को, उसके पर्सपेक्टिव्स को, उसकी जो जीवन के जो वैल्यूज है, धारणा है, वो सारी बदल सकता है, दिशा बदल सकता है। तो इसीलिए जब भी मैं किसी से मिलूं, लेट मी टेक अ फ्रेश मेजरमेंट, एंड इट इज अ वेरी ब्यूटिफुल वे टू डील विद पीपल, एंड एक्सेप्टेंस इसकी वजह से मेरा बहुत स्ट्रांग हो जाता है।
1: एक्सेप्टेंस मतलब हर सिचुएशन को, और मतलब जो इंसान है उनको भी एक्सेप्ट करना जरूरी है, ऐसा
0: बिल्कुल इंसान हो, सिचुएशन हो, उस जो भी परिस्थिति में है, मैं उसको पूरी तरह से स्वीकार करूं।
1: ओके, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो।
0: बिल्कुल। अब मेरी टीम में लेट से कोई बंदा है जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कोई है नहीं कर रहा है, बट आई नीड टू फाइंड आउट द रीज़न। शायद उसकी उसका कोई फाइनेंशियल लॉस हो गया है, फैमिली में कोई शरीर छोड़ दिया है, कुछ और सिचुएशंस है उसकी, अप्स एंड डाउन्स है, मे बी उसका असर हो सकता है। तो आई नीड टू सिट एंड टॉक टू दैट पर्सन, फाइंड आउट क्या रीज़न है
1: जी।
0: भाई तुम तो बहुत अच्छा कर रहे थे, तो अचानक क्या हो गया? तो ये जो मेरा कनेक्शन है उसके साथ में, वो रिलेशन है, वो कहीं ना कहीं उसको एम्पावर करेगा।
1: ओके।
0: और उसको मैं अगर थोड़ा सा सपोर्ट करता हूँ इमोशनली, तो वो कमाल करके दिखा सकता है। और बहुत बार, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में हम देखते हैं कि यही चीज़ लैक करती है, कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप, और एक अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टेंस जो होता है वो कहीं ना कहीं वीक हो जाता है
1: जी। ये सारे ही जीवन मूल्य हैं।
0: बिल्कुल
1: जी, बिल्कुल। और जैसे भाई जी ने कहा कि किसी से हम मिलते हैं, ये बहुत ही यूनिक पॉइंट है, उन्होंने अपने मेंटर से सीखा और आज हमें उन्होंने शेयर किया ये बात हमारे साथ, कि जो मेन एसेंस मुझे लगा कि फ्रेश मेजरमेंट्स, जो आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस से या किसी की कही हुई बातों से आप किसी को जज करते हैं, तो ये हम अगर नहीं करेंगे तो बेहतर होगा, और हम बेहतर सीख पाएंगे और बेहतर एक्सेप्ट कर पाएंगे एक दूसरे को। फ्रेश मेजरमेंट्स होना बहुत ज़रूरी है आपने ये कहा। और एक्शन प्लान के बारे में आपसे पूछना चाहेंगे कि जब हम कार्य क्षेत्र में जा रहे हैं, चाहे वो हमारा घर हो, या हम ऑफिस में जा रहे हैं, या हम स्कूल्स और कॉलेज में जा रहे हैं, तो माइंडसेट को कैसे बना के जाएं सुबह से जब हम निकल रहे होते हैं?
0: इसके लिए ना मैं हमेशा लोगों को तीन जनरेशन्स की बात करता हूँ। ओके? क्योंकि इम्पोर्टेंस समझेंगे तभी हम उसके साथ कनेक्ट कर पाएंगे, वो लाइफ में हम प्रैक्टिकल में कर पाएंगे
1: जी।
0: तो मैं सभी के साथ ये शेयर करना चाहूँगा। लेट से देर इज़ अ जनरेशन ए, जनरेशन बी एंड जनरेशन सी। अब ये ए बी सी क्या है, लेट्स लुक एट इट। ओके, तो जो जनरेशन ए की बात हम कर रहे हैं, हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स से का वो जो जनरेशन है, तो वो थोड़ा सा पीछे जाके अगर हम देखेंगे, तो उनके लाइफ स्पैन में अगर हम देखेंगे, या उनके जीवन काल में अगर आप देखेंगे, कि जैसे वैल्यूज़ को बहुत स्ट्रांग होल्ड करके रखा था इन्होंने, है ना। जैसे एक फैमिली का, एक जॉइंट फैमिलीज थे, आपस में एक दूसरे को बहुत रिस्पेक्ट करते थे, बहुत प्यार से रहते थे, कम कमाते थे लेकिन खुशी बहुत ज़्यादा थी। गांव में अगर आप देखेंगे कोई चीज़ बाहर रखी, तो इतना लोग ऑनेस्ट थे, या इतना लोग दूसरों पर ट्रस्ट करते थे कि चिंता नहीं थी उनको कि कोई लेके जाएगा या कुछ चोरी हो जाए, वो डर नहीं था
1: जी,
0: है ना, फियरलेस थे बिल्कुल। तो वो एक जनरेशन था, लोगों का एक कमिटमेंट है उस पर, मतलब इतना ज़्यादा था कि किसी ने अगर किसी को कुछ प्रॉमिस कर दिया तो वो शरीर भी नहीं छोड़ते थे, वो कमिटमेंट पूरा किया। बहुत सारी मूवीज़ में भी दिखाते हैं कि उसने वो प्रॉमिस फुलफिल किया और शरीर छोड़ दिया
1: जी,
0: मतलब इतना वैल्यू था वो कमिटमेंट का, वो प्रॉमिस का। सो दैट इज़ द जनरेशन वेयर वैल्यूज वर वेरी स्ट्रांग
1: जी,
0: राइट। अब हुआ ये कि जनरेशन बी की बात करते हैं, जहाँ पे हुआ क्या कि लोगों ने कहा, उनके बच्चे हैं या फॉर एग्जांपल, तो उन्होंने क्या कहा कि भाई ये वैल्यू से हमारा कुछ होने वाला नहीं है
1: जी
0: हमें तो सुख चाहिए, हमें तो साधन चाहिए, हमें तो संपत्ति चाहिए, तो धीरे धीरे जॉइंट फैमिलीज न्यूक्लियर हो गई. और फिर साधन तो बहुत सारे आ गए, सुविधा भी बहुत मिली, लेकिन खुशी कम
1: जी,
0: दुख बढ़ गया, है ना. एवरीथिंग इज देयर टुडे, लेकिन क्या हो गया, कॉम्प्रोमाइज कर दिया वैल्यूज को
1: जी,
0: झूठ बोलना शुरू कर दिया. अरे ये इससे कुछ नहीं होता, थोड़ा झूठ तो ये अभी के जमाने में चलना है तो हमें थोड़ा तो झूठ बोलना ही पड़ेगा. तो अडल्ट्रेशन है, करप्शन है, सब मिलावट, ये वो सब बातें कहाँ से आई, ये मिक्स हो गए सारे वैल्यूज.
1: ओके,
0: कॉम्प्रोमाइज कर दिया वैल्यूज को, है ना. तो इसीलिए लोगों ने गलत काम करना शुरू कर दिया, है ना
1: जी.
0: अब झूठ बोल दिया तो ट्रस्ट भरोसा तो रहा ही नहीं. प्रोडक्ट बना दिया लेकिन उसकी क्वालिटी में खराबी आ गई. तो क्वालिटी है, कोई भी ब्रांड को ब्रांड कैसे बनता है, ये सारी क्वालिटीज बहुत जरूरी है.
1: बिल्कुल.
0: अब बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में तो वैल्यूज लिखे रहते हैं, एक्सीलेंस है, क्वालिटी है, कस्टमर सर्विस है ना
1: जी.
0: तो ये क्या है, ये सारे तो वैल्यूज से ही बना हुआ है. अगर वो इंसान में वो क्वालिटीज है तभी तो उसके ब्रांड में आएगी
1: जी.
0: तो वो मिडिल वाला जनरेशन जहाँ पे कॉम्प्रोमाइज कर दिया वैल्यूज को.
1: ओके,
0: बट नाउ लेट्स लुक एट द थर्ड जनरेशन. अभी जो समय है या आने वाला जो समय है वहां पर वी आर फोर्स्ड टू लिव विद वैल्यूज. फॉर एग्जाम्पल किसी को जो जनरेशन बी में अगर हम देखेंगे वैल्यूज कॉम्प्रोमाइज हो गए, किसी को चोरी करने की आदत है, कोई चीजें चलते चलते उठा लेता है
1: जी.
0: अब देखो अभी के जमाने में हम देखते हैं कि भाई कहीं पर भी जाओ कैमरेज लगे हुए हैं, चाहे वो घर है, ऑफिस है, कहीं पर भी है, तो ये कॉन्स्टेंटली अंडर एक सर्विलेंस है ना. मतलब देख रहे हैं लोग आपको, मतलब आप छूट ही नहीं सकते. किसी ने कोई चीज उठाने की सोची भी तो उसको पता है भाई कैमरा लगा हुआ है, वो चल रहा है नहीं चल रहा है वो नहीं सोचेगा
1: जी.
0: वो कैमरे को देख के क्या होगा, अटेंशन आ जाएगा, नहीं मुझे गलत काम नहीं करना है. मतलब क्या हो रहा है कि आई एम फोर्स्ड टू लिव विद दोज वैल्यूज
1: जी,
0: है ना. अगर कोई मर भी जाता है तो उसको फाइंड आउट करते भाई कहाँ से है
1: जी,
0: उसका डीएनए से पता चल जाता है या पता लगा लेते हैं. तो इस तरह से हमारा वो सिस्टम कितना वो हमें हेल्प कर रहा है, एंड वी आर फोर्स्ड टू लिव विद वैल्यूज. तो उससे अच्छा है कि मैं पहले ही अपने वैल्यूज के साथ अगर रहूं, उसको बहुत स्ट्रांगली पकड़ के रखूं अपनी लाइफ में, और उन वैल्यूज के साथ अपना जीवन अगर स्पेंड करूं, तो मेरे जीवन में मुझे कुछ और करने की या सोचने की जरूरत ही नहीं है
1: जी. भले कैमराज हो लेकिन मैं सेफ हूँ क्योंकि मैं अपने वैल्यूज के साथ.
0: बिल्कुल बिल्कुल. अभी लोग कहते हैं कि नहीं आज के जमाने में ऐसा नहीं होता है, तो मैं उनको कहता हूँ कि मैं अपने लाइफ में पर्सनली मैंने ये चीज एक्सपीरियंस की है, एंड आई एम नॉट ब्रैगिंग अबाउट माई सेल्फ, या मैं खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जैसे मैं कॉर्पोरेट में प्रोग्राम्स करता हूँ, तो एक जगह पे प्रोग्राम किया मैंने, और बाद में आके वो एचआर मुझसे बात करता है. उसने कहा कि सर आपका प्रोग्राम तो बहुत अच्छा था, मुझे आपसे एक बात करनी है. तो मैंने कहा क्या हुआ, कुछ फीडबैक है क्या? बोला नहीं नहीं सर, मुझे इनफैक्ट आपको कुछ और बात बोलनी थी. तो कहा कि आप जब हमारे हेड एचआर हेड से मिलने आए थे तो उस वक्त हमारे पास 10 और प्रोफाइल्स थी
1: जी.
0: तो मैंने देखा कि आपका तो एक्सपीरियंस 15 इयर्स का है और उनका एक्सपीरियंस आपसे कई गुना ज़्यादा था, 30-30 साल के भी लोग थे. एजुकेशन वाइज भी मैंने देखा कि आपका एजुकेशन और उनके एजुकेशन में काफ़ी पीएचडी होल्डर्स थे या बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस थे, अलग अलग और सर्टिफिकेशंस किए थे. तो मैंने बोला अच्छा ठीक है. तो उन्होंने कहा नहीं, अब मैं समझ गया कि क्या डिफरेंस है, हमारे मैम ने आपका प्रोफाइल क्यों सिलेक्ट किया. तो मेरा कहने का भाव यह है कि आप जब अपने वैल्यूज़ में बहुत स्ट्रांग रहते हो तो आप जो बोलते हो ऑटोमेटिकली आपको कन्वे बोलना नहीं पड़ता कि बिलीव मी और ट्रस्ट मी, यू डोंट हैव टू यूज़ दोज वर्ड्स. लेकिन आप जिस तरह से बोलते हो ऑटोमेटिकली वो एनर्जी आपके बोलने में, आपके व्यवहार में वो रिफ्लेक्ट करती है
1: जी.
0: और लोगों को दिल तक वो बातें पहुँचती है और उनको परिवर्तन करना बहुत ईजी हो जाता है.
1: अब जैसे हैं वैसे.
0: बिल्कुल. मतलब हम कहते हैं ना कि जैसे वॉक द टॉक. आप अगर वो चीज़ कर रहे हैं और वो आप बोल रहे हैं तो ऑटोमेटिकली लोगों में वो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा. आपको जैसे वो चिल्लाने की जरूरत नहीं होगी, ये करो ये वो सब. मोटिवेशन तो थोड़े टाइम के लिए रहेगा, फिर वापस गायब. सो नेक्स्ट डे जैसे आप नहा के फ्रेश हो गए बिल्कुल, तो मोटिवेशन भी चला जाएगा
1: जी. जी.
0: तो ऐसा ना हो. मतलब आप जब वो चीज़ अपने लाइफ में फॉलो कर रहे हैं, वैल्यूज़ को आप इतना स्ट्रांगली पकड़ के रखा, तो जैसे वो महात्मा गांधी के लिए भी एक स्टोरी सब लोग सुनाते हैं. एक माता कंप्लेन करती थी कि मेरा बच्चा बहुत गुड़ खा रहा है, तो आप उसको बोलो कि नहीं खाए. तो उनको कहा कि नहीं एक हफ्ते बाद आओ
1: जी.
0: तब तक उन्होंने छोड़ा और फिर उनको बोला. तो ये स्टोरी तो सभी ने सुना हुआ है. तो माना हम अगर कोई चीज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वैल्यूज़ भी ऐसे ही हैं, हम अपने जीवन में उसको प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली बाकी फॉलो करेंगे. एंड इसीलिए हमेशा ये कहा जाता है इंग्लिश में कि यू नो वैल्यूज़ आर नॉट टॉट, वैल्यूज़ आर कॉट.
1: जी बिल्कुल,
0: है ना, मतलब हमें सीख कर हम वैल्यूज नहीं सीखेंगे। बच्चों को हम कहे कि नहीं आपको बड़ों से बहुत रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए, और अगर उसने देखा कि अपने पिता अगर उसके माता पिता से अगर रिस्पेक्ट से बात नहीं कर रहे तो बच्चे वो कभी नहीं सीखेंगे।
1: राइट जी बिल्कुल। और अभी वक्त हो गया अलविदा कहने का, एंड बहुत ही अच्छा रहा ये प्रोग्राम, मुझे पर्सनली तो बहुत ही अच्छा लगा, रिवाइज हो गई कि क्या मूल्य एक्चुअली है और जीवन मूल्यों को कैसे अपनाना चाहिए। जीवन रोशनी में तो हम यूं ही कितने सालों से स्पॉटलाइट वैल्यूज जीवन रोशनी कार्यक्रम के माध्यम से ये जानते आए हैं, तो आज रिवाइज हो गया। आपको कैसा लगा आप हमें कॉल करके या मैसेज करके बता सकते हैं। यहाँ पर हमारे सुभाष भाई जी का मैसेज आया है, धन्यवाद, वो बहुत ही रेगुलरली हमारे सारे कार्यक्रम सुनते हैं, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो उन्होंने हेल्दी रिलेशनशिप और गोल और स्वतंत्रता, ये बातें जो हैं आपकी बहुत उन्हें अच्छी लगी। इसके साथ साथ जीवन में हर बार एडजस्टमेंट और इसके साथ साथ समाने की शक्ति बढ़ाने पड़ती है, ऐसे उन्होंने कहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अपनी फीडबैक के लिए। यहीं पर हम रुकना चाहेंगे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दत्ता भाई जी आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू सो मच, मुझे भी बहुत अच्छा लगा और बहुत सुंदर रीति से आपने प्रश्न पूछे और बहुत सारी बातों को एक सरफेस पे ले आए और काफ़ी क्लैरिटी हुई। थैंक यू सो मच,
1: धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं जब जब आप शांतिवन आएँ तो हमारे स्टूडियोज में ज़रूर आएंगे।
0: ज़रूर ज़रूर ज़रूर, थैंक यू
1: जी। तो दोस्तों यहीं पर रुकते हैं, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM। नमस्ते।

0: ओम शांति। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस बातें मुलाकातें कार्यक्रम में। आशा करता हूँ आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए, आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ विशेष मेहमान महाराष्ट्र पुणे से उपस्थित हैं, मेघना जी हमारे साथ उपस्थित हैं। बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट है और इनकी खास बात ये है कि ये खास सावित्री बाई फुले के वेशभूषा में है, तो निश्चित तौर पर आप सोच रहे होंगे और सही सोच रहे हैं आप। मेघना जी जो है मास्टर सावित्री बाई फुले हैं, आज हमारे साथ में उनकी बातचीत होंगी और आप सावित्री बाई फुले की जीवन कहानी को हूबहू स्टोरी के रूप में लोगों को सुनाते हैं और साथ ही साथ लोगों को लगता भी है कि अरे भाई सावित्री बाई के जीवन हो तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा था वो उनके सामने एक सावित्री बाई का जो दर्शन है वो आपके कहानी सुनने के बाद लोगों को फील हो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। क्योंकि हमने देखा कि स्कूल टाइम में हमने उसको पढ़ा था और शायद आज इतना वो चैप्टर है या नहीं वो भी मुझे पता नहीं, लेकिन स्कूल टाइम में हम लोग एक चैप्टर हमको सावित्री बाई फुले का मिला था, उनको सुना और वो उससे पता चला था कि उन्होंने कितना मेहनत किया है शिक्षा को, खास फीमेल यानी लड़कियों को शिक्षित करने के लिए उन्होंने अगर कुछ किया है तो बस उन्होंने किया है। और वो इतने सटीक बना उस समय का जो विरोधाभास सिचुएशन में अपने आप को सारे समाज की बातों को सुनते हुए फिर भी उन्होंने वो एक संकल्प था उनका कि मुझे लड़कियों को पढ़ाना है, दैट्स ऑल, महिलाओं को पढ़ाना है, और उन्होंने उसको देखा, बाकी किसी और चीज को नहीं देखा। और कहते हैं कि वो जब भी स्कूल में पढ़ाने जाती थी तो बैग में बुक के साथ साथ में एक साड़ी भी रखती थी, क्योंकि वो पढ़ाने जाती तो लोग उसके ऊपर कुछ ना कुछ फेंकते थे, तो उन्हें पता था, तो इसीलिए वो फिर स्कूल में जब जाती जहाँ पर पढ़ाने के लिए उनको बच्चों को बुलाती थी तो वहां पर वो फिर से करके अपना बच्चों को पढ़ा के रिटर्न। तो इतना जो आत्मीयता है कि एजुकेशन के प्रति और खास महिलाओं को या बच्चियों को पढ़ाने का जो आत्मीयता है वो सावित्री बाई फुले से हमें मिलता है, तो उनको नमन जहाँ भी है उनको बहुत बहुत याद देते हैं और उनकी जीवन के कुछ चुनिंदा अनुभवों को या उनके बताए हुए रास्ते पर हम लोग आज जो है जो आज हम लोग देख रहे हैं एक वंडरफुल थिंग कि आज लड़कियां अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं और अच्छे अहदे पे काम कर रहे हैं, ये देखकर खुशी होती है, शायद उनकी आत्मा को भी खुशी मिल रही होंगी ये सब चीजें देखकर वर्तमान। तो आइए मेघना जी, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में, कैसे हैं आप? नमस्ते।
1: नमस्ते, धन्यवाद। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि आज मैं पुणे से सीधा मधुबन में जाके उधर मतलब उधर से आज ये बात हो रही है, तो आई रियली फील इट। सो थैंक यू सो मच, बस आपके बहुत बहुत आभार, हमारे पाटिल दीदी के भी बहुत आभार कि उन्होंने ये दिया हमारे आसपास।

0: हो रही है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और महाराष्ट्र से सुभाष जी ने याद किया है, वेलकम लिख के भेजा है। सुभाष सोनावने जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और आशा करता हूँ आप भी शिक्षक रहे हैं तो सावित्रीबाई फुले के बारे में आप भी अच्छी तरह से जानते भी होंगे। तो आइए मेघना जी, मैं सबसे पहले तो आपका स्वागत करते हुए मुझे बताने की जरूरत है कि आपको कितने मेडल्स, कितने कार्यक्रम आपने किए हैं। आपने काफी कार्यक्रम किए, आप काफी व्यस्त भी रहते हैं और अच्छे अच्छे कार्यक्रम। स्वागत है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ में आप विधवाओं के लिए काम करते हैं, जो विधवाएं हैं उनके ऊपर काम करते हैं, और ट्रांसजेंडर इन लोगों के लिए भी काम करते हैं। हाल ही में काफी संस्थाएं जो है ट्रांसजेंडर पर अच्छा काम कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनको अच्छा मानते हैं और इनके लिए काम करना शुरू हो गया। एक बहुत बड़ा चेंज जो है ये 20वीं सदी में जो है हम लोग चीजों को देख रहे हैं, कि जिनके ऊपर बहुत ज्यादा मना मुश्किलें आई थी और उनका जो है कहीं ना कहीं एक ट्रांसफॉर्मेशन उनके लाइफ में अब आने की आने वाला है, और हम देख भी रहे हैं, काफी चेंजेस देख रहे हैं। बस वही है कि हमारा लाइफस्टाइल जो एकदम से नीचे आ गया था उसको चेंज करने के लिए खुद को खड़ा होना पड़ेगा एक बार थोड़ा सा। अगर आप थोड़ा भी अगर अपनी साइड से नहीं खड़े होते तो फिर सावित्रीबाई फुले ये मेघना जी जैसे कितने भी लोग आए आपको समझा तो फिर बदलना किसको है, हम बदलाव के लिए आपको एक सपोर्टिंग सब चीजें दे सकते हैं लेकिन चलना किसको है आपको है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम लोग जो है थोड़ा जागरूक होना बहुत जरूरी है, और जागने के बाद थोड़े दो चार कदम अच्छा लगेगा तो यू कैन मूव, आप रन कर सकते हैं, आप दूसरों के लिए मिसाल बन सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि बहुत सारे लोग हैं और मुझे अच्छा लगा इस पर, अभी हाल ही में ट्रांसजेंडर पर फिल्में भी बन, पहले ऐसे नहीं हुआ तो फिल्में भी बन रही, यानी उनके ऊपर ज्यादा फोकस है, सरकार भी उनके लिए कुछ करना चाहती है, संसार में जो लोग हैं वो भी करना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पे हम कहीं ना कहीं वो जो पीड़ादायी दुनिया है हमारी उससे हम बाहर निकल के एक अच्छी दुनिया अपना क्रिएट कर सकते हैं, इसके लिए काफी लोग आगे आ रहे हैं। तो वही मेघना जी, मैं चाहूंगा कि वर्तमान में आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी मैं चाहूंगा कि आप अपने वर्तमान में कौन कौन सी चीजें आप कर रहे हैं। मेघना जी वर्तमान में आप कहाँ पर हैं, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए।
0: एक्चुअली मैं पूना से हूँ, महाराष्ट्र पूना से, और 2011 तक मैं आईटी एसेट हेड थी, जब मैं इंडिया मनीला और यूएस हैंडल कर रही तब आई वाज वर्किंग फॉर द फार्मर्स, मतलब सैटरडे संडे मुझे छुट्टी थी। और कॉलेज के जमाने में मैं बहुत ड्रामाज वगैरह ऐसे करती थी, बहुत सारे स्ट्रीट प्लेज मैंने तभी लिखे हैं, बहुत सारे विलेजेस में जाती थी, मतलब ये जो मेरा है वो मैं कॉलेज के जमाने से ही गाँव गाँव में जाके उसके ऊपर जन जागृति करती थी। तो 2011 में सावित्रीबाई फुले के वंशज है जो मेरे घर पे आए और बोले कि आप बहुत अच्छा बोलते हो सावित्रीबाई के ऊपर, हमने सुना है, तो हम प्लीज हमारे पास भी आइए आप, और हमारे बहुत बड़ा प्रोग्राम है। तो तभी मैं बहुत बीमार थी, इट वॉज जस्ट लाइक पैरालिसिस, मतलब पैरालिसिस जैसा मुझे हो गया, मैं हाथ पाव कुछ भी नहीं हिला पाती थी। इट वॉज नॉट पैरालिसिस बट इट वॉज जस्ट लाइक पैरालिसिस, इन आयुर्वेदा इट इज कॉल्ड एज वात प्रकृति एंड ऑल। तो 103 टेम्परेचर मुझे 4-5 महीने तक था, तो मुझे उठना भी नहीं आ रहा था, मैं उनको बोली भी, अरे मुझे कुछ भी नहीं हो रहा है, मैं कैसे आऊँ आपके पास। तो वो इंसिस्ट कर रही थी, नहीं 2 मिनट के लिए आ जाओ, 2 मिनट के लिए आ जाओ। तो मैंने हाँ बोल दिया उनको कि चलो आ जाते हैं और 2 मिनट हम लोग करते हैं। जब मैं उनको बोली कि मैं सावित्रीबाई फुले के गेटअप में आती हूँ तो ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, ऐसे मैंने उनको बोला, तो बोले चलेगा। तो मैं गई उधर, तो उधर क्राउड था अराउंड 3,500 लेडीज वो प्रोग्राम के लिए। तो अच्छा। मैंने पीछे से एंट्री लिया और मैं बोली कि अगर मला ओळखलत का, मी तुमची सावित्री, मतलब मुझे पहचाना क्या, मैं आपकी सावित्री बाई आई हूँ करके। तो सबने पीछे मुड़के देखा, अरे सावित्री बाई आई है करके। तो मैं स्टेज के ऊपर चढ़ गई और मैं 3 मिनट्स के लिए खड़ी बोलना, मतलब तभी हमारा ये डिसाइड हुआ कि 3-4 मिनट्स में बोलूंगी। यू कांट बिलीव मैंने 2 घंटा ऐसे ही बोल दिया खड़ा होके, और मुझे मैं भूल गई मैं बीमार हूँ, मुझे क्या हो रहा है। और जब खत्म होके मैं स्टेप्स ऐसे नीचे आ रही थी तो 3-4 रोज के जितने भी सारे लेडीज थे वो सब आए, मतलब प्रोग्राम चल रहा था स्टेज के ऊपर, लेकिन वो आए, मुझे उठाया और सब मुझे लेके गोल गोल गोल गोल राउंड वो ग्राउंड पे ले रहे और बोल रहे कि जो फोटो में वो सावित्रीबाई फुले हमको दिखाई दे रही है आप बिल्कुल वैसी हो, और हमको लगता है कि आप ही सावित्रीबाई फुले हो, तो आप ये काम बंद मत कीजिए। तब से लेके आज तक ये किरदार में निभा रही हूं और कोशिश कर रही हूं कि सावित्री बाई फुले का जो जीवन है वो एक मोटिवेशन है हमारे लिए. मतलब वो जो जमाना था कि एक लेडी बाहर भी आ नहीं सकती अपने घर के बाहर, तभी उन्होंने इतना बड़ा काम किया है. और हमारे पास तो मतलब हम तो अभी सो कॉल्ड मॉडर्न है, फिर भी हम लोग उनके जैसा नहीं बन पा रहे. तो ये मोटिवेशन जो है वो मैं चाहती हूँ कि वो समाज में जाए, इसलिए ये किरदार मैं अभी निभा रही हूँ और 1000 के ऊपर मेरे शोज उसके हो गए.
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेघना जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अपने बारे में बताने के लिए. और एक अच्छा एक्सपीरियंस आपने सावित्री बाई फुले इस आर्ट के बारे में बताया. निश्चित तौर पे लोगों को काफी टाइम के बाद अगर कोई अच्छी बात लोगों के बीच में विद एक्टिंग विद डायलॉग्स जाता है तो लोगों के दिल में वो सारी चीजें जो है याद आ जाती है, वो एक कनेक्शन जुड़ जाता है निश्चित तौर पे.
0: और कोशिश भी मैं करती हूँ कि सावित्री माई लगे वो उनके सामने भी.
1: अच्छा, मैं चाहूंगा कि अभी जो आर्ट वगैरह आप करते हैं या ये जो कला के क्षेत्र में कैसे आपका आना हुआ, क्या बचपन से आपको इसके प्रति लगाव था या फिर?
0: हाँ, बचपन से. मतलब मैं एक बचपन का किस्सा आपको बताना चाहूंगी कि मैं छोटी थी तो मेरे घर में टीवी भी नहीं था, टीवी वगैरह कुछ नहीं था तभी. लेकिन मेरे बाजू में एक बिल्डिंग थी तो उनके फोर्थ फ्लोर पे ना एक टीवी का आवाज हमको सुनाई देता था. तो मैं क्या करती थी, आम का एक बहुत बड़ा पेड़ था तो मैं पेड़ के ऊपर चढ़ जाती थी और वहां से वो सुरभि करके एक सीरियल लगती थी, तभी आपको शायद पता भी होगा वो. तो सुरभि में ना ऐसे पेड़ के ऊपर खड़ी होती थी, बहुत चढ़ जाती थी ऊपर और फिर ऐसे कान लगाती थी वो वॉल के यहाँ और फिर वो सुरभि में सुनती थी और फिर मैं नीचे आती थी पेड़ से और जितने भी सारे बच्चे थे मेरे भाई बहन या मेरे बाजू में जो रहते थे उनको सबको मैं इकट्ठा करती थी. और मेरे पास तो माइक नहीं था तो मैं क्या करती थी, एक ऐसे एक डब्बा रखती थी ऑयल का, उसमें एक लकड़ी डालती थी और उसमें एक चंबू डालती थी और जस्ट लाइक अ माइक, और फिर मैं उनको पूरा स्टोरी बताती थी जो मैंने वहां से सुना है. तो ये बचपन से ही शायद मुझे उसकी चाहत है.
1: चलिए, बहुत ही अच्छा इंसिडेंट आपने सुनाया बचपन का, मुझे अच्छा लगा और मुझे लगता है कि हमारे मित्रों को भी अच्छा लग रहा है कि आपको सुनकर. और इसके साथ में जैसे आप अभी अपना जो एनजीओ वगैरह कुछ संस्थान चला रहे हो तो उसके बारे में बताइए और कैसे वो काम शुरू हुआ और अभी किस तरह से वो काम कर रहे हैं वो थोड़ा सा.
0: जब मैं 8th स्टैंडर्ड में थी तो मेरे पिताजी के कंपनी में मतलब एम्प्लॉइज यूनियन हो गया और पूरी कंपनी बंद पड़ गई थी. तो मेरा 8th और 9th मम्मी ने कैसे भी संभाला, लेकिन जब मैं 10th में गई तभी भी बहुत बुरे हालत थे क्योंकि सब पैसे भी खत्म हो गए थे और मेरे पास बुक लाने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं थे ना मुझे अच्छा ड्रेस था. तो मम्मी ने वही ड्रेस ऐसा थोड़ा बड़ा करके वगैरह मुझे दिया था. तो मैं क्या करती थी, मेरे फ्रेंड्स को पढ़ाती थी और उनके बुक्स में लेके आके रात में बैठ के वो पूरा डाइजेस्ट वगैरह सब लिख के ऐसे रेडी करती थी सब नोट्स और वापस उनको पढ़ाती थी. मतलब ना मुझे ट्यूशन था ना कुछ था, लेकिन मेरे पास ना कुछ बुक नहीं थे. तो मैं मेरे क्लास टीचर से मिली और बोली कि मैडम मेरे पास बुक्स नहीं है और आपने आज मुझे खड़ा कर दिया बाहर, लेकिन मैं क्या करूं, मतलब अभी घर पे पैसा नहीं है और मम्मी के पास मैं नहीं मांग सकती कि मुझे पैसा दे दो क्योंकि मुझे घर की हालत पता है कि मैं नहीं मांग सकती. तो उनको बहुत बुरा लगा. तो हमारे स्कूल में तभी सावित्री बाई फुले दत्तक योजना करके एक स्कीम था, वो स्कीम के अंडर आपको बुक्स देते थे. तो वो स्कीम के अंडर से मुझे बुक मिल गए, तभी मैंने प्रण लिया था कि मैं आगे जाके जब बड़ी हो जाऊंगी मैं यही सावित्री बाई फुले दत्तक योजना चालू करूंगी और जो जितने भी गरीब बच्चे हैं उनके लिए हेल्प करूंगी. और कोइंसिडेंटली मैंने सावित्री बाई फुले के वन एक्ट प्ले चालू किया तो जितना भी मुझे उसमें से डोनेशन मिलता है तो मैं अभी सावित्री बाई फुले दत्तक योजना करके वो जितने भी स्कूल्स है उसको हेल्प करती हूँ. तभी से मेरा वो सोशल वर्क चालू हो गया. मतलब जो खुद ने मतलब आप इमेजिन कर सकते हो कि मुझे वो एक्सपीरियंस हुआ है कि यदि फीस नहीं है बुक्स नहीं है तो हम क्या कर सकते. अभी बीच का ही आपको बोलती हूँ कि मैं एक बहुत गांव में गई थी, मुलसी करके है महाराष्ट्र में, तो उधर गई थी. तो उधर उन्होंने मुझे बिठाया प्रिंसिपल ने उनके केबिन में, बहुत बहुत बारिश थी और बेचारे जो प्रिंसिपल थे उनके ऊपर से ऐसे पानी गिर रहा था. मैंने ऊपर देखा तो मेरी पूरी साड़ी भीग गई थी. मैं बोली अरे ये क्या ऐसे स्कूल में ऐसे, और फिर बाद में पता चला कि वो बच्चे तो बहुत दूर से चल के आ रहे हैं, मतलब उनको कुछ बस वगैरह कुछ भी नहीं। तो बीच में देखा तो मतलब उनका जो प्यून था वो आया और उन्होंने वो कबर्ड ओपन किया। मैंने बोला ये क्या है इस कबर्ड में, तो बोले ये हमारी लैब है। मैं बोले ये लैब है, मतलब कांट इमेजिन कि यही ऊपर का जो कबर्ड का एक सेक्शन है वो उनकी लैब है, उसके ऊपर लाइब्रेरी है। मैं बोली अरे स्कूल कैसे होगा, बच्चे कैसे पढ़ते होंगे। और फिर मैं गई और जब मेरा वर्नाक्युलर चालू हो गया, मेरा प्रयोग चालू हो गया, तो पता चला कि बच्चों को ना बच्चों ने इधर के कंप्यूटर देखे हैं ना इधर कुछ है। तो जब मेरा ये खत्म हो गया उसके बाद तुरंत ही बाद हमने उधर बहुत अच्छा लैब और बच्चों को कंप्यूटर दिए, तो अभी उधर कंप्यूटर भी है। तो ऐसे बहुत सारे स्कूल्स हैं कि जिनको जो फैसिलिटी नहीं है वो एटलीस्ट मतलब आपके जैसे भाई बहन जो जुड़ जाते हैं उनकी मदद से मैं उनको हेल्प करती हूँ।
1: क्या बात, बहुत बड़ी बात।
0: और ये हो गया बच्चों
1: चलिए।
0: का। अभी जो अपने फार्मर्स है मतलब वो खेती तो कर रहे हैं लेकिन उनको उतना मतलब उनका जो माल है उसको उतना पैसा नहीं मिलता। तो मैं आईटी फेयर्स लगाती हूँ उनके लिए, उनके जो वुमेन्स है उनको ट्रेनिंग देती हूँ मैं कि कैसे ये देखो ये बिग बाजार है, ये बिग बाजार में कैसे इन्होंने पैकेजिंग किया आप देखो। ये उनको दिखाने के मैं लाती हूँ, उनको दिखाती हूँ मैं और मेरी सिस्टर। फिर उनको पैकिंग सिखाते हम कैसे रहना है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अपनी कैसी करनी है वो उनको सिखाते। फिर उनके जो प्रोडक्ट है वो हम आईटी फेयर्स लगाते हैं और उसका जो प्रॉफिट है वो हम लोग उनको देते हैं। तो मुझे बहुत खुशियां होती है कि चलो हमारे हाथ से कुछ ना कुछ अच्छा होता है, ऐसे कुछ थोड़ा बहुत काम चालू है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और सुभाष जी ने याद भेजा है और उन्होंने लिखा है कि बहुत ही अच्छा लगा उनको, सुंदर आपका उनको सुन के। और सबसे पहले पूना में बहुत जो है ये
0: मानसिक तकलीफ झेलकर खुद
1: सहकर
0: की
1: खुद को अच्छा बनाया आपने, महिला स्कूलों ओपन किया और उन्हें हेल्प किया। थैंक यू सुभाष जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और मानसी जी भी याद कर रहे हैं, ओम शांति लिख के भेजा है और नाइस वर्क करके उन्होंने मैसेज लिया है। मानसी जी धन्यवाद, शुक्रिया। और अभी आइए फिर से मैं जुड़ना चाहूंगा, आप जो पहले से ही आपको आर्टिस्ट का तो शौक था ही, उसका आपने
0: हाँ
1: एग्जाम्पल भी दिया, उससे पता चल जाता है। तो ये जो कारवा है, अब जैसे इस्टेब्लिश हम कोई चीज नया करते हैं तो शुरू शुरू में थोड़ी मुश्किलें आती है, बाद में एक बार
0: हाँ
1: वो आइडिया आ जाता है तो सब चीजें आसान हो जाती है। तो शुरू
0: हाँ
1: शुरू में आपको कोई दिक्कतें हुई या स्मूथली चला?
0: पहला वो जो मैं मेरा वन प्ले हो गया, उसके बाद एक स्कूल से मुझे आया रिक्वायरमेंट, बोर्ड स्कूल करके है कि मैडम हमारे इधर आप आ जाएंगे क्या। मैं बोली चलो उधर भी कर देते हैं। बाद में ये नहीं पता था कि मैं इतना सारा करूंगी या पूरे महाराष्ट्र में घूमूंगी, ये कुछ मुझे पता ही नहीं था। फिर मोहर स्कूल का आया, फिर उसके बाद मुझे लगा कि मुझे अभी सावित्रीबाई फुले का स्टडी करना चाहिए क्योंकि आई हैव टू नो ईच एंड एवरीथिंग। तो मैंने उनके जितने भी सारे प्लेसेस थे वो विजिट किया, मतलब उनका जन्म स्थल, उनका वो प्लेस पूरा पुना का प्लेस, फिर उनके बहुत सारे बुक्स। और अनफॉर्चुनेटली अभी बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है लेकिन जब 2010 2011 में जब मैंने वनाप्ले चालू किया था तो हमारे पुणे में अप्पा बळवंत चौक करके है, मतलब आपको जो बुक चाहिए वो उधर मिल जाता है।
1: वहां पर
0: मैं
1: मिल
0: उधर
1: जाता है।
0: गई, बहुत सारे शॉप्स देखे लेकिन बुक ही अवेलेबल नहीं था। तो मुझे बहुत
1: अच्छा।
0: बुरा लगा, अरे सावित्रीबाई फुले के ऊपर मुझे बुक भी नहीं मिल रहा है। तो बहुत ढूंढ के ढूंढ के मुझे एक बुक मिला। उसके बाद मैंने स्टडी चालू किया, फिर गवर्नमेंट ऑफिसेस में गई, उधर कुछ बुक मिलते हैं क्या, ऐसे करते करते फिर उसका वो स्टडी हुआ। लेकिन मतलब अभी बताने में मुझे बहुत दुख होता है लेकिन कभी कभी ना, मतलब सावित्रीबाई फुले ने कभी जातिवाद नहीं किया, उन्होंने हमको सर्वधर्म समभाव सिखाया है। महात्मा ज्योतिराव फुले ने सर्वधर्म समभाव सिखाया है। लेकिन कभी कभी लोग बोलते हैं अरे ये तो माली नहीं है, माली समाज की नहीं है, फिर भी ये क्यों कर रही है। मतलब बीच का एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको। मेरे एक दोस्त है वो बोले अरे आपके थाउजेंड्स ऑफ प्ले हो गए तो आपको गवर्नमेंट का पुरस्कार मिलना चाहिए। मैं बोली अरे मैं तो पुरस्कार के लिए कुछ नहीं करती, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर भी उन्होंने मुझसे वो फाइल लिया और सबमिट किया। लेकिन जो उनके पॉलिटिकल फ्रेंड थे वो उन्होंने बोला अरे ये माली समाज से नहीं है तो इनको हम पुरस्कार नहीं दे सकते। तो मैंने फ्रेंड को ही डांटा, अरे मैं जनजागृति कर रही हूँ और तू वही मुझे जातिवाद में ढकेल रहा है, मुझे पुरस्कार की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब मैं पुरस्कार के लिए नहीं कर रही हूँ। समाज
1: सही
0: में
1: बात।
0: हम कुछ प्रबोधन करें, क्योंकि मेरा टेंभुर्णी करके एक प्लेस है, उधर एक वन एक्ट प्ले था, तो चालू था, मतलब मेरा नाटक चालू ही था, तो एक ऐसी लेडी आ गई, वो मौसी मेरे पाँव के ऊपर ऐसे पकड़ लिया था मेरा पाँव, और मेरा नाटक चालू ही था, और बहुत रोने लगी। तो मैंने उनको उठाया, उनको गले से लगाया, मैं बोली मासी क्या हो गया आपको, क्यों रो रहे हैं आप? तो बोले अभी जो आपने बताया कि सावित्रीबाई फुले ने उसी काल में, जो इतना काल है, उन्होंने पूरे लोगों के लिए हल्दी कुंकू किया था, ऐसे वैसे, मेरा बच्चा 2 महीने का था और मेरे हस्बैंड चले गए, और तभी मेरे पास खेत नहीं था, कुछ नहीं था, तो मैंने दूसरों के खेत में जाके मजदूरी करके मेरे बच्चे को पढ़ाया, मेरा बच्चा बी हो गया, और मेरे बच्चे की शादी थी अभी 2 महीने के पहले, तो मुझे बहुत ये लगा, खुशी हो गई कि मेरा मेरा ही बच्चा है, तो मेरे बच्चे को मैं आरती कर लूँ। तो मैंने ना सिर्फ आरती का ताट लिया हाथ में और उसको ऐसे टीका कर रही थी, तभी मेरे समाज के लोग आए, मुझे ऐसे पकड़ा, मतलब ये जमाने की ये स्टोरी है कि उनको ऐसे पकड़ा और धकेल के बाहर निकाल दिया वो हॉल से। तो उन्होंने जो प्रसंग बताया ना, तो मुझे खुद को रोना आ गया, घर आके उनके सामने मैं रोई नहीं, लेकिन मैं 8 दिन बिल्कुल सोई नहीं। मैं बोली कि मैं सावित्रीबाई फुले का किरदार निभा रही हूँ, क्या मैं सच्ची तरह से निभा रही हूँ क्या? तभी मैंने ये जो मेरा किरदार है वो डेडिकेट किया, और मैं विधवा ये सब्जेक्ट के लिए अभी जनजागृति कर रही हूँ कि ये स्टॉप होना चाहिए, क्योंकि उसका हस्बैंड गया, उसमें उसका कुछ दोष नहीं है, तो क्यों
1: हाँ
0: नहीं, मतलब जब उसका हस्बैंड जाता है तो उसका बिंदी जो है, उसका जो कुंकू है, पहले एक औरत पूछती है, उसका मंगलसूत्र छीन जाते हैं, मतलब सिर्फ ऐसे निकालते नहीं है या उसको बोलते नहीं कि बाबा निकालो प्यार से, वो खींचते हैं, मतलब कितना दर्द भरा है, उसका हस्बैंड गया है और उसको आप कितना तकलीफ दे रहे हो, उसको निकालते हैं, उसकी बंगड़ी जो है वो सामने उसको फोड़ने के लिए बोल रहे हो, उसके हाथ में पूरे वो खून आ जाता है, मतलब क्या आप गलत कर रहे हो, उसको उल्टा गले लगाना चाहिए, उसको प्यार देना चाहिए, और जब भी कोई फंक्शन है तो उसको हम दूर रखते हैं, क्या ये विधवा है? अरे ये कौन से जमाने में आप रह रहे हो, उसको प्यार की
1: बिल्कुल
0: जरूरत है। ये मेरा जन जागृति का भी कारण है कि ये बंद करो भाई, ये आप एक लड़की हो के, आप औरत हो के, आप किसी की माँ हो, किसी की मासी हो, फिर भी आप किसी का उनको कैसे पूछ सकते हो? मतलब आप इंजीनियर है, डॉक्टर है, फिर भी आप घर की औरत को विधवा कह रहे हैं, उसको बोल रहे पूजा में शामिल मत हो, उसको बोल रहे शादी में शामिल मत हो, ये कौन से जमाने में रह रहे हैं? उसी जमाने में, सावित्री बाई फुले के जमाने में, सावित्री बाई फुले ने मतलब कितना बड़ा ये किया है कि तभी मुंडन था, मुंडन मतलब पूरे, मतलब स्त्री का यदि हस्बैंड मर जाता है तो पूरे बाल उसके निकाले जाते थे, उसके उसको एक अंधेरे खोली में रखा जाता था, और कोई भी आके उसके ऊपर बलात्कार करता था, फिर उसको बच्चा होता था वो फेंक देती थी, ऐसा इतना बड़ा जालिम जमाना था उसी, मतलब ऐसे समय में सावित्रीबाई फुले ने वो बंद किया है, सती की चाल बंद की है। सती मतलब क्या, उसका हस्बैंड जाता है तो उसके साथ ही उसको जला देते थे, तो ये जो बहुत सारे डेंजर ट्रेडिशन थे वो सावित्रीबाई फुले ने क्रांति करके तभी बंद किया है, और अभी हम खुद को सो कॉल्ड मॉडर्न समझ रहे हैं, हम इंजीनियर डॉक्टर हैं, हम एरोप्लेन में बैठ रहे हैं, और फिर भी हमारे घर के औरत को हम विधवा विधवा बोल रहे हैं, और ना ही उसको पूजा का हक दे रहे हैं, ना हमारे किसी सम्मिलित किया जा रहा है, तो एक जुल्म है ये स्त्री के ऊपर, और ये बंद करना चाहिए। मतलब आपके तरफ से भी मैं यही प्रार्थना सबको करूंगी, प्लीज ये बंद कीजिए करके, ये प्रथा बंद होनी चाहिए विधवा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी चीजें अभी
0: या
1: बंद के कगार पे ही है, खाली कुछ लोग गांव में रहते हैं वो शायद
0: और
1: हो
0: नहीं,
1: सकता
0: आप बोल रहे हैं इसे गांव में करके, शायद गांव में भी अच्छा रहेंगे, आप सिटी में भी आओगे तो सिटी में भी
1: हाँ
0: यही हाल। मतलब अभी मैं एक हल्दी कुंकू में गई थी बीच में,
1: हाँ हाँ
0: तो एक का हस्बैंड गया था, तो सबको हल्दी कुंकू जा रहा था, उसको छोड़ के सबको लगाया, ये
1: ओ
0: सिटी का है, और वो डॉक्टर्स थे पूरे, फिर भी आपको बोल रही है ऐसे नहीं है, मतलब एजुकेटेड होके भी माइंडसेट
1: हाँ
0: एजुकेटेड नहीं है, दैट इज द प्रॉब्लम,
1: बिल्कुल,
0: और हमको
1: वो कहीं
0: सिर्फ
1: ना
0: पुस्तक
1: कहीं
0: कीड़ा बनना
1: संस्कार
0: नहीं है, पुस्तक कीड़ा नहीं बनना है, हमको खुद को ऐसे बनाना है कि मतलब एक प्योर माइंड होना चाहिए हमारा, यदि प्योर माइंड
1: बिल्कुल
0: नहीं है तो कुछ फायदा नहीं है।
1: सही बात सही बात। मेघना जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया, एक समाज के लिए आईना का काम कर रही हैं आप, और जितना हम लोग देखते हैं कि एजुकेटेड होने के बावजूद भी हमारे पुराने संस्कार जो है वो हमेशा
0: हाँ
1: जिंदा रहते हैं। सकते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें जो है उसमें परिवर्तन करने की जरूरत
0: या
1: है,
0: परिवर्तन
1: सबको
0: बहुत जरूरी
1: सामने सामने आके ही करना चाहिए, क्योंकि
0: या
1: अब ऐसी चीजें हम लोग अगर करेंगे तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन भी वही सीखेगी, तो
0: यस
1: इसीलिए हमें जो है वहां पर कहीं ना कहीं ब्रेक की जरूरत है, और वो ब्रेक हमें
0: वही
1: लगा सकते हैं। तो
0: वही
1: निश्चित
0: वही
1: तौर पर हमें सबको जो है सम्मान देना चाहिए, प्यार देना चाहिए, और ज्यादा उनको सम्मान करना चाहिए, उल्टा हम लोग उनको छोड़ देते, क्योंकि उनके पास इतनी मना सिचुएशन

0: अभी वो ऑफ में है, तो उनको तो
1: वही
0: ज्यादा
1: ना,
0: प्यार की जरूरत है,
1: ज्यादा
0: और
1: प्यार
0: अगर
1: की
0: वो
1: जरूरत
0: अपने प्रोग्राम में हिस्सा ले रही है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। उनको
1: या
0: सबसे पहले आपको टीका करना चाहिए ताकि
1: या या
0: लोगों को एक चेंज जो है लोगों के बीच में आ सके। तो एक
1: और होता
0: इंसानियत का
1: है,
0: जो
1: चेंज होता है, मतलब हम कुछ जन जागृति करते हैं तो चेंज होता है, उसका बहुत एक्सपीरियंस आपको मैं बीच का ही बताती हूँ। मेरा एक वन
0: बिल्कुल
1: एक्ट प्ले हो गया था फुलेवाड़ा में, तो उधर एक लेडी आई, तो उन्होंने मेरा वो सुन लिया था पूरा। उसके 3 महीने बाद उनके हस्बैंड चले गए ड्यू टू कोरोना, तो उनका मंगलसूत्र लेने के लिए जब लेडी उठे ना सिरे पूरे, तो
0: जी
1: उन्होंने उनका हाथ रोका और बोले नहीं मैं हाथ लगाने नहीं दूंगी। वो मुझे बहुत अच्छा
0: जी
1: लगा कि दूसरी स्त्री आके उनका ये मंगलसूत्र छीन रही है, तो उन्होंने उनका हाथ पकड़ लिया और बोले कि मैं छीनने नहीं दूंगी और ना ही मैं निकालूंगी। और उन्होंने फोन करके मुझे बात बताई कि दीदी मैंने उनको आज ये किया, ये मुझसे आपसे मुझे ये मिल गया कि मैं कुछ करूं, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरा मंगलसूत्र मेरे गले में है। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा, जागृति हो रही है करके।
0: बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया, और मुझे लगता है कि इस तरह की चीजें भी होनी चाहिए ताकि समाज में बदलाव ला सके। और मानसी जी हमारे साथ जुड़ना चाहती हैं, वो शायद आपको कुछ पूछना चाहती हैं, तो कोई बात नहीं मानसी जी, आप बिल्कुल जुड़िएगा, आपको जो है आपको लिंक दे देते हैं, आप आइएगा। और तो मैं चाहूंगा कि कुछ जैसे कि अगर जो एक्ट आप करते हैं सावित्री, कितना मिनट का रहता है, कैसे आप शॉर्ट में अगर थोड़ा सा डायलॉग हमें भी सुनाए तो अच्छा होगा।
1: जरूर जरूर। लेकिन मेरा एक्ट मराठी में है, चलेगा क्या?
0: हाँ, चलेगा चलेगा, लेकिन उसको
1: क्योंकि
0: शॉर्ट में
1: कहते
0: हमें
1: हैं,
0: 10-15 मिनट
1: या
0: में अगर आप कर पाए ना तो हम
1: हाँ
0: लोग
1: हाँ
0: सुन।
1: चलेगा चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं।
0: और कुछ क्वेश्चन आए हैं सुभाष जी वगैरह का तो हम लोग बाद में ले लेंगे। ठीक है, यस।
1: चलेगा। अरे लई बर वाटल र पोरांनो, आज मला बाबानो या सावित्रीचा वर बाबानो भरून आला र। अरे त्या काळात माझा जन्म झाला, ज्या काळात एखादी पोरगी जन्माला आली म्हणजे काहीतरी झालं असा पाहि तो समाज। पण अशा काळामध्ये बी माझ्या बाबांनी साखर वाटली मी जन्माला आल्यावरती। बाई त्या काळात पोरींची लग्न 5-6 वर्षाची झाली की लगीन व्हायला म्हणून समजा, मग काय माझं मी लगीन 7व्या वर्षी झालं पोरांनो, आणि या पुण्यामध्ये मी आले। बाई आमचं शेटजी शिकलेलं र, बाई शेटजी सकाळी उठायचं आणि तालमीला जायचं, नंतर यायचं ही बुक वाचत बसायचं, मग जायचं शाळेला। मी म्हणायचे बाई ये एवढं करतात तरी काय, तो म्हणायचे सावित्री अगं व्यायाम केला तर बुद्धी शाबूत राहती आणि बुक वाचली तर जगाची द्वार उघडती। म्हटलं बाई शेटजी एवढं ज्ञान मिळतंय होय याच्यातून, तो म्हणतात होय एवढं ज्ञान मिळतंय। आता बाबांनो तो काळ असा होता ज्या काळात बाई बायकांना शिकायची काय बी सोय नव्हती, असा तो काळ। आता माझ्यासारख्या सावित्रीला कोण गो शिकवणार, आणि एक दिवशी हे आलं की पाटी पेन्सिल घेऊन, पोरांनो पाटी पेन्सिल घेऊन पाटी त्या काळात हातात धरली म्हणजे बाई मोरा आपला मरतोय अशी खुडी समजू। आता बाई शेटजीनी मला पाटी आणली आणि पोरानो हातातच दिली की मी गप्पन पाटी खाली थांबली, म्हणलं बाबा माझ्या हातात पाटी नको। पाटी घेतली तर शेटजी अहो तुम्हाला काय झालं तर, शेटजी म्हणाले अगं सावे अगं मला काय बी होणार नाही, तू पाटी हातात घे। आणि माझ्या शेटजीनी माझ्या हातानं हातात घेतला आणि पाटीवरती पहिला पोरानो शब्द लिहिला शेटजी। शेटजी हा शब्द नव्हता लेकरांनो, हा शब्द होता स्त्री स्वातंत्र्याचा उगवता सूर्य। हा नुसता शब्द पाटी नव्हती, ही होती आपल्या समस्त स्त्री वर्गाची पाटी, आणि हा शब्द होता तो आपल्याला लिहाया वाचाया शिकवणारा पहिला शब्द। आता एवढ्यावर शेटजी थांबले नाही, तर बाई शेटजीने ठरवलं आता पोरींसाठी शाळा काढायची। बाई अशा काळामध्ये शाळा काढायची जेव्हा इंग्रजांनी कितीतरी वेळा प्रयत्न केला, बर बाई त्यांना शाळा काढता आली नाही, आणि शाळा काढली तरी ती 10 दिवसाच्या वर बी चालली नाही। मग काय शेटजीनी शाळा काढली, शेटजी तिसऱ्या दिवशी घरला म्हणाले सावित्री अगं उद्यापासून तू शाळेला जायचं। म्हटलं शेटजी अहो मी शाळेला मी कशी शाळेला जाणार, उंबरठा कसा वळणार। म्हणाले ते काही नाही, उद्यापासून तू शाळेला जायचं. अन पोरानो रात्रभर रडून काढली. म्हंटल बाई जायचं कस, उमरा कसा ओलांडायचा? अन पोरानो म्हंटल नाही, उमरा तर बाई ओलांडावं लागल. माझ्या पोरीसनी माझ्या पोरा बाळासनी शिकवायचं असल तर उमरा ओलांडावंच लागल. पोरानो कसा बसा उमरा ओलांडलो. ही हजारो माणसं माझ्या पाठीमागून धावत होती, कुणी मला दगड मारत होत, कुणी शेण मारत होत. एवढ्यात एक दगड आला पोरानो, आणि माझं कपाळ रक्त बंबाळ झालं, माझं लुगडं संपूर्ण रक्तानं भरलं. म्हटलं घरला जाऊ की काय, घरला जाऊ की काय? पर म्हटलं नाही, घरला जायचं नाही, आपण शाळेला जायचं. पोरानो तशी शाळेत गेली, सगळ्या दारा खिडक्या बंद करून घेतल्या. आणि पोरींच्याकडे बघितलं तर एवढ्या छोट्या छोट्या चार पोरी माझ्या समोर बसल्या होत्या. म्हटलं पोरीनो शाळेत कसं शिकवायचं हे मला ठाव नाही, पर हा माझ्या शेटजींनी जे शिकवलंय ते तुम्हाला शिकवेन. मग काय, घरला गेले की शेटजी मला शिकवायचे, तिकडून शिकून आलं की इकडे शिकायचे. आता बाई सावित्रीला शेण मारलं, दगड मारली, तरी सावित्री काय ऐकना म्हटल्यावर एक दिवशी अप्पाराव माझ्या मध्ये आला आणि माझ्या हात घातला असा मध्ये आणि म्हणाला सावित्री तू शाळेला जायचं नाही, जा घरला. पोरानो काय करावं मला काय कळना, पण अप्पारावचा हात माझ्या पुढं असा जसा आला का नाय तस माझं मस्तकात कळ गेली, कळतला पदर खोचला आणि त्या काळात अप्पारावच्या खडाखड मुस्काळीत मारून दिल्या. पोरानो प्रश्न हाच, जर त्या काळात मी मुस्काळीत मारून देऊ शकते ज्या काळात बाई उमऱ्याच्या बाहेर बी येऊ शकत नाही, तर तुम्ही ह्या काळात आधुनिक तिची जोडर तुमच्याकडं. तुमच्याकडं एकीकडं पोलीस डिपार्टमेंट आहे, आज तुम्ही इंजिनियर हायसा डॉक्टर हायसा, तरी बी अजून बी तुम्ही किती अन्याय सहन करता सा. अजून मी खेड्यात गेला तर माझी पोरगी अजून बी चुलबुलच करते र, हा अन्याय थांबला पाहिजे पोरांनो. आणि बाई शेजीने एक म्हणता म्हणता दोन, दोन म्हणता म्हणता तीन, 13 शाळा काढल्या. त्या काळात बाई एवढ्या एवढ्याशा पोरींची लग्न म्हाताऱ्या माणसा संगत लावून द्यायचे. मग काय, म्हातारे मेले की पोरींना त्या सरणावर घालायचे रे. पोरी वरपळायच्या, पोरी रडायच्या, म्हणायच्या नका नका आम्हाला मारू, नका आम्हाला मारू. पोरी रडून मारायचे आणि ज्या पोरी जित्या हायती त्यांचं मुंडन करायचे, त्यांना अंधाऱ्या खोलीत टाकून द्यायचे. मग कोणी बी यायचा, देर यायचा, सासरा यायचा, अत्याचार करायचा, पोरी पोटुशा राहायच्या, पोराला जलम द्यायच्या आणि त्याच शेतात पोराला गाडून मोकळ्या व्हायच्या, नाही तर स्वतः तरी हिरे जीव देऊन मोकळ्या व्हायच्या. मग शेजी म्हणाल आता ह्यांच्यासाठी सावित्री काहीतरी केलं पाहिजे. मग काय, बाल प्रतिबंधक गृहाची स्थापना केली, जिथं कुणी बी यावं आणि आमच्याकडे बाळंत होऊन जावं म्हणून जागो जागी नोटिशा लावल्या. पोरानो एक म्हणता म्हणता दोन, दोन म्हणता म्हणता तीन, 100 बाळणपण मी केली. हा ना, तेवढ्यात आमच्या यशवंताचा जन्म झाला. यशवंत हा बामन बाईचा पोरगा, पर बाई माझा पोरगा झाला. पुढे त्याला मोठा डॉक्टर केला लेकरांनो. बाई त्या दिवशी शेटजी लईच थकल्यावाणी जाणत होते. म्हणले शेटजी काय वो असं थकल्यासारखं काय जातात? ते म्हणाले अग भाई आता 25 वर्ष झाली, आता काहीतरी संस्था काढली पाहिजे. तो म्हटलं होय शेटजी अहो पण संस्था म्हणजे काय? तो म्हणतात अग बाई एक ईश्वर हाय, समधी आपण एकाच ईश्वराची लेकर, जर एकाच ईश्वराची लेकर हाय तर त्या ईश्वराला प्रणाम करायसाठी त्याला भेटायसाठी भटजी ग कशाला पाहिजे? अग लगीन लावायसाठी भटजी कशाला पाहिजे? तर बिना भटजीचं लगीन लावून देऊ. अन बाई काय सगळ्या मंगलाष्टका मी मराठीतून लिहून काढल्या पोरांनो. अन राधेच्या पोराचं पहिलं लगीन आम्ही सत्यशोधक समाजाप्रमाणे केलं, ना हुंडा पाहिजे ना कशासाठी पाहिजे. अन पोरांनो सत्यशोधक समाजाचं काम सुरू झालं. बाई त्या काळात लई दुष्काळ पडला होता, इतका दुष्काळ की बाई महारवाड्याची काय अवस्था सांगू. त्या पोरांना रस्त्यावर यायची सोय नव्हती, एवढा मोठा माठ त्याच्या तोंडाला बांधलेला असायचा आणि एवढं मोठं झावळं पाठीमागे का, तर पोरांची थुंकी सुद्धा रस्त्यावर येऊ नये म्हणून. आणि त्या दिवशी दोन बायका पाण्यासाठी कलवळून रडवत होत्या ग, आणि वरून त्यांना चापकाने मारत होते. तेवढ्या शेटजी आले, म्हणाले सावित्री अग ह्यांच्यासाठी काहीतरी केलं पाहिजे. म्हटलं शेटजी हाव आपलाच हौदा आहे की, आणि हौदातून पाणी पोरानं मी बाहेर काढलं. आणि त्या दिवसापासून कुठल्या बी जातीच्या लोकांनी आमच्याकडे यावं आणि आमच्या हौदाचं पाणी घेऊन जावं असं पोरानं सांगून टाकलं. शेटजी आज लईच थकल्यासारखी दिसत होते. आणि बाई म्हणता म्हणता शेटजी पडले. म्हटले शेटजी काय झालं, शेटजी काय झालं? झालं? शेजीसनी पक्षकाराचा झटका आणता. म्हटलं भाई शेजी डॉक्टर गोले बघा तरी शेजीसनी काय झालंय. डॉक्टर गोलेनी बघितलं तर यांची समधी उजवी वाळून बाजू लोळी पडली होती. मग काय एक महिना गेला दोन महिने गेले पण शेजीना बरं वाटेना. तेव्हा शेजी सार्वजनिक सत्यधर्माचं पुस्तक लिहित होते. म्हणलं शेजी मला सांगा मी लिहून काढते. तो म्हणतात कसे नको तुझं काम तूच कर माझं काम मी करण. माझ्या शेजीनी डाव्या हाताने पुस्तक लिहून काढलं पोरानो. अन बाई असं म्हणतात मृत्यूची चाऊल समजासनी आधीच कळतीया. माझी शेजीसनी बी आधीच कळली का काय कुणास ठेव. त्या दिवशी म्हणालं सावित्री आता मृत्यूपत्र केलं पाहिजे. यशवंता बामनबाईचा पोरगा म्हणून तुला जीवन सोडणार नाही. म्हणलं शेजी अवंकार कशा पायी काय बोलत सा. म्हणाले नाही मृत्यू अटळ हाय. समद्यासनी बोलवून घेतलं अन ह्यांनी मृत्यूपत्र तयार केलं. म्हटलं बाई शेजी काय करतायत. शेजी एवढी साबुदाण्याची पेस्ट तरी खावा. अहो सकाळ धरणं काय खाल्लं नाही काय प्यालं नाही खावा की शेजी एवढं तरी. शेजींच्या तोंडात ही एक पेज घालणार. तेवढ्यात आपलं शेजी गेलं पोरांनो. आपलं शेजी गेलं पोरांनो. ज्यांनी आपल्याला स्वातंत्र्याचा सूर्य दाखवला ते आपले शेजी गेले. शेजी उठा हो शेजी उठा. तेवढ्यात बाईत बाहेरून आवाज आला. डॉक्टर घोले म्हणत होते पोलिसांनी बोलू. डॉक्टर घोले पोलिसांनी का बोलवतात. म्हणून मी बाहेर आले. बघतय तर बाई टिटव्याला कुणी बी हात लावायचा नाय म्हणून आमचीच भाऊबंद बोलत होती. म्हटलं का हात लावू देत नाही. तर यशवंता बामनबाईचा पोरगा म्हणून यशवंतानी हात लावायचा नाही म्हणून सांगत होती. पोरानो ज्या काळात बाई उमऱ्याच्या बाहेर बी येऊ शकत नव्हती त्या काळात मी टिटव उचललं. म्हणलं अरे ही सावित्री हाय. अरे माळ्याचीच पाहिजे ना व हाय ही सावित्री. म्हणून पोरानो माझ्या शेजींच्या संगत यशवंताचा हात धरून टिटव मी उचललं. पोरानो असा काळ ज्या काळामध्ये बाबा इतकी क्रांती आम्ही केली त्या काळात पहिलं हळदी कुंकू मी केलं की सगळ्या जाती धर्माच्या बायका एकत्र यावेत म्हणून. म्हणता म्हणता प्लेगची साथ आली. पुण्यात लोक उंदरावानी मरायला लागली. तोपर्यंत यशवंता डॉक्टर झाला. म्हटलं यशवंता ये तडक पुण्यात निघून. लोक उंदरावानी मरून लई वाईट वाटत होतं. तेवढ्यात गायकवाडाचं सांगणं आलं त्याचं पोरग तापानं फणफणले. पोरानं तिकडे गेले. म्हटलं पांडुरंगा काय र झालं. पांडुरंगाला उचललं. पांडुरंगाला उचललं. पांडुरंग जगला. पर म्या तुमच्यातून गेले लेकरांनो. पर प्रश्न हेच रे त्या काळामध्ये शेजीने दारूबंदी करू नये म्हणून लायसन देऊ नका म्हणून इंग्रजांनी सांगितलं. आणि आज आमच्या कोरोनाच्या काळात बी सरकार दारूची दुकानं पहिलं उघडतंय रे. अरे माझ्या आया बहिणींचे संसार किती उद्ध्वस्त होत आहे याची काळजी कुणालाच काय नाही काय रे. आज एकीकडे पोरगी डॉक्टर आहे दुसरीकडे खेड्यात गेला तर डॉक्टर आई ना माझी पोरगी मरतीये रे. आज एका बाईचा नवरा मेला तर तिचं कुकू पुसायला एक बाई येते. तिचं मंगळसूत्र ओढायला एक बाई येते. तिचं जोडवं मी एक बाईच काढून टाकते. हे करताना हात थरथर कापत नाही तर ग पोरी ना तुमचे. एक तुम्ही आई हाय एक बाई हाय हे समजत नाही तुम्हाला. अगं कधी किती दिवस हे चालवणार तुम्ही. आज एकीकडे डॉक्टर हायसा एकीकडे इंजिनियर हायसा आणि आपल्या घरातल्याच बाईला इदवा इदवा म्हणून हे नव्हत्या शीत ग. हे थांबवा लेकिनो. अगं जिच्या हाती पाळण्याची दोरी ती संपूर्ण जगाला उद्धारी हे शेजनी त्या काळात सांगून ठेवलं ग. आणि खरं सांगू भारत सुजलाम सुपलाम बनवायचा असेल तर पाळण्याची दोरी आपल्याला हाती घ्यायची आहे. आणि ती पाळण्याची दोरी जर आपल्याला हाती घ्यायची असेल नव तर मशाल ज्ञानाची पेटवायलाच हवी. म्हणले की नो या सावित्रीची कळकळीची विनंती मशाल घ्या ज्ञानाची. धन्यवाद.
0: खूपच सुंदर
1: समज मी आया आपको कुछ मराठी.
0: बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया सुनाया आपने. बहुत सारी जीवन कहानी को आपने बहुत ही अच्छी तरह से प्रेजेंट किया. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत शुभकामनाएं.
1: थैंक यू.
0: तो आइए मानसी जी अगर आप है तो कुछ पूछना हो तो यू कैन अदरवाइज फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं. और चलिए दोस्तों जैसे कि मानसी जी अगर आती हैं तब तक मेघना जी आपने बहुत अच्छी तरह से उस प्ले को जो है नरेट किया और हर चीज को आपने बहुत ही अच्छी तरह से डायरेक्शन दिया और कहीं ना कहीं वो एक जीवंत कैरेक्टर का जो फील है वो आपके वॉइस मॉड्यूलेशन में आपके हाव भाव में दिखाई देता है. तो व्यक्ति जो है अपने आप ही उससे जुड़ जाता है.
1: क्योंकि हम वो एक्ट में चले. मतलब मुझे थोड़ा टेंशन था कि मैं शॉर्ट में करूंगी या नहीं करूंगी क्योंकि एक बार आप वो किरदार में जाते हो तो बाहर आना मुश्किल होता है. लेकिन मैंने कोशिश की कि सावित्री बाई फुले का किरदार मैं निभाऊं या शॉर्टली.
0: होता,
1: क्योंकि एक वो इतना मोटिवेशन है उनका लाइफ, तो वो
0: हाँ पूरा ही
1: सिर्फ
0: उनका जो है वो स्टोरी में जैसे आपने बताया वैसे सारी चीजें जो है एक
1: हाँ
0: मोटिवेशनल है। और
1: या
0: मनो उस समय कितना अज्ञानता था, वो एक ऐसा पीरियड था,
1: हाँ हाँ
0: और आज पूरा ज्ञान होने के बाद भी कुछ चीजें देखते हैं तो
1: हाँ यही है कि
0: कितनी
1: वहां एटलीस्ट लोगों को अज्ञान था, लेकिन अब तो हम ज्ञानी हैं, फिर भी अज्ञानी है, तो कुछ बदलना चाहिए समाज। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं अभी प्रजापिता ब्रह्म कुमारी से जुड़ गई हूँ, क्योंकि जो
0: बिल्कुल
1: ज्ञान है, या हम लोग बोल रहे हैं कि ज्ञान का सागर जो है वो आप लोग सबको दे रहे हैं एक अमृत की, तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आपसे जुड़ गई हूँ आज की। वो जो
0: बिल्कुल
1: अमृत का एक ये है वो सबको मिलना चाहिए, और आप लोग
0: सबको
1: वही कर रहे
0: मिलना
1: हैं, पॉजिटिवनेस दे रहे हो सबको।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे वही लगता है कि हमारे जो इन लोगों ने जितना कष्ट सहन किया और उन चीजों को कष्ट सहन करके वो चीजें बतानी, और
1: हाँ
0: आज वैसा कुछ नहीं है, आपको अगर प्रॉब्लम है तो आपके पास बहुत सारे एसेट है, पुलिस है,
1: या
0: सोशल वर्कर का ग्रुप है, कहीं भी
1: कहीं
0: आप जाके उन चीजों को
1: भी,
0: शॉर्ट आउट कर
1: वही वही
0: सकते हैं और
1: वही
0: वो ठीक कर सकते हैं, लेकिन
1: या
0: फिर भी
1: अभी हम लोग
0: कहीं
1: सिर्फ सेल्फी में गुम हो जाते हैं, मतलब
0: बिल्कुल
1: सावित्रीबाई फुले या जो जो हमारे, तो बस उधर जाते हैं उनकी जयंती पे, या हार चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, सेल्फी निकालते हैं, फिर हमारा स्टेटस ये वो, हम उस दिन पूरा चल जाता है। उसके बाद
0: बिल्कुल
1: जो उनके विचार है वो हम इधर लेके नहीं चलते, बस सेल्फी में खुश हो
0: नहीं
1: जाते हैं हम टेम्पररी आनंद जिसको बोलते हैं, उसमें ही हम लोग खुश है।
0: बिल्कुल
1: तो वो बदलना चाहिए, उनके विचार है वो हमको मन में लाना चाहिए,
0: वो
1: तभी हमारा
0: कहीं
1: भारत देश सुजलाम सुफलाम हो जाएगा। क्योंकि
0: बिल्कुल
1: हमको हमारे देश के बारे में, पूरे वर्ल्ड के बारे में सोचना है, ना कि खुद के बारे में।
0: और देखा गया है कि हमारा आनंद नहीं पता हमको एक स्थायी जो
1: वही वही
0: सुकून है
1: मुश्किल है।
0: वो कहीं ना कहीं खो गया है,
1: हाँ
0: मतलब जो
1: हो
0: है
1: गया है
0: सुख को ढूंढ रहा है, एक शांति को ढूंढ
1: यह
0: रहा है, और वो कहीं ना कहीं हमें पूरी तरह से नहीं मिल रहा है, और
1: नहीं
0: हम
1: मिल रहा है।
0: लोग टेक्नोलॉजी जो भी चीज आ रहे हैं उसमें वो टेम्परेरी सुख फील करते हैं और निकल जा रहे हैं। तो वो स्थायी चीज पाने के लिए हमें जो है कुछ चीजों को इम्प्लीमेंट करना होगा, जैसे आपने सावित्रीबाई की सुना, अगर ऐसी चीजें आज भी हैं तो कहीं ना कहीं अगर हमारे समाज में है तो हमें इनिशिएटिव लेकर उन चीजों को अवॉइड करना चाहिए, और वहां पर जो है अपना अच्छा प्रदर्शन करें और लोगों को भी जागरूक करें। और
1: वही
0: उन्हें
1: वही
0: कई बार होता है कि सम टाइम वी डू, वरना कई बार होता
1: यस
0: है समाज में हम वो चीजें करते हैं लेकिन वो कैसे करते हैं वो करके हम चुप हो जाते हैं,
1: या
0: लेकिन एक्चुअली में ना वहाँ एक मुहिम की एक जागृति जो बोलते हैं वो चाहिए, वापस वही प्रोग्राम रिपीट करो और लोगों को समझाओ और दूसरे लोगों से वो चीज कराओ।
1: वही
0: तो
1: वही वही
0: शायद जो इवेंट टेक वाली जो चीजें हैं ना, वो डोर एक
1: हाँ
0: रस्सी कनेक्शन की वो चलाना
1: यस
0: पड़ेगा, तब जाके वो
1: वही
0: थोड़ा सा लंबा अगर हो जाता है तो लोगों को लगता है कि अरे ये चीज यहाँ से हो रही है तो हम
1: या
0: भी देखते हैं,
1: यस
0: फिर आपके
1: वही
0: समाज के आपके दूसरे समाज में, तीसरे समाज में, गांव से गांव में, फिर गांव से शहरों में, ऐसा वो ट्रांसफॉर्मेशन की बहुत जरूरत है। शायद
1: जरूर
0: वो चीजें कहीं ना कहीं वो मिस हो रही है, और हम लोग कुछ चीजें जो है वो जन जागृति का जो कार्यक्रम हम लोग करते हैं उसमें जो अलग होना चाहिए, दूर तक जाना चाहिए, वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है। तो निश्चित तौर पे आपके द्वारा और आपने जो ज्ञान दिया है उसको शायद वो अलग मिल जाए तो सारी दुनिया में जैसे प्रकाश हो जाए। तो आइए जाते जाते मैं यही कहूंगा कि हमारे जीवन में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, उसको हम लोग मैनेज करते हैं, तो आप जब संभल गए उसके बाद भी कुछ ऐसी चीजें हुई जो उसको आपको लग रहा है कि ये नहीं होना चाहिए, इसको ठीक करना चाहिए, आपके पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, तो मैं चाहूंगा कि कौन सा एक संघर्ष या कौन सा एक ऐसी चीज है जो आपको अभी करना है या वो चीज आई थी और चली गई।
1: ऐसे है कि हमारे सबका जीवन तो संघर्ष में ही होता है,
0: बिल्कुल
1: लेकिन मैं एक चीज मानती हूँ कि अभी देखिए मुझे तभी उसी टाइप पैरालिसिस टाइप हो गया था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी, मतलब डॉक्टर ने तो छोड़ दिया था कि नहीं
0: अच्छा
1: अभी ये
0: अच्छा
1: नहीं रहेगी करके। तभी मेरा बच्चा छोटा था, और मेरा बच्चा मेरे बाजू में बैठा था और रोता था, कि मतलब उसको ऐसे लगता कि अभी मम्मी को क्या होगा, और मुझे तभी 103 102 ऐसे टेम्परेचर रहता था, तो वो खाना भी नहीं खाता था। और तभी कोइंसिडेंटली क्या हुआ कि मेरे बाजू में जो मेरे बच्चे का उतना ही उनके जो डैडी थे, हम दोनों भी आईटी में थे, वो चल बसे, तो मेरा बच्चा और डर गया कि अरे अभी अपने मम्मी को भी कुछ होगा क्या। तो वो बहुत रोता था, खाना नहीं खाता था, तो मेरी अंदर की जो माँ थी ना वो उधर ये हो, और फिर मैंने ही सोचा कि नहीं मुझे उठना चाहिए। तो
0: हाँ
1: मतलब हमको पॉजिटिव लेना चाहिए। और उसे के बाद मतलब मैंने आई लेफ्ट माय आरटी जॉब, मतलब मेरा जो फर्स्ट वन एप प्ले हो गया उसके बाद मैंने
0: हाँ
1: जॉब छोड़ दिया और मैं ये कर
0: अच्छा
1: रही हूँ। तो ये पॉजिटिवली मैं ले रही हूँ कि तभी मैं शायद बीमार नहीं होती थी तो आज मैं सावित्री फुले का किरदार नहीं निभाती थी और ना ही
0: नहीं
1: मैं
0: निभा
1: जनजागृति इतनी अच्छी तरह से कर पाती थी।
0: कर पा
1: तो मैं हर एक प्रसंग को पॉजिटिवली लेती हूँ, ऑलवेज पॉजिटिवली। जब आप पॉजिटिवली लेते हो तो ऑटोमेटिकली आपको पॉजिटिव, मतलब आपको मुझे बोल रहे हैं कि आप क्या संघर्ष कर रहे हो, तो जीवन में संघर्ष तो बहुत ही होगा, तो उसमें कुछ ये नहीं है। मतलब जब मैंने हमारे अभी आपके होम मिनिस्टर करके, पता है या मुझे पता नहीं, होम मिनिस्टर करके हमारे एक एंटरटेनमेंट प्रोग्राम रहता है जो भी मैं करती हूँ, मतलब सावित्रीबाई फुले का भी वन एक्ट प्ले करती हूँ और होम मिनिस्टर करके करती हूँ, जिसमें मैं बेटी बचाओ, कैंसर मुक्ति, व्यसन मुक्ति, ये सब लेके वो एंटरटेनमेंट प्रोग्राम रहता है। तो वो सब मतलब एक फीमेल कर रही है, क्योंकि वो पूरे मेल का डिपार्टमेंट था हमारे इधर महाराष्ट्र में, कि सारे मेल ही वो प्रोग्राम करते थे। लेकिन जब मैंने वो चालू किया तो उसमें मैंने बहुत संघर्ष किया है कि एक लेडी होके भी ये प्रोग्राम कर रही है ऐसा वैसा। उसको भी मैंने पॉजिटिवली ले लिया, और जब हम लोग कुछ पॉजिटिवली ले लेते हैं तो मेरे ख्याल से वो सक्सेस हो ही जाता है। तो मुझे सबको यही बताना है कि बी पॉजिटिव ऑलवेज।
0: बहुत अच्छी बात आपने बताया, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं संघर्ष आता है तो वो अपॉर्चुनिटी देने के लिए आता है।
1: संघर्ष तो
0: और
1: बहुत आता है, बहुत ही,
0: बिल्कुल
1: मतलब अभी मैंने बीच में ही आपको बताया कि जातीयवाद अभी भी है, मतलब मुझे नहीं पता, मतलब मैं सावित्रीबाई फुले का किरदार निभा रही हूँ फिर भी मुझे कभी कभी मुझे ही सामना करना पड़ता है कि आप मेरी समझ के नहीं हो ऐसा वैसा, तो मैं इग्नोर करती हूँ वो सब
0: सही
1: चीजों
0: बात
1: को,
0: सही बात।
1: फिर भी मेरा काम करती हूँ।
0: हाँ वो तो जरूरत नहीं है, आउट ऑफ द बॉक्स ही काम करना पड़ेगा, लोग अभी भी कहाँ अटक गए हैं 21वीं सदी में।
1: और मेरे
0: सुमार जी ने
1: पिताजी ने सिखाया है
0: जी
1: कि जीवन में ना कितना भी संघर्ष आए लेकिन प्योर माइंड रहना चाहिए और कभी भी झूठ का सामना मत ले लो। ये दो चीजें मैंने जिंदगी में मेरी अभी तक मतलब उसके वही रास्ते पे मैं चल रही हूँ, तो इसलिए ज्यादा खुश हूँ।
0: हाँ, मेघना जी बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया कि कैसे आपके जीवन में जो टर्निंग पॉइंट था उसको आपने बताया, और निश्चित तौर पे हम सभी को वो चीजें हमारे पास आती हैं तो थोड़ा सा अगर हमने वहाँ हिम्मत दिखाई है तो हम बहुत आगे बढ़े, और जिन लोगों ने हिम्मत नहीं दिखाई है उनका जीवन थोड़ा सा डर गया, तो ये हमें एक्चुअली में एक छोटा सा जो है मोमेंट अंदर से जीने का और अच्छा बेहतर करने का एक जो अलाक है वो आपके अंदर जग जाए तो
1: और
0: अच्छा हो
1: इससे
0: जाता
1: ज्यादा मैं ये मानती हूँ कि ये मेरा जीवन है, लेकिन यदि मैं ऐसा कुछ कर जाऊं कि सामने वालों को उससे कुछ खुशियां मिले तो मुझे ज्यादा खुशियां मिलेगी। वो सबके मन में ये भावना रखनी चाहिए कि मैं कौन हूँ, सिर्फ मैं ये विचार नहीं रखने चाहिए, आपको पूरे सबके बारे में सोचना चाहिए तभी वो सफल होगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और सुभाष जी लिखते हैं, दीदी आपने बहुत ही सुंदर इमोशनल ड्रामा ऑफ सावित्री बाई आपने रोल अदा किया और बहुत बहुत साकार किया, गॉड ब्लेस यू करके लिखा है, थैंक यू सो मच,
1: धन्यवाद आपके, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: ममता सोबत जी लिखे हैं, ओम शांति ग्रेट करके मैसेज किया है, और वेरी गुड जॉब ओम शांति, निवेदिता जी ओडिशा से आपको लिखा है, और नीता जी ने राइट बात है, आपकी बातों से सहमत है उन्होंने, और निवेदिता जी लिखते हैं, बाबा ने बहुत ही बेस्ट क्वालिटीज आपको दी है, गॉड ब्लेस यू, ममता सबत जी मुंबई से आपको याद। तो मुझे लगता है कि सभी को आपका एक्ट पसंद आता है इसलिए लोग जुड़ जाते हैं, और फिर मैं चाहूंगा कि आपने अभी ब्रह्मा कुमारीज का जो मेन अमृत जहां पहुंचना था पहुंच गए हैं, अभी सावित्री बाई के सर पे एक कलश अमृत का है और वो कलश में से सबको अमृत बटा जाएगा तो उनका जीवन जो है अच्छा हो जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं वो मिसिंग गैप है, शायद वो नहीं समझ पाए लेकिन हम लोग समझ पाते हैं, आप समझ पाएंगे क्योंकि हम लोग उसमें काम कर रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि हम लोग तो इतना आगे आने के बावजूद भी हमारा मानसिकता कितना पीछे रह गया और कितना छोटा है ये आप समझ पा रहे हैं। तो मानसिकता को ठीक से समझाना या उसको ठीक से पकड़वा देना उनके हाथ में ताकि वो अपनी मानसिकता को अच्छा बनाए और सुंदर बनाए उसके हाथ में है, लेकिन वो कलम या वो ताकत वो शक्ति जो है कहाँ से मिलेगा, कैसे उसको बना सकते हैं, वो उतना जो है अमृत का बूंद उनके हाथों में पहुंच जाए तो उनका जीवन भी बल्ले बल्ले हो जाएगा।
1: और हमको यही करना चाहिए सबको।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
1: चाहे सबके मार्ग अलग हो या कुछ, लेकिन सबको यही करना है मेरे ख्याल से। जो जितना मतलब पूरे, मुझे तो ऐसे लगता है कि पूरे विश्व में शांति आना चाहिए। बस एक बार पूरी शांति आ गई ना, हम सुकून से जी लें।
0: सही बात, सही बात। तो दोस्तों आज हमने मेघना जी को सुना और मेघना जी ने जिस तरह से बातों को बताया और सावित्रीबाई की कहानी जो है आज भी उतना ही जीवंत क्यों लगता है, उतना ही हमें आकर्षण क्यों लगता है, कहीं ना कहीं हमने उसको पूरी तरह से टेक ओवर नहीं किया है। और पूरी दुनिया में हम लोग इवन महाराष्ट्र में जहाँ पर उनका जन्म स्थान है वहीं पर अभी भी बहुत सारी मानसिकता ऐसी, तो उन्हें भी हमको जो है मिलकर काम करना होगा। और एक व्यक्ति से नहीं, हम लोगों को एक मिशन की तरह, मतलब बहुत सारे लोगों को जुड़कर ये काम करना।

0: तो साथ में मिलकर हम लोग जब भी प्रोग्राम करते हैं तो वहां पर उनको खास बुलाइए, विधवा को, और उनको सम्मानित कीजिए, हल्दी कुमकुम में उनको बुलाइए और सम्मानित करके उनको वहां से पहले उनको जो है सम्मान करें, उनको उनको, उनको बोले कि वो अपने लाइफ को, उनके बारे में, उनके परिवार के बारे में कुछ बातें बताएं, और उनको कुछ हेल्प चाहिए तो जरूर आप सभी लोग, हल्दी कुमकुम करने में हम लोग कभी कभी बहुत खर्चा भी कर लेते हैं, तो उससे अच्छा वो उनको थोड़ा सा अगर सपोर्ट करें हम लोग, तो आपका हल्दी कुमकुम रियल में सफल हो जाएगा, है ना। तो वो चीजें हमको थोड़ा सा शायद आगे बढ़ के करना पड़ेगा, अदरवाइज चीजें जो है फिर मेघना जैसे बहुत सारे आर्टिस्ट आएंगे बताएंगे, आप ड्रामा की तरह देखेंगे चले जाएंगे, तो वो चीज तो अच्छा नहीं।
1: सिर्फ ड्रामा नहीं, हम कृति में भी करते हैं। बीच में भी मैंने अभी फुलेवाड़ा में प्रोग्राम किया था, उस प्रोग्राम में मैंने ऐसे सभी मतलब वुमेन्स को बुलाया था, उनको हमने हल्दी कुमकुम लगाया, उनके गले में मंगलसूत्र डाला, उनको बंगड़ी मतलब जितना भी साज सिंगार है वो पूरा उनको वो डाल के, उनका साड़ी विड़ी सब देके उनको हल्दी कुमकुम दिया। क्योंकि जब हम कुछ बोल रहे हैं तो सिर्फ बोलना नहीं चाहिए, पहले
0: बोलना
1: उसकी कृति करो।
0: नहीं
1: मतलब यदि मैं समाज में बोल रही हूँ कि जन जागृति करना है तो बोलने से कुछ नहीं होगा, सो आई एम
0: चाहिए,
1: ट्राइंग टू, वो कृति कर रही हूँ मैं कि ये करो, मतलब ये करने से और अच्छा लगेगा। तो उसका फोटो जब फेसबुक पे एक देखा, एक हमारी
0: बिल्कुल
1: एक नगर की उसके पास गया, तो वो भाभी ने फोन किया कि अरे मैं ऐसी हूँ, विधवा हूँ, और 10 साल हो गए मैंने अभी तक मंगलसूत्र पहना नहीं, ये नहीं लगाया, टीका नहीं लगाया वगैरह। तो मैं बोली आप क्यों नहीं हल्दी कुमकुम करते आपके उधर ऐसा? तो पहले वो डर गए, मैं बोली डरिए मत, आप खुद अरेंज कीजिए। तो वो मुझे बोले आप आएंगे क्या? मैं बोले मैं आती थी, मेरा एक प्रोग्राम है उसी सेम दिन, और मुझे पूना से खेड़ आते तक उतना 5 घंटा लगता है, 5 घंटे का ट्रैवलिंग।
0: बिल्कुल
1: मैं वीडियो पे आपका जरूर देखूंगी, मैं बोला। तो उन्होंने वीडियो चालू रखा था, और मुझे बहुत खुशी है कि उनके जैसे 20-25 फ्रेंड्स वो गांव में उनको मिल गए, उन्होंने सब मिलके हल्दी कुमकुम किया, बहुत एंजॉय किया, सब लोग रोए बैठ के, वो रोना उनका खुशी का था, मतलब जो आंसू थे खुशी के थे, क्योंकि बहुत सालों के बाद उन्होंने हल्दी कुमकुम मनाया था। फिर उनकी लाइफ जैसे किटी पार्टी हो गई, फिर वड़ा पाव वगैरह ऐसे ऐसे, मतलब ये जो खुशियां है ना, मतलब ये शायद एक मेल अंडरस्टैंड नहीं करेगा कि क्या दुख है वो। मतलब आपको लगेगा साड़ी टिकली तो लगानी है, बिंदी तो लगानी है, कुमकुम तो लगाना है,
0: बिल्कुल
1: इसमें
0: बिल्कुल
1: क्या है? लेकिन उसमें बहुत है, उसमें बहुत खुशियां है। वो जब खुशियां कोई आपसे छीन लेगा तो आपको कैसा लगेगा ये आप इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे।
0: नहीं कर
1: मतलब
0: पाएंगे।
1: ये समाज इमेजिन ही नहीं कर पाता कि उनको क्या दुख है। मतलब नरक यातना जिसको बोलते हैं ना, वो यातना उनको होती है। इसलिए जस्ट कृति में सबको करना है, और मेरे ख्याल से सबको मैं यही बोलूंगी आप भी कृति करो तो ऑटोमेटिक जन जागृति हो जाएगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल मेघना जी, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही प्यारा सा जो संदेश भी आपके द्वारा मिलता है, और कहीं ना कहीं जन जागृति की बात हुई तो आप ये सब काम कर रहे हैं और करते जाएं, और मैं चाहूंगा कि इस माध्यम से भी जो भी हमें बाद में सुनेंगे उन सभी को यही कहना चाहूंगा, अभी सुन रहे हैं उनको भी, कि भाई आप भी कहीं ना कहीं एक इनिशिएटिव जरूर लें, और जैसे कि गेट टुगेदर बुलाइए, महाराष्ट्र में हल्दी कुमकुम मनाते हैं तो आप अपने यहाँ गेट टुगेदर बनाइए, छोटा सा पार्टी रखिए और उसमें इन सारे लोगों को बुला के एक सम्मान जो है उनको दे, ताकि उनके जीवन में भी वो खुशियां वापस लौट आए और नॉर्मल जीवन जिए, उनके प्रति जो है हमारी कोई भावना जो है हायर हो जाए। कई बार हम लोग उनको लगता है कि हम लोग उनको अपने साथ नहीं रख, तो वैसा ना उनको लगे, उनको लगे आप उनके साथ हो, वो आपके साथ सुरक्षित और अच्छा महसूस करें, है ना। तो थैंक यू सो मच मेघना जी, बहुत ही अच्छा लगा, और हम लोग चाहेंगे कि आपसे बार बार जुड़ना और आपकी बातें सुनना और सुनाना हमें अच्छा लगेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं आपको।
1: आरजे रमेश दादा बहुत अच्छे हो आप, बहुत अच्छी बातें भी हुई, और हमारे हड़प सर के पाटिल दीदी जो, और मेरी
0: जी
1: फ्रेंड वो सपना सुराना, इन सबका भी मैं
0: बिल्कुल
1: धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन दोनों की वजह से मैं आपसे जुड़ गई, और अब जैसे
0: बिल्कुल
1: और एक भाई मुझे मिल गए। तो थैंक यू
0: बिल्कुल।
1: सो मच, थैंक यू।
0: चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में जहां पर हमने मेघना जी को सुना, एक आर्टिस्ट अपने जीवन में किस तरह से काम करता है, अगर आर्टिस्ट चाहे तो वो लाइफ में, अपने लाइफ में भी काफी कुछ चेंज पाते हुए अपने जीवन को बदल सकता है, तो आप आईटी सेक्टर को छोड़कर एक आर्टिस्ट के लाइफ को अगर अपना प्रोफेशन बनाते हैं तो कहीं ना कहीं एक अंदर की दिली तमन्ना और दिली वो एक अनुभव है जो लोगों तक जा रही है, तो निश्चित तौर पर आपका जब भी प्ले होगा लोगों को वो सावित्री बाई की यादें और उनकी उनकी जीवन कहानी और उनका मैसेज उन तक पहुंचेगा ही। तो मैं चाहूंगा कि हमारी जीवन में हमको खाली चीजें जो बताएं वो करें, उससे अच्छा कि हम खुद उसको स्टार्टअप करें, हम खुद अपने आप को देखें कि हमारी मानसिकता तो वैसे नहीं है, हम कहाँ कहाँ उस मानसिकता के शिकार हो जाते हैं। अभी मैं अकेला हूँ तो अब मैं अच्छी तरह से बोल सकता हूँ मैं ऐसा नहीं वैसा हूँ, लेकिन क्या मैं समाज के साथ जुड़ जाता हूँ, 10 लोग मेरे घर पे आ जाते, तब मैं क्या वही प्यार वही स्नेह उन लोगों को देता हूँ? तो वो सवाल अपने आप से पूछिए और उसका प्रयोग कीजिए और उसमें आप आगे आइए, है ना। और अपने लोगों को भी बताइए ये चीजें कि हमें उस मानसिकता से आगे आना है और सबको साथ लेके चलना है। तो ये अगर हम लोग प्रयोग करेंगे अपने लाइफ में, अपने साथ, अपने ही परिवार में, तो आपका परिवार, आपका व्यक्तित्व एक मिसाल बनेगा। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलेंगे हम लोग अगले एपिसोड में, और मैं चाहूंगा कि छोटों को बहुत प्यार, बड़ों को सम्मान, और आप जब भी जाए बाहर तो महिलाएं आपके साथ सुरक्षा महसूस करे, अच्छा महसूस करे, और उनको सम्मान उतना ही मिले, और समाज में एक प्यार, प्रेम, शांति, वैसे आपके जीवन में जो शांति, प्रेम, आनंद की गुण हो और उसे देखकर लोगों में खुशी और बढ़े। इन शुभकामनाओं के साथ फिर मिलते हैं। सलाम नमस्ते, खवा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति।

हंसते रहिए। आप सड़क पर चलते समय अपनी गाड़ी को कंट्रोल रखें और अपनी गाड़ी को धीरे धीरे चलाएं और हमेशा हेलमेट पहनते रहिए। रेडियो मधुबन

नमस्कार, मेरा नाम है अमन वर्मा और इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपका अपने घर पर कोई इंतज़ार कर रहा है, इसलिए कृपया हेलमेट लगाकर अपनी मोटरसाइकिल चलाएं। याद रखिएगा,

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: किसी का एक लाइन ना, इवन अगर कल बीत गया, इट डजेंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन्स आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पे रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते हैं अपने आप को।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

ओम शांति। आज है 6 जून 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को रियलाइज कराते हैं कि बच्चे मनुष्य तो गाते हैं हे पतित पावन आओ, परंतु समझते नहीं है। तुम बच्चे इस समय समझते हो कि पतित पावन बाप है, और वह जब इस संसार में आते हैं तो पतित दुनिया का अंत और पावन दुनिया की स्थापना करते हैं। बच्चों को महसूस कराते हैं कि पतित किसको कहा जाता है, पावन किसको कहा जाता है, और इसलिए पावन बना करके हम बच्चों को नई दुनिया के योग्य बनाते हैं। बाबा कहते हैं मनुष्य गाते तो है परंतु समझते नहीं है कि हम पतित है। पतित पना किसको कहा जाता है यह भी नहीं जानते हैं। जो ज्ञानवान है वो अच्छी तरह से समझते हैं कि जब 5 विकारों के वशीभूत होते हैं तब व्यक्ति पतित बनता है, और यही 5 विकार आदि मध्य अंत दुख देता है। इसलिए बाबा आते हैं हम बच्चों को दुख से छुड़ाए सुख की दुनिया में ले चलने के लिए। साथ ही साथ आज बाबा ने अमृत वेले का भी महत्व बताया कि बच्चे सुबह सुबह अमृत वेले उठकर बाबा को बहुत प्यार से याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। भक्ति में भी गाते हैं राम सिमर प्रभात मोरे मन, कि परमात्मा को याद करो, सिमरण करो, अर्थात निरंतर उसकी याद में अमृत वेले रहो। फिर बाबा ने और एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझाई कि जिससे हमारी स्थिति सदा अचल अडोल हो जाती है, और उसका आधार है ड्रामा का ज्ञान। बाबा कहते जब कुछ भी होता है तो समझो यह भी ड्रामा में नूंद है, तो तुम्हारी स्थिति अचल अडोल महावीर वाली हो जाएगी। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, अमृत वेले का समय बहुत बहुत अच्छा है, इसलिए सवेरे सवेरे उठकर एकांत में बैठ बाबा से मीठी मीठी बातें करो। आज की मुरली से प्रश्न है, कौन सी नॉलेज निरंतर योगी बनने में बहुत मदद करती है? उत्तर है ड्रामा की। जो कुछ बीता ड्रामा की भावी, जरा भी स्थिति हलचल में न आए, बल कैसी भी परिस्थिति हो, अर्थक्वेक आ जाए, धंधे में घाटा पड़ जाए, लेकिन जरा भी संशय पैदा न हो, इसको कहते हैं महावीर। अगर ड्रामा की यथार्थ नॉलेज नहीं है तो आंसू बहाते रहेंगे। बाबा कहते ड्रामा की यथार्थ समझ नहीं है तो आंसू बहाते रहेंगे। निरंतर योगी बनने में ड्रामा की नॉलेज बहुत बहुत मदद करती है। आज की मुरली से पहले गीत बजा है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। बच्चे अब अच्छी रीति समझते हैं पतित दुनिया का अब अंत हो रहा है, पावन दुनिया की आदि हो रही है, यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो, और बच्चों को ही यह डायरेक्शन व श्रीमत मिलती है। कौन सी श्रीमत मिलती है, कौन देते हैं? ऊंचते ऊंच भगवान। क्या श्रीमत मिलती है? समझाते रहते हैं कि पतित से पावन बनना है। यह नॉलेज तुम्हारे लिए है, और तो सब पतित है। यह पतित दुनिया विनाश जरूर होनी है। पतित कहा जाता है विकारी को। बाप समझाते हैं
कि तुम जन्म जन्मांतर एक दो को दुख देते आए हो। प्रतीत कहा जाता है विकारी को, और ये विकार ही जन्म जन्मांतर दुख देते आए, इसलिए तुम आदि मध्य अंत दुख पाते हो। एक दो को पतित बनाते हो, पुकारते भी है, एक तरफ पुकारते भी है कि हम पतित है, परंतु बुद्धि में पूरा बैठता नहीं है। कहते भी है पतित पावन आओ, परंतु फिर भी पतितपना छोड़ते नहीं है। अभी तुम समझते हो सारी बात है पावन बनने की, ये समझाने वाला भी तो कोई चाहिए। बाबा कहते पावन बनना है, ये समझाने वाला भी तो कोई चाहिए। जो सारे दुनिया में पतित है वो कैसे एक दूसरे को समझा सकेंगे, समझाने वाला है ही एक। बाकी यह जो गुरु लोग है ये किसको पावन बना नहीं सकते हैं। पावन भी सिर्फ एक जन्म के लिए नहीं, संगम पर एक जन्म पवित्र बनते हैं, लेकिन ये संस्कार जन्म जन्मांतर के लिए बन जाता है। तो इसीलिए बाबा कहते पावन भी सिर्फ एक जन्म के लिए नहीं, जन्म जन्मांतर के लिए बनना है। तुम्हारे में भी जो ज्ञानवान है वो तीखे होते हैं, वो उस बात को समझ जाते हैं, इसके महत्व को समझ जाते कि पावन क्यों बनना है। रामा अनुसार व नूंद है, तुम्हारे में भी महावीर पना चाहिए, पावन बनने के लिए हिम्मत चाहिए, महावीर पना चाहिए। वह आएगा बाप की याद में रहने से। बाप बहुत अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। जैसे बाबा कहते हैं कि सवेरे उठकर याद करो, वह समय बहुत सुंदर है याद करने का, जिसको प्रभात कहा जाता है। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं राम सिमिर प्रभात मोरे मन। बाप भी कहते हैं सवेरे उठ बाप को याद करो तो बड़ा मजा आएगा। बाप की याद में बैठ यही ख्याल करना चाहिए कि कैसे किसको समझाएं। अमृत वेले का वायुमंडल बड़ा शुद्ध रहता है। याद करने के लिए बाबा अमृत वेले का महत्व बताते हैं। दिन में तो गोरख धंधा रहता है, रात को 12 बजे तक तो विकारी वायुमंडल रहता है। साधु संत भक्त आदि सब भक्ति भी प्रभात को करते हैं, सुबह सुबह उठ करके करते हैं। यो तो याद दिन में भी कर सकते हैं। धंधे में भल रहे बुद्धि का योग जिस देवता का पुजारी होगा उनके पास होगा, परंतु ऐसा किसका रहता नहीं है। दो तरफ बुद्धि हो, धंधे में भी और बाबा की याद में भी या देवताओं के याद में भी, ये रहता नहीं है। भक्ति मार्ग में सिर्फ दर्शन के लिए बाबा कहते मेहनत करते हैं, भक्ति मार्ग में सिर्फ दर्शन के लिए मेहनत करते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। उनको भी भक्ति करते करते तमो प्रधान बनना ही है। भक्ति मार्ग में भी शिव पर बलि चढ़ते हैं, जिसको काशी कलवट कहते हैं। शिव को याद करते करते कुएं में कूद पड़ते हैं, शिव के ऊपर बलि चढ़ते हैं। वह है भक्ति मार्ग की बलि, यह है ज्ञान मार्ग की बलि। स्थूल में कोई शरीर का घात नहीं करना है, लेकिन आत्मा को एक शुद्ध सात्विक पथ पर ले आना, पावन बनने की हिम्मत रखना, इसको कहा जाता है कि पतित पने की बलि चढ़ा दी और पावन बन गया आत्मा, शुद्ध पवित्र बनती है। तो यह है ज्ञान मार्ग की बलि। यह भी पावन बनने का दृढ़ संकल्प जो करते हैं शिव के ऊपर ही यह संकल्प करते हैं। तो यह है ज्ञान मार्ग की बलि, वह है भक्ति मार्ग की बलि।
वह भी मुश्किल, यह भी मुश्किल, दोनों ही मुश्किल है। भक्ति मार्ग में इससे कुछ फायदा नहीं। ये जैसे आत्मा अपने शरीर का घात करती है, ये कोई ज्ञान नहीं है। वह भी कह देते आत्मा सो परमात्मा, आत्मा अभिमानी तो एक बाप ही है जो बच्चों को समझाते हैं कि परमात्मा तो मैं एक ही हूं। हम आत्मा सो परमात्मा कहना ये बड़े से बड़ी झूठ है, यह तो हो नहीं सकता। आत्मा सो परमात्मा हो नहीं सकता है। बाप कहते मैं आता ही हूं पतितों को पावन बनाने, सो पावन बना रहा हूं, बाकी तो ड्रामा में जो होना है सो होगा ही। समझो अर्थक्वेक होती है। अब ड्रामा का वास्तविक एप्लीकेशन बाबा बताते हैं। समझो अर्थक्वेक होती है, छत गिर जाती है, कहेंगे भावी नींदा हुआ था, कल्प पहले भी ऐसा हुआ था, इसमें जरा भी हिलने की दरकार नहीं। जैसे भक्ति मार्ग में भी कहते हैं भावी टाले नहीं टले, इतना भी कोई कोशिश करे तो भी उसको टाल नहीं सकते हैं, होकर के ही रहती है। तो उसी को बाबा ने समझाया ड्रामा। ड्रामा में जो है वो होकर के रहता है। तो भक्ति मार्ग में जिसको भावी कहा, ज्ञान मार्ग में समझ के आधार पर हम कहते हैं ये ड्रामा है, कल्प पहले भी ऐसा हुआ था, इसमें जरा भी हिलने की दरकार नहीं। भाई क्या हो गया, घबराहट और एकदम हलचल में आ जाने की दरकार नहीं। ड्रामा पर पक्का खड़ा रहना है, इसको ही महावीर कहा जाता है। क्योंकि जो होने हैं उसको कोई टाल ही नहीं सकते हैं, तो घबराहट हलचल में आकर के क्या कर सकते हैं। तो बाबा कहते ये समझ जब आ जाती है तो हिलते नहीं, इसको ही महावीर कहा जाता है। एक्सीडेंट आदि तो ढेर के ढेर होते रहते हैं, फिर किसकी रक्षा करते हैं क्या? यह तो ड्रामा में नोंद है। भावी अगर किसी को पता भी हो जाए ये होने वाला है तो भी क्या किसकी रक्षा कर सकते हैं? तो बाबा कहते ये तो ड्रामा में नोंद है, ऐसे ही ड्रामा में पार्ट है। जो ड्रामा को नहीं जानते वह देह को याद कर आंसू बहाते हैं, वह कभी शिव बाबा को याद नहीं कर सकते, क्योंकि शिव बाबा से प्यार नहीं है। देहधारी से प्यार है तो जरूर है आंसू बहाते हैं, तो उसको ये कहेंगे शिव बाबा को याद नहीं कर सकते, शिव बाबा से प्यार नहीं, सच्ची प्रीत नहीं। बाप के साथ तो पूरी प्रीत होनी चाहिए। शिव बाबा के साथ प्रीत बुद्धि तुम कल्प कल्प बनते हो। देवताओं की बाप के साथ प्रीत बुद्धि थी ऐसे नहीं कहेंगे। देवताएं तो जानते ही नहीं थे कि परमात्मा कौन है। उन्होंने इस प्रीत से वह पद पाया है। देवता बनने से पहले उस प्रीत से ही ये पद पाया है। वहां तो मालूम भी नहीं रहेगा, सारे कल्प में तुमको शिव बाबा का पता भी नहीं रहता है जो प्रीत रख सको। अभी बाप ने अपना परिचय दिया है। अब बाप कहते हैं कि और संग तोड़ मुझ एक संग जोड़ो, ये विनाश काल तो जरूर है। यह भी तुम बच्चे जानते हो, मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधेरे में है। तुम अभी समझते हो हमको तो बाप से पूरा वर्षा लेना है। याद बिगर सतो प्रधान नहीं बन सकेंगे, सर्जन बन अपने रोग को देखना है। सर्जन बन अपने रोग को देखना है, कौन सा रोग है हमारे अंदर। श्रीमत पर देखना है कि हमारी बाप के साथ कितनी प्रीत है। अमृत वेले ही बाप को याद करना अच्छा है, प्रभात का समय बहुत अच्छा है, उस समय माया के तूफान नहीं आएंगे। रात को 12 बजे तक तपस्या करने का कोई फायदा नहीं है।
क्योंकि टाइम ही गंदा होता है, वायुमंडल खराब रहता है, तो 1 बजे तक छोड़ देना चाहिए। 1 के बाद वायुमंडल अच्छा रहता है। बाप कहते अपना तो है ही सहज राजयोग, इसलिए कहा जाता 2:30 बजे से 5 बजे का समय बहुत सुंदर है। तो बाबा कहते 1 बजे तक तो बिल्कुल ऐसे याद में नहीं बैठना चाहिए, योग लगेगा भी नहीं क्योंकि वातावरण के अंदर तामसिक पना होता है। बाबा कहते हैं अपना तो है ही सहज राजयोग, भल आराम से बैठो। बाबा अपना अनुभव भी सुनाते हैं, कैसे बाबा से बातें करता हूं, बाबा कैसा है, वंडरफुल ये ड्रामा है। ब्रह्मा बाबा भी कैसे बाबा से बातें करते हैं, बाबा कैसा वंडरफुल ये ड्रामा है, आप कैसे आकर पतित से पावन बनाते हो, सारी दुनिया को कैसे पलटाते हो, बड़ा वंडर है। जैसे बाप को ख्याल आते हैं वैसे बच्चों को भी आने चाहिए। कैसे मनुष्य का बेड़ा पार करे अथवा कैसे नैया पार करे। बाप कहते हैं तुम पुकारते ही रहते हो ना, हे पतित पावन आओ, अब मैं आया हूं, अब तुम पतित न बनो, पतित होकर सभा में आकर नहीं बैठो, नहीं तो वायुमंडल अशुद्ध कर देते हैं। बाबा को मालूम तो पड़ता है, दिल्ली में बॉम्बे में ऐसे विकार में जाने वाले आकर बैठ जाते थे, गाया हुआ है, असुर आकर विघ्न डालने बैठते थे, वाइब्रेशन को अशुद्ध कर देते, तो ये भी एक प्रकार का विघ्न है। विकार में जाने वालों को असुर कहा जाता है, वायुमंडल को खराब करते हैं, उनके लिए सजा बड़ी कड़ी है। जो वायुमंडल को खराब करते हैं उनके लिए सजा बहुत कड़ी है। बाबा समझाते तो सभी बातें हैं, फिर भी अपना घाटा करने के सिवाय रहते नहीं, झूठ भी बोलते हैं, नहीं तो फौरन लिख देना चाहिए, बाबा हमसे ये भूल हुई, क्षमा करना, अपना पाप लिख दो, नहीं तो वृद्धि को पाते रहेंगे और रसाताल में चले जाएंगे। आते हैं कुछ लेने लिए और ही काम कटा लेते हैं। अपने आप को पाप के भागी नहीं बनाना है, आए हैं बाबा के पास कुछ लेने के लिए तो उसको लेना जरूर है। इसलिए बाबा कहते हैं बाबा को सच सच या तो लिख करके दे दो या सच सुना दो, तो भी बाबा क्षमा का सागर है, क्षमा कर देगा। यह भी ड्रामा में पार्ट है, ऐसे असुर कल्प पहले भी थे अब भी है, अमृत छोड़ विष पीते हैं, अपना भी घात करते हैं और औरों को भी

नुकसान पहुंचाते हैं, वायुमंडल खराब कर देते हैं। ब्राह्मणियां भी सब एक समान नहीं है, महारथी घोड़ेस्वार प्यादे सब है। तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए। किस बात की खुशी होनी चाहिए? बाबा मिला, बाकी क्या? हाँ, बाबा मिला और बाकी क्या? हाँ, अपने बच्चों आदि को जरूर संभालना है। ऐसे नहीं कि बाबा ये सब आपके हैं, बच्चे भी आपके हैं, अब आप संभालो। हम तो आपके बन गए। बाप समझाते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो, कोई भी पतित काम नहीं करो। बस पहली बात है काम की। द्रौपदी ने भी इसी पर पुकारा कि हमको ये नंगन करते हैं। पुकारा भी तब था जब बाप सुनने वाला आया था। बाप के आने के पहले कोई भी पुकारते नहीं है, किसको पुकारेंगे? बाबा आया है तभी पुकारते हैं। पतित से पावन बनकर फिर कहां जाएंगे? पतित से पावन बनकर फिर कहां जाएंगे? वापस जाना है, वह तो यही समय है। सबका सदगति दाता लिबरेटर एक ही है। यहां तो दुख है, साधु संत आदि कोई भी सुखी हो न सके। शारीरिक कष्ट भी है ही है, सबको कोई ना कोई दुख रोग आदि होता ही है। कोई गुरु अंधा लूला भी होता है, जरूर कोई ऐसा काम किया है तब तो अंधा लूला आदि बनते हैं। सतयुग में कोई अंधा लूला आदि थोड़ी होगा, मनुष्य थोड़ी समझते हैं। बाप ही आकर समझाते हैं, कर्मों की गुई गति भी बाप ही आकर के समझाते हैं कि कुछ तो ऐसे कर्म हुए हैं जिस कारण फल स्वरूप ऐसा जन्म प्राप्त हुआ है। बाप ही ज्ञान का सागर पतित पावन है, बाकी तो सब है भक्ति। वह भक्ति मार्ग ही अलग है, वह है सीढ़ी उतरने का मार्ग। उतरने में, जीवन बंद में आने में 84 जन्म लगते हैं और फिर 1 सेकंड लगता है जीवन मुक्त बनने में। अगर उनकी मत पर चल बाप को याद करे तो 1 सेकंड में जीवन मुक्त की ओर भी जाते। नंबर वार तो है ना, कहते भी है हमको फलानी टीचर मिले तो अच्छा है। तो जरूर खुद कमजोर है तब तो कहते हैं फलानी को 2-4 मास के लिए भेज दो। बाबा कहते हैं यह भी भूल है, तुम ब्राह्मणी को क्यों याद करते हो जबकि बाप सहज बात समझाते हैं। सिर्फ बाप को याद करो और स्वदर्शन चक्र फिराओ, औरों को भी समझाओ, बस इसमें ब्राह्मणी आकर क्या करेगी? यह तो सेकंड की बात है। तुम धंधे धोरी में यह भूल जाते हो, फिर भी ब्राह्मणी यही कहेगी मन मना भव। कई बुद्धू लोग समझते नहीं है, सिर्फ कहते हैं ब्राह्मणी अच्छी चाहिए। ज्ञान तो तुमको मिला है ना, बाप और वर्से को याद करो, देह अभिमान को छोड़ो। ये हमारा सेंटर है, ये इनका सेंटर है, ये जिज्ञासु यहां क्यों जाते हैं, ये सब देह अभिमान है। सब शिव बाबा के सेंटर्स है, सब शिव बाबा के सेंटर्स है, हमारा थोड़ी सेंटर है। तुमको यह क्यों होता है कि फलाना हमारे सेंटर पर क्यों नहीं आता है? कहां भी जाए, हरेक का कार्मिक हिसाब भी तो है, वो वहीं जाएगा। बाबा हमेशा कहते हैं कोई से भी मांगो नहीं। ये समझ सकते हैं कि बीज नहीं बोएंगे तो मिलेगा क्या। भक्ति मार्ग में भी दान पुण्य किया जाता है। तुम सब भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ इनडायरेक्ट करते थे, फिर सन्यासियों को भी बहुत देते थे। नहीं तो दान गरीबों को दिया जाता है, न कि शाहूकारों को। इसमें अनाज का दान सबसे अच्छा होता है, अनाज का दान सबसे अच्छा होता है। सो भी बाप समझाते हैं दान करने से दूसरे जन्म में उसका फल मिल जाता है। ईश्वर ही सबको फल देते हैं,
साधु संत आदि कोई रिटर्न नहीं दे सकते हैं। देने वाला एक ही बाप है, किसके भी थ्रू देवे। देने वाला एक बाप है, किसके भी थ्रू देवे। बाप समझाते हैं कि तुम ईश्वर अर्थ देते थे तो भी दूसरे जन्म में तुमको एवजा दिलाते थे। अभी तो मैं डायरेक्ट आया हूं, अभी तुमको 21 जन्म के लिए रिटर्न मिलेगा, फिर तो मौत सामने खड़ा है। भक्ति मार्ग में तुमको ऐसे नहीं कहते थे कि मौत सामने खड़ा है इसलिए अपना सफल करो, नहीं। तो अब बाप समझाते हैं, जिसको भी चाहिए ये रूहानी हॉस्पिटल खोल दो। कोई कहते हैं मकान बनाए, उसमें यह हॉस्पिटल खोले। बाप कहते आज मकान बनाओ और कल मर जाओ तो ये सब खत्म हो जाएगा। शरीर पर भरोसा नहीं है, जो है उसमें ही तब तक एक कमरा रख दो। ना अपना मकान बनाते हैं तो उसमें एक कमरा रख दो, जिसमें रूहानी हॉस्पिटल रूहानी कॉलेज बनाओ। बहुतों का कल्याण करेंगे तो बहुत ऊंच पद पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, श्रीमत पर अपने आप को देखना है कि इस विनाश काल में मेरी एक बाप से सच्ची प्रीत है। सेल्फ रियलाइजेशन के लिए बाबा ने आज कई प्रश्न पूछे हैं कि विनाश काल में मेरी एक बाप से सच्ची प्रीत है और सब संग तोड़ एक संग जोड़ी है। कभी कोई विकर्म करके असुर तो नहीं बनते हैं। ऐसी चेकिंग कर स्वयं को परिवर्तन करना है। दूसरी पॉइंट, इस शरीर पर कोई भरोसा नहीं है इसलिए अपना सब कुछ सफल करना है। अपनी स्थिति एक रस अचल बनाने के लिए ड्रामा के राज को बुद्धि में रख कर चलना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, बार बार हार खाने के बजाय बलिहार जाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान विजयी भव। बार बार हार खाने के बजाय बलिहार जाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान विजयी भव। स्वयं को सदा विजयी रत्न समझकर हर संकल्प और कर्म करो तो कभी भी हार हो नहीं सकती है। मास्टर सर्वशक्तिमान कभी हार नहीं खा सकते। यदि बार बार हार होती है तो धर्मराज की मार खानी पड़ेगी और हार खाने वालों को भविष्य में हार बनाने पड़ेंगे। द्वापर से अनेक मूर्तियों को हार पहनाने पड़ेंगे, इसलिए हार खाने के बजाय बलिहार हो जाओ। अपने संपूर्ण स्वरूप को धारण करने की प्रतिज्ञा करो तो विजयी बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, कब शब्द कमजोरी सिद्ध करता है, कब कर लेंगे ये कमजोरी सिद्ध करता है, इसलिए कब करेंगे नहीं, अब करना है। अब शब्द शक्तिशाली आत्मा, कब कर लेंगे ये कमजोरी सिद्ध करता है। तो कब शब्द कमजोरी सिद्ध करता है, इसलिए कब करेंगे नहीं, अब करना है। आज का व्यक्त इशारा है, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनाओ। उसके अंतर्गत बाबा ने कहा, इस बेहद की स्टेज पर मैं खिलाड़ी हूं। यह खिलाड़ी की स्टेज सदा हर्षित मुख रहने का अनुभव कराती है। किसी भी प्रकार की कोई भी बात जिसको दुनिया वाले आपदा समझते हैं, लेकिन खिलाड़ी बन खेल करने वाले और साक्षी हो खेल देखने वाले, ऐसे आपदा के रूप को खेल समझ
सहनशीलता की शक्ति से